0: जो असलियत से कोसों दूर रहती है। नतीजा ये होता है कि बिना जांचे परखे, बिना समझे इसे लोग सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, हर झूठ के नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज फैक्ट चेक में। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि नेपाल में जमीन में गहरी दरारें पड़ गई और आग निकलने लगी, जिससे लोगों के बीच में दहशत फैल गई। क्या है वायरल दावे की और वीडियो की सच्चाई, आगे आपको दिखाएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो के साथ जुड़ी है, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि भोजपुर एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा का ये वीडियो है, जिसमें हजारों लोग जुटे। क्या है वायरल दावे और वीडियो की पूरी सच्चाई, दिखाएंगे और बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि नेपाल में जमीन में गहरी दरारें पड़ गईं और आग निकलने लगी। वायरल हो रहे वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, पड़ताल करती इस रिपोर्ट में देखिए।

0: नेपाल से जोड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति को धरती फटने के बाद वहां से निकलती आग की जांच करते हुए देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि ये नेपाल का है, जहां जमीन में गहरी दरारें पड़ गई और तेज आग निकलती दिखाई दी। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि नेपाल में आई इस रहस्यमय घटना ने लोगों को डरा दिया है। जमीन में गहरी दरारें पड़ गई हैं और भूगर्भ से तेज आग निकलती दिखाई दी है। स्थानीय लोगों ने इसे भयावह बताया, जबकि विशेषज्ञ इसे भूगर्भीय गतिविधि मान रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये किसी बड़े भूकंपीय बदलाव का संकेत है या सिर्फ एक असामान्य प्राकृतिक घटना। पूरी दुनिया की नजर अब नेपाल की इस घटना पर टिकी है। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो का सच झूठ जाने बगैर इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति को धरती फटने के बाद वहां से निकलती आग की जांच करते हुए देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये नेपाल का वीडियो है, जहां जमीन में गहरी दरारें पड़ गई और तेज आग निकलती हुई दिखाई दी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को बड़े ही गौर से देखा। वीडियो में जमीन में दरारें देखने को मिल रही हैं, आग की वजह से धुआं भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति इसे चेक करता हुआ भी आपको दिखाई देगा इसी वीडियो में। इस दौरान वहां पर कुछ लोगों को खड़ा भी देखा जा रहा है। जब हमने इन लोगों को ध्यान से देखा, इनके चेहरे के हाव भाव पर नजरें दौड़ाई, लेकिन इस दौरान हमें इनके चेहरे पर ना तो कोई दहशत और ना ही कोई भय नजर आया। आमतौर पर अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो लोगों के चेहरे पर डर जरूर देखने को मिलता है। इसके अलावा वीडियो में यह भी देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग बड़े ही आराम से इधर उधर से जा रहे हैं। अब ऐसी कोई रहस्यमय घटना होती है तो लोग चौंकते हैं, ना कि इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। ये ना तो नेपाली है ना अंग्रेजी है, ये स्पेनिश लग रहा है। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल, वायरल हो रहा वीडियो कब और कहां का है? दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है? आखिर सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक वेबसाइट पर 3 जून 2022 को छपी रिपोर्ट में वीडियो के स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल देखने को मिला। रिपोर्ट के अनुसार मैड्रिड में नेटफ्लिक्स पर आने वाली वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के चौथे सीजन के प्रचार अभियान के दौरान एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक इंस्टाग्राम यूजर ने भी 28 मई 2022 को इस वीडियो को पोस्ट करते हुए इसे मैड्रिड का बताया। सर्च के दौरान एक यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो मिला। 27 मई 2022 को यहां पर इस कार्यक्रम का दूसरा वीडियो पोस्ट किया गया है, इसमें भी इसे मैड्रिड का बताया गया है। इस तरह हमारी जांच से वायरल दावा गलत निकला। दरअसल वायरल वीडियो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुई 2022 में हुए एक वेब सीरीज के प्रचार अभियान का हिस्सा है। इसका नेपाल से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक अर्थी लिए हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं, उनके पीछे सैकड़ों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करके ये बोल रहे हैं कि ये वीडियो 17 जून के भोजपुर एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की अंतिम यात्रा का है। वायरल वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, पड़ताल करते इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको।

0: बिहार के भोजपुर में भारत भूषण तिवारी नामक युवक के एनकाउंटर का मामला सीएम सम्राट चौधरी के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। 17 जून को इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान भरत की मौत हो गई। पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप है। वहीं पुलिस का दावा है कि उन्होंने आत्मरक्षा में ये कदम उठाया। बिहार सरकार ने इस मुठभेड़ की न्यायिक जांच करने की घोषणा की है। साथ ही घटना के संबंध में 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है, जिनमें संबंधित थाना प्रभारी भी शामिल हैं। इन सब के बीच भरत की अंतिम यात्रा का बताकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक अर्थी लिए हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं और उनके पीछे सैकड़ों लोगों की भीड़ भी दिख रही है। एक्स पर एक व्यक्ति ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भरत तिवारी की अंतिम यात्रा में जुटी ये भीड़ ही बता रही है कि उसका एनकाउंटर लोगों को कितना गलत लगा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि यह भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा का वीडियो है। इस वीडियो में काफी तादाद में लोगों को देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच पड़ताल को शुरू किया। फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई को जानने के लिए सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान वीडियो में हमें कुछ जगह पत्रकार अमर रहे शब्द सुनाई दिए। जब भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा का ये वीडियो है तो इसमें पत्रकार अमर रहे नारे क्यों सुनाई दे रहे हैं? इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की तुलना भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा के वीडियो के साथ की। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें मेरे पीछे देख रहे हैं। एक तरफ है वायरल वीडियो और दूसरी तरफ भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा का असली वीडियो। इन दोनों ही वीडियो को देखने पर आपको फर्क साफ नजर आएगा। मतलब ये कि वायरल हो रहा वीडियो किसी और शख्स की अंतिम यात्रा का है, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल, अंतिम यात्रा का ये वीडियो कब का है और कहां का है? दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? आखिर सच्चाई है क्या और सच क्या है और झूठ क्या है? इस रिपोर्ट में जानिए।

0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। यहां इसे 10 मार्च को पोस्ट किया गया था। इतनी बात तो यही साफ हो गई थी कि ये वीडियो पुराना है और भरत तिवारी मामले से संबंधित नहीं हो सकता है। सर्च के दौरान ये जानकारी सामने आई कि ये वीडियो राजस्थान के पाली जिले के निमाज कस्बे का है और स्थानीय पत्रकार गोविंद सेन की अंतिम यात्रा का है। एक रिपोर्ट के मुताबिक निमाज के युवा पत्रकार गोविंद सेन के आकस्मिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। इस तरह हमारी जांच में बिहार के भरत भूषण तिवारी के अंतिम संस्कार के नाम पर वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुई। भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ के दावे से वायरल वीडियो राजस्थान के पाली जिले के निमाज के स्थानीय पत्रकार गोविंद सेन के अंतिम संस्कार का है। इसके जरिए झूठ फैलाया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ फैक्ट चेक में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार से वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे भारत वर्ल्ड की हलचल। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जीएनटी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: Costs shouldn't be a barrier to a teaching career. That's why WGU makes earning a degree in education affordable with flat rate tuition and scholarship opportunities. Make an investment toward making a difference. Learn more at wgu.edu.
2: Good news today is really अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर को अंत की तरफ बढ़ाने का, आप सबको ऐसे वीडियोस दिखाने का जिनको देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
4: माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता माना जाता है। माँ अपने बच्चों के लिए हर दर्द सह लेती है, लेकिन जब वही बच्चा माँ के दर्द को अपना दर्द समझने लगे तो वो पल हर किसी की आंखें नम कर देता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में एक छोटा बच्चा अपनी माँ की चोट को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। वो बार बार माँ के पास जाकर उनकी चोट की ओर इशारा करता है और मासूमियत से कहता है कि उसे माँ की चिंता हो रही है। बच्चे की आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं और वो भावुक होकर कहता है, यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, मुझे इसलिए ही रोना आ रहा है। उसकी बातें सुनकर माँ भी भावुक हो जाती है।
5: बैंगलोर जाने का तैयारी हम लोग का आम पैक हो रहा है बिहार से कि बैंगलोर में खाएंगे मालदा आम। क्या मम्मी? पंद्रह किलो का ही लिमिट होता है मम्मी।
4: इस वीडियो में ना कोई बड़ा सरप्राइज है और ना ही कोई महंगा तोहफा, फिर भी लोग इसे बार बार देख रहे हैं। इसकी वजह एक सास का अपनी बहू के लिए प्यार और अपनापन है। बिहार की एक महिला ने अपनी बहू के लिए मालदा आमू से भरे कई पैकेट बेंगलुरु भेजे। वीडियो में जिस तरह वो आमू को बड़े प्यार से पैक करती नजर आती हैं, उसे देखकर लोग इमोशनल हो गए और जब उनसे पूछा गया कि इतने सारे आम किसके लिए हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, मेरी बहू खाएगी।
5: क्या मम्मी?
4: यही एक लाइन अब सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है।

खूबसूरत मिलन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 3.5 साल बाद जब एक बेटी विदेश से अपने घर लौटी तो पूरे परिवार ने उसका ऐसा स्वागत किया कि देखने वालों की आंखें भी नम हो गईं। वीडियो की शुरुआत होती है बेटी के घर के दरवाजे पर पहुंचने से, जहां परिवार के सभी लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो चौखट पर पहुंचती है, परिवार की एक बुजुर्ग महिला सिर के ऊपर से पानी वार कर उसकी नजर उतारती है ताकि सारी नकारात्मकता दूर हो जाए। घर के अंदर कदम रखते ही भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। लड़की सबसे पहले अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ती है और फिर बाकी रिश्तेदारों से मिलती है। पूरे घर को फूलों से सजाया गया है। अंदर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर उसकी तस्वीर के साथ लिखा है, देखो तो कौन आया। जैसे जैसे वो घर के अंदर बढ़ती है, एक छोटा बच्चा घंटी बजाकर उसके हर कदम का स्वागत करता है। उसके बाद उसकी आरती उतारी जाती है। फिर वो लाल रंग यानी अलता से भरी थाली में पैर रखकर सफेद कपड़े पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ती है, जिसे हमारे यहाँ समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। आखिर में पूरे परिवार ने मिलकर केक काटा और इस पल को यादगार बनाया। आमतौर पर लोग अपनी पहचान अपने काम से बनाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ अपनी कड़क और गूंजती हुई आवाज के लिए पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक जोसेफ ने 122.4 डेसिबल की तीव्रता से चिल्लाकर पिछला सारा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। उनकी ये चीख किसी रॉक कॉन्सर्ट के शोर या टेक ऑफ करते हुए फाइटर जेट की आवाज के बराबर है।

सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान का एक वीडियो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। वीडियो में एक शख्स ने अपनी बाइक को इस तरह मॉडिफाई किया कि उसे देखकर लोग उसे देसी कार कहने लगे हैं। बाइक के पीछे चारपाई बांध दी गई और उसी पर परिवार के सदस्य बैठकर सफर करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक के पिछले हिस्से में लकड़ी की चारपाई मजबूती से फंसाई गई है। चारपाई के दोनों ओर परिवार के लोग संतुलन बनाकर बैठे हैं, जबकि बाइक चला रहा शख्स पूरे आराम से सड़क पर आगे बढ़ता दिखाई देता है। आसपास से गुजर रहे लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान रह जाते हैं। हालांकि ये जुगाड़ लोगों को अनोखा जरूर लगा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसे बेहद खतरनाक बताया गया है। सड़क पर थोड़ा सा संतुलन बिगड़ने या अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है।

तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग हंस भी रहे हैं और हैरानी भी जता रहे हैं। वीडियो में एक युवती सड़क किनारे बैठे एक बंदर के पास जाती नजर आई। वो बंदर को आराम से खाना खिलाना चाहती है। शुरुआत में बंदर बिल्कुल शांत बैठा नजर आता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर किसी को भी यही लगेगा कि वो आराम से खाना ले लेगा। युवती भी बिना किसी डर के उसके करीब पहुंच जाती है और बड़े प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ाती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी शायद वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। जैसे ही युवती बंदर को खाना देने की कोशिश करती है, बंदर अचानक अपना हाथ उठाता है और सीधे युवती को थप्पड़ मार देता है। ये सब इतना अचानक होता है कि युवती कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या है।

0: सोशल मीडिया पर जानवरों से जुड़े वीडियो हमेशा लोगों का ध्यान खींच लेते हैं, लेकिन जब बात इंसानों जैसे प्यार और समझदारी दिखाने वाले जानवरों की हो तो लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बंदर के बच्चे और उसकी माँ के बीच का प्यारा सा व्यवहार देखने को मिला। वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर का छोटा बच्चा एक आदमी के हाथ से फोन छीन लेता है और उसे लेकर उछलता कूदता भाग जाता है। आदमी और आसपास खड़े लोग उसे देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी एक प्यारा सा नजारा देखने को मिलता है। बंदर के बच्चे की माँ वहाँ आती है और जैसे अपने बच्चे को समझाती है कि ये सही काम नहीं है। इसके बाद माँ बंदर खुद बच्चे के हाथ से फोन लेती है और उसे वापस उसके मालिक को सौंप देती है। सोशल मीडिया पर दो चूहों की मजेदार लड़ाई का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बिल्कुल प्रोफेशनल WWE रेसलर्स की तरह एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते नजर आए। वीडियो के शुरुआत में दोनों चूहे एकदम शांत होकर आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो दोनों एक दूसरे को भांप रहे हों कि पहला वार कौन करेगा, लेकिन अगले ही पल सीन बिल्कुल बदल जाता है। अचानक दोनों में से एक चूहा हवा में उछलता है और दूसरे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वो किसी एक्शन फिल्म के स्टंट सीन से कम नहीं। दोनों चूहे पिछले पैरों पर खड़े होकर हवा में उछल उछल कर एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगते हैं। उनकी फुर्ती और दांव पेच को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बकायदा किसी अखाड़े या रिंग में इसकी ट्रेनिंग ली हो। कभी एक चूहा भारी पड़ता है तो कभी दूसरा पलटवार करके उसे पीछे धकेल देता है। चूहों की ये कुश्ती इतनी परफेक्ट है कि इसे देखकर असली WWE मैच की याद आ जाती है। इस वीडियो को जो चीज सबसे ज्यादा खास और एंटरटेनिंग बनाती है वो है इसका बैकग्राउंड ऑडियो। वीडियो के पीछे असली WWE मैच की कमेंट्री फिट की गई है। जब चूहे एक दूसरे को पटकते हैं तो बैकग्राउंड में कमेंटेटर की वही जानी पहचानी जोश से भरी हुई आवाज सुनाई देती है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और
2: कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विवाद बहुत ज्यादा होते हैं, कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विचार बिल्कुल नहीं मिलते और कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन उनकी जिद की वजह से खराब होता है। आपके लग्न के अनुसार कैसा हो सकता है आपका वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: स्पेक्ट्रम टीवी मेक्स स्पोर्ट्स इजी, सो आई नेवर मिस, नेवर मिस अ होमर, नेवर मिस अ होम फील्ड हैट ट्रिक, नेवर मिस अ गोल लाइन स्टैंड इंचेस फ्रॉम द एंड ज़ोन, नेवर मिस एन एंड टू एंड टिक टैक टो Top Shelf Snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: अब बात कुछ ऐसे वीडियो की जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। इनमें कुछ ऐसे वीडियो हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ भावुक कर जाएंगे और कुछ ऐसे जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि क्या ऐसा भी होता है।
6: केवल इंसान के बच्चे नहीं बल्कि जानवर भी अपने बड़ों से सीखते हैं। वायरल वीडियो में एक छोटा बंदर शरारत करते हुए इंसान के हाथ से मोबाइल लेकर भाग जाता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और मोबाइल वापस लेकर इंसान को लौटा देती है। ये नजारा लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो मजेदार जरूर है, लेकिन इसके जरिए मजेदारी और सही व्यवहार का संदेश भी मिलता है। लोग माँ बंदरिया की समझदारी की खूब तारीफ कर रहे हैं। दोस्ती उम्र, भाषा या प्रजाति नहीं देखती। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची और बकरी साथ मिलकर झूले जैसी मस्ती करते नजर आ रही है। दोनों ने शानदार संतुलन बनाकर खेल का आनंद लिया। खास बात यह है कि बकरी बिल्कुल नहीं डरती और पूरे उत्साह के साथ बच्ची का साथ देती है। दोनों की मासूमियत और प्यार भरी बॉन्डिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है। ये वीडियो इंसान और जानवर के बीच खूबसूरत रिश्ते की मिसाल बन गया है। माता पिता अपने बच्चों के लिए जिंदगी भर मेहनत करते हैं और कई बार अपने सपने पीछे छोड़ देते हैं। एक भावुक वीडियो में बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी कर दी। पिता समुद्र देखना और उसमें स्नान करना चाहते थे, लेकिन जिम्मेदारियों के कारण कभी जा नहीं सके। जब बेटे को इस इच्छा का पता चला तो वो तुरंत उन्हें समुद्र किनारे ले गया। समुद्र में नहाते पिता की खुशी देखने लायक थी। ये वीडियो हर किसी को भावुक कर रहा है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए आपने कई इंतजाम देखे होंगे, लेकिन ये तरीका सबसे अनोखा है। वायरल वीडियो में एक डॉगी परीक्षा कक्ष के अंदर पूरे रौब के साथ घूमता दिखाई देता है। वो हर डेस्क के पास जाकर ऐसे निरीक्षण कर रहा है जैसे किसी विशेष ड्यूटी पर तैनात हो। छात्रों की गतिविधियों पर भी नजर रखने वाला ये IPS डॉगेश लोगों को खूब हंसा भी रहा है। डॉगी का गंभीर अंदाज और चाल ढाल वीडियो को और भी मजेदार बना रहा है।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विवाद बहुत ज्यादा होते हैं? कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विचार बिल्कुल नहीं मिलते, और कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन उनकी जिद की वजह से खराब होता है? आपके लग्न के अनुसार कैसा हो सकता है आपका वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है।

कबीर बाबा की वाणी, मन लाग्यो मेरो यार किसमें लगा, मन लाग्यो मेरो यार सुबोध जी आपने पूछा कि कामनाओं को कैसे रोकें, ऐसे रोक सकते हो, ऐसे भी समझो, वृंदावन में दो लोग थे,

जमुना जी में नाव, नाव पर दोनों ब्रजवासी, जाना है दिल्ली। एक ने कहा कि ट्रेन से क्या जाना, जमुना जी भी तो दिल्ली से ही निकली, नाव से चलो, रात भर चलेंगे सुबह पहुंच ही जाएं, जहां तक पहुंचेंगे वहां नाव रख देंगे फिर गाड़ी से जाएं। पूरी रात नाव चलाई, सुबह हो आई, इनको तब ध्यान आई, सुबह प्रातः काल नाव चलाते चलाते थक गए, सोचा कोई नगर दिखाई पड़ रहा, लगता है दिल्ली के आसपास का कोई नगर है, जरा पूछ लिया जाए। तो किसी से पूछा कि क्यों भाई ये कौन सी सिटी है, कौन सा नगर है? तो सामने वाले ने उत्तर दिया, चुप रहो, ये कोई सिटी या नगर नहीं है, ये वृंदावन है। अब दिमाग खराब हो गया, दूसरी की तरफ देख के बोले, अपन रात को कहां से चले थे? बोले वृंदावन से। बोले पहुंचे कहां रात भर में? बोले वृंदावन। क्या जमुना जी गोल गोल है भैया, जो रात भर चले हो वृंदावन के वृंदावन में पहुंचे? शायद ये उल्लू बना रहा। दूसरे से पूछा, क्यों भैया ये कौन सी सिटी है? हे भैया चुप रहो, ये सिटी ना है, ये तो भैया वृंदावन है। अब तो पक्को है गो ब्रज भाषा में जी वृंदावन है, पर रात भर अपन लोग चले कहां? तब ध्यान आया, पीछे मुड़कर देखा, क्या ध्यान आया? रात भर नाव तो चलाते रहे पर नाव जिस रस, नाव की रस्सी जिस खूंटे से बंधी थी वो खोल नहीं भूल गए। रस्सी से खूंटी, खूंटी से रस्सी बंधी, नाव बंधी ही रही, नाव चलाते रहे। वही हम लोगों का हाल है, जिंदगी भर भजन करते रहते हैं पर मन को संसार रूपी खूंटी से बांध देते हैं, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो सुबोध जी, कामना से बचना है, वासना से बचना है तो उपासना करनी पड़ेगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ये हमने दूसरा प्रश्न लिया है जयपुर से, आपने लिखा हनुमान नाम का अर्थ क्या है, हनुमान क्यों कहते हैं? हनुमान जी के अनेक नाम हैं, बजरंगबली है आदि आदि लोग पुकारते हैं, पर सबसे ज्यादा हनुमान ही क्यों पुकारते हैं, कृपा करके बताने का कष्ट करें। और आप कभी खोले के हनुमान जी दर्शन करने आए, आपका पागल भगत। हे पागल भगत, तुमने पूछा कि हनुमान नाम का अर्थ क्या, सीधा सीधा सुनो, जो अपने मान का मर्दन स्वयं कर दे उसी को हनुमान कहते हैं। जिसे ना मान प्रिय हो ना सम्मान प्रिय हो, जिसे केवल भगवान प्रिय हो उसे हनुमान कहते हैं। एक बात और, हनुमान कौन? जो ज्ञानवान है। हनुमान कौन? जो बलवान है। हनुमान कौन? जो बुद्धिमान है। हनुमान कौन? जो तेजवान है। हनुमान कौन? जो विद्यावान है। इसलिए तो ये हनुमान है। आपने पूछा कि अनेक नाम है, बिल्कुल नाम है हनुमान जी के अनेक नाम, पर प्रिय तो हनुमान जी का। एक और सुनो, हनुमान जी का काम है स्वयं का मान नीचे रखना, प्रभु का सम्मान बढ़ाना, अभिमानियों को ठिकाने लगाना, ये हनुमान जी का काम है। रावण को अभिमान आ गया, क्या हमारे जैसा बलवान कोई नहीं है? हनुमान जी बोले आ जाओ, ऐसी पूंछ से आग लगाई कि जब हनुमान जी वापस आ गए तो पूरी लंका में हनुमान जी की ही चर्चा चली। इतनी चर्चा चली हनुमान जी की चौराहे चौराहे पर कि रावण को चिढ़ हो गई हनुमान जी की पूंछ से। इतनी चिढ़ हो गई कि वो एक बार जब युद्ध चल रहा था तो हनुमान जी से लड़ने आ गया। इसलिए लड़ने आया कि ना ये बंदरा आता, ना सीता माता का पता लगाता, ना ये दोनों राजकुमार लंका आ पाते, ना युद्ध हो पाता, ना हमारा विनाश हो पाता। तो पूरी जड़ कौन है?

0: तो सबसे ज्यादा खतरा किससे है? बंदर से है। क्या करें? एक काम करो, बंदर को ही मार दो। हनुमान जी के सामने रावण खड़ा हो गया, ए बंदर इधर आ। हनुमान जी बोले बोलो। चलो एक एक मुक्का की हो जाए। एक एक मुक्का जानते हो ना, राजस्थानी में क्या कहते हैं? सुट्टा, मुक्का, गुक्का, गुक्का। चलो एक एक गुक्का की हो जाए। रावण हनुमान जी से बोला चलो एक एक गुक्का की हो जाए, मुक्का की हो जाए। हनुमान जी बोले अगर खुजली हो तो हो जाने दे, क्या दिक्कत है। चलो रावण बोला सुनो, एक मुक्का हम मारेंगे, एक मुक्का तुम मारोगे, इसी से पता लग जाएगा बलवान कौन है। हनुमान जी बोले नो टेंशन, लगो। एक काम करो रावण, पहले तुम ही मारो। रावण बोला नहीं नहीं नहीं, हम दशानन हैं, हम जब चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी बोले ठटरी के बरे, तुम जब चलते हो तब पृथ्वी डोलती, हमारे प्रभु के तो छोटे भाई जब बोलते हैं सो पृथ्वी डोलती है। रावण बोला चुप रहो, हमारे बल को नहीं जानते। हनुमान जी देख ही ले रहे कौन पिक्चर दूर है। चलो मुक्का की हो जाए, गुक्का की। रावण बोला पहले तुम मारो। हनुमान जी बोले नहीं तुम मारो। रावण बोला नहीं पहले तुम मारो। हनुमान जी बोले कहीं अगर हमने मशक दिया हो तो मारने लायक ना बचे, कहीं हमने दे दिया और तुम्हारी बिल्कुल तेरवी हो गई, दांत निकले आए हाथ में फट गई, तो तुम्हारी खुजली बरकरार रहेगी, इसलिए पहले तुम लगो। रावण को भी मन में थोड़ी टेंशन तो ही कि बंदर है तो खतरनाक। रावण बोला तो तैयार हो जाओ। हनुमान जी बोले हैं रेडी। और रावण ने रावण तो रावण ऐसा मुक्का बनाया रावण ने, भारी बलशाली रावण, पीछे तक गया, बोला हो जाओ तैयार। हनुमान जी बोले तैयार है। हनुमान जी ने एक पैर आगे रखा, एक पैर पीछे रखा, रावण मुक्का बना कर आया, जोर से हनुमान जी की छाती पे मारा। हनुमान जी थोड़ा पीछे भय और फिर खड़े हो गए। अच्छा रावण को तो ये भरोसा था कि इन्हें चित्त गिर जाना है। रावण बोला क्यों, चक्कर नहीं आ रहे, चक्कर नहीं आ रहे। हनुमान जी बोले नहीं आ रहे। रावण बोला आंखों के सामने काला काला छा रहा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा जैसे श्वास रुक रही हो? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। रावण को लगा बड़ा खतरनाक बलवान बंदर है, हमारा मुक्का सह गया। हनुमान जी बोले अब बातें बंद करो, अब तुम रेडी हो जाओ। रावण धीरे से बोला रेडी है, अब कर भी क्या सकते, शर्त तो शर्त है। रावण खड़ा हुआ, हनुमान जी ने पीछे नहीं गए, एक मुक्का बनाया और 360 डिग्री घुमाया। जैसे ही 360 डिग्री घुमाया, ब्रह्मा जी ने सोचा ऊपर बैठे बैठे कि अगर हनुमान जी ने छोड़ दिया तो राम कथा यहीं पूरी हो जाएगी। सोई ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, रुकियो रुकियो रुकियो। हनुमान जी बोले एक तरफ हो जाओ, शर्त में तुम ना फंसो बीच में, हम लोगों की शर्त चल रही है। अरे ब्रह्मा जी बोले शर्त वाले रुको तो महाराज, रुको तो क्या बात है, तुम क्यों बीच में आ गए? ब्रह्मा जी बोले हम इसलिए बीच में आ गए कि जिस हिसाब से तुम 360 डिग्री को घुमाए हो, अगर ये छोड़ दोगे तो राम कथा यहीं पूरी हो जाएगी, और इसको मरना है राम जी के हाथों, तुम मार दोगे बदनामी नहीं होगी। हनुमान जी बोले इसे सोचना चाहिए, शर्त इसने लगाई है। और बा जब रावण ने मारा था तब नहीं तुम प्रकट भए, हमारी जब हमारी बारी आई तो तुम प्रकट हो गए, हम नहीं मानेंगे। ब्रह्मा जी बोले शर्त महाराज पूरी कर लो, पर एरिया घटा लो, एरिया घटा। रावण ने भी एक बार ब्रह्मा जी से कहा हट जाओ, तुम क्यों बीच में आ गए? ब्रह्मा जी बोले ज्यादा मजा आ रहा हो तो हम दिखवा दें मजा। अब रावण को लगा कि जब हमारे मैटर में ब्रह्मा जी इंटरफियर कर रहे, मामला सच में गलत बड़ा है। रावण बोला धीरे से कान में ब्रह्मा जी के, तनक साइज घटवा लो। ब्रह्मा जी बोले हनुमान जी साइज घटाओ। हनुमान जी ने 80 डिग्री कम किया, अब ठीक है 180 डिग्री पे कर लिया, अब ठीक है। ब्रह्मा जी बोले नहीं अभी भी ठीक नहीं। बोले क्यों? ब्रह्मा जी बोले अगर 180 डिग्री का मुक्का लग जाएगा तो कम से कम 3 महीना ये कोमा में रहेगा, युद्ध बंद रहेगा, इसलिए थोड़ा और घटाओ। हनुमान जी ने 20 डिग्री और कम किया, अब ठीक है 160 है, अब ठीक है। ब्रह्मा जी बोले अभी भी दिक्कत। बोले क्या? बोले कम से कम 18 दिन तो ब्लड क्लॉटिंग चलेगी इसकी, थोड़ा और घटाओ। हनुमान जी ने 40 डिग्री और घटाया, अब बचा मात्र 120, 100, अब ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अभी भी कम से कम 10-15 दिन ये बेहोश रहेगा। हनुमान जी बोले फिर तो हम शर्त ही बंद करें दे रहे, क्लोज कर दे रहे। नहीं नहीं शर्त करो, थोड़ा और कम कर लो। हनुमान जी ने मात्र 80 डिग्री पे कर लिया, अब ठीक है। ब्रह्मा जी बोले है तो ठीक पर 2-3 घंटा तो बेहोश रहेगा। हनुमान जी बोले अब रहने दो चाहे जो हो जाए। हनुमान जी ने लिया 80 डिग्री का मुक्का, जैसे ही मस्का, जय श्री राम। भैया 10 मुख का 10 आनन 20 भुजा वाला धरती पे गिरा धड़ाम। हनुमान जी को टेंशन हो गई कि सही में रामलीला यही पूरी तो नहीं हो गई। अब हनुमान जी हवा करें, पानी छिड़कें। रावण बोले क्या हुआ? वो ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? हनुमान जी बोले हमें लग रही राम कथा पूरी हो गई। जब थोड़ी देर में होश आया रावण को, हनुमान जी बोले काओ कैसी रही? रावण बोला 180 डिग्री के मुक्का में तीनों लोक घूम लिए, सबसे फंसेंगे तुमसे नहीं फंसेंगे। तो हनुमान जी कौन जो ऐसे अभिमानियों का मान मर्दन करे, उसी का नाम हनुमान है। इतना बल हनुमान जी में कहां से आया?
1: कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विवाद बहुत ज्यादा होते हैं? कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विचार बिल्कुल नहीं मिलते? और कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन उनकी जिद की वजह से खराब होता है? आपके लग्न के अनुसार कैसा हो सकता है आपका वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: एआई की मदद से दौड़ेंगे सेना के टैंक, रोबोटिक वॉरियर संभालेंगे जंग की कमान, सेना के बैटल टैंक का कायाकल्प देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
4: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
5: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
6: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
7: Jack, you're killing me.
6: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
8: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
0: इसके ऊपर
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
11: भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल सफल। हरियाणा के जींद से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन, जल्द ही कमर्शियल ऑपरेशन भी होंगे शुरू। गुजरात के 14 शहरों के लिए आज से उपलब्ध रहेगा भारत टैक्सी ऐप, गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में करेंगे उद्घाटन। आज नोएडा अथॉरिटी के नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 390 करोड़ की लागत से सेक्टर 96 में बनी हाईटेक इमारत, लोगों की सुविधा के व्यापक इंतजाम। एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान में शामिल होगा एसआईआर और चुनाव आयोग, चुनावी प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे छात्र। उत्तराखंड के चार धाम यात्रा में तीर्थयात्रियों में उत्साह बरकरार, बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, करीब 1.5 लाख भक्त हेमकुंड साहिब में टेक चुके हैं मथा। राजस्थान के पाली जिले के एक गांव में बड़ी पहल, पिता के निधन के बाद 12 साल की बच्ची को बनाया गया ठाकुर, राज परिवार ने भी आशीर्वाद दिया।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
11: मॉनसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, आने वाले 24 घंटे में बिहार झारखंड के सभी इलाकों और उत्तर प्रदेश पहुंचने की संभावना। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में तेज होगी मॉनसूनी गतिविधियां, 29 से 30 जून के बीच उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय हो सकता है मॉनसून। सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा मॉनसून का असर, बढ़ेगा बारिश का दायरा, तापमान में 5 से 8 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना, लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम समेत पूरे पूर्वोत्तर में मॉनसून की बारिश जारी, मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मॉनसून के विस्तार के लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में फिलहाल भारी बारिश की संभावना कम, गरज चमक के साथ बादल छाने और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना, तापमान में आ सकती है कमी। पहाड़ों में मौसम ने बदली करवट, बागेश्वर में झमाझम बारिश से मिली गर्मी से राहत। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के टोमना मार्केट में भूस्खलन, रास्ता साफ करने की तैयारी में प्रशासन। NH-10 पर भूस्खलन के कारण सिक्किम और सिलीगुड़ी के बीच चलने वाले वाहनों का रास्ता बदलना पड़ा, तो वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण जगह जगह पर सड़क मार्ग पर रुकावट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले कुछ घंटों में पूर्वी पश्चिमी भारत समेत मध्य और पूर्वोत्तर भारत में कई जिलों में भारी बारिश और तूफान की संभावना। IMD ने उत्तर बंगाल में भारी बारिश की जताई आशंका, इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी भी जारी की। पहाड़ों पर हर पल बदल रहा है मौसम, हिमाचल के शिमला में हुई बरसात से सुहाना हुआ मौसम, पर्यटकों के बीच खुशी की लहर। रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण निचले और ढलान वाले इलाकों में भरा पानी, बरसाती नालों और झरनों से आने वाले पानी के कारण ट्रैफिक की रफ्तार धीमी। जामनगर पहुंचे हॉलीवुड के अभिनेता टायरस गिब्सन, तो वहीं बने अंबानी परिवार के विशेष मेहमान। कुंभलगढ़ को जल्द मिलेगा टाइगर रिजर्व का दर्जा, राजस्थान का छठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनेगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व एरिया बनने के बाद सरिस्का और रणथंभौर से भेजे गए बाघ मेवाड़ और मारवाड़ अंचल के जंगलों में बाघों के संरक्षण, पुनर्वास और वन्य जीव पर्यटन को मिलेगी गति। बारिश बाढ़ से पहले अलर्ट मूड पर कोटा के शोर, सागर में उतरे जवान, फ्लड रेस्क्यू मॉक ड्रिल में दिखाई आपदा से निपटने की पूरी तैयारी। अभ्यास में बारिश और बाढ़ के दौरान किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को परखा गया, जवानों ने तालमेल को भी परखा। चमोली में बारिश से आया भूस्खलन, पहाड़ी से आया मलबा, बचाव कार्य जारी। कई मकानों में घुसा मलबा, कई वाहनों में मलबे में दबे, तो वहीं राहत बचाव कार्य जारी। नैनीताल के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघ भूला कर रेस्क्यू ऑपरेशन, जंगल में घायल हुए बाघ किया गया ऑपरेशन। चारधाम यात्रा में बना हुआ है यात्रियों का उत्साह, 40,50,000 से ज्यादा भक्त हो चुके हैं शामिल। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पहुंच रहे हैं सबसे ज्यादा श्रद्धालु, 13,20,000 से ज्यादा कर चुके हैं बद्री विशाल के दर्शन। हेमकुंड साहिब में अब तक 1.5 लाख के करीब श्रद्धालु टेक चुके हैं मत्था। 5,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं रोज। नोएडा में जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के निर्वाण दिवस पर अवसर पर जत्था देखने को मिला। संस्कृति और सामाजिक संदेशों से जुड़े विशेष धर्म यात्रा का आयोजन हुआ। ग्रेटर चेन्नई में पुलिस ने किया फूड फेस्टिवल का आयोजन, तो वहीं एग्मोर पुलिस म्यूजियम में सजाया गया तरह तरह के व्यंजन। अब श्रद्धालुओं का खाटू श्याम दरबार जाना होगा आसान। सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन। सुंदरपुर में स्टेशन बनने से खाटू श्याम की दूरी 11 किलोमीटर कम होगी। देश भर के लाखों श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी राहत। खाटू श्याम सुंदरपुरा नाम से नया रेलवे स्टेशन बनाने की मंजूरी। बेहतर पार्किंग, दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल सुविधाएं, ऑटोमेटिक टिकटिंग व्यवस्था, एक्सेलरेटर लिफ्ट समेत तमाम सुविधाओं से होगा लैस। खाटू श्याम मंदिर की धार्मिक भव्यता को दर्शाएगा आधुनिक सुविधाओं से लैस इस रेलवे स्टेशन का डिजाइन। धार्मिक पर्यटन, स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसरों को भी मिलेगी रफ्तार। साल 2026 के अंत तक शुरू हो सकता है रेलवे स्टेशन का निर्माण। 2029 तक तैयार हो सकता है खाटू श्याम रेलवे स्टेशन। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भक्तों ने बनाया आस्था का नया रिकॉर्ड। वित्तीय वर्ष में 142 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुल आय। पिछले साल की तुलना में 27 करोड़ ज्यादा आयदान। अब तक सबसे ज्यादा लड्डू प्रसादी की बिक्री में 85 करोड़ की आय। दान पेटियों से 62 करोड़, नगद काउंटर पर 5.5 करोड़, मनी ऑर्डर से करीब 1.25 लाख, ऑनलाइन माध्यम से 3.5 करोड़ से ज्यादा, तो वहीं अन्य क्षेत्र से करीब 3.5 करोड़ और गुप्त दान के रूप में 4.5 करोड़ की प्राप्ति हुई। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे परिवार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की। तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे फिल्म अभिनेता नानी, तो वहीं भगवान की पूजा कर आशीर्वाद लिया। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां हुई तेज। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की निकलेगी रथ यात्रा। पुरी में रथों के निर्माण कार्य में आई तेजी। पारंपरिक सेवक अपनी पूरी निष्ठा के साथ रथों को भव्य रूप देने में जुटे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए 3 भव्य रथों का निर्माण जारी। अंतिम रूप देने में जुटे हैं कारीगर। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 475 कैमरों से होगी रथ यात्रा की निगरानी। यात्रा से पहले सुरक्षा 7,000 जवानों की तैनाती हुई। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना। आज से 29 जून तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सेशल्स के राष्ट्र दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। पीएम मोदी की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले 2015 में किया था सेशल्स का दौरा। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी हिस्सा लेंगे। नोएडा अथॉरिटी का नया मुख्यालय बनकर तैयार, तो वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। करीब 390 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है हेडक्वार्टर। 2016 में शुरू हुआ था निर्माण कार्य, कोविड महामारी के कारण हुई देरी। आज से 2 दिनों के गुजरात के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद और गांधीनगर में करेंगे यात्रा, तो वहीं कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। आज से 2 दिनों के गुजरात के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद और गांधीनगर में करेंगे रोड शो, तो वहीं कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। गांधीनगर के महात्मा मंदिर से 14 प्रमुख शहरों में सहकारिता आधारित भारत टैक्सी सेवा का करेंगे शुभारंभ। अहमदाबाद नगर निगम की 446 करोड़ रूपये से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। भारत टैक्सी का गुजरात के 14 प्रमुख शहरों के लिए उपलब्धता रहेगी, तो वहीं अहमदाबाद, सूरत, द्वारका, वडोदरा, राजकोट, सोमनाथ, वलसाड़, आनंद, जामनगर, भावनगर, नडियाद में शामिल होंगे। राजस्थान के पाली जिले के खैरवा ठिकाने में सदियों पुरानी परंपरा को तोड़कर लिया गया ऐतिहासिक फैसला। 12 साल की तेजस्वी कुमारी जोधा को गांव का बनाया गया नया ठाकुर। पिता के निधन के बाद 25 गांव के राज परिवारों और स्थानीय लोगों ने फैसला लिया, रक्त तिलक लगाकर पहनाई गई पारंपरिक गुलाबी पगड़ी। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इनोवेशन समिट की हुई शुरुआत, एक मंच पर आए देश भर के 4000 सीए और एआई कंपनीज। दो दिन चलेगा ये एआई समिट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और इनकम टैक्स या जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के मामले में आने वाली मुश्किलों का समाधान ढूंढना है मकसद। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए कई एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। नवी मुंबई में भी विश्व मादक पदार्थ विरोधी दिवस पर 56 करोड़ के ड्रग्स नष्ट, नशा मुक्त अभियान को मिलेगी रफ्तार। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन शुरू हुआ, एआई का इस्तेमाल खिलाड़ियों के चयन और एडमिनिस्ट्रेशन में होगा इस्तेमाल।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
12: एआई की मदद से दौड़ेंगे सेना के टैंक, रोबोटिक वॉरियर संभालेंगे जंग की कमान, सेना के बैटल टैंक का कायाकल्प। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
0: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
2: What about me, Jack? What about me?
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: Well played, Jack. Well played.
1: Jack FM, playing what we want.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे आपके लग्न के अनुसार आपका वैवाहिक जीवन कैसा हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि लग्न के हिसाब से अलग अलग लग्न के लोगों के रिश्तों और विवाह का हाल कैसा रहता है। सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन लग्न के बारे में जानते हैं। देखिए, मेष लग्न में वैवाहिक जीवन में आम तौर पर थोड़ा बहुत तनाव बना रहता है और मेष लग्न में काफी उम्र बीत जाने के बावजूद विवाह इनका सेटल नहीं हो पाता और इनके साथ सामान्य जीवन में या विवाह में दुर्घटनाओं की संभावना बहुत होती है। इनको नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, तब जाकर विवाह और रिश्तों की समस्या हल होगी। वृषभ लग्न, इनके लिए जल्दी विवाह करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये बहुत जिद्दी और उग्र स्वभाव के आम तौर पर हो जाते हैं और विपरीत लिंग के जो लोग हैं, पुरुष हैं तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, इनके द्वारा जल्दी बेवकूफ बनते हैं और इनका अपना स्वभाव क्रोध और जिद इनके वैवाहिक जीवन को और रिश्तों को चौपट कर देता है। इनको नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करनी चाहिए, तब इनके विवाह और रिश्तों का मामला बेहतर होगा। मिथुन लग्न, बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, संतान के मोह में अक्सर गड़बड़ियां करते हैं और मिथुन लग्न के लोग सामान्यतः पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहते और पारिवारिक जिम्मेदारियों में गड़बड़ी करने की वजह से इनका वैवाहिक जीवन बिगड़ जाता है। इनको नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए ताकि इनका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन बेहतर हो। अब जानते हैं कर्क लग्न के बारे में। सामान्यतः कर्क लग्न वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। संतान की तरफ से भी इनको कष्ट मिलता है और जीवन साथी से भी तकलीफ मिलती है। जिंदगी में निर्णय लेने में अक्सर ये इमोशनल हो जाते हैं, अक्सर ये भावनात्मक हो जाते हैं। कर्क लग्न वालों को नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और विवाह का निर्णय लेने में बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए तो इनके लिए ठीक रहता है। सिंह लग्न, सिंह लग्न के लोग बड़े रूखे और बड़े अक्खड़ स्वभाव के होते हैं और अगर सिंह लग्न वाले जल्दी विवाह कर लें तो जल्दी विवाह करने पर दिक्कतें जरूर आती हैं। अपने सहयोगियों और परिवार जनों के साथ इनका तालमेल स्वभाव की वजह से अच्छा नहीं होता, बहुत ब्लंट और बहुत रूखा कभी कभी बोलते हैं। अगर आपका लग्न सिंह लग्न है तो नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करिए और अपने वाणी पर ध्यान दीजिए। कन्या लग्न सफाई का परफेक्शन का कीड़ा होता है, इनको सनक की हद तक सफाई और क्लास के शौकीन होते हैं। अब ये होते हैं सिस्टमेटिक जीवन के परफेक्ट रहने के शौकीन और जीवन साथी बिल्कुल अपोजिट मिल जाता है। इस वजह से जीवन साथी की लापरवाहियों से दिक्कतें पैदा होती हैं, हालांकि ये धीरे धीरे एडजस्ट कर लेते हैं। बहुत जल्दी एक तरह के काम से बोर हो जाते हैं। इनको जीवन में निरंतर बदलाव और नया काम करने का शौक होता है। अगर आपका कन्या लग्न है तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करिए ताकि आपका वैवाहिक जीवन और आपका पारिवारिक जीवन बेहतर हो सके। देखिए, अगर तुला लग्न की बात करें तो अगर ये जल्दी शादी कर लें, अर्ली शादी कर लें, तो थोड़ा संघर्ष इनके जीवन में बढ़ता है। अदरवाइज तुला लग्न वालों को नॉर्मल अच्छे वैवाहिक जीवन से जोड़ा जाता है। कभी कभी ये बड़े आइडियल हो जाते हैं, बड़े आदर्शवादी हो जाते हैं, दान बहुत करने लगते हैं, दूसरों के चक्कर में पड़ जाते हैं और वहां पर ये बेवजह की तानाशाही दिखाते हैं, बेवजह की डिक्टेटरशिप दिखाते हैं और दिखावे के चक्कर में अक्सर तुला लग्न वाले काफी धन का नुकसान भी करते हैं। वैसे टोटली इनका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा अगर ये माइल्ड हो और सोच समझ के चलें तो जीवन इनका ठीक बीतेगा। तुला लग्न वालों को नियमित रूप से दान भी करना चाहिए और ध्यान भी करना चाहिए। वृश्चिक लग्न, इनको बदला लेने की बुरी आदत होती है। जिससे भी झगड़ा हुआ वो सालों बाद भी उस चीज को नहीं भूलेंगे और अक्सर अपने गुरु के साथ या मार्गदर्शक के साथ इनका मतभेद हो जाता है। वृश्चिक लग्न वालों का जीवन साथी या तो रहता नहीं या बहुत जल्दी अलगाव हो जाता है विचार न मिलने की वजह से, इनके काम करने के तरीकों की वजह से। वृश्चिक लग्न वालों को नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए ताकि व्यवहार थोड़ा माइल्ड हो, वैवाहिक जीवन में और अपने सामान्य जीवन में भी शांति से रह सकें। धनु लग्न, इनको क्रोध और उग्रता की काफी समस्या होती है। क्रोधी बहुत होते हैं, एग्रेशन में आ जाते हैं और जाने अनजाने इनका बहुत सारा पैसा बेवजह खर्च भी होता है। संतान को लेकर या संतान की तरफ से इनको कष्ट का सामना करना पड़ता है। विवाह में उतनी दिक्कतें नहीं होती, जिंदगी चल जाती है, लेकिन अक्सर संतान वाले पार्ट को लेकर इनके जीवन में मुश्किलें आती हैं। अगर ये नियमित रूप से भगवान सूर्य की उपासना करें तो जीवन इनका बेहतर होगा। अगर मकर लग्न की बात करें तो मकर लग्न वाले इमोशनल झटके नहीं झेल पाते, बहुत जल्दी उदास और निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान होते हैं। हालांकि किस्मत इनका साथ बहुत देती है मुश्किल समय में। पारिवारिक जीवन को लेकर हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। हालांकि पारिवारिक जीवन ठीक चलता रहता है लेकिन इनको संतोष नहीं होता। अक्सर नर्वस सिस्टम की या आर्थराइटिस की समस्या इनको होती है। पारिवारिक जीवन में अगर थोड़े संतुष्ट रहें, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन न रखें, तो पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। इनको नियमित रूप से शनि देव की उपासना करनी चाहिए, जीवन में सफल होंगे। कुंभ लग्न शुरुआती जीवन में इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इनिशियली बहुत मेहनत करते हैं और अक्सर जीवन साथी पूरी तरह से विपरीत मिलता है। ये बड़े माइल्ड धीर गंभीर स्वभाव के होते हैं, जीवन साथी एग्रेसिव और डोमिनेटिंग मिलता है। जीवन में अकेलापन और अवसाद, आइसोलेशन और डिप्रेशन इनको जल्दी घेर लेता है। अगर आपका कुंभ लग्न है तो सबसे पहले आप अपने मन को ठीक करिए, ध्यान और पूजा उपासना पर बहुत ध्यान दीजिए, आपको लाभ होगा। मीन लग्न, इनकी अगर कोई बुराई करे या इनको कोई सुझाव दे तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनके अंदर ईर्ष्या का भाव बहुत जल्दी आ जाता है। अगर पत्नी या पति इनको कोई बेहतर बात समझाए या बेहतर बात बताए तो वो सुनेंगे नहीं, नतीजा होता है वैवाहिक जीवन में ईगो प्रॉब्लम पैदा होती है। इनको नशे की आदत बहुत जल्दी लग जाती है या लग सकती है। अगर आपका मीन लग्न है तो शिव जी की आप जितनी पूजा करें उतना आपको लाभ होगा। अगर आप जीवन में यश और लंबी आयु चाहते हैं तो रोज सवेरे सूर्योदय के पहले उठिए और सूर्योदय के पहले उठ करके भगवान से प्रार्थना करिए कृपा करने की, इससे आपको लंबी आयु और यश की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने बच्चों को बुद्धिमान, संस्कारवान और तेजस्वी बनाना चाहते हो तो क्या करेंगे? बच्चे से रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करवाइएगा। बच्चे से रोज सुबह या तो गायत्री मंत्र पढ़वाएं, शुरुआत में 3 बार या 9 बार, या उसको बगल में बैठा करके सुनाएं और बच्चे को फास्ट फूड से और मांसाहार से दूर रखें। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
4: दक्षिण पश्चिम मॉनसून अब मध्य भारत में हो रहा है मजबूत, उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश के आसार, शाम तक दिल्ली NCR में भी मौसम बदलने के आसार। गुजरात के 14 शहरों को मिलेगी सुगम यातायात की सौगात, भारत टैक्सी ऐप का आज शुभारंभ, गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में करेंगे उद्घाटन। आज नोएडा अथॉरिटी के नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 390 करोड़ की लागत सेक्टर 96 में बनी हाईटेक इमारत, लोगों की सुविधा के व्यापक इंतजाम। एनसीईआरटी ने कक्षा 9 के लिए जारी की नई सामाजिक विज्ञान पुस्तक, तो वहीं ईवीएम एसआईआर और गठबंधन राजनीति पर विस्तृत जानकारी शामिल, चुनावी प्रक्रिया की भी जानकारी मिलेगी। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में तीर्थयात्रियों में उत्साह बरकरार, बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, करीब 1.5 लाख भक्त हेमकुंड साहिब में टेक चुके हैं मत्था। राजस्थान के पाली जिले के एक गांव में बड़ी पहल, पिता के निधन के बाद 12 साल की बच्ची को बनाया गया ठाकुर, राज परिवार ने भी आशीर्वाद दिया।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबर।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि आखिरकार किस लग्न के जातकों के रिश्ते और विवाह की कैसी समस्या होती है, उसके बारे में यहाँ पर विस्तृत से जानकारी पंडित जी से लेंगे। लेकिन उससे पहले उनसे जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आप जीवन में यश और लंबी आयु चाहते हैं तो रोज सवेरे सूर्योदय के पहले उठिए और सूर्योदय के पहले उठ करके भगवान से प्रार्थना करिए कृपा करने की। इससे आपको लंबी आयु और यश की प्राप्ति होगी।
0: तो चलिए बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं 27 जून 2026 यानी कि दिन शनिवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 27 जून 2026 दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, रात के 10:11 तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से यहाँ पर जान लेते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन लग्न में किस तरह की समस्या मुख्य तौर पर जातक फेस करते हैं।
1: जी, आज हम आपको बताएंगे कि लग्न के हिसाब से अलग अलग लग्न के लोगों के रिश्तों और विवाह का हाल कैसा रहता है। सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन लग्न के बारे में जानते हैं। देखिए, मेष लग्न में वैवाहिक जीवन में आम तौर पर थोड़ा बहुत तनाव बना रहता है और मेष लग्न में काफी उम्र बीत जाने के बावजूद विवाह इनका सेटल नहीं हो पाता और इनके साथ सामान्य जीवन में या विवाह में दुर्घटनाओं की संभावना बहुत होती है। इनको नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, तब जाकर विवाह और रिश्तों की समस्या हल होगी। वृषभ लग्न, इनके लिए जल्दी विवाह करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये बहुत जिद्दी और उग्र स्वभाव के आम तौर पर हो जाते हैं और विपरीत लिंग के जो लोग हैं, पुरुष हैं तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, इनके द्वारा जल्दी बेवकूफ बनते हैं और इनका अपना स्वभाव क्रोध और जिद इनके वैवाहिक जीवन को और रिश्तों को चौपट कर देता है। इनको नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करनी चाहिए, तब इनके विवाह और रिश्तों का मामला बेहतर होगा। मिथुन लग्न, बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, संतान के मोह में अक्सर गड़बड़ियां करते हैं और मिथुन लग्न के लोग सामान्यतः पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहते और पारिवारिक जिम्मेदारियों में गड़बड़ी करने की वजह से इनका वैवाहिक जीवन बिगड़ जाता है। इनको नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए ताकि इनका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन बेहतर हो।
0: तो चलिए बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि, व्यर्थ का तनाव इस समय हो सकता है, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं, धन की परेशानी हो सकती है, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किल

0: नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या लग्न में किस तरह की मुख्य समस्याएं होती हैं।
0: अब जानते हैं कर्क लग्न के बारे में। सामान्यतः कर्क लग्न वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, संतान की तरफ से भी इनको कष्ट मिलता है और जीवन साथी से भी तकलीफ मिलती है। जिंदगी में निर्णय लेने में अक्सर ये इमोशनल हो जाते हैं, अक्सर ये भावनात्मक हो जाते हैं। कर्क लग्न वालों को नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और विवाह का निर्णय लेने में बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए तो इनके लिए ठीक रहता है। सिंह लग्न, सिंह लग्न के लोग बड़े रूखे और बड़े अक्खड़ स्वभाव के होते हैं और अगर सिंह लग्न वाले जल्दी विवाह कर लें तो जल्दी विवाह करने पर दिक्कतें जरूर आती हैं। अपने सहयोगियों और परिवार जनों के साथ इनका तालमेल स्वभाव की वजह से अच्छा नहीं होता, बहुत ब्लंट और बहुत रूखा कभी कभी बोलते हैं। अगर आपका लग्न सिंह लग्न है तो नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करिए और अपने वाणी पर ध्यान दीजिए। कन्या लग्न, सफाई का परफेक्शन का कीड़ा होता है इनको, सनक की हद तक सफाई और क्लास के शौकीन होते हैं। अब ये होते हैं सिस्टमेटिक जीवन के परफेक्ट रहने के शौकीन और जीवन साथी बिल्कुल अपोजिट मिल जाता है। इस वजह से जीवन साथी की लापरवाहियों से दिक्कतें पैदा होती हैं, हालांकि ये धीरे धीरे एडजस्ट कर लेते हैं। बहुत जल्दी एक तरह के काम से बोर हो जाते हैं, इनको जीवन में निरंतर बदलाव और नया काम करने का शौक होता है। अगर आपका कन्या लग्न है तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करिए ताकि आपका वैवाहिक जीवन और आपका पारिवारिक जीवन बेहतर हो सके।
1: तो चलिए बातचीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: कर्क राशि, कोई शुभ सूचना आपको इस समय मिलेगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन खर्च पर ध्यान दें, फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला

0: और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन के खर्चों से परेशानी होगी, महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर की समस्या हल होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब समय हो गया है आपके सवाल का, तो बिना देर के पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न मोनिका जी ने हमें गुरुग्राम हरियाणा से लिखा है। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। 28 अप्रैल 2009 का जन्म है, 8:42 रात को भिवानी हरियाणा। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा 12वीं की पढ़ाई कर रहा है पीसीएम से, आगे उसका करियर और भविष्य कैसा रहेगा। मोनिका जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, आगे की जहां तक बात है, संभावना ये है कि ये इंजीनियरिंग करके आगे प्रशासनिक सेवा की, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी करें तो उसमें गवर्नमेंट जॉब में ये जा सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए इनको अपनी एकाग्रता का, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम का और डाइजेशन का ध्यान रखना होगा। एक अपने बेटे को मोती बनवा के पहना दीजिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में, लाल धागे या चांदी की चेन में, सोमवार की रात को इनको मोती बनवा करके पहना दें। और दूसरा, इनको बोलिए कि रोज सुबह अगर सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बेहतर होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं।
0: जी, अगला प्रश्न तरलोक वधान जी ने दिल्ली से लिखा है। 13 सितंबर 1965 का जन्म है, रात को 9:30 होशियारपुर पंजाब। ये कह रहे हैं कि पिछले 6 साल से मेरे घुटनों में दर्द की बहुत शिकायत है, कई बार सर्जरी भी हो चुकी है लेकिन लाभ नहीं हो पा रहा है, तो अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तरलोक जी, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन, महादशा राहु की और अंतरदशा बुध की चल रही है। आपकी समस्या के लिए जो जिम्मेदारी बनती है वो दरअसल बनती है बुध की, और बुध की दशा भी चल रही है तो हड्डियों और नसों की तकलीफ की संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। एक माणिक्य बनवा के पहने, लगभग 8-9 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें और रोज सुबह शाम एक एक बार या तो हनुमान बाहुक पढ़ें या हनुमान बाहुक सुनें तो आपको लाभ होगा।
1: तुला वृश्चिक और धनु लग्न में किस तरह की समस्याएं मुख्य तौर पर होती हैं, आइए पंडित जी से इसके बारे में समझते हैं।
0: देखिए, अगर तुला लग्न की बात करें तो अगर ये जल्दी शादी कर लें, अर्ली शादी कर लें, तो थोड़ा संघर्ष इनके जीवन में बढ़ता है। अदरवाइज तुला लग्न वालों को नॉर्मल अच्छे वैवाहिक जीवन से जोड़ा जाता है। कभी कभी ये बड़े आइडियल हो जाते हैं, बड़े आदर्शवादी हो जाते हैं, दान बहुत करने लगते हैं, दूसरों के चक्कर में पड़ जाते हैं और वहां पर ये बेवजह की तानाशाही दिखाते हैं, बेवजह की डिक्टेटरशिप दिखाते हैं और दिखावे के चक्कर में अक्सर तुला लग्न वाले काफी धन का नुकसान भी करते हैं। वैसे टोटली इनका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा अगर ये माइल्ड हो और सोच समझ के चलें तो जीवन इनका ठीक बीतेगा। तुला लग्न वालों को नियमित रूप से दान भी करना चाहिए और ध्यान भी करना चाहिए। वृश्चिक लग्न, इनको बदला लेने की बुरी आदत होती है, जिससे भी झगड़ा हुआ वो सालों बाद भी उस चीज को नहीं भूलेंगे और अक्सर अपने गुरु के साथ या मार्गदर्शक के साथ इनका मतभेद हो जाता है। वृश्चिक लग्न वालों का जीवन साथी या तो रहता नहीं या बहुत जल्दी अलगाव हो जाता है विचार न मिलने की वजह से, इनके काम करने के तरीकों की वजह से। वृश्चिक लग्न वालों को नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए ताकि व्यवहार थोड़ा माइल्ड हो वैवाहिक जीवन में और अपने सामान्य जीवन में भी शांति से रह सके। धनु लग्न, इनको क्रोध और उग्रता की काफी समस्या होती है, क्रोधी बहुत होते हैं, एग्रेशन में आ जाते हैं और जाने अनजाने इनका बहुत सारा पैसा बेवजह खर्च भी होता है। संतान को लेकर या संतान की तरफ से इनको कष्ट का सामना करना पड़ता है। विवाह में उतनी दिक्कतें नहीं होती, जिंदगी चल जाती है, लेकिन अक्सर संतान वाले पार्ट को लेकर इनके जीवन में मुश्किलें आती हैं। अगर ये नियमित रूप से भगवान सूर्य की उपासना करें तो जीवन इनका बेहतर होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और फिलहाल जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: तुला राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा, परिवार के कार्यों में व्यस्त रहेंगे, अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर के सारे काम पूरे होंगे, वाहन या संपत्ति का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, कार्य क्षेत्र में विवादों से बचाव करें, खान पान में सावधानी रखें, अभी धैर्य बनाए रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन लग्न के जातकों को किस तरह की समस्याओं का अमूमन सामना करना पड़ता है।
0: अगर मकर लग्न की बात करें तो मकर लग्न वाले इमोशनल झटके नहीं झेल पाते, बहुत जल्दी उदास और निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान होते हैं। हालांकि किस्मत इनका साथ बहुत देती है मुश्किल समय में। पारिवारिक जीवन को लेकर हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। हालांकि पारिवारिक जीवन ठीक चलता रहता है लेकिन इनको संतोष नहीं होता। अक्सर नर्वस सिस्टम की या आर्थराइटिस की समस्या इनको होती है। पारिवारिक जीवन में अगर थोड़े संतुष्ट रहें, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन न रखें तो पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। इनको नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करनी चाहिए, जीवन में सफल होंगे। कुंभ लग्न शुरुआती जीवन में इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इनिशियली बहुत मेहनत करते हैं और अक्सर जीवन साथी पूरी तरह से विपरीत मिलता है। ये बड़े माइल्ड, धीर, गंभीर स्वभाव के होते हैं। जीवन साथी एग्रेसिव और डोमिनेटिंग मिलता है। जीवन में अकेलापन और अवसाद, आइसोलेशन और डिप्रेशन इनको जल्दी घेर लेता है। अगर आपका कुंभ लग्न है तो सबसे पहले आप अपने मन को ठीक करिए। ध्यान और पूजा उपासना पर बहुत ध्यान दीजिए, आपको लाभ होगा। मीन लग्न, इनकी अगर कोई बुराई करे या इनको कोई सुझाव दे तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनके अंदर ईर्ष्या का भाव बहुत जल्दी आ जाता है। अगर पत्नी या पति इनको कोई बेहतर बात समझाए या बेहतर बात बताए तो वो सुनेंगे नहीं। नतीजा होता है वैवाहिक जीवन में ईगो प्रॉब्लम पैदा होती है। इनको नशे की आदत बहुत जल्दी लग जाती है या लग सकती है। अगर आपका मीन लग्न है तो शिव जी की आप जितनी पूजा करें उतना आपको लाभ होगा।
1: तो बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है।
0: मकर राशि, आपका तनाव कम होता जाएगा, करियर की बाधा दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलेगा, वाहन सावधानी से चलाइए, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब फिलहाल कार्यक्रम में समय हो गया है आज का तीसरा सवाल लेने का, तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, अगला प्रश्न मंजू देवी ने हमें हरियाणा से लिखा है। 13 अक्टूबर 2001 का जन्म है, 9 बजे प्रातः, यमुनानगर हरियाणा। ये कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, किस क्षेत्र में मुझे तैयारी करनी चाहिए और मेरे सफलता की संभावना क्या है। मंजू जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और सिंह राशि की, महादशा सूर्य की और अंतर दशा चंद्रमा की चल रही है। देखिए, मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप बीएड कर लें या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके टीचिंग जॉब में अगर जाना चाहें तो आपके लिए बहुत उपयुक्त होगा, क्योंकि आपकी कुंडली टीचिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की संभावना दिखा रही है। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान से कृपा की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ है जिसका समाधान आप जानना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस पर आप हमें अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं, पंडित जी आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न अमन राजपूत जी ने बलिया उत्तर प्रदेश से लिखा है। 14 नवंबर 2005 का जन्म है, 7:32 शाम को, बलिया उत्तर प्रदेश। अमन कह रहे हैं कि मैं अधिकारी बनना चाहता हूं, क्या मैं आर्मी में या पुलिस सेवा में अधिकारी बन सकता हूं? अमन, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और मेष राशि की, और आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, यूपीएससी की या पीसीएस की, तो जो वर्दी वाली नौकरी होती है पुलिस की, फोर्स की, ऐसी नौकरी आपको मिल सकती है। अभी आपकी कुल उम्र लगभग 21 साल होने जा रही है, उम्र के 25-26 साल के आसपास आपको सफलता मिलने की संभावना बनती है। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहने, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा।
1: तो पंडित जी, एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर लगन कोई भी हो, यानी किसी भी लग्न का जातक अगर वैवाहिक जीवन में लगातार परेशानियों का सामना वो जातक कर रहा है, तो क्या कुछ उपाय वो कर सकते हैं? कोई भी लग्न हो, एक उपाय बता दीजिए।
0: जी देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त और उचित पूजा होती है भगवान शिव की और माँ पार्वती की। तो अगर आप वैवाहिक जीवन से परेशान हैं या आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है, तो आप रोज सुबह और रोज शाम भगवान शिव और माँ पार्वती की संयुक्त पूजा करिए। एक मंत्र है, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का 108 बार प्रातः और 108 बार शाम को नियमित रूप से जप करिएगा। और महिलाओं को विशेष रूप से इस उपाय के अलावा रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, और जल में जरा सी हल्दी मिलाकर ऐसा जल सूर्य देव को चढ़ाएं और सूर्य देव के सामने अपने सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें तो उनको लाभ होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और जिनका जन्मदिन है आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 27 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन धन की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। इस साल अविवाहितों का विवाह भी हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
1: और अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि आखिर आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी ज्योतिष के नियम के अनुसार या ज्योतिष के उपाय के हिसाब से कुछ लोगों को पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए? देखिए, पूजा उपासना करना हमारा धर्म भी है और संस्कार भी है। कोई भी कितना भी उपाय बताए, किसी भी प्रकार से हमें पूजा उपासना से नहीं रोक सकता। कुछ लोग कहते हैं कि भैया आपका बृहस्पति गड़बड़ है, आप पूजा मत करिए, मंदिर मत जाइए। ऐसा कुछ उचित नहीं है। अगर कोई आपको पूजा ना करने की सलाह दे, मंदिर न जाने की सलाह दे, तो इस उपाय को बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं शुभ पहर का समय और उसका उपाय क्या है।
0: दिनांक 27 जून 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या, पैसे रुपए की समस्या हल होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 27 जून शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और अब पंडित जी से जानते हैं कि आखिर आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशियों की विशिष्टताओं के बारे में। आज की गुडलक राशि है तुला। ये बड़े उदार और बड़े सरल स्वभाव के होते हैं, लेकिन दूसरों की अधिक सहायता करने के चक्कर में अक्सर परेशान भी होते हैं। उदारता अच्छी बात है, लेकिन उतनी ही उदारता दिखाइए जितना उचित है।
1: और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां हम पंडित जी से जानेंगे कि आज का महा उपाय आखिर क्या है।
0: जी,

0: बच्चों को बुद्धिमान, संस्कारवान और तेजस्वी बनाना चाहते हों तो क्या करेंगे? बच्चे से रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करवाइएगा। बच्चे से रोज सुबह या तो गायत्री मंत्र पढ़वाएं, शुरुआत में 3 बार या 9 बार, या उसको बगल में बैठा करके सुनाएं। और बच्चे को फास्ट फूड से और मांसाहार से दूर रखें।
1: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: पंडित शैलेंद्र पांडे दे जीवन को समझने की प्रेरणा और प्लैनेट आयुर्वेदा अर्जुन टी दे दिल को जीवन जीने का जज्बा, क्योंकि ये है हर्बल गुणों से भरपूर चाय भी औषधि भी। आज ही ऑर्डर करें।
1: एआई की मदद से दौड़ेंगे सेना के टैंक, रोबोटिक वॉरियर संभालेंगे जंग की कमान, सेना के बैटल टैंक का कायाकल्प देखिए रणक्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: टेक इट इजी विद सॉफ्ट हिट्स। सॉफ्ट हिट्स ब्रिंग्स टुगेदर रिलैक्सिंग पॉप फेवरेट्स फ्रॉम द 70s, 80s एंड 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
3: Good news today is really good. What is this in here? उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और अब बात करते हैं कुछ ऐसे वीडियोस की जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ भावुक कर जाएंगे, तो कुछ को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि क्या ऐसा भी होता है।
2: कुछ लोग नियमों से नहीं अपने मूड से चलते हैं, फिर चाहे सामने नई सड़क बन रही हो या रास्ता बंद हो। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक शख्स बिना किसी परवाह के ताजा बनी सड़क पर निकल पड़ता है। आसपास मौजूद लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंकल अपने ही धुन में आगे बढ़ते रहते हैं। उनका बेफिक्र अंदाज देखकर लोग हंसी नहीं रोक पा रहे और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इंसान और पक्षी के बीच भरोसे का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है, इसका खूबसूरत उदाहरण ये वीडियो है। आसमान में उड़ रही एक चील बच्चे के इशारे पर नीचे आकर उसके हाथ पर बैठ जाती है। दोनों के बीच तालमेल और आत्मविश्वास देखने लायक है। सोशल मीडिया पर लोग इस नज़ारे को खूब पसंद कर रहे हैं। कई यूजर्स बच्चे के हुनर और पक्षी के साथ उसके अनोखे जुड़ाव की तारीफ कर रहे हैं।

0: दया, संस्कार और अपनापन उम्र नहीं देखते। वायरल वीडियो में छोटा बच्चा बड़े प्यार से गाय को अपने हाथों से खाना खिलाता दिखाई देता है। गाय भी बिना घबराए आराम से उसके हाथ से भोजन करती है। बच्चे के चेहरे पर डर नहीं बल्कि अपनापन साफ नजर आता है। सोशल मीडिया पर लोग इस प्यारे पल को खूब पसंद कर रहे हैं और बच्चे के संस्कारों की जमकर सराहना कर रहे हैं। जब परेशानी बड़ी हो तो देसी दिमाग भी कमाल कर जाता है। बारिश नहीं हुई तो किसान ने खेत तक पानी पहुंचाने का ऐसा जुगाड़ लगाया कि लोग हैरान रह गए। बांस के सहारे खुद को बांधकर वो साथियों की मदद से एक खेत से दूसरे खेत में झूले की तरह पानी पहुंचाता नजर आया। वीडियो देखकर लोग हंस भी रहे हैं और किसान की सूझबूझ की भी तारीफ कर रहे हैं। कभी कभी जिसे पकड़ने जाते हैं वही अचानक सामने आ जाए तो हालत खराब हो जाती है। वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची मेंढक को पकड़ने की कोशिश करती है, तभी मेंढक उछलकर सीधे उसकी गोद में आ बैठता है। अगले ही पल बच्ची जोर जोर से चिल्लाते हुए वहां से भाग निकलती है। ये मजेदार नजारा देखकर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे।
1: भारतीय सिनेमा की सबसे कामयाब फिल्मों में शामिल है बाहुबली, जो एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। ना कोई आधिकारिक घोषणा हुई है और ना ही कोई टीजर आया है, लेकिन एक वायरल वीडियो ने फैंस की उत्सुकता को बढ़ा दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर हर तरफ यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बाहुबली 3 सचमुच बनने वाली है। आखिर इस छोटे से इशारे के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है क्या, या फिर ये सिर्फ प्रमोशन का हिस्सा है? इसका जवाब सभी जानना चाहते हैं।

0: एक इशारा, सिर्फ तीन उंगलियां और पूरे देश में मच गई हलचल। ना कोई पोस्टर, ना कोई टीजर और ना ही कोई आधिकारिक ऐलान। फिर भी सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या बाहुबली फिर लौट रहा है, जिस कहानी ने भारतीय सिनेमा का चेहरा बदल दिया? क्या उसका तीसरा अध्याय सच में लिखा जा रहा है? आखिर एक वायरल वीडियो ने ऐसा क्या दिखा दिया कि करोड़ों दर्शकों की उम्मीदें फिर जाग उठी? दरअसल बाहुबली फ्रेंचाइजी एक बार फिर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर बाहुबली द टॉर्च बैरियर डॉक्यूमेंट्री का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। क्लिप में राणा दग्गुबाती कहते हैं, दुनिया शायद अभी तैयार नहीं है, लेकिन बाहुबली जरूर आएगी। इसके तुरंत बाद प्रभास मुस्कुराते हुए तीन उंगलियां दिखाते हैं। बस इसी इशारे के बाद लोगों ने बाहुबली 3 की चर्चा शुरू कर दी है। वीडियो के आखिर में लिखा आता है, और ये विरासत जारी है। यही लाइन फैंस की उत्सुकता और बढ़ा रही है। कोई इसे एक नए प्रोजेक्ट का संकेत मान रहा है, तो कोई इसे सिर्फ प्रमोशन बता रहा है। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक किसी नई फिल्म का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, ना ही कहानी सामने आई है और ना रिलीज को लेकर कोई जानकारी दी गई है। साल 2015 में आई बाहुबली द बिगनिंग और उसके बाद बाहुबली द कंक्लूजन ने भारतीय सिनेमा में नया इतिहास रचा था। दूसरे भाग ने दुनिया भर में करीब 1788 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। फिलहाल बाहुबली 3 सिर्फ चर्चा में है, लेकिन इतना तय है, एक छोटे से इशारे ने करोड़ों फैंस की उम्मीदें फिर जगा दी हैं। अब सबकी नजर मेकर्स पर है कि ये सिर्फ मजाक था या सचमुच किसी बड़े ऐलान की शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: It feels good to be in control. No matter what, keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
10: सेशल्स की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर पीएम मोदी, दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र वाले जीव जोनाथन से भी करेंगे मुलाकात, तो वहीं 194 साल से है कछुए की उम्र। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक की 353वीं वर्षगांठ आज नागपुर में मनाया जा रहा है जश्न, जय भवानी जय शिवाजी के नारों से गूंजा माहौल। दक्षिण पश्चिम मानसून अब मध्य भारत में हो रहा है मजबूत, उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश के आसार, शाम तक दिल्ली NCR में भी मौसम बदलने के आसार। गुजरात के 14 शहरों को मिलेगी सुगम यातायात की सौगात, भारत टैक्सी ऐप का आज से शुभारंभ, गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में करेंगे उद्घाटन। आज नोएडा अथॉरिटी के नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, करीब 390 करोड़ की लागत से सेक्टर 96 में बनी हाईटेक इमारत, लोगों की सुविधा के व्यापक इंतजाम। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों में उत्साह बरकरार, बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, करीब 1.5 लाख भक्त हेमकुंड साहिब में टेक चुके हैं मत।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम।
10: छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 353वीं वर्षगांठ के मौके पर नागपुर में मनाया जा रहा है जश्न, हिंदू पंचांग के मुताबिक आज राज्याभिषेक की वर्षगांठ। शिवाजी के राज्याभिषेक के ऐतिहासिक मौके पर उत्सव में डूबा पूरा नागपुर शहर, गूंज रहे जय भवानी जय शिवाजी के नारे। शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अभिषेक के लिए लाया गया गंगा, नर्मदा, गोदावरी, चंद्रभागा समेत 7 पवित्र नदियों का जल। राज्याभिषेक की वर्षगांठ के मौके पर निकाली गई शिवाजी महाराज की प्रतिमा की झांकी, कार्यक्रम में हजारों लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। आज के दिन शौर्य से जुड़े पारंपरिक खेलों का भी आयोजन, शहर में भंडारे और रक्तदान शिविर भी लगाए गए। मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, आने वाले 24 घंटों में बिहार झारखंड के सभी इलाकों और उत्तर प्रदेश पहुंचने की संभावना। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में तेज होंगी मानसूनी गतिविधियां। 29 से 30 जून के बीच उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय हो सकता है मानसून। सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा मानसून का असर, बढ़ेगा बारिश का दायरा, तापमान में 5 से 8 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम समेत पूरे पूर्वोत्तर में मानसून की बारिश जारी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून के विस्तार के लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में फिलहाल भारी बारिश की संभावना कम, गरज चमक के साथ बादल छाने और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना। पहाड़ों में मौसम ने बदली करवट, बागेश्वर में झमाझम बारिश से मिली गर्मी से राहत। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के टोमना मार्केट में भूस्खलन, रास्ता साफ करने की तैयारी में प्रशासन। NH10 पर भूस्खलन के कारण सिक्किम और सिलीगुड़ी के बीच चलने वाले वाहनों का रास्ता बदला गया। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार हो रही है बारिश जिसके कारण जगह जगह पर सड़क मार्ग पर रुकावट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले कुछ घंटों में पूर्वी पश्चिमी भारत समेत मध्य और पूर्वोत्तर भारत के कई जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान की संभावना। IMD ने उत्तर बंगाल में भारी बारिश की

भारी बारिश से पहले अलर्ट मोड पर कोटा, किशोर सागर में उतरे जवान, फ्लड रेस्क्यू मॉक ड्रिल में दिखाई आपदा से निपटने की पूरी तैयारी। इस अभ्यास में बारिश और बाढ़ के दौरान किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को परखा गया, जवानों ने तालमेल को भी परखा। चमोली में बारिश से भूस्खलन, पहाड़ी से आया मलबा, बचाव कार्य जारी। मकानों में घुसा मलबा, कई वाहनों में मलबे में दबने की खबर। नैनीताल के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघ भोला का रेस्क्यू ऑपरेशन, जंगल में घायल हुए बाघ का किया गया ऑपरेशन। चारधाम यात्रा में बना हुआ है यात्रियों का उत्साह, 40,50,000 से ज्यादा भक्त हो चुके हैं शामिल। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पहुंच रहे हैं सबसे ज्यादा श्रद्धालु, 13,20,000 से ज्यादा कर चुके हैं बद्री विशाल के दर्शन। हेमकुंड साहिब में अब तक 1.5 लाख के करीब श्रद्धालु टेक चुके हैं मत्था, करीब 5,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं हर रोज। नोएडा में जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमीनाथ के निर्वाण दिवस के अवसर पर आस्था, संस्कृति और सामाजिक संदेशों से जुड़ी विशेष धर्म यात्रा का आयोजन, दिल्ली से गुजरात के जूनागढ़ में स्थित पवित्र गिरनार पर्वत तक निकाली जा रही 25 दिवसीय श्री नेमी गिरनार धर्म यात्रा। ग्रेटर चेन्नई में पुलिस ने किया फूड फेस्टिवल का आयोजन, एगमोर पुलिस म्यूजियम में सजाए गए कई तरह के व्यंजन। अब श्रद्धालुओं का खाटू श्याम दरबार जाना आसान होगा, सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन। सुंदरपुर में स्टेशन बनने से खाटू श्याम की दूरी 11 किलोमीटर कम होगी, देश भर के लाखों श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी राहत। खाटू श्याम सुंदरपुरा नाम से नया रेलवे स्टेशन बनाने की मंजूरी, बेहतर पार्किंग, दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल सुविधाएं, ऑटोमेटिक टिकटिंग व्यवस्था, एस्केलेटर लिफ्ट समेत तमाम सुविधाओं से होगा लैस। खाटू श्याम मंदिर की धार्मिक भव्यता को दर्शाएगा आधुनिक सुविधाओं से लैस इस रेलवे स्टेशन का डिजाइन, धार्मिक पर्यटन, स्थानीय व्यापार, रोजगार के अवसरों को भी मिलेगी रफ्तार। साल 2026 के अंत तक शुरू हो सकता है रेलवे स्टेशन का निर्माण, 2029 तक तैयार हो सकता है खाटू श्याम रेलवे स्टेशन। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भक्तों ने बनाया आस्था का नया रिकॉर्ड, वित्तीय वर्ष में 142 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुल आय, पिछले साल की तुलना में 27 करोड़ ज्यादा आय दान आया तो वहीं अब तक का सबसे ज्यादा है, लड्डू प्रसादी की बिक्री से 65 करोड़ रुपए की आय, दान पेटियों से 62 करोड़, नगद काउंटर पर 5.5 करोड़, मनी ऑर्डर से करीब 1.25 लाख, ऑनलाइन माध्यम से 3.5 करोड़ से ज्यादा, अन्य क्षेत्र से करीब 3 करोड़ और गुप्त दान के रूप में 4.5 करोड़ से ज्यादा की प्राप्ति। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, परिवार के साथ विधि विधान से पूजा की। तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे फिल्म अभिनेता नानी, तो वहीं भगवान की पूजा कर आशीर्वाद लिया। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की निकलेगी रथ यात्रा। पुरी में रथों के निर्माण कार्य में आई तेजी, पारंपरिक सेवक अपनी पूरी निष्ठा के साथ रथों को भव्य रूप देने में जुटे। भगवान जगन्नाथ बलभद्र देवी सुभद्रा के लिए 3 भव्य रथों का निर्माण जारी, अंतिम रूप देने में जुटे हैं कारीगर। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा कड़े इंतजाम, 475 कैमरों से होगी निगरानी। यात्रा से पहले सुरक्षा के लिए 7,000 जवानों की हुई तैनाती, 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना। आज से 29 जून तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद और गांधीनगर में करेंगे यात्रा, तो वहीं विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

0: सेशल्स के दौरे के दौरान 194 साल के कछुए जोनाथन से मिलेंगे पीएम मोदी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव है जोनाथन। नोएडा अथॉरिटी का नया मुख्यालय बनकर तैयार, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। करीब 6 एकड़ में फैला है ये परिसर, पर्याप्त पार्किंग, आधुनिक कार्यालय, डिजिटल सुविधाएं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से विकसित। आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद और गांधीनगर में करेंगे यात्रा, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। गांधीनगर के महात्मा मंदिर से 14 प्रमुख शहरों में सहकारिता आधारित भारत टैक्सी सेवा का करेंगे शुभारंभ। अहमदाबाद नगर निगम की 446 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। भारत टैक्सी का गुजरात के 14 प्रमुख शहरों के लिए उपलब्धता, तो वहीं अहमदाबाद, सूरत, द्वारका, वडोदरा, राजकोट, सोमनाथ, वलसाड़, आनंद, जामनगर, भावनगर, नडियाद, जूनागढ़, मेहसाना और अमरेली होंगे शामिल। राजस्थान के पाली जिले के खैरवां ठिकाने में सदियों पुरानी परंपरा को तोड़कर लिया गया ऐतिहासिक फैसला, 12 साल की तेजस्वी कुमारी जोधा को गांव का बनाया गया नया ठाकुर। पिता के निधन के बाद 25 गांव के राज परिवारों और स्थानीय लोगों ने लिया फैसला, राज तिलक लगाकर पहनाई गई नई पारंपरिक पगड़ी। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इनोवेशन समिट की हुई शुरुआत, एक मंच पर आए देश भर के 4000 सीए और एआई कंपनीज। 2 दिन चलेगा एआई समिट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और इनकम टैक्स या जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के मामले में आने वाली मुश्किलों का समाधान ढूंढना है उद्देश्य। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए कई एमओयू पर हस्ताक्षर किए। नवी मुंबई में विश्व मादक पदार्थ विरोधी दिवस पर 56 करोड़ के ड्रग्स नष्ट, नशा मुक्त अभियान को मिली रफ्तार। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन शुरू हुआ, एआई का इस्तेमाल, खिलाड़ियों के चयन और एडमिनिस्ट्रेशन में होगा इस्तेमाल। भूकंप पीड़ित वेनेजुएला की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, एयरफोर्स के 2 विमानों से भेजी गई राहत सामग्री। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी जानकारी, एक फील्ड हॉस्पिटल यूनिट और 35 टन से ज्यादा राहत सामग्री, दवाइयां और मेडिकल उपकरण के साथ 2 C-17 विमान वेनेजुएला रवाना। अमित शाह का बड़ा संदेश, ड्रग तस्करों पर रूथलेस कार्रवाई, पीड़ितों के प्रति अपनाएं संवेदनशील रवैया। 2029 तक ड्रग मुक्त भारत का लक्ष्य है, अमित शाह बोले सभी एजेंसियों और समाज को साथ आना होगा। पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी खबर, ईपीएफओ का ऑनलाइन क्लेम पोर्टल 3 दिनों के लिए बंद, नई सेवाओं के लिए अपग्रेड किया जा रहा है सॉफ्टवेयर। आंध्र प्रदेश के दौरे पर भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, विजयवाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल, हरियाणा के जींद से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकली ट्रेन। दिल्ली से सोनीपत ट्रैक पर हाइड्रोजन ट्रेन का फाइनल टेस्ट, जल्द ही कमर्शियल ऑपरेशन भी शुरू होंगे। सहारनपुर की 7 साल की ननी चैंपियन का कमाल देखने को मिला, नेपाल में स्पीड स्केटिंग में जीता गोल्ड, काठमांडू में लहराया तिरंगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में अंडर 7 वर्ग की 800 मीटर दौड़ में जीता गोल्ड। अयोध्या पहुंचे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना। 94 साल की उम्र में आंध्र प्रदेश की महालक्ष्मी मां ने स्वदेश वापसी की, अमेरिका की नागरिकता छोड़कर अपनी मिट्टी में बिताना चाहती हैं बचा हुआ वक्त। देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 456 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, कहा शिक्षा पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान। केरलम के थुव्वूर रेलवे स्टेशन पर बने रेलवे प्लेटफॉर्म शेल्टर का शुभारंभ, वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा हुई शामिल। जूनागढ़ के मेंदरडा सासन रोड पर निकला शेरों का कुनबा, एक साथ दिखाई दिए 9 शेर। कमल के सुंदर सुंदर फूलों से भरा हुआ नजर आया चीन का लियानहुआची पार्क, इसी के साथ पार्क में हुई बीजिंग कमल संस्कृति महोत्सव की शुरुआत। महोत्सव में गमलों में लगे 7,000 से ज्यादा कमल के पौधे और कमल की 380 से ज्यादा किस्में प्रदर्शित की गईं। इन सुंदर कमल के फूलों के बीच 800 साल पुराने कमल के बीज से सफलतापूर्वक उगाया गया एक दुर्लभ प्राचीन कमल भी पहली बार लोगों के सामने पेश किया गया। लियानहुआची पार्क की एक टीम ने इसे 800 साल पुराने कमल को विकसित करने में 2 साल से ज्यादा का समय लगाया। काफी रिसर्च के बाद इसे फिर से जीवित किया गया। लियानहुआची पार्क में ये लोटस फेस्टिवल अगस्त के अंत तक चलेगा, जिसमें गर्मियों का पूरा कमल का मौसम शामिल है। दुनिया भर में बढ़ने लगा है फीफा वर्ल्ड कप का फीवर। लॉस एंजलिस में मशहूर हो रहे फुटबॉल थीम पर बने स्वादिष्ट डोनट्स। रंग बिरंगे डोनट्स की लगातार बढ़ रही है मांग, अपनी पसंदीदा टीम के डोनट्स उमड़ रही है ग्राहकों की भीड़। फुटबॉल वर्ल्ड कप के जोश से भरे इस मीठे अंदाज से क्रिएटिविटी के साथ बिजनेस भी जबरदस्त उछाल देख रहा है। तो वहीं इंगलवुड में मशहूर रैंडीज डोनट्स के बाहर इन खास डोनट्स के लिए लाइन लगी हुई नजर आई। फीफा वर्ल्ड कप के खुमार से जानवर भी अछूते नहीं। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान सिएटल में होने वाले मैचों के जश्न में यहां सी ऑटर को दी जा रही है सॉकर थीम वाली आइस ट्रीट। सी ऑटर को दी जा रही है इस खास आइस ट्रीट में भरी होती है कई तरह की मछलियां, जो उनको पूरे दिन रखती हैं एक्टिव। चाइना के नाकू शहर में बना अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1,000 डांसर्स ने स्मार्ट रोबोट्स के साथ परफॉर्म किया पारंपरिक गो जुआंग डांस। दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली जगहों पर किया गया पारंपरिक नृत्य, 4,500 मीटर की ऊंचाई पर आयोजित किया गया इवेंट। परफॉर्मेंस में दिखाया गया टेक्नोलॉजी और संस्कृति का मेला, एक ही मंच पर थिरके चाइना की संस्कृति विरासत दर्शाते हुए गो जुआंग डांसर्स और स्मार्ट रोबोट्स। मशहूर फैशन ब्रांड सेंट लॉरेंट ने पेरिस में आयोजित किया शानदार फैशन शो। पेरिस मेंसवेयर फैशन वीक में ब्रांड्स ने शोकेस की अपनी स्प्रिंग समर 2027 मेंसवेयर कलेक्शन। डिजाइनर एंथनी वैकेरेलो ने डिजाइन किया पूरा फैशन शो। तो वहीं धुएं के घने बादलों के बीच कैटवॉक करते हुए नजर आए मॉडल्स।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
2: एआई की मदद से दौड़ेंगे सेना के टैंक, रोबोटिक वॉरियर संभालेंगे जंग की कमान, सेना के बैटल टैंक का कायाकल्प। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आपको बता दें, प्रकृति के चमत्कार अक्सर दुनिया को हैरान कर देते हैं, लेकिन इस बार चाइना की राजधानी बीजिंग से सामने आई तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। ये देखिए, यहां पर एक ऐसा कमल खिला हुआ नजर आ रहा है आपको, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये करीब 800 साल पुराने बीज से उगाया गया है। इस अनोखी उपलब्धि के पीछे वनस्पति वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की 2 साल से ज्यादा लंबी मेहनत छिपी हुई है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: गाइडेड बाय अ शेयर्ड पर्पस एंड अ स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
4: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
3: Learn more at emory.edu.
5: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन सामान्यतः अच्छा रहता है, किस लग्न में जिद की वजह से वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, अलग अलग लग्न के लोगों का कैसा होता है वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: सेशल्स की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर पीएम मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र वाले जीव जोनाथन से भी करेंगे मुलाकात। 194 साल है कछुए की उम्र। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 353वीं वर्षगांठ आज नागपुर में मनाया जा रहा है जश्न। जय भवानी जय शिवाजी के नारों से गूंजा माहौल। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अब मध्य भारत में हो रहा है मजबूत, उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश के आसार, शाम तक दिल्ली NCR में भी मौसम बदलने के आसार। गुजरात के 14 शहरों को मिलेगी सुगम यातायात की सौगात, भारत टैक्सी ऐप का आज से शुभारंभ, गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में करेंगे उद्घाटन। आज नोएडा अथॉरिटी के नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 390 करोड़ की लागत से सेक्टर 96 में बनी हाईटेक इमारत, लोगों की सुविधा के व्यापक इंतजाम। शोपियां की खूबसूरत वादियों की अनदेखी घाटियों पर पर्यटन बढ़ाने की कवायद हुई तेज, हरे भरे पहाड़, रंग बिरंगे फूल लोगों को कर रहे हैं आकर्षित, स्थानीय लोगों का भी बढ़ेगा रोजगार।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले बात करेंगे मां कामाख्या के दिव्य दरबार की, जहां के सृजन स्वरूप का दर्शन शुरू हो गया है। अंबुबाची मेले के बाद मां के दर्शन का महात्म्य बहुत ज्यादा माना जाता है और यही वजह है कि श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मां का दर्शन पाकर श्रद्धालु अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। देखिए,

0: गुवाहाटी के पावन नीलांचल पर्वत पर विराजमान आद्य शक्ति माँ कामाख्या का दरबार 3 दिन बंद रहने के बाद जब भक्तों, साधकों और श्रद्धालुओं के लिए खुला तो दर्शनार्थियों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। अम्बुवाची मेले में देश और दुनिया से आए श्रद्धालु 3 दिन की प्रतीक्षा के बाद माँ कामाख्या के रूप में विराजमान जगदम्बा का दर्शन करने के लिए श्रद्धा के आवेग में व्याकुल हो रहे थे। लिहाजा जैसे ही माँ का दरबार खुला, जयकारों की गूंज के बीच श्रद्धालु गर्भगृह में प्रवेश करने लगे। इक्यावन शक्तिपीठों में तांत्रिक साधना के लिए सबसे सिद्ध माने जाने वाले माँ के इस धाम की महिमा ऐसी है कि साल में एक बार लगने वाले अम्बुवाची मेले में शामिल होने के लिए यहाँ दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं और मेले के दौरान 3 दिन तक भक्ति और साधना में लीन हो जाते हैं। हर साल लगने वाले अम्बुवाची मेले के बाद माँ के दर्शन का महत्व बहुत ज्यादा है। क्या आम और क्या खास, हर कोई माँ के दर्शन को लेकर लालायित रहता है। यही वजह है कि 3 दिन बाद जब माँ का दरबार हर आम और खास के लिए खोला गया तो असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य पूरे भक्ति भाव के साथ माँ का दर्शन करने कामाख्या दरबार में पहुँचे। माँ का दर्शन करने के बाद अपूर्व शांति की अनुभूति कर रहे महामहिम ने इस मौके पर जग मंगल की कामना की।
1: पवित्र पावन अवसर पर अपने राज्यवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। माँ सबका कल्याण करे और इसके लिए मैंने प्रार्थना किया है और मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ से प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मुझे प्रसन्नता है, लाखों लोग माँ के प्रति आकर श्रद्धा का नमन कर रहे हैं और सभी उनके चरणों में अपना आस्था प्रकट कर रहे हैं। मुझे खुशी है, मेरा प्रशासन के लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ सभी का दर्शन कराने की एक सुव्यवस्था किए हैं। मेरे प्रशासन के लोगों को भी मेरी शुभकामनाएं और मेरे राज्यवासियों को, सभी व्यवस्था से जुटे सभी हमारे पुरोहित, पुजारी और हमारे दर्शक सभी को मेरा बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं।
0: अम्बुवाची मेला पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा और अहम धार्मिक आयोजन माना गया है। पूरे साल में बस एक बार अम्बुवाची मेले के दौरान मंदिर के कपाट हर आम खास के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस साल 22 जून को रात 9:08:42 पर प्रवृत्ति अनुष्ठान के साथ अम्बुवाची मेले की शुरुआत हुई थी। मान्यता है कि माँ कामाख्या इस दौरान वार्षिक रजस्वला काल से गुजरती हैं। इस साल प्रवृत्ति अनुष्ठान शुरू होने के बाद मंदिर के कपाट 3 दिनों तक बंद रहे। शुक्रवार सुबह पूरे विधि विधान के साथ पूजा संपन्न होने के बाद मंदिर के कपाट फिर से खोल दिए गए, जिसके बाद माँ का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब सा उमड़ पड़ा। तंत्र साधना के साधक अम्बुवाची मेले के दौरान खास तौर पर गुवाहाटी आकर 3 दिनों तक तांत्रिक साधना करते हैं और कपाट खुलने के बाद माँ का दर्शन कर अपनी साधना संपन्न करते हैं।
2: तंत्र पीठ है, तंत्र की महाशक्ति है। जो 5 दिन अभी बंद रहा वो अपने आप में ये गौरवपूर्ण है, इतिहास है। ये जो है मामूली काम नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। कलयुग में ऐसा कहाँ, सत्ययुग में ऐसा कहाँ। ये तो रजस्वला होती है माँ, प्रत्यक्ष है। रजस्वला होने के बाद फिर प्रकृति का निर्माण करती है, जीवनों का निर्माण करती है, जीवन दाता है। ये सच में प्रकृति का निर्माण, जीव जंतुओं का निर्माण माँ के आशीर्वाद से संरचना होती है। ये माँ है, असली माँ तो यही है। यहाँ जो एक बार गर्भगृह में जाता है उसको दूसरा जन्म हो जाता है, वो नया जन्म पा जाता है। फिर माँ का ऐसा आशीर्वाद है। बड़े बड़े गोरखनाथ, नौनाथ, 84 सिद्ध, अघोरेश्वर, इसके बाद कपालिक, इसके बाद बड़े बड़े तंत्र, हीनयान, वज्रयान, कौलाचार, बामाचार और जो है माँ का जो पंचमकार, ये अष्ट चक्र जागृत, अष्ट चक्र की महाविद्या कामाख्या।
0: साफ है कि मंदिर के कपाट दोबारा खुलने पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए माँ कामाख्या के दरबार में पहुँचते हैं और पवित्र अंगोदक और अंग वस्त्र प्राप्त कर खुद को धन्य महसूस करते हैं। अम्बुवाची मेले के बाद मिलने वाले अंगोदक और अंग वस्त्र को अत्यंत शुभकारी माना गया है। इन्हें साक्षात माँ का ही स्वरूप माना जाता है। यही वजह है कि इस अवसर पर पूरे भारत वर्ष से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। दरअसल इस दौरान मंदिर के आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा अलौकिक हो जाती है, लिहाजा साधकों के लिए वातावरण काफी अनुकूल हो जाता है।
3: कामाख्या क्षेत्र में हम अपने बहन से आए हैं और यहाँ का एनर्जी बहुत ही बढ़िया है। स्पेशली आप जब साधना में हो और इतने लोग जो साधना करते हैं उनके बीच में हो, वो एक अलग एनर्जी आप महसूस कर सकते हैं। और मंदिर का के अंदर जाने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी जो है हर जगह है, आप महसूस कर सकते हो। और माँ का दया और इनकी कृपा से साधना में और अपने जिंदगी में आगे जाने का प्रयास करूंगी मैं।
0: इस पे कोई संदेह नहीं कि कामाख्या देवी मंदिर नारी शक्ति का दुनिया का अप्रतिम केंद्र है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु नारी शक्ति की साक्षात अनुभूति करते हैं। मान्यता है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कामाख्या देवी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को त्रिविध तापों से मुक्ति मिलती है और उनका पाप ताप संताप सब खत्म हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ आकर माँ का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के मुख मंडल की आभा अलौकिक हो जाती है।
3: फर्स्ट टाइम मैं इधर असम भी आई हूँ एंड फर्स्ट टाइम कामाख्या मंदिर आई हूँ। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोगों को देख के, उनका निष्ठा देख के, उनका भक्ति देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये एनर्जी ये मंदिर का कुछ और ही है, फेमिनिन एनर्जी का वर्शिप है एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सबको इनका शक्ति मिले, इनका आशीर्वाद मिले, प्रार्थना करते ओम जय माँ कामाख्या।
0: भारत की सबसे जागृत पीठ माने जाने वाले कामाख्या मंदिर का अद्भुत पक्ष ये है कि यहाँ माँ की कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में एक प्राकृतिक शिला है जिसे माँ का स्वरूप माना गया है। काबिले गौर ये है कि इस प्राकृतिक शिला से एक जलधारा निरंतर बहती रहती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इसी शिला का दर्शन करते हैं और इसे ही माँ कामाख्या का स्वरूप मानते हैं। इसी स्वरूप का दर्शन कर वो खुद को धन्य महसूस करते हैं। अम्बुबाची मेले के दौरान यहाँ का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। माँ के कुछ भक्त तो ऐसे हैं जो अम्बुबाची मेले के दौरान सालों से यहाँ आ रहे हैं।
4: हम यहाँ पे आ रहे 9 साल से। हाँ, बहुत अच्छी बात है। माँ का भजन करो, पूरा पूजा पाठ करो, 3 दिन मंदिर बंद रहता है माँ का, ध्यान करो। और क्या है, साल में एक बार मेला आता है, बार बार नहीं आता है। यही है भक्त लोगों से कहना, और क्या है।
5: आप कंटिन्यू कितना साल से आ रहे हैं?
4: 9 साल से।
5: 9 साल से।
4: हाँ,
5: अभी अभी आपका कितना दिन हो गया यहाँ पे?
4: यहाँ पे हो गया एक हफ्ता।
5: एक हफ्ता हो गया।
4: अब यहाँ से जाएंगे सीधे अमरनाथ।
0: माँ कामाख्या की विशेषता ये है कि साधु संन्यासी, साधक तपस्वी, तांत्रिक से लेकर आम श्रद्धालु तक दरबार में पहुंचते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार मनवांछित फल भी पाते हैं। माँ कामाख्या के अनन्य भक्तों का तो ये तक मानना है कि शक्ति के इस केंद्र की वजह से पूरे विश्व का संतुलन कायम है।
6: मैं काफी सालों से माँ कामाख्या के दर्शन में आते हैं अम्बुबासी मेला में, और देश विदेश से संत महंत लोग, बड़े बड़े ज्ञानी गुणी लोग यहाँ पर आते हैं। आज लाखों भक्तों आस्था का केंद्र है ये, और ये 51 शक्तिपीठ में सारा शक्ति इस समय यहाँ पर समाया हुआ है, गर्भगृह है, यहाँ से उत्पत्ति है। और ये आसाम एक प्राकृतिक से भरपूर जगह है, और ये पूर्वोत्तर का द्वार भी बोलता है ना, यही हार्ड है, यहीं से हम लोग उत्पत्ति हुआ है। और ये अगर संतुलन बिगड़ जाए तो विश्व बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए हमारे जितना संत महंत है उन्हें भी मेरा एक ही अनुरोध है, यहाँ पर आके अच्छा ऊर्जा शक्ति पैदा करें, अच्छा ऊर्जा शक्ति पैदा करें, ताकि आने वाला भविष्य जो ये सनातन को टिका के रखे।
0: श्रद्धालु और भक्त अपनी निष्ठा और श्रद्धा के हिसाब से माँ के स्वरूप का चिंतन करते हैं। इन सब के बीच यही बात विद्वान से सामान्य जन तक यहाँ आने के बाद अनुभव करते हैं। यही वजह भी है कि सनातन धर्म की हर धारा और विचारधारा के लोगों में इस दरबार को लेकर असीम आस्था है।
7: सभी भारतीयों को, सभी सनातनियों को, सभी हिंदू समाज के जितने भी भक्त हैं उनको अम्बुपाची मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। 20 तारीख से माई के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पंजाब पटियाला से आ गए थे। श्री राम जी का ननिहाल है जहां पंजाब में, माँ कौशल्या का जन्म स्थान है, वहां से आए थे भक्तों के साथ। और आज माई के दर्शन करने के बाद जैसे खाड़ा दर्शन करेगा, सारा साधु समाज दर्शन करेगा, उनके साथ दर्शन करके फिर दोबारा आगे की जो यात्रा है तारापीठ के लिए रवाना हो जाएंगे।
0: मंदिर परिसर में कोई तो ऐसी दिव्य चेतना है जो मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। अवसाद से, अंधियारे से घिरा व्यक्ति भी यहाँ आने के बाद एक अव्यक्त ऊर्जा से भर जाता है। यही वजह है कि हजारों साल से माँ का ये धाम श्रद्धालुओं से भरा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: माँ कामाख्या का दरबार विश्व का अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ मंदिर का पट बंद होने के बावजूद श्रद्धालुओं की तादाद कम नहीं होती। अलबत्ता 3 दिन के लिए मंदिर का पट बंद होने के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। मान्यता है कि अम्बुबाची मेले के लिए मंदिर का पट बंद होने के बाद यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और यही वजह है कि पट बंद होने के बाद यहाँ देश के हर हिस्से से साधक और पहुंचते हैं और 3 दिनों तक साधना में लीन हो जाते हैं। 3 दिन के बाद जब मंदिर का पट खुलता है तो गर्भगृह में मां के सृजन स्वरूप का दर्शन कर वो अपनी साधना को संपन्न करते हैं।

0: कामाख्या देवी विश्व का अनूठा ऐसा मंदिर है जहां मंदिर का पट बंद रहने के दौरान श्रद्धालुओं और भक्तों का तांता लग जाता है। जी हां, साल में एक बार जब अंबुबाची मेले के दौरान मां के मंदिर का पट बंद होता है तो मंदिर परिसर साधु सन्यासी साधक और श्रद्धालुओं के सैलाब से गुलजार हो जाता है। ये इस बात का सबूत है कि मंदिर परिसर में विद्यमान ऊर्जा किसी परलौकिक शक्ति से संचालित होती है। श्रद्धालु यहाँ आकर इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि खुद का वजूद भूल जाते हैं। यहाँ आकर कोई ये नहीं कहता कि मैं आया हूँ, सबके मुख से एक ही बात निकलती है कि माँ ने कृपा करके यहाँ बुलाया है। कमाल तो ये है कि बेशुमार रंगों से सुशोभित सनातन संस्कृति माँ कामाख्या के दरबार में आकर एकाकार हो जाती है।
1: माँ तो मतलब जैसे उसकी तो महिमा परंपरा है, हर बार बुलाती है, हर बार बहुत प्रेम से बुलाती है, तो माता की कृपा है बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं आ चुकी हूँ, दो तीन तीन चार साल से आ रही हूँ। बहुत अलग है, कल्चर अलग है, लेकिन हम यही है कि हम सब हिंदुस्तानी एक दूसरे के कल्चर से लेते हैं, इंस्पायर होते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं, तो ऐसा है कल्चर हमारा पूरे देश का। इनफैक्ट
2: देखिए, बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस है माँ के इस मेले में आना और इस समय में आना, और उनका आप देख रहे हैं विभिन्न पूरे देश से लोग आए हैं, पूरे देश से साधु संत आए हैं, और एक अलग तरह की ऊर्जा मैं कहूँगा माँ कामाख्या के प्रमाइसिस में आपको मिलती है। और माई सब पर दया रखें और सबको अच्छा स्वास्थ्य दें, देश को समृद्धि दें।
0: कामाख्या मंदिर में साल में एक बार लगने वाला अंबुवाची मेला देश और दुनिया के लाखों श्रद्धालुओं और साधकों को यहाँ खींच लाता है। ये केवल एक धार्मिक मेला भर नहीं बल्कि एक ऐसी अनोखी परंपरा है जो सनातन दर्शन के गूढ़ रहस्य को प्रकट कर देती है। भक्तों की मान्यता है कि साल में एक बार माँ कामाख्या रजस्वला होती है और इसी कारण मंदिर तीन दिनों के लिए बंद रहता है। अपने तरह की यह अनूठी परंपरा हमें यह एहसास कराती है कि स्त्री शरीर केवल जैविक पिंड नहीं बल्कि सृजन का आधार है और उसका सम्मान करना एक उन्नत आध्यात्मिक दृष्टि है। अंबुबाची मेले के दौरान माँ के जो भक्त यहाँ आते हैं उन्हें किसी न किसी रूप में परलौकिक अनुभूति होती है, इसीलिए लौकिक मनोकामनाएं अपने आप तिरोहित हो जाती है।
3: मनोकामना वगैरह तो किसने क्या पूरा किया है, यहाँ पे आने से आप हमारे मदर गॉडेस जो हिंदुइज्म में डिवाइन फेमिनिन, यहाँ काली एंड त्रिपुर सुंदरी दोनों का वास है, तो हम माँ की कंपनी में आते हैं, उनकी ऊर्जा में आते हैं। मनोकामना का तो क्या है ना, मनोकामना है कि अभी हम यहाँ है ना, बाकी तो वो दे देंगी, उनका नाम लेना काफी है।
0: अंबुबाची मेले के दौरान यहाँ के वातावरण में आध्यात्मिकता की एक अजीब सी कशिश घुल जाती है। देश भर से अघोरी साधु तांत्रिक साधक और भक्त यहाँ एकत्रित होते हैं और शांत चित्त होकर माँ का ध्यान लगाते हैं। ये उत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है कि सृजन की शक्ति यानी स्त्रीत्व और प्रकृति के चक्र का सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। शायद यही वजह है कि अंबुबाची मेले के दौरान पहुंचने वाले साधु संत या साधक खुद के उत्थान की नहीं बल्कि जगत के कल्याण की भावना से भरे रहते हैं।
4: जितने भी यहाँ पे साधु संत आए वो संसार के लिए भजन करते हैं, भजन के लिए तप करते हैं और सभी भक्तों के लिए सुख शांति मांगते हैं। जय माता दी।
0: आपको बता दें कि कामाख्या मंदिर जिस नीलांचल पर्वत पर स्थित है वो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा मात्र नहीं, एक भौगोलिक स्थान भर नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा से अनुप्राणित एक जागृत आध्यात्मिक क्षेत्र है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह पर्वत तीन अलग अलग ऊर्जा बिंदुओं ब्रह्म, शिव और वराह का संगम है, इसलिए यहाँ साधना का प्रभाव अन्य जगहों के मुकाबले कई गुना ज्यादा हो जाता है। नीलांचल पर्वत के अलग अलग हिस्सों में छोटी छोटी गुफाएं और गंतराएं मौजूद हैं, जहां आज भी साधक गुप्त रूप से साधना के अभ्यास में लीन रहते हैं। इस पर्वत के कई हिस्सों में चल रही गुप्त साधना का ही असर है कि यहां आकर लोग अपने सारे कष्ट क्लेश भूल जाते हैं। दरअसल अंबुबाची मेले के दौरान नीलांचल पर्वत की गुफाओं और कंदराओं में गुप्त साधना करने वाले साधक भी मंदिर परिसर में आकर प्रकट रूप से साधना करने लगते हैं।
5: ये जो माँ कामाख्या का पीठ है, 51 पीठों में से शक्ति पीठ ये प्रधान पीठ कहा गया है। अंबुबाची मेले में के साधु संत सभी सभी आ रखे हैं, सभी अपनी साधना में लगे हुए हैं, माँ का मक्खा का भजन कर रहे हैं। माँ महामाई ऐसी सभी पे कृपा बनाए रखे, ऐसे भगवती सभी मेहर बनाए रखे। जय माँ का मक्खा, हर हर महादेव।
0: आपको बता दें कि कामाख्या मंदिर का मौजूद स्वरूप 16वीं शताब्दी में कोच वंश के राजा नर नारायण द्वारा बनवाया गया था, लेकिन माँ का यह सिद्ध स्थान तो अत्यंत प्राचीन है। मंदिर की वास्तुकला नीलांचल शैली की है, जिसमें गुंबद मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है। मंदिर की शैली सिर्फ सौंदर्य की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक विशेष ऊर्जा संरचना की दृष्टि से भी अहम मानी जाती है। मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचने के लिए नीचे उतरना पड़ता है, और यहाँ आने वाले श्रद्धालु जैसे जैसे नीचे उतरते हैं, ब्रह्म सागर से उनका कनेक्शन कम होने लगता है। गर्भगृह में पहुंचकर एक अलग ही शांति और आध्यात्मिक गहराई का अनुभव होता है।
6: जो यहाँ आने के बाद जो फील हो रहा है, जो एनर्जी है, उसे कोई शब्द से महसूस सिर्फ करने में उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। हम जितना भी बोले वो उतना कम है, कि जो फीलिंग है, जो उनकी वाइब्रेशन है, जो वाइब फील होती है, जो लोगों की वाइब्स है, क्योंकि सब पॉजिटिव लोग हैं और एनर्जी भी पॉजिटिव है, तो जो फील हो रहा है ना, वो जितने भी कहा जाए उतना कम है। वो फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं पहली बार आया हूँ, मेरी एज होगी 40 की, लेकिन 40 साल में जो पहली बार आया हूँ, जितने भी धाम घूम चुका हूँ, जो फील यहाँ पे हुआ वो मुझे अभी तक कहीं पे नहीं हुआ।
7: कहने के लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं है ना, कि माँ की गोदी में आके बैठे है, और जो यहाँ पे आके जो माँ की ऊर्जा मिलती है, उसकी तो बात ही निराली है। उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। हर हर महादेव शंभू।
0: कामाख्या मंदिर की ख्याति एक और रूप में बहुत ज्यादा है। कामाख्या को तांत्रिक साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। हालांकि तंत्र साधना को लेकर समाज में कई तरह की गलत धारणाएं बनी हुई हैं। आम तौर पर तंत्र साधना को अंधकार या किसी रहस्यमय शक्ति से जोड़कर देखा जाता है, जबकि इसका वास्तविक अर्थ बिल्कुल अलग है। तंत्र साधना जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझकर मन को स्थायी शांति से भरने और अलौकिक शक्ति से एकाकार होने का सबसे सशक्त माध्यम है। माँ कामाख्या मंदिर में तंत्र साधना की यही परंपरा आज भी जीवंत रूप में देखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: और इसी के साथ GNT स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन सामान्यतः अच्छा रहता है? किस लग्न में जिद की वजह से वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है? अलग अलग लग्न के लोगों का कैसा होता है वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to elf beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
2: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
3: Tune in is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news, and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
4: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज़ टुडे।

0: एआई की मदद से दौड़ेंगे सेना के टैंक, रोबोटिक वॉरियर संभालेंगे जंग की कमान, सेना के बैटल टैंक का कायाकल्प। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
5: सेशल्स की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर पीएम मोदी दुनिया के सबसे अधिक उम्र वाले जीव जोनाथन से भी करेंगे मुलाकात। 194 साल है कछुए की उम्र। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 353वीं वर्षगांठ आज नागपुर में मनाया जा रहा है जश्न। जय भवानी जय शिवाजी के नारों से गूंजा माहौल। दक्षिण पश्चिम मानसून अब मध्य भारत में हो रहा है मजबूत। उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश के आसार। शाम तक दिल्ली एनसीआर में भी मौसम बदलने के आसार। गुजरात के 14 शहरों को मिलेगी सुगम यातायात की सौगात। भारत टैक्सी ऐप का आज से शुभारंभ। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में करेंगे उद्घाटन। आज नोएडा अथॉरिटी के नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 390 करोड़ की लागत से सेक्टर 96 में बनी हाईटेक इमारत। लोगों की सुविधा के व्यापक इंतजाम। शोपियां की खूबसूरत वादियों की अनदेखी। घाटियों पर पर्यटन बढ़ाने की कवायद तेज। हरे भरे पहाड़, रंग बिरंगे फूल लोगों को कर रहे आकर्षित। स्थानीय लोगों का भी बढ़ेगा रोजगार।
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे आपके लग्न के अनुसार आपका वैवाहिक जीवन कैसा हो सकता है। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 जून 2026 दिन शनिवार। तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। रात के 10:11 तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि लग्न के हिसाब से अलग अलग लग्न के लोगों के रिश्तों और विवाह का हाल कैसा रहता है। सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन लग्न के बारे में जानते हैं। देखिए, मेष लग्न में वैवाहिक जीवन में आम तौर पर थोड़ा बहुत तनाव बना रहता है और मेष लग्न में काफी उम्र बीत जाने के बावजूद विवाह इनका सेटल नहीं हो पाता और इनके साथ सामान्य जीवन में या विवाह में दुर्घटनाओं की संभावना बहुत होती है। इनको नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, तब जाकर विवाह और रिश्तों की समस्या हल होगी। वृषभ लग्न, इनके लिए जल्दी विवाह करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये बहुत जिद्दी और उग्र स्वभाव के आम तौर पर हो जाते हैं और विपरीत लिंग के जो लोग हैं, पुरुष हैं तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, इनके द्वारा जल्दी बेवकूफ बनते हैं और इनका अपना स्वभाव क्रोध और जिद इनके वैवाहिक जीवन को और रिश्तों को चौपट कर देता है। इनको नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करनी चाहिए, तब इनके विवाह और रिश्तों का मामला बेहतर होगा। मिथुन लग्न, बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, संतान के मोह में अक्सर गड़बड़ियां करते हैं और मिथुन लग्न के लोग सामान्यतः पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहते और पारिवारिक जिम्मेदारियों में गड़बड़ी करने की वजह से इनका वैवाहिक जीवन बिगड़ जाता है। इनको नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए ताकि इनका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन बेहतर हो। मेष राशि, व्यर्थ का तनाव इस समय हो सकता है, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं, धन की परेशानी हो सकती है। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे, फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, कोई शुभ सूचना आपको इस समय मिलेगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन खर्च पर ध्यान दें, फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कर्क लग्न के बारे में। सामान्यतः कर्क लग्न वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, संतान की तरफ से भी इनको कष्ट मिलता है और जीवन साथी से भी तकलीफ मिलती है। जिंदगी में निर्णय लेने में अक्सर ये इमोशनल हो जाते हैं, अक्सर ये भावनात्मक हो जाते हैं। कर्क लग्न वालों को नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और विवाह का निर्णय लेने में बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए तो इनके लिए ठीक रहता है। सिंह लग्न, सिंह लग्न के लोग बड़े रूखे और बड़े अक्खड़ स्वभाव के होते हैं, और अगर सिंह लग्न वाले जल्दी विवाह कर लें तो जल्दी विवाह करने पर दिक्कतें जरूर आती हैं। अपने सहयोगियों और परिवार जनों के

धीरे धीरे एडजस्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी एक तरह के काम से बोर हो जाते हैं। इनको जीवन में निरंतर बदलाव और नया काम करने का शौक होता है। अगर आपका कन्या लग्न है तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करिए ताकि आपका वैवाहिक जीवन और आपका पारिवारिक जीवन बेहतर हो सके। सिंह राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन के खर्चों से परेशानी होगी, महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा, परिवार के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर के सारे काम पूरे होंगे, वाहन या संपत्ति का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, अगर तुला लग्न की बात करें तो अगर ये जल्दी शादी कर लें, अर्ली शादी कर लें, तो थोड़ा संघर्ष इनके जीवन में बढ़ता है। अदरवाइज तुला लग्न वालों को नॉर्मल अच्छे वैवाहिक जीवन से जोड़ा जाता है। कभी कभी ये बड़े आइडियल हो जाते हैं, बड़े आदर्शवादी हो जाते हैं, दान बहुत करने लगते हैं, दूसरों के चक्कर में पड़ जाते हैं, और वहां पर ये बेवजह की तानाशाही दिखाते हैं, बेवजह की डिक्टेटरशिप दिखाते हैं, और दिखावे के चक्कर में अक्सर तुला लग्न वाले काफी धन का नुकसान भी करते हैं। वैसे टोटली इनका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, अगर ये माइल्ड हो और सोच समझ के चलें तो जीवन इनका ठीक बीतेगा। तुला लग्न वालों को नियमित रूप से दान भी करना चाहिए और ध्यान भी करना चाहिए। वृश्चिक लग्न, इनको बदला लेने की बुरी आदत होती है, जिससे भी झगड़ा हुआ वो सालों बाद भी उस चीज को नहीं भूलेंगे, और अक्सर अपने गुरु के साथ या मार्गदर्शक के साथ इनका मतभेद हो जाता है। वृश्चिक लग्न वालों का जीवन साथी या तो रहता नहीं या बहुत जल्दी अलगाव हो जाता है, विचार न मिलने की वजह से, इनके काम करने के तरीकों की वजह से। वृश्चिक लग्न वालों को नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए ताकि व्यवहार थोड़ा माइल्ड हो, वैवाहिक जीवन में और अपने सामान्य जीवन में भी शांति से रह सकें। धनु लग्न, इनको क्रोध और उग्रता की काफी समस्या होती है, क्रोधी बहुत होते हैं, एग्रेशन में आ जाते हैं, और जाने अनजाने इनका बहुत सारा पैसा बेवजह खर्च भी होता है। संतान को लेकर या संतान की तरफ से इनको कष्ट का सामना करना पड़ता है। विवाह में उतनी दिक्कतें नहीं होती, जिंदगी चल जाती है, लेकिन अक्सर संतान वाले पार्ट को लेकर इनके जीवन में मुश्किलें आती हैं।
अगर ये

0: नियमित रूप से भगवान सूर्य की उपासना करें तो जीवन इनका बेहतर होगा। धनु राशि, कार्य क्षेत्र में विवादों से बचाव करें, खान पान में सावधानी रखें, अभी धैर्य बनाए रखें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, आपका तनाव कम होता जाएगा, करियर की बाधा दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलेगा, वाहन सावधानी से चलाइए, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर मकर लग्न की बात करें तो मकर लग्न वाले इमोशनल झटके नहीं झेल पाते, बहुत जल्दी उदास और निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान होते हैं, हालांकि किस्मत इनका साथ बहुत देती है मुश्किल समय में। पारिवारिक जीवन को लेकर हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, हालांकि पारिवारिक जीवन ठीक चलता रहता है लेकिन इनको संतोष नहीं होता। अक्सर नर्वस सिस्टम की या आर्थराइटिस की समस्या इनको होती है। पारिवारिक जीवन में अगर थोड़े संतुष्ट रहें, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन न रखें तो पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। इनको नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करनी चाहिए, जीवन में सफल होंगे। कुंभ लग्न, शुरुआती जीवन में इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इनिशियली बहुत मेहनत करते हैं और अक्सर जीवन साथी पूरी तरह से विपरीत मिलता है। ये बड़े माइल्ड, धीर, गंभीर स्वभाव के होते हैं, जीवन साथी एग्रेसिव और डोमिनेटिंग मिलता है। जीवन में अकेलापन और अवसाद, आइसोलेशन और डिप्रेशन इनको जल्दी घेर लेता है। अगर आपका कुंभ लग्न है तो सबसे पहले आप अपने मन को ठीक करिए, ध्यान और पूजा उपासना पर बहुत ध्यान दीजिए, आपको लाभ होगा। मीन लग्न, इनकी अगर कोई बुराई करे या इनको कोई सुझाव दे तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनके अंदर ईर्ष्या का भाव बहुत जल्दी आ जाता है। अगर पत्नी या पति इनको कोई बेहतर बात समझाए या बेहतर बात बताए तो वो सुनेंगे नहीं, नतीजा होता है वैवाहिक जीवन में ईगो प्रॉब्लम पैदा होती है। इनको नशे की आदत बहुत जल्दी लग जाती है या लग सकती है। अगर आपका मीन लग्न है तो शिव जी की आप जितनी पूजा करें उतना आपको लाभ होगा। अगर आप जीवन में यश और लंबी आयु चाहते हैं तो रोज सवेरे सूर्योदय के पहले उठिए और सूर्योदय के पहले उठ करके भगवान से प्रार्थना करिए कृपा करने की, इससे आपको लंबी आयु और यश की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने बच्चों को बुद्धिमान, संस्कारवान और तेजस्वी बनाना चाहते हो तो क्या करेंगे? बच्चे से रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करवाइएगा। बच्चे से रोज सुबह या तो गायत्री मंत्र पढ़वाएं, शुरुआत में 3 बार या 9 बार, या उसको बगल में बैठा करके सुनाएं। और बच्चे को फास्ट फूड से और मांसाहार से दूर रखें। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार। कौन से अंक वाले लोग कला के क्षेत्र में, एक्टिंग में, क्रिएटिव फील्ड में खूब सफलता पाते हैं? कौन से अंक के लोग शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में आगे रहते हैं? और कौन से अंक वाले हर तरह के काम में अपनी बात मनवाना चाहते हैं? आपके जन्म की तारीख का आपके करियर से क्या है कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
1: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
2: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
3: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
4: सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: एआई की मदद से दौड़ेंगे सेना के टैंक, रोबोटिक वॉरियर संभालेंगे जंग की कमान, सेना के बैटल टैंक का कायाकल्प देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: गधे मत बनो, बनना ही है तो घोड़े बनो, चाल अपनी चलो, चाल अपनी चलो, रास्ता अपना चुनो, मार्ग अपना चुनो, मुस्कुराओ तुम, इतराओ मत, घबराओ मत, मुस्कुराओ, जिंदगी को खुशनुमा मानो, ये जिंदगी 4 दिन की है, आनी जानी है, सब मरेंगे तो हम भी मरेंगे, पर मरने मरने में अंतर होगा, लोग रो रो कर मरेंगे, हम मुस्कुरा करके मरेंगे। तुलसी बाबा ने कहा, जब तू आया जगत में जग हंसा, तू रोए कुछ करनी ऐसी कर चलो, तू हंसे जग रोए, संसार रोता रह जाए तो कामना को वासना को पकड़ना है, कंट्रोल करना है तो उस पर ध्यान देना बंद करो, वासना बढ़ती जाएगी, जितने मकान खरीदोगे उतने मकान लेने के सपने बढ़ते जाएंगे, जितनी गाड़ियां खरीदोगे उतनी गाड़ियों के सपने बढ़ते जाएंगे, तुम फॉर्चूनर खरीदोगे तो तुम्हें रेंज रोवर दिखाई देगी, तुम वो खरीदोगे तो तुम्हें डिफेंडर दिखाई देगी, तुम डिफेंडर भी ले लोगे तो तुम्हें फरारी VMW दिखाई देगी, उसके ऊपर की दिखाई देगी, जब गाड़ियों से तुम उब जाओगे तुम्हें उड़ना पसंद आएगा, हेलीकॉप्टर से तुम चार्टर्ड खरीदोगे, इसके बाद फिर तुम हवाई जहाजे खरीदोगे, एक दिन उड़ते उड़ते बिल्कुल ही उड़ जाओगे, मजा ना ले पाओगे। इसलिए 4 दिन की जिंदगी है यार, मुस्कुरा कर जियो, ठहाका लगा कर जियो, और जीने का ढंग होना चाहिए, बुरा मत मानना मेरे पागलो, यहां बहुत से लोग बैठे बैठे कह रहे हो क्या बेतुकी बात कह रहे हैं कि हंस के जियो, हमारी जिंदगी में गम है, अरे तुम भी क्या कम आदमी हो यार, उल्लू आदमी हो, किसी ने तुम्हारे हिस्से में नींबू दे दिए तो खट्टा मान करके मत नाराज हो, शरबत बना के पी जाओ, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों टेंशन में हो रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे भाई ने गड्ढे खोद दिए, मित्र ने गड्ढे खोद दिए, तो गिरो मत, एक पेड़ ले आओ, पेड़ को लगा दो, कहानी खत्म, दूध फट गया, गरीबी भयंकर है तो काय को रो रहे हो, पनीर बना लो, झंझट खत्म। लेकिन तुम्हारी एक ही आदत है कि हमेशा एक तरीके से सोचते, अभी हम तुमसे पूछेंगे तो सबका एक उत्तर होगा, अच्छा सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करना चाहिए, यही उत्तर सबका होगा, लेकिन हम उल्टे हैं, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली ही क्यों करना, घी को गर्म कर लो, उंगली ही क्यों करना, घी को गर्म कर लो, झंझट खत्म। तो सुबोध राजपूत, तुमने पूछा है कि कामना से कैसे बचा जा सके, भाई कामना से तो हम भी नहीं बचे, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम कामनाओं में फंसे हैं, ना जो है सो है, नहीं है सो जय बजरंग बली, घटे रामदास का बड़े रामदास का गांठी वंदन वो करें जिनके राम ना होए, फकीरी का जो मजा हमने पाया है वो सिर्फ इसी बात पे पाया है कि हमें भगवान ने जितना दिया उतना कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है। कबीर हमें बहुत याद आते हैं,

0: कबीर बाबा की बाणी, मन लाग्यो मेरो यार किसमें लगा, मन लाग्यो मेरो यार फकीर में। सुबोध जी आपने पूछा कि कामनाओं को कैसे रोकें, ऐसे रोक सकते हो, ऐसे भी समझो। वृंदावन में दो लोग थे, शाम का समय, ब्रजवासी तो ब्रजवासी होते हैं, नाव पर बैठे भांग खाए हुए थे, दोनों ने आपस में बात की, बोले चलो दिल्ली चलते हैं। जमुना जी में नाव, नाव पर दोनों ब्रजवासी, जाना है दिल्ली। एक ने कहा कि ट्रेन से क्या जाना, जमुना जी भी तो दिल्ली से ही निकली, नाव से चलो, रात भर चलेंगे सुबह पहुंच ही जाएं, जहां तक पहुंचेंगे वहां नाव रख देंगे फिर गाड़ी से जाएं। पूरी रात नाव चलाई, सुबह हो आई, इनको तब ध्यान आई, सुबह प्रातः काल नाव चलाते चलाते थक गए, सोचा कोई नगर दिखाई पड़ रहा, लगता है दिल्ली के आसपास का कोई नगर है, जरा पूछ लिया जाए। तो किसी से पूछा कि क्यों भाई ये कौन सी सिटी है, कौन सा नगर है। सामने वाले ने उत्तर दिया, चुप रहो, ये कोई सिटी या नगर नहीं है, ये वृंदावन है। अब दिमाग खराब हो गया, दूसरी की तरफ देख के बोले अपन रात को कहां से चले थे, बोले वृंदावन से, बोले पहुंचे कहां रात भर में, बोले वृंदावन। क्या जमुना जी गोल गोल है भैया, जो रात भर चले हो वृंदावन के वृंदावन में पहुंचे। शायद ये उल्लू बना रहा, दूसरे से पूछा क्यों भैया ये कौन सी सिटी है। हे भैया चुप रहो, ये सिटी ना है, ये तो भैया वृंदावन है। अब तो पक्को है गो ब्रज भाषा में ये वृंदावन है, पर रात भर अपन लोग चले कहां। तब ध्यान आया, पीछे मुड़कर देखा, क्या ध्यान आया, रात भर नाव तो चलाते रहे पर नाव जिस रस, नाव की रस्सी जिस खूंटे से बंधी थी वो खोल गई, भूल गए रस्सी से खूंटी, खूंटी से रस्सी बंधी, नाव बंधी ही रही, नाव चलाते रहे। वही हम लोगों का हाल है, जिंदगी भर भजन करते रहते हैं पर मन को संसार रूपी खूंटी से बांध देते हैं, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो सुबोध जी, कामना से बचना है, वासना से बचना है तो उपासना करनी पड़ेगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ये हमने दूसरा प्रश्न लिया है जयपुर से,
1: देख
0: आपने लिखा हनुमान नाम का अर्थ क्या है, हनुमान क्यों कहते हैं, हनुमान जी के अनेक नाम हैं, बजरंगबली है आदि आदि लोग पुकारते हैं, पर सबसे ज्यादा हनुमान ही क्यों पुकारते हैं, कृपा करके बताने का कष्ट करें। और आप कभी खोले के हनुमान जी दर्शन करने आए, आपका पागल भगत। हे पागल भगत, तुमने पूछा कि हनुमान नाम का अर्थ क्या, सीधा सीधा सुनो, जो अपने मान का मर्दन स्वयं कर दे उसी को हनुमान कहते हैं। जिसे ना मान प्रिय हो ना सम्मान प्रिय हो, जिसे केवल भगवान प्रिय हो उसे हनुमान कहते हैं। एक बात और, हनुमान कौन, जो ज्ञानवान है, हनुमान कौन जो बलवान है, हनुमान कौन जो बुद्धिमान है, हनुमान कौन जो तेजवान है, हनुमान कौन जो विद्यावान है, इसलिए तो ये हनुमान है। आपने पूछा कि अनेक नाम है, बिल्कुल नाम है हनुमान जी के अनेक नाम, पर प्रिय तो हनुमान जी का। एक और सुनो, हनुमान जी का काम है स्वयं का मान नीचे रखना, प्रभु का सम्मान बढ़ाना, अभिमानियों को ठिकाने लगाना, ये हनुमान जी का काम है। रावण को अभिमान आ गया, क्या हमारे जैसा बलवान कोई नहीं है, हनुमान जी बोले आ जाओ, ऐसी पूंछ से आग लगाई कि जब हनुमान जी वापस आ गए तो पूरी लंका में हनुमान जी की ही चर्चा चली। इतनी चर्चा चली हनुमान जी की चौराहे चौराहे पर कि रावण को चिढ़ हो गई हनुमान जी की पूंछ से। इतनी चिढ़ हो गई कि वो एक बार जब युद्ध चल रहा था तो हनुमान जी से लड़ने आ गया, इसलिए लड़ने आया कि ना ये बंदरा आता, ना सीता माता का पता लगाता, ना ये दोनों राजकुमार लंका आ पाते, ना युद्ध हो पाता, ना हमारा विनाश हो पाता, तो पूरी जड़ कौन है? ये बंदर है। तो सबसे ज्यादा खतरा किससे है? बंदर से है। क्या करें? एक काम करो, बंदर को ही मार दो। हनुमान जी के सामने रावण खड़ा हो गया, ए बंदर इधर आ। हनुमान जी बोले, बोलो। चलो एक एक मुक्का की हो जा। एक एक मुक्का जानते हो ना, राजस्थानी में क्या कहते हैं? सुट्टा मुक्का, गुक्का गुक्का। चलो एक एक गुक्का की हो जाए। रावण हनुमान जी से बोला, चलो एक एक गुक्का की हो जाए, मुक्का की हो जाए। हनुमान जी बोले, अगर खुजली हो तो हो जाने दे, क्या दिक्कत है। चलो रावण बोला, सुनो, एक मुक्का हम मारेंगे, एक मुक्का तुम मारो, इसी से पता लग जाएगा बलवान कौन है। हनुमान जी बोले, नो टेंशन, लगो। एक काम करो रावण, पहले तुम ही मारो। रावण बोला, नहीं नहीं नहीं, हम दशानन हैं, हम जब चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी बोले, ठटरी के बरे तुम जब चलते हो तब पृथ्वी डोलती, हमारे प्रभु के तो छोटे भाई जब बोलते हैं सो पृथ्वी डोलती है। रावण बोला, चुप रहो, हमारे बल को नहीं जानते। हनुमान जी देख ही ले रहे हैं कौन पिक्चर दूर है। चलो मुक्का की हो जाए, गुक्का की। रावण बोला, पहले तुम मारो। हनुमान जी बोले, नहीं तुम मारो। रावण बोला, नहीं पहले तुम मारो। हनुमान जी बोले, कहीं अगर हमने मशक दिया हो तो मारने लायक ना बचे, कहीं हमने दे दिया और तुम्हारी बिल्कुल तेरहवीं हो गई, दांत निकले आए, हाथ फट गई, तो तुम्हारी खुजली बरकरार रहेगी, इसलिए पहले तुम लगो। रावण को भी मन में थोड़ी टेंशन तो ही कि बंदर है तो खतरनाक। रावण बोला, तो तैयार हो जाओ। हनुमान जी बोले, हैं रेडी। और रावण ने, रावण तो रावण, ऐसा मुक्का बनाया रावण ने, भारी बलशाली रावण, पीछे तक गया, बोला हो जाओ तैयार। हनुमान जी बोले, तैयार है। हनुमान जी ने एक पैर आगे रखा, एक पैर पीछे रखा, रावण मुक्का बना कर आया, जोर से हनुमान जी की छाती पे मारा। हनुमान जी थोड़ा पीछे भय और फिर खड़े हो गए। अच्छा, रावण को तो ये भरोसा था कि इन्हें चित्त गिर जाना। रावण बोला, क्यों, चक्कर नहीं आ रहे, चक्कर नहीं आ रहे। हनुमान जी बोले, नहीं आ रहे। रावण बोला, आंखों के सामने काला काला छा रहा है? हनुमान जी बोले, बिल्कुल नहीं। बोले, क्यों, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा जैसे श्वास रुक रही हो? हनुमान जी बोले, बिल्कुल नहीं। रावण को लगा बड़ा खतरनाक बलवान बंदर है, हमारा मुक्का सह गया। हनुमान जी बोले, अब बातें बंद करो, अब तुम रेडी हो जाओ। रावण धीरे से बोला, रेडी है, अब कर भी क्या सकते, शर्त तो शर्त है। हनुमान जी ने लिया 80 डिग्री का मुक्का, जैसे ही मस्का, जय श्री राम। भैया 10 मुख का दशानन, 20 भुजा वाला धरती पे गिरा धड़ा। हनुमान जी को टेंशन हो गई कि सही में रामलीला यही पूरी तो नहीं हो गई। अब हनुमान जी हवा करें, पानी छिड़कें। रावण बोले, क्या हुआ? वो ब्रह्मा जी बोले, क्या हुआ? हनुमान जी बोले, हमें लग रही राम कथा पूरी हो गई। जब थोड़ी देर में होश आया रावण को, हनुमान जी बोले, काओ कैसी रही? रावण बोला 180 डिग्री के मुक्का में तीनों लोक घूम लिए, सबसे फंसेंगे तुमसे नहीं फंसेंगे। तो हनुमान जी कौन जो ऐसे अभिमानियों का मान मर्दन करे, उसी का नाम हनुमान है। इतना बल हनुमान जी में कहां से आया? अष्ट सिद्धि नवो

0: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up Strawberry Scented Sunscreen, Favorite Day Ice Cream in flavors like Cotton Candy and Orange Cream, Inflatable Fun for the Pool, Elf Beauty's Best, and Levi's Denim Shorts. Summer's Best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
3: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
11: दो साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। तीन महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
12: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
13: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
14: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
15: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it, मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
16: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
17: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
3: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
18: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
19: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में, घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
20: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
2: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
20: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: Score what you need for summer, perfectly picked for you at Target, including up and up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you, now and new at Target. Shop today.
21: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
22: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio. Now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
23: AI की मदद से दौड़ेंगे सेना के टैंक, रोबोटिक वॉरियर संभालेंगे जंग की कमान, सेना के बैटल टैंक का कायाकल्प। देखिए रणक्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
20: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
24: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर
25: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
26: Sage University, transforming your passion into profession.
27: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
28: PM Modi 3 days के Seychelles के दौरे पर रवाना, दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र वाले जीव जोनाथन भी करेंगे मुलाकात, तो वहीं 194 साल है कछुए की उम्र। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 153वीं वर्षगांठ आज नागपुर में मनाया जा रहा है, जश्न जय भवानी जय शिवाजी के नारों से गूंजा माहौल। दक्षिण पश्चिम मानसून अब मध्य भारत में हो रहा है मजबूत, उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश के आसार, शाम तक दिल्ली एनसीआर में भी मौसम बदलने के आसार। शोपियों की खूबसूरत वादियों की अनदेखी घाटियों पर पर्यटन बढ़ाने की कवायद, तेज हरे भरे पहाड़ रंग बिरंगे फूल लोगों को कर रहे आकर्षित, स्थानीय लोगों का भी बढ़ेगा रोजगार। चाइना की राजधानी बीजिंग में प्रकृति का चमत्कार, 800 साल पुराने बीज से उगाया गया दुर्लभ कमल लोटस कल्चर फेस्टिवल में लगाई प्रदर्शनी। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने किया बड़ा ऐलान, अगले साल भारत आ सकते हैं ट्रंप, बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील जल्द होगी फाइनल।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम धाम से जुड़ी एक ऐसी गुड न्यूज की जिसका अरसे से इंतजार था। वक्त लगा पर खाटू श्याम के भक्तों की मुराद पूरी होने जा रही है। जी हां, धाम के करीब रेलवे स्टेशन का सपना जल्द ही साकार हो जाएगा। रेल मंत्रालय से जिस स्टेशन की मंजूरी मिल गई है, आज आपको उसकी जगह हम दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कि धाम से बस 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर बनने जा रहे इस नए स्टेशन से भक्तों को कैसे बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा आपको नए स्टेशन की रूपरेखा के बारे में भी जानकारी देंगे। बताया जा रहा है कि स्टेशन को खाटू श्याम का नाम दिया जाएगा। इसमें और क्या खूबियां हो सकती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपको खाटू धाम में मेले और उत्सव की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे। निर्जला एकादशी के अवसर पर शुरू हुआ मेला आज द्वादशी के साथ भले ही खत्म हो गया है, लेकिन बाबा श्याम के दरबार में रविवार तक धूम रहने वाली है। वीकेंड पर वहां जा रहे भक्तों को पार्किंग और ट्रैफिक के मामले में क्या ध्यान रखना है, ये भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं खाटू श्याम के भक्तों को मिली बड़ी खुशखबरी से। आपको बता दें, जल्द ही धाम के नजदीक खाटू श्याम सुंदरपुरा नाम से नया रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। रेल मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद अब निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। खबर है कि स्टेशन मंदिर के अनुरूप ही भव्य बनाया जाएगा, जिसके सामने खाटू श्याम की प्रतिमा भी होगी। माना जा रहा है कि नए स्टेशन से श्रद्धालुओं का सफर आसान हो जाएगा, यात्रा का समय कम लगेगा और खाटू क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के साथ स्थानीय कारोबार को भी नई रफ्तार मिलेगी। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
1: जिसने भी दिल लगाया, सिर झुकाया, वो खाली हाथ नहीं आया। हर अर्जी यहाँ मंजूर होती है, समस्या चाहे जैसी हो दूर होती है। इसलिए गुलाब और मोर पंख लिए हजारों भक्त रोज उनके धाम पहुँचते हैं। हाथों में निशान और जुबां पर नाम बाबा खाटू श्याम का। बाबा मन की मुराद पूरी करते हैं। हाँ, पर आसानी से खाटू श्याम के दर्शन से जुड़ी एक मांग सरकार ने भी पूरी कर दी है। जी हाँ, खाटू श्याम के धाम तक का सफर पहले से कुछ आसान होने वाला है, क्योंकि पास में ही उनके ही नाम से एक भव्य रेलवे स्टेशन बनने वाला है। रूट तैयार है, जमीन भी तय हो चुकी है, समझ लीजिए कि भव्य रेलवे स्टेशन का नक्शा भी बन गया। बस अब निर्माण की शुरुआत होने वाली है और इस तरह खाटू श्याम के भक्तों की बड़ी आस पूरी होने वाली है। अरसे से ये मांग थी कि सीकर में धाम तक जाने के लिए ट्रेन का इंतजाम हो, और लंबे मंथन के बाद रेल मंत्रालय ने आखिरकार हरी झंडी दे दी।
2: देश भर से खाटू श्याम आने वाले भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहां वो रिंगस से पैदल खाटू श्याम की यात्रा करते थे या फिर गाड़ियां लेके आया करते थे, तो अब खाटू श्याम में सुंदरपुरा में एक रेलवे स्टेशन उनके लिए बनने जा रहा है और ये बहुत बड़ी सुविधा है।
1: बाबा श्याम के भक्तों के लिए धाम तक आने में अभी भी कोई अड़चन नहीं, कोई उलझन नहीं। साल भर कमोबेश ऐसी ही तस्वीर धाम पर नजर आती है और विशेष अवसरों पर तो भक्तों की तादाद रोजाना लाखों तक पहुंच जाती है। हालांकि नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस से 18 किलोमीटर की अच्छी खासी दूरी है। यहां से ऑटो या बस के जरिए सड़क के रास्ते मंदिर के मुख्य द्वार तक जाना होता है और मुख्य द्वार से करीब 1 किलोमीटर पैदल चलते हुए भक्त मंदिर पहुँचते हैं। इस यात्रा को आसान बनाने के लिए ही एक नजदीकी स्टेशन की जरूरत थी। इसके लिए नजर गई सुंदरपुरा पर, जो खाटू श्याम मंदिर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर मौजूद ये सरकारी जमीन नए स्टेशन के लिए तय की गई है।
2: यहाँ से महज 11 किलोमीटर दूर खाटू श्याम मंदिर, श्याम बाबा का मंदिर होगा, तो जाना बहुत पास पड़ेगा। रिंगस से जहाँ 18 किलोमीटर खाटू पड़ता है, वहीं यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी होगी। और ये जो प्लान है, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हमें यहाँ पे मनोज जी देंगे, जो कि यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं। मनोज जी, क्या प्लान है उसके बारे में बताइए।
3: ये यहाँ श्याम भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात दी है केंद्रीय सरकार ने। हमारे यहाँ के पूर्व सांसद श्रीमान सुमेधानंद जी सरस्वती और झाबर सिंह जी खर्रा, जो UDH मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए, श्याम बाबा के लिए, भक्तों के

0: मंत्रालय की मंजूरी मिलते ही स्टेशन का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि स्टेशन खाटू श्याम के नाम पर होगा, यानी खाटू श्याम सुंदरपुरा। बताया गया है कि इस साल के आखिर या 2027 की शुरुआत में काम शुरू हो जाएगा और 2029 तक स्टेशन बनकर तैयार हो सकता है। रेलवे स्टेशन को खाटू श्याम मंदिर के अनुरूप ही भव्य और यात्रियों के लिए आरामदेह बनाने की योजना है।
1: में ये नक्शा भी है जहाँ पे रूट हमें समझ में आ सकता है कि किस तरीके से ट्रेन चलेगी, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे खाटू श्याम मंदिर है और यहाँ ये रूट जा रहा है। तो आप मुझे बताइए कि कहाँ से ये ट्रेन चलेगी, कैसे, कितना दूर पड़ेगा?
2: एक्चुअली हम लोग यहाँ पे अभी खड़े हैं। अच्छा। तो यहाँ जो स्टेशन बनेगा उसका यहाँ से हाईवे पे सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी जो पहले से रोड बनी हुई है, छोटी रोड है, उसको डबल ट्रैक स्वामी जी ने कहा है कि उसको बड़ा बना देंगे हम। उसको बड़ा बनवा कर यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर मंदिर के पहले से आगे हाईवे मंडा रोड जो बनी हुई है उस पे लगभग रूट के सभी यात्री डिंगस के बाद सबसे ज्यादा रूट इसी इधर से जाते हैं, तो उनके लिए सुविधाजनक रहेगा। एक्चुअली
0: रिंगस रेलवे स्टेशन से मंदिर तक आने में जितना समय लगता है, जाहिर है सुंदरपुरा से नहीं लगेगा। यात्रा 10 से 15 मिनट कम हो जाएगी, लेकिन उससे अहम बात ये कि ये नया स्टेशन खाटू श्याम के भक्तों के लिए कई सुविधाओं से लैस होगा और उसकी पहचान धाम से जुड़ी होगी। अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन का वास्तुशिल्प खाटू श्याम मंदिर की धार्मिक भव्यता और पारंपरिक शैली से प्रेरित होगा और स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर बाबा खाटू श्याम की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस इस स्टेशन में विशाल प्रतीक्षालय, बेहतर पार्किंग, स्वचालित टिकटिंग व्यवस्था और लिफ्ट जैसी सुविधा होगी। इसके बनने से न सिर्फ श्रद्धालुओं की यात्रा आसान होगी, बल्कि खाटू क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन, व्यापार, होटल उद्योग और रोजगार के अवसरों को भी नई गति मिलेगी।
2: पहले तो ये इससे छोटा स्टेशन का ही प्लान था, लेकिन हम मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको खाटू श्याम जी के हिसाब से इतना भव्य बनाए कि पूरे देश भर से जो लोग आते हैं उनके लिए यहाँ सुविधा हो, यहाँ ठहरने की यात्री साइड भी यहाँ बन जाए ताकि यहाँ आराम करके दर्शन करके वापिस आ जाए लोग, और रेस्ट भी करना पड़े तो उनको काफी सुविधा हो जाए। यहाँ सरकारी जमीन है दोनों साइड, तो समस्या भी नहीं होगी बनाने में। बन रहा है जब खाटू श्याम जी के लिए ही बन रहा है। सुंदरपुरा तो एक छोटा गांव है, उसमें स्टेशन पहले हाल्ट स्टेशन हुआ करता था कभी यहाँ पे 30 साल पहले, तो वो बंद हो गया क्योंकि वहाँ टिकट नहीं कटती थी। उसका खाटू श्याम जी के लिए ये सौगात दी गई है, तो इसका नाम खाटू श्याम जी होना चाहिए उस हिसाब से कि पूरे देश भर से लोग जाने, टिकट कटाए तो कहाँ से कटाएंगे खाटू श्याम जी की।
0: उत्तर भारत के बड़े धार्मिक स्थलों में शामिल खाटू श्याम मंदिर में हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। खासतौर पर फागुन मेले, एकादशी पर तो यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसे में नया रेलवे स्टेशन तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
3: फायदा तो बहुत कुछ होगा, यहाँ के लोगों को पहली बार रोजगार मिलेगा, यात्रियों के लिए इतनी बड़ी सुविधा हो जाएगी। यहाँ पे स्टेशन आ गया, यहाँ से 11 किलोमीटर खाटू श्याम जी है। अगर बाई चांस ट्रेन निकल गई, कुछ भी मिस्टेक हो गई, तो यहाँ से 1 किलोमीटर मेन हाईवे 4 लाइन है, तो यहाँ से हर पूरे राज्य का पूरा साधन यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ से पूरी सुविधा मिल जाएगी। गांव वाले के लिए सुविधा बढ़िया, रोजगार मिल जाएगा, तो बहुत बढ़िया काम हो गया।
4: फायदा है, दुकान लगा भी लिए तो मेरी दुकानदारी बढ़ेगी,
5: बहुत फायदे होंगे। एक तो नजदीक रहेगा, फिर ये 4 लाइन बन रही है तो इससे यहाँ से क्या साधन, रेलवे स्टेशन से भी साधन मिल जाएंगे और ये ऑटो वाले ये 5 रुपए कमाना सीख जाएंगे और एकदम नजदीक है, यानी यात्री को बहुत सुविधा है। यहाँ से
6: जाने में दिक्कत नहीं होगी, भीड़ भड़क के में नहीं फंसेंगे। जयपुर वाले उधर रुक जाएंगे, सिक्कर इधर से लोहारू से आएंगे वो यहाँ रुक जाएंगे, 11 किलोमीटर नजदीक में। यहाँ व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी फायदा है, हमारे टैक्सी वाले के लिए भी फायदा है। कोई भी यहाँ लोग परेशान नहीं पाएंगे, जनता दुखी नहीं पाएगी। बाबा के नजदीक में मंदिर के पास में 11 किलोमीटर मर रहा है सावनपुरा, हमारे गोवर्धन सुंदरपुरा में मर रहा है रेलवे स्टेशन
7: रोड है, मतलब या तो आप उस पर पैदल ही जा सकते हो या आप व्हीकल लेके जा सकते हो। ये जो रोड है मंडा वाली, ये पूरा कवरेज लेती है और चौड़ी रोड है, तो उससे यातायात में सुगमता होगी और खाटू पहुंचने में बहुत जल्दी, मतलब जहां आपको रिंगस से आधा पौना 1 घंटा लगता था और दुर्घटनाओं की संभावना होती थी, वहां पे यहां पे इतनी दुर्घटना नहीं होगी।
1: चाह रहे हैं कि बड़ा स्टेशन बने, हालांकि प्लान अभी तक 2 प्लेटफॉर्म का था, पर जितनी यहाँ पे भीड़ आती है भक्तों की, तो उससे ये चाहा जा रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ा स्टेशन यहाँ पे बने जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग श्याम बाबा के दर्शन करने आ पाए। फायदा ये भी है कि जहां

0: रिंगस से 18 किलोमीटर उनको निशान लेके चलना पड़ता, वहीं यहाँ पे उनको महज 11 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है वो करनी पड़ेगी। 11 किलोमीटर यहाँ से दूर है, जिसमें अगर आप यहाँ से गाड़ी लेते हुए जा रहे हैं तो 7 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसके बाद में 12B का पार्किंग जो होती है वो आ जाएगी, और 7 किलोमीटर के आगे वो फिर और पैदल जो यात्रा है वो करके श्याम बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो एक सौगात है सभी भक्तों के लिए, एक खुशखबरी है सभी भक्तों के लिए कि जो भी गाड़ी से यहाँ पे आ रहे हैं या फिर लंबी पैदल यात्रा कर रहे हैं वो रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए यहाँ आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। जो भी दूर से आ रहे हैं उनके लिए बहुत फायदा है कि जयपुर या फिर आसपास का जो स्टेशन है उसके जगह वो डायरेक्ट खाटू श्याम पहुंच सकते हैं। कैमरामैन निखिल के साथ सुंदरपुरा, खाटू श्याम।
1: और अब आपको दिखाते हैं खाटू श्याम के धाम पर भक्ति और उत्सव की शानदार तस्वीरें। निर्जला एकादशी और उसके बाद द्वादशी के अवसर पर खाटू धाम में आस्था का विशाल संगम देखने को मिला। भीषण गर्मी के बावजूद लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर को विशेष फूलों और हरियाली से सजाया गया, लेकिन आपको बता दें कि वीकेंड होने की वजह से मेले जैसी रौनक रविवार तक रहने वाली है, इसलिए श्रद्धालुओं के लिए सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। भारी भीड़ देखते हुए पार्किंग और ट्रैफिक में भी बदलाव किए गए हैं।

केसर चंदन महके सजियो बाबा को दरबार, एकादशी की बेला में उमड़े हो भक्तन को प्यार। भीषण गर्मी, लंबी कतार, पैरों में थकान, फिर भी चेहरों पर मुस्कान, क्योंकि मंजिल कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि खाटू वाले श्याम का दरबार है। यहाँ पहुँचने वाला हर व्यक्ति अपने साथ एक उम्मीद लेकर आता है, किसी की आंखों में धन्यवाद है तो किसी के मन में नई कामना। यही वजह है कि हर कदम के साथ जयकारे और विश्वास दोनों बढ़ते जाते हैं। ये तस्वीर खाटू धाम में निर्जला एकादशी का दो दिवसीय मेले की है। गुरुवार को एकादशी और शुक्रवार को द्वादशी, कहने के तो मेले का समापन हो गया, पर वीकेंड की वजह से अभी भी देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। रिंगस से खाटू तक का रास्ता भक्ति के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। हजारों लोग पैदल चलते हुए बाबा के दरबार तक पहुँच रहे हैं। रास्ते भर भजन कीर्तन और जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। इस खास अवसर पर मंदिर को बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया है। हरियाली की सुंदर सजावट के साथ अलग अलग किस्म के आमों से दरबार को विशेष रूप दिया गया है। गुलाबी सतरंगी फूलों और ड्राई फ्रूट से बाबा का अलौकिक श्रृंगार भी किया गया। इसके लिए विशेष सामग्री कोलकाता से मंगाई गई। दर्शन करने वाले श्रद्धालु बाबा के मनमोहक रूप को देख भावुक हो रहे हैं। इन दिनों भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति ने व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे परिसर पर करीब 260 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। 400 स्थायी सुरक्षा कर्मियों के अलावा 600 निजी सुरक्षा गार्ड और 500 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। पुलिस की अतिरिक्त टीमें भी लगातार निगरानी कर रही हैं, ताकि दर्शन की व्यवस्था सुचारू बनी रहे। पदयात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिंगस से खाटू श्याम तक के रास्ते को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इस रास्ते पर केवल पैदल चलने वालों को अनुमति दी गई है। वाहनों की आवाजाही शाहपुरा होते हुए 52 बीघा पार्किंग की ओर मोड़ी गई है। इस व्यवस्था से श्रद्धालुओं की आवाजाही आसान बनाने की कोशिश की गई है। तेज गर्मी को देखते हुए सेवा कार्य भी बड़े स्तर पर चल रहे हैं। मंदिर समिति ने लगभग 10 लाख पानी के पाउच की व्यवस्था की है। इसके अलावा पानी के टैंकर, छायादार स्थान, बड़े कूलर और पंखे लगाए गए हैं। रास्ते में अलग अलग सेवा शिविर भी लगाए गए, जहां यात्रियों को ठंडा पानी और आराम की सुविधा मिल रही है। यही सेवा भाव इस मेले की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। निर्जला एकादशी का संबंध केवल व्रत से नहीं बल्कि खाटू धाम के इतिहास से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इसी अवधि में खाटू में बाबा श्याम का दिव्य शीश प्रकट हुआ था। मंदिर के पास स्थित श्याम कुंड को अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु यहां स्नान करने के बाद बाबा के दर्शन करते हैं। लोक विश्वास है कि इससे दुख दूर होते हैं और जीवन में नई ऊर्जा मिलती है।

खाटू श्याम को महाभारत के महान योद्धा वीर बर्बरिक का स्वरूप माना जाता है। कथा के अनुसार युद्ध से पहले उन्होंने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया था। उनके अद्भुत त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कलयुग में अपने नाम श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया। इसी कारण उन्हें शीश के दानी और हारे का सहारा कहा जाता है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार कलयुग की शुरुआत में खाटू की भूमि पर एक गाय अपने आप दूध बहाने लगी थी। जब उस स्थान की खुदाई कराई गई तो वहां से वीर बर्बरिक का दिव्य शीश मिला। इसके बाद तत्कालीन शासक रूप सिंह चौहान ने विक्रम संवत 1027 में यहां मंदिर का निर्माण कराया। तभी से ये धाम करोड़ों लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मन्नत पूरी होने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा को निशान अर्पित करते हैं। कई परिवार हर साल यहां आकर धन्यवाद प्रकट करते हैं। कोई संतान सुख की कामना करता है तो कोई रोजगार की, और तो कोई परिवार की खुशहाली के लिए माथा भी टेकता है। हर चेहरे की अलग कहानी है, लेकिन विश्वास एक ही है। सीकर से हिमांशु शर्मा और रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ सुनिए।

0: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up Strawberry Scented Sunscreen, Favorite Day Ice Cream in flavors like Cotton Candy and Orange Cream, Inflatable Fun for the Pool, Elf Beauty's Best, and Levi's Denim Shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
2: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
3: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: एआई की मदद से दौड़ेंगे सेना के टैंक, रोबोटिक वॉरियर संभालेंगे जंग की कमान, सेना के बैटल टैंक का कायाकल्प। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
11: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
12: आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए शानदार खबर, 19 जून को खत्म हुए सप्ताह में बढ़ा देश का विदेशी मुद्रा भंडार, 96,30,00,000 की हुई बढ़ोतरी। पीएम मोदी 3 दिनों के सेशल्स के दौरे पर रवाना, दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र वाले जीव जोनाथन से भी मुलाकात करेंगे, 194 साल है कछुए की उम्र। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 353वीं वर्षगांठ आज नागपुर में मनाया जा रहा है जश्न, जय भवानी जय शिवाजी के नारों से गूंजा माहौल। दक्षिण पश्चिम मानसून अब मध्य भारत में हो रहा है मजबूत, उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश के आसार, शाम तक दिल्ली NCR में भी मौसम बदलने के आसार। चाइना की राजधानी बीजिंग में प्रकृति का चमत्कार, 800 साल पुराने बीज से उगाया गया दुर्लभ कमल, लोटस कल्चर फेस्टिवल में लगाई प्रदर्शनी। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने किया बड़ा ऐलान, अगले साल भारत आ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील जल्द होगी फाइनल।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
12: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फैक्ट चेक में, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना इसे जांचे हुए, बिना इसे परखे हुए सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है और नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना इसे परखे सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आप देखते रहिए फैक्ट चेक। फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 जून को बिहार के भोजपुर में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर को लेकर राज्य की सम्राट चौधरी सरकार की आलोचना की है। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आपको आगे बताएंगे। तो वहीं हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि ये वही जहाज है जिस पर ओमान के समुद्री इलाके में अमेरिका ने हमला किया था, इस पर भारतीय नागरिक सवार थे। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, ये भी आपको आगे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
12: बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर को लेकर राज्य की सम्राट चौधरी सरकार की आलोचना की है और ये बयान दिया गया है। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती है हमारी ये रिपोर्ट, देखिए।
8: बिहार के भोजपुर में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी नामक युवक के एनकाउंटर का मामला काफी गर्मा गया है। भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग अब धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी है। लगातार लोग उसको न्याय दिलाने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि इस केस में पुलिस ने मारे गए सामाजिक कार्यकर्ता भरत तिवारी के घर वालों की शिकायत के आधार पर SDPO राजेश शर्मा और थानेदार राजेश मालाकार समेत बाकी पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। वही परिवार के खिलाफ दर्ज FIR पुलिस ने वापस ले ली है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बिहार में आए सियासी भूचाल के बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो किसी एनकाउंटर की बेहद तल्ख शब्दों में आलोचना करते दिख रहे हैं।
13: मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है?
8: वायरल हो रहे इस वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, पहले वो आप सुनिए।
13: ये कहीं होता है देश में, दुनिया में कहीं कोई होता है तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहाँ के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से। अपराधियों का सफाया, मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए।
8: नीतीश कुमार एनकाउंटर की सख्त आलोचना करते हुए पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं
13: कि अगर किसी को ये भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा होगी, फांसी हो जाती है, लेकिन बाकी को कोई साल तक का होता है, कितने तक का होता है सजा? लेकिन वो कोई उसको निकलेगा, बीमार हो गया, कोई कहीं जाएगा तो उसको ऐसे होगा?
8: एक फेसबुक यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि भोजपुर भरत एनकाउंटर पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान कोर्ट सजा दे सकता है, फांसी दे सकता है।
13: तो वहाँ के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से। अपराधियों का सफाया, मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए।
8: RJD के कुछ नेता इस वीडियो के जरिए तंज कसते हुए नीतीश कुमार के पाला बदलने की संभावना की तरफ इशारा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर RJD प्रवक्ता एजिया यादव ने इसे पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार में मौसम का हाल बाद में पता चलता है, लेकिन नीतीश जी का मन डोलने की चर्चा पहले शुरू हो जाती है।
13: बीमार हो गया, कोई कहीं जाएगा तो उसको ऐसे होगा? ये तो कभी नहीं होना चाहिए।
8: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसे तेजी से वायरल किया जा रहा
13: है। इसके बाद अगर कोई बोलता है, इसका मतलब
12: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर सवाल उठाए हैं। वीडियो में नीतीश कुमार ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी इस तरह से बाहर जाए तो उसको ऐसे मार दें, ये तो बड़ा दुखद बात है ना। जो भी हुआ है वो एक अलग विषय है, लेकिन किसी को इस तरह से रास्ते में मार देना, मतलब पुलिस को देखना ना चाहिए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। बता दें बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव से 17 जून को भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद राज्य में सियासी बवाल मचा हुआ है और ऐसे में इसी एनकाउंटर को लेकर नीतीश कुमार का ये बयान वायरल होने से लोग नीतीश कुमार के पाला बदलने की संभावना की तरफ इशारा कर रहे हैं। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की है। भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है और ऐसे में अगर नीतीश कुमार ने सचमुच इस पर सवाल उठाने वाला कोई बयान दिया होता तो सभी जगहों पर इसकी चर्चा होती, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इसके अलावा फैक्ट चेक की टीम ने नीतीश कुमार के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाला है, लेकिन हाल फिलहाल में हमें दावे को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा है। पहला सवाल ये, अगर कि दावा सच है तो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बयान कब और कहां दिया? आपको बता दें दूसरा सवाल भी इसको लेकर उठ रहा है, जो ये है कि किसी और घटना से संबंधित पुराने बयान को भरत तिवारी एनकाउंटर से जोड़कर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है।
8: वायरल हो रहे दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक समाचार एजेंसी के एक्स अकाउंट पर मिला। 17 अप्रैल 2023 को ये वीडियो शेयर किया गया था। कैप्शन के मुताबिक ये बात नीतीश कुमार ने प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या को लेकर कही थी।
13: उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं।
8: उस वक्त नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे और राज्य में महागठबंधन की सरकार थी। तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अतीक और अशरफ की हत्या को स्क्रिप्टेड बताया था। दोनों ने यूपी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए थे। उस वक्त नीतीश और तेजस्वी के इन बयानों के बारे में मीडिया में काफी चर्चा हुई थी।
13: हमारा ये है कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है।
8: इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो अप्रैल 2023 का है जब नीतीश कुमार ने यूपी के गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या पर प्रतिक्रिया दी थी। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
12: सोशल मीडिया पर एक जलते हुए जहाज का वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि ये वही जहाज है जिस पर ओमान के समुद्री इलाके में अमेरिका ने हमला किया था और इस पर भारतीय नागरिक सवार थे। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
8: सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक जहाज में आग लगी हुई नजर आ रही है, उसके काले धुएं आसमान में देखने को मिल रहे हैं। वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह वही जहाज है जिस पर ओमान के समुद्री इलाके में अमेरिका ने हमला किया था। इस पर भारतीय नागरिक सवार थे। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि ये वही जहाज है जिस पर ओमान के समुद्री इलाके में अमेरिका ने हमला किया था। इस पर भारतीय नागरिक सवार थे। इसमें 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी दावे के साथ शेयर हो रहा है। लोग वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर इसे लगातार वायरल कर रहे हैं।
12: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में एक जहाज में आग लगी हुई नजर आ रही है, उसके काले धुएं आसमान में देखने को मिल रहे हैं। वीडियो को शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि ये वही जहाज है जिस पर ओमान के समुद्री इलाके में अमेरिका ने हमला किया था और इस पर भारतीय नागरिक सवार थे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है और ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ जानना जरूरी हो गया है। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे की पड़ताल की है। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल की, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इसके अलावा वीडियो में जो जहाज नजर आ रहा है उस पर स्काईलाइट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अमेरिका ने जिस जहाज पर हमला किया था उसका नाम एम्प्टी सटेबेलो था। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा है। आपको बता दें, पहला सवाल ये कि वायरल हो रहे वीडियो में ये कब और कहां का है। दूसरा सवाल ये है कि जानबूझकर कहीं वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है।
8: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक रिपोर्ट मिली। ये रिपोर्ट 2 मार्च 2026 को प्रकाशित की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में छठे जहाज को निशाना बनाया गया। इस जलडमरू मध्य को ईरान ने बंद घोषित कर दिया है। ये कदम शनिवार को अमेरिका और इसराइल के किए गए हवाई हमलों के जवाब में उठाया गया, जिनमें ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारे गए थे। आगे की पड़ताल में हमें एक और आधिकारिक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में बताया गया था कि 1 मार्च की सुबह बिना किसी चेतावनी के टैंकर MKT व्योम के इंजन रूम में जबरदस्त धमाका हुआ। जबरदस्त शॉक वेव और आग का गोला उठा। बेसिस उन पहले जहाजों में से एक पर काम करने वाले नाविक थे जिन पर ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल के हवाई हमलों के दौरान ओमान की खाड़ी में जानलेवा हमला हुआ था। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो मार्च 2026 का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
12: और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ हो रहा है। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़। और
0: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up Strawberry Scented Sunscreen, Favorite Day Ice Cream in flavors like Cotton Candy and Orange Cream, Inflatable Fun for the Pool, Elf Beauty's Best, and Levi's Denim Shorts. Summer's Best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
14: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
15: Drive home a new 2026 Subaru Outback with 0.9% APR financing for up to 48 months.
14: We'll give you top dollar for your trade, and we will not be undersold. If you come in to buy a car, we'll do whatever it takes to earn your business. Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru. By the airport.
16: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
17: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
18: somebody save me,
17: to timeless favorites,
18: life is like a song,
17: and new discoveries.
18: So much more than a history. Wake up.
17: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
19: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
19: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और अब वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
2: कभी किसी के घर जा रही अपने घर नहीं रह सकती, कभी किसी को अपने ही घर ले आती है।
3: सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो सामने आते हैं, लेकिन कुछ वीडियो अपनी सादगी और मासूमियत की वजह से सीधे लोगों के दिल तक पहुंच जाते हैं। ये वीडियो भी उन्हीं में से एक है जिसने हंसी के साथ साथ बचपन की प्यारी यादें भी ताजा कर दी। वीडियो में एक माँ अपनी बेटी को समझाती हुई नजर आती है। माँ प्यार से शिकायत करती है कि वो हर समय बाहर खेलने चली जाती है, कभी अपने सहेलियों को घर बुला लेती है तो कभी खुद उनके घर पहुंच जाती है। माँ बच्ची से कहती है कि उसे थोड़ा समय घर पर भी बिताना चाहिए और हर वक्त बाहर निकलना ठीक नहीं है।
2: बिल्कुल नहीं ला सकते आप अपनी फ्रेंड को घर,
4: और बाहर ही खेल सकते हैं।
2: बाहर खेल सकते हो, बिल्कुल खेल सकते हो, लेकिन टाइम होता है हर चीज का खेलने का। ऐसे नहीं कि आप कभी भी चले जाओ किसी के घर पे।
3: माँ की बात सुनकर बच्ची पहले तो भावुक हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद वो अपनी मासूम आवाज से ऐसा जवाब देती है जिसे सुनकर हर कोई मुस्कुरा उठता है। बच्ची कहती है, क्या मैं अपने दोस्तों को भी नहीं बुला सकती? जब माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि हर समय बाहर जाना अच्छी बात नहीं है, तब बच्ची तुरंत जवाब देती है, जब आप जाती हो तभी तो मैं भी जाती हूँ। बेटी की यह जवाब सुनकर माँ खुद भी हंस पड़ती है।
4: हाँ, तो जब आप जाते हो तभी तो मैं भी जाती हूँ।
3: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक छोटे बच्चे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अपनी गजब की फुटबॉल स्किल से इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है। वायरल क्लिप में ये बच्चा जिस अंदाज में फुटबॉल को अपने इशारों पर नचा रहा है उसे देखकर पब्लिक हैरान है और उसकी तुलना दुनिया के महान फुटबॉल खिलाड़ियों से कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये बच्चा फुटबॉल के साथ कमाल के करतब दिखा रहा है। ये फुटबॉल को एक पल के लिए भी जमीन पर गिरने नहीं देता और लगातार हवा में ही उसे पैरों से कंट्रोल करता रहता है। बच्चे का ये बैलेंस और फुटवर्क देखकर अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी हैरान रह जाएंगे। बेटी जब अपने माता पिता के सपने पूरे करती है तो वो पल सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि देखने वालों के लिए भी खास बन जाता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बेटी अपने माता पिता को उनकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप का सरप्राइज देती है। माँ का मासूम रिएक्शन लोगों का दिल जीत रहा है। इस वीडियो को लेकर लोगों का खूब प्यार भी मिल रहा है।
2: क्या लिखा है?
3: सोशल मीडिया पर इन दिनों दिल्ली के कनॉट प्लेस का एक भावुक वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स सड़क किनारे बैठकर बांसुरी बजाते नजर आ रहा है। उसकी मधुर धुन सुनकर राहगीर रुक रुक कर उन्हें देख रहे हैं। खास बात यह है कि उनके पास रखा एक बोर्ड लोगों का दिल छू रहा है जिस पर लिखा है कि भिखारी नहीं हूँ, संगीत की सहायता से मैं आपकी आत्मा छूना चाहता हूँ। इस वीडियो को लाखों लोग पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा डॉग छाया हुआ है जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। इस कुत्ते का नाम ओका है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में ओका को फ्लाइंग डॉग के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे की वजह खास है। बता दे कि ओका पैराग्लाइडिंग करता है। पहली बार में इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर अक्सर ओका के उड़ान भरते हुए फोटोज और वीडियोस वायरल होते रहते हैं। हाल ही में ओका का एक नया वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह अपने मालिक के साथ फ्रांस के खूबसूरत पहाड़ी इलाके कोल डू ग्रानेन के ऊपर पैराग्लाइडिंग करता दिखाई दे रहा है। वीडियो में ओका पूरी तरह आराम से बैठा नजर आता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह आसमान की सैर का पूरा मजा ले रहा हो। उड़ान के दौरान उसका मालिक भी उसे प्यार से थपथपाता दिखाई देता है। ऐसे में अब ये वीडियो एक बार फिर लोगों का दिल जीत रहा है। अक्सर कहा जाता है कि बेजुबान जानवर भी इंसानों की तरह ही भावनाएं महसूस करते हैं और ये वीडियो इस बात का जीता जागता सबूत है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स सोफे पर बैठकर अपने छोटे से बच्चे को बड़े प्यार से दुलार रहा है। वहीं पास में फर्श पर उसका पालतू कुत्ता बैठा है। बच्चे को मिल रहे प्यार को देखकर डॉगी का चेहरा ऐसा उतर गया मानो उसका दिल ही टूट गया हो। उसे लग रहा है कि बच्चे के आने से उसका प्यार बढ़ गया है। वीडियो में सबसे ज्यादा भावुक करने वाली बात डॉगी के चेहरे का एक्सप्रेशन है। उसकी आंखें पूरी तरह से डबडबाई हुई है और वो बिना पलक झपकाए बस अपने मालिक को देखे जा रहा है। मालिक अपने बच्चे में खोया हुआ है और इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसका वफादार दोस्त बगल में बैठकर रोने को हो रहा है। वीडियो के आखिर में जब कैमरे को डॉगी की आंखों पर जूम किया जाता है तो साफ दिखाई देता है कि वो कितना उदास है। ऐसा लगता है कि वो बस अभी रो पड़ेगा मानो अपने मालिक से कह रहा हो कि एक बार मुझे भी देख लो। कुत्ते, बिल्ली, मछली, तोता और चिड़िया तक आपने न जाने कितने जानवरों और पक्षियों को घरों में प्यार मिलता देखा होगा। इनको लोग अक्सर अपना परिवार ही मानते हैं, लेकिन ऐसा ही लाड़ प्यार आपने किसी कौवे के लिए देखा होगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक महिला कुर्सी पर बैठी है, उनकी गोद में कौवा है। उल्टे लेटे कौवा को ये महिला गुदगुदी करके वैसे ही खिला रही है जैसे किसी बच्चे को प्यार दिखाया जाता है। इस दौरान कौवा भी प्रतिक्रिया ऐसे दे रहा है जैसे वो एक बच्चा ही हो। इस वीडियो में कौवा को पिंजरे में नहीं रखा गया है और अगर ऐसा किया जाए भारतीय प्रजाति के कौवों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बंदर का मजेदार वीडियो लोगों को खूब मनोरंजन कर रहा है। वीडियो में बंदर सीढ़ियों से उतरने के बजाय रेलिंग पर फिसलते हुए नीचे आ रहा है। उसका स्टाइल और बेफिक्र अंदाज देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। यही वजह है कि ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बंदर का अनोखा स्टंट लोगों का दिल जीत रहा है और इंटरनेट यूजर्स इसे बार बार देखकर खूब एंजॉय कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नन्हे हाथी का बेहद प्यारा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी का बच्चा किसी छोटे बच्चे की तरह बेफिक्र होकर खेल रहा है। वह पानी से भरे गड्ढे में बार बार कूदता है और अपनी सूंड से पानी उड़ा रहा है। उसकी खुशी और उत्साह वीडियो को और भी खास बना रहा है।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
2: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
0: के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
7: यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने बजाया डंका, देविका सिहाग, रौनक चौहान और किदांबी श्रीकांत ने सेमीफाइनल में पक्की की जगह। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए शानदार खबर, 19 जून को खत्म हुए सप्ताह में बढ़ा देश का विदेशी मुद्रा भंडार, 96 करोड़ 30 लाख डॉलर की हुई बढ़ोतरी। दक्षिण पश्चिम मानसून अब मध्य भारत में हो रहा है मजबूत, उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश के आसार, शाम तक दिल्ली एनसीआर में भी मौसम बदलने के आसार। चाइना की राजधानी बीजिंग में प्रकृति का चमत्कार, 800 साल पुराने बीज से उगाया गया दुर्लभ कमल, लोटस कल्चर फेस्टिवल में लगाई प्रदर्शनी। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने किया बड़ा ऐलान, अगले साल भारत आ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील जल्द होगी फाइनल।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे आपकी जन्म की तारीख कितनी महत्वपूर्ण है और आपके करियर में आपकी डेट ऑफ बर्थ का, आपकी जन्म की तारीख का कितना महत्व है। यानी जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है उसके हिसाब से एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका करियर किस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। अगर जीवन में कोई आशंका हो कि कोई दुर्घटना घटने वाली है, कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ बुरा हुआ है और आगे और भी बुरा होगा, ऐसी अगर कोई भी संभावना है तो ये मंत्र रोज शाम को 108 बार पढ़िएगा। किसी भी तरह के होने वाले अनिष्ट से, किसी भी तरह की दुर्घटना से ये मंत्र आपकी रक्षा करेगा और आपको बचाएगा। राहु की अगर महादशा चल रही है या राहु की अगर अंतर दशा चल रही है तो ऐसी स्थिति में भी आप इस मंत्र का नियमित रूप से जप कर सकते हैं। रोज शाम को अगर इस मंत्र का जप करें और भैरव देव से कृपा की प्रार्थना करें तो राहु की बाधाएं दूर हो जाएंगी। देखिए, कुंडली जब हम देखते हैं, समझते हैं, तो उसमें बड़े सारे तरीके होते हैं कि दशम भाव, नवांश की स्थिति, दशमांश की स्थिति, ये सब आपके करियर के बारे में बताती है। लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ का, आपकी जन्म की तारीख का आपके करियर से संबंध होता है। क्या संबंध है? देखिए, आपकी जन्म की तारीख का संबंध किसी एक विशेष ग्रह से होता है। सूर्य से, चंद्र से, मंगल से, राहु से, किसी न किसी ग्रह से आपके जन्म की तारीख का संबंध होता है और उसी ग्रह पर व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से निर्धारित होता है। जो आपकी जन्म की तारीख है ये आपके व्यक्तित्व पर, आपके सोचने समझने पर और आपके काम करने पर असर डालेगा। उसी ग्रह से संबंधित रखता हुआ करियर, संबंध रखता हुआ करियर व्यक्ति अपने जीवन में चुन लेता है या उसके जीवन में आ जाता है। हालांकि इसके बड़े सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन मोटे तौर पे जो नंबर आपके जीवन में जन्म की तारीख से जुड़ा हुआ है उससे संबंधित करियर आपके जीवन में आ जाता है। अगर आप अपने अंक से मिलता जुलता करियर नहीं चुनते या एकदम अपोजिट करियर में चले जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में बाधा आ जाती है, व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। केवल जन्म की तारीख का ही नहीं, अलग अलग वर्षों के और अलग अलग महीनों के अंक भी होते हैं।
जिनका प्रभाव आपके करियर पर पड़ता है। जन्म की तारीख तो असर डालेगी ही डालेगी, सबसे ज्यादा डालेगी, लेकिन किस साल में आपका जन्म हुआ है, किस महीने में आपका जन्म हुआ है, उसका जो अंक है, उसका जो नंबर है, ये भी आपके जीवन पर, आपके करियर पर असर डालेगा। सबसे पहले बात करते हैं नंबर एक की। अगर आपका जन्मदिन, जन्म की तारीख किसी भी महीने की एक तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है या 28 तारीख है, तो आपके करियर का हाल क्या है? इसका अंक हो गया एक, और आपके अंक का संबंध है सूर्य के साथ। इनकी शिक्षा में सामान्य रूप से बाधाएं आती हैं, बार बार कॉलेज बदलना या जगह परिवर्तन करके नई जगह पर जाना, ये एक अंक वालों में आपको दिखाई देगा। जो एक अंक वाले हैं, इनको शासन का क्षेत्र, प्रशासन का क्षेत्र, चिकित्सा और राजनीति का क्षेत्र फायदा पहुंचाता है। अगर किसी की जन्म तारीख 10 होती है या 19 होती है, तो उसके प्रशासन में जाने के या पुलिस में जाने के, मेडिकल में जाने के योग ज्यादा होते हैं। और अगर आपके जन्म की जो पूरी तारीख है, अगर उसमें कहीं पर 1-3 आ गया या 3-1 आ गया, तो आप शिक्षा या ज्ञान के क्षेत्र में ऊंचाई तक जाएंगे। यानी एक अंक के साथ जिस अंक का कॉम्बिनेशन बनेगा, उससे संबंधित करियर भी आपका हो सकता है। केवल एक अंक नहीं, उसके साथ जुड़ा हुआ नंबर भी आपका करियर बना सकता है। एक अंक वालों की बड़ी खास बात है कि ये जिस क्षेत्र में रहते हैं, नेतृत्व करते हैं, जो सूर्य का गुण है लीड करना, अगर छोटे क्षेत्र में हैं, तो वहां भी नेतृत्व करेंगे, वहां भी लीड करेंगे, ये संभावना इनके जीवन में रहती है। और बहुत जल्दी अपना करियर शुरू करते हैं। आम तौर पर एक अंक वाले 19 साल की उम्र में, या ज्यादातर देखा गया है 24 साल की उम्र में अपना करियर शुरू कर लेते हैं। इस समय के आसपास इनका करियर शुरू हो जाता है। अगर आपका अंक एक है, तो ये बात पक्की है कि आप करियर के जिस क्षेत्र में रहेंगे, वहां पर उच्चाधिकारी के साथ तालमेल में दिक्कत होगी, क्योंकि आप हैं एक अंक वाले।

वालों की, अगर आपकी जन्म तारीख किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 या 29 तारीख है तो क्या होगा? देखिए, आपके अंक का संबंध है चंद्र के साथ। वैसे तो देखिए 4 नंबर हो गए ना कुल मिला के, 2, 11, 20 और 29। इसमें जो 29 का अंक है और जो 20 का अंक है, इस पर चंद्रमा का इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है। ये अंक चंद्रमा के अंक हैं, बहुत मेहनती होते हैं आम तौर पर और काफी परिश्रम से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। 2 अंक वालों को आप देखेंगे कि बचपन से ही थोड़ा सा कला के क्षेत्र में, लिखावट के क्षेत्र में, मेडिकल में, यात्राओं के क्षेत्र में ये काम करना चाहते हैं। ये थोड़ा सजना संवरना, थोड़ा मेंटेन होना, थोड़ा डिसिप्लिन में रहना, ये इनको अच्छा लगता है। 2 अंक वाले फिल्म में भी दिखेंगे, चिकित्सा में भी दिखेंगे, नेवी, शिक्षा, खान पान के क्षेत्र में ये ज्यादा दिखाई देंगे। लेकिन 2 अंक वालों में जिनकी डेट ऑफ बर्थ 20 तारीख है, उनके कलात्मक होने के, आर्टिस्टिकल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जो 2 का ये ग्रुप है, 2, 11, 20 और 29, उसमें सबसे ज्यादा सफल 29 अंक वाले होते हैं। 29 वालों के सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। जिनकी जन्म तारीख 29 है वो दिखाई भी बड़े अच्छे देते हैं, कैरी अपने आप को बहुत अच्छा करते हैं और जिस क्षेत्र में जाते हैं अपने सद्व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से बड़ी सफलता पाते हैं। 2 अंक वाले बड़े अच्छे मैनेजर होते हैं। और वैसे तो देखिए इमोशनल नंबर है 2 का, चंद्रमा का नंबर है, लेकिन ये अपने दर्द को, अपनी मुश्किलों को अंदर दबाए रखते हैं, कठिनाइयों को सरलता से सुलझा लेते हैं। ये अपना कष्ट गिने चुने लोगों को बताएंगे, ज्यादातर लोग इनकी भावनाओं को, इनके कष्टों को नहीं जान पाते और ये बड़ी कुशलता से अपने आंसू पोंछते हुए कठिनाइयों को सुलझा लेते हैं। आम तौर पर जिनका 2 का नंबर होता है, उनके करियर की शुरुआत में विलंब होता है। होता क्या है कि ये शुरू में किसी और करियर की तरफ जाना चाहते हैं, जब वहां पे दिक्कत होती है तब अचानक से करियर ये 22-24 साल में बदलते हैं। और लगभग ऐसा देखा गया है कि 27-28 साल की उम्र में 2 अंक वालों का करियर शुरू होता है। देखिए 2 अंक वाले कला के क्षेत्र में जाएं, फिल्म में जाएं, एक्टिंग में जाएं, मीडिया में जाएं, फूड में जाएं, जहां पे केयर और नॉरिशमेंट होता हो, बच्चों से संबंधित क्षेत्र में जाएं, तो बड़े सफल होते हैं। करियर में सफलता के लिए इनको शिव जी की उपासना करनी चाहिए। अपने मन को मजबूत बनाना है, करियर में आगे बढ़ना है, रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाएं और नमः शिवाय का कम से कम रोज सुबह 108 बार अगर जप करें तो बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं नंबर 3 की। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 3 तारीख है, 11 है, 21 है या 30 है, तो आपका जो मुख्य नंबर है वो 3 का नंबर है। 3 अंक का संबंध होता है बृहस्पति के साथ, जुपिटर, ज्ञान के देवता। इसीलिए 3 नंबर वाले पढ़ने में बड़ा मन लगाते हैं। इनकी शिक्षा और बुद्धि की स्थिति आम तौर पर अच्छी रहती है, एजुकेशन में, ब्रेन में ये सफल होते हैं। जो 3 अंक वाले हैं उनकी जो सारी काबिलियत है वो 30 के नंबर में आती है।
30 नंबर जो है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 30 तारीख है उसमें 3 का अंक

0: एब्सोल्यूट होता है। जिनकी 21 तारीख है वो बड़े मेंटली ऊपर नीचे होते हैं, या तो मेंटली बड़े खुश होंगे या तो बड़े एग्रेसिव होंगे। और आम तौर पर 21 वालों की मुश्किल ये है कि वो अपने मन पर जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाते, तुनक मिजाज होते हैं। लेकिन अगर आपकी तारीख का संबंध 3 नंबर से आ गया तो शिक्षा में जाएंगे, धर्म में जाएंगे, कानून में, मीडिया में, समझाने और सलाह देने के क्षेत्र में 3 अंक वाले ज्यादा पाए जाते हैं। अगर कहीं पर भी आपकी जन्म की तारीख में 3 के साथ 2 का नंबर आगे पीछे आता है, आप पक्का मान के चलिए कि आप अपने क्षेत्र में धीरे धीरे बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, बशर्ते कि आप बार बार अपना सेक्टर चेंज ना करें। जिनकी भी तारीख 3 है और उसके साथ 2 का अटैचमेंट होता है, उनकी सफलता बड़ी प्रबल होती है और वो अपने क्षेत्र में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, जबरदस्त ज्ञानी होते हैं, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। 3 अंक वालों के साथ आप देखेंगे कि शुरुआत के जो 7-8 साल होते हैं ना, उसमें इनको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। योग्य बहुत होते हैं, काबिल बहुत होते हैं, लेकिन मौका इनको शुरुआत में नहीं मिल पाता, इसलिए करियर में आरंभ में बहुत संघर्ष करते हैं। आम तौर पर उम्र के मध्य पार्ट से 35-36 साल के बाद इनके करियर में बड़ी सफलता की शुरुआत होती है और 35-36 के बाद ये तेजी से तरक्की कर पाते हैं। अगर आपका नंबर 3 है और आप करियर में सफलता चाहते हैं तो भगवान विष्णु की उपासना, श्री हरि की उपासना आपको करनी चाहिए। खास तौर से रोज करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो सप्ताह में 1 दिन बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें या सुने तो आपको लाभ होगा। बात करते हैं 4 के अंक की। अगर आपकी जन्म की तारीख महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख है तो क्या मतलब है इसका? ये जो 4 का अंक है ये राहु का अंक है। 4 अंक का जो ग्रुप है, 4, 13, 22, 31, उसमें 22 जो नंबर है, 22 जो है, वो मैजिकल नंबर है, मास्टर नंबर है। जब किसी का नंबर 22 होता है तो भाग्य की विशिष्ट कृपा होती है उसके ऊपर, और अगर किसी का नंबर 13 होता है तो भयंकर बुद्धिमान और इंटेलिजेंट होने के बावजूद ये कंफ्यूज होते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। यानी 4 का अंक जबरदस्त खेल दिखाता है। आम तौर पर जिनका 4 का अंक होता है उनकी शिक्षा में उतार चढ़ाव बना रहता है, पढ़ाई ठीक करते हैं लेकिन बार बार पढ़ाई के लाइन में बदलाव करते हैं। ये पढ़ते कुछ हैं और करते कुछ हैं। पढ़ रहे हैं मेडिकल और काम करेंगे टीचिंग का, पढ़ रहे हैं कुछ और बन जाते हैं प्लेयर, तो ये बेसिकली पढ़ेंगे कुछ और करेंगे कुछ। 4 अंक वालों के लिए कंप्यूटर का क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र, ज्योतिष का क्षेत्र, रहस्यमयी विद्याओं का क्षेत्र और मार्केटिंग का क्षेत्र इनके लिए उत्तम रहता है। अगर आपकी जन्म तारीख में कहीं भी 4 के साथ 1 आ गया तो आप मान करके चलिए कि आपको करियर में अत्यधिक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। चार के आगे पीछे कहीं भी एक लग गया आपके जन्म तारीख में, आपको अपने करियर में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा और बिना सपोर्ट के अकेले दम पर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके जन्म तारीख में चार के साथ कहीं भी दो का अंक आ गया आगे पीछे, तो आप संघर्ष करेंगे शुरुआत में, बाद में मौज करेंगे, आराम करेंगे। चार अंक वालों का करियर कम उम्र में शुरू होता है, उम्र के 22 साल से या 24 साल से इनका करियर शुरू हो जाता है। चार के अंक वालों की मुश्किल ये है कि ये बार बार करियर में बदलाव करते हैं, रुकते नहीं, टिकते नहीं। ऐसा मत करिए, आप सोच समझ के करियर का चुनाव करिए, लेकिन एक बार जिस करियर में चले गए वहां पर लंबे समय तक टिकने का प्रयास करिए। बार बार नहीं बदलेंगे तो बेहतर होगा। और चार अंक वालों को हमेशा एक गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है करियर में आगे बढ़ने के लिए, उसका सहारा लेते रहिए। करियर में अगर सफलता चाहते हैं तो भगवान शिव की उपासना करें, रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाएं, नमः शिवाय का जप करें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं पांच के अंक की। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 5 तारीख है, 14 है, 23 है, तो आपका अंक है 5। 5 अंक के जो स्वामी हैं उन्हें कहते हैं बुध, मरकरी। आम तौर पर शिक्षा इनकी मध्यम रहती है, ठीक ठाक पढ़ाई कर लेते हैं। हालांकि पढ़ाई भले ही कम करें, बुद्धिमान बहुत होते हैं। 5 अंक वालों के लिए बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग और कॉमर्स का क्षेत्र हमेशा उत्तम रहता है, इन क्षेत्रों में ज्यादा सफलता पाते हैं। और 5 अंक वालों की पढ़ाई भले ही कम हो, भले ही थोड़ी हो, लेकिन बड़ी तेजी से ऊंचाई पर जाते हैं अपनी बुद्धि के दम पर। हर तरह की स्थिति करियर में, प्लस हो माइनस हो, उसको बड़ी बुद्धिमानी से मैनेज कर लेते हैं, बड़ी बुद्धिमानी से हल कर लेते हैं। अगर आपकी जन्म तारीख में 5 के साथ कहीं भी 1 का अंक आता हो, या 5 का अंक लगातार 2 बार अगल बगल में आ जाता हो, तो इसका मतलब ये है कि आप जीवन में अपनी बुद्धि के दम पर कुछ ना कुछ करेंगे। अगर आपके पास सपोर्ट नहीं होगा तो भी आप अपने परिवार को, जीवन को बेहतर तरीके से चला सकेंगे, आगे बढ़ा सकेंगे। 5 अंक वालों का करियर शुरुआत में कुछ और रहता है। शुरू करेंगे मान लिया एक क्लर्क की पोस्ट से, बाद में परीक्षा देकर ऑफिसर बन जाएंगे। शुरुआत करेंगे नौकरी के साथ, बाद में नौकरी छोड़कर बिजनेस में आ जाएंगे। यानी शुरुआत में कुछ और करियर रहता है और बाद में करियर बदलकर अच्छी जगह जाते हैं। 5 अंक वालों के साथ एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जिनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में अगर 5 का अंक आता है, तो आप ये मान कर चलिए कि वो आदमी बुद्धिमान है और सामान्य जगह पर होने के बावजूद भी वो अपने करियर को अच्छी तरह से हैंडल कर लेगा। करियर में सफलता के लिए 5 अंक वालों को गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। अगर ये गणपति की उपासना करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और याद रखिए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 का अंक भी नहीं आता, 3 का अंक भी नहीं आता, तब बुद्धि और दिमाग के मामले में हो सकता है जीवन में थोड़ी कमजोरी का सामना करना पड़े, लेकिन डेट ऑफ बर्थ में, पूरी डेट ऑफ बर्थ में 3 या 5 में से कोई भी एक अंक आ जाए तो आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान आपको जीवन की मुश्किलों से निकलने में सहायता करेगा। अब बात करते हैं नंबर 6 की, यानी अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 6 तारीख है, 15 है या 24 है, तो आपके अंक के जो स्वामी हैं उन्हें कहते हैं शुक्र। शुक्र का संबंध आपके अंक से होता है। शिक्षा के मामले में ये काफी परिवर्तन करते हैं। शुरू में कहेंगे मैं डॉक्टर बनूंगा, बाद में कहते हैं मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा। जब दोनों नहीं मिलती है नौकरी तो जो मिल जाती है वहां पहुंच जाते हैं। यानी ये बड़ा एडजस्ट करके आगे बढ़ते हैं, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो जो मिल रहा है वही ठीक है। ये बहुत प्रेशर नहीं पालते, जो मिल गया वो बेहतर है। और बहुत परिवर्तन करने के बाद किसी एक क्षेत्र में अपना रास्ता बना पाते हैं। जिनका अंक 6 का होता है उनके लिए फिल्म, मीडिया, चिकित्सा, रसायन यानी केमिकल, आभूषण, सौंदर्य और शिक्षा के क्षेत्र हमेशा इनके लिए बहुत बढ़िया होते हैं। अगर आपकी कुंडली में 6 का नंबर आता है, आपकी कुंडली में 6 के नंबर के साथ 1 का अंक आता है, आपकी आंख खराब होगी। 6 के अंक के साथ अगर 2 का नंबर आ जाता है, आपकी कला की समझ तो बहुत होगी लेकिन जीवन में बड़ी उम्र के बाद सफल होंगे। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं ना कि 24 नंबर जो है वो 6 के ग्रुप का सबसे ताकतवर नंबर है। हाथ पे 24 लिख के रखो, 24 लिख के टेबल पे लगा लो। देखिए 24 का जो अंक है वो मैजिकल है, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। वो बहुत सारी नकारात्मकताओं को, बहुत सारी निगेटिविटी को सोख लेता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर 24 का अंक प्रयोग करेंगे तो ये नंबर कंफ्यूजन भी पैदा करता है, निर्णय की क्षमता को घटा देता है। इसीलिए जहां गड़बड़ी है वहां 24 के नंबर का प्रयोग करिए, लेकिन हाथ में 24 का नंबर लिख लें, 24 का नंबर लिख करके गले में पहन लें, ये सब करने से हो सकता है आपको मेंटल कंफ्यूजन पैदा हो। जो 6 के अंक वाले लोग हैं इनका करियर जल्दी शुरू होता है। आम तौर पर उम्र के 20-22 साल से ये काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सफलता थोड़ी लेट से मिलती है, सफलता 35-36 साल के बाद मिलती है। देखिए 6 के अंक वालों के साथ आराम का करियर होना चाहिए। ये बहुत प्रेशर वाले करियर में काम नहीं करेंगे। जहां आराम से बैठें, आराम से काम कर सकें, वहीं 6 के अंक वाले रहेंगे। अगर आपने प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, तो ये धौंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, नौकरी छोड़ करके चल देंगे। बिजनेस भी वही करेंगे जहां सुबह 10 बजे से शाम के 8 बजे तक काम हो, बहुत प्रेशर ना हो, आराम से बैठे रहें, पैसा आता रहे। लेकिन 6 अंक वालों के साथ एक भगवान का वरदान भी ये है कि ये ज़्यादा कुछ ना करने के बावजूद बढ़िया घर पा जाते हैं, बढ़िया गाड़ी पा जाते हैं, जीवन में चैन से रहते हैं और जीवन में आराम से रहना इनका स्वभाव होता है और परमात्मा की कृपा से आराम वाला करियर इनको मिल भी जाता है। करियर में सफलता के लिए इनको लक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए। मेरी सलाह ये है कि रोज शाम को श्री सूक्तम का पाठ करिए या श्री सूक्तम सुनिए, और अगर रोज नहीं कर सकते तो कम से कम शुक्रवार की शाम को श्री सूक्तम का पाठ करने से लाभ होगा। अब बात करते हैं नंबर 7 वालों की। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 7 तारीख है, 16 तारीख है या 25 तारीख है, तो आपका नंबर 7 है। अब 7 तारीख का 7 अंक का स्वामी है केतु, और 7 नंबर का जो ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक नंबर है 25 यानी 25। जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 25 का हुआ या 25 आ गया उसकी डेट ऑफ बर्थ में, ऐसे लोग मेंटली इमोशनली हमेशा परेशान रहेंगे। सब कुछ सही होने के बावजूद उनका मन हमेशा चिंता करता रहेगा, हमेशा तनाव पालता रहेगा। 7 अंक वाले शिक्षा के मामले में मध्यम रहते हैं, पढ़ाई में ज्यादा मन लगता नहीं, ज्यादा कोशिश करते भी नहीं, उतना ही पढ़ेंगे जितना पढ़ के पास हो जाएं। लेकिन बुद्धिमान बहुत होते हैं, क्रिएटिव बहुत होते हैं, नए नए आइडिया निकालना, नई नई चीजों पे सोचना, पढ़ते बहुत हैं, साहित्य बहुत पढ़ेंगे, फिक्शन बहुत पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाई कम करेंगे, पढ़ाई उतनी करेंगे जितना पढ़ के पास हो जाएं। 7 अंक वालों के लिए इंजीनियरिंग का क्षेत्र अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, क्रिएटिविटी अच्छी है, फिलॉसफी या यात्राओं का क्षेत्र, टूरिंग ट्रेवल भी इनको सूट करता है। 7 अंक वाले लिखते बड़ा अच्छा है, ऐसा देखा गया है कि बड़े अच्छे राइटर, बड़े अच्छे फिलोसोफर अमूमन 7 वाले होते हैं। 7 का अंक क्रिएटिविटी और रहस्य पैदा करता है। अगर आपकी जन्म तारीख में 7 के साथ कहीं भी 1 का अंक आ गया, एक समय अर्श पर एक समय फर्श पर आएंगे, इसलिए 1771 अगर आपकी जन्म की तारीख में आ रहा है तो आप ऐसा कोई काम मत करिएगा कि ऊंचाई पर पहुंचने के बाद धरती पर आपको गिरना पड़े। और 1716 ये नंबर अगर जीवन में आपके है तो ये आंखों के लिए अच्छा नहीं होता, इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। करियर में आप बार बार उतार चढ़ाव का सामना करेंगे। अगर आपको ये भूत बार बार पकड़ेगा कि मैं अपना काम करूं, ये 7 वाले बार बार सोचते हैं, और इस चक्कर में क्या होता है कि नौकरी में गड़बड़ियां होती हैं, करियर में उतार चढ़ाव होता है, तो ऐसा लगता है कि 7 अंक वालों को एक समय तक शांति से अपनी नौकरी करनी चाहिए। जब नौकरी से आराम कर लें, नौकरी सेट हो जाए, तब आप अपना काम करिएगा, और एक ही समय पे एक ही काम करिएगा तो बेहतर होगा। करियर में सफलता के लिए शिव जी की उपासना करिए, क्योंकि मूडी आदमी है आप, आपका मन नहीं बैलेंस होगा तो चाहे लाखों रुपए मिलते हो आप तो नौकरी चुटकियों में छोड़ देंगे। तो भैया शिव जी की उपासना करिए, रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाइए, नमः शिवाय पढ़िए, बुद्धि स्थिर रहेगी तो आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 8 तारीख है, 17 तारीख है, 26 तारीख है, तो आपका नंबर हो गया 8। 8 अंक को ज्यादातर लोग नकारात्मक कहते हैं, बुरा कहते हैं, इनका करियर कैसा होता है वो समझते हैं। देखिए, आपके जन्म की तारीख का संबंध है शनि के साथ, 8 अंक के स्वामी हैं शनि। शिक्षा की स्थिति 8 अंक वालों की आम तौर पर अच्छी होती है, लेकिन रुक रुक कर टूट टूट कर आगे बढ़ती है। जैसे ग्रेजुएशन कर लिया, नौकरी करे कुछ दिन, 1 साल 2 साल, फिर आगे पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर पढ़ाई की, फिर नौकरी किया, इस तरह से थोड़ा रुक रुक के काम कर करके ये पढ़ाई करते हैं। अक्सर देर ही होती है शिक्षा में, लेकिन मनचाही शिक्षा पा जाते हैं। अगर इन्होंने बचपन से सोचा है कि हमें मैनेजमेंट में जाना है तो देर सवेर ये वहां पहुंचेंगे ही, मनचाही शिक्षा पाएंगे ही। 8 अंक वालों के लिए फैक्ट्री, इंडस्ट्री, लोहा, कोयला, शिक्षा, कानून, राजनीति, यूनियन के अध्यक्ष, इस तरह की चीजें इनके जीवन में होती हैं। अब 8 के ग्रुप के 3 नंबर है ना, 8, 17 और 26, उसमें जो 26 का नंबर है वो नंबर आदमी को जबरदस्त क्रिएटिव बनाता है। 26 का जो अंक है, इनके जीवन में संघर्ष तुलनात्मक रूप से कम होता है, और 8 के ग्रुप में 26 का नंबर करियर के मामले में और जीवन के मामले में जल्दी सफलता पा जाता है। अगर आपकी जन्म की तारीख में 8 के अंक के साथ कहीं भी 1 का अंक आ गया, दुर्घटनाओं से सावधान रहिए। 18 आ गया, 81 आ गया तो दुर्घटनाओं से सतर्क रहें। अपने मन से तेज गाड़ी चलाना, बिजली का काम करना, ये सब करने से 1881 वालों को बचना चाहिए। करियर की शुरुआत 8 अंक वालों की जल्दी होती है, लेकिन सफलता इनको मिलती है आम तौर पर 40 के बाद, 40 के बाद ही ये ज्यादा सफल हो पाते हैं। अगर आपका अंक 8 का अंक है तो करियर में सफलता के लिए शनिदेव की उपासना करिए। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अंक 9 की बात करते हैं। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 9 तारीख है, 18 है या 27 है तो आपका नंबर है 9 और 9 अंक के स्वामी हैं मंगल। यानी आपके जन्म की तारीख का संबंध है मंगल के साथ। शिक्षा की स्थिति 9 अंक वालों की मध्यम यानी एवरेज होती है और अलग तरह की शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में चले गए, खाना बनाने की शिक्षा ले रहे हैं, कपड़े सिलने की शिक्षा ले रहे हैं, कुछ अलग तरह की एजुकेशन नॉर्मल एजुकेशन से हट करके लेते हैं। 9 अंक का स्वामी मंगल है ना, तो ये कहीं भी रहेंगे वहां फोर्स बहुत होगा, वहां ताकत बहुत होगी। इनके लिए सेना, पुलिस, प्रशासन, फैक्ट्री, जमीन और मेहनत वाले क्षेत्र उत्तम होंगे। ये कहीं भी काम करें, नौकरी करें, व्यापार करें, दूसरों के ऊपर शासन करते हैं, अपना आदेश थोपते हैं और दूसरों को अपनी बात मनवाते हैं। अगर 9 अंक वाले टीचर भी होंगे ना तो बिना डंडे के बात नहीं करेंगे, चीखना चिल्लाना डांटना फटकारना उनकी आदत में होगा। और 9 अंक वाले अगर मंत्र पढ़ेंगे तो थोड़ा तेज आवाज में पढ़ेंगे। मंगल का जो फोर्स है वो इनके करियर में, इनके जीवन में दिखता है। जब किसी की जन्म की तारीख में 9 के साथ 1 आ जाता है आगे पीछे, तो आप समझ लीजिए कि उस आदमी के अंदर एनर्जी भयंकर है और अगर उसकी एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो जीवन में दुर्घटनाओं का, चोट चपेट का शिकार हो सकता है। 9 अंक वालों का करियर काफी जल्दी शुरू होता है, अमूमन 18-19 साल के बाद ये काम शुरू करते हैं और बढ़िया काम करते हैं। बस इनका ये है कि जो इनके अंदर के लोग हैं कोई इनका विरोध ना करे, कोई इनके खिलाफ ना बोले तो सब कुछ बढ़िया रहता है, लेकिन जहां इनके विरुद्ध बोला तो या तो ये झंझट पैदा कर देंगे या इनके लिए झंझट पैदा हो जाएगा। अगर आपका अंक 9 का अंक है और आप करियर में सफलता चाहते हैं, बिल्कुल आसान काम है। थोड़ा सा टेम्परामेंट को बैलेंस रखिए, हर जगह क्रोध और टेम्परामेंट से काम नहीं चलता। करियर में सफलता के लिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। अगर आप हनुमान जी की पूजा करें, ज्यादा कुछ ना करें, सुबह शाम हनुमान चालीसा ही पढ़ लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
2: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk. No fluff with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
3: AI की मदद से दौड़ेंगे सेना के टैंक, रोबोटिक वॉरियर संभालेंगे जंग की कमान, सेना के बैटल टैंक का कायाकल्प। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: एआई की मदद से दौड़ेंगे सेना के टैंक, रोबोटिक वॉरियर संभालेंगे जंग की कमान, सेना के बैटल टैंक का कायाकल्प देखिए रणक्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
3: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: और अब बात कुछ ऐसे वीडियोस की जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ आपको भावुक कर जाएंगे, तो कुछ को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि क्या ऐसा भी होता है।
12: कुछ लोग नियमों से नहीं अपने मूड से चलते हैं, फिर चाहे सामने नई सड़क बन रही हो या रास्ता बंद हो। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक शख्स बिना किसी परवाह के ताजा बनी सड़क पर निकल पड़ता है। आसपास मौजूद लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंकल अपने ही धुन में आगे बढ़ते रहते हैं। उनका बेफिक्र अंदाज देखकर लोग हंसी नहीं रोक पा रहे और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इंसान और पक्षी के बीच भरोसे का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है, इसका खूबसूरत उदाहरण ये वीडियो है। आसमान में उड़ रही एक चील बच्चे के इशारे पर नीचे आकर उसके हाथ पर बैठ जाती है। दोनों के बीच तालमेल और आत्मविश्वास देखने लायक है। सोशल मीडिया पर लोग इस नज़ारे को खूब पसंद कर रहे हैं। कई यूजर्स बच्चे के हुनर और पक्षी के साथ उसके अनोखे जुड़ाव की तारीफ कर रहे हैं।

0: दया, संस्कार और अपनापन उम्र नहीं देखते। वायरल वीडियो में छोटा बच्चा बड़े प्यार से गाय को अपने हाथों से खाना खिलाता दिखाई देता है। गाय भी बिना घबराए आराम से उसके हाथ से भोजन करती है। बच्चे के चेहरे पर डर नहीं बल्कि अपनापन साफ नजर आता है। सोशल मीडिया पर लोग इस प्यारे पल को खूब पसंद कर रहे हैं और बच्चे के संस्कारों की जमकर सराहना कर रहे हैं। जब परेशानी बड़ी हो तो देसी दिमाग भी कमाल कर जाता है। बारिश नहीं हुई तो किसान ने खेत तक पानी पहुंचाने का ऐसा जुगाड़ लगाया कि लोग हैरान रह गए। बांस के सहारे खुद को बांधकर वो साथियों की मदद से एक खेत से दूसरे खेत में झूले की तरह पानी पहुंचाता नजर आया। वीडियो देखकर लोग हंस भी रहे हैं और किसान की सूझबूझ की भी तारीफ कर रहे हैं। कभी कभी जिसे पकड़ने जाते हैं वही अचानक सामने आ जाए तो हालत खराब हो जाती है। वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची मेंढक को पकड़ने की कोशिश करती है, तभी मेंढक उछलकर सीधे उसकी गोद में आ बैठता है। अगले ही पल बच्ची जोर जोर से चिल्लाते हुए वहां से भाग निकलती है। ये मजेदार नजारा देखकर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including up and up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
3: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
4: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
5: खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
11: US Open बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने बजाया डंका, देविका सियाग, रौनक चौहान और किदांबी श्रीकांत ने सेमीफाइनल में पक्की की जगह। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए शानदार खबर, 19 जून को खत्म हुए सप्ताह में बढ़ा देश का विदेशी मुद्रा भंडार, 96 करोड़ 30 लाख डॉलर की हुई बढ़ोतरी। साउथ वेस्ट मॉनसून अब मध्य भारत में हो रहा है मजबूत, उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश के आसार, शाम तक दिल्ली एनसीआर में भी मौसम बदलने के आसार। चाइना की राजधानी बीजिंग में प्रकृति का चमत्कार, 800 साल पुराने बीज से उगाया गया दुर्लभ कमल, लोटस कल्चर फेस्टिवल में लगाई प्रदर्शनी। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने किया बड़ा ऐलान, अगले साल भारत आ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील जल्द होगी फाइनल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
11: छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 353वीं वर्षगांठ के मौके पर नागपुर में मनाया जा रहा जश्न, हिंदू पंचांग के मुताबिक आज राज्याभिषेक की वर्षगांठ। शिवाजी के राज्याभिषेक के ऐतिहासिक मौके पर उत्सव में डूबा पूरा नागपुर शहर, गूंज रहे जय भवानी जय शिवाजी के नारे। शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अभिषेक के लिए गया गंगा, नर्मदा, गोदावरी, चंद्रभागा समेत 7 पवित्र नदियों का जल। राज्याभिषेक की वर्षगांठ के मौके पर निकाली गई शिवाजी महाराज की प्रतिमा की झांकी कार्यक्रम में हजारों लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। आज के दिन शौर्य से जुड़े पारंपरिक खेलों का भी आयोजन, शहर में भंडारे और रक्तदान शिविर भी लगाए गए। मॉनसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, आने वाले 24 घंटों में बिहार झारखंड के सभी इलाकों और उत्तर प्रदेश पहुंचने की संभावना। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में तेज होंगी मॉनसूनी गतिविधियां, 29 से 30 जून के बीच उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय हो सकता है मॉनसून। सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा मॉनसून का असर, बढ़ेगा बारिश का दायरा, तापमान में 5 से 8 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम समेत पूरे पूर्वोत्तर में मॉनसून की बारिश जारी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मॉनसून के विस्तार के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में फिलहाल भारी बारिश की संभावना कम, गरज चमक के साथ बादल छाने और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना। कई राज्यों में भीषण गर्मी के बीच पर्यटकों को लुभा रहा श्रीनगर का सुहाना मौसम, छुट्टियां मनाने श्रीनगर पहुंच रहे हैं पर्यटक। श्रीनगर की मशहूर डल झील में शिकारा राइड का आनंद लेते हुए दिखाई दिए सैलानी, श्रीनगर के सुहाने मौसम से खुश दिखे पर्यटक। जम्मू कश्मीर में पर्यटन बढ़ने से नई जगहों के एक्सप्लोर होने की जगी आस, मनमोहक नजारों वाली शोपियां की पीर की गली को पर्यटकों का इंतजार। लद्दाख के निमो इलाके को मिली नवीनीकृत महिला सशक्तिकरण केंद्र की सौगात, भारतीय सेना की ओर बुनाई कार्यशाला का किया गया उद्घाटन। स्थानीय महिलाओं को मिला कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण का बेहतर मंच, महिलाओं में आत्मनिर्भरता के साथ साथ क्षेत्र के विकास को मिलेगी नई रफ्तार। असम में चाय के छोटे उत्पादकों के लिए गुड न्यूज, किसानों को मिलेगा फार्मर आईडी, फार्मर्स रजिस्ट्री पोर्टल पर रजिस्टर कर ले सकेंगे सरकारी सुविधाओं का लाभ। सीएम हेमंत ने चाय उत्पादकों के लिए बताया ऐतिहासिक दिन, चाय किसानों को समय पर मिलेगी खाद, आसानी से मिलेगा लोन। आंध्र प्रदेश में व्हाट्सएप आधारित रियल टाइम गवर्नेंस पर सरकार का जोर, सभी सेवाओं में आधार वेरिफिकेशन को बढ़ावा देना है लक्ष्य। आंध्र प्रदेश में राशन कार्ड अपडेट प्रक्रिया बनाई जाएगी आसान, सरकार ने अफसरों को जाति और प्रमाण पत्र से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के दिए निर्देश। केरलम की कलपेटा को आंगनबाड़ी की मिली सौगात, वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने उद्घाटन किया। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए आई गुड न्यूज, 19 जून को खत्म हुई हफ्ते में बढ़ा देश का विदेशी मुद्रा भंडार, 96 करोड़ 30 लाख डॉलर की हुई बढ़ोतरी। बढ़ोतरी के बाद 672 अरब डॉलर से ज्यादा हुआ देश का विदेशी मुद्रा भंडार, पिछले हफ्ते सोने के भंडार के मूल्य में 411 करोड़ डॉलर की हुई बढ़ोतरी। उत्तराखंड को मिली बागवानी से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 46.32 करोड़ में तैयार 9 योजनाओं का उद्घाटन किया। रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया, 323.34 करोड़ के 32 विकास कार्यों की रखी गई आधारशिला। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ का दिखा गौवंश प्रेम, सीएम ने गौशाला पहुंचकर गौवंश को खिलाया गुड़ और चना। युवाओं के लिए केंद्र सरकार में कई पदों पर सीधी भर्ती का मौका, केंद्रीय लोक सेवा आयोग ने भर्ती के लिए मंगाया आवेदन। ओडिशा में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने वाली गुड न्यूज आई सामने, सीएम मोहन चरण मांझी ने गो ईस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का ऐलान किया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to Elf Beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
12: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
13: Jack, come home. It's supper time.
12: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
14: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
12: Jack FM, playing what we want.
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
15: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाई और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको

या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर। और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है वादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है, तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूली। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर

0: फिर उपचार करो, ये लाइलाज नहीं है। और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है, मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्नकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्नकंद। यह है सूर्नकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में ये है इंद्रायन। ये है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up Strawberry Scented Sunscreen, Favorite Day Ice Cream in flavors like Cotton Candy and Orange Cream, Inflatable Fun for the Pool, Elf Beauty's Best, and Levi's Denim Shorts. Summer's Best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
3: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
4: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
3: Big 12 Radio.
5: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
3: And
5: down.
3: Talk sports.
6: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
3: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

0: 2024 में T20 विश्व कप पर कब्जा, 2025 में जीता चैंपियंस ट्रॉफी का रण, अब लिया 2027 वर्ल्ड कप का प्रण, पद्मश्री रोहित शर्मा का अग्निपथ, वंदे में है दम श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: एआई की मदद से दौड़ेंगे सेना के टैंक, रोबोटिक वॉरियर संभालेंगे जंग की कमान, सेना के बैटल टैंक का कायाकल्प, देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
5: बाल्टीमोर बंदरगाह पर दिखी भारत की समृद्ध समुद्री विरासत की तस्वीर, तो वहीं मिड अटलांटिक के बड़े पुलों के नीचे से गुजरा 13,000 नॉटिकल माइल का सफर तय करके पहुंचा नॉरफॉक। गुजरात के 14 शहरों को मिली सुगम यातायात की सौगात, भारत टैक्सी ऐप का शुभारंभ, गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में उद्घाटन कर चुके हैं। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने बजाया डंका, देविका सहवाग, रौनक चौहान और किदांबी श्रीकांत ने सेमीफाइनल में पक्की की जगह। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए शानदार खबर, 19 जून को खत्म हुए सप्ताह में बढ़ा देश का विदेशी मुद्रा भंडार, 96,30,00,000 डॉलर की हुई बढ़ोतरी। चाइना की राजधानी बीजिंग में प्रकृति का चमत्कार, 800 साल पुराने बीज से उगाया गया दुर्लभ कमल, लोटस कल्चर फेस्टिवल में लगाई प्रदर्शनी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किया बड़ा ऐलान, अगले साल भारत आ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील जल्द होगी फाइनल।
6: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पारुल चौधरी और आप देख रहे हैं सास बहू और पेटिया यानी एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। आज तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए ये सैटरडे स्पेशल, जहां सास बहू और पेटिया करेगा नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट वाली पार्टी। यहां तो एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज कर रही हैं, आप सबका इंतजार खुले हैं एंटरटेनमेंट के सभी द्वार, तो आप भी हो जाए हमारी इस पार्टी में शामिल जो है सितारों से भरपूर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा ये सैटरडे वीकेंड स्पेशल एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
7: एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज से सजे सास बहू और बेटियां के वीकेंड स्पेशल एपिसोड में आज देखिए, खतरे में पड़ेगी दुआ, बेटी की पुकार सुन रक्षक बनेंगे विक्रांत, मोह मोह के धागे में उलझते हुए नजर आएंगे सरू और वेद,

जगदाती और शिवाय खोएंगे प्यार के सपनों में, जल्द होगा इनका पुनर्विवाह। लौटी राध्या के प्रथम की याददाश्त, घर वालों की याददाश्त लाने के लिए राध्या और प्रथम तोड़ेंगे समय का चक्रव्यूह।

0: सीरियल इश्क जुनूनी में आएगा रूहानी का नया आशिक गुरु, दिखाएगा अपना तमंचा। और साथ ही करेंगे मुलाकात टीवी के शकुनी मामा यानी कि प्रणीत भट्ट से, जिनकी योग से शुरू होती है दिनचर्या और अब ये बन गए हैं बॉलीवुड के राक्षस सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: राधे और प्रथम, हमने तो सेट कर दिया है पार्टी का मूड, जी हाँ, सैटरडे दोपहर से ही, ताकि आप सब हो जाएं रिचार्ज। वैसे आप दोनों को तो कहाँ ही फुर्सत है पार्टी वगैरह करने की, क्योंकि आपकी कहानी में तो है लगातार ड्रामा, लेकिन तभी तो आपकी कहानी लेकर आती है हमारे लिए भरपूर मनोरंजन। तो कैसे आगे बढ़ रही है राधिया और प्रथम की जिंदगी, क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में आज, चलिए पता कर आते हैं। लेकर चलते हैं आप सबको मन अति सुंदर के सेट पर।
0: रंग लाई राध्या की कोशिश, सच के लिए प्रथम ने बदला भेस,
2: पट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षण।
0: राध्या और प्रथम मिलकर तोड़ेंगे समय का चक्रव्यूह,

0: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में आखिरकार राध्या की मेहनत रंग लाई और राध्या के प्रथम को सब कुछ याद आ गया है, लेकिन अफसोस राध्या के ससुराल वाले अब भी 10 साल पुरानी जिंदगी में जी रहे हैं। ऐसे में राध्या महादेव के आगे हाथ जोड़ रही है।
1: लेकिन हमारा परिवार अभी भी समय के चक्र में मत फंसा हुआ है।
2: बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल के बाद फाइनली एक क्लू मिला था जिसको फॉलो करते हुए सब मंदिर आए हुए हैं। उन्हें समझ आता है राध्या को कि अगर प्रथम से शादी कर लो तो सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि शिव पार्वती का मिलन कोई टाल नहीं सकता है। आज मासिक शिवरात्रि है तो राध्या शादी कर लेती है प्रथम से, और प्रथम जब छोटे थे मतलब 2016 में जब थे उनको तब राध्या से प्यार हो जाता है, तो वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं फुल फिल्मी स्टाइल में, हाथ काट के खून से मांग मांग भर देते हैं। पर अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि प्रथम को सब याद आ गया है पर फैमिली को कुछ भी याद नहीं आया है, तो फैमिली को सब याद दिलाने के लिए हम क्लू ढूंढ रहे हैं और वहीं पे हमें वो लेडी मिलती हैं जिनकी वजह से हम ऐसे 10 साल पीछे चले गए हैं।

0: जहाँ राध्या ने प्रार्थना की तो वहाँ भोलेनाथ ने उस औरत को मंदिर में ला दिया। जरा देखिए कैसे समय को बांधने वाली वो औरत पहुँच जाती है महादेव के मंदिर के सामने नाचने के लिए, और वो इस बात से अनजान है कि इस मंदिर में राध्या भी पूरे परिवार के साथ मौजूद है। ऐसे में तभी राध्या की नजर पड़ जाती है उस औरत पर।
1: सहस्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधु सरांगी पीठ।
0: बस फिर क्या, राध्या पहचान जाती है और झटपट वो उस औरत के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी औरत से टकरा जाती है।

0: निलिप्प नायक,
1: जिसके चलते समय बदलने वाली औरत वहाँ से भाग निकलती है। ऐसे में राधिया उसे वहाँ पर हर जगह पर ढूंढती है, पर वो औरत उसे नजर नहीं आती और ऐसे में राधिया परेशान होने लगती है कि इसी बीच वहाँ पर प्रथम भी पहुँचता है राधिया का हौसला बढ़ाने। ऐसे में राधिया फिर से महादेव के आगे मदद की गुहार लगाने पहुँच जाती है। यहाँ राधा ने मनोकामना मांगी तो वहाँ भोले बाबा ने आशीर्वाद दे दिया और देखिए कैसे आंधी तूफान आने लगा। इसी बीच राधिया की आंख खुली तो उसकी नजर पड़ी सांप पर, जिसे देखकर राधिया समझ गई कि भोले बाबा ने रास्ता दिखा दिया। बस फिर क्या, राधिया और प्रथम उस सांप के पीछे पीछे चल देते हैं। प्रथम पहुंच जाता है उस सपेरे के पास ताकि वो उसका लिबास लेकर उसका रूप धारण कर सके और उस औरत को पकड़ सके। और वहाँ समय बदलने वाली औरत राधिया को देखकर सीढ़ियों से भाग निकलने की फिराक में है, लेकिन राधिया उसे रोक लेती है और गुजारिश करती है कि सब सही कर दे, लेकिन वो औरत मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में जैसे ही वो पलटती है तो उसकी नज़र सांप पर पड़ जाती है जो उसका रास्ता रोके हुए है। ऐसे में वो डरने लगती है कि तभी सपेरे के भेस में वहाँ पर पहुँच जाता है प्रथम और देखिए कैसे सांप को टोकरी में बंद कर वो उस औरत को सबक सिखाता है, जिसे सुनकर वो औरत भी डर जाती है और पलटकर राधिया को समय के चक्रव्यूह को तोड़ने का सुराख देती है और वो है भोले बाबा का रुद्राक्ष।
2: प्रथम जिसके लिए सपेरे का लुक ले रहे हैं और सपेरा बन के आएंगे, उन्हें डराएंगे, फिर उनसे एक रुद्राक्ष मिलता है जिसकी माला की वजह से बैक टू हमारी पूरी फैमिली जो है वो 2026 में चली जाएगी। बट आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक रहा है क्योंकि सबके नए लुक्स देखने को मिले हैं, प्रथम का एक पूरा नया वर्जन मिला है, वो कैसे कॉलेज में हुआ करते थे अभी तो थोड़े मैच्योर हो गए हैं और पति जैसी हरकतें ज़्यादा करते हैं, पर पहले बहुत ही लिचड़ आदमी थे तो अब वो थोड़े से सही हो गए। तो आई थिंक ये बस इसीलिए हमने ये कोशिश की थी ट्रैक लाने की कि लोगों को समझ आए कि एक्चुअली प्रथम राध्या का बहुत जन्मों का साथ है, क्योंकि अगर हम 10 साल पहले चले जाए जो दादी हमें लेके गई थी कि राध्या एग्जिस्ट नहीं करती थी उनकी लाइफ में, तो भी राध्या एग्जिस्ट कर रही है। 10 साल पहले भी प्रथम को उनसे प्यार हो रहा है, 10 साल पहले भी उनकी शादी हो रही है, तो बस शिव शक्ति का प्रतीक हैं हम और वापस से शादी हो जा रही है, सब कुछ सॉर्ट हो जा रहा है, तो हमारी हैप्पी एंडिंग हो रही है इस फिलहाल इस वाले चैप्टर की।
1: अब राधिया को रुद्राक्ष की माला मिल गई है, देखना होगा कि राधिया कैसे अपने पूरे परिवार को इस समय के चक्रव्यूह से आजाद करवाएगी और वापस से 2026 में अपने पूरे परिवार को लाकर हंसी खुशी रहेगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: गुरु और रूहानी, मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं कि शुरू कर दी अभी से सैटरडे वाली पार्टी। अब देखिए हमारा शो सास बहू और बेटियां तो आता ही दोपहर में है, तो हम तो ऑब्वियसली दोपहर में ही करेंगे पार्टी और हमारा तो काम ही है कि लेकर आए आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट जोरदार। वैसे एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है आपकी कहानी में भी, क्योंकि कहानी में लगातार आते हैं ऐसे ऐसे ट्विस्ट जो हमें इस कहानी से बांध कर रखते हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सीधा इश्क जुनूनी के सेट पर और देखते हैं क्या है यहाँ पर इश्क का जुनून या फिर किसी नए ट्विस्ट का।
1: रूहानी का नया दूल्हा, गुरु ने दिखाई अपनी बंदूक लीला, शुरू हुई गुरु रूहानी के बीच तश्नेबाजी। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आज गुरु गुस्से से बौखलाया हुआ है, इसलिए देखिए कैसे वो सोफे पे बैठकर बंदूक लेकर दरवाजे की तकवारी कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि आज रूहानी आने वाली है और अपने साथ अपने लिए नया दूल्हा लाने वाली है। बस फिर क्या, जैसे ही रूहानी डॉक्टर सुशील के साथ अंदर आई, गुरु ने दरवाजे पर बंदूक तान दी। ये देख सुशील डर के मारे हक्का बक्का रह गया। अब जैसे गुरु अपनी मनमानी कर रहा है इसीलिए रूहानी भी जिद पर आ गई है, तभी तो उसने भी जिद कर ली है शादी रचाने की और उसके लिए उसने डॉक्टर सुशील को चुना है।
4: क्या है, एक बार ना देखे चुन चुके,
5: एक मौका तो हम दुश्मन को भी देते हैं। तेरे इस बंदर ये डॉक्टर का चीज, और उससे पहले इसका इंटरव्यू हम लेंगे, अगर हमें सही लगा तो ही ये इस घर में रहे।
0: सो एक्चुअली रूहानी ने न्यूज़पेपर पे इश्तेहार दिया था दैट उन्हें लड़के की तलाश है, अपने लाइफ पार्टनर चूज़ करना चाहती है। फर्स्ट टाइम चूज़ किया तो जैसा भी सिचुएशन हुआ आपको लोगों को पता ही है। सो इस टाइम मेक श्योर करना चाहती है कि जो भी जीवन साथी होगा उन पे वो सारी क्वालिटीज़ हो। सो उन्होंने वो अखबार पे दिया था एडवर्टाइजमेंट एंड उनसे एक लड़का आता है जो कि अभी भगा दिया गया है क्योंकि रूहानी, तेजस्वी एंड गुरु ये तीनों को भगा दिया गया है टीटी हाउस से, सॉरी आई मीन सहाय हाउस से। सो नाउ वी आर बैक टू बड़ी कोठी एंड क्योंकि हम सब यहाँ पे हैं तो रूहानी का एक रिक्वेस्ट है कि गुरु की होने वाली मंगेतर अगर यहाँ है तो साथ में रूहानी का होने वाला मे बी वो भी यहाँ आके रहे। सो ये रिक्वेस्ट किया है उन्होंने नागेश्वर अंकल से। सो अभी मैंने मनाया है उनको कि आप मान जाइए क्योंकि वो मुझे बहुत ही मज़ेदार किरदार दिख रहा है। सो देखते हैं अभी क्या क्या प्लान कर सकते हैं उनके आगे।
1: अब रूहानी की जिद के आगे गुरु को झुकना पड़ा है लेकिन गुरु ने भी अपनी शर्त रख दी, लेकिन उसकी शर्त को नकारते हुए रूहानी ने भी तय कर लिया है कि अब तो डॉक्टर सुशील भी इसी घर में रहेंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता कि गुरु बार बार उन्हें परेशान करेगा, जिसके चलते आज रूहानी फिर से गुस्सा गई है और देखिए कैसे गुरु का हाथ पकड़कर सभी घर वालों के सामने ले आई है और तो और सभी घर वालों पर नाराजगी भी जता रही है।
6: लड़की का हाथ छोड़ दी, साथ छोड़ दी, इस घर से दूर होना चाह रहा है, अपनी अलग राह में अपनी जिंदगी बनाना चाह रही है, तो फिर ये बीच में क्यों आ रहा है? अगर ऐसे ये बहता रहा ना तो ये गुरु चौथी तुम्हारे हाथ नहीं होने वाला।
7: शराब मस्त, ऐसा भी क्या कर दिया गुरु? हाँ
6: मेरे सीधे साधे भोले भाई सुशील कुमार जी पे गोली चले, उन्हें जान छुपाने की धमकी दे रहा है।
8: धमकी डरपोक देते हैं, हम सीधा फैसला लेते हैं, अगली बार इसने तुम्हें छुआ ना तो जान से मार देंगे इसे हम।
0: हाँ वो तेजस्वी ने ऑब्जर्व किया कि गुरु उन पे गुस्सा हो रहे हैं तो उसे बुरा लगा एंड उसे वही लगा वो थोड़ी पोजेसिव हो गई एंड वो यही पूछ रही थी कि क्या बात है क्यों ऐसा हो रहे हो। तो उसके बाद फिर उसको भी समझ में आता है कि मे बी लाइक वो पोजेसिव हो रहा है रूहानी के लिए, तो वो भी बोलती है कि अंकल ठीक है इन लोग को थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पे रहने दे, क्योंकि तेजस्वी का मेनली ये मोटिव है दैट वो दोनों को साथ में अकेले टाइम स्पेंड करने ना दें।
1: तेजू की अपनी प्लानिंग चल रही है और गुरु के दिमाग में अलग ही गुस्सा चल रहा है। ऐसे में रूहानी पहुंच गई डॉक्टर सुशील का हाथ पकड़कर गुरु को ये जताने कि अब वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही है, लेकिन गुरु से रहा ना गया और देखिए कैसे उसने रूहानी का हाथ पकड़कर झटक दिया और रूहानी को अपना टशन दिखाया। लेकिन आज रूहानी शांत रहने वाली नहीं,
6: वैसे मुझे भी अपने जिंदगी के पैसे लेने का पूरा अधिकार है। मेरी भी शर्त है सुशील जी, है ना, किसी को नहीं जाने थे तब तक गुरु हमें रोकेगा, हमारे बीच में नहीं आए और सुशील जी के साथ कुछ नहीं करेगा।
1: बेचारा गुरु रूहानी की शर्त के आगे मन मार कर रह गया है और तो और उसने अपना गुस्सा भी दबा लिया है। इस बात पर तेजू बहुत खुश है। वहीं अगले ही पल जब पूरा परिवार सत्संग के लिए निकलने जाता है तो वहां आ जाती है तेजू खुश होकर नागेश्वर और दादी से बैचलर पार्टी की परमिशन लेने। ऐसे में उसे वो परमिशन मिल भी जाती है और उसी बैचलर पार्टी में तेजू रूहानी और सुशील को भी बुलाती है, जिसके चलते रूहानी तेजू का कर रही है शुक्रिया अदा। तेजू को लग रहा है कि रूहानी और गुरु दूर जा रहे हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये टशनेबाजी दोनों को धीरे धीरे और भी करीब ला रही है, जो जल्द ही बैचलर पार्टी में नजर भी आएगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: एक पार्टी का मतलब है परफेक्ट हेयर, परफेक्ट आउटफिट, परफेक्ट मेकअप और उसके साथ साथ एक परफेक्ट फोटोशूट। अब जब भी जाते हैं हम पार्टी करने, खिंचवाते हैं ना अपने फोटोग्राफ्स। ऐसे इसी से मुझे याद आया, अब लेकर चल रहे हैं हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटोशूट पर, जहां आपका फेवरेट सितारा है एब्सोल्युटली रेडी। गेट सेट चीज़।

0: ये है होने वाली दुल्हन या सृष्टि जय, जिन्हें आप जानते हैं गंगा माँ की बेटियां की शहाना के रूप में। भाई गंगा माँ की बेटियां तो ये छूट चुकी हैं क्योंकि जल्दी शादी रचाने जा रही हैं। लेकिन शादी से पहले हम दिखा रहे हैं सृष्टि जैन का कुछ सतरंगे रूप, फिर चाहे व्हाइट ड्रेस हो, ब्लैक ड्रेस हो, ब्लू ड्रेस हो, रेड ड्रेस हो, या फिर हो ये बोहेमियन अंदाज। पर ये है सृष्टि जैन जिन्हें आपने अब तक शहाना के रूप में देखा है, लेकिन अब ये कुछ नया जीवन में ट्राई कर रही है, शादी के साथ एक नई शुरुआत और साथ साथ कुछ नए लुक्स भी। तो चलिए चलते हैं सृष्टि के पास, जो आज ट्राई कर रही है अपने नए लुक्स इस फोटोशूट में। तो भाई होने वाली दुल्हनिया से होते हैं रूबरू।
1: अब हम जाएंगे टू गेट माई मेकअप एंड हेयर डन, ओके, एंड आई टेक यू विथ मी, तो लेट्स सी मेरा मेकअप है कैसे होता है, ओके?
0: चाहे कुमकुम भाग्य हो या फिर हो गंगा माँ की बेटियां, सृष्टि को हमेशा उनके किरदारों के लिए बहुत प्यार मिला। आज बिल्कुल सिंपल होके वो आई हैं और अब वो अपना मेकअप करेंगी। भाई मेकअप टीम लग गई है उनके चेहरे को संवारने में, उन्होंने खास हेयर स्टाइल लिया है, उनके चेहरे की रंगत बदली और कॉस्ट्यूम पहनकर वो रेडी है अपने लुक नंबर 1 के लिए।

सृष्टि जैन का लुक नंबर वन है ये पीच ड्रेस, जो भाई शादी के कॉकटेल फंक्शन में बहुत ही अच्छी लगने वाली है। कुछ कुछ फ्लोरल और कुछ कुछ पीच के साथ सृष्टि ने इस लुक को ट्राई किया और पोस्ट किया, और फोटोशूट में उनका ये पर्ल फर्स्ट लुक हुआ

0: It's a very beautiful gown. The color, it's peach. I love the color. I love all the sequence work. And अभी मैंने जस्ट इसमें शॉर्ट्स खत्म किए. सॉफ्ट कर्ल्स का लुक है. मेकअप भी बहुत प्यारा है. एंड आई एम हेडिंग फॉर माय सेकंड लुक. और दीज आर द इयररिंग्स दैट आई एम वेयरिंग. दिस इज ओनली एक्सेसरी बिकॉज़ द गाउन इज अ स्टेटमेंट इटसेल्फ. एंड नाउ आई एम हेडिंग फॉर माय सेकंड लुक. एंड लेट्स सी कि उसमें क्या होता है. लाके मेरे समतन तेरा ढक
1: दूं जितना मैं दूर उतनी तू को. सृष्टि का लुक नंबर 2 है बेहद एलिगेंट, जहां पर उन्होंने बालों को बन बनाया. ये भारी भरकम डैंगलिंग वाले इयररिंग्स पहने, ये ऑरेंज टॉप पहना और ये पीकॉक वाली स्कर्ट पहनी. ये घर के नॉर्मल फंक्शंस और उनकी शादी में जरूर काम आएगा. तो ये है उनका लुक नंबर 2, जो शादी में एक सिंपल लुक दुल्हन को देता है. तो

0: और मैंने ये गोल्डन डैंगलर्स पहने हुए इसके साथ एंड ये स्टेटमेंट रिंग है गोल्डन एंड ब्रेसलेट और मेरे बाल बन में है ऊपर.
1: सृष्टि जैन का अगला लुक है समर लुक. भाई गर्मियों के मौसम में व्हाइट से बेहतर कुछ हो सकता है क्या? तो देखिए दुल्हन की तरह माथा पट्टी लगाकर फेदर्स वाली इयररिंग पहनकर सृष्टि ने ये समर ड्रेस पहनी जो बीच कॉकटेल पार्टी के लिए बहुत ही अच्छी है. भाई दुल्हन भी व्हाइट पहन सकती है और आजकल तो ट्रेंड है व्हाइट पहनने का. और सृष्टि ने ये बीच वाली दुल्हन का लुक लिया और कुछ इस अंदाज में कराया ये फोटोशूट.

शशि जैन का अगला लुक है बोहेमियन शीक लुक। जी हाँ, बोहेमियन लुक यानी बंजारन वाला लुक, बंजारन वाली ज्वेलरी और ये फ्लोई ब्लू कलर की स्कर्ट पहनकर वो एक स्टेटमेंट बना रही हैं।

फ्रिजेरियन का अगला लुक है गर्ल नेक्स्ट डोर स्ट्रीट फैशन लुक। जी हाँ, जीन्स टी शर्ट में लड़कियां जनरली बहुत कंफर्टेबल महसूस करती हैं, और व्हाइट जीन्स और टॉप में सृष्टि ने अपना सिंपल स्ट्रीट वेयर लुक लिया। भाई शादी के बीच बीच में थोड़ा कैजुअल लुक भी रहना चाहिए, इसलिए दुल्हनिया का ये लुक था थोड़ा अलग।

और अब कॉकटेल पार्टी लुक, और वो भी ब्लैक अंदाज में। पेशा शेट्टी जैन का कॉकटेल वाला लुक, जहां उन्होंने ब्लैक ग्लिटरिंग ड्रेस पहनी है। इसके लिए उन्होंने खास मेकअप किया है, खास हेयर स्टाइल लिया है, और ये ब्लैक ड्रेस पहनकर उन्होंने पोज कराया और शादी का कॉकटेल इवनिंग लुक पेश किया।

0: ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਦਾ ਲੈ ਲਾ ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡ
1: ये जो भी ड्रेस पहनी है लाइक सर डिस्क्राइब्ड इट एज वेयरिंग द एंटायर नाइट स्काई आसमान के सारे सितारे इस ड्रेस पर है इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस बहुत प्यारी है और सारा लुक बहुत अच्छा है और पूरी टीम बहुत अच्छी है और उनके साथ काम करने में बहुत बहुत बहुत मजा आता है आपको मिलवाते हैं डिजाइनर से दीपक जी दिस इज आवर डिजाइनर हू डिजाइंड दिस ब्यूटीफुल ड्रेस
2: तो ये थी सृष्टि जैन जो भले ही अब अपने सीरियल गंगा माँ की बेटिया में ना हो लेकिन जीवन में वो अपना नया अध्याय शुरू करने जा रही हैं

0: सेगमेंट ऐसा है सास बहू बेटिया जिसके लिए ईच एंड एवरी सास मदर बहू दे वेट फॉर इट टू कम. मेरी मतलब मेरी मासी हो गई, मेरी नानी दादी, दे ऑल वेट फॉर दैट सेगमेंट, क्योंकि उस सेगमेंट से आपको सब कुछ पता चल जाता है, सारा मसाला एवरीथिंग. तो वो एक बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट है एंड एवरीबडी वेट्स फॉर इट एंड आई थिंक दे डू अ ग्रेट जॉब. कम सिंग हम लोग सेट पे जो जो सीन्स शूट करते हैं, कभी कुछ सीन्स शूट करते करते हम इंजर भी हो जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है, स्पेशली फिर शूटिंग, सपोज आप आग में शूट कर रहे हो, पानी में शूट कर रहे हो, ऐसे में जब मीडिया वहाँ होती है एंड वो लोगों को दिखाने में हेल्प करती है दैट हाउ डिफिकल्ट इट इज़, जस्ट बिकॉज वो कुछ सेकेंड्स देखते हैं बट हमें बहुत टाइम लगता है शूट करने में. एंड उस वजह से जो मीडिया लोगों को दिखाती है, उस वजह से लोग हमें और ज़्यादा सराहते हैं, दे लव द एफर्ट दैट वी पुट इन. एक छोटा सा कुछ यू नो सीन शूट करने में जो हम एफर्ट डालते हैं वो आप यू नो ऑडियंस तक पहुँचाते हैं, विच मीन्स अ लॉट टू अस. एंड इट्स बिकॉज ऑफ यू कि हम लोगों तक और रीच कर पाते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ यू कि हम उनसे इंटरेक्ट कर पाते हैं, जिसकी मैं भी कर रही हूँ. सो दे सी अस ऑन टेलीविजन बट सृष्टि से रूबरू आई थिंक मीडिया की वजह से ही होते हैं. सो आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक द मीडिया लॉट फॉर दैट.
1: तो सृष्टि को उनकी आने वाली शादी के लिए बहुत बहुत बताइए और उम्मीद है उन्होंने जो लुक्स आज ट्राई किए वो उनकी शादी में भी नजर आए. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.
2: आज तो तुम होना के मंच पर भी हो रही है पार्टी, क्योंकि वीकेंड पर तो इस शो में लग जाते हैं चार चांद. फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको दी वेरी हैंडसम, दी वेरी हैपनिंग एंड दी वेरी हॉट राजीव खंडेलवाल के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है उनके शो में आज, क्योंकि यहाँ तो है एंटरटेनमेंट एक्साइटमेंट दोनों एक साथ.
3: गिव अ ह्यूज अप्लॉज टू द मोस्ट ऑनेस्ट फिल्म क्रिटिक ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री भावना सुमाय जी के लिए. पचास साल इस इंडस्ट्री के अंदर एक फिल्म क्रिटिक वो भी एक महिला, और उसके बाद ऐसे ऐसे फिल्म स्टार्स जहां पर सबकी ईगोज, सबकी अपनी अपनी एक पावर, वहां पर सरवाइव करना कितना मुश्किल रहा आपके लिए?
4: मैंने जब अपने करियर की शुरुआत की तब आई वॉज एन अंडर ग्रेजुएट और ऐसे ही किसी ने कहा कि मैं एक मैगजीन निकाल रहा हूँ और मैं कॉलेज मैगजीन में लिखती थी, तो उन्होंने कहा कि आप उसमें भी लिखिए. उस जमाने में इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी जो आज है, तो बाहर वो वॉचमैन को पता चल जाता था कि ये एक्टर तो है नहीं और ना ही डायरेक्टर लगती है, तो हम कहते थे कि हम जर्नलिस्ट हैं तो जाने देते थे. स्टार्स के दरवाजे पे हम ऐसे ही दस्तक देते थे, इंटरव्यूज करते थे और चले आते थे. पहले छोटी मैगजीन्स में काम करती थी, धीरे धीरे बड़ी मैगजीन्स, नामचीन मैगजीन्स में नाम आना शुरू हो गया. चीफ रिपोर्टर से काम किया, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बनी, फिर एडिटर भी बन गई. ऐसे भी एक दो किस्से हुए थे जहां मैंने एक एक्टर ने मुझे धमकी दी थी तो उनके बारे में लिख दिया था, और उसके बाद उन्होंने मुझे फोन करके और भी धमकी दी.
3: कभी डर नहीं लगा आपको?
4: डर मुझे स्टार से या फिल्म इंडस्ट्री से नहीं लगता, डर मुझे अपने आप से लगता है कि मैं हर स्थिति में जो मेरे माँ बाप ने मुझे उसूल दिए हैं मैं उस पर खरी उतरूँ हमेशा और मेरे पैर ना डगमगाए. और वो सपना जो उनका है कि इस तरह से ज़िंदगी जीनी चाहिए, ऐसी ज़िंदगी जीऊँ और मेरे क्रेडिबिलिटी और कैरेक्टर पे कोई आँच ना आए.
5: माय नेम इज़ विशा वीरा एंड आई एम एन एक्टर. सर ऐसा होता है ना कि काफ़ी ब्लेस्ड होते हैं वो लोग जो अपनी हॉबीज को अपना प्रोफेशन बनाते हैं.
3: बिल्कुल.
5: तो मैं उन लोगों में से एक हूँ. मेरी जिंदगी में प्लान ए था, प्लान बी नहीं था कि मैं हमेशा से एक्टर बनना चाहती थी, और मैं एक्टर बनी और मेरी जर्नी अभी भी चल रही है. और इस जर्नी के दौरान
3: बीच में आपने कहीं ब्रेक लिया?
5: यस, एक ना उस चीज से भी बहुत डर लगता है कि मैं अपनों से दूर हो जाऊंगी. शादी होने वाली थी 10th फेब को, और 15th जैन को शादी की तैयारियां चल रही है, सब कुछ, और अचानक से मेरे डैड को हार्ट अटैक आ गया. जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ उनके साथ ये चीज हो रही है, और मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है, ना हॉस्पिटल जाना पड़ा है कभी या भागना दौड़ना पड़ा है, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ. वो जो होता है ना कि डर में इंसान चीखता है, सच तो ये है कि डर में इंसान की आवाज ही नहीं निकलती है. मैं सुन हो गई थी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है. उस दिन के बाद ना एक डर बैठ गया कि मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ वो इंसान दूर नहीं होना चाहिए. आई गेस वो डर सबके जिंदगी में रहता ही है जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपको दूर ना जाए।
3: आपकी बेटी आपकी जिंदगी की सुपरस्टार क्यों है?
6: ये 15 साल पहले सुना था आपको हमने, अच्छे दिन आएंगे, पर मैं सोचता हूँ मेरी लाइफ में 96 में ही वो अच्छे दिन आ गए, जिस दिन मेरे घर पे लक्ष्मी ने जन्म लिया।
5: How nice.
6: उसके पहले मेरा टाइम सही नहीं चला था, बट इसके आने के बाद जो मेरा ग्रोथ हुआ है ऐसा सर जी मैं बाद में रुका ही नहीं। 96 में हुआ ही सर, 2000 में मेरी दूसरी बेटी है, 2000 दो दो लक्ष्मियां मेरे घर पे पधारी। क्योंकि दो बेटी मेरे को बेटों से बढ़कर है सर, लेकिन फिर भी उसने मेरे को 4 साल पहले वापस दामाद के रूप में सर एक बेटा दे दिया मेरे को। सर चाहिए क्या एक बाप को, इसके लिए वो मेरी सुपरस्टार है सर।
2: अब तो हम अपनी सैटरडे वाली पार्टी को भर देते हैं एंटरटेनमेंट के रंगों से, लेकर चल रहे हैं आप सबको आपके फेवरेट सेगमेंट की ओर, जहां हमारी टीम सास बहू और बेटिया कर रही है आपके फेवरेट सेलेब्स से एक खास मुलाकात। यहां तो हुई हैं ढेर सारी बातें, हमने जाना है इनके जिंदगी के सफर के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन है ये, तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इनके पास।
7: शकुनी मामा के फिटनेस का राज,

0: भट्ट को पसंद पानी पूरी का स्वाद। एक कलाकार लेकिन अनेक अंदाज।
1: मेरे बच्चों, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है।
0: प्रणीत भट्ट सिर्फ नाम ही काफी है, सीरियल्स की दुनिया में शकुनी के किरदार की पहचान ही काफी है। इन्हें कौन नहीं जानता। एक आंख बंद कर शकुनी बनकर प्रणीत भट्ट ने एक्टिंग के शतरंज का ऐसा खेल खेला कि आज भी दर्शक शकुनी के बारे में जब भी सोचते हैं तो इन्हीं का चेहरा सामने आता है।
1: मेरे बच्चों, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है।
0: लेकिन अब दर्शक राक्षस के किरदार के बारे में सोचेंगे तो आंखों के सामने इन्हीं का चेहरा आएगा, क्योंकि फिल्म हॉन्टेड 3D इकोस ऑफ द पास्ट में विक्रांत के किरदार ने अलग ही छाप छोड़ी है। इसी कामयाबी के बारे में जानने के लिए आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है प्रणीत भट्ट के घर में, जहां पर उन्होंने कैमरे के सामने शेयर की है अपनी दिनचर्या। योग साधना से ये अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अपने आप को फिट रखने के लिए जमकर एक्सरसाइज करते हैं। अपने घर को इन्होंने तस्वीरों से सजाया है। पेड़ पौधों का भी ख्याल रखते हैं। और तो और, जब भी इनका मन करता है कुछ टेस्टी खाने का तो नीचे लोखंडवाला की गलियों में जाकर ये पानी पूरी का स्वाद भी चखते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं प्रणीत भट्ट से।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो सास बहू बेटिया के आज के मेहमान हैं, जिन्हें सारा इंडस्ट्री शकुनी के नाम से जानता है। फिलहाल जो है प्रणीत जो है ध्यान में बैठे हुए हैं। जरा देखे, प्रणीत को थोड़ा ध्यान से जगाते हैं। और हेलो।
3: हाय दिया अनुपुर। एक आंख मैं दोनों आंखें बंद करके ज्यादा दिखता है। हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और मतलब ये बोल सकते हैं कि इतना ध्यान साधना जो है कंटिन्यू है?
3: नहीं, कंटिन्यू तो है। मतलब सुबह सुबह मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह सुबह एक जल्दी उठ के, एक फोकस, फ्रेश होके, वॉक करके, सनलाइट लेके, फिर थोड़ा वर्कआउट के, योगा करता हूँ मैं। बेसिकली अक्षय कुमार जी का फैन हूँ मैं, उनके वर्कआउट को फॉलो करता हूँ। फ्लोर एक्सरसाइजेस, डिप्स, पुशअप्स, रनिंग, और उसके बाद फिर थोड़ा ध्यान करता हूँ। ध्यान क्या करता हूँ मैं, नाम जाप करता हूँ मन में भीतरी, श्री राम श्री राम श्री राम, तो बड़ी शांति मिलती है, फोकस बनता है।
2: ठीक है, आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, आपका ध्यान आप कंटिन्यू कीजिए, फिर हम और बातचीत करेंगे।
3: नहीं, नहीं, हो गया हो गया हो गया, काफ़ी समय से बैठा हुआ था मैं, तो बातचीत करते हैं। मैं तैयार होके आता हूँ, थोड़ा बाहर जाते हैं, है ना? ठीक है, ओके।
0: को एकाग्र करने के लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है, और प्रणीत भट्ट दिन की शुरुआत सबसे पहले ध्यान से ही करते हैं।

और फिर उसके बाद बारी आती है योग की। ऐसे में वो योग की शुरुआत सूर्य नमस्कार से करते हैं और फिर शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज, जो कि इनकी बॉडी को चार्ज कर देता है और साथ ही साथ रखता है सेहतमंद भी।

0: तो गाइस ये मेरा और मुम्मू कहाँ गया, भाग गया वो। मुम्मू का सुबह का रूटीन है, स्ट्रेचिंग करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, उठक बैठक करते हैं। हम थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट्स में बचपन से कर रहा हूँ, कराटे ताइक्वांडो उसी प्रैक्टिस करते हैं। रनिंग सुबह करता हूँ मैं, पावर वॉक समझ लो, सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है फ्रेश होने के बाद, और फिर फ्रूट्स खाना। उसके बाद नहा के फिर ध्यान, ध्यान से क्या होता है थोड़ा फोकस बढ़ता है। बेसिकली मन में नाम जाप करता हूँ मैं, उससे ब्रीदिंग भी अच्छी हो जाती है और फोकस भी बढ़ता है। और उसके बाद फिर दिनचर्या शुरू, जो भी काम हो। सो लेट्स गो।
1: एक्सरसाइज तो हो गई और अपनी बॉडी को फिट भी बना लिया, अब बारी है प्रणीत भट्ट संग उनके घर के सैर की। प्रणीत भट्ट ने इतने सारे सीरियल किए हैं लेकिन फिर भी इनके जीने का अंदाज एकदम सिंपल सोबर है। सादगी से सजा घर है और अध्यात्म से जुड़ी तस्वीरें।
0: तो गाइस ये है मेरा छोटा सा घर जहाँ पे हम चार लोग रहते हैं, और मैं, मेरी वाइफ मुम्मू बनी और नकुल। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़े से अवार्ड्स है जो महाभारत के लिए और बाकी शोज के लिए मिले। ये महाभारत का वो फेमस स्टार वाला अवार्ड है। मेरे बच्चों, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। दोस्तों इस लाइन को मैं अपने जीवन में भी हमेशा ध्यान में रखता हूँ। कुछ भी करने से पहले अपने आत्मा में जाकर देखता हूँ, सोचता हूँ कि मैं जो करने वाला हूँ उसका परिणाम क्या होगा। तो उस हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि सच पे चलूँ, धर्म पे चलूँ, मेहनत पे चलूँ, और किसी और के साथ मुकाबला नहीं करता मैं, केवल स्वयं से करता हूँ। अपने आप को और काबिल और मेहनती और पुश करता हूँ जीवन में। ये देखिए, ये राधा कृष्ण की फ़ोटो है, भगवान जगत गुरु वासुदेव श्री कृष्ण, जिनके ऊपर महाभारत है, जिन्होंने जीवन का ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान, और ये माता राधा है साथ में। ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति। चाहे सीता राम कहो, राधे श्याम करो कहो, पार्वती शंकर कहो, एक ही बात है, ठीक है, महाकाली महाकाल, ठीक है। एंड ये मेरी वाइफ ने ये पेंटिंग लगाई है, कंचन ने। इट्स लाइक उसका ये कहना है कि जैसे नेचर में फलों पे, पौधों पे फूल खिलते हैं, वैसे इंसान पे भी फूल खिलते हैं। सो दिस पेंटिंग इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और मैं जीवन इसी पे जीता हूँ। कोशिश करता हूँ कि हमारे ऊपर भी, सर के ऊपर फूल खिले, एनलाइटनमेंट हो। और ये व्यू है, ये हमारा बिल्डिंग है, पेड़ पौधे सब ठीक है। आजकल बहुत गर्मी है और काफ़ी सारे पौधे जो है वो जल गए थे, निकाल दिए, लेकिन तुलसी है। और ये व्यू है, यहीं पे सुबह सुबह हम वॉक करते हैं, भागते हैं, ठीक है। ये बहुत काम एरिया है लोखंडवाला का बैक साइड, ठीक है, पेड़ पौधों के बीच यहीं हम रन करते हैं। ये मिरर है, ये मेरे काम के लिए बहुत, कभी मेरे को लुक देखना होता है, एक्सप्रेशन देखना होता है। वैसे मिरर जो है, मैं मिरर के भरोसे अपनी परफॉर्मेंस या रियाज नहीं करता हूँ, सारे एक्टर्स को बता रहा हूँ, क्योंकि मिरर आपको कॉन्शियस कर देगा, और मिरर झूठ बोल देगा। मिरर झूठ ही बोलता है, वो केवल रिफ्लेक्शन बता सकता है। तो यदि आप मिरर में देख के रियाज करोगे या परफॉर्म करोगे, तो आप सिर्फ यही देखते रहोगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ। सो वो आपकी, आपको आत्मा तक कैरेक्टर की पहुँचने नहीं देगा। तो मिरर में रियाज मत करना, लेकिन हाँ, मिरर है कि क्या मैं वो कैरेक्टर लग रहा हूँ। कभी कुछ होता है, वैसा लुक होता है, लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। जैसे महाभारत में स्टार्ट में शोकनी जो है, जब हम तैयारी कर रहे थे तो हीरो लग रहा था, तो उसके बाद ये आंख बंद करने का आइडिया आया, क्योंकि मिरर में देखकर डायलॉग बोला था कि विलन लगना चाहिए, तो मैंने कहा, मैं खुद ही देख के डर गया था। सो मिरर इज़ वेरी यूजफुल, कहीं कहीं जो है लुक गेटअप देखने के लिए काम आता है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए आत्मा से आपको जीना पड़ेगा, और वही मैं करता हूँ। थैंक यू, आगे चलते हैं, नूपुर से और बातें करते हैं।
1: 2004 में कितनी मस्त है जिंदगी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले प्रणीत भट्ट ने कई सारे किरदार निभाए हैं,

0: तो बेसिकली विक्राट जो है वो जो हीरोइन है जिसे वो प्रेम करता है उससे प्रेम नहीं करता, उसकी दौलत उसकी फिजिकैलिटी से प्रेम करता है. सो दैट इज विक्राट. सो सही है जैसे लोग हेट कर रहे हैं इस वक्त, तो सही है. इसका मतलब है सही.
1: नफरत मिल चुकी है अब तक
0: बहुत बहुत बहुत. जो भी मेरे दोस्त, मेरी मदर ये क्या कर दिया तुमने, तो मैंने कहा. और एक्चुअली मैं जब मैंने स्टोरी सुनी थी, ये जो फिल्म की कहानी है ये बहुत अच्छी है, इसलिए ये चल भी रही है. और ये चल भी रही है और ये कहीं ना कहीं हम सबको ये सिखा रही है कि प्यार, असली प्यार क्या होता है और कर्म क्या होते हैं. ये कर्मों की बात है. वो जो है सुंदरी जो है, जो हीरोइन है, जो चेतना ने बहुत अच्छा काम किया है, मेमो ने बहुत अच्छा काम किया है, एंड विक्रम सर तो लेजेंड ही है, और सब कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया ऑन, और ऑल द टेक्नीशियंस मनीष एंड एवरीवन एंड ऑल द डीओपी आल्सो. सो वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग दिस फिल्म. सबसे बड़ी बात जो वन लाइन मैसेज है इसमें जो विक्रम सर देना चाहते हैं वो है कर्मा, कि आप कर्म का फल तो भुगतोगे चाहे आप अगले जन्म में भुगतो. तो यहाँ पे हीरोइन को दोनों लोगों ने जो है धोखा दिया था. विक्राट जो उससे प्यार करता था इस हद तक, लेकिन फिजिकली प्यार करता था, और जो भीष्म है, जो दूसरे राजा है, जो मेमो है, वो भी प्यार तो करते थे, लेकिन उससे ऊपर उन्होंने राज्य को चुना, ठीक है, पावर को चुना, सिक्योरिटी को चुना. और यही हो रहा है आजकल दुनिया में, यही हो रहा है दुनिया में. प्यार, सच्चा प्यार जो है वो मिलना मुश्किल है, ठीक है. फिजिकैलिटी से, अपनी चीज़ों से, अपनी इच्छाओं से हम ज़्यादा प्यार करते हैं. तो इस कहानी में ये दिखाया गया है कि वो जन्म लेकर भी वापस आता है, कर्मा पीछा नहीं छोड़ता है. द लास्ट लाइन ऑफ द फिल्म इज कर्मा, कर्मों का फल भुगत के जा रहा हूँ. सो दैट इज़ द मैसेज. तो मैं यही सोचता हूँ, इसलिए मैंने ये फिल्म जो है मेरे को बहुत करीब और बहुत समय से ये बन रही थी, और एंड आई एम हैप्पी दैट दिस इज़ रिलीज्ड और लोगों ने ये देखी और लोगों को पसंद आई, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी ये मैसेज है कर्मा की.
1: जितना हॉन्टेड वहाँ वो चीजें दिखाई है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है हमेशा, मतलब नहीं तो कुछ ना कुछ रहता है?
0: नो नो, नॉट एट ऑल. विद मी तो नो, बट आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल. तो क्योंकि हम लोग सेट पे शूट कर रहे थे, हम लोग क्रोमा में शूट कर रहे थे, और वहाँ पे श्री कृष्ण का मंदिर बनाया है अंदर विक्रम सर ने, तो बहुत अच्छा है. तो सबसे पहले मैं उधर प्रणाम करता था, तो ऐसा है नहीं. लेकिन आई एम श्योर बाकी टेक्नीशियन या आर्टिस्ट को फील हुआ होगा, होता ही है.
1: और कुछ ऐसे, कुछ मस्ती, कुछ प्रैंक, क्या कुछ होता था सेट पर, क्या माहौल होता था?
0: अरे वेरी लवेबल माहौल यार, वेरी लवेबल माहौल. मतलब मेमो इज सच ए डाउन टू अर्थ गाय, एंड वी आर गुड फ्रेंड्स. चेतना ऑल्सो, विक्रम सर ऑल्सो इज अ फन, इज अ जीनियस. वो तो मल्टी टास्किंग करते रहते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी हमको बताते रहते हैं, देख मैं क्या कर रहा हूँ, वो देख मैं क्या कर रहा हूँ. और फिर एट द सेम टाइम एक्टिंग के बारे में कितना कुछ उनसे सीखने को मिलता है. टेक्निकली वो शॉट्स के हिसाब से समझाते हैं, ही इज अनदर लेवल जीनियस. तो मेरे को तो बहुत मजा आया, सीखने को बहुत मजा आया.
1: ये कह सकते हैं हम कि क्रोमा से आपका नाता तो पुराना है, तो उस पे जो वर्क करने का जो मतलब उस तरीका होता है, वो सेंस होता है, वो उसमें तो कोई दिक्कत हुई ही नहीं होगी?
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं पिछले, मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट जो क्रोमा पे था वो था अंतरिक्ष, स्टार प्लस पे रिलीज हुआ था. वो अहेड ऑफ टाइम था, यूनिवर्स पूरा दिखाया था डॉबी जी ने. असीम सामंता, सामंता सर का प्रोजेक्ट था, सामंता सर डायरेक्टर थे उसके. तो बट वही अहेड ऑफ टाइम आ जाता है. तो वहाँ मेरे को क्रोमा समझ आया था कि विजुअली दिखना चाहिए तेरे को सब कुछ. तो मुझे वहाँ वो लक्ष्मण दिखता था कि वो तीर चला रहा है, उसमें तो रेस चला रहा था वो. तो वहाँ से फिर महाभारत, पोरस, बड़े बड़े शोज, अरसलान सबसे बड़ा क्रोमा प्रोजेक्ट. बट हम रियल लोकेशंस पे जाते थे और कुछ पार्ट क्रोमा होता था. इसमें भी वैसा ही है, हॉन्टेड भी वैसा ही है. थोड़ा और एडवांस में चले गए हम लोग, और डीप टेक्नोलॉजी AI में चले गए. हाँ,
1: जर्नी की बात करें तो किट्टू से लेकर हॉन्टेड तक सारे आइकॉनिक चीजें हैं बीच में.
0: 15 साल, एंड इट इज गुड, इट इज गुड. थोड़ा बीच में कोरोना और जो बॉलीवुड इंडस्ट्री की हालत हुई, हमारे हिंदी इंडस्ट्री की, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की ही नहीं, टेलीविजन सेक्टर गॉट वेरी बैडली हिट. टाइम चेंज हो गया और OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, यूट्यूब पे सब लोग बना रहे हैं. यू नो एवरीबॉडी

0: a content creator right now, which is a very good thing. But that does not mean ki good content, great films, great television shows, they will not come on and they will not be enjoyed. Enjoy kiye jayenge, lekin isse humko ye seekhne ko milta hai ki hamara content, hamari kahani agar achhi hogi to janta log hamesha pasand karenge.
1: Boss jo beech mein aaya tha wo kitni zindagi badal gaya.
0: Are yaar, matlab main bata raha hu aapko, Big Boss ne bahut kuch sikhaya mere ko. Ye Big Boss duniya ka sabse bada reality show hai main manta hu, kyunki 3 mahine aap किसी घर के अंदर बैठते हो, वहां सर्वाइव करते हो अलग लोगों के साथ, एट द सेम टाइम सारी दुनिया आपको देख रही है. आपको साइकोलॉजिकली अपना भी ध्यान रखना है, आपको साइकोलॉजिकली बाकी लोगों का भी ध्यान रखना है, और आपको ये भी देखना है कि दुनिया क्या देख रही है, क्या समझ रही है. फिर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम तो आप भूल जाते हो उधर. एक हफ्ता, दो हफ्ता आप ध्यान रख सकते हो, तीसरे हफ्ते से आप रियल, यू हैव टू लिव इट आउट. वो आपकी आत्मा निकाल के दिखा रही है कि प्रणीत कैसा व्यक्ति है, कैसी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करता है. अगर इसको ये नहीं मिलेगा तो कैसे रिएक्ट कर, वो नहीं मिलेगा तो कैसे. तो हर किसी का ट्रिगर पॉइंट होता है. सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बट वापस कभी नहीं.
1: क्या कुछ मैसेज, क्या कुछ बोलना चाहेंगे?
0: यार बस खुश रहो, काम करते रहो, नेकी करो, दरिया में डालो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है. डोंट ट्रबल यूर पेरेंट्स एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. बट रिमेंबर वन थिंग, जो भी करोगे वही भरोगे. तो करने से पहले मनोभूमि में सोचो क्या करने जा रहा हूँ, एंड बी हैप्पी. इतना टेंशन मत लो यार, दैट्स व्हाट इज माय मंत्र. हाँ,
1: तो अब बातें तो खूब हो गई, अब थोड़ा जरा बाहर चला जाए, देखे अपना लोखंड वाला क्या कर रहा है.
0: लेट्स गो, लेट्स गो.

0: ढेर सारी बातें करने के बाद प्रणीत भट्ट को मौका मिल गया है अंधेरी की लोखंडवाला की गलियों में घूमने फिरने का। भाई हर दिन प्रणीत भट्ट इन गलियों में टहलते हैं और जब भी इन्हें मन करता है तो वो अपनी फेवरेट जगह पर पहुंच जाते हैं पानी पूरी खाने के लिए।
1: तो प्रणीत निकल चुके हैं लोखंडवाला की गलियों में।
2: ये लोखंडवाला है, ये हमारा घर है, हमारी कर्म भूमि, यहीं से निकले हैं और चल रहे हैं बस।
1: कुछ थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे पिएंगे।
2: राइट, डेफिनेटली डेफिनेटली। मानसून पानी पूरी, पानी पूरी पसंद है आपको? चलो चलो।

यहाँ पानीपुरी बहुत फेमस है, मानसून पानीपुरी 20 साल से है ना, 20 ईयर्स से है, लोकन वाला से ज्यादा मानसून पानीपुरी सबको पता है।

0: चटपटे चटकारों संग प्रणीत भट्ट ने सास बहू और बेटियां संग अपना ये सफर तय किया। ढेर सारी बातें भी की और साथ ही साथ एक राज की भी बात बताई कि एक्टर बनने के साथ साथ बड़े पर्दे में आने के बाद अब ये डायरेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहे हैं और जल्द ही ला रहे हैं अपने फैंस के लिए एक नया प्रोजेक्ट।
1: अब नेक्स्ट जो है आपको देखने का लुफ्त लोग कब उठाने वाले हैं?
2: अभी आगे के जो प्रोजेक्ट है नानूपुर, बहुत कुछ है लाइनअप में जिसपे हम लोग काफी 2 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो रिसेंट है वो है प्ले महाकाल। भगवान महाकाल और महाकाली माता आदिशक्ति की कहानी है जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और ये विंदु दारा सिंह जी और अमित पचौरी जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सरोज जी, और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और एक रोल मैं भी कर रहा हूँ। सो दैट इज गोना बी, उसकी शुरुआत होगी दिल्ली से, भारत मंडपम से 26 अगस्त से महाकाल आ रहे हैं, देखने जरूर आइएगा।
1: हमारी ओर से भी आपको ऑल द बेस्ट जो हमें।
2: थैंक यू वेरी मच नुपुर,
1: ऐसे हमारी
2: थैंक यू सो मच, एंड आई वांट टू टेल ऑल माय ऑडियंसेस थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव टू हॉन्टेड, एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, और ये मेरी पहली फिल्म है और पहली बार बॉक्स ऑफिस पे आया हूँ मैं। थैंक यू, आशीर्वाद बना के रखिएगा, थैंक यू।
0: चलिए विदा लेते हैं प्रणीत भट्ट से और रुख करते हैं एक नए डे आउट की ओर जो जल्द ही आपको दिखाएगा सास बहू और बेटियां। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: आज तो सास बहू और बेटिया की ये पार्टी चलेगी नॉनस्टॉप, नहीं आएगा इसमें कोई भी ट्विस्ट। लेकिन क्या करें हम अपनी एंटरटेनमेंट की कहानियों का, यहाँ तो ट्विस्ट हैं भरपूर, क्योंकि जितनी सारी कहानियां हैं हमारे पास उतने ही सारे हैं ट्विस्ट। और हम जानते हैं आपके लिए पॉसिबल नहीं है हर कहानी को देखना, तभी तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए ट्विस्ट का ये सिलसिला, वो भी एक साथ।
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है?
0: स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान घर छोड़कर चला गया है, ये सुनकर न सिर्फ अभीरा, मायरा और मुक्ति परेशान हैं, बल्कि विद्या, माधव और दादी साहब भी हैरान हैं। ऐसे में अरमान जाने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करके गया है जहां पर उसने अपनी बीमारी के बारे में खुलासा किया, जो पहली बार दादी साहब, विद्या और माधव के सामने आया।
5: इस सर्जरी के 2 ही आउटकम्स है, बाय बाय दुनिया या बाय बाय इंडिपेंडेंस। और मैं बता रहा हूँ मैं इतना अनलकी हूँ कि पक्का चलने फिरने के लायक नहीं रहूंगा, ब्रेन ट्यूमर जीत जाएगा।
6: ब्रेन ट्यूमर?
5: और तुम्हारी उम्मीद हार जाएगी, और तुम्हें पता है कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ अमीरा, अपनी शर्मा जी को हारते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जा रहा।
0: अरमान की बातें सुनकर अभीरा, मायरा और सभी इमोशनल हो रहे हैं, और दादी सा उनकी तो हालत खराब हो गई है, तभी तो देखिए कैसे बदहवास हालत में वो पहुंच गए हैं पोदार हाउस। चलने की कोशिश कर रहे हैं पर उन्हें लग रहा है कि उनकी राहें खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में उनका ये हाल देखकर मनोज हैरान होता है और जानने की कोशिश करता है कि आखिर अरमान और अभीरा वापस घर आए क्यों नहीं। ऐसे में मनोज की बातें सुनकर दादी साहब फूट फूट कर रोने लगती हैं।
7: मां साहब, वो अरमान अभीरा नहीं माने, आप चिंता मत करिए, मैं उन दोनों को मना के घर वापस लेकर आऊंगा, मैं उनसे दिशा की सारी गलतियों की माफी मांगूंगा। मां साहब आप बस अभी घर में चलिए, आप अंदर चलिए प्लीज।
5: अरमान, मासे क्या हो गया?
7: मासा ऐसे क्यों रो रही हो? अरमान ठीक तो है ना मासा? मासा आखिर हुआ क्या है?
8: बाबू है हमसे मनोज, हमसे बहुत बड़ा बाबू है मनोज।
0: दादी साह ने मनोज को बताया कि अरमान को ब्रेन ट्यूमर हुआ है। मनोज ने ये खबर पूरे परिवार को बताई और पूरा परिवार ये सुनकर सदमे में चला गया है, और तो और सभी को हो रहा है पछतावा भी कि ऐसी हालत में उन्होंने अरमान के साथ न जाने कितने जुल्म ढाए।
5: क्या बकवास बोल रहा हूँ, बच्चे की तबीयत खराब थी और मैंने ये नहीं हो सकता,
6: ये सच नहीं हो सकता,
9: नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
10: मैं उस किसी भी गलती के लिए माफी नहीं मांगूंगा जो मैंने की नहीं है।
11: फिर मैं भी दिशा के साथ घर छोड़कर चला जाता हूं।
12: भैया को फोन करता हूं।
10: मैं अरमान भैया से बात करूंगा, मैं उन्हें घर वापस ला करूंगा।
13: देखिए कितनी कमजोर हो गई है आप।
0: स्टार प्लस की सीरियल सैराब में नोएनिका इन दिनों हो रही है इमोशनल। असल में उसे अपनी बीमारी के बारे में पता चल गया है, जिसको लेकर वो परेशान है और तो और डर भी लग रहा है कि कहीं वो अपनी बेटी को छोड़कर चली ना जाए। ऐसे में देखिए कैसे वो अपने इलाज के लिए मुंबई की ओर निकल तो रही है, लेकिन उसने घर वालों को बताया नहीं है। हालांकि जाने से पहले वो रुशा से एक विनती करती है कि उसके न रहने पर वो उसकी बेटी का हमेशा ख्याल रखे। ये सुनकर रुशा भी हैरान है। अब उसे क्या पता कि नोएनिका के दिल में क्या चल रहा है।
14: जिंदगी और मौत का अंदाजा कौन लगा सकता है रुशा? इस वक्त मेरे सर पर मौत जैसे मंडरा रही है। देखते हैं आगे क्या होता है।
15: दीदी ऐसी फालतू की बातें मत सोचो।
16: आप बाहर से कितने भी शांत और नर्म हो, अंदर से एकदम फाइटर हो ना, योद्धा। जंग खत्म किए बिना, जीत का ताज पहने बिना मैदान छोड़ के जाने की बातें कर रहे हो।
15: थैंक यू रुशा, थैंक यू। चल मुझे लेट हो जाएगा, फ्लाइट है मेरी। मैं निकलती हूँ।
16: हाँ
15: हाँ, आप फोन और मैसेज कर देना जाते ही। हाँ, तू अपना और सबका ख्याल रख।
0: अब नोएना ने जिस तरह से रुशा को गले लगाया और आंसू बहाए और अपनी बेटी के रखरखाव का वादा लिया, उस हिसाब से रुशा को अंदेशा हो गया है कि जरूर नोएनिका को कोई बड़ी बीमारी है। खैर नोएनिका अपना सामान लेकर निकल गई है मुंबई की ओर, और तो और वो पहुंच भी गई है और मुंबई में वो सेमिनार के बहाने आई है।
15: अच्छा, ये सेमिनार 10 बजे तक स्टार्ट हो जाएगा ना?
17: हाँ मैडम जी।
15: और मेरे ख्याल में 2 बजे तक लंच भी हो जाना चाहिए।
17: हाँ मैडम, वैसे 10 से 1 तक सेमिनार चलेगी पहले, और उसके बाद लंच ब्रेक होगा।
15: सेमिनार के बाद मुझे तुरंत कहीं जाना है, इसलिए मैं लंच नहीं कर पाऊंगी।
17: वैसे मैडम आपको कहाँ जाना है? मेरा मतलब था कि आप किस तरफ जाना चाहती हैं?
15: अंधेरी वेस्ट।
17: ओ अच्छा, किसी रिश्तेदार के पास?
15: नहीं, मुझे कैंसर हॉस्पिटल जाना था।
17: अच्छा, तो जरूर आपका वहाँ कोई जान पहचान का होगा।
0: अब नोएनिका को जाना तो अंधेरी है कैंसर हॉस्पिटल, लेकिन अंधेरी में ईशान भी रहता है और कहीं न कहीं नोएनिका और ईशान की मुलाकात होगी ही, और ईशान को नोएनिका की बीमारी के बारे में पता भी चलेगा।
15: ऐसे बैठा दिया मुझे कार में, कम से कम बताओ तो सही कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो।
18: पहले तो मुझे ये बताओ कि इतनी बड़ी बात आखिर कैसे हुआ है सर?
15: क्या
18: तुम इतनी बुरी बीमारी के साथ यहाँ के लिए आई हो? हमारे घर वालों को पता है?
15: नहीं।
18: तुम भले ही मुझे इन्वॉल्व ना करना चाहो, लेकिन भगवान हमारे साथ है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आई प्रॉमिस तुम्हारी खुशियों में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तुम्हारी मुश्किलों में मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। प्रॉमिस करो मुझे।
3: मन्नत, हम तो लिटरली यही चाहते हैं कि आपकी जिंदगी भी हो ना एक पार्टी जैसी, जहां पर हो म्यूजिक, डांस, खुशियां, जहां आकर कोई भी हो जाए स्ट्रेस फ्री। वैसे देखिए, आप तो जिस किसी की भी जिंदगी में आती है ना, उसमें लेकर ही आती हैं खुशियां, लेकिन इन रिटर्न आपको क्या मिलता है? ढेर सारे ट्विस्ट। अरे ट्विस्ट तो आपका पीछा ही नहीं छोड़ते, और ये जो नेगेटिव किरदार हैं आपकी कहानी में वो भी इतने सारे, वो तो हाथ धोकर आपके पीछे पड़े ही रहते हैं। तो क्या कुछ हो रहा है मन्नत की कहानी में आज? क्या इन्हें भी मिल रहे हैं कुछ फुर्सत के पल? आइए देखें।
0: खतरे में दुआ। रक्षक बने पापा।
19: Living it all out, I got
0: हुआ पापा बेटी का मिलन। मिलन से अनजान मन्नत। कलर्स के सीरियल मन्नत में खतरे में पड़ गई है मन्नत की बिटिया दुआ। असल में मन्नत ने उन गुंडों को देख लिया है जो बच्चों को किडनैप कर रहे हैं और एक एक कर बच्चों को वैन में भर रहे हैं। वही वैन जिसे मोबाइल में बात करते हुए अभिमन्यु ने देख लिया था जो उसके करीब से ही गुजरी थी। यहाँ दुआ ने गुंडो को देखा, गुंडो ने दुआ को देखा और गुंडो को लगा कि दुआ इन्हीं बच्चों में शामिल है। ऐसे में जैसे ही दुआ भागने लगती है तो उनका बदमाश दुआ को पकड़ने के लिए पीछे आ जाता है, लेकिन दुआ इतनी तेज पापा कहकर बुलाती है कि आवाज सीधा अभिमन्यु के कानों में गूंज उठती है और अभिमन्यु खींचा चला आता है उसकी रक्षा करने के लिए।

0: अब अभिमन्यु रक्षक बनकर दुआ के सामने क्या आया, उसे देखकर दुआ हैरान है। उसकी तो बोलती भी बद हो गई, चाहकर भी वो कुछ कह नहीं पाई। लेकिन अभिमन्यु वो दुआ को ले जाकर छिपाता है और उसे आदेश देता है, और दुआ उसकी बातें चुपचाप मान भी लेती है।
1: बाबा जी ने भेजा मुझे तेरी सुरक्षा करने के लिए। बाबा जी का बंदा समझ रहा मुझे, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस मेरा एक काम करें, जब तक मैं ना कहूँ ठीक है, इससे निकलना ठीक है।
0: यहाँ दुआ अभिमन्यु का कहना मान छिप कर बैठी हुई है, और वहाँ अभिमन्यु उन बदमाशों को एक एक कर सबक सिखा रहा है, इस बात से अनजान कि ये बदमाश किसी और के नहीं बल्कि सम्राज्ञी के ही भेजे हुए हैं बच्चों को किडनैप करने के लिए। रम्मा।

0: बदमाशों के रोकने पर विक्रांत रुका नहीं, लेकिन अंकित ने आकर उसे रोक लिया। ऐसे में तभी दुआ आकर ये सच बताती है कि ये सभी बदमाश बच्चों को किडनैप करके ले जा रहे हैं। बस फिर क्या, ये सुनते ही विक्रांत का गुस्सा और भी भड़क गया और दुआ को छोड़ वो वहाँ से निकल गया उन बदमाशों को पकड़ने के लिए। यहाँ अंकित ने सम्रागी को इन्फॉर्मेशन दी तो वहाँ बंटी ने धैर्य और मन्नत को कॉल कर बुला लिया। ऐसे में धैर्य और मन्नत घबराए हुए दौड़कर वहाँ पर आते हैं और दुआ से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा क्या है, और दुआ चाहकर भी ये बता नहीं पा रही कि उसने अपने पापा विक्रांत को देखा है।
1: कुछ गुंडे आकर बच्चों को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं दुआ वहाँ पर कैसे आ गई, वो तो अच्छे अभिमन्यु ने आकर सही वक्त पर बच्चों को बचा लिया। कुछ बच्चे गाड़ी में भी है।
2: कुमार अपनी टीम को बोलो तुरंत सारे बच्चों को लेके अंदर जाए।
3: जी सर,
2: इमीडिएटली।
1: भगवान का शुक्र है कि अभिमन्यु ने बच्चों को बचा लिया, लेकिन वो उसे गुंडों के पीछे नहीं जाना चाहिए था।
4: गुंडे तो बहुत खतरनाक होंगे, वो पीछे जाएंगे।
0: भाई दुआ तो बिना बताए ही बेहोश हो गई कि उसने अपने पापा को देखा है। खैर मन्नत तो अनजान है, लेकिन उसे डाउट हो गया है कि अभिमन्यु ही उसका विक्रांत है। ऐसे में दुआ अपनी बेटी को वहाँ से ले जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर आती है मान्यता, जिसे पता चलता है कि विक्रांत उन बदमाशों के पीछे चला गया है। बस फिर क्या, ये सुनते ही मान्यता अपना आपा खो देती है। अब सम्रागी अपनी बहन की हालत जानती है, इसीलिए वो उसे समझा रही है और हौसला बढ़ा रही है कि उसके अभिमन्यु को कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि जब अभिमन्यु वापस आएगा तो कहानी में नया ट्विस्ट ही आएगा, क्योंकि विक्रांत और मन्नत का आमना सामना जो होगा, देखना होगा कि क्या मन्नत अभिमन्यु को ये याद दिला पाएगी कि वो ही उसका विक्रांत है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
5: क्या होगा कहानी में जब जगदात्री और शिवाई भी करेंगे सैटरडे वाली पार्टी? वेल, पार्टी शुरू होगी एज यूजुअल विद फुल फेस्टिविटीज एंड फर्वर, लेकिन उसके बाद क्या होगा? आएगा कहानी में कोई ना कोई नया ड्रामा, फिर जगदात्री और शिवाय निकल पड़ेंगे अपने अपने मिशन पर, फिर हो जाएगा यहाँ पर एक हाई एक्शन वोल्टेज सीक्वेंस, और फिर आएगी हमारे लिए राहत। सच में इनकी कहानी में भी कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है जो हमें इस कहानी से बांध कर रखता है। लेकर चलते हैं आप सबको जगदात्री के पास। फिर

0: में गुम हुए शिवाय और जगधात्री
1: तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे।
0: जगधात्री और शिवाय के रिश्ते की नई शुरुआत।

सीटीवी के सीरियल जगधात्री में आज शिवाय और जगधात्री दोनों ही प्यार की दुनिया में खोए हुए लग रहे हैं, और लगे भी क्यों ना, वही दोनों का रिश्ता जुड़ने जा रहा है, वो भी पूरे परिवार के सामने। होने वाला है इनका पुनर्विवाह। ऐसे में शिवाय तो बहुत खुश है, क्योंकि वो तो जगधात्री से प्यार करते हैं, इसीलिए देखिए कैसे वो जगधात्री संग सपनों की दुनिया में खो गए हैं और रोमांस फरमा रहे हैं अपनी जगधात्री संग।

अब शिवाय से प्यार तो जगधात्री भी करती है, लेकिन फर्ज के आगे जगधात्री ने प्यार को कुर्बान कर दिया है। ये शादी सिर्फ और सिर्फ मूसा को पकड़ने के लिए और अपनी माँ को बेगुनाह साबित करने के लिए जगधात्री कर तो रही है, लेकिन कहीं न कहीं इसका दिल भी इस रिश्ते के लिए हामी भर चुका है। अब देखना होगा कि कब जगधात्री शिवाय से अपने दिल की बात कहेगी और ये रिश्ता सच में तब जुड़ेगा।

0: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: अब एक सैटरडे वाली पार्टी में भी आ जाता है ड्रामा, बताइए कब, जब पार्टी का डीजे ही हो डल एंड बोरिंग, क्योंकि डीजे ही तो करता है पार्टी के फुल मूड को सेट। इसे आपको बताऊं, इससे भी बड़ा ड्रामा आया है हमारी सगली कहानी में, जो बदल रहा है इस कहानी का मोड, क्योंकि कहानी में फिर से आया है एक नया ट्विस्ट। अब आप मुझसे पूछेंगे कि क्यों मैं ऐसे पहेलियां बुझा रही हूं, चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इसकी ओर।
0: सरू और वेद के मोह मोह के धागे,

मस्कली के डर से एक दूसरे की बाहों में बंधे। धागे ने बना दी सरू और वेद की जोड़ी।

टीवी के सीरियल सरू में आज छिपकली लेकर आ गई है सरू और वेद को एक दूसरे के करीब। असल में सरू के हाथों में मौली का धागा है जिसका छोर वेद के कोट में अटका हुआ है। इसी बीच सरू की नज़र पड़ जाती है दीवार पर जहां पर छिपकली है। बस फिर क्या, उसे देखकर डर जाती है सरू और वेद के इर्द गिर्द घूमने लगती है, जिसके चलते वो मौली के धागे से वेद और अपने आप दोनों को ही बांध लेती है।

वह जितनी आसानी से दोनों मौली के धागे में बंध गए हैं, ऑफ कैमरा इतना आसान नहीं था उस धागे से वेद और अपने आप को बांधना, क्योंकि इस सीन को फिल्माने के लिए सरू को बार बार मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि टेक पर रीटेक हुए हैं।

और फिर सीन फिल्माया गया कि धागे में बंधने के बाद वेद और सरू दोनों को एहसास होता है कि दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं, और इसी एहसास के बीच दोनों एक दूसरे से बहस भी करने लगते हैं।

0: भी वहां चिपकली वहां अगर होगी तो वहां दीवार पर होगी ना सर। इतना सारा ड्रामा करना जरूरी है क्या तुम्हें? इसके बिना तुम्हारा टाइम पास नहीं होता।
1: पानी रोक दिया तुम्हारे पास
2: हमारे को आपके पास आने का कोई बहाना बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं है। और हमारे को तो लगे ना ये चिपकली आपने हमारे पे छोड़ी है, क्योंकि आपको तो पता है कि हमारे को चिपकली से डर लगे, इसलिए आप बहाने बना रहे हैं। आप मैं नाराज थी आपकी वजह से, साजिश वगैरह। ठीक है,
0: हो गया तुम्हारा, हो गया तुम्हारे पास जिंदगी में सिर्फ यही काम है कि मैं दीवारों पर से चिपकली पकड़ूं और तुम्हारे पीछे छोड़ूं।
2: हां तो कुछ भी कर सकते,
0: बड़ी मासूम हो ना तुम।
2: और आप बड़े शरीफ है
0: तो तुम ये हिलना बंद करो।
2: मैं कुछ नहीं हिल रही हूँ, बस जुबान चल रही है मेरी, मैं एकदम स्थिर हूँ। और आप कौन से इंजीनियर बने पड़े? हाँ
0: ये जुबान ही सिर्फ जुबान चल रही है।
2: कुछ मुझे नहीं, मैं आसानी से ना सुन।
3: खैर दोनों ने कैसे भी करके अपनी ही बहस पर ब्रेक लगाया और उस मौली के धागे से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। और इसी छुड़ाने के बीच दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और दोनों को प्यार का एहसास भी हो रहा है।

0: खैर दोनों एक दूसरे से प्यार करते ही हैं, लेकिन अनिका के चक्कर में दोनों एक हो नहीं पा रहे। लेकिन सरू ने अनिका का खुलासा करने की भी तैयारी कर ली है।
1: मैम, जैसा आपने कहा था, मैंने अनिका मैम के लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर डाली है, उसका कंट्रोल मेरे हाथों में। आप जब भी कहेंगी ऑडियो वहाँ पे क्लिप
0: देखना होगा क्या सरू उसमें कामयाब हो पाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: एक वीकेंड वाली पार्टी तो होती है बहुत ही धमाकेदार, होती है डेफिनेटली रॉकिंग। लेकिन वीकेंड वाली पार्टी के बाद अगर सुबह सुबह आपको जाना पड़े काम पर, ओ माय गॉड, मतलब संडे को भी काम, तो डेफिनेटली हो जाएगा शॉकिंग। ओ माय गॉड, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं संडे को भी काम करना? देखिए, हम तो इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि हम एक्टर्स को तो किसी भी दिन नहीं मिलती है छुट्टी। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको हमारे इस अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग अलग रंग। ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
3: ये कॉम्पिटिशन, मेरा अपना घर, मेरा सम्मान, मेरी पहचान, सब की सीढ़ी है।
0: सास बहू और बेटियां लेकर हाजिर हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। देख लीजिए स्टार प्लस की सीरियल अनुपमा का ये रॉकिंग प्रोमो, जहां पर सास और दामाद के बीच जल्द शुरू होने वाला है कुकिंग कंपटीशन, जो भारी पड़ने वाला है अनुपमा को।
3: ये कंपटीशन, मेरा अपना घर, मेरा सम्मान, मेरी पहचान, सब की सीढ़ी है। आप साथ दीजिएगा।
4: इंसान अपनों से ही हारता है अनुपमा जी, पर आपको जीतना होगा खुद के लिए।
3: जय श्री कृष्ण।
5: और ये है पहला चैलेंज।
3: खाना जी, ये कैसे होगा?
6: सिर्फ खाना बनाना होता तो मम्मी यही जीत जाती।
7: ये चैलेंज इनके औकात के बाहर है।
0: इसी के साथ देख लीजिए स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का ये नया प्रोमो, जहां पर होगा अरमान और अभीरा का पुनर्विवाह।
8: इस मिलन के अवसर पर आइएगा जरूर।
0: Amazon Prime पर अलायंस ने दस्तक तो दे दी है, लेकिन आते के साथ ही एक और खबर इसके साथ जुड़ गई है। खबरों की माने तो सोहेल खान इस रियलिटी शो में जल्द ही वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री करेंगे। हालांकि सोहेल खान ने अब तक कंफर्मेशन नहीं दी है। देख लीजिए आलिया भट्ट और शौर्वरी की आने वाली फिल्म अल्फा का ये BTS वीडियो, जहां पर दिखाया जा रहा है कि कैसे सीन फिल्माने के लिए शौर्वरी, आलिया, बॉबी देओल इन सब ने मेहनत की है।

0: ये क्या लिखा है?
1: डियर टंडन फैमिली।
2: कलर्स के सीरियल आरंभी में जल्द ही आरंभी के ससुराल पर आने वाली है मुसीबत, जिसका अंदेशा आरंभी को हो गया है। देख लीजिए ये प्रोमो।
0: ये क्या लिखा है?
1: डियर टंडन फैमिली, तुम्हारी पूरी दुनिया जल के राख होने वाली है। आपका कोई ऐसा राज है जो एक्चुअली में बाहर आ सकता है? कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना रिश्ता?
3: कौन हो सकता है सबके पीछे? हम सब किसी खतरे में तो नहीं है? टंडन फैमिली पे कोई सोचा समझा प्लान्ड अटैक तो नहीं कर रहा है?
2: इसी के साथ देख लीजिए सीरियल आरंभी में अवंतिका का किरदार निभाने वाली अंजुम फाकी के ये BTS तस्वीरें, जो उन्होंने खुद अपने फैंस के लिए शेयर की हैं।

हाल ही में इमरान हाशमी और जेनिलियो डिसूजा की आने वाली फिल्म गन मास्टर G9 की शूटिंग के कुछ BTS नज़ारे सामने आए हैं। ये वीडियो वायरल भी हो रहा है और इसमें जेनिलिया का खास अंदाज भी दिखाया गया है।

करिश्मा तन्ना ने अपने फैंस के लिए शेयर की है अपनी प्रेगनेंसी फोटो, जहां पर वो और उनके पति दोनों ही साथ में नजर आ रहे हैं, वो भी यूनिक वे में।

तमन्ना भाटिया ने हाल ही में अपने फैंस के लिए शेयर की हैं कुछ तस्वीरें, और ये तस्वीरें हैं उनके दोस्त की शादी की। और इन तस्वीरों में तमन्ना के साथ नजर आ रही हैं, और इन तस्वीरों में तमन्ना के साथ नजर आ रही हैं त्रिशा भी।

खतरों के खिलाड़ी शूट खत्म कर केप टाउन से इंडिया लौट आए हैं हर्ष गुजराल और पहुंच गए हैं सीधा अपने गांव और शेयर किया है वहां से अपने फैंस के लिए एक वीडियो।

0: आप लोग मुझे लड़की बनाने का सोच रहे हो?
1: आप ये रोल कर सकते हैं।
2: देख लीजिए सोनी सब के सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये प्रोमो, जहां पर बागा को मिल गई है नई गर्लफ्रेंड, जिसे देख घबरा रही है बावरी।
3: बागेश्वर जी दूसरी लड़की के साथ नारियल पानी पी रहा
4: है। आई लव यू,
3: आई लव यू बोल रही है।
5: आई लव यू टू।
6: अब एक सैटरडे वाली पार्टी करना किससे अच्छा नहीं लगता, ये तो होते हैं ना हमारे हैप्पी आवर्स, क्योंकि एक पार्टी तो कर देती है हमें कम्प्लीटली स्ट्रेस फ्री। गुड फूड, दोस्तों के साथ म्यूजिक, डांस, ओ माय गॉड, ये तो है एक ऑल टाइम हिट कॉम्बिनेशन। बिल्कुल ऐसा ही हिट है हमारा ये सेगमेंट, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज। जी हाँ, हैप्पी आवर्स।

0: वाओ,
1: विशु सर, आज विशु दिवस पर कुछ बहुत खास लोग हैं जो आपको कुछ कहना चाहते हैं।
2: मैंने भी पक किया, मैं विशाल जी का पर्सनल बॉय।
3: पकिया विशाल सर का फेवरेट है।
2: जब विशाल सर मुझे पकिया बुलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कभी हमसे गुस्सा थोड़ा करते हैं, बाद में बोलते हैं पकिया सॉरी यार, तो बुरा लगेगा। नहीं सर, आप बोलिए जो बोलना है। आइडल 15 के एंड में सर ने मना किया कि मुझे आइडल नहीं करना है। मैं सर से बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, सर बोले थे पकिया ने बोला, इसलिए मैं वापस आया हूँ, तो मैं आता नहीं था। एक होता ना कि बहुत लोग समझते कि मेरा बॉय है विशाल जी, हम कैसा बॉय कभी मानते नहीं, एक दोस्त मानते हैं। आज मैं जो हूँ विशाल जी की वजह से मैं हूँ।

0: जैसे सर आप पखिया बोलते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है।
1: और ऑप्शन क्या है मेरे
0: तो
1: पास?
0: एक बार बोल दीजिए।
1: पखिया
2: करेंगे सबका स्वागत।

0: आज से करेंगे सबका स्वागत।
1: मैंने आज एक दो घंटे पहले पक्या से बोला एक दिन तू उस स्क्रीन पे होगा। थैंक यू सर, हैप्पी बर्थडे। अरे थैंक यू मेरे भाई।
2: तो कैसा रहा हमारा ये सैटरडे पार्टी स्पेशल, कैसा रहा हमारा ये धमाकेदार एपिसोड? हमने आपको घर बैठे बैठे करवा दिया ना एंटरटेनमेंट की दुनिया का सफर। अब मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह ओनली ऑन सास बहू और बेटियां, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।
3: स्कोर व्हाट यू नीड फॉर समर परफेक्टली पिक्ड फॉर यू एट टारगेट, इंक्लूडिंग अप एंड अप स्ट्रॉबेरी सेंटेड सनस्क्रीन, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
4: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
12: स्टार जावलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से जुड़ी बड़ी खबर, जापान एशियन गेम्स में खेलना हुआ कंफर्म, AFI चयन समिति के अध्यक्ष ने दिया अपडेट, 19 सितंबर से होगा आयोजन। बाल्टीमोर बंदरगाह पर दिखी भारत की समृद्ध समुद्री विरासत की तस्वीर, मिड अटलांटिक के बड़े पुलों के नीचे से गुजरा, 13,000 नॉटिकल मील का सफर तय करके पहुंचा नॉरफॉक। गुजरात के 14 शहरों को मिली सुगम यातायात की सौगात, भारत टैक्सी ऐप का शुभारंभ गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में उद्घाटन किया। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए शानदार खबर, 19 जून को खत्म हुए सप्ताह में बड़ा देश का विदेशी मुद्रा भंडार, 96,30,00,000 डॉलर की हुई बढ़ोतरी। चीन की राजधानी बीजिंग में प्रकृति का चमत्कार, 800 साल पुराने बीज से उगाया गया दुर्लभ कमल, लोटस कल्चर फेस्टिवल में लगाई प्रदर्शनी।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
12: छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 393वीं वर्षगांठ के मौके पर नागपुर में मनाया जा रहा है जश्न। हिंदू पंचांग के मुताबिक आज राज्याभिषेक की वर्षगांठ। शिवाजी के राज्याभिषेक के ऐतिहासिक मौके पर उत्सव में डूबा पूरा नागपुर शहर, गूंज रहे जय भवानी जय शिवाजी के नारे। शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अभिषेक के लिए लाया गया गंगा नर्मदा गोदावरी चंद्रभागा समेत 7 पवित्र नदियों का जल। राज्याभिषेक की वर्षगांठ के मौके पर निकाली गई शिवाजी महाराज की प्रतिमा की झांकी, कार्यक्रम में हजारों लोग पारंपरिक वेशभूषा में हुए शामिल।

शहर में भंडारे और रक्तदान शिविर भी लगाए गए। मॉनसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, आने वाले 24 घंटे में बिहार झारखंड के सभी इलाकों और उत्तर प्रदेश पहुंचने की संभावना। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में तेज होगी मॉनसूनी गतिविधियां, 29 से 30 जून के बीच उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय हो सकता है मॉनसून। सबसे पहले पूर्वी यूपी में देखने को मिलेगा मॉनसून का असर, बढ़ेगा बारिश का दायरा, तापमान में 5 से 8 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना, लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद। 80 मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम समेत पूरे पूर्वोत्तर में मॉनसून की बारिश जारी, मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मॉनसून के विस्तार के लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में फिलहाल भारी बारिश की संभावना कम, गरज चमक के साथ बादल छाने और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना। कई राज्यों में भीषण गर्मी के बीच पर्यटकों को लुभा रहा श्रीनगर का सुहाना मौसम, छुट्टियां मनाने श्रीनगर पहुंच रहे हैं पर्यटक। श्रीनगर की मशहूर डल झील में शिकारा राइड का आनंद लेते दिखे सैलानी, श्रीनगर के सुहाने मौसम से खुश दिखे पर्यटक। जम्मू कश्मीर में पर्यटन बढ़ने से नई जगहों के एक्सप्लोरर होने की जगह जगी आस, मनमोहक नजारों और नजारों वाली शोपियां की पीर की गली को पर्यटकों का इंतजार। लद्दाख के निमू इलाके को मिली नवीनीकृत महिला सशक्तिकरण केंद्र की सौगात, भारतीय सेना की ओर से बनाई बुनाई कार्यशाला का किया गया उद्घाटन। स्थानीय महिलाओं को मिला कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण का बेहतर मंच, महिलाओं में आत्मनिर्भरता के साथ क्षेत्र के विकास को मिलेगी इससे रफ्तार। असम में चाय के छोटे उत्पादकों के लिए गुड न्यूज, किसानों को मिलेगा फार्मर आईडी, फार्मर्स रजिस्ट्री पोर्टल पर रजिस्टर कर सकेंगे सरकारी सुविधाओं का लाभ। सीएम ममता ने चाय उत्पादकों के लिए बताया ऐतिहासिक दिन, चाय किसानों को समय पर मिलेगी खाद, आसानी से मिलेगा लोन, बिचौलियों से मिलेगी मुक्ति। आंध्र प्रदेश में व्हाट्सएप आधारित रियल टाइम गवर्नेंस पर सरकार का जोर, सभी सेवाओं में आधार वेरिफिकेशन को बढ़ावा देना लक्ष्य। आंध्र प्रदेश में राशन कार्ड अपडेट प्रक्रिया बनाई जाएगी आसान, सरकार ने अफसरों को जाति और आय प्रमाण पत्र से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए। केरलम के कलपेटा को आंगनबाड़ी की मिली सौगात, वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया उद्घाटन। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, 19 जून को खत्म हुए सप्ताह में बढ़ा देश का विदेशी मुद्रा भंडार, 96 करोड़ 30 लाख डॉलर की हुई बढ़ोतरी। बढ़ोतरी के बाद 672 अरब डॉलर से ज्यादा हुआ देश का विदेशी मुद्रा भंडार, पिछले सप्ताह सोने के भंडार के मूल्य में 411 करोड़ डॉलर की हुई बढ़ोतरी। उत्तराखंड को मिली बागवानी से जुड़ी गई परियोजनाओं की सौगात, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 46.32 करोड़ में तैयार 9 योजनाओं का किया उद्घाटन। रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ, 323.34 करोड़ के 32 विकास कार्यों की रखी आधारशिला, मुक्तेश्वर में क्लीन प्लांट सेंटर निर्माण का ऐलान। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिखा गोवंश प्रेम, मुख्यमंत्री ने गौशाला पहुंचकर गोवंश को खिलाया गुड़ और चना। युवाओं के लिए केंद्र सरकार में कई पदों पर सीधी भर्ती का मौका, केंद्रीय लोक सेवा आयोग ने भर्ती के लिए मंगाया आवेदन। ओडिशा में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने वाली गुड न्यूज, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने गो ईस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का ऐलान किया। दिल्ली में कल से पहले राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन का होगा आयोजन, ग्रामीण विकास योजनाओं की होगी समीक्षा, भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा रोडमैप। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने भारत में तेज की गतिविधियां, प्रभजीत सिंह को बनाया भारत में कंपनी का प्रबंध निदेशक। ओपन एआई के लिए कंज्यूमर ग्रोथ, एंटरप्राइज एडॉप्शन, पार्टनरशिप, रेगुलेटरी मामलों और ऑपरेशंस के प्रदर्शन की जिम्मेदारी संभालेंगे प्रभजीत सिंह। चारधाम यात्रा में बना हुआ यात्रियों का उत्साह, अब तक 40,50,000 से ज्यादा भक्त हो चुके हैं शामिल।
केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पहुंच रहे हैं सबसे ज्यादा श्रद्धालु। 13,20,000 से ज्यादा कर चुके हैं बद्री विशाल के दर्शन। हेमकुंड साहिब में अब तक 1.5 लाख के करीब श्रद्धालु टेक चुके हैं मत्था। करीब 5,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं रोज। 22वें तीर्थकर भगवान नेमीनाथ के निर्वाण दिवस पर नोएडा में निकाली गई श्री नेमी गिरनार धर्म यात्रा जूनागढ़ स्थित गिरनार पर्वत तक निकाली जा रही है 25 दिवसीय यात्रा। ग्रेटर चेन्नई में पुलिस ने किया फूड फेस्टिवल का आयोजन। एग्मोर पुलिस म्यूजियम में सजाए गए तरह तरह के व्यंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर सेशल्स रवाना। सेशल्स के राष्ट्र दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। सेशल्स दौरे के दौरान 194 साल के कछुए जॉनाथन से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव है जॉनाथन। गुजरात को मिली विकास की सौगात। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। अमित शाह ने गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का किया शुभारंभ। राज्य के 14 शहरों में शुरू की गई भारत टैक्सी कैब सेवा। अगले साल की शुरुआत में भारत दौरे पर आ सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिकी विदेश मंत्री ने किया ऐलान। बोले भारत अमेरिका में जल्द होगी ट्रेड डील। ग्रेटर नोएडा को मिली विकास योजनाओं की सौगात। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। नोएडा पहुंचने के पहले मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में सुनी जनता की फरियाद। गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। निहंग सिख समुदाय ने उत्तराखंड पुलिस की तत्परता की तारीफ की। कर्णप्रयाग में घायल निहंग के इलाज के लिए पुलिस और प्रशासन की तत्परता की तारीफ। टांग फ्रैक्चर होने के बाद पुलिस ने आधे घंटे के भीतर अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस और प्रशासन की तत्परता ने निहंग सिख समुदाय को बनाया मुरीद। 517वीं जयंती पर नाद प्रभु कैपेगोड़ा को बेंगलुरु में किया गया नमन। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने विधानसभा के सामने लगी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। FIH प्रो लीग हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 7-1 से दी करारी मात। हॉकी के मैदान पर पाकिस्तान को एक हफ्ते में दूसरी बार हराया। लंदन में खेले गए इस मुकाबले में सुखजीत सिंह हरमनप्रीत सिंह हार्दिक सिंह जुगराज सिंह अभिषेक राजकुमार पाल और दिलप्रीत सिंह ने किए गोल।

0: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space, to premiere original series and exclusive IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
2: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
3: अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजार

0: लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रविगिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे, और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है? जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है, बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज, जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं, जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है, क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है, जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं, जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं, उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। यह सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती। ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्थर। ये गंधपुरा पत्थर में 85-99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग। इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल। बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है ये मेजनकरी तेल। इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु। ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में ये है चित्रक मूल। ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू। इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन। अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म। यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है। यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों।
1: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to FinQuest.com, get yourself a $30 coin pack for just $10.
2: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
3: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
4: 2024 में T20 विश्व कप पर कब्जा, 2025 में जीता चैंपियंस ट्रॉफी का रण, अब लिया 2027 वर्ल्ड कप का प्रण, पद्मश्री रोहित शर्मा का अग्निपथ। वंदे में है दम श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: एआई की मदद से दौड़ेंगे सेना के टैंक, रोबोटिक वॉरियर संभालेंगे जंग की कमान, सेना के बैटल टैंक का कायाकल्प। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
9: साझा विंट्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से जुड़ी बड़ी खबर। जापान एशियन गेम्स में खेला हुआ कंफर्म। एएफआई चयन समिति के अध्यक्ष ने दी अपडेट, 19 सितंबर से होगा आयोजन। बाल्टीमोर बंदरगाह पर दिखी भारत की समृद्ध समुद्री विरासत की तस्वीर। मिड अटलांटिक के बड़े पुल के नीचे से गुजरा 13,000 नॉटिकल मील का सफर तय करके पहुंचा नॉरफॉक। गुजरात के 14 शहरों को मिली सुगम यातायात की सौगात। भारत टैक्सी ऐप का शुभारंभ, गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में किया उन्होंने उद्घाटन। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए शानदार खबर। 19 जून को खत्म हुए सप्ताह में बढ़ा देश का विदेशी मुद्रा भंडार, 96,30,00,000 डॉलर की हुई बढ़ोतरी। चीन की राजधानी बीजिंग में प्रकृति का चमत्कार, 800 साल पुराने बीज से उगाया गया दुर्लभ कमल, लोटस कल्चरल फेस्टिवल में लगाई प्रदर्शनी।

नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। सनातन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है मोक्ष। हर प्राणी मोक्ष पाना चाहता है, इसके लिए शास्त्रों में तमाम साधन भी बताए गए हैं। लेकिन उन साधनों के साथ साथ सात पुरों का भी जिक्र किया गया है जिनको हम सप्तपुरी कहते हैं। मान्यता है कि देवों से जुड़ी ये नगरिया मोक्ष का द्वार मानी जाती है। आखिर कौन सी है वो सप्तपुरियां जहां जाने को देवगण भी ललायत रहते हैं, आइए जानते हैं।

0: सरयू के तट पर बसी नगरी अयोध्या। यमुना के तट पर कान्हा की कथा सुनाती मथुरा। गंगा के तट पर हरि के धाम के द्वार खोलती हरिद्वार नगरी। शिव के त्रिशूल पट की अविनाशी नगरी काशी। शिप्रा के तट पर महाकाल की शोभा बढ़ाती उज्जैन नगरी। बागमती के तट पर बसी है कांची। अरब सागर और समंदर के संगम पर बसी है द्वारका। ये सभी सातों नगरी मोक्ष का द्वार मानी जाती है। कहते हैं कि सतयुग से लेकर कलयुग तक इन सातों नगरियों का नाता किसी न किसी रूप में देवताओं के साथ रहा है। इसीलिए सनातन शास्त्र इन सभी सातों नगरियों को मोक्षदायिनी सप्तपुरिया कहते हैं।
1: सप्तपुरियों का अर्थ है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव, सप्तयदा मोक्षदायिका। ये सब जो है मोक्षदायक पुरियां कही गई हैं। पुराने समय से इन्हीं स्थानों के ऊपर हमारी भारत की सभ्यता पनपी है, फली है और हमेशा आगे बढ़ती रही है। वो पवित्र नदियां जो हमारे हमेशा पूजनीय, उनके तटों के ऊपर बसने वाली इन पुरियों को मोक्षदायक
0: है। ये सभी सातों नगर या कहें कि पुरियां भगवान विष्णु से भी संबंध रखती हैं और भगवान शिव से भी। विष्णु पुराण हो या फिर स्कंद या फिर शिव पुराण, सभी पुराणों की व्याख्या है कि शिव से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। विष्णु इस संसार को गति और संरक्षण देते हैं, जबकि शिव में ही अंत में ये सृष्टि विलीन हो जाती है एक नए चक्र के जन्म के लिए। जन्म और मृत्यु के साथ साथ फिर से जन्म लेने के इसी फेर को जो खत्म कर देता है उसे मोक्ष मिल जाता है।
2: सप्तपुरियों में पहला नाम मिलता है अयोध्या का, भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या, मान्यता है कि यही अयोध्या महाराजा मनु द्वारा बसाई गई पहली नगरी थी।
0: अयोध्या शब्द के वर्णन में स्कंद पुराण में व्याख्या मिलती है। अकार ब्रह्मा का स्वरूप है, यकार विष्णु का स्वरूप है, धकार रुद्र यानी शिव का स्वरूप है। अयोध्या का एक नाम साकेत भी है। कहते हैं कि ये नगरी भगवान विष्णु के चक्र पर स्थित है। सरयू के किनारे त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश में भगवान राम ने इस नगरी में अवतार लेकर इसे युगों युगों के लिए धन्य कर दिया।
1: अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसी हुई वो नगरी है जिसे स्वयं सूर्यवंश ने अपने आप को अंगीकार किया। पूरा सूर्यवंश पुण्यदायी है, जिसमें महाराज भगीरथ भी हुए हैं जिन्होंने गंगा को इस धरती पर अवतरित किया और मोक्ष दिया। उन्हीं के वंशजों में भगवान श्री राम हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान नारायण के अवतारों में से एक माने जाते हैं। ये वो भूमि है जिसकी रज मात्र शरीर पर लग जाए तो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
0: कहते हैं कि अयोध्या में ही मुंह दिखाई में माँ सीता को कनक भवन दिया गया था जो सोने की तरह चमकता था। लंका में रावण का विनाश कर भगवान राम पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या वापस आए। कहते हैं कि उस दिन पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से प्रज्वलित कर दीपावली मनाई गई थी। जहां राम रहे वहां उनके परम भक्त हनुमान न हो ऐसा हो ही नहीं सकता, इसीलिए अयोध्या में ही हनुमान गढ़ी में भगवान हनुमान के दर्शन भी होते हैं। अयोध्या यूं तो सदैव किसी न किसी आयोजन में व्यस्त रहती है, लेकिन श्री राम नवमी, श्री जानकी नवमी, गुरु पूर्णिमा, सावन झूला, कार्तिक परिक्रमा, श्री राम विवाहोत्सव जैसे उत्सव प्रमुखता से मनाए जाते हैं।
2: अयोध्या को तृप्त कर सरयू आगे माँ गंगा में विलीन हो जाती है, उसी गंगा में जिसमें मिलकर माँ यमुना प्रयागराज को तीर्थ राज बना देती है। माँ यमुना ही मथुरा को सप्तपुरियों में एक बनाती है, जहाँ द्वापर के भगवान श्री कृष्ण की लीला का दर्शन मिलता है, जिससे ये धाम मोक्ष नगरी बन जाता है।
0: धाम कृष्ण का हो, द्वारिकाधीश का हो या फिर राधा रानी का, मथुरा के कण कण में भक्ति की धारा अनवरत प्रवाहित होती रहती है। गरुड़ पुराण में मथुरा को अन्य पुरियों से पहले स्थान प्राप्त है। पद्म पुराण में मथुरा का महत्व सर्वोपरि मानते हुए कहा गया है कि ये पुरी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। गर्ग संहिता में कहा गया है कि पुरियों की रानी कृष्णापुरी मथुरा ब्रजेश्वरी है, तीर्थेश्वरी है, यज्ञ तपोनिधियों की ईश्वरी है, ये मोक्ष प्रदायिनी धर्मपुरी मथुरा नमस्कार योग्य है।
2: सरयू या फिर यमुना, दोनों ही नदियां माँ गंगा में विलीन होकर अपनी यात्रा का अंत करती हैं। लेकिन एक कहानी शुरू होती है गंगा के किनारे बसे हरिद्वार से। हरिद्वार जिसे भगवान के घर यानी हरि के द्वार का प्रवेश माना जाता है।
0: हरिद्वार को हरि यानी भगवान बद्रीनाथ के धाम, बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार माना जाता है। हरिद्वार से ही माँ गंगा मैदानी इलाके में प्रवेश करती है, तो ये गंगा का भी प्रवेश द्वार है। हरिद्वार से ही चार धाम की यात्रा शुरू होती है, इसीलिए ये नगरी पवित्र और मोक्षदायिनी मानी गई है। हरिद्वार का पौराणिक नाम माया था, जिसे मायापुरी भी कहते थे। हरिद्वार भगवान विष्णु का देव स्थान है, तो यहाँ भगवान शंकर भी निवास करते हैं। कनखल को भगवान शंकर का ससुराल माना जाता है। ये क्षेत्र प्रजापति दक्ष का राज्य था, जहाँ माता सती ने यज्ञ में अपने देह का त्याग किया था। कनखल हरिद्वार में ही प्रजापति दक्ष द्वारा स्थापित धरती का पहला शिवलिंग स्थापित किया गया, जिसे दक्षेश्वर महादेव नाम से जाना जाता है।
1: हरिद्वार या हर का द्वार दोनों नाम है भगवान शिव के घर जाने के लिए और भगवान नारायण यानी कि बद्रिकाश्रम जाने के लिए। केदारखंड बद्रिकाश्रम का मुख्य द्वार है और यही वो पवित्रतम स्थान है जहां गंगा सबसे पहले गंगा बनती है। जब पर्वत से उतरकर सबसे पहले जब पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर उत्पन्न होती है गंगा, वो मोक्षदायक है। भगीरथ जी ने इसी स्थान पर सबसे पहले अपने पूर्वजों को, जिनकी अस्थियां भस्म होने के कारण इस स्थान पर पड़ी थी, सप्तपुरियों को, सप्तपुरियों में से सबसे पवित्र स्थान हरिद्वार, वो स्थान मोक्षदायक है।
0: हरिद्वार को शिव के साथ शक्ति का भी स्थान माना जाता है। यहाँ पर एक साथ तीन प्रमुख देवियाँ विराजमान हैं, जिसे शक्ति त्रिकोण कहते हैं। यहाँ माँ मनसा, माँ चंडी और माँ माया विराजती हैं। देवी भगवत पुराण और तंत्र चूड़ामणि इस धाम में माँ की नाभि और हृदय के गिरने की पौराणिक कथा सुनाते हैं। हरिद्वार का संबंध समुद्र मंथन से भी है। मान्यता है कि समुद्र मंथन में इस क्षेत्र पर भी अमृत की एक बूंद गिरी थी, जिस कारण यहाँ भी हर 12 साल में महाकुंभ मेले के लगने की परंपरा है।
2: यहाँ के घट घट में बसते हैं बाबा अविनाशी। मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी शिव के त्रिशूल पर टिकी है। काशी को भी सप्तपुरियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शंकर प्राण त्यागने वाले को तारक मंत्र देते हैं, इसीलिए इस नगरी को मोक्ष नगरी भी कहा जाता है।
0: दुनिया की सबसे पुरातन नगरी है काशी, जहां भगवान शंकर विश्वनाथ स्वरूप में विराजमान रहते हैं। माँ गंगा यहाँ शिव के मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्राकार स्वरूप में बहती है। काशी सदियों से सनातन ज्ञान, साहित्य, कला, संगीत, योग और ज्योतिष के अधिष्ठात्री नगरी मानी गई है। कहते हैं कि भगवान शंकर इस नगरी के संस्थापक हैं, संचालक हैं, इसीलिए इस नगरी में वो खुद तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं।
1: भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि मैं काशी में वास नहीं करता हूँ, काशी मुझ में वास करती है। ये वो स्थान है जहाँ व्यक्ति मरने के लिए जाता है। जो व्यक्ति वहाँ मर भी जाए या कहीं मरा जिसका दाह संस्कार भी हो जाए, वो मोक्ष को प्राप्त कर ले जाता है। ये भगवान शिव का आशीर्वाद है उस धरती।
0: काशी के कण कण में शंकर है, इसीलिए यहाँ शिव ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान है। शिव के साथ माँ शक्ति यहाँ माँ अन्नपूर्णा और विशालाक्षी स्वरूप में दर्शन देती हैं। ऋग्वेद से लेकर शास्त्र पुराण उपनिषद ग्रंथ कोई भी हो, हर ग्रंथ में काशी की महत्ता लिखी गई है। काशी में ही भगवान शंकर की प्रेरणा से महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। काशी सनातन धर्म की आत्मा है, इसीलिए सदियों से लोगों की काशी पर आस्था यही है कि ये साक्षात मोक्ष नगरी है। यहाँ प्राण त्याग कर सीधे कैलाश धाम में स्थान पाया जा सकता है।
2: सप्तपुरियों में से एक है पुरी, दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में भी है। इसे भगवान ब्रह्मा की नगरी कहते हैं, जिसे कांचीपुरम कहा गया है। पलार नदी के तट पर स्थित ये धर्म नगरी न केवल आस्था का केंद्र रही है, बल्कि धार्मिक शिक्षा का भी केंद्र रही है।
0: कांचीपुरम एक तमिल शब्द है जो दो शब्दों कांची और पुरम से मिलकर बना है, जिसमें कांची का अर्थ है ब्रह्म और पुरम का अर्थ है आवासीय स्थान, यानी ब्रह्मा को पूजने वाला पवित्र स्थान, जो वेगावती नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने देवी के दर्शन के लिए तप किया था, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो भी यहाँ जाता है उसे आंतरिक आनंद के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है।
1: ये वो स्थान है कांची, जहाँ पे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कामाक्षी देवी ने स्वयं तपस्या की थी और भगवान शिव को रेते का शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का बनाकर उनको आवाहन किया था और भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया था कि उनको हृदय में स्वीकार किया था, और उसने पवित्रतम भगवान शिव के कारण वो स्थान कहलाता है। पुरियों में से तो एक है ही, मोक्षदायक है ही, मनोकामना सिद्ध करने वाला भी है, उस स्थान को कहते हैं कांची।
0: कांचीपुरम के कामाक्षी मंदिर की मान्यता शक्तिपीठ के स्वरूप में होती है। कहते हैं कि यहाँ माँ सती का कंकाल गिरा था, इसीलिए ये देव स्थान बन गया। मान्यता तो ये भी कहती है कि कामाक्षी मंदिर के श्री चक्र की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। वैसे तो कांचीपुरम के मंदिरों को देखकर कहा जा सकता है कि यहाँ शिव का वास भी है, ब्रह्मा की उपासना भी है, विष्णु की आराधना भी है और शक्ति का तप भी है। इसीलिए ये नगरी मोक्ष नगरी है, जिसे दक्षिण भारत में भक्ति के साथ साथ विद्या का भी केंद्र माना जाता रहा है।
2: शिप्रा के तट पर बसी भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन को भी सप्तपुरियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि इस धाम में जो भी भगवान महाकाल, भगवान भैरव और माँ हरसिद्धि के दर्शन करता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं और वो मोक्ष का भागी बन जाता है।

0: इसका प्राचीनतम नाम है अवंतिका। यह भगवान विक्रमादित्य की नगरी रही है और इस स्थान के ऊपर स्वयं भगवान शिव तो वास करते ही हैं। भगवान हनुमान जी ने भी वहां पर तपस्या की है और कुंभ क्षेत्र तो है ही, कुंभ क्षेत्र मात्र हो जाने के कारण से जहां अमृत कलश छलका है ये स्थान मोक्षदायक हो जाता है।
1: उज्जैन में शिप्रा के तट पर भगवान महाकाल ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान है। पूरे भारत में यह अकेला ऐसा देवस्थान है जहां रोजाना सुबह 4 बजे ताजी भस्म से भगवान शंकर की आरती की जाती है। उज्जैन में भगवान शंकर के साथ साथ मां सती के दो दो शक्तिपीठ स्थापित हैं। गढ़कालिका में माता रानी के ओट गिरे थे तो हर सिद्धि में मां की कोहनी गिरने की मान्यता है। शक्तिपीठ के साथ साथ इस धाम में भगवान भैरव भी विराजते हैं। उज्जैन में बाबा भैरव के दरबार में बटुक भैरव के दर्शन पूजन होते हैं। उज्जैन इसलिए भी सप्तकुलियों में शामिल है क्योंकि मान्यता है कि इस धरा पर भी समुद्र मंथन में निकले अमृत की बूंद गिरी थी। इसीलिए हर 12 साल में उज्जैन में भी कुंभ का मेला लगता है। यहाँ होने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है।
2: विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में द्वारका को केशव की नगरी कहा गया है जो हिंदुओं के पवित्र 4 धाम में से एक है। मान्यता है कि मोक्षदायिनी द्वारका को माधव ने अपनी राजधानी बनाया था जहां जाकर प्राणी जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाता है।
3: द्वारका को मोक्ष का द्वार माना गया है। कहते हैं कि इस नगरी को द्वारकाधीश ने बसाया था।
0: वहां पर भगवान ने अंतिम समय तक वास किया और वो स्थान भगवान के वास के करने के कारण से बहुत पवित्रतम हो जाता है। आज भले ही उसके कुछ अपभ्रंश दिखाई देते हैं परंतु इतनी पवित्र नगरी है कि जिसके दर्शन मात्र से व्यक्ति को पुण्य का फल प्राप्ति होती है, भगवान श्री कृष्ण की प्रीति प्राप्त होती है और आज भी भगवान राजा के रूप में उसी स्थान पर पूजे जाते हैं।
2: तो ये थी सप्तपुरियों पर हमारी खास पेशकश। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।

0: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up Strawberry Scented Sunscreen, Favorite Day Ice Cream in flavors like cotton candy and orange cream, Inflatable Fun for the Pool, Elf Beauty's Best, and Levi's Denim Shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: If teaching is what you're meant to do, WGU is where you can become great at it. Earn your bachelor's or master's in education online on your schedule and with support that's available when you need it. Make your passion your profession. Learn more at WGU.edu.
2: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices, so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
3: Good news today banata hai.
4: Good news today.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
8: अविश्वास में विश्वास बसता है.
3: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
4: गुड न्यूज टुडे.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
9: और अब बात कुछ ऐसे वीडियोस की जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे, तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे.
10: कुछ लोग नियमों से नहीं अपने मूड से चलते हैं, फिर चाहे सामने नई सड़क बन रही हो या रास्ता बंद हो. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक शख्स बिना किसी परवाह के ताजा बनी सड़क पर निकल पड़ता है. आसपास मौजूद लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंकल अपने ही धुन में आगे बढ़ते रहते हैं. उनका बेफिक्र अंदाज देखकर लोग हंसी नहीं रोक पा रहे और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इंसान और पक्षी के बीच भरोसे का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है, इसका खूबसूरत उदाहरण ये वीडियो है. आसमान में उड़ रही एक चील बच्चे के इशारे पर नीचे आकर उसके हाथ पर बैठ जाती है. दोनों के बीच तालमेल और आत्मविश्वास देखने लायक है. सोशल मीडिया पर लोग इस नज़ारे को खूब पसंद कर रहे हैं. कई यूजर्स बच्चे के हुनर और पक्षी के साथ उसके अनोखे जुड़ाव की तारीफ कर रहे हैं.

0: दया, संस्कार और अपनापन उम्र नहीं देखते। वायरल वीडियो में छोटा बच्चा बड़े प्यार से गाय को अपने हाथों से खाना खिलाता दिखाई देता है। गाय भी बिना घबराए आराम से उसके हाथ से भोजन करती है। बच्चे के चेहरे पर डर नहीं बल्कि अपनापन साफ नजर आता है। सोशल मीडिया पर लोग इस प्यारे पल को खूब पसंद कर रहे हैं और बच्चे के संस्कारों की जमकर सराहना कर रहे हैं। जब परेशानी बड़ी हो तो देसी दिमाग भी कमाल कर जाता है। बारिश नहीं हुई तो किसान ने खेत तक पानी पहुंचाने का ऐसा जुगाड़ लगाया कि लोग हैरान रह गए। बांस के सहारे खुद को बांधकर वो साथियों की मदद से एक खेत से दूसरे खेत में झूले की तरह पानी पहुंचाता नजर आया। वीडियो देखकर लोग हंस भी रहे हैं और किसान की सूझबूझ की भी तारीफ कर रहे हैं। कभी कभी जिसे पकड़ने जाते हैं वही अचानक सामने आ जाए तो हालत खराब हो जाती है। वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची मेंढक को पकड़ने की कोशिश करती है, तभी मेंढक उछलकर सीधे उसकी गोद में आ बैठता है। अगले ही पल बच्ची जोर जोर से चिल्लाते हुए वहां से भाग निकलती है। ये मजेदार नजारा देखकर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे।
1: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 7 साल की अनुषी ने स्केटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अनुषी ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में अंडर 7 वर्ग की 800 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता।
2: चंचल आंखें, होठों पर प्यारी सी मुस्कान और माथे पर जीत का तिलक, ये है स्केटिंग की नन्ही चैंपियन अनुषी सिरोही। 7 साल की है, पहली क्लास में पढ़ती है, यूपी के सहारनपुर के नगला गांव से है। हाल ही में स्केटिंग के इंटरनेशनल मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत कर लौटी है। अनुषी ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में अंडर 7 वर्ग की 800 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर तिरंगा लहराया है। नन्ही उम्र में अनुषी को मिली इस कामयाबी से गांव नगला समेत पूरा इलाका खुश है, जश्न का माहौल है।
3: इसको गेम में पहले से रुचि है, तब ये नहीं था कि हाँ स्केटिंग ही करनी है, रनिंग भी अच्छी है, बट फिर आप लोग ना लोकेलिटी में देखते हो कि क्या गेम है जिसकी आपको अकेडमी मिल जाएगी या जहाँ से आप प्रैक्टिस करा सकते हो। तो स्केटिंग की यहाँ पर नकुड में नकुड स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्केटिंग सिखाती है, ताइक्वांडो सिखाती है, और वहाँ के कोच हैं हमारे रवि सर। हम लोगों ने भी समय दिया और हमसे ज़्यादा सुबह शाम दोनों समय वो प्रैक्टिस कराते थे, स्पेशली इस गुड़िया को इस चैंपियनशिप के लिए। और खाली इसी चैंपियनशिप के लिए नहीं, इससे पहले भी नेशनल लेवल के कुछ इवेंट्स हुए हैं जहाँ पर इसने पार्टिसिपेट किया है, वहाँ पर भी गोल्ड मेडल लेकर आई है।
2: आपको जानकर शायद हैरानी हो कि अनुषी ने महज 1 साल पहले ही स्केटिंग सीखना शुरू किया है और इतने कम समय में ही उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल से होते हुए पहले स्टेट और फिर नेशनल और अब इंटरनेशनल इवेंट में भी गोल्ड मेडल लेकर लौटी हैं।
4: मेरा नाम अनुषी सिरोही, मेरे कोच का नाम रवि सिंह, मैं अपनी हमारी एकेडमी का नाम है SIT। मुझे अच्छा लगता है बहुत स्केटिंग करना। मैं मेरठ जा रखी हूँ, 2 बार मेरठ जा रखी हूँ और 1 बार इंडो नेपाल जा रखी हूँ, तो वहाँ से तीनों मेरे पे सारे गोल्ड मेडल है।
2: खेल कौन सा चुने सोचा नहीं था, बस बेटी को एक स्पोर्ट्स पर्सन बनाना था, सो पिता ने सारी सहूलियतें देखकर स्केटिंग को चुन लिया। और अनुषी ने भी पिता के सपने को सच करने के लिए पूरी जान लगा दी। 1 साल के भीतर अनुषी कई मेडल जीत चुकी हैं।
5: स्केटिंग का गेम ऐसा नहीं था कि कुछ पहले से फिक्स था कि स्केटिंग ही करानी है, कुछ भी कराना है, ये था कि कुछ स्पोर्ट्स लेवल कराना है, तो उसके डैडा का सजेशन था कि इसको स्केटिंग में जाया जाए।
6: अनुषी फर्स्ट टाइम स्टेट लेवल पे खेलने के लिए गई थी, तो हमने पीछे से यही बोला था, उसको सपोर्ट किया था कि बेटा बस खेल के आना है। हमारा कोई ये नहीं था कि फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ, पहले खेल के आओ आप, फिर हमें पता चला वो फर्स्ट आई है। बहुत अच्छा लगा, मतलब देख के कि बढ़िया लगा एकदम। फिर सेकेंड टाइम ये नेशनल खेलने के लिए गई, वहाँ पे भी हमने इसको यही बोला कि बस खेल के आना है, आराम से खेलो, ध्यान से खेलना है, तब भी ये फर्स्ट आई, गोल्ड मेडल जीत के आई। और अब इंटरनेशनल खेलने के लिए गई थी नेपाल,
5: वहाँ पे भी इसने गोल्ड मेडल जीता है और फर्स्ट आई है।
2: अनुषी जिस तरह से हर मुकाबले में अपने आप को दमदार साबित करते हुए आगे बढ़ रही हैं, उससे परिवार खुश है। कोच रवि शरण को भी अनुषी से बहुत उम्मीदें हैं। उनके मुताबिक अनुषी बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी है और भविष्य में एशियाई और विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने की पूरी क्षमता रखती है। परिवार और कोच को भरोसा है कि अनुषी आने वाले वक्त में अपने गांव और देश का नाम वैश्विक मंच पर और ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
9: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
7: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
15: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
1: स्टार जर्मन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से जुड़ी बड़ी खबर, जापान एशियन गेम्स में खेला हुआ कंफर्म, AFI चयन समिति के अध्यक्ष ने दी अपडेट, 19 सितंबर से होगा आयोजन। बाल्टीमोर बंदरगाह पर दिखी भारत की समृद्ध समुद्री विरासत की तस्वीर, मिड अटलांटिक के बड़े पुलों के नीचे से गुजरा, 13,000 नॉटिकल मील का सफर तय करके पहुंचा नॉरफॉक। गुजरात के 14 शहरों को मिली सुगम यातायात की सौगात, भारत टैक्सी ऐप का शुभारंभ, गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में उन्होंने किया उद्घाटन। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए शानदार खबर, 19 जून को खत्म हुए सप्ताह में बड़ा देश का विदेशी मुद्रा भंडार, 96,30,00,000 डॉलर की हुई बढ़ोतरी। चीन की राजधानी बीजिंग में प्रकृति का चमत्कार, 800 साल पुराने बीज से उगाया गया दुर्लभ कमल, लोटस कल्चरल फेस्टिवल में लगाई प्रदर्शनी।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी या ऐसी जगहों की जहां बच्चे या नौजवान पढ़ने या खेलने जाते हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं होने से जिनकी सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। आग लगने की वजह से हुए हादसों के बाद सरकार और प्रशासन सख्त रुख उन्होंने दिखा रखा है, पर अगर हम भी सजग रहें और अभिभावक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो कोचिंग संस्थानों में आके खतरे को रोका जा सकता है। आज आपको बताएंगे कि संस्थानों में फीस देने से पहले फायर पर बात करना क्यों जरूरी है, वो कौन से नियम हैं जिनका पालन कोचिंग संस्थानों के लिए अनिवार्य है और जिन्हें लेकर छात्रों और अभिभावक दोनों का जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि कोचिंग का बड़ा नाम देखने की बजाय अगर वहां सुरक्षा के इंतजामों को देखा जाए तो आग लगने जैसे हादसों से बचा जा सकता है। लखनऊ में आग लगने से जो हादसा हुआ उसने देश को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद सरकार और प्रशासन ने नियमों को लेकर कोचिंग संस्थानों के मामलों में सख्त रुख दिखाया, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी छात्रों और अभिभावकों की भी है। दोनों अगर कोचिंग में दाखिले से पहले सुरक्षा के इंतजामों पर नजर डालें और पढ़ाई के साथ सुरक्षा की भी फिक्र करें तो यकीनन तस्वीर बदल सकती है, हादसे रोके जा सकते हैं। ये समझना होगा कि अगर कोचिंग संस्थानों में लापरवाही है तो उसे दूर करना है, सरकार के साथ हमारी भी जिम्मेदारी है।
1: बंद गली का मकान, सकरा जीना, आने जाने का एक ही रास्ता, भला ऐसी जगह पर चलने वाली कोचिंग का सुरक्षा से क्या वास्ता? बिजली के तार बिखरे हैं, आग बुझाने वाला सिलेंडर नदारद है, अलग से पानी का इंतजाम नहीं। लेकिन हम कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, हादसे होंगे तो सवाल पूछेंगे कि प्रशासन और सरकार की क्या तैयारी है, सरकार और प्रशासन की गलती है। पर क्या हमें लापरवाहियों को नजरअंदाज करना चाहिए, वो भी तब जब हकीकत सामने साफ साफ नजर आ रही हो। छात्र अगर बड़े हैं तो खुद ध्यान दें, अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको दाखिला दिलाते हुए माता पिता गौर से देखें, समझें और उस बद इंतजामी पर उंगली उठाएं जो बड़े हादसे की वजह बन सकती है। मसलन गाजियाबाद के इस कोचिंग संस्थान को देखिए।
2: अब ये जो हम इलाके में जा रहे हैं, कितना पतला इलाका है, ये जो सीढ़ियां हैं, ऊपर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, एजुकेशन कमांडर, और यहाँ पर आप जाएंगे देखिए सिर्फ एक इलाका है, जाने के लिए है, एग्जिट नहीं है। और उसके बाद अब इन इलाकों पर जगह जगह पुलिस जो है मुआयना कर रही है।
1: तो गांठ बांध लीजिए, नोट कर लीजिए और बच्चों को भी बताइए, कोचिंग गाजियाबाद का हो या पटना का, दाखिले के लिए जाएं तो सबसे पहले देखें कि आने जाने के लिए दो रास्ते हैं या नहीं, सीढ़ियां सकरी तो नहीं, क्या क्लासरूम या लाइब्रेरी में आग बुझाने वाले सिलेंडर मौजूद हैं, और अगर मौजूद हैं तो कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गए।
2: जो लाइब्रेरी है या दूसरे इस तरह के इंस्टीट्यूशन से जहाँ बच्चे आते हो पढ़ने में बड़ी संख्या में, जहाँ पर बच्चों का जमावड़ा हो। अभी देखिए हम जिस इमारत में जा रहे हैं ये बहुत पतली सीढ़ियां हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से अगर कोई हादसा हो तो सबसे जरूरी है कि यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए, यानी यहाँ से निकलने का रास्ता होना चाहिए। ये एक्सपायर है, ये आग बुझाने का सिलेंडर रखा हुआ है और इस पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ रिफिलिंग 2023, ड्यू ऑफ रिफिलिंग 18 जून 2024, ठीक 2 साल पहले ये एक्सपायर हो चुका है। अगर यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, आग लग जाती है कहीं से भी, ये सब ज्वलनशील होते हैं, बहुत तेज आग पकड़ती है, ये सब अगर जलना शुरू करेंगे तो आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर एकदम यूजलेस है।
1: खुली आंखों से जो कमियां दिखती हैं उनको नजरअंदाज करना अक्सर भारी पड़ता है, बस आवाज ही तो उठानी है, कोचिंग संस्थानों को सतर्क ही तो करना है। इतने से भी बात नहीं बने तो प्रशासन तक बात पहुंचानी है। पुलिस और प्रशासन जांच में लगे हैं, पर अभिभावक होने के नाते ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि कोचिंग संस्थान या लाइब्रेरी में जाएं तो पहले उसके बिजली उपकरणों पर गौर करें, खुद भी देख लें कि SCB लगे हैं कि नहीं, बिजली उपकरण किस कंपनी के हैं और सलीके से हैं या नहीं। एक जरूरी बात जिसको लेकर समाज ज्यादा सोचता नहीं वो ये कि आग लगने जैसी घटना हो तो क्या करना है। फर्ज कीजिए कि इस लाइब्रेरी में आग लग जाए तो बच्चे क्या करेंगे, वो शायद नहीं जानते। कहने को यहाँ फायर एग्जिट है पर इस बात की गारंटी नहीं कि आग लगने के साथ ये समय पर खुलेगा भी, यानी यहाँ मौजूद गार्ड सतर्क नहीं। पहले से तैयारी करके हादसों को रोकना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है ये जानना कि हादसे की सूरत में कैसे बचकर निकलना है। क्या कोचिंग संस्थानों में इसकी तैयारी है? क्या वहाँ फायर ड्रिल करके बच्चों को तैयार किया गया है? अगर आपके घर का कोई बच्चा पढ़ने के लिए ऐसी जगहों पर जाता है तो ये सवाल और इनके जवाब आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि सरकार ही नहीं हादसों को रोकने में हमारी भी जिम्मेदारी है। चलिए अब आपको दिल्ली के कोचिंग संस्थानों की कुछ तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको हालात की समझ होगी, बतौर अभिभावक अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होगा।
3: किस तरीके से ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये बिल्कुल तंग गलियों में बने हुए हैं, एंट्री एग्जिट का एक ही जरिया है, ये कुछ 2-2.5 फीट की सीढ़ी है या उससे भी कम है, और यही एक एंट्री एग्जिट का रूट है, और ऐसे हजारों कोचिंग सेंटर्स जो हैं यहाँ पर चल रहे हैं। आप देखिए कितनी संघड़ी गलियां हैं, और अगर आप कोचिंग के इसके बाहर भी देखें तो यहाँ एसी का आउटलेट लगा हुआ है। पिछले कई हादसों में हमने देखा है कि जो हादसा हुआ है, जो आग की शुरुआत हुई है, वो इसी एसी के आउटलेट से होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एसी आउटलेट में आग लग गई, या ये जो मीटर लगे हुए हैं, ये तार लगे हुए हैं, इनमें आग लग गई, तो यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बनता, कोई और एग्जिट नहीं है, कोई खिड़कियां नहीं है, कोई अन्य दरवाजे भी नहीं है। बाहर भी देखें, बाहर भी किस तरीके से ये सारे तार, ओवरहेड वायर्स जो हैं, बिल्कुल खुले में पड़े हैं, कहीं भी एक छोटा सा स्पार्क और कई लोगों की जान पर बना सकती है। 2-2.5 फुट की सीढ़ी है और सीढ़ियों पर ही ये मीटर लगे हुए हैं, कहीं भी कभी भी कोई भी हादसा हो जाए तो यहाँ से इन बच्चों को बचाने वाला कोई नहीं होगा, और गलियां इतनी पतली हैं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी पहुंचने में, आने में, और पूरे सुरक्षा को अंजाम देने में या पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। कोई फायर सेफ्टी नॉर्म का पालन नहीं हो रहा है, ये बड़े बड़े तार इस तरीके से बाहर लटके हुए हैं, एक हल्का सा स्पार्क हुआ।

0: ने हमें पूरा एक ही बताया है और अभी हम लोग अभी मतलब मुश्किल से भी 10 मिनट हुए हम लोग पूरा और सर्च कर रहे हैं बता रहे हैं कि विंडो सिर्फ एक ही है जाने का रास्ता जो है वो एक ही जबकि दो होना चाहिए।
1: ये देखिए छतों पे आप देखिए पूरा एयर कंडीशन और एसी का जाल जो है तारों का वो बिछा हुआ है और अफसर भी नगर निगम के मान रहे हैं कि ये बेहद खतरनाक स्थिति है। आप देखिए ये देखिए जिस सीढ़ी से चढ़कर ये जा रहे हैं दूसरी तरफ दूसरी कोचिंग में भी जा रहे हैं तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर कल को यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है करंट फैलता है तो लोहे की जो सीढ़ी है वो एक ब्लॉकेज का काम करेगी क्योंकि फिर लोहे की सीढ़ी का इस्तेमाल जो है वो छात्र कर नहीं पाएंगे निकलने के लिए। और ये तस्वीरें दिखा रही है कि कैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जो लखनऊ जैसा हादसा है वो इंतजार कर रहा है एक तरीके से क्योंकि यहाँ के भी ज्यादातर कोचिंग संस्थानों में एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता है और खुद नगर निगम की टीम के जो अधिकारी हैं वो मान के चल रहे हैं कि ये एक बेहद खतरनाक स्थिति है किसी भी कोचिंग संस्थान के लिए। ऐसे कई कोचिंग संस्थान हैं जो बेहद संकरी जगहों पर संचालित हो रहे हैं। हम जिस जगह पर मौजूद हैं उस गली की आप पहले स्थिति देखिए। उस गली में अगर आप देखें तो आपको दिख जाएगा कि कैसे दोनों तरफ गली में यहाँ पे दोपहिया वाहन की कतार लगी हुई है और इसके चलते यहाँ पर आप समझिए कि आपात स्थितियों में ना तो फायर ब्रिगेड आ सकती है ना ही एम्बुलेंस आ सकती है। और दूसरी तरफ आप देखिए बिजली का तार और उनके जालों को आप देखिए। सामने जो ट्रांसफार्मर और बिजली की डीपी आप देख रहे हैं और उससे निकले हुए बिजली के तालों का जो मकर जाल है वो कैसे पूरी तरीके से इस गली को घेरे हुए है उसे देख के आप अंदाजा लग जाएगा कि कैसे राजधानी भोपाल के कोचिंग संस्थान इस वक्त बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं। अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं उन कोचिंग संस्थानों की जहां पर एंट्री और एग्जिट के लिए भी एक ही रास्ता बना हुआ है। आमतौर पर आपात स्थितियों में एंट्री और एग्जिट अलग होना चाहिए लेकिन हम जिस कोचिंग संस्थान की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वहां पे यही रास्ता है अंदर जाने का और बाहर आने का। और ऐसे में अगर यहीं पे रास्ता ब्लॉक हो गया जैसे कि लखनऊ में हुआ था तो फिर दूसरा रास्ता रहेगा लोगों के पास बच के निकलने का कि वो खिड़कियों से कूदें और फिर वैसी ही तस्वीर जो लखनऊ में देखने को मिली वो देखने को मिल सकती। ये अलग अलग मीटर हैं जो यहाँ पे जो कोचिंग संस्थान बने हैं उसमें आप देखिए हम आपको दिखाते हैं ये आप देखिए तस्वीर अंदाजा लगाइए इससे ये बिजली के तार पूरे यहाँ पे बिल्कुल एंट्री जो है इस कोचिंग संस्थान की वहीं पे तारों का मकड़ जाल आप देखिए। और अगर इनमें कोई आग लगती है या शॉर्ट सर्किट होता है तो बिल्कुल उसके ठीक सामने ये जो ज्वलनशील सामग्री है जो पोस्टर है बड़े बड़े जो पैम्पलेट्स हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है अगर शॉर्ट सर्किट होगा सबसे पहले इनमें आग लगेगी और अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले ये एंट्री और एग्जिट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा।
2: याद रहे अगली बार जब भी ऐसी किसी कोचिंग संस्थान में जाएं तो गौर करें कि बिजली के तारों की हालत कहीं खराब तो नहीं और जरूरी जगहों पर अग्निशमन यंत्र हैं या नहीं
1: कि बिजली के जो तार लगे हुए हैं किस तरीके की कैसी स्थितियों में है कि कोई देख रेख नहीं होती है इनकी। और आप इससे अंदाजा लगाइए कि क्या हालात हैं यहाँ पे और इस तरीके के हालात में यहाँ पे फिलहाल कोचिंग संचालित हो रही है और ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हाल है। ये आप देख रहे हैं ये आप जाले देखिए और यहीं पे ये आप इससे अंदाजा लगाइए कि आखिरी बार कब इसको साफ किया गया होगा। और रखरखाव बिल्कुल नहीं है जाले लगे हुए हैं बिजली के तारों का पूरा मकड़ जाल है इनमें से कोई एक तार किसी भी समय अगर आंख पकड़ लेगा तो फिर भागने का कोई दूसरा रास्ता इन कोचिंग्स में पढ़ने वाले जो छात्र होंगे उनके पास नहीं होगा। कायदे से यहाँ अग्निशमन यंत्र होना चाहिए लेकिन आप देखिए ये पूरी कोचिंग है और नीचे तक अगर आप देखें पहले तो ऊपर देखिए आप यहाँ पे कहीं पे भी आपको कोई अग्निशमन यंत्र नहीं दिखेगा। और इसके अलावा ये जो पूरा रास्ता है यहाँ पे भी अगर आप देखें तो कोई अग्निशमन यंत्र यहाँ नहीं लगा है यानी आग लग गई तो उसे कैसे बुझाएंगे इसकी भी जानकारी फिलहाल नहीं है। और जहाँ पे ये मीटर लगे हैं जहाँ पे शॉर्ट सर्किट की संभावना सबसे ज्यादा होती है वहां पर अमूमन फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए लेकिन मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन से कि वो दिखाएं उस तरफ कि यहाँ पर भी आपको कोई आग बुझाने का साधन नहीं दिखेगा। कि ये जो पूरा इलाका है भोपाल का जोन 2 ये कोचिंग संस्थानों से पटा पड़ा ऊपर भी अगर आप देखें तो अगर नीचे आग लग जाती है रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो फिर ये रास्ता विकल्प बचता है उन छात्रों के पास आपात स्थितियों में बाहर निकलने का लेकिन वो है नहीं पूरी तरीके से वो भी ब्लॉक है या तो एसी लगे हुए हैं या फिर उन्हें पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि कोचिंग बनानी थी वहां पे। और स्वाभाविक सी बात है कि ये खतरा ज्यादातर उन कोचिंग संस्थानों पे है जो ऊपर की मंजिलों पे स्थित है और आप इससे अंदाजा लगाइए ये पूरे कोचिंग संस्थान जो जो ग्राउंड फ्लोर पे है वहां तो निकलने के रास्ते हैं, कई सारे एग्जिट हैं, लेकिन जो कोचिंग संस्थान ऊपर की इमारतों में चल रहे हैं उनके सामने ये एक बड़ी समस्या फिलहाल

0: बनी हुई है।
1: आपको बता दें कि कोचिंग संस्थानों और कमर्शियल सेंटरों के लिए सुरक्षा गाइडलाइंस बेहद सख्त हैं। अग्नि सुरक्षा के लिए मानक फायर एनओसी अनिवार्य है। वहीं पर्याप्त संख्या में फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकल सिस्टम और फायर अलार्म लगे होने चाहिए। आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए कम से कम दो चौड़े और सुरक्षित रास्ते हों। बेसमेंट में कक्षाएं चलाना या छात्रों को बिठाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और हाँ, आवासीय क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधि नहीं की जा सकती। आपको ध्यान रखना है कि सीढ़ियों की चौड़ाई कम से कम 1.5 मीटर होनी चाहिए। साथ ही कमरे में छात्रों की संख्या स्वीकृति क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। अच्छी वायरिंग, समय समय पर बिजली के तारों और उपकरणों का ऑडिट, कमरों में हवा वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कहीं इनका सख्ती से पालन नहीं हो रहा या आपको कोई कमी नजर आती है तो चुप न रहें, आवाज उठाएं, प्रशासन या संबंधित विभाग तक बात पहुंचाएं। गाजियाबाद से आशुतोष, दिल्ली से अंशुल सिंह और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: कोचिंग संस्थानों में बच्चे अपने सपनों को आकार देने जाते हैं। माता पिता भरोसा करते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित माहौल में पढ़ रहा है, लेकिन ये भरोसा काफी नहीं। सुरक्षा को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझना भी जरूरी है। अग्निशमन यंत्र, इमरजेंसी एग्जिट और मॉक ड्रिल का पालन हो रहा है या नहीं, इस पर नजर रखनी है। इसके साथ ही बच्चों को पता होना चाहिए कि आग लगने पर बचना कैसे है, बाहर कैसे निकलना है, ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन को ठोस कदम उठाने हैं। लेकिन हमारा सजग होना भी उतना ही जरूरी है।

0: प्रशासन कागज देख लेगा। दमकल कर्मी मॉक ड्रिल कर हमें सजग करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में चलने वाली कोचिंग संस्थानों में जाने वाले ये बच्चे और उनके माता पिता कितने सजग हैं, ये भी बड़ा सवाल है।
1: सर हमारे पास तो एग्जिट गेट भी है नॉर्मली, और सारे फायर के सिलेंडर वगैरह और फायर का पूरा, हमारा फायर सेफ्टी का पूरा इंतजाम हमने कर रखे हैं कम्प्लीटली, हम उसके अकॉर्डिंग पूरा नॉर्म्स और फॉलो कर रहे हैं।
2: वो इलेक्ट्रिक कार के लिए होता है,
3: इस जाएगा ये वर्किंग कंडीशन में, इनकी अगर सुई ग्रीन पर, अगर ये किसी कारण बस रेड पे चली जाती है तो ये माना जाएगा कि वर्किंग कंडीशन में नहीं।
0: क्योंकि बेशक हादसों को रोकने के लिए सरकार की लाख तैयारी हो, लेकिन हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। क्या हमने अपने बच्चों को किसी भी अप्रिय घटना से सुरक्षित निकलने के तरीके बताए, या फिर क्या कभी ये जानने और पूछने का प्रयास किया कि आपात स्थिति से निकलने के लिए क्या वो जगह सही है जहां हमारा बच्चा पढ़ने जाता है, और उससे बड़ी बात, क्या उस संस्था में सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा है? अगर नहीं तो क्या हमने इस पर आपत्ति दर्ज कराई, आवाज उठाई, कोचिंग और प्रशासन तक ये बात पहुँचाई?
4: यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CLC का इंस्टीट्यूट है जहाँ पर नीट IIT JEE की कोचिंग दी जाती है, और जहाँ पहली मंजिल पर कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो वहीं ग्राउंड फ्लोर पर ये दुकानें जो हैं वो आप देख सकते हैं, ये दुकानें चलती हैं। रोजाना गोपालपुरा में हजारों की संख्या में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ पर ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बेतहाशा पैसा कमाने में लगे रहते हैं। आप देख सकते हैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो प्रथम मंजिल है वहां पर नीट और JEE के बच्चे जाकर पढ़ते हैं, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर ये तमाम दुकानें जो हैं वो चलती हैं। अगर कोई भगवान न करे हादसा हो जाए तो किस तरह से बच्चों को यहाँ से इवैक्यूएट किया जा सकता है, खासी दिक्कतें आ सकती हैं बच्चों को इवैक्यूएट करने में, क्योंकि क्या जो नॉर्म्स फॉलो किए जाने चाहिए थे वो यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए भी है कि समय समय पर यहाँ पर अक्सर जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है।
0: किताबों के बीच सपने पलते हैं, क्लासेस में भविष्य आकार लेता है, लेकिन सवाल एक जो हर माँ बाप और हर एक छात्र के मन में आ रहा है कि अगर आग जैसी अप्रिय घटना हो तो फिर निकलेंगे कैसे? चलिए समझिए कि कोचिंग में पढ़ने वाले बड़े छात्रों या छोटे बच्चों के घर वालों का क्या ख्याल रखना चाहिए।
4: यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी संकड़ी ये सीढ़ियां हैं, अगर कोई हादसा हो जाए आग का और यहाँ से निकलने की कोशिश करें तो कितना दिक्कत भरा ये हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ से एक समय में एक व्यक्ति जो है वो निकल सकता है, दो व्यक्तियों के निकलने की कवायद बेहद मुश्किल हो सकती है, कठिन हो सकती है, और अगर भगदड़ मच जाए किसी आग के हादसे के समय में तो यहाँ से निकलना बेहद मुश्किल हो सकता है। ये जो बिल्डिंग है ये कलाम अकेडमी का यहाँ पर प्रथम मंजिल पर और उसके ऊपर प्रीमाइसिस बताया जा रहा था, और यहाँ पर ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो मौजूद हैं, और स्टूडेंट्स का कहना है कि फायर ड्रिल तो होती है पर जो यहाँ पर इंतजाम होने चाहिए थे कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो वो नाकाफी है। साफ तौर पर
0: कहीं तंग गलियां हैं, कहीं एक ही सीढ़ी है, कहीं खिड़कियां बंद हैं, तो कहीं इमरजेंसी एग्जिट सिर्फ कागजों पर मौजूद है। क्या बच्चों को पता है कि आग लगने पर सबसे नजदीकी एग्जिट कहाँ है? क्या उन्हें मालूम है कि धुएं से भरे कमरे से कैसे बाहर निकलना है, या फिर क्या उन्हें कभी फायर ड्रिल में शामिल किया गया है?
4: ये बताओ कि जो लखनऊ में आग लगी वहाँ पे 15 बच्चों की जान चली गई, यहाँ पर कोई मॉक ड्रिल होती है, बच्चों को कुछ बताया जाता है कि अगर आग लग जाए तो क्या कुछ करना है?
1: हाँ बताया जाता है।
4: क्या बताया जाता है?
1: एग्जिट और एंट्री गेट है दोनों साइड में।
4: उसके अलावा कोई नॉर्म्स फॉलो करने के लिए बताए जाते हैं क्या, ये आप लोगों को पता है?
1: अभी मैं तो नहीं आया हूँ, मेरे को इतना पता नहीं।
4: आपका क्या नाम है?
5: शेर अली।
4: ये बताओ कि आप कौन से कोर्स के स्टूडेंट हो यहाँ पे?
5: RSSB फाउंड।
4: ये बताइए कि अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए, जैसे लखनऊ में हुई कई लोग बच्चों की जान चली गई, अगर यहाँ पर वैसी ट्रेजेडी हुई आप लोगों को कुछ बताया गया क्या नॉर्म्स फॉलो करने?
5: ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया, पर ऐसे ये गाइड करते रहते हैं यहाँ की जो सेफ्टी है वो अच्छी है।
0: समझने और समझाने वाली बातें कई है, मसलन एंट्री और एग्जिट के रास्तों की खबर हो, आग बुझाने वाले सिलेंडर ही काफी नहीं, उनको इस्तेमाल करने वालों की भी पूरी ट्रेनिंग हो, हादसा हो तो भगदड़ की बजाय एक दूसरे की मदद कैसे करनी है, और जो घायल हैं उन्हें कैसे बाहर निकालना है, इन सब की समझ जरूरी है।
2: सभी कोचिंग सेंटर की व्यवस्थाएं अकॉर्डिंग टू एरिया एंड हाइट पर निर्भर करती है। मान लीजिए ग्राउंड लेवल में है वहां व्यवस्थाएं अलग हैं, ग्राउंड प्लस फोर की है वहां व्यवस्थाएं अलग हो जाती हैं। तो जो जैसे सेंटर है उनकी उन्हीं के अनुरूप निरीक्षण करके जो कमियां हैं उसके लिए हम लोग नोटिस देंगे। जहां व्यवस्थाएं लगी हुई हैं यदि कार्यशील नहीं है तो उनको कार्यशील कराने के लिए लिखेंगे, जहां स्थापित नहीं है वो स्थापित कराएंगे। और अभी हमने हमारे जनपद में 3 टीमें बनाकर हमने निरीक्षण की शुरुआत किया है।
0: सुरक्षा सिर्फ सरकारी फाइलों में दर्ज नियम नहीं है, सुरक्षित रहना एक अच्छी आदत है, क्योंकि आग से लड़ने का पहला हथियार दमकल की गाड़ी नहीं बल्कि जागरूकता है। ऐसे में अगर ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है तो क्या करना चाहिए पहले उसे समझिए। सबसे पहले हमें सुरक्षित बाहर निकलना है, जरूरी सामान बचाने की कोशिश में समय बर्बाद नहीं करना है, तुरंत स्थानीय फायर सर्विस को सूचना देनी है। अगर बिल्डिंग में धुआं भरा हो तो झुककर या रेंगते हुए बाहर निकलना है। लिफ्ट का उपयोग नहीं करना है, केवल सीढ़ियों से नीचे उतरना है। कमरे का दरवाजा खोलने से पहले हाथ से उसकी गर्मी जांचनी होगी, अगर बहुत गर्म हो तो दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश करें। अगर कपड़ों में आग लग जाए तो भागे नहीं, इससे आग और भड़क सकती है, बल्कि कंबल या मोटे कपड़े से आग को ढककर बुझाने की कोशिश करें, क्योंकि सपनों की इन इमारतों में सिर्फ पढ़ाई नहीं सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रशासन को नियम लागू करने होंगे, संस्थानों को जिम्मेदारी निभानी होगी, लेकिन हमें और आपको बतौर अभिभावक अपने बच्चों को भी जागरूक करना होगा। जयपुर से देव अंकुर, मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
7: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
8: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
7: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
9: Williams keeps it. First down. Touchdown.
7: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
13: एआई की मदद से दौड़ेंगे सेना के टैंक, रोबोटिक वॉरियर संभालेंगे जंग की कमान, सेना के बैटल टैंक का कायाकल्प देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए,

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: 2024 में T20 विश्व कप पर कब्जा, 2025 में जीता चैंपियंस ट्रॉफी का रण, अब लिया 2027 वर्ल्ड कप का प्रण, पद्मश्री रोहित शर्मा का अग्निपथ, वंदे में है दम श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
3: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
4: Good news today.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। बोटानिकल गार्डन में 196 साल के सबसे उम्रदराज कछुए जोनाथन के दीदार। स्टार जेवलिन थ्रोअर खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से जुड़ी बड़ी खबर, जापान एशियन गेम्स में खेलना हुआ कंफर्म, AFI चयन समिति के अध्यक्ष ने दिया अपडेट, 19 सितंबर से होगा आयोजन। बाल्टीमोर बंदरगाह पर दिखी भारत की समृद्ध समुद्री विरासत की तस्वीर, मिड अटलांटिक के बड़े पुलों के नीचे से गुजरा, 13,000 नॉटिकल मील का सफर तय करके नॉरफॉक। गुजरात के 14 शहरों को मिली सुगम यातायात की सौगात, भारत टैक्सी ऐप का शुभारंभ, गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में किया उद्घाटन। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए शानदार खबर, 19 जून को खत्म हुए सप्ताह में बड़ा देश का विदेशी मुद्रा भंडार, 96,30,00,000 डॉलर की हुई बढ़ोतरी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: 3 दिन के सेशल्स दौरे पर राजधानी विक्टोरिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, सेशल्स के राष्ट्रपति राष्ट्र दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। सेशल्स पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का हुआ जोरदार स्वागत, एयरपोर्ट पर दिया गार्ड ऑफ ऑनर। सेशल्स में प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक तरीके से किया गया वेलकम, कलाकारों ने ढोल नगाड़ों और पारंपरिक नृत्य के साथ किया स्वागत। पीएम के दौरे पर लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह, हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे लोगों ने किया पीएम का स्वागत, पीएम ने कई लोगों से हाथ मिलाकर किया अभिवादन। सेशल्स दौरे के दौरान 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले प्रधानमंत्री मोदी, गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव है जोनाथन। गुजरात को मिले विकास की सौगात, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। अमित शाह के गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का उन्होंने शुभारंभ किया, राज्य के 14 शहरों में शुरू की गई भारत टैक्सी कैब सेवा। अगले साल की शुरुआत में भारत दौरे पर आ सकते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिकी विदेश मंत्री ने किया ऐलान, बोले भारत अमेरिका में जल्द होगी ट्रेड डील। स्टार जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से जुड़ी बड़ी खबर, जापान एशियन गेम्स में खेलना हुआ कंफर्म, AFI चयन समिति के अध्यक्ष ने दी अपडेट, 19 सितंबर से होगा आयोजन। बाल्टीमोर बंदरगाह पर दिखी भारत की समृद्ध समुद्री विरासत की तस्वीर, मिड अटलांटिक के बड़े पुलों के नीचे से गुजरा, 13,000 नॉटिकल मील का सफर तय करके नॉरफॉक। ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, निवेशकों को यूपी में निवेश का दिया न्योता। ग्रेटर नोएडा को मिली सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की सौगात, स्टील अथॉरिटी के सौर ऊर्जा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी। नोएडा पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सुनी जनता की फरियाद, गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। निहंग सिख समुदाय ने उत्तराखंड पुलिस की तत्परता की तारीफ की, कर्णप्रयाग में घायल निहंग के इलाज के लिए पुलिस और प्रशासन की तत्परता की तारीफ की। टांग फ्रैक्चर होने के बाद पुलिस ने आधे घंटे के भीतर अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस और प्रशासन की तत्परता ने निहंग सिख समुदाय को बनाया मुरीद। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 393 वर्षगांठ के मौके पर नागपुर में मनाया जा रहा है जश्न। हिंदू पंचांग के मुताबिक आज राज्याभिषेक की वर्षगांठ। शिवाजी के राज्याभिषेक के ऐतिहासिक मौके पर उत्सव में डूबा पूरा नागपुर शहर। गूंज रहे जय भवानी जय शिवाजी के नारे। शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अभिषेक के लिए लाया गया गंगा नर्मदा गोदावरी चंद्रभागा समेत 7 पवित्र नदियों का जल। राज्याभिषेक की वर्षगांठ के मौके पर निकाली गई शिवाजी महाराज की प्रतिमा की झांकी। कार्यक्रम में हजारों लोग पारंपरिक वेशभूषा में हुए शामिल। आज के दिन शौर्य से जुड़े पारंपरिक खेलों का भी आयोजन। शहर में भंडारे और रक्तदान शिविर भी लगाए गए। चारधाम यात्रा में बना हुआ है यात्रियों का उत्साह। अब तक 40,50,000 से अधिक भक्त हो चुके हैं शामिल। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हैं सबसे ज्यादा श्रद्धालु। 13,20,000 से अधिक कर चुके हैं बद्री विशाल के दर्शन। हेमकुंड साहिब में अब तक 1.5 लाख के करीब श्रद्धालु टेक चुके हैं मत्था। करीब 5,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं रोज। 22वें तीर्थकर भगवान नेमीनाथ के निर्वाण दिवस पर नोएडा में निकाली गई श्री नेमी गिरनार धर्म यात्रा। जूनागढ़ स्थित गिरनार पर्वत तक निकाली जा रही है 25 दिवसीय यात्रा। ग्रेटर चेन्नई में पुलिस ने किया फूड फेस्टिवल का आयोजन। एगमोर पुलिस म्यूजियम में सजाए गए तरह तरह के व्यंजन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने की मॉक ड्रिल। अमरनाथ यात्रा से पहले तैयारियों का जायजा लिया। अनंतनाग पुलिस ने मॉक ड्रिल के जरिए पर की तैयारियां। पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ 5 दिन बाकी। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी यात्रा। पंजाब में नशे के खिलाफ सूरमा अभियान। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना में किया लॉन्च नया अभियान। 517वीं जयंती पर नाद बद्रू कैपे गोड़ा को बेंगलुरु में किया गया नमन। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने विधानसभा के सामने लगी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। अरुणाचल प्रदेश के यजाली में फटा बादल। तबाही से जनजीवन हुआ प्रभावित। लापता लोगों की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। मॉनसून ने फिर पकड़ी रफ्तार। आने वाले 24 घंटे में बिहार झारखंड के सभी इलाकों और उत्तर प्रदेश पहुंचने की संभावना। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में तेज होगी मानसूनी गतिविधियां। 29 से 30 जून के बीच उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय हो सकता है मानसून। सबसे पहले पूर्वी यूपी में देखने को मिलेगा मानसून का असर। बढ़ेगा बारिश का दायरा। तापमान में 5 से 8 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद। असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश नागालैंड और सिक्किम समेत पूरे पूर्वोत्तर में मॉनसून की बारिश। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मॉनसून के विस्तार के लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में फिलहाल भारी बारिश की संभावना कम। गरज चमक के साथ बादल छाने और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना। कई राज्यों में भीषण गर्मी के बीच पर्यटकों को लुभा रहा श्रीनगर का सुहाना मौसम। छुट्टियां मनाने श्रीनगर पहुंच रहे पर्यटक। श्रीनगर की मशहूर डल झील में शिकारा राइड का आनंद लेते हुए दिखे सैलानी। श्रीनगर के सुहाने मौसम से खुश दिखे पर्यटक। जम्मू कश्मीर में पर्यटन बढ़ने से नई जगहों के एक्सप्लोरर होने की जगी आस। मनमोहक नजारों वाली शोपियां की पीर की गली को पर्यटकों का इंतजार। लद्दाख के नीमू इलाके को मिली नवीनीकृत महिला सशक्तिकरण केंद्र की सौगात। भारतीय सेना की ओर से बुनाई कार्यशाला का किया गया उद्घाटन। स्थानीय महिलाओं को मिला कौशल विकास और व्यवसायिक प्रशिक्षण का बेहतर मंच। महिलाओं में आत्मनिर्भरता के साथ क्षेत्र के विकास को मिलेगी इससे रफ्तार। असम में चाय के छोटे उत्पादकों के लिए गुड न्यूज। किसानों को मिलेगा फार्मर आईडी। फार्मर्स रजिस्ट्री पोर्टल पर रजिस्टर कर के ले सकेंगे सरकारी सुविधाओं का लाभ। सीएम हेमंता ने चाय उत्पादकों के लिए बताया ऐतिहासिक दिन। चाय किसानों को समय पर मिलेगी खाद, आसानी से मिलेगा लोन, बिचौलियों से मिलेगी मुक्ति। आंध्र प्रदेश में व्हाट्सएप आधारित रियल टाइम गवर्नेंस पर सरकार का जोर, सभी सेवाओं में आधार वेरिफिकेशन को बढ़ावा देना लक्ष्य। आंध्र प्रदेश में राशन कार्ड अपडेट प्रक्रिया बनाई जाएगी आसान, सरकार ने अफसरों को जाति और आय प्रमाण पत्र से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए। केरलम के कल्पेटा को आंगनवाड़ी की मिली सौगात, वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया उद्घाटन। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, 19 जून को खत्म हुए सप्ताह में बढ़ा देश का विदेशी मुद्रा भंडार, 96,30,00,000 डॉलर की हुई बढ़ोतरी। बढ़ोतरी के बाद 672 अरब डॉलर से ज्यादा हुआ देश का विदेशी मुद्रा भंडार, पिछले सप्ताह सोने के भंडार के मूल्य में 411 करोड़ डॉलर की हुई बढ़ोतरी। उत्तराखंड को मिली बागवानी से जुड़ी गई परियोजनाओं की सौगात, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 46.32 करोड़ में तैयार 9 योजनाओं का किया उद्घाटन। रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ, 323.34 करोड़ के 32 विकास कार्यों की रखी आधारशिला, मुक्तेश्वर में क्लीन प्लांट सेंटर निर्माण का ऐलान। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिखा गोवंश प्रेम, मुख्यमंत्री ने गौशाला पहुंचकर गोवंश को खिलाया गुड़ और चना। युवाओं के लिए केंद्र सरकार में कई पदों पर सीधी भर्ती का मौका, केंद्रीय लोक सेवा आयोग ने भर्ती के लिए मंगाया आवेदन। ओडिशा में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने वाली गुड न्यूज, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने गो ईस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का ऐलान किया। दिल्ली में कल से पहले राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन का होगा आयोजन, ग्रामीण विकास योजनाओं की होगी समीक्षा, भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा रोडमैप। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने भारत में तेज की गतिविधियां, प्रभजीत सिंह को बनाया भारत में कंपनी का प्रबंध निदेशक। ओपन एआई के लिए कंज्यूमर ग्रोथ, एंटरप्राइज एडॉप्शन, पार्टनरशिप, रेगुलेटरी मामले और ऑपरेशंस के प्रदर्शन की जिम्मेदारी संभालेंगे प्रभजीत सिंह। FIH प्रो लीग हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 7-1 से दी करारी मात, हॉकी के मैदान पर पाकिस्तान को एक हफ्ते में दूसरी बार हराया। लंदन में खेले गए इस मुकाबले में सुखजीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, युवराज सिंह, अभिषेक राजकुमार पाल और दिलप्रीत सिंह ने किए गोल। महिला T20 विश्व कप में कल ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी भारत की बेटियां, अब तक खेले 4 मुकाबलों में से 3 जीतकर अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है टीम इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन दिलीप वेंगसरकर ने वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी को बताया अविश्वसनीय, आने वाले समय में अच्छे प्रदर्शन की जताई उम्मीद। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पहली बार नॉकआउट राउंड में पहुंचा मिस्र, ईरान के साथ 1-1 के ड्रॉ के साथ 5 अंकों के साथ ग्रुप स्टेज में दूसरे नंबर पर रहा मिस्र। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार खेल, सेमीफाइनल में पहुंचे देविका सिहाग, रौनक चौहान और किदांबी श्रीकांत। देविका सिहाग ने थर्ड रैंक खिलाड़ी जापान की रिको गुंजी को हराकर किया उलटफेर, क्वार्टर फाइनल में देविका सिहाग ने रिको को 22-20, 21-19 से दी मात। रौनक चौहान ने क्वार्टर फाइनल में इजरायली खिलाड़ी को 23-21, 21-11 से हराया। रौनक ने पहले पुरुष एकल BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 सेमीफाइनल में बनाई जगह। पूर्व वर्ल्ड कप नंबर 1 खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के खिलाड़ी को 21-9, 12-21, 21-8 से हराया, कल ऑल इंडिया फाइनल की जगाई उम्मीद। सेमीफाइनल में देविका का मुकाबला डेनमार्क की रैंक 2 खिलाड़ी क्रिस्टोफर सैन से होगा, वहीं रौनक चौहान चीनी ताइपे के रैंक 8 खिलाड़ी सूली यांग से भिड़ेंगे, तो किदांबी श्रीकांत जापान के रैंक 4 खिलाड़ी युदाई ओकिमोटो से करेंगे मुकाबला। फिल्म वेलकम टू द जंगल ने रिलीज के पहले ही दिन कमाए 15 करोड़, फिल्म ने पेड प्रीव्यू स्क्रीनिंग में कमाए थे 3,75,00,000। अहमद खान ने किया है वेलकम टू द जंगल का निर्देशन, फिल्म में देखेंगे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल समेत 30 से ज्यादा मशहूर एक्टर। फिल्म कॉकटेल 2 ने 8वें दिन की 4.25 करोड़ की कमाई। 74 करोड़ से ज्यादा हुई होमी अज्जानिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कमाई। 41 साल के हुए अभिनेता अर्जुन कपूर ने कल 26 जून को धूमधाम से मनाया अपना 41वां जन्मदिन। अर्जुन कपूर के जन्मदिन पर बहन अंशुला ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट। अंशुला ने पोस्ट में अर्जुन कपूर के बचपन की कई तस्वीरें भी की साझा।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लो।
1: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
2: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
1: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
3: You're listening to MSNBC.
1: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
4: AI की मदद से दौड़ेंगे सेना के टैंक, रोबोटिक वॉरियर संभालेंगे जंग की कमान, सेना के बैटल टैंक का कायाकल्प। देखिए रणक्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: और अब बात कुछ ऐसे वीडियोस की जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे, तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
6: कुछ लोग नियमों से नहीं अपने मूड से चलते हैं, फिर चाहे सामने नई सड़क बन रही हो या रास्ता बंद हो। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक शख्स बिना किसी परवाह के ताजा बनी सड़क पर निकल पड़ता है। आसपास मौजूद लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंकल अपने ही धुन में आगे बढ़ते रहते हैं। उनका बेफिक्र अंदाज देखकर लोग हंसी नहीं रोक पा रहे और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इंसान और पक्षी के बीच भरोसे का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है, इसका खूबसूरत उदाहरण ये वीडियो है। आसमान में उड़ रही एक चील बच्चे के इशारे पर नीचे आकर उसके हाथ पर बैठ जाती है। दोनों के बीच तालमेल और आत्मविश्वास देखने लायक है। सोशल मीडिया पर लोग इस नज़ारे को खूब पसंद कर रहे हैं। कई यूजर्स बच्चे के हुनर और पक्षी के साथ उसके अनोखे जुड़ाव की तारीफ कर रहे हैं।

दया, संस्कार और अपनापन उम्र नहीं देखते। वायरल वीडियो में छोटा बच्चा बड़े प्यार से गाय को अपने हाथों से खाना खिलाता दिखाई देता है। गाय भी बिना घबराए आराम से उसके हाथ से भोजन करती है। बच्चे के चेहरे पर डर नहीं बल्कि अपनापन साफ नजर आता है। सोशल मीडिया पर लोग इस प्यारे पल को खूब पसंद कर रहे हैं और बच्चे के संस्कारों की जमकर सराहना कर रहे हैं। जब परेशानी बड़ी हो तो देसी दिमाग भी कमाल कर जाता है। बारिश नहीं हुई तो किसान ने खेत तक पानी पहुंचाने का ऐसा जुगाड़ लगाया कि लोग हैरान रह गए। बांस के सहारे खुद को बांधकर वो साथियों की मदद से एक खेत से दूसरे खेत में झूले की तरह पानी पहुंचाता नजर आया। वीडियो देखकर लोग हंस भी रहे हैं और किसान की सूझबूझ की भी तारीफ कर रहे हैं। कभी कभी जिसे पकड़ने जाते हैं वही अचानक सामने आ जाए तो हालत खराब हो जाती है। वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची मेंढक को पकड़ने की कोशिश करती है, तभी मेंढक उछलकर सीधे उसकी गोद में आ बैठता है। अगले ही पल बच्ची जोर जोर से चिल्लाते हुए वहां से भाग निकलती है। ये मजेदार नजारा देखकर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे।

0: 2024 में T20 विश्व कप पर कब्जा, 2025 में जीता चैंपियंस ट्रॉफी का रण, अब लिया 2027 वर्ल्ड कप का प्रण, पद्मश्री रोहित शर्मा का अग्निपथ, वंदे में है दम श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: इफ यू लव पॉडकास्ट्स यू नेवर वांट टू बी विदाउट योर फेवरेट शोज, दैट्स वेयर ट्यून इन कम्स इन। हियर्स अ क्विक टिप, यू कैन लिसन एनीटाइम इवन विदाउट द इंटरनेट। Just open a podcast, tap the 3 dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
2: Asambhav khud batata hai ki sambhav mujh mein hi hai.
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
11: के लिए किस समय दान करना उत्तम होता है? क्या शनि के लिए रात में दान किया जाता है? क्या मंगल के लिए दोपहर में दान करने से फायदा होता है? ग्रहों के लिए क्या और कब करें दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
9: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
13: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
14: सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। बोटानिकल गार्डन में 196 साल के सबसे उम्रदराज कछुए जोनाथन के किए दीदार। स्टार जावलिन थ्रोअर खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से जुड़ी बड़ी खबर, जापान एशियन गेम्स में खेलना हुआ कंफर्म, AFI चयन समिति के अध्यक्ष ने दी अपडेट, 19 सितंबर से होगा आयोजन। बाल्टीमोर बंदरगाह पर दिखी भारत की समृद्ध समुद्री विरासत की तस्वीर, मिड अटलांटिक के बड़े पुलों के नीचे से गुजरा, 13,000 नॉटिकल मील का सफर तय करके पहुंचा नॉरफॉक। गुजरात के 14 शहरों को मिली सुगम यातायात की सौगात, भारत टैक्सी ऐप का शुभारंभ, गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में किया उद्घाटन। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए शानदार खबर, 19 जून को खत्म हुए सप्ताह में बड़ा देश का विदेशी मुद्रा भंडार, 96 करोड़ 30 लाख डॉलर की हुई बढ़ोतरी।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की।

0: जितनी तेजी से वक्त बदल रहा है उतनी ही तेजी से युद्ध के स्वरूप में भी बदलाव आ रहे हैं। मैदानी जंग में इंसानों की सीधे एंट्री की बजाय मशीनों को रणक्षेत्र में उतारने की तैयारी हो रही है। यही वजह है कि अनमैन्ड वेपन्स पर दुनिया का फोकस बढ़ा है। ऑटोनोमस मोड में काम करने के लिए ताकतवर हथियार तैयार किए जा रहे हैं।
1: भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट राइनो के तहत एक व्यापक अपग्रेड प्लान तैयार किया है। थल सेना अपने बेड़े में शामिल करीब 2400 पुराने हो चुके T-72 टैंकों को रिटायर करने या कबाड़ में बेचने के बजाय उन्हें अत्याधुनिक मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल में बदलने की योजना पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य T-72 टैंकों की सेवा अवधि को साल 2030 से 2040 के बाद तक बढ़ाना है।
0: आज के युद्ध क्षेत्र में इंसानों से ज्यादा आधुनिक मशीनों की भूमिका है। अब जंग सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से लड़ी जाती है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। युद्ध में मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि सिर्फ पारंपरिक हथियारों के भरोसे काम नहीं चलने वाला। इसी दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद T-70 टैंक्स को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। सेना अपने पुराने T-72 टैंक्स को एक डिजिटल और आधुनिक अवतार देने जा रही है। अब इन टैंक्स को IP बेस्ड इंटरफेस के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा।
2: इस प्रोजेक्ट के तहत एक मानव रहित टैंक का निर्माण किया जाएगा जिसमें इंजन का संचालन रिमोट से होगा, जो तोप और हैवी मशीन गन है उसका भी संचालन रिमोट से होगा। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, यानी जैसे AI का जो इंटीग्रेशन करना है या IP का जो इंटीग्रेशन करना है वह शायद उतने सुचारू रूप से फिलहाल नहीं हो रहा है।
0: T-72 वही टैंक है जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा की है। अब ये 40 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में रिटायर होने के कगार पर खड़े T-72 टैंक को घातक रोबोटिक वॉरियर में तब्दील करने की बात हो रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि T-72 टैंक में बदलाव से क्या फायदा होगा, सेना की समग्र मारक क्षमता में कैसे इजाफा होगा। माइंस भरे इलाकों को तोड़ने में मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल की तरह T-72 का इस्तेमाल होगा, साथ ही दुश्मनों की गोलीबारी को आकर्षित करने के लिए डिकॉय के रूप में काम करेगा, जिससे सैनिकों की सुरक्षा बढ़ेगी। अग्रिम मोर्चे पर ऑपरेशंस पे ये अहम भूमिका अदा करेगा, यानी T-72 टैंक अग्रिम पंक्ति के हमलों का नेतृत्व करेंगे और टोही के साथ गश्त का काम बखूबी निभाएंगे। डिजिटल होने के बाद T-72 टैंक कमांड नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भेजेंगे, जिससे ऑपरेटर्स और कमांडर्स को युद्ध के बीच तुरंत निर्णय लेने में आसानी होगी। पहले की योजना के अनुसार T-72 टैंक्स को साल 2030 से धीरे धीरे सेना से बाहर किया जाना था, लेकिन अब इस नई ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इन टैंक्स की उम्र अगले 15 से 20 साल यानी साल 2045 से 2050 तक बढ़ जाएगी।
2: एक नॉर्मल कन्वेंशनल टैंक जैसे कि T-72 को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें इंजन वही रहता है, गियरबॉक्स भी वही रहता है, तोप भी वही रहता है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी वही रहता है। सिर्फ बदला किया जाता है, एक मानव रहित रोबोट जो है वो ड्राइवर की जगह ले लेता है, एक मानव रहित गनर है वो तोपची की जगह ले लेता है, और कमांडर की जो जगह है वो रिमोट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे बैठे हुए एक मानव कमांडर के हाथ में होता है। अब इन सबको करने के लिए जो रोबोट टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित कर ली है, लेकिन उसमें जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वह अभी तक आना बाकी है।
0: यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि आज के आधुनिक दौर में ड्रोन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और टॉप अटैक हथियारों ने पारंपरिक टैंक्स को बेहद असुरक्षित बना दिया है। ऐसे माहौल में टैंक के भीतर बैठे क्रू मेंबर्स की जान हमेशा खतरे में रहती है। भारत ने इस वैश्विक चुनौती का बेहद सटीक और किफायती समाधान ढूंढ निकाला है। सेना अपने पुराने हो रहे T-72 टैंकों में एक विशेष ऑटोनॉमस किट फिट करेगी, जिससे कि इन्हें रिमोट कंट्रोल के जरिए या फिर पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड में ऑपरेट किया जा सकेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि टैंक के भीतर कोई सैनिक मौजूद नहीं होगा। टैंक AI की मदद से या फिर रिमोट से ऑपरेट होगा और ये अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ दुश्मन पर हमला भी करेगा। एक पारंपरिक भारी भरकम मेन बैटल टैंक जैसे T-72 को मानव रहित रोबोटिक टैंक में बदलना इंजीनियरिंग का एक बेहद जटिल काम है। इसके लिए टैंक के पुराने मैनुअल सिस्टम को पूरी तरह हटाकर उसमें ड्राइव बाय वायर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाता है। टैंक को रोबोट बनाने के लिए उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाता, बल्कि उसमें एक विशेष रेट्रोफिट किट लगाई जाती है। इस किट के तीन मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है एक्चुएटर्स एंड सर्वो मोटर्स। टैंक के मैनुअल स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और गियर लीवर पर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर फिट किए जाते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मानव चालक के हाथ और पैर करते हैं। दूसरा है रिमोट गन कंट्रोल सिस्टम। 125 mm गन को मोड़ने, निशाना साधने और गोला दागने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगाई जाती हैं, जिन्हें मीलों दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है डिजिटल इंटरफेस। टैंक के पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम को ECU यानी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जो डिजिटल कमांड को मैकेनिकल मूवमेंट में बदल देता है।
2: खास बात है कि एक T-72 में आमतौर पर एक तीन लोगों का क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर। लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद इसमें जो रेट्रोफिट किट लगाया जाएगा, उसमें यह ड्राइवर का काम एक ऑटोमेटिक रोबोट करेगा। इसी तरह से जो ड्राइवर होगा उसको असिस्ट करने के लिए जो गनर है, जो टैंक का मेन तोप और हैवी मशीन गन फायर करता है, उस गनर को भी एक रोबोटिक गनर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी जो ट्रिगर प्रेस करने का काम है, जो निशाना लगाने का काम है, नया गोला तोप के चैम्बर में डालने का काम है, वो भी रोबोट्स के जरिए किया जाएगा।
0: रोबोटिक टैंक के अंदर कोई इंसान नहीं होता, इसलिए युद्ध क्षेत्र को देखने और समझने के लिए टैंक के चारों तरफ सेंसर्स का एक जाल बिछाया जाएगा। टैंक में लिडार और रेडार का इस्तेमाल होगा। ये सेंसर चारों ओर लेजर और रेडियो तरंगे भेजकर रियल टाइम में पूरे इलाके का एक 3D डिजिटल मैप तैयार करते हैं। इससे टैंक को पता चलता है कि आगे कोई खाई, चट्टान या दीवार तो नहीं है। टैंक में 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगाए जाएंगे, जो रात के अंधेरे, घने धुएं या कोहरे में भी दुश्मन की हलचल को साफ देख सकते हैं। AI सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में मिलाएगा, ताकि टैंक का कंप्यूटर एक सटीक फैसला ले सके। भारतीय सेना अपने टैंक्स को सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाना चाहती, क्योंकि युद्ध में दुश्मन सिग्नल जाम कर सकता है, इसलिए इसमें AI की मदद ली जाएगी। भारतीय सेना की अदिति 4.0 योजना के तहत देश के अग्रणी रक्षा स्टार्टअप्स इसी रोबोटिक किट और AI सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, ताकि हमारे T-72 टैंक्स को रिमोट कंट्रोल किलर मशीन्स में बदला जा सके।
1: मानव रहित टैंक को कंट्रोल करने के लिए युद्ध के मैदान से 5-10 किलोमीटर पीछे एक बख्तरबंद ट्रक के अंदर सैनिक सुरक्षित बैठता है। ऑपरेटर के सामने कई बड़ी स्क्रीन्स या VR हेडसेट्स होते हैं, जो कि ऐसा अनुभव देते हैं कि वो खुद टैंक के अंदर बैठा हो।
0: कंट्रोलर एक विशेष जॉयस्टिक, स्टीयरिंग व्हील और फायर बटन की मदद से टैंक को चलाता है और निशाना लगाता है। ऑपरेटर अपने कंट्रोल पैनल पर तय करता है कि उसे किस तरह का गोला दागना है, जैसे बख्तरबंद गाड़ियों के लिए APFSDS पैदल सेना या बंकरों को तबाह करने के लिए हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल। ऑपरेटर जैसे ही बटन दबाता है एक इंटीक्रिप्टेड डिजिटल सिग्नल टैंक के ECU यानी केंद्रीय कंप्यूटर को जाता है और फिर टैंक फायर कर देता है। सुरक्षा नियम कहते हैं कि गोला दागने का अंतिम फैसला हमेशा इंसानी ऑपरेटर का ही होता है। AI को खुद से फायर करने की अनुमति नहीं दी जाती।
2: अमेरिका, रशिया और इजराइल ने भी इस तरह के रोबोटिक टैंक्स बनाने की कोशिश की है, लेकिन इनमें से किसी भी देश में अभी तक जो प्रोटोटाइप बनाया गया है उसको ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी कि मास प्रोडक्शन के बाद उनकी आर्मी में इंडक्शन का कोई ऑर्डर नहीं मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि युद्धभूमि में ऐसा ना हो कि हमारा ही रोबोटिक टैंक गलती से हमारे ही टैंक या हमारे ही तोप की पोजीशन जो आर्टिलरी है या हमारी जो इन्फेंट्री ट्रुप्स युद्धभूमि में हैं उन पर फायर ना खोल दे। व्यवस्था ये की जाती है कि हमेशा जो ऑटोमेटिक लूप है उसमें मैन इन लूप हो, यानी फाइनल फायर करने की जो इजाजत है वो एक मनुष्य देगा।
0: T-72 टैंक को रिप्लेस करने की बजाय इसे अपग्रेड किया जा रहा है। आखिर दशकों पुराने इस टैंक में ऐसा क्या खास है कि इसे अपग्रेड कराने की तैयारी हो रही है और ये कितना घातक है ये भी जानना जरूरी है। भारत का T-72 टैंक अजय 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है जो 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ने की ताकत रखता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत है कि ये रीस्टार्ट होने में महज 6 से 7 सेकंड का वक्त लेता है। कम गहरी नदियों को आसानी से पार करने की इसमें ताकत है। लाइटवेट टैंक की बात करें

0: जो कि भारत के पास भी है। भारत की फौज में अभी करीबन 1000 T-90 टैंक्स हैं और करीबन 3000 T-72 टैंक हैं। इन T-72 टैंक्स की खास बात यह है कि ये रेत के ऊपर, दलदल के ऊपर, कीचड़ में, जंगल में, पहाड़ों में, बर्फ में भी ऑपरेट कर सकते हैं। इन T-72 टैंक्स में जो मेन गन लगी है वो इंफ्रारेड फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है और रात के अंधेरे में भी दुश्मन के टैंक्स या दुश्मन की गन पोजीशन को 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी से देखकर एक्यूरेट फायर कर सकता है।
1: भारतीय सेना के पास T-72 टैंक के 3 वर्जन हैं, अजय MK-1, अजय MK-2 और कॉम्बैट इंप्रूव्ड अजय, जिनका भारत इस्तेमाल करता है। इस वक्त भारतीय सेना में करीब 2400 के आसपास T-72 अजय टैंक मौजूद हैं।
2: भारतीय सेना ने T-72 के आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट राइनो शुरू किया था। इसके तहत टैंकों में नए इंजन, आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम और बेहतर सुरक्षा प्रणाली लगाने की योजना है। साथ ही अदिति 4.0 पहल के तहत इन्हें भविष्य में मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म में भी बदला जा सकता है। सेना का मानना है कि इन सुधारों से T-72 टैंक आने वाले वर्षों में भी प्रभावी बने रहेंगे और भविष्य में फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के शामिल होने तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: भारत जहां अपने मौजूदा T-72 टैंक बेड़े को बदलने और AI रेट्रोफिट किट का शुरुआती परीक्षण करने के चरण में है, वहीं अमेरिका और रूस ने इस क्षेत्र में समर्पित नई पीढ़ी के प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए हैं और उनका लाइव बैटलफील्ड में परीक्षण भी किया जा चुका है।
2: आखिरी युद्ध में टैंक की क्या अहमियत है और इसकी जरूरत अब भी रणभूमि में क्यों महसूस की जाती है, इसे जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में चलना होगा।
1: प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के कई देश एक दूसरे को घुटनों के बल लाने के लिए रण क्षेत्र में उतरे हुए थे। तब पुराने जमाने की तरह ज्यादातर लड़ाई आमने सामने लड़ी गई। जितनी लड़ाई जमीन के ऊपर लड़ी गई उतनी ही जमीन के नीचे भी। कई कई किलोमीटर लंबी खाइयां खोदकर सैनिक उनमें मशीन गन से लैस होकर तैनात रहते थे। इन खाइयों को ट्रेंच कहा जाता है और इनके बीच होता था नो मैंस लैंड। तार बाड़ और लैंड माइन से भरी जमीन को पार करना यानी मौत को दावत देने जैसा था, इसीलिए तब लंबे समय तक ट्रेंच वॉर चलती रही। हर देश अपनी ट्रेंच के जरिए खुद की हिफाजत की पुख्ता व्यवस्था में जुटे थे। और इसी वजह से साल 2016 तक युद्ध फंसा ही रहा। ब्रिटेन और जर्मनी दोनों खेमों की सेना जहां जहां थी वहीं खड़ी की खड़ी रही, क्योंकि आगे बढ़ना मुश्किल था। और तभी आया एक ऐसा हथियार जिसने आने वाले तमाम युद्धों की तस्वीर बदल कर रख दी। यह हथियार था टैंक।
2: टैंक का नाम टैंक ही क्यों पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। जब ब्रिटेन टैंक को बना रहा था तो उसे डर था कि इस नए हथियार की जो जानकारी थी वो कहीं लीक ना हो जाए, इसलिए आधिकारिक फाइल्स में इस हथियार को टैंक लिखा जाने लगा ताकि अगर किसी को पता चले तो ये लगे कि ब्रिटेन पानी ले जाने के लिए किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जो कमेटी इसका काम देख रही थी उसे टैंक सप्लाई कमेटी या TS कमेटी कहा गया और जब फिर हथियार तैयार हो गया तब उसका नाम टैंक ही पड़ गया।
1: पहले विश्व युद्ध में बने टैंक प्रयोग के स्तर पर थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध आते आते टैंक्स फौज की जरूरत बन गए, या यूं कहें टैंक्स सेना का अनिवार्य हिस्सा बन गए। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने जब चंद दिनों में फ्रांस और पोलैंड पर अपनी जीत हासिल की तो उसकी सबसे बड़ी वजह उसके टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ही थे।

0: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टैंक की अहमियत बढ़ने लगी क्योंकि दुनिया के तमाम देशों ने आमने सामने की लड़ाई में टैंक की विध्वंसकारी ताकत को काफी करीब से महसूस कर लिया था और फिर दुनिया के कई देशों ने टैंक टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया। इनमें एक नाम भारत भी था।
1: लंबे समय तक भारत अपने दोस्त सोवियत रूस से टैंक आयात कर अपनी जरूरतें पूरी करता रहा। फिर 1965 में भारत ने यूके की मदद से अपना एक टैंक बनाया जिसका नाम रखा गया विजयंत। इसका इस्तेमाल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किया गया। स्वदेशी ताकत को धार देने के लिए बाद में अर्जुन टैंक का निर्माण किया गया और अब इसी कड़ी में जोरावर का नाम भी जुड़ गया है। किसी भी टैंक की ताकत का आकलन उसकी मारक क्षमता, उसकी स्पीड और उसकी डिफेंस क्षमता से होती है। इसके लिए बैटल टैंक्स के कुछ इंडिकेटर होते हैं। उनके जरिए ही पता चलता है कि टैंक फौज की जरूरत के हिसाब से सही है या नहीं। ये इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। पहला इंडिकेटर वजन है, स्पीड है, पावर टू वेट रेशियो है, साथ ही हथियारों और डिफेंस मैकेनिज्म है जो ये बताता है कि आर्मर कैसा है टैंक का।
2: टैंक के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन, और ये तीनों बहुत जरूरी है। अगर आप देखें मोबिलिटी तो वो दिखलाता है कि टैंक किस स्पीड से जा सकता है, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह में कम से कम समय में जा सकता है और अपने टारगेट को कितनी जल्दी जाके हिट कर सकता है, तो इसलिए मोबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार फायर पावर, जो फायर पावर है वो दिखलाता है कि आप किस हिसाब से अपने टारगेट को शॉर्ट शॉर्ट हिट कर देते हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी रेंज कितनी है। और जो तीसरा है आपकी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यह है कि आपको ये भी देखना है कि दुश्मन के जो एंटी टैंक वेपन है या दुश्मन के टैंकों से आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट हिट हो जाता है आपके टैंक में तो आप के पास इतनी काबिलियत और क्षमता होनी चाहिए कि आपका टैंक उसको विस्टैंड कर ले, तो इसका मतलब चुबा आर्मर है, रिएक्टिव आर्मर है, तो इस टाइप का। तो ये कॉम्बिनेशन है इम्पोर्टेंट, एक टैंक के अंदर तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन। इसका कॉम्बिनेशन होना, इसकी ऐसा तरीके से होना कि इसका वेट भी ऑप्टिमम हो, इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो और फायर पावर भी बहुत ही एक प्रकार से अव्वल दर्जे की हो।
1: किसी अच्छे बैटल टैंक में दो काबिलियत अनिवार्य है, पहला मोबिलिटी और दूसरा फायर पावर। मोबिलिटी का मतलब टैंक की वो ताकत है जो उसे कहीं भी ले जा सकती है। आप देखिए ट्रेंच वॉरफेयर की जगह पे ही टैंक्स आए थे, पक्की सड़क हो या फिर कई मीटर गहरा कीचड़। टैंक का काम है हर जगह से निकलना, जहां बड़े बड़े पहियों वाले ट्रक्स भी फंस जाते हैं वहां से टैंक्स आसानी से निकल जाते हैं, जबकि टैंक में लोहे के रोड व्हील्स या कहिए उसमें लोहे के पहिए होते हैं फिर भी वो धसते नहीं। वो कैसे? इसका सिंपल फिजिक्स है। टैंक के पहिए सीधे जमीन पर चलते ही नहीं हैं, टैंक्स अपने साथ अपनी सड़क भी लेकर चलते हैं जिन्हें कहा जाता है ट्रैक। आमतौर पर लोग इसे टैंक की चेन कह देते हैं लेकिन ट्रैक सही शब्द है। ट्रैक पर चलने का फायदा ये है कि टैंक का वजन जमीन के किसी एक हिस्से पर नहीं पड़ता है। टैंक का ट्रैक टैंक के वजन को एक बहुत बड़े सरफेस एरिया पर बांट देता है और इसलिए नम जमीन पर भी 50-50 टन के टैंक कभी धसते नहीं।
2: टैंकों के अंदर व्हील नहीं होते क्योंकि व्हील जो है उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि रेतीले इलाके में, दलदल के इलाके में या टूटी फूटी जमीन पे चल पाए, इसीलिए टैंकों के अंदर ट्रैक होते हैं और ट्रैक से काबिलियत बढ़ती है टैंक की। टैंक जो है एक प्रकार से रेतीली इलाके में भी जा सकता है और ऐसे इलाके में जा सकता है जहां पर दलदल हो या टूटी फूटी जमीन हो, इसीलिए टैंकों में ट्रैक होता है ना कि व्हील।
1: मौजूदा दौर में कई टैंक्स गहरे पानी तक को पार करने में सक्षम है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टैंक्स बिल्कुल भी फंसते नहीं। टैंक्स भी फंसते हैं लेकिन ऐसा बेहद कम होता है।
0: को मैन्यूवरल भी होना चाहिए और बढ़िया वेट टू पावर रेशियो भी होना चाहिए। मैन्यूवरिंग मतलब टैंक कितनी चपलता या फुर्ती के साथ हरकत कर सकता है, गोला दाग कर कितनी जल्दी अपनी पोजीशन बदल सकता है। जाहिर है टैंक भारी होगा तो उसे हरकत करने में काफी दिक्कतें आएंगी, लिहाजा टैंक के पास एक ताकतवर इंजन का होना जरूरी है।
1: टैंक का वजन और उसके इंजन की ताकत या पावर के बीच जो अनुपात होता है उसी को कहा जाता है पावर टू वेट रेशियो। जितना बेहतर पावर टू वेट रेशियो होगा उतना अच्छा टैंक हो सकता है।
2: तीन रिक्वायरमेंट है टैंक की, इसकी फायर पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसकी मोबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, इसकी प्रोटेक्शन भी, और तीनों का तालमेल होना चाहिए। देखो अगर आप प्रोटेक्शन देते हैं तो फिर इसका टैंक का एक प्रकार से वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है तो फिर मोबिलिटी कम हो जाती है और उसकी फायर पावर कैसी होगी वो भी दर्शाता है। तो एक अच्छे टैंक का पहचान यह है कि हर चीज अच्छी हो, उसकी फायर पावर भी बहुत अच्छी हो, वो उसके रेंज पे हिट कर पाए 100% अपने टारगेट को हिट कर पाए, और इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो कि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा पाए, और तीसरा है इसकी प्रोटेक्शन भी हो कि अगर दुश्मन का टैंक या एंटी टैंक वेपन हिट करता है तो वो उसे बचाव कर पाए। तो इन तीनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए कि ये ना हो कि टैंक इतना हैवी हो, इतना लाइट ना हो कि उसकी प्रोटेक्शन इतनी अच्छी ना हो या उसके अंदर फायर पावर इतनी अच्छी ना, तो तीनों का एक प्रकार संतुलन होना जरूरी है।
0: हमारे लिए यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
4: जाती है। Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
5: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
6: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
5: Big 12 Radio.
7: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
5: and
7: down.
5: Talk sports.
8: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
5: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
17: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: 2024 में T20 विश्व कप पर कब्जा, 2025 में जीता चैंपियंस ट्रॉफी का रण, अब लिया 2027 वर्ल्ड कप का प्रण, पद्मश्री रोहित शर्मा का अग्निपथ, वंदे में है दम श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: टैंक को ताकतवर बनाने में उसका फायर पावर भी अहम रोल निभाता है। टैंक की मारक क्षमता को बताने के लिए भी कई इंडिकेटर्स हैं। पहला है कैनन, यानी टैंक पर लगी तोप का साइज। कैनन का बोर जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा गोला दागने में टैंक सक्षम होगा, यानी जितना बड़ा कैनन होगा वो उतना इफेक्टिव हो सकता है। एक मिनट में कितने गोले फायर किए जा सकते हैं इस पर भी ध्यान दिया जाता है, यानी जितने कम समय में टैंक जितने ज्यादा गोले दागेगा उससे दुश्मन को बचने का वक्त भी कम मिलेगा, साथ ही उसे नुकसान भी काफी ज्यादा उठाना पड़ेगा।
3: दुनिया के अंदर जो पावरफुल टैंक हैं वो इस प्रकार से हैं कि यूनाइटेड किंगडम के जो हैं वो चैलेंजर 2 है, जर्मनी का है जो लेपर्ड 2, और इसी प्रकार अमेरिका इब्राहिम M1, और भारत का जो है वो T90 टैंक है, और हमारे पास T72 भी है, और अब विजेंद्रा बनाया है हमने। मगर टैंक की पहचान है कि वो किस प्रकार से गोले दाग सके जल्दी से जल्दी और दुश्मन के टैंकों को बर्बाद कर पाए, तो ये सच्चाई है। आज की तारीख में जो कैनन है उसकी इम्पोर्टेंस दर्शाती है कि कितनी दूर तक उसके गोले जा सकते हैं और क्या उसकी एक्यूरेसी होगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये दिखलाना कि वो स्मूथ बोर है उसकी कैनन या नहीं है, मगर सच्चाई यह है कि टैंक की जो फायर पावर है वो दर्शाती है कि टैंक की ताकत कितनी है। तो इसीलिए जो मैंने बताया कि ये आज की तारीख में दुनिया के सबसे अच्छे टैंक हैं, इब्राहिम M1 अमेरिका का, लेपर्ड 2 जर्मनी का, और चैलेंजर 2 UK का, और भारत का T90, T72 और विजेंद्र।

0: टैंक के लिए जितना अहम कैनन है उतना ही अहम है उसकी मैगजीन का साइज, यानी टैंक कितने गोले लेकर चल सकता है। ज्यादा गोले का मतलब युद्ध के मैदान में टैंक कितने समय तक दुश्मनों से मुकाबला कर सकता है और कितने तरह के गोले इससे दागे जा सकते हैं। इन बातों से टैंक की ताकत को परखा जाता है। आजकल के टैंक तो मिसाइल भी फायर करने में सक्षम हैं। अब टैंक के कितने हिस्से होते हैं और उसका काम और अहमियत क्या है, ये भी जान लीजिए। टैंक के दो हिस्से होते हैं। टैंक के नीचे के हिस्से को हल कहा जाता है, वहीं ऊपर के हिस्से को टरेट कहते हैं। ये 360 डिग्री पर मूव कर सकता है। टरेट वाले एरिया में बैरल से लेकर मशीन गन और एंटी एयरक्राफ्ट गन तक लगी होती है, जिससे दुश्मनों से मुकाबला किया जाता है।
1: ये जो गन कंट्रोल सिस्टम होता है, जायरोस्कोपिक वेपन स्टेबलाइजर उसको बोलते हैं, इसका काम यह है कि एक रेफरेंस पॉइंट जो है उसको फिक्स करके उसके ऊपर ही वहीं पर गन को रखा जाए। तो ये एक सब टैंकों में यही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टैंक को तो ऊपर या नीचे उबड़ खाबड़ इलाके में चलना ही है, तो उसको एक पहले तो गन कंट्रोल सिस्टम जो है वो आता है और साथ ही साथ उसके फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी एक इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये जायरोस्कोप जो है वो मदद करती है कि इसको सिंक्रोनाइज करके एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पर जहां आपने फिक्स किया है वहां पर उसकी गन की बैरल को रखा जाए।
0: टैंक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि दुश्मन के रडार में आए बगैर मिशन को अंजाम तक पहुंचाए। खुला इलाका या रेगिस्तान में ये चुनौती काफी बढ़ जाती है। ऐसे में टैंक स्मोक डिस्चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। टैंक से निकलने वाले स्मोक से धुएं का बादल पसर जाता है, जिससे दुश्मन के लिए टैंक की सही पोजीशन ढूंढकर हमला करना मुश्किल हो जाता है।
1: जो स्मोक डिस्चार्ज किया जाता है, स्मोक ग्रेनेड होते हैं हमारे पास, वो स्मोक जो है वो डिस्चार्ज करने के दो पर्पज होते हैं। एक तो अगर टैंक जहां से फायर करता है और स्मोक डिस्चार्ज करके वो वहां से क्विकली गेट अवे करके दूर जा सकता है दुश्मन की नज़र को धोखा देके। दूसरी बात ये होती है कि दुश्मन का रडार या इंफ्रारेड रे से या किसी और तरीके से अगर आपकी पोजिशन ट्रेस करना चाहे तो ये ऐसे जो स्मोक स्क्रीन जो क्रिएट किया जाता है उससे उसको चीट किया जा सकता है या उसको मिस गाइड किया जा सकता है। तो ये स्मोक स्क्रीन जो है ये मदद करता है टैंक को अपने आप को दुश्मन की गन से या दुश्मन के अटैक से बचाने के लिए।
0: युद्ध के मैदान में टैंक्स के लिए एंटी टैंक माइंस का एक बड़ा खतरा माना गया है। पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत ने एंटी टैंक माइंस का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के कई टैंक्स को तबाह कर दिया था। अब दुश्मन के एंटी टैंक माइंस से बचने के लिए माइंस प्लगर का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के मेन बैटल टैंक अर्जुन मार्क 1 में इसका इस्तेमाल किया गया है। माइंस प्लगर के पास ही सेंसर लगा होता है, जिसकी मदद से माइंस को डिटेक्ट कर लिया जाता है और फिर प्लगर की मदद से उसे जमीन से उखाड़ दिया जाता है।
2: सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंटी टैंक वेपन से भी खतरा होता है टैंक को, और दूसरा टैंक से एंटी टैंक माइंस। एंटी टैंक माइंस है जो दुश्मन लगाता है बैटलफील्ड में, और उसको बचने के लिए क्या किया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से देखो कई तरीके हैं। एक तो है कि आप ट्रोल्स लगती हैं टैंक के सामने, वो जो ट्रोल्स हैं वो जब चलती हैं तो आगे अगर एंटी टैंक माइन लगी है उसको उखाड़ देती है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल मॉडर्न आधुनिक चीजें आ गई हैं, केमिकल रिएक्टिव केमिकल भी एक प्रकार छिड़का जाता है, जिसके कारण जो भी एंटी टैंक माइन आगे लगे हैं वो सारी की सारी ब्लास्ट हो जाती हैं। मॉडर्न तरीके काफी आ रहे हैं, मगर ये सच्चाई है कि जो माइंस हैं एंटी टैंक माइंस वो टैंक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है बैटलफील्ड में। इसीलिए नए नए तरीके टैंक निकाले जा रहे हैं, जैसे कि ट्रॉल्स है वो कि एक प्रकार जो टैंक के आगे लगता है जो अगर टैंक के आगे कोई माइन आती है तो उसको उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाता है, रास्ते में से दूर कर दिया जाता है टैंक के। और इसी प्रकार कुछ केमिकल्स भी हैं जो कि स्प्रे किए जाते हैं, जिसके कारण रिएक्शन होने से जो एंटी टैंक माइंस हैं वो पहले ही बास्ट हो जाती हैं टैंक के आने से पहले।
0: टैंक के क्रू मेंबर की हिफाजत के लिए एक तो इसके कवच को काफी मजबूत बनाया जाता है, साथ ही इस पर एक्सप्लोजिव भी लगाया जाता है जो दुश्मन के हमले से सुरक्षा मुहैया कराते हैं। टैंक्स के डिजाइन को लेकर भी खास सावधानी बरती जाती है, इसे कर्व जैसा आकार दिया जाता है ताकि गोली बेअसर साबित हो।
1: टैंक की आर्मर जो है ये एक्चुअली काफी मोटी होती है, और आजकल कंपोजिट आर्मर जो है ना, सेल्फ रिपेयरिंग आर्मर्स वो भी आ गई हैं। होता यह है कि दो हार्ड जो फेसेस हैं उसके अंदर कंपोजिट बनाने के लिए उसके अंदर एक लो डेंसिटी वाला मटेरियल रखा जाता है। आइडिया ये है कि अगर कोई भी शेल आपके टैंक के ऊपर गिरे तो वो उसको पियर्स ना कर सके, उसके अंदर गोला करके उसके अंदर ना जा सके। तो इसके लिए कंपोजिट आर्मर और आज की टेक्नोलॉजी के युद्ध में बहुत बढ़िया बढ़िया आर्मर। आइडिया ये है कि टैंक का वेट भी ना बढ़े, जितना आप इसका आर्मर को मोटा करेंगे उतना टैंक का वेट बढ़ेगा। तो इसलिए ये एक ट्रेड ऑफ होता है कि कितना आर्मर मोटा या अच्छी क्वालिटी का ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाए कि जो लाइट भी हो, टैंक की वेट को ना बढ़ाए और उसी तरीके से ये दुश्मन के गोले को या उसको भी बर्दाश्त कर सके।
0: टैंक के मेन गन से एम्यूनेशन यानी गोला फायर किया जाता है। इसे फायर करने के दौरान बैरल काफी गर्म हो जाता है, साथ ही बड़ी मात्रा में धुआं और जहरीली गैस निकलती है। ऐसे में खतरा ये रहता है कि बैरल के जरिए धुआं वापस टैंक के अंदर दाखिल न हो जाए, लिहाजा बैरल में एक इवैक्यूएटर बना होता है जो धुआं और जहरीली गैस को वापस लौटने से रोक देता है। ताकतवर टैंक्स की बेहतरीन खूबियों को समेटे है भारत का माउंटेन टैंक जोरावर। हल्का होने की वजह से इसे उठाकर कहीं भी पहुंचाया जा सकेगा। फिलहाल तो भारतीय सेना के पास T-72, T-90 भीष्म या फिर स्वदेशी अर्जुन टैंक की टोली है। ये सभी टैंक 45 टन से ज्यादा वजनी हैं, जिन्हें LAC पर पहुंचने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि भारतीय सेना हल्के टैंक चाहती है। जोरावर टैंक का वजन करीब 25 टन है। इसमें 105 मिलीमीटर कैलिबर की गन लगी है, जिससे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी जा सकती हैं। इसमें मॉड्यूलर एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर और एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है जो इसे हमलों से सुरक्षित रखता है। बेहतर मोबिलिटी के लिए इसमें कम से कम 30 HP टन का पावर टू वेट रखा गया है, यानी हर एक टन पर 30 horsepower की ताकत। जोरावर टैंक -10 degree से लेकर 42 degree की चढ़ान या ढलान पर चढ़ उतर सकता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 65 किलोमीटर प्रति घंटा।
3: तो ये एक बहुत ही आधुनिक मशीन है। इसके जो सर्वेलेंस सिस्टम्स है, इसमें हम कहते हैं सी थ्रू आर्मर, जहां जो व्यक्ति अंदर बैठा है उसको बाहर का पूरा 360 डिग्री अवेयरनेस होगा। इसमें ड्रोन सिस्टम भी इंटीग्रेट किए गए हैं। इसकी जो फायरिंग कैपेबिलिटी है, ये हाई एंगल में भी फायर कर सकता है। तो इसमें बहुत से आधुनिक कैपेबिलिटीज इसमें बिल्ड की गई है। आप जो इसकी मोबिलिटी देखते हो, ये पावर पैक है, ये इसकी पावर टू वेट रेशो 30 से ज़्यादा है। इसमें रबर के ट्रैक्स हैं ताकि इसकी जो राइड क्वालिटी है बहुत ही स्मूथ हो। इसकी एजिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये सैंड ड्यून भी चढ़ पाएगा, ये माउंटेन्स में भी हम इसको ले पाएंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत के हजीरा में LNT प्लांट में जोरावर टैंक का जायजा लिया। ये भारतीय सेना के लिए सबसे नया टैंक है। साल 2024 में जोरावर का प्रोटो वर्जन दुनिया के सामने आया था और जोरावर का फिलहाल ट्रायल जारी है। DRDO के अनुसार अगले साल यानी 2027 तक भारतीय सेना को पूर्वी लद्दाख में तैनात करने के लिए ये टैंक मिल जाएगा।
4: ये देखिए, यूजर ट्रायल्स यूजुअली समर ट्रायल्स रहते हैं, फिर विंटर ट्रायल्स रहते हैं, फिर हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स भी रहेंगे, फिर मेंटेनेंस ट्रायल्स रहते हैं, DGQA ट्रायल्स रहते हैं। तो ये एक डेढ़ साल तो चलेंगे, उसके बाद फिर एक्विजिशन प्रोसेस शुरू होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2-2.5 साल में ये फर्स्ट प्रोडक्शन मॉडल रेडी रहेगा इंडक्शन के लिए। सो 2027 में पहला टैंक इंडक्ट हो सकता है।
0: भारत की चीन के साथ करीब 3,500 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो लद्दाख से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक आती है। ये इलाके काफी ऊंचाई पर मौजूद हैं, यहाँ सेना के लिए चुनौतियाँ काफी बड़ी हैं। चीन ने लद्दाख सेक्टर में अपनी सीमा की तरफ ZTZ-04A और टाइप 15 लाइट टैंक तैनात कर रखे हैं, जो 33 टन से कम वजन के हैं। उन्हें आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकता है। भारतीय सेना के पास भी अब लाइट वेट टैंक आने वाला है, जिससे माउंटेन वॉर में बढ़त हासिल होगी। शुरुआत में सेना को 59 टैंक दिए जाएंगे, जिनकी संख्या 354 तक ले जाने की प्लानिंग है।
2: हैवी टैंक हैं वो पहाड़ी इलाकों में नहीं चल सकते, और जिस प्रकार से आपके लद्दाख का एरिया है भारत के अंदर, वहां पर हम T-72 और T-90 जिसको हैवी टैंक बोलते हैं उनको लेके गए हैं, मगर वो इतनी जोरों से वहां नहीं चल सकते, क्योंकि वहां पर उबड़ खाबड़ जमीन है, पहाड़ी इलाका है, उसके लिए लाइट टैंक चाहिए। तो लाइट टैंक का होना बहुत जरूरी है। लाइट टैंक है जो 25 टन और उससे कम हो, और वो एक प्रकार स्पीड ज्यादा हो, और जिस प्रकार से अभी भारत ने जोरावर टैंक बनाया है, जोरावर टैंक है, उसकी खसूसियत ये है कि लाइट टैंक है, उसकी मोबिलिटी बहुत है, और उसको हाई एल्टीट्यूड में ले जाना बड़ा आसान है कि C-17 ग्रो मास्टर से 2 टैंक एट अ टाइम जा सकते हैं। और इसकी एक खसूसियत ये भी है, जो जोरावर टैंक है, जो लाइट टैंक होते हैं, कि उसकी जो बैरल है और उसकी जो गन है वो हाई एंगल फायर कर सकती है। इसका मतलब वो जो आर्टिलरी फायर करती है वैसा ही फायर टैंक से भी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके पास जो लॉटरिंग म्यूनिशन होता है, जो फायर होता है, वो म्यूनिशन इस टाइप का होता है कि दुश्मन के टैंक को 100% हिट करता है या दुश्मन के टारगेट को 100% हिट करता है। और ये जो जोरावर टैंक अभी भारत खुद बना रहा है, ये DRDO एंड LNT जो है मुल्क के बनाए हैं। अभी एक टैंक प्रोटोटाइप बना दिया है, उसकी अभी जो फील्ड ट्रायल के लिए जा रहा है टैंक, ऐसा लगता है कि 2028 तक जो जोरावर टैंक है भारत की फौज के अंदर इंडक्ट होंगे।
0: हल्के टैंक्स में भारी टैंक की तरह ही फायर पावर तो होगा ही, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ ड्रोन इंटीग्रेशन और हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस जैसी तकनीक भी होंगी, जो ऊंचे पहाड़ों से लेकर दर्रों तक से आसानी से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। भारत के पास ताकतवर टैंकों की टोली है, जिनमें एक नाम T-90 भीष्म। इसकी गिनती दुनिया के बेहतरीन टैंकों में होती है। भीष्म का प्राइमरी वेपन है 125 mm की कैनन, जो कि अलग अलग तरह के गोले दागने में सक्षम है, जिनमें मिसाइल दागने की क्षमता इसे खास बनाती है। बंजर रेगिस्तान में जहां सड़क का नामो निशान नहीं होता, वहां भी T-90 तूफानी रफ्तार से दौड़ता है। T-90 टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसकी रेंज करीब 550 किलोमीटर है। ये 6 से 8 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह करने की ताकत रखता है। करीब 50 टन के भीष्म को ताकत मिलती है अपने शक्तिशाली इंजन से। इसकी बदौलत चाहे पहाड़ हो या खाई, वो सब कुछ पार कर सकता है।
5: T-90 भीष्म टैंक में लगे कैटरपिलर ट्रैक्स इसके भारी वजन को बड़े सरफेस एरिया में बांट देते हैं, जिसकी वजह से ये रेत या फिर दलदल में भी आसानी से चल सकता है। यहाँ तक कि पानी भी इसकी राह में रोड़ा नहीं अटका सकता। 5 मीटर गहरे पानी को पार करने की ताकत है T90 टैंक के पास।
0: T90 भीष्म टैंक को रोकना असंभव है। जमीनी जंग का महाबली रात के अंधेरे में भी हमला करने में सक्षम है। T90 टैंक को पहाड़ी सीमाओं का सबसे बड़ा रखवाला कहा जाता है, जिससे पंगा लेना चीन और पाकिस्तान के बस की बात नहीं। T90 भीष्म 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है। ये 1 मिनट में 7 राउंड फायर करने की ताकत रखता है। थर्मल इमेजर की मदद से अंधेरे में हमला करने में सक्षम है। लेजर गाइडेड INVAR मिसाइल सिस्टम से लैस T90 में परमाणु हमले में बचाव की क्षमता है।
1: ये एक थर्ड जनरेशन का टैंक है जो कि T-72 को रिप्लेस कर रहा है। इसका रेंज तकरीबन 5 किलोमीटर तक है और ये पानी के अंदर भी 5 मीटर तक जाके इसको तैयार किया जा सकता है कि उसके अंदर भी जा सके। इसके अंदर 120 मिलीमीटर जो है ये स्मूथ बोर गन है। गन या राइफल्ड होती है या स्मूथ बोर होती है, तो ये एक्यूरेसी को ध्यान करते हुए इसमें स्मूथ बोर गन लगाई गई है। और इसका इंजन जो है वो इस तरह का है कि इसकी पावर टू वेट रेशो काफ़ी हाई है। तो ये एक बढ़िया टैंक है और पूरी दुनिया में ये टैंक माना जाता है कि एक अच्छा टैंक है जो भारत के पास है। और आवडी में हम इसको मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं रशिया के साथ मिलके। ये T-54, T-55, T-64, T-72 वाली जो सीरीज़ है उन टैंकों के साथ ये आके T-90 टैंक जो है बना, जैसे चाइना के पास T-99 टैंक भी है।
0: T-90 टैंक को 3 हाईली ट्रेन जवान कंट्रोल करते हैं। ड्राइवर, कमांडर और गनर के तालमेल से जमीनी जंग का ये जंगबाज रणभूमि में गरजता रहता है। टैंक ऑपरेट कर रहे लोगों की हिफाजत करता है टैंक के ऊपर लगा बेहद ही मजबूत कवच।
5: T-90 टैंक दुश्मन के एंटी टैंक मिसाइल को भी नाकाम करने की ताकत रखता है। T-90 टैंक भीष्म के आर्मर की परत करीब 20 इंच मोटी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, भीष्म लैस है थर्ड जनरेशन के एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर से। इन प्लेट्स में ऐसे एक्सप्लोसिव लगे हैं जो कि दुश्मन की गोली लगने पर बाहर की तरफ फटते हैं, जिससे हमला बेअसर हो जाता है।
0: T-90 टैंक भीष्म 360 डिग्री घूमकर हमला कर सकता है। इसकी सबसे खास बात ये कि 360 डिग्री घूमने के बावजूद टैंक के अंदर बैठा हर क्रू मेंबर अपनी पोजीशन बनाए रख सकता है। भीष्म की डिजाइन ऐसी की गई है कि हल, टरेट और एंटी एयरक्राफ्ट गन एक दूसरे से अलग अलग दिशाओं में मूवमेंट कर सकते हैं। T-90 टैंक की एक और खासियत ये भी है कि ये हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने में सक्षम है। हवाई खतरों से निपटने के लिए इस टैंक में सबसे ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी है। इसे मैन्युअली और रिमोट दोनों तरह से चलाया जा सकता है। T-90 भीष्म में 12.7 mm की बुलेट्स लगी हैं, जिसकी मदद से ये 2 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन के हेलीकॉप्टर को तबाह करने में सक्षम है। भीष्म में लगी गन 1 मिनट में 800 गोलियां फायर कर सकती है। इसके अलावा ये एंटी टैंक मिसाइल दागने में भी सक्षम है और वहीं इस पर केमिकल और रेडियो एक्टिव हमला बेअसर साबित होता है। पूर्वी लद्दाख में चीन और उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों की गुस्ताखियों को देखते हुए भारत कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता, क्योंकि चीन पर भरोसा करने का मतलब 1962 की गलती को दोहराने जैसा होगा। लिहाजा हिंदुस्तान लगातार अपनी युद्ध क्षमताओं को धार दे रहा है। आत्मनिर्भर भारत की नई धमक और स्वदेशी का दम खम रखने वाला अर्जुन टैंक दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। MBT अर्जुन टैंक भारतीय सेना की वो स्वदेशी शान है जो रण क्षेत्र में उतर जाए तो मोबिलिटी में उसका कोई मुकाबला कर नहीं सकता। अर्जुन टैंक कई मामलों में पाकिस्तान के टैंक से बेहतर है, क्योंकि इसका जर्मन इंजन बेहद शक्तिशाली है। अर्जुन टैंक अगर आग उगलने लगे तो जमीन से आसमान में 3 से 4 किलोमीटर तक दुश्मन फटकने का साहस भी नहीं कर सकता। अर्जुन टैंक आज ऐसी स्वदेशी तकनीक से लैस है कि दुश्मन के बड़े से बड़े हमले के खिलाफ ये खुद को महफूज रखने में माहिर है।
5: डीआरडीओ ने सीवीआरडी के साथ अर्जुन मेन बैटल टैंक परियोजना की शुरुआत साल 1972 में की थी। इसका उद्देश्य बेहतरीन मारक क्षमता, हाई स्पीड और बेहतरीन सुरक्षा वाला बैटल टैंक तैयार करना था। इसके उत्पादन की शुरुआत 1996 में हुई थी। अर्जुन MK-1A की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें इस्तेमाल करीब 54% उपकरण स्वदेशी हैं, जबकि पिछले संस्करण में ये 41% थे।
0: भारतीय सेना के बेड़े में 124 अर्जुन टैंक्स की एक रेजिमेंट साल 2004 में शामिल की जा चुकी है, जो पश्चिमी रेगिस्तान में तैनात है। अर्जुन टैंक के दो वेरिएंट्स हैं, पहला MK-1 और दूसरा MK-1A। आकार में MK-1 MK-1A से थोड़ा छोटा है। थर्ड जनरेशन के अर्जुन बैटल टैंक में 120 mm की बंदूक लगी है। इसके दोनों वर्जन एक मिनट में 6 से 8 राउंड फायर करने की ताकत रखते हैं। अर्जुन MK-1A टैंक की स्पीड करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज है 450 किलोमीटर। अर्जुन टैंक में लगा ट्रांसमिशन सिस्टम पहले से ज्यादा बेहतर है। ये ग्रेनेड और मिसाइल्स के हमले ज्यादा मजबूती से झेल सकता है। रासायनिक हमले से बचाने के लिए इसमें खास सेंसर लगाए गए हैं। इसका कंचन मॉड्यूलर कंपोजिट आर्मर इसे एंटी टैंक हथियारों से चारों तरफ से सुरक्षा देता है।
5: अर्जुन टैंक में रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम, एडवांस्ड लैंड नेविगेशन सिस्टम भी लगा है। इसमें लगा लेजर वार्निंग सिस्टम पता लगा लेता है कि कहां से और किस तरह की वार्निंग यानी कि चेतावनी आ रही है, कहां से हमला हो सकता है, लिहाजा दुश्मन से संभलने का मौका मिल जाता है।
0: अर्जुन टैंक में फिन स्टेबलाइज्ड पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सेबर्ड गोला बारूद है। ये तकनीक दुश्मन के टैंक पर कम समय में और सटीक निशाना लगाने में मददगार होती है। वैसे तो भारत में युद्धक टैंकों का इस्तेमाल ज्यादातर राजस्थान और पंजाब में ही होता है, लेकिन चीन के साथ ईस्टर्न लद्दाख में गतिरोध के बीच जब से चीन ने सीमा पर अपने टैंक्स का बेड़ा तैनात किया है, तब से भारत ने भी अपने विध्वंसक टैंक्स को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ईस्टर्न लद्दाख में तैनात कर दिया है, जिसके बाद से दुश्मन की बोलती बंद है।
5: तो इसी के साथ रणक्षेत्र में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: 2024 में T20 विश्व कप पर कब्जा, 2025 में जीता चैंपियंस ट्रॉफी का रण, अब लिया 2027 वर्ल्ड कप का प्रण। पद्मश्री रोहित शर्मा का अग्निपथ। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: सूर्य के लिए किस समय दान करना उत्तम होता है? क्या शनि के लिए रात में दान किया जाता है? क्या मंगल के लिए दोपहर में दान करने से फायदा होता है? ग्रहों के लिए क्या और कब करें दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: Saving on your education should be a right, not a competition. At University of Phoenix, you'll get the best scholarship or savings you qualify for. Simple as that. Explore scholarship options at University of Phoenix.
3: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
4: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
5: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
4: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
6: Williams keeps it. First down. Touchdown.
4: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
1: खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
10: सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। बोटानिकल गार्डन में 196 साल के सबसे उम्रदराज कछुए जोनाथन के किए दीदार। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर हुआ मंथन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रबुद्ध जनों से की चर्चा। श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ शहर के ट्रैफिक प्लान पर हुई बात। मुंबई और उसके आसपास के लाखों यात्रियों के लिए गुड न्यूज। 29 जून से सेंट्रल रेलवे की 12 और लोकल ट्रेन्स बनेंगी एसी लोकल के। मुसाफिरों की यात्रा होगी अधिक सुगम और आरामदायक। गुजरात के 14 शहरों को मिली सुगम यातायात की सौगात। भारत टैक्सी ऐप का शुभारंभ गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में उद्घाटन किया। स्टार जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा से जुड़ी बड़ी खबर। जापान एशियन गेम्स में खेलना हुआ कंफर्म। एएफआई चयन समिति के अध्यक्ष ने दी अपडेट। 19 सितंबर से होगा आयोजन।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उसने क्रिकेट के मैदान पर करिश्माई पारियां खेलकर क्रिकेट प्रेमियों के साथ ही देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाली जूरी का भी दिल जीत लिया। इसलिए क्रिकेट के उस मसीहा को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। ये वो शख्स हैं जिसने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के साथ ही ICC चैंपियंस ट्रॉफी का भी चैंपियन बना दिया।

0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।
1: आप समझ ही गए होंगे कि आज बंदे में है दम का बंदा कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के हिटमैन यानी कि विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। जी हां, भारतीय क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी बहुत कम हुए हैं जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के चंद उन्हीं चुनिंदा खिलाड़ियों में से शुमार हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया एक से ज्यादा बार विश्व चैंपियन बन चुकी है। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया कम से कम फटाफट फॉर्मेट में कमोबेश अपराजेय बनी रही। ये क्रिकेट के दो फॉर्मेट T20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं लेकिन वनडे में अभी भी दमदार पारियां खेल रहे हैं।
0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।

0: 23 जून रोहित शर्मा के जीवन की सबसे यादगार तारीख बन चुकी है। 23 जून ही वो तारीख है जब रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला कदम रखा था। रोहित ने 23 जून 2007 को आयरलैंड के बेलफास्ट में खेले गए एक वनडे मैच से भारत के लिए डेब्यू किया था। रोहित की किस्मत का 23 जून कनेक्शन देखिए कि इंटरनेशनल डेब्यू के 19 साल बाद 23 जून को ही रोहित शर्मा को चौथे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।

0: दरअसल 19 साल के अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में रोहित ने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किए जाने के वाजिब हकदार बन गए। सिर्फ बतौर बल्लेबाज ही नहीं, बतौर कप्तान भी रोहित के नाम कई कीर्तिमान दर्ज हैं। हालांकि रोहित को एक बात का अफसोस भी रहता है कि साल 2023 के वर्ल्ड कप में वो विश्व विजेता बनने की दहलीज तक पहुंचकर कप उठाने से वंचित रह गए थे। तारीख थी 19 नवंबर 2023, स्थान था अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया के मुकाबिल था ऑस्ट्रेलिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत विश्व विजेता बनते बनते रह गया था। एक हुक, एक कसक, एक टीस थी जो रह गई थी कप्तान रोहित शर्मा के मन में। 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित ने अपनी रहनुमाई में उस हुक को, उस टीस को, उस कसक को, उस पीड़ा को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जश्न में तब्दील कर दिया। तब होली से पहले पूरे देश में दिवाली की रौनक नुमाया हो गई थी। लीडर अगर सेल्फलेस हो, निस्वार्थ हो, भेदभाव रहित हो, तो उसकी टीम की जय निश्चित हो जाती है। क्योंकि लीडर जब सेल्फलेस होता है तो पूरी टीम जीत को लेकर जुनूनी हो जाती है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा निसंदेह इसी कैटेगरी के लीडर रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित ने 76 रनों की जो पारी खेली थी, उसने कीवियों के हौसले को ऐसा पस्त कर दिया था कि मैदान पर मचलने के सिवा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। दरअसल जीत के लिए संघर्ष करते कीवियों को शायद पता नहीं था कि क्रिकेट के मैदान के इस युगांधर ने दुबई रवाना होने से पहले ही अपने बचपन के कोच दिनेश लाड से ये वादा किया था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का कप लेकर ही वापस लौटेगा।
1: रोहित ने मुझे जाने के वक्त मुझे कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग जीत के आएंगे, तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप के लिए गया था तभी भी मुझे कहा था उसने, मैं चैंपियंस T20 वर्ल्ड कप आपको लेके दिखाऊंगा, आपको गुरुदक्षिणा दूंगा, ये मुझे सेकंड गुरुदक्षिणा दी ऐसे मैं कहूंगा।
0: इस तरह का चट्टानी आत्मविश्वास युग पुरुष का ही होता है, और जब लीडर का, रहनुमा का आत्मविश्वास आसमानी होता है तो पूरी टीम जीत के विश्वास से भर जाती है। यही वजह है कि 2 साल में लगातार 2 ICC खिताब जीतने वाले रोहित दुनिया के पहले कप्तान हैं। 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी का विश्व चैंपियन बनने से पहले 19 जून 2024 को बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से शिकस्त देकर रोहित की सेना T20 वर्ल्ड कप की विजेता बनी थी। अपनी कप्तानी में रोहित शर्मा की ये पहली खिताबी ICC ट्रॉफी थी। लिहाजा जीत के बाद मैदान का ये तूफान इतना भावुक हो गया कि केंसिंगटन ओवल की पिच की मिट्टी को प्रसाद मानकर अपनी जिह्वा पर रख लिया। रोहित के इस भावनात्मक उद्गार को पीएम मोदी ने भी देखा था, इसीलिए चैंपियंस का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी ने जब रोहित की विजेता ब्रिगेड को पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर आमंत्रित किया तो उस घटना का जिक्र करना नहीं भूले।
2: कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है, और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चूमा, ये कोई हिंदुस्तानी ही कर सकता है।
3: जहाँ पर हमें वो विक्ट्री मिली उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस, क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया।
0: क्रिकेट के मैदान पर विरोधी टीम के गेंदबाजों की खाट खड़ी कर देने वाला ये इंसान इतना ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, इसकी तो किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। बहरहाल 2 साल में 2 ICC टूर्नामेंट की खिताबी जीत से ज्यादा बड़ी है रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया की अपराजेयता। ICC टूर्नामेंट में रोहित की कप्तानी का रिकॉर्ड अपने आप में अद्वितीय रहा है। इस युगांधर की कप्तानी में 2023 विश्व कप के फाइनल को छोड़कर टीम इंडिया ICC टूर्नामेंट्स का अपना एक भी मैच नहीं हारी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल समेत रोहित की सेना ने कुल 5 मैच खेले और 5 में जीत हासिल की। 2024 T20 विश्व कप में भी टीम इंडिया ने फाइनल समेत 8 मुकाबले खेले थे और सभी में जीत दर्ज की थी। वर्ल्ड कप 2023 में भी रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल छोड़कर कुल 10 मैच खेले थे और सभी में जीत हासिल की थी। रोहित की लीडरशिप का कमाल ये है

0: चैंपियन बनाकर ही रोहित वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करें। इसीलिए 39 साल के हो चुके रोहित शर्मा के साल 2027 वर्ल्ड कप से पहले रिटायरमेंट की चर्चा बेमानी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी यही चाहते हैं कि रोहित ने जैसे टीम इंडिया को T20 का विश्व विजेता बनाने के बाद 2020 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया, उसी तरह 2027 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाकर ही वनडे क्रिकेट को अलविदा कहें। रोहित की तरह का क्रिकेटर युगों में एक बार अवतरित होता है। 19 साल के क्रिकेट करियर में रोहित ने कभी भी अपने निजी रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेला। उनका बल्ला जब भी चला टीम के लिए चला। बेशक टीम के लिए खेलते हुए कुछ बेनजीर रिकॉर्ड्स उनके नाम दर्ज हो गए। हालांकि उनकी कप्तानी में अगर टीम इंडिया के रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा लीडरशिप के मामले में उनके आस पास भी कोई नहीं है।
1: T20 और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले रोहित जितने शानदार टीम लीडर साबित हुए हैं, उतने ही आक्रामक बल्लेबाज भी हैं। रोहित शर्मा की आक्रामक बैटिंग का लोहा दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर्स भी मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद रोहित शर्मा बैट्समैन नहीं बल्कि बॉलर बनना चाहते थे? रोहित शर्मा अपनी क्रिकेट अकेडमी में ऑफ ब्रेक की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन कमाल की अंतर्दृष्टि थी उनके कोच में, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे हुए बैटिंग के हुनर को पहचाना और बॉलिंग की जगह उनसे बैटिंग पर ध्यान देने की सलाह दी। कोच की एक सलाह ने रोहित की जिंदगी बदल दी।
0: वर्तमान का एक छोटा सा टर्न कई बार भविष्य की पूरी तस्वीर बदल देता है। रोहित शर्मा इस बात की सबसे बड़ी मिसाल हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो रोहित शर्मा आज इंटरनेशनल क्रिकेट में हिटमैन के नाम से विख्यात हैं, वो बल्लेबाज की जगह गेंदबाज बनना चाहते थे। रोहित अपनी टीम के ऑफ स्पिनर थे और बॉलिंग की ही नट प्रैक्टिस करते थे। लेकिन दाद देनी होगी रोहित के कोच दिनेश लाड की, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे बैटिंग क्लास को महसूस कर लिया। अगर दिनेश लाड ने रोहित को बैटिंग करने के लिए प्रेरित न किया होता तो शायद टीम इंडिया को इतना बेहतरीन हिटमैन नहीं मिला होता।
2: कभी बैट्समैन नहीं था। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया अपने स्कूल के लिए, मैं एज अ बॉलर सिलेक्ट हुआ था, ऑफ स्पिन बॉल डालता था। तो कुछ महीनों के बाद मेरे जो कोच है दिनेश लाड जी, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला, यार तेरे को बैटिंग में भी फोकस करना चाहिए, हमें टीम को ऑलराउंडर की ज़रूरत है। और उन्होंने मेरा बैटिंग देखा और मुझे 7-8 नंबर पर बैटिंग करने का मौका दिया। और जब मैं बैटिंग करने गया तो मैंने कुछ 30-40 रन बनाए नीचे 7-8 नंबर पे, उनको अच्छा लगा।
3: उसी अंदाज में जो आजकल बनते हैं।
2: हाँ बिल्कुल, उसी अंदाज में छक्के चौके ऐसे ही लग रहे थे। तो मेरे सर जो थे काफ़ी खुश हुए, उन्होंने बोला, उन्होंने एक बार मुझे ऊपर बैटिंग करने का अपॉर्चुनिटी दिया और उस टाइम मैंने 140 रन बनाए।
0: दरअसल रोहित के क्रिकेट करियर का आगाज मुंबई के बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन से हुआ। रोहित इस एकेडमी की तरफ से खेलते थे और ऑफ स्पिनर बनना चाहते थे। इसी दौरान किसी मैच में स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल के कोच दिनेश लाड की नजर रोहित पर पड़ी। तब उन्हें अपने स्कूल की टीम के लिए अच्छे उदीयमान खिलाड़ियों की तलाश थी। रोहित की स्पिन गेंदबाजी दिनेश लाड को पसंद आई और उन्होंने रोहित को विवेकानंद स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। काबिले गौर है कि तब स्कूल की फीस 275 रुपए प्रति महीने थी और रोहित के पेरेंट्स के लिए इस फीस का इंतजाम कर पाना मुश्किल था, क्योंकि तब रोहित के पेरेंट्स को क्रिकेट कोचिंग के लिए हर महीने 800 रुपए देने पड़ते थे और उसी का इंतजाम बड़ी मुश्किल से हो पाता था। रोहित की इस मजबूरी को देखते हुए दिनेश लाड ने उनकी स्कूल की फीस माफ करवा दी। दरअसल दिनेश लाड छोटी उम्र के रोहित के जबरदस्त आत्मविश्वास से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रोहित का आत्मविश्वास देखकर उन्हें शुरू में ही लग गया कि ये लड़का एक दिन दुनिया का सबसे धाकड़ खिलाड़ी बनेगा।
4: नहीं नहीं, कभी फियर फैक्टर, मैंने कभी उसको ऐसे डरते हुए कभी देखा ही नहीं। हर स्कूल के हर मैच में कोई भी अच्छे बॉलर हो, कोई भी है, डर के कभी खेला नहीं। उसका फायदा उसको, क्योंकि उसके अपने आप में लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है और वो कॉन्फिडेंस के ऊपर वो अपनी बल्लेबाजी करते रहे और उसका फायदा उसको होता ही होता है।
0: दिनेश लाड की सलाह पर रोहित ने बॉलिंग के साथ अपनी बैटिंग पर भी ध्यान देना शुरू किया और उसका असर ये हुआ कि बतौर बल्लेबाज वो सेलेक्टर्स को प्रभावित करने लगे। अंडर

0: 14, अंडर 15 और अंडर 19 हर टीम में वे जगह बनाते चले गए। साल 2007 में रोहित भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलने दक्षिण अफ्रीका गए और मेजबान टीम के खिलाफ शानदार हाफ सेंचुरी बनाकर अपने टैलेंट का लोहा मनवा दिया। हालांकि पैसे की तंगी अभी भी बनी हुई थी। रोहित की किस्मत ने बड़ी करवट तब ली जब साल 2008 में IPL में उन्हें 3 करोड़ कीमत मिली। जिस रोहित ने बचपन से पैसे की तंगी देखी थी, उनके पास जब एक मुश्त 3 करोड़ रुपए आए तो उन्हें एक बार की समझ नहीं आया कि इन पैसों से सबसे पहले अपनी कौन सी हसरत पूरी करें। काफी उधेड़बुन के बाद रोहित ने अपने लिए शानदार गाड़ी खरीदी। हालांकि उस समय उनके माता पिता बोरीवली में किराए के घर में रहते थे, लिहाजा रोहित के गाड़ी खरीदने के फैसले से वो नाराज हुए, क्योंकि माता पिता चाहते थे कि रोहित सबसे पहले मुंबई में घर खरीदें। बहरहाल रोहित ने बाद में अपने पेरेंट्स की ये इच्छा भी बांद्रा में घर खरीद कर पूरी कर दी। लेकिन बचपन में गरीबी का दंश झेल चुके रोहित के पास जब पैसे आने लगे तो उनका दिलो दिमाग क्रिकेट से डिस्ट्रैक्ट होने लगा। यही वजह है कि साल 2009 और साल 2010 में वो कुछ खास नहीं कर पाए। रोहित को तगड़ा झटका तब लगा जब 2011 वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। झटका लगने के बाद रोहित ने गहराई के साथ आत्ममंथन किया और तय किया कि सफल होना है तो डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करना ही पड़ेगा।
1: सिचुएशन को मैं समझ नहीं पा रहा था, नया नया था, 20 साल का था, तो गेम रीडिंग सिचुएशंस जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं थी। फेलियर्स के बाद ही मुझे पता चला कि गेम में क्या सुधार लाने की जरूरत है, गेम को कैसे इम्प्रूव करना है।
0: कुछ वक्त की असफलता ने रोहित को इतना ज्यादा सचेत कर दिया कि वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगे। 2011 वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर टीम इंडिया में जगह बनाई। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें पारी की शुरुआत करने का मौका मिला और उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी बनाई। उसके बाद तो रोहित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
2: रोहित शर्मा में वो काबिलियत है कि अपनी धुआंधार बैटिंग से किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन रोहित के पिता वनडे क्रिकेट या फिर T20 में रोहित के प्रदर्शन से बहुत ज्यादा खुश नहीं होते थे, क्योंकि पिता की नजर में टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ी की असली अग्नि परीक्षा होती है। हालांकि रोहित अब टेस्ट क्रिकेट और T20 से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उससे पहले पिता के ख्वाहिशों पर खरा उतरने की भरसक कोशिश की।

0: वनडे क्रिकेट में कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले रोहित शर्मा की जिंदगी एक अजीब विडंबना है। रोहित के पिता गुरुनाथ शर्मा की शुरू से ये इच्छा थी कि उनका बेटा टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन करे, जबकि रोहित का टेम्परामेंट वनडे और T20 क्रिकेट से मेल खाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 108 वनडे खेलने के बाद रोहित शर्मा को पहली बार 9 नवंबर 2013 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। पहले ही टेस्ट मैच में रोहित ने 177 रनों की यादगार पारी खेली, जिसके बाद उनके पिता का खुशी का ठिकाना नहीं था।
1: मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट ही पसंद है। एक मेरे लिए सबसे जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मेरी फैमिली थी, और मेरे पिताजी वनडे क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, बट उनको टेस्ट क्रिकेट में मैं जब भी मैं अच्छा करता हूँ तो वो बहुत खुश होते तो इसीलिए मेरा एक सपना है कि मैं टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करूँ, एक क्योंकि मेरे पिताजी खुश रहे, क्योंकि मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट में मुझे देखना अच्छा करते हुए।
0: रोहित के अपने टेम्परामेंट और उनके पिता की टेस्ट मैच ख्वाहिश के बीच एक लंबा कश्मकश रहा है। वैसे टेस्ट मैच में रोहित का रिकॉर्ड कोई खास अच्छा नहीं रहा है, जबकि वनडे क्रिकेट में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो इस फॉर्मेट के करीब 53 साल के इतिहास में धाकड़ से धाकड़ बल्लेबाज भी नहीं कर पाया। वनडे क्रिकेट में आज तक कोई भी बल्लेबाज एक से ज्यादा डबल सेंचुरी नहीं लगा पाया है, जबकि रोहित के नाम वनडे में 3-3 डबल सेंचुरी हैं। रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जो वनडे क्रिकेट का ऑल टाइम सर्वोच्च स्कोर है। उससे पहले रोहित ने नवंबर 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों की यादगार पारी खेली थी। दिसंबर 2017 में रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी तीसरी डबल सेंचुरी लगाई। इस मैच में रोहित 208 रन बनाकर नाबाद रहे थे। कहने की जरूरत नहीं कि वनडे क्रिकेट में लंबी पारी खेलने के मामले में रोहित का कोई सानी नहीं है। वनडे वर्ल्ड कप में रोहित के नाम एक और शानदार विश्व कीर्तिमान दर्ज है। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने के अलावा एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड भी रोहित के नाम ही दर्ज है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 5 शतक लगाए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 122 रन, पाकिस्तान के खिलाफ 140 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 102 रन, बांग्लादेश के खिलाफ 104 रन और श्रीलंका के खिलाफ 103 रनों की पारी खेली थी। साफ है कि रोहित के नाम वनडे क्रिकेट में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं जिन्हें तोड़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। हालांकि T20 में भी रोहित के नाम एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। दरअसल रोहित को डिफेंसिव क्रिकेट ना पसंद है, बल्ले से प्रहार करना उन्हें काफी भाता है। यही वजह है कि वनडे और T20 के ऑल टाइम महानतम बल्लेबाजों में वो शुमार हैं।
2: तो बंदे में दम में आज मैंने आपको रोहित शर्मा की जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को दिखाया। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है। और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
5: अविश्वास में विश्वास बसता है।
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
12: और अब बात कुछ ऐसे वीडियोस की जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे, तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
13: कुछ लोग नियमों से नहीं अपने मूड से चलते हैं, फिर चाहे सामने नई सड़क बन रही हो या रास्ता बंद हो। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक शख्स बिना किसी परवाह के ताजा बनी सड़क पर निकल पड़ता है। आसपास मौजूद लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंकल अपने ही धुन में आगे बढ़ते रहते हैं। उनका बेफिक्र अंदाज देखकर लोग हंसी नहीं रोक पा रहे और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इंसान और पक्षी के बीच भरोसे का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है, इसका खूबसूरत उदाहरण ये वीडियो है। आसमान में उड़ रही एक चील बच्चे के इशारे पर नीचे आकर उसके हाथ पर बैठ जाती है। दोनों के बीच तालमेल और आत्मविश्वास देखने लायक है। सोशल मीडिया पर लोग इस नज़ारे को खूब पसंद कर रहे हैं। कई यूजर्स बच्चे के हुनर और पक्षी के साथ उसके अनोखे जुड़ाव की तारीफ कर रहे हैं।

0: दया, संस्कार और अपनापन उम्र नहीं देखते। वायरल वीडियो में छोटा बच्चा बड़े प्यार से गाय को अपने हाथों से खाना खिलाता दिखाई देता है। गाय भी बिना घबराए आराम से उसके हाथ से भोजन करती है। बच्चे के चेहरे पर डर नहीं बल्कि अपनापन साफ नजर आता है। सोशल मीडिया पर लोग इस प्यारे पल को खूब पसंद कर रहे हैं और बच्चे के संस्कारों की जमकर सराहना कर रहे हैं। जब परेशानी बड़ी हो तो देसी दिमाग भी कमाल कर जाता है। बारिश नहीं हुई तो किसान ने खेत तक पानी पहुंचाने का ऐसा जुगाड़ लगाया कि लोग हैरान रह गए। बांस के सहारे खुद को बांधकर वो साथियों की मदद से एक खेत से दूसरे खेत में झूले की तरह पानी पहुंचाता नजर आया। वीडियो देखकर लोग हंस भी रहे हैं और किसान की सूझबूझ की भी तारीफ कर रहे हैं। कभी कभी जिसे पकड़ने जाते हैं वही अचानक सामने आ जाए तो हालत खराब हो जाती है। वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची मेंढक को पकड़ने की कोशिश करती है, तभी मेंढक उछलकर सीधे उसकी गोद में आ बैठता है। अगले ही पल बच्ची जोर जोर से चिल्लाते हुए वहां से भाग निकलती है। ये मजेदार नजारा देखकर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
3: Jack FM, now playing what we want, commercial free, on TuneIn Premium.
4: What you got for me, Jack?
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
5: सूर्य के लिए किस समय दान करना उत्तम होता है? क्या शनि के लिए रात में दान किया जाता है? क्या मंगल के लिए दोपहर में दान करने से फायदा होता है? ग्रहों के लिए क्या और कब करें दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
8: सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। बोटानिकल गार्डन में 196 साल के सबसे उम्रदराज कछुए जोनाथन के किए दीदार। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर हुआ मंथन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रबुद्ध जनों से की चर्चा। श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ शहर के ट्रैफिक प्लान पर हुई बात। मुंबई और उसके आसपास के लाखों यात्रियों के लिए गुड न्यूज। 29 जून से सेंट्रल रेलवे की 12 और लोकल ट्रेन्स बनेंगी AC। लोकल के मुसाफिरों की यात्रा होगी अधिक सुगम और आरामदायक। गुजरात के 14 शहरों को मिली सुगम यातायात की सौगात। भारत टैक्सी ऐप का शुभारंभ। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में किया उद्घाटन। स्टार जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा से जुड़ी बड़ी खबर। जापान एशियन गेम्स में खेलना हुआ कंफर्म। AFI चयन समिति के अध्यक्ष ने दी अपडेट। 29 सितंबर से होगा आयोजन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
8: तीन दिन के सेशल्स दौरे पर राजधानी विक्टोरिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हैमनी ने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की। सेशल्स पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम के दौरे पर लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे लोगों ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री ने लोगों से हाथ मिलाकर किया अभिवादन। सेशल्स में प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। कलाकारों ने ढोल नगाड़ो और पारंपरिक नृत्य के साथ किया स्वागत। सेशल्स में होटल पहुंचने पर भी भारतीय संस्कृति से हुआ प्रधानमंत्री का स्वागत। उतारी गई आरती। कलाकारों ने पेश किए लोक नृत्य। सेशल्स में पीएम ने नेशनल बोटानिकल गार्डन का किया दौरा। दुनिया के सबसे बुजुर्ग कछुए से मुलाकात की। 194 साल है जॉनथन नाम के इस कछुए की उम्र। 1832 में हुआ था जन्म। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव है जॉनथन। प्रधानमंत्री ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हैमनी के साथ पिया नारियल पानी। एक पौधा भी लगाया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में होंगे शामिल। हिंद महासागर में सेशल्स का रणनीतिक महत्व ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी। पीएम मोदी के सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले साल 2015 में किया था सेशल्स का दौरा। गुजरात को मिली विकास की सौगात। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। अमित शाह ने गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का किया शुभारंभ। राज्य के 14 शहरों में शुरू की गई भारत टैक्सी कैब सेवा। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को भी किया संबोधित। कहा आने वाले समय में यातायात क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाएगी भारत टैक्सी। अगले साल की शुरुआत में भारत दौरे पर आ सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिकी विदेश मंत्री ने किया ऐलान। बोले भारत अमेरिका में जल्द होगी ट्रेड डील। बाल्टीमोर बंदरगाह पर दिखी भारत की समृद्ध समुद्री विरासत की तस्वीर। मिड अटलांटिक के बड़े पुलों के नीचे से गुजरा। 13,000 नॉटिकल मील का सफर तय करके पहुंचा नॉरफॉक। ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। निवेशकों को यूपी में निवेश का दिया न्योता। ग्रेटर नोएडा को मिली सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की सौगात। स्टील अथॉरिटी के सौर ऊर्जा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नोएडा पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में सुनी जनता की फरियाद। गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। निहंग सिख समुदाय ने उत्तराखंड पुलिस की तत्परता की तारीफ की। कर्णप्रयाग में घायल निहंग के इलाज के लिए पुलिस और प्रशासन की तत्परता की तारीफ हुई। टांग फ्रैक्चर होने के बाद पुलिस ने आधे घंटे के भीतर अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस और प्रशासन की तत्परता ने निहंग सिख समुदाय को बनाया मुरीद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने की मॉक ड्रिल। अमरनाथ यात्रा से पहले तैयारियों का जायजा लिया। अनंतनाग पुलिस ने मॉक ड्रिल के जरिए परखी तैयारियां। पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ 5 दिन बाकी। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी यात्रा। पंजाब में नशे के खिलाफ सूरमा अभियान। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना में किया लॉन्च। पांच सौ 17वीं जयंती पर नाद प्रभु केपे गोड़ा को बेंगलुरु में किया गया नमन। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने विधानसभा के सामने लगी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। अरुणाचल प्रदेश के यजाली में फटा बादल। तबाही से जनजीवन हुआ प्रभावित। लापता लोगों की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम्स। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 353वीं वर्षगांठ के मौके पर नागपुर में मनाया जा रहा है जश्न। हिंदू पंचांग के मुताबिक आज राज्याभिषेक की वर्षगांठ। शिवाजी के राज्याभिषेक के ऐतिहासिक मौके पर उत्सव में डूबा पूरा नागपुर शहर। गूंज रहे जय भवानी जय शिवाजी के नारे। शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अभिषेक में लगाया गया गंगा नर्मदा गोदावरी चंद्रभागा समेत 7 पवित्र नदियों का जल। राज्याभिषेक की वर्षगांठ के मौके पर निकाली गई शिवाजी महाराज की प्रतिमा की झांकी। कार्यक्रम में हजारों लोग पारंपरिक वेशभूषा में हुए शामिल। आज के दिन शौर्य से जुड़े पारंपरिक खेलों का भी आयोजन। शहर में भंडारे और रक्तदान शिविर भी लगाए गए। असम में चाय के छोटे उत्पादकों के लिए गुड न्यूज। किसानों को मिलेगा फार्मर आईडी। फार्मर्स रजिस्ट्री पोर्टल पर रजिस्टर कर ले सकेंगे सरकारी सुविधाओं का लाभ। सीएम हेमंता ने चार उत्पादकों के लिए बताया ऐतिहासिक दिन। चाय किसानों को समय पर मिलेगी खाद, आसानी से मिलेगा लोन, बिचौलियों से मिलेगी मुक्ति। आंध्र प्रदेश में व्हाट्सएप आधारित रियल टाइम गवर्नेंस पर सरकार का जोर। सभी सेवाओं में आधार वेरिफिकेशन को बढ़ावा देना लक्ष्य। आंध्र प्रदेश में राशन कार्ड अपडेट प्रक्रिया बनाई जाएगी आसान। सरकार ने अफसरों को जाति और आय प्रमाण पत्र से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए। केरलम के कलपेट्टा को आंगनबाड़ी की मिली सौगात। वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया उद्घाटन। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज। 19 जून को खत्म हुए सप्ताह में बड़ा देश का विदेशी मुद्रा भंडार। 96 करोड़ 30 लाख डॉलर हुई बढ़ोतरी। बढ़ोतरी के बाद 672 अरब डॉलर से ज्यादा हुआ देश का विदेशी मुद्रा भंडार। पिछले सप्ताह सोने के भंडार के मूल्य में 411 करोड़ डॉलर की हुई बढ़ोतरी। उत्तराखंड को मिली बागवानी से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 46.32 करोड़ में तैयार 9 योजनाओं का उद्घाटन किया। रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ। 323.34 करोड़ के 32 विकास कार्यों की रखी आधारशिला। मुक्तेश्वर में क्लीन प्लांट सेंटर निर्माण का ऐलान। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिखा गौवंश प्रेम। मुख्यमंत्री ने गौशाला पहुंचकर गौवंश को खिलाया गुड़ और चना। युवाओं के लिए केंद्र सरकार में कई पदों पर सीधी भर्ती का मौका। केंद्रीय लोक सेवा आयोग ने भर्ती के लिए मंगाया आवेदन। ओडिशा में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने वाली गुड न्यूज। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने गो ईस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का ऐलान किया। दिल्ली में कल से पहले राष्ट्रपति ग्रामीण विकास सम्मेलन का होगा आयोजन। ग्रामीण विकास योजनाओं की होगी समीक्षा। भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा रोडमैप। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने भारत में तेज की गतिविधियां। प्रभजीत सिंह को बनाया भारत में कंपनी का प्रबंध निदेशक। ओपन एआई के लिए कंज्यूमर ग्रोथ, एंटरप्राइजेस एडॉप्शन, पार्टनरशिप, रेगुलेटरी मामले और ऑपरेशंस के प्रदर्शन की जिम्मेदारी संभालेंगे प्रभजीत सिंह। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार खेल। सेमीफाइनल में पहुंचे देविका सिहाग, रौनक चौहान और किदांबी श्रीकांत। देविका सिहाग ने थर्ड रैंक खिलाड़ी जापान की रिको गुंजी को हराकर किया उलटफेर। क्वार्टर फाइनल में देविका सिहाग ने रिको को 21-19 से दी मात। रौनक चौहान ने क्वार्टर फाइनल में इजरायली खिलाड़ी को 23-21-11 से हराया। रौनक ने पहले पुरुष एकल BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 सेमीफाइनल में बनाई जगह। पूर्व वर्ल्ड नंबर वन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के खिलाड़ी को 21-9, 12-21, 21-8 से हराया। कल ऑल इंडिया फाइनल की जगह उम्मीद। सेमीफाइनल में देविका का मुकाबला डेनमार्क की रैंक 2 खिलाड़ी क्रिस्टोफर सेन से होगा। वहीं रौनक चौहान चीनी ताइपे के रैंक 8 खिलाड़ी सुलियांग से भिड़ेंगे तो किदांबी श्रीकांत जापान के रैंक 4 खिलाड़ी युदाई ओकीमोटो से करेंगे मुकाबला। इस साल जापान में होने वाली एशियाई खेलों में हिस्सा लेंगे नीरज चोपड़ा। AFI की ओर से की गई पुष्टि। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में किया जाएगा एशियाई गेम्स का आयोजन। गोल्ड मेडल बचाने के लिए मैदान में उतरेंगे नीरज। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में कल भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच मुकाबला। लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा यह रोमांचक मैच। सेमीफाइनल में एंट्री के लिए भारत का ये मैच जीतना जरूरी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत मिलने पर मिल सकता है सेमीफाइनल का टिकट, लेकिन हार तोड़ सकती है सेमीफाइनल का सपना। ये करो या मरो के इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम का जोश है। 2025 वनडे वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया को हराकर पूरे उत्साह में भारत। FIH प्रो लीग हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 7-1 से दी करारी मात। हॉकी के मैदान पर पाकिस्तान को एक हफ्ते में दूसरी बार हराया। लंदन में खेले गए इस मुकाबले में सुखजीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, युवराज सिंह, अभिषेक, राजकुमार पाल और दिलप्रीत सिंह ने किए गोल। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन दिलीप वेंगसरकर ने वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी को बताया अविश्वसनीय, आने वाले समय में अच्छे प्रदर्शन की जताई उम्मीद। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पहली बार नॉकआउट राउंड में पहुंचे मिस्र, ईरान के साथ एक एक के ड्रॉ के साथ 5 अंकों के साथ ग्रुप स्टेज में दूसरे नंबर पर रहा मिस्र। चंबल घड़ियाल्स ने जीता मध्य प्रदेश टी20 प्रीमियर लीग, इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में रॉयल निमार ईगल्स को 31 रन से दी मात। चारधाम यात्रा में बना हुआ है यात्रियों का उत्साह, अब तक 40,50,000 से ज्यादा भक्त हो चुके हैं शामिल। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पहुंच रहे हैं सबसे ज्यादा श्रद्धालु, 13,20,000 से ज्यादा कर चुके हैं बद्री विशाल के दर्शन। हेमकुंड साहिब में अब तक 1.5 लाख के करीब श्रद्धालु टेक चुके हैं मत्था, करीब 5,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं रोज। 22वें तीर्थकर भगवान नेमिनाथ के निर्माण दिवस पर नोएडा में निकाली गई श्रीनेमी गिरनार धर्मयात्रा, जूनागढ़ से गिरनार पर्वत तक निकाली जा रही 25 दिवसीय यात्रा। ग्रेटर चेन्नई में पुलिस ने किया फूड फेस्टिवल का आयोजन, एग्मोर पुलिस म्यूजियम में सजाए गए तरह तरह के व्यंजन। मॉनसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, आने वाले 24 घंटों में बिहार झारखंड के सभी इलाकों और उत्तर प्रदेश पहुंचने की संभावना। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में तेज होगी मॉनसूनी गतिविधियां, 29 से 30 जून के बीच उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय हो सकता है मॉनसून। सबसे पहले पूर्वी यूपी में देखने को मिलेगा मॉनसून का असर, बढ़ेगा बारिश का दायरा, तापमान में 5 से 8 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम समेत पूरे पूर्वोत्तर में मॉनसून की बारिश जारी, मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मॉनसून के विस्तार के लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में फिलहाल भारी बारिश की संभावना कम, गरज चमक के साथ बादल छाने और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना। कई राज्यों में भीषण गर्मी के बीच पर्यटकों को लुभा रहा श्रीनगर का सुहाना मौसम, छुट्टियां मनाने श्रीनगर पहुंच रहे पर्यटक। श्रीनगर की मशहूर डल झील में शिकारा राइड का आनंद लेते नजर आए सैलानी, श्रीनगर के सुहाने मौसम से खुश दिखे पर्यटक। जम्मू कश्मीर में पर्यटन बढ़ने से नई जगहों के एक्सप्लोर होने की जगी आस, मनमोहक नजारों और नजारों वाली शोपिया की पीर की गली को पर्यटकों का है इंतजार। लद्दाख के नीमू इलाके को मिली नवीनीकृत महिला सशक्तिकरण केंद्र की सौगात, भारतीय सेना की ओर से बुनाई कार्यशाला का किया गया उद्घाटन। स्थानीय महिलाओं को मिला कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण का बेहतर मंच, महिलाओं ने आत्मनिर्भरता के साथ क्षेत्र के विकास को इससे मिलेगी रफ्तार। फिल्म वेलकम टू द जंगल ने रिलीज के पहले दिन कमाए 15 करोड़, फिल्म ने पेड प्रीव्यू स्क्रीनिंग में कमाए थे 3,75,00,000। अहमद खान ने किया है वेलकम टू द जंगल का निर्देशन, फिल्म में देखेंगे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल समेत 30 से ज्यादा मशहूर एक्टर। फिल्म कॉकटेल 2 ने 8वें दिन की 4.25 करोड़ की कमाई, 74 करोड़ से ज्यादा हुई होमी अजदानिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कमाई। 41 साल के हुए अभिनेता अर्जुन कपूर ने कल 26 जून को धूमधाम से मनाया अपना 41वां जन्मदिन। अर्जुन कपूर के जन्मदिन पर बहन अंशुला ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट, अंशुला ने पोस्ट में अर्जुन कपूर के बचपन की कई तस्वीरें भी साझा की। काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की फिल्म द इंडिया स्टोरी का टीजर जारी, 24 जुलाई को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी ये फिल्म। वेब सीरीज मिर्जापुर की सफलता के बाद मिर्जापुर द मूवी का टीजर जारी, 4 सितंबर को फिल्म रिलीज करने की तैयारी, गुरमीत सिंह ने किया है फिल्म का निर्देशन। फिल्म मिर्जापुर में बबलू पंडित के किरदार में देखेंगे वेब सीरीज पंचायत के सचिव जी, जितेंद्र कुमार, पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु समेत कई कलाकार। गोवा के लग्जरी रिजॉर्ट में हुई एक्ट्रेस और राजनेता खुशबू सुंदर की बड़ी बेटी अवंतिका सुंदर की शादी, चिरंजीवी नागार्जुन, वेंकटेश समेत कई सितारे हुए शामिल। अवंतिका सुंदर की शादी में बॉलीवुड के कई सितारे भी हुए शामिल, सोशल मीडिया पर शेयर वीडियोस में एक साथ लंच करते देखे अनिल कपूर, वेंकटेश, जैकी श्रॉफ। अमेरिका में अगले महीने आयोजित होगी विशाल ऑक्शन, इस नीलामी में हॉलीवुड और म्यूजिक से जुड़ी कई खास चीजें होंगी शामिल। ऑक्शन में कई यूनिक चीजें जिनमें विकेट विच की टोपी और जॉन लेनन के हाथ से लिखे गाने के बोल भी शामिल। सबसे खास चीजों में एक से एक एक्टर मार्क हैमिल का स्टार वॉर्स एपिसोड वी में इस्तेमाल किया गया ल्यूक स्काईवॉकर का लाइट सेबर है, $1 million है इसकी शुरुआती बोली। द विजार्ड ऑफ ओज फिल्म में मार्गरेट हैमिल्टन द्वारा पहनी गई विकेड विच ऑफ द वेस्ट की टोपी की शुरुआती बोली करीब 95 लाख है। हेरिटेज ऑक्शन न्यूयॉर्क में दिखाई हॉलीवुड एंड एंटरटेनमेंट सिग्नेचर ऑक्शन की खास चीजों की झलक, 13 से 17 जुलाई के बीच होगी नीलामी। वॉशिंगटन डीसी में द ग्रेट अमेरिकन स्टेट फेयर का आयोजन, अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम। फ्रीडम 250 है थीम वाले इस उत्सव में लगाए गए हैं अमेरिका के सभी राज्यों के पवेलियन, 16 दिन चले गए जश्न।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
9: I have no idea how this election is going to play out,
3: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: भारत में हर साल लाखों परिवार काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। सरकार की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार जैसी पहल के बावजूद हजारों प्रवासी मजदूरों के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। इस गंभीर समस्या ने स्वयं सेवा संस्था आई लाइट ग्लोबल का ध्यान खींचा, जिसके बाद प्रवासी परिवार के बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनजीओ ने कदम उठाए। आई लाइट ग्लोबल की आज देशभर में 15 और गुरुग्राम में 3 शाखाएं हैं, जो वंचित प्रवासी बच्चों की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और भलाई के लिए काम कर रहा है। प्रवासी बच्चों को ध्यान रखते हुए एनजीओ आई लाइट ग्लोबल ने 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी बाल दिवस के तौर पर मनाने का इसको फैसला किया और उम्मीद जताई है कि इसे विश्व में पहचान मिलेगी और दुनिया भर में मनाया जाएगा। और अब बात भारतीय सिनेमा की सबसे कामयाब फिल्मों में शामिल बाहुबली की, जो एक बार फिर चर्चा में है। ना कोई आधिकारिक घोषणा हुई है और ना कोई टीजर आया है, लेकिन एक वायरल वीडियो ने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर हर तरफ यही सवाल आप पूछा जा रहा है कि क्या बाहुबली 3 सचमुच बनने वाली है? आखिर इस छोटे से इशारे के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है या फिर ये सिर्फ प्रमोशन का एक हिस्सा है? इसका जवाब सभी जानना चाहते हैं।

0: एक इशारा, सिर्फ तीन उंगलियां और पूरे देश में मच गई हलचल। ना कोई पोस्टर, ना कोई टीजर और ना ही कोई आधिकारिक ऐलान। फिर भी सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या बाहुबली फिर लौट रहा है, जिस कहानी ने भारतीय सिनेमा का चेहरा बदल दिया? क्या उसका तीसरा अध्याय सच में लिखा जा रहा है? आखिर एक वायरल वीडियो ने ऐसा क्या दिखा दिया कि करोड़ों दर्शकों की उम्मीदें फिर जाग उठी? दरअसल बाहुबली फ्रेंचाइजी एक बार फिर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर बाहुबली द टॉर्च बैरियर डॉक्यूमेंट्री का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। क्लिप में राणा दगुबाती कहते हैं, दुनिया शायद अभी तैयार नहीं है, लेकिन बाहुबली जरूर आएगी। इसके तुरंत बाद प्रभास मुस्कुराते हुए तीन उंगलियां दिखाते हैं। बस इसी इशारे के बाद लोगों ने बाहुबली 3 की चर्चा शुरू कर दी है। वीडियो के आखिर में लिखा आता है, और ये विरासत जारी है। यही लाइन फैंस की उत्सुकता और बढ़ा रही है। कोई इसे एक नए प्रोजेक्ट का संकेत मान रहा है, तो कोई इसे सिर्फ प्रमोशन बता रहा है। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक किसी नई फिल्म का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, ना ही कहानी सामने आई है और ना रिलीज को लेकर कोई जानकारी दी गई है। साल 2015 में आई बाहुबली द बिगनिंग और उसके बाद बाहुबली द कंक्लूजन ने भारतीय सिनेमा में नया इतिहास रचा था। दूसरे भाग ने दुनिया भर में करीब 1788 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। फिलहाल बाहुबली 3 सिर्फ चर्चा में है, लेकिन इतना तय है, एक छोटे से इशारे ने करोड़ों फैंस की उम्मीदें फिर जगा दी हैं। अब सबकी नजर मेकर्स पर है कि ये सिर्फ मजाक था या सचमुच किसी बड़े ऐलान की शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: सूर्य के लिए किस समय दान करना उत्तम होता है? क्या शनि के लिए रात में दान किया जाता है? क्या मंगल के लिए दोपहर में दान करने से फायदा होता है? ग्रहों के लिए क्या और कब करें दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: Hey, it's Harry Douglas for Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
2: Third period comes to an end. Game two, headed to overtime.
1: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
2: They score!
1: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। बोटानिकल गार्डन में 196 साल के सबसे उम्रदराज कछुए जोनाथन के दीदार किए। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर हुआ मंथन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रबुद्ध जनों से की चर्चा। श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ शहर के ट्रैफिक प्लान पर हुई बात। मुंबई और उसके आसपास के लाखों यात्रियों के लिए गुड न्यूज। 29 जून से सेंट्रल रेलवे की 12 और लोकल ट्रेन बनेंगी एसी। लोकल के मुसाफिरों की यात्रा होगी अधिक सुगम और आरामदायक। गुजरात के 14 शहरों को मिली सुगम यातायात की सौगात। भारत टैक्सी ऐप का शुभारंभ। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में उन्होंने इसका उद्घाटन किया। स्टार जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा से जुड़ी बड़ी खबर। जापान एशियन गेम्स में खेलना हुआ कंफर्म। एएफआई चयन समिति के अध्यक्ष ने दी अपडेट। 19 सितंबर से होगा आयोजन।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मौत

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। सिनेमा को क्या कर्ण और जो श्री राम है, अब इन किरदारों का सहारा है, यानी कि जो पौराणिक किरदार हैं उनका सहारा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि पौराणिक कथाएं दरअसल अब केवल धार्मिक ग्रंथों के पन्नों तक सीमित नहीं रह गई है। अब ये करोड़ों रुपए के बजट और वर्ल्ड क्लास विजुअल इफेक्ट्स के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नया इतिहास रच रही है। तभी तो कभी सामाजिक और रोमांटिक फिल्मों के लिए पहचाना जाने वाला बॉलीवुड अब राम, कर्ण, वेदव्यास, शुक्राचार्य, अगस्त ऋषि, गौतम ऋषि और भगवान नरसिंह जैसे पात्रों की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ये संकेत है कि भारतीय सिनेमा का अगला बड़ा अध्याय पौराणिक गाथाओं के इर्द गिर्द लिखा जा रहा है। लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं आया। कांतारा, हनुमान, कल्कि और महावतार नरसिम्हा जैसी फिल्मों ने खुद को साबित करके ये दिखाया है। अब बड़े बड़े सितारे और फिल्म निर्माता भी मानने लगे हैं कि भारतीय संस्कृति, आस्था और आधुनिक तकनीक का संतुलन मेल बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना सकता है। बॉलीवुड की इस बढ़ती दिलचस्पी के पीछे केवल कमाई कारण नहीं है, असल में एक बड़ा कारण यह है कि आज का दर्शक वर्ग सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी कहानियों को आधुनिक अंदाज में देखना चाहता है। ये वो डिमांड है जिसने आज की सिनेमाई दुनिया के समीकरण को बदल दिया है। डिजिटल दौर में पली बढ़ी युवा पीढ़ी पौराणिक पात्रों को केवल धार्मिक प्रतीक के रूप में नहीं देखती, वो इन्हें नेतृत्व, साहस, कर्तव्य, त्याग, रणनीति और नैतिक निर्णय जैसे जीवन मूल्यों के रूप में भी समझना चाहती है। और यही वजह है कि निर्माता इन पात्रों को एक नई सिनेमाई रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे विषयों पर मेगा बजट प्लान बनाया जा रहा है। आज के दौर का बड़े से बड़ा सुपरस्टार ले लीजिए, आध्यात्म की दुनिया से जुड़े इन आदर्श पात्रों को बड़े पर्दे पर उतारना चाहता है और खुद भी कामयाबी की आदर्श मिसाल बनना चाहता है। रणबीर कपूर और महेश बाबू जैसे सुपरस्टार्स माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं और अब इस लिस्ट में सलमान खान भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें इन दिनों सोशल मीडिया पर बॉलीवुड में सलमान के अगले प्रोजेक्ट को लेकर काफी चर्चा हो रही है। अब खबर है कि सलमान खान महाभारत के महानायक दानवीर कर्ण की भूमिका निभा सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि सलमान खान ओम प्रकाश मेहरा के प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे। इसी के बाद से सलमान के अगले प्रोजेक्ट को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। बॉलीवुड की हलचल पर नजर रखने वालों का मानना है कि पीरियड ड्रामा फिल्म के लिए राकेश, ओम प्रकाश मेहरा और सलमान खान साथ आ सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो दर्शकों को सलमान खान कर्ण के रोल में नजर आ सकते हैं। हालांकि हम साफ कर दें कि अभी यह मामला सिर्फ चर्चा के दौर में है, इस पर कोई फैसला अभी नहीं हुआ है और ना ही किसी भी पक्ष से इसकी कोई पुष्टि आई है। बताया गया है कि राकेश, ओम प्रकाश मेहरा पहले साउथ सुपरस्टार सूर्या के साथ ये फिल्म करना चाहते थे, लेकिन लंबे समय से यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सलमान खान को यह स्क्रिप्ट पसंद आई और इसी के बाद से फिल्म को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, जबकि असल में अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। बॉलीवुड में पीरियोडिक फिल्मों का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भारतीय सिनेमा में अब हर बड़ा निर्माता, निर्देशक और कलाकार पौराणिक फिल्मों में दिलचस्पी दिखा रहा है। अब राजामौली की फिल्म वाराणसी को ही ले लीजिए। आपको बता दें कि राजामौली की फिल्म वाराणसी रामायण से प्रेरित है। इसमें दक्षिण के सुपरस्टार महेश बाबू रुद्र की भूमिका निभाते हुए आपको दिख जाएंगे। इस बीच नितेश तिवारी की फिल्म रामायण की खूब चर्चा हो रही है, जिसमें रणवीर कपूर श्री राम की भूमिका में नजर आएंगे। अक्षय खन्ना के दैत्य गुरु शुक्राचार्य के किरदार निभाने की भी चर्चा है, जबकि आमिर खान कई मौकों पर महाभारत के पात्रों में अपनी दिलचस्पी जता चुके हैं। तो अब बात हो रही है कि क्या सिनेमा को वाकई अब राम, कर्ण, इस तरह के किरदारों की जरूरत हो गई है, आवश्यकता है क्या? तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय उनसे करा देते हैं। अरुण बख्शी हमारे साथ अभिनेता जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण। साथ ही साथ हमारे साथ आपको बता दें कि शोएब चौधरी जुड़ चुके हैं, जो कि फिल्म प्रोड्यूसर है। शोएब, आपका भी बहुत स्वागत है। पंकज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर फिल्म जर्नलिस्ट है। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ राम किशोर प्राचा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि फिल्म क्रिटिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी संवाददाता सना फरजीन मुंबई से। तो सबसे पहले हम सना के पास चलते हैं क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में क्या कुछ चल रहा है, टेलीविजन इंडस्ट्री में क्या कुछ चल रहा है, बड़ी ही बारीकी से और करीब से वो नजर रखती हैं। तो सना, सबसे पहले आपके पास आते हुए भाई, सलमान खान को लेकर अब जो खबरें सामने आ रही है, सबसे पहले तो ये बताइए कि कर्ण के रोल में, कर्ण के किरदार में सलमान खान को देखना, अपने आप में ये खबर जिस तरह से हमें कई सवालों को लेकर के खड़ा करता है, वैसे ये फिल्म इंडस्ट्री में या बॉलीवुड में इस खबर को लेकर किस तरह की हलचल है, सबसे पहले तो ये बताइए।
1: जी ऑफ कोर्स, अभी ये फिलहाल बहुत ही एक स्टार्टिंग के स्टेज पे है, अभी जो भी खबर आ रही है वो एक स्पेकुलेशन जिसे हम कहते हैं वो है। तो डेफिनेटली अब तक की एक्साइटमेंट जो बॉलीवुड में है वो पहुंची नहीं है, बट सलमान को इस किरदार में देखना फैंस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा क्योंकि इस तरीके का उन्होंने किरदार पहले नहीं किया है। और तो हमने कुछ फिल्मों में, जैसे उन्होंने बहुत पहले जब अपनी करियर की शुरुआत की तब उन्होंने सूर्यवंश किया था, तो उस तरीके का एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर और स्पेशली कर्ण जितना पावरफुल और एक मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर है उसमें सलमान को देखना फैंस के लिए बहुत एक्साइटेड है। और अगर राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ वो ये साथ काम करते, वो एक बहुत जाने जाने डायरेक्टर है, उनकी सारी फिल्में बहुत तगड़ी फिल्में रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो एक्साइटमेंट सलमान और राकेश ओम प्रकाश मेहरा का वो बहुत ज्यादा बॉलीवुड को या पूरी फिल्म इंडस्ट्री को वो ज्यादा एक्साइट करता है। एंड सलमान डेफिनेटली अभी चाहते हैं कि वो नए नए किरदार करे, अपने फैंस को जो एक एक्सपेक्टेशन उनकी फैंस की है उनसे वो उन्हें पूरा करे। और वो कहीं
0: जो खबरें अभी सना आ रही थी अभी कुछ दिनों पहले, उसमें ये भी बताया जा रहा था कि साउथ के कुछ डायरेक्टर्स से संपर्क में है सलमान खान, वो चाहते हैं कि कुछ बड़ी फिल्म वो बनाए उनके साथ, इस तरह की भी कुछ खबरें थी।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि अभी नयनतारा के साथ वो एक ऑलरेडी फिल्म शूट कर चुके हैं, एटली के साथ एक रूमर्स थी कि वो उनके साथ फिल्म करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि साउथ के जो डायरेक्टर्स हैं वो एक बड़ी जो बड़े पर्दे की जो एक्सपीरियंस हम जिसे कहते हैं वो शायद वो दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी मातृभूमि जैसे रिलीज होने वाली थी बट कुछ इशूज की वजह से ऑफकोर्स वो डिले हो चुकी है। तो सलमान नहीं चाहते कि अब वो अपने करियर में उस मुकाम में है कि वो इस तरीके की बिग बजटेड बड़े पर्दे वाली एक्सपीरियंस वाली फिल्में करें और मेगा ब्लॉकबस्टर जिसे हम कहते हैं वो करें। कहीं ना कहीं उन्होंने जितने
0: कहीं ना कहीं सलमान को जरूरत भी है सना, क्योंकि काफी टाइम हो गया है सलमान जिस स्टैचर के रहे हैं, सुपर हीरो एंड बिग स्टार, फिल्म स्टार, तो वो उसको बरकरार रखने के लिए उनको वाकई एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्म की जरूरत भी है।
1: जी बिल्कुल है, और कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत है क्योंकि आप एक स्टारडम आप देख चुके हो और अभी जैसे वो राज जैन डीके के साथ में एक सुपर हीरो वाली फिल्म में भी डिस्कशन चल रही है, तो शायद अब वो इस करियर के मुकाम में जहां वो एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं कि अब मैं अपने फैंस को वो दूंगा जो मैं ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका हूं, रोमांस कर चुका हूं, एक्शन कर चुका, अब मैं कुछ डिफरेंट करूं। और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि एक एक्टर अपने आप को री इन्वेंट करे क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है कि ये एक एंड ऑफ द स्टेज हो जाता है करियर की, अब आप 10 साल और काम करोगे तो आप चाहते हो कि आप अपनी बढ़िया से बढ़िया फिल्में करो, अपना बेस्ट दो। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सारे डायरेक्टर्स के साथ सलमान ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेरिमेंट अगर वो करना चाहेंगे तो उनके पास एक ही रास्ता है, वो है साउथ के फिल्म मेकर्स। और जिस तरीके,
0: लेकिन आपको नहीं लगता है सना इसके लिए अगर कर्ण जैसी भूमिका करते हैं सलमान तो उनको सलमान खान वाले और से निकलना पड़ेगा?
1: जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि शायद सलमान चाहते भी है कि वो सलमान खान अपने भाई वाले अवतार से निकले, अपना स्टाइल जो वो देते हैं वो वहां से हटकर कुछ डिफरेंट करे। एंड कर्ण इतना पावरफुल कैरेक्टर है और हमने बहुत बार उनका पोर्ट्रेयल देखा है कर्ण का टीवी पे, सिनेमा पे, पर इस तरीके से अगर बड़े पर्दे पे आ रहा है और सलमान खान उसे लीड कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जो उनकी कहानी है वो एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे। और जैसे आजकल हम ग्लोबली अपनी फिल्म ले जाना चाहते हैं, रामायण, वाराणसी, ये सारे माइथोलॉजिकल फिल्म ऑलरेडी आ रही है, तो सलमान का अगर नाम जुड़ता है तो आप कर्ण की कहानी पूरे वर्ल्ड पे, विश्व में ले जा सकते हैं। और आई थिंक सलमान से बेटर कोई फेस ही नहीं हो सकता इस किरदार के लिए, क्योंकि एक तो है कि आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि आप कर्ण जैसा रोल कर रहे हो, तो वो एक क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली और ज्यादा आ जाती है। एंड आई थिंक सब बहुत एक्साइटेड होंगे अगर ये काम कर जाता है, एंड वी होप काम कर जाता है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि सलमान को हम कुछ डिफरेंट करते हुए देखें, क्योंकि बाकी सारे इतने सालों से वो 30 साल का करियर रहा है उनका, उसमें हमने उनको बहुत कुछ देखते करते हुए देखा है, बट एक माइथोलॉजी एक आई थिंक एक जॉनर है जो अब शायद वो एक्सपेरिमेंट करेंगे और हम भी बहुत एक्साइटेड उसके लिए।
0: बिल्कुल सना, आगे भी आपसे हम बात करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे बने हुए हैं। अरुण बख्शी के पास चलते हुए, अरुण आपसे ये पूछना चाहूंगी, चूंकि आप अभिनेता हैं, आप एक्टर हैं, कितना मुश्किल ये होता है इस तरह के जो माइथोलॉजिकल पात्र हैं उन्हें निभा पाना? क्योंकि देखिए बाकी जो कहानियां किस्से जो चलते रहते हैं जो हमने फिल्मों में देखा है या फिर फॉर दैट मैटर टेलीविजन पे हम देखते हैं, तो वो हमारे इर्द गिर्द की आसपास की चीजें होती हैं, लेकिन माइथोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप बहुत छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप कैरेक्टर के साथ बहुत इम्प्रोवाइजेशन उसमें आप कर नहीं सकते हैं।
2: जैसा 90s में ये दौर शुरू हो गया था जब रामायण बनी थी और महाभारत बनी थी। आई एम ऑडिबल? हेलो
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं सुन पा रही हूँ।
2: 90s में हमने सीरियल किया था बी आर चोपड़ा जी का महाभारत, उसमें हमने रोल किया था सेनापति पांडवों का, धृष्टद्युम्न का रोल किया था। ये लुंगी और दूसरे वस्त्र पहनने के बाद में आपकी

0: उस किरदार में कोई आता है जिसको हमने देखा नहीं है, जिसको हमने सिर्फ सुना है या फिर पढ़ा है, उसको जीना कितना मुश्किल होता है। और आप जब उस किरदार को, पर्टिकुलर किरदार को जी रहे थे, तो क्या फर्क था रोज की जिंदगी में, और जब आप सेट पर जाते थे तो फिर किस तरह का माहौल रहता था, आप महसूस कैसा करते थे, जरा जानना चाहेंगे।
1: देखिए, आपने बड़ी अच्छी चीज पूछी और मेरा दिल भी करता है इसका बड़ा प्यारा जवाब देने के लिए। मैं आजकल एक जगह पर रावण का रोल कर रहा हूं, और रावण का रोल करने के लिए उसकी जो तैयारी है, गहन तैयारी है कि रावण कौन था, क्या था, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, किस तरह से वो बात करता था। वो जब सीता जी का दूसरा रूप था, दूसरा जन्म था, उसमें एक वेदवती नाम की स्त्री थी, उनके साथ में वो जो रावण है कैसे बात करता है, छिछोरपन के साथ बात करता है, वो मैंने जब स्क्रिप्ट देखी मैं हैरान रह गया, मैं वाकई हैरान रह गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, उसके बीच में डूबना पड़ा कि इसके क्या क्या है। और दूसरी बात है, रावण का जो वो तांडव स्त्रोत है, उसके ऊपर गहन में शिव तांडव स्त्रोत, उसके ऊपर मैं गहन वो कर रहा हूं, उनको याद कर रहा हूं, जैसे जटा टवी गलत जल प्रवाह पावित गले वलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम दमट दमट दमट दमन, मतलब ये आपको डूबना पड़ेगा इसके अंदर। जब तक आप डूबेंगे नहीं, आप ये आग का दरिया है और आपको डूब के तैर डूब के जाना है।
0: ये अभिनेता के अंदर से ये बातें निकल रही है, बिल्कुल मैं महसूस कर सकती हूँ कि इस वक्त आप जिस कैरेक्टर को जी रहे हैं या फिर आप उतारने की कोशिश कर रहे हैं पर्दे पर या जहां कहीं भी थिएटर में, तो जाहिर सी बात है उसमें अभी आप उसी जोन उसी मोड में हैं। और ऐसा ही एक अभिनेता उसी जोन में रहता है। आऊंगी मैं आपके पास और बात करूंगी अरुण जी, बहुत कुछ आपसे जानने को है। लेकिन यहाँ पर शोएब, आपके पास आते हुए, चूंकि आप फिल्म प्रोड्यूसर है, मैं ये जानना चाहूंगी कि अचानक से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं, और ये कैसा ट्रेंड है आपको समझना भी, मैं समझना भी आपसे चाहूंगी कि अचानक से ये जो माइथोलॉजिकल मूवीज है उसकी तरफ फिल्म मेकर्स आगे बढ़ रहे हैं, पैसा लगाने को भी तैयार है। उसके पीछे ऑफ कोर्स हमने देखा है कि नरसिम्हा, महाअवतार नरसिम्हा जैसी जो मूवी है ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, लेकिन और क्या वजह है इसके पीछे?
2: गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए श्वेता, ये जो फिल्म मेकिंग का जो पूरा सिलसिला है, ये सिर्फ एक क्रिएटिव एस्पेक्ट नहीं है, ये हम लोगों के लिए एक बिजनेस भी बहुत है, जिससे हम हमारी अपनी फैमिलीज रन करती हैं, वी रन आर बिजनेसेस एंड प्रोडक्शन कंपनीज। ये सिलसिला तो बहुत जमाने से चल रहा है, और मुझे खुशी है इस बात की कि इस तरह की फिल्में बन रही हैं जो ऑडियंस की रीच बहुत ज्यादा है ऑलरेडी। ये फिल्मों को इसीलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि इसमें एक ऑलरेडी सेट पैटर्न है, और इसमें जहां 150 करोड़ की पॉपुलेशन में तकरीबन 100 करोड़ बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ वाली ऑडियंस है, जो कि सिर्फ 17-18 करोड़ हमारी फिल्म गोअर्स हैं, उसमें से जब इस तरह की हम कोई रिलीजियस या हिस्टोरिकल फिल्में बनाते हैं, तो जो रिलीजियस मान्यता रखने वाले लोग, हमारी ऑडियंस बढ़ जाती है, उससे हमारे बिजनेस बढ़ते हैं।
0: यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपने ये कहा, क्योंकि जो बात मैंने अरुण जी से पूछी थी उनके साथ बिल्कुल अलग मामला है, आपसे मैंने इसलिए पूछा क्योंकि यहाँ सारा मामला आप लोगों का, खासकर यानी फिल्म मेकर्स का खासकर जो है वो पैसे से जुड़ा मामला है। भाई पैसा वहीं लगेगा जहां से पैसा आएगा, आप दो लगाएंगे पैसा तो आपको चार की उम्मीद होगी ही होगी। मैं यही समझना चाह रही हूँ आपसे कि क्या सिल्वर स्क्रीन पर आज फिल्म मेकर्स इतना पैसा लगाने को, क्योंकि हजारों करोड़ की मूवीज बन रही है हम ये देख रहे हैं, तो ये कैसा ट्रेंड है और कितना विश्वास है आपको अचानक से कि इतना पैसा अगर आप माइथोलॉजिकल मूवीज में लगाएंगे तो उसका दुगुना या तिगुना आपको आएगा?
2: नहीं, ये जरूरी नहीं है जो आप कह रहे हैं कि वो दो से तीन दो गुना हो जाए या पांच गुना हो जाए। अभी हमने एग्जांपल देखा, अगर आप सच्ची नीयत से, सही नीयत से फिल्म बनाते हैं और उसमें कोई आपका एजेंडा नहीं है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी फिल्में चलेंगी एंड यू विल मेक मल्टीपल टाइम्स द मनी दैट यू इन्वेस्टेड। अभी हमने एग्जांपल देखा, आदि पुरुष नाम की फिल्म थी, उसका रिजल्ट क्या हुआ? क्योंकि उसमें नीयत सही नहीं थी, भगवान राम को भी उन्होंने, मैं कुछ अजीब सा क्वेश्चन मार्क उस पूरी फिल्म के डायलॉग्स पे था
0: जी,
2: और वो फिल्म के खिलाफ क्या क्या हुआ वो हम सबने देखा। तो अगर आपकी नीयत सही है तो आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा या आपकी फिल्में फ्लरिश करेंगी। जहां तक एक कर्ण वाली फिल्म की बात है, तो मैं सना से अग्री करता हूं कि हु बेटर देन सलमान खान टू प्ले दिस कैरेक्टर, जो इंडियन माइथोलॉजिकल हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट वॉरियर्स, वो अगर सलमान खान प्ले करते हैं एट द एज दैट ही इज इन, इट्स मोर देन वेलकम, और बहुत ह्यूजली सक्सेसफुल ये फिल्म रहेगी। देखिए दो

0: एस्पेक्ट है इसके, एक बनते हैं बनाते हैं लोग रिलीजियस फिल्में और एक बना रहे हैं एजेंडा ड्रिवन फिल्में। जहां तक रिलीजियस फिल्में हैं माइथोलॉजिकल, उसमें फॉरगिव मी फॉर सेइंग दिस, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस और जो मेरा पिछले 8-10 सालों से जो मैं फिल्मों का रुझान देख रहा हूं उसके ऊपर बेस्ड है मेरी जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूं।
1: जी
0: अगर माइथोलॉजिकल फिल्में हैं तो उसमें ऐसा कोई एजेंडा ड्रिवन हो ही नहीं सकता, बिकॉज वहां आपके पास
1: आप
0: कोई
1: छेड़छाड़ नहीं कर सकते
0: एक
1: फैक्ट्स के साथ।
0: आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते फैक्ट के साथ, प्लस आप उसमें जो रिसर्च करेंगे वो प्योर ऑथेंटिक रिसर्च होगी बेस्ड ऑन जो आपकी ऑथेंटिक रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं। वेयर एज जो आप ये वाली फिल्में बना रहे हिस्टोरिकल जिसे आप कहते हैं, जिसको आप सांस्कृतिक फिल्में कहने लगे हैं आजकल, जो पिछले 500-700 सालों से एंटी मुगल या किसी एक धर्म का विलन आप दिखाते हैं, वो उसी सोच से उजागर होता है जहां आप एक कम्युनिटी को विलन बनाकर पेश करना चाहते हैं। जब ये होता है तो वहां मुझे आपकी नियत पर सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। और ये बढ़ भी इसलिए रहा है चलन, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के लोग, देश की सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसी वाहियात
1: यार
0: मनहूस फिल्मों
1: नहीं,
0: को
1: शोएब जी
0: प्रमोट भी
1: मुझे लगता
0: करते
1: है कि हम
0: हैं।
1: अपनी चर्चा से भटक रहे हैं। हम
0: नहीं,
1: एक्चुअली
0: भटक नहीं रहे। नहीं, ये दो चीजें अलग अलग है। मैंने कहा जब आप माइथोलॉजिकल फिल्में बनाते हैं तो उसमें आपको डिविएट करने का कोई वो नहीं मिलता
1: नहीं तो
0: रास्ता,
1: हिस्ट्री से भी
0: लेकिन
1: आप
0: जब आप
1: हिस्ट्री
0: हिस्टोरिकल फिल्में
1: हिस्ट्री हिस्ट्री के साथ भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती ना। हिस्ट्री के साथ भी जो छेड़छाड़ होनी थी, देखिए किताबों में जो छेड़छाड़ हुई थी उसको बदलने की जरूर कोशिश की जा रही है कि भाई जो सच्चाई थी वो सामने आए और बच्चे सही
0: तो
1: चीज पढ़े। चलिए इस पर
0: जो
1: बिल्कुल
0: रिसर्च हो रही है वो
1: शोएब
0: उसी
1: जी
0: उसी से उसी के उन किताबों पर बेस्ड ही होगी,
1: बिल्कुल बिल्कुल उन
0: उन्हीं
1: किताबों
0: उन्हीं
1: पर। तो
0: किताबों पर
1: जो
0: बेस्ड होगी।
1: जो चीजें अगर गलत कहीं कही गई है या लिखी गई है उसी को करेक्ट करने की बात है। लेकिन यहाँ खास करके अभी एजेंडा ड्रिवन इसकी बात नहीं हो रही है जो आप कह रहे हैं, उस पर हम आएंगे। लेकिन पंकज यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि अचानक से आपको क्या लगता है, बिकॉज आप एक सीनियर फिल्म जर्नलिस्ट रह चुके हैं, आप ऑब्वियसली बहुत नजदीकी से चीजों को समझते हैं और जानते हैं, क्या अचानक से तो ऐसा होता नहीं है कि एकाएक फिल्म मेकर्स जो हैं इस तरह की फिल्में बनाना शुरू कर देते हैं? ऑब्वियसली जब वो देखते हैं मार्केट में लोग पसंद कर रहे हैं इस तरीके की फिल्मों को देखना, तो क्या एकाएक ये ट्रेंड चेंज हुआ है? लोग वाकई माइथोलॉजिकल या फिर पीरियोडिक फिल्में जो हैं वो देखना अब ज्यादा पसंद कर रहे हैं, न सिर्फ फिक्शनल या फिर जो आजकल, पहले हम 90s में सिर्फ रोमांटिक फिल्में देखते थे उसके अलावा?
2: अगर आप देखेंगे तो भारतीय सिनेमा की जो पहली फिल्म है राजा हरिश्चंद्र है,
1: बिल्कुल
2: तो माइथोलॉजिकल फिल्में हमारे देश में शुरू से बनती आ रही हैं और उनका बहुत बड़ा एक बाजार रहा है। बहुत सारे बाबू भाई मिस्त्री जैसे लोगों ने 100-100 फिल्में बना रखी है, विजय भट्ट, नाना भाई भट्ट लोगों ने माइथोलॉजिकल फिल्मों का पूरा एक सीरीज बना रखी है। तो माइथोलॉजिकल फिल्में बनना भी जो 60s या 70s जब जैसे जैसे आया और उसके बाद एंग्री यंग मैन का दौर शुरू हुआ और पीरियोडिक फिल्में धीरे धीरे साइड होती चली गई। लेकिन अभी 2009 में एक फिल्म आई थी मगधीरा राजा मौली की,
1: बिल्कुल
2: जहां से हम इसका रिवाइवल मान सकते हैं कि कैसे उन्होंने पीरियड फिल्म की और मॉडर्न आज के टाइम की कहानी को मिक्स करके फिर से इस ट्रेंड को रिवाइव किया। फिर उसके बाद बाहुबली बनाई, अभी वो वाराणसी बना रहे हैं। तो हमारे दर्शक शुरू से रहे हैं जो धार्मिक फिल्में पौराणिक फिल्में देखते रहे हैं। जिस साल शोले रिलीज हुई थी उसी साल जय संतोषी माँ रिलीज हुई और उसने बहुत अच्छा कारोबार किया।
1: बिल्कुल
2: महात्मा गांधी ने जो एक फिल्म देखी अपने जीवन
1: आपने
2: में
1: आपने
2: वो
1: बड़ा ये जो
2: रामराज,
1: आपने ये बात कही जय संतोषी माँ, मुझे अचानक से वो बचपन की याद आ गई। मुझे ये ध्यान है कि हालांकि मैं तो नहीं गई थी देखने के लिए ये मूवी, मैं काफी छोटी थी, लेकिन लोगों ने बताया कि फ्राइडे फ्राइडे लोग जाते थे और वो प्रसाद वरसाद लेके हॉल में जाते थे
2: आरती
1: देखने के
2: आरती
1: लिए,
2: होती थी वहां
1: आरती
2: पे और
1: होती थी
2: पूरा
1: वहां पे।
2: चप्पल उतार के जाते थे और उसके साथ ही संतोषी माता का एक पूरा एक बाकायदे ट्रेंड शुरू हुआ, फोटो बिकने लगी, बाकायदे घरों में लोग व्रत रहने लगे। और महात्मा गांधी ने जो इकलौती फिल्म देखी अपने जीवन में रामराज, वो भी मतलब धार्मिक फिल्म थी, प्रेम अदीब और शोभना समर जो काजोल की नानी है, शोभना समर तो उसमें सीता बनी थी और ये अपना प्रेम अदीब आपके उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, भरत मिलाप में दोनों राम और सीता बने थे। इतना लोकप्रिय थे दोनों किरदार कि उनके कैलेंडर छपे थे, कई सालों तक उनके कैलेंडर बिकते रहे जिसमें राम के रूप में प्रेम अदीब थे और सीता के रूप में शोभना समर। अभी जो फिल्म बात कर रहे हैं सलमान खान की कर्ण को लेकर के, ये एक दूसरा विषय है जिसको अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये शायद चुनाव के आसपास रिलीज हो। कर्ण सूत पुत्र के रूप में मशहूर हुए थे, वो सूर्य के पुत्र सूत पुत्र के रूप में मशहूर हुए सिनेमा का एक बड़ा तबका हिंदी सिनेमा में। दक्षिण भारत में ये है कि दलित विमर्श होता है सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में दलित विमर्श में सिनेमा फिल्में बहुत कम बनी है। पार जैसी फिल्में थी नसीरुद्दीन शाह वगैरह ने की, ओम पुरी ने वैसी फिल्में की, उसके बाद से दलित विमर्श की फिल्में नहीं बनी है। क्या कर्ण दलित विमर्श को रिवाइव करने की कोशिश है, इसकी तरफ भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। कर्ण का जो करिकुलर है, जिसको कि रामधारी सिंह दिनकर ने जो रश्मिरथी लिखी है, जिसमें की शुरुआत ही वो वहीं से करते हैं, जय हो जग में दिले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। अगली लाइन है, किसी व्रंथ पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। तो गुणों का आदि और शक्ति का मूल खोजने की कोशिश पढ़े लिखे लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन राजनीति करती है।
1: बिल्कुल।
2: तो क्या कर्ण का किरदार, जो फिल्म नहीं बन पा रही है, कई फिल्में बन रही है, एक राकेश ओम प्रकाश मेहरा बना रहे हैं जिसके लिए सलमान खान की चर्चा हो रही, पहले शायद इसमें सूर्या को हीरो बनना था, सूर्या की एक फिल्म कोरोना टाइम में रिलीज हुई थी जय भीम, जिसमें वो वकील बने थे, वो भी दलित वंशी कहानी थी, उसी के बाद उनका नाम इस फिल्म के लिए आया था। और एक दूसरी फिल्म कुमारी श्वास लिख रहे थे वाटू भगनानी के लिए, वो भी कर्ण ही है, उसमें भी फिल्म बनना थी। और एक मराठी का बेहद लोकप्रिय उपन्यास है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसके बारे में पता होगा, मृत्युंजय। मृत्युंजय का हिंदी अनुवाद भी हुआ है, उसके ऊपर एक टीवी सीरियल भी बन चुका है, जिसमें राज जोशी आई थिंक थे, उसमें काम किया था
1: जी।
2: और सूर्यपुत्र कर्ण के नाम से भी टीवी सीरियल बन चुका है। कर्ण की कहानी अपने आप में इतने लेयर्स वाली कहानी है कि एक व्यक्ति जो पांडवों में सबसे बड़ा है, युधिष्ठिर से वो 9-10 साल ज्यादा बड़े थे, युद्ध जब हुआ है तो ये सारे पांडव कौरव जो हम पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं उनकी आयु करीब 90 साल के आसपास थी जब महाभारत का युद्ध हो रहा है। कर्ण की जब मृत्यु हुई है वो 100 साल से ऊपर थे।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन अभी एक फिल्म आई है कृष्णावतारम, अगर आप ध्यान से देखें,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: कृष्णावतारम की शुरुआत होती है, मुझे कहना नहीं चाहिए, हमारे आराध्य कृष्ण, और ये हिंदू धर्म की परंपरा नहीं है कि आप आराध्य देव का निर्वाण देखें या उनके बारे में बात करें। तो कृष्णावतारम अगर नहीं कारोबार कर पा रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो कहानी शुरू होती है कृष्ण के पैर में तीर लगने से और समाप्त होती है कृष्ण के निधन पर। तो हमारे पौराणिक ग्रंथों में जैसे रामचरितमानस में सिर्फ 7 कांड है, 8वां कांड हटा दिया गया लोकेश कांड, क्योंकि उसमें राम का निर्वाण है। वाल्मीकि रामायण इसीलिए घरों में नहीं लिखी जाती है, नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि उसमें लोकेश कांड में राम का निर्वाण दिखाया गया है। हम अपने आराध्य देवों का
1: बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं ये जो भावनात्मक एक एक लगाव, एक जुड़ाव है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। और यही यही सारी बारीकियां हैं जो फिल्म मेकर्स जो हैं उनको समझने की यहाँ पर जरूरत होती है। रामकिशोर जी, आपसे समझना चाहूंगी मैं, फिल्म समीक्षक भी हैं, ये बताइए कि पहले भी फिल्में आती रही हैं, अभी जैसा कि पंकज जी ने भी बताया, ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की फिल्में बनी हैं, पहले भी आती रही हैं। हमने तो मेगा सीरियल्स देखे हैं भाई, रामायण हमने अपने समय में देखा है, महाभारत हमने देखा है, ये सीरियल्स आज भी, मतलब कोरोना काल में आपने देखा होगा कि दोबारा जब ये टेलीविजन पर आया तो ठीक उसी तरह से जिस समय हम अपने बचपन में बैठ करके देखा करते थे पूरा घर, उस समय भी हाथ जोड़कर बैठ करके कोरोना काल में हर घर में लोगों ने रामायण फिर से देखा है। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आज के समय में अब जो ये मूवीज इतनी बिजनेस कर रही हैं और करोड़ों में बनाए भी जा रही है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ इसके पीछे भावनात्मक जुड़ाव है या फिर कहानी कहने का जो तरीका बदला है, जो VFX की एंट्री हुई है, जिस लार्जर देन लाइफ जिस तरह से चीजों को दिखाया जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है?
3: दो तरह की बातें हैं। सबसे पहले तो मैं, पंकज भाई ने जो बात कही है, एक भावनात्मक जो हमारा लगाव है, हमारे जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है सब कुछ, वो बहुत जरूरी चीज है। दूसरी बात कि एक जो अभी शोएब साहब जो बात कर रहे थे, मैं उससे सहमत नहीं हूं। उन्होंने बात करते हुए जब आपने उनको टोका कि आप विषय से भटक रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए जो रिलीजियस मामले हैं उसमें अभी जो फिलहाल जो इस समय सिनेरियो चल रहा है उसमें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या कुछ लोग जो हैं वो एक वाहियात किस्म का प्रोपेगंडा जो है वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शोएब भाई, शो में इस तरह की बात जो है वो ठीक नहीं है करना। पंकज भाई, आपसे बड़े दिनों के बाद आपकी आवाज भी सुन रहा हूँ। दो चीजें हैं कि देखिए धार्मिक फिल्में और ऐतिहासिक फिल्में दोनों का जो पंच है वो अलग अलग है। जो धर्म है वो हमारा इमोशन फील, हमारी भावना है, और जो इतिहास है वो हमारी जानकारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी धार्मिक चरित्र होते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन किया नहीं जा सकता है, उनकी जानकारियां कम होती हैं, और एक सेट पैटर्न में जितना हम जानते हैं उससे आगे आप उसको छेड़ नहीं सकते। इतिहास में थोड़ा सा बदलाव करके आप चीजों को बदल सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में आप देखेंगे जैसे केतन मेहता अभी जय सोमनाथ बना रहे हैं, बहुत सारी फिल्में भी, पंकज ने बहुत सारी फिल्मों के नाम लिए हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में जिक्र किया है। तो कुल मिला के जो ट्रेंड अप चालू हुआ है, उस ट्रेंड में जो बाहुबली का जो अवतार सामने आया, उससे ऐतिहासिक फिल्मों का एक जो चलन शुरू हुआ है उसमें पैसा, बिजनेस, और जो एक बिजनेस को विस्तार के रूप में देखने की जो हमारी तसल्ली होती है वो शायद इसमें बहुत ज्यादा काम कर रही है। लेकिन इसमें जो धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं उन पर जो फिल्में बनाने की कोशिश कर रही है उसमें दो चीजें हैं। मैं अभी तक ये सोचकर बड़ा हैरान हूं कि सलमान खान जो है वो करण की भूमिका करने जा रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा कुछ समय पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर और जिशान खान को लेकर जो उन्होंने कुछ हिंदू जो माइथोलॉजी है हमारे उसके कुछ कैरेक्टर किए थे उन पर विवाद हो गया था। तो अभी तक किसी ने ये नहीं कहा है कि साहब सलमान खान करण की भूमिका क्यों कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, कोई विवाद इस पर नहीं हुआ है। दूसरी बात कि जितने भी कैरेक्टर ये होते हैं वो लार्जर देन लाइफ होते हैं और उनको स्क्रीन के ऊपर सहेजना और उनको बनाना, उनको क्रिएट करना और फिर उसको एक नया विस्तार देना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो सलमान खान जिस काम को करने के लिए आगे आ रहे हैं उनके लिए एक फायदा बहुत बड़ा है कि जो आपने भी श्वेता भी बात की कि फिल्मों में इस वक्त कंटेंट से ज्यादा जो है जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हो रहा है। ओरिजिनल जो कैरेक्टर है हमारा वो हमारा सिर्फ इतना ही सामने दिखाई देता है जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, इसके अलावा जो आपके आसपास का जो सिनेरियो है वो टेक्नोलॉजी से VFX से और जो 3D एनिमेशन और तमाम तरह के ग्राफिक्स जो इफेक्ट्स होते हैं उसमें वो चला जाता है। तो एक तरह से ये आसान भी होता है कि एक्टर के लिए बहुत ज्यादा करने के लिए कुछ होता नहीं है, वो डायरेक्टर और टेक्निकल जो क्रू टीम होती है उसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां और चुनौती हो जाती हैं कि वो एक साधारण से एक्टर को भी इतना भव्य और लार्जर देन लाइफ कैसे दिखाएं। तो आसान रास्ता जो है वो एक सामने भी दिखाई दे रहा है एक्टर्स के लिए कि हम अगर ये करते हैं तो हम अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एक नए रूप में सामने आ सकते हैं। तो कई तरह की चीजें जो है वो इससे जुड़ी हुई है, लेकिन कुल मिला के जो एक ट्रेंड होता है जैसे पंकज ने कहा कि फिल्में हमारे यहाँ दशकों से बनती रही हैं, धार्मिक फिल्मों का चलन हमारे यहाँ आज से नहीं है, बहुत पहले से शोले को मात देने वाली जय संतोषी माता बनी और इस वक्त भी आप देखिए कि जब बाहुबली आई उसके तुरंत बाद जो है रामायण पर आधारित एक फिल्म आई, लेकिन प्रभास की जो फिल्म थी उसका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया। इसके अलावा एक चीज और है कि अब माइथोलॉजिकल फिल्मों में जो विषय है जहां तक आपकी जानकारी है उससे कुछ नया ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको दूंगा कि पंकज आपको मालूम होगा रामायण एक बनी थी टीवी पर जो आई थी उसमें जो कैकई का जो कैरेक्टर था, अभी तक कैकई के बारे में सिर्फ ये था कि वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, ये तथ्य सामने कभी नहीं आता था कि भाई उसने रामचंद्र को वनवास 14 दिन का क्यों दिया। तो उसने उस सीरियल में आप देखिए कि वो कहानी बताई है कि उसकी वजह क्या थी, असल में वो बदला ले रही थी और वो किसी और से प्रेम करती थी, उसका प्रेम छीना गया, उसके पिता की मृत्यु हुई, तो उसने वो बदला जो है मंत्रा के साथ मिलकर वहां लिया और ये बात उसने
1: रामकिशोर जी शायद ये जो कुछ फैक्ट्स हैं मुझे लगता है कि जो आज की युवा पीढ़ी है जो आज का नया जनरेशन है वो जानना चाह रहा है। हाँ वो जानना चाह रहा है, वो समझना चाह रहा है और इसीलिए शायद वो पसंद भी कर रहा है क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई खास वर्ग जा रहा है इसे देखने के लिए, हर उम्र के लोग जा रहे हैं इसे देखने के लिए। चलिए इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे और खास करके अब अगर सलमान खान आते हैं कर्ण की भूमिका में तो वो कितना इम्पैक्टफुल होगा या लोगों को कितना वो पसंद आ पाएगा इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर हमें ना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़।
4: Score what you need for summer, perfectly picked for you at Target, including up and up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream. Inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
5: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
6: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
7: somebody save me,
6: to timeless favorites,
7: and life is like a song,
6: and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा और हम आज चर्चा कर रहे हैं क्या बॉलीवुड को यानी कि सिनेमा को अब श्रीराम और कर्ण जैसे किरदार का सहारा है, क्योंकि बात जो सामने आ रही है उसमें यह है कि सलमान खान कर्ण की भूमिका निभाते हुए हमें आने वाले समय में नजर आ सकते हैं। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपके पास आते हुए एज ए कैरेक्टर, अगर हम एक अभिनेता के तौर पर ही आपसे जानना चाहें तो सलमान खान का जो स्टारडम रहा है, जो वो भाई के तौर पर या फिर सुपर हीरो के तौर पर हमें नजर आते रहे हैं इतने समय में, आपको क्या लगता है कि पहला सवाल, क्या कर्ण के तौर पर, एक अभिनेता के तौर पर अगर वो कर्ण बनते हैं तो उस कैरेक्टर के साथ वो जस्टिफाई कर पाएंगे? दूसरी बात, दूसरा सवाल ये कि अगर ऐसा करते हैं तो उनका जो अभी तक का स्टारडम रहा है उसमें किसी तरह से कोई कमी या फिर आप दूसरे तरीके से लोग उन्हें परसीव करने लगेंगे, ऐसा कुछ होगा या हो सकता है?
1: देखिए, सलमान के साथ मैंने 6-7 फिल्में की और उनके साथ बहुत समय हमने गुजारा है। He is a very hardworking boy, हमने उसको ये भी देखा है, अकेला अपने आप के साथ भी लड़ते हुए भी हमने देखा है तो कैसे वो अपने आप को लड़ता है, कॉन्ट्रेडिक्ट करता है कि नहीं यार, अगर इसमें अपने आप से अगर बात करता है कि इसमें ये लाइन डाल लूं, ये शब्द डाल लूं, फिर सोचता है, समझता है। हमने उसका वो जो क्रिएटिव पार्ट है वो देखा है और हमको अच्छा भी लगता है। और ये अगर ये रोल करते हैं करण पुत्र का, तो मेरे ख्याल से उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि एक उसका हार्डवर्क, एक उसके लिए एक नई चीज, एक नई बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि उसकी आवाज बहुत अच्छी है, उसका तलफ्फुज बहुत अच्छा है। आप जब बिग बॉस देखते हैं तो उसकी हिंदी, उसकी उर्दू, उसकी इंग्लिश, वो कोशिश करता है कि हिंदी में बात करे। यहाँ पे हिंदी क्लिष्ट होगी, डेफिनेटली क्लिष्ट होगी, क्लिष्ट ज्यादा नहीं होगी तो कुछ शब्द तो डेफिनेटली होंगे। एंड आई नो हिम वेरी वेल, वो इसके ऊपर बहुत काम करेगा एंड आई एम श्योर ही विल पुल थ्रू अ परफॉर्मेंस। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात का है कि ये जो जितने भी रोल हैं, ये जो जाने माने कलाकार हीरोज कर रहे हैं, लेकिन जब ये जब चीज शुरू होती है तो ऐसा कलाकार होना चाहिए जिसकी कोई इमेज ही ना हो। आप वहां पे करण को देखने जा रहे हैं, आप अपनी आस्था को लेकर जा रहे हैं, मुझे सिर्फ इसी बात का डर है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, शुरुआत तो हो गई है, पंकज जी ने जिक्र किया था फिल्म कृष्णा वतारम का, मैंने वो देखी है फिल्म, इट इज अ ब्यूटीफुल फिल्म, वंडरफुल फिल्म। उसकी स्टोरी लाइन जो है, किस तरह से वो तीन रानियां जो उसकी हैं, रुक्मणी है, सत्यभामा है और उसके अलावा राधा जी हैं, हालांकि राधा जी को ने थोड़ा सा इधर किया है, सत्यभामा को आगे किया है, वो नया एंगल है। It was a wonderful film. I loved that film. उसमें गाने बहुत खूबसूरत थे, उसमें उसका लुक बहुत, उसके डायलॉग बहुत अच्छे थे, उसका जो उसका क्रिसेंडो था, उसका जो था वो, इट वॉज वेरी गुड, वेरी नाइस, आई लव दैट फिल्म। मतलब शुरुआत हो गई है, लेकिन हम चाहेंगे कि और कलाकार आए। और ये जो मैं लेकिन, बोल
0: लेकिन,
1: रहा हूं।
0: लेकिन आप जो कह रहे हैं ना अरुण जी, आप ही की बात से ये पूछते हुए, क्योंकि भाई हमने भी देखा है आपको प्ले करते हुए कैरेक्टर्स देखे हैं उस तरह के, और हमने ये भी देखा है कि वो एक दौर था जब अरुण गोविल जी ने एज अ राम वो हमारे सामने आए तो बहुत मुश्किल हो गया लंबे समय तक हम किसी और को राम के किरदार में पसंद ही नहीं कर पाए, उन्होंने इस तरह से निभाया उस किरदार को। तो आपसे मैं ये समझना चाहती हूं कि इस तरह का कोई भी धार्मिक, जो धार्मिक फिल्में बनती है, माइथोलॉजिकल फिल्में बनती है, इसमें जो एक्टर होता है उस एक्टर को भी क्या आध्यात्मिक इंक्लिनेशन उसका होना थोड़ा जरूरी होता है, या फिर वो नेचर वाइज भी उस तरह का थोड़ा हो तो वो बेहतर परफॉर्म कर पाता है, ऐसा जरूरी है क्या?
1: बिल्कुल लाजमी है जी। अगर आप गीता, श्रीमद् भागवत या महाभारत नहीं पढ़ेंगे, उसके अंदर नहीं जाएंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा? सिर्फ डायलॉग नहीं बोल सकते हैं कि आप सोचें कि जो लिखे हुए डायलॉग है वो भी उनको बहुत तमीज के साथ बोलने पड़ेंगे। उसके पॉजेस, उनके पॉजेस बड़े चिल्लाते हैं कि यहाँ पे पॉज मत लो भाई, संस्कृत है, आपको डूबना तो पड़ेगा मैम, डेफिनेटली डूबना पड़ेगा। एंड आई टेल यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट जेंटलमैन मिस्टर बॉबी मलिक, जिसने मुझे रावण का रोल दिया है। मेरी आजकल जो थिंकिंग है वो बहुत मजेदार थिंकिंग है, मैं डुबा देता हूँ, कभी ये श्लोक पढ़ूं, कभी ये पढ़ूं, उसका उच्चारण ठीक होना चाहिए, और मुझे गाना है, बिकॉज आई एम ए सिंगर ऑल्सो, तो मुझे ये जो स्रोत है, मैंने कोई 336 गाने गाए फिल्मों में,
0: क्या बात है,
1: दे आर चार्ट बस्टर्स, प्लीज आप उसको देखिएगा, आई हैव सॉन्ग फॉर ऑल द हीरोज, ऑल द हीरोज,
0: क्या बात,
1: क्या संजय दत्त, क्या दूसरा, क्या तीसरा, क्या चौथा, इवन अजय देवगन. मैं म्यूजिक में हूं, तो मेरा कहने का मतलब है वो जो श्लोक है उनका उच्चारण, जो जो छोटी छोटी चीज है, डिटेल वर्क है, उसको मैं कैच कर रहा हूँ. और मैंने बनाया कि 15 दिन में मुझे वो रिकॉर्ड करना है, लेकिन 15 दिन लगे, पिछले 15 दिन से अभी 15 दिन
0: आपको लगना पड़ेगा, आपको डूबना पड़ेगा. एक अभिनेता ये बातें कह रहा है और मैं समझ सकती हूँ इस बात को कि भाई आप जो आप जिस कैरेक्टर में हैं और जिसको परफॉर्म करना चाह रहे हैं या जाने वाले हैं, तो उसका इन एंड आउट आपको मालूम होना चाहिए. आप अपने आप को, आपको अपने आप को भूलना होता है और पूरी तरह से उस कैरेक्टर में आ जाना होता है. ऐसा आ जाना होता है कि सामने वाला भी पहचान ना पाए कि आप कोई और हैं, लोग यही समझे कि आप वही कैरेक्टर हैं. शोएब जी आऊंगे आऊंगे अरुण जी, शोएब जी आपसे यहाँ पर पूछते हुए आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, अभी जिस तरह से अब ये ट्रेंड बढ़ पड़ा है, आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड अब बॉलीवुड का क्या ये अब ग्लोबल होने वाला है? जिस बड़े ट्राजेक्टरी पे आप लोग काम कर रहे हैं, इतने हजारों करोड़ रुपए लग रहे हैं, इतने कमाल के VFX और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है.
2: हाँ सही बात है, फिल्में बनाना आजकल आसान तो हो गया है VFX और टेक्नोलॉजी के हिसाब से. अगर आप मुगले आजम का एग्जांपल देखें तो उसमें कितने साल लगे और जो उनमें बहुत सारे सेट्स और बहुत सारी चीजें, क्राउड ऐसा हो जो आसानी से अवेलेबल उस दौर में नहीं था, वो आज सिर्फ एक क्लिक ऑफ अ बटन पे अवेलेबल है. आप स्टूडियो में बैठकर सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, वो तो है. लेकिन मैं साथ साथ अरुण जी की बात से अग्री करता हूँ. इन्होंने जो कहा कि किसी एक्टर की इमेज नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई एक्टर इस करेक्टर को प्ले करे, मैं इस बात से पूरी तरह अग्री करता हूँ, क्योंकि उससे फिर ऑडियंस को जुड़ाव ज्यादा हो जाता है.
0: Exactly.
2: रिलेट करने लगता है ऑडियंस. अब सलमान खान ही रहेंगे जो कोई भी करेक्टर करे, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ गुड एन एक्टर ही इज या कितने बड़े स्टार है, वो एक अलग बात है. लेकिन एज कर्न मुझे उस पर डाउट है कि वो उस फिल्म की सक्सेस रेट क्या होगा. सलमान खान को सलमान खान ही समझ कर देखा जाएगा उस फिल्म में, ये एक मुद्दा है. दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अभी पारचा साहब ने मुझे गलत कोट कर दिया कि मैं कुछ रिलीजियस फिल्मों पर उंगली उठा रहा हूं. देखिए दो तरह की फिल्मों की हम बात कर रहे हैं, रिलीजियस फिल्में जो माइथोलॉजिकल जो आप कह रहे हैं, और एक हिस्टोरिकल फिल्म है, उन दोनों का अलग अलग डिस्कशन है. समझे, मैं रिलीजियस फिल्मों पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो हिस्टोरिकल फिल्में जो एजेंडा ड्रिवन है उसके ऊपर मेरा सवाल हमेशा था और हमेशा रहेगा. और साथ
0: उसके लिए हम अलग से चर्चा शुरू करेंगे.
2: मुझे 30 सेकंड और दीजिए. लेकिन इन्होंने साथ साथ मेरी बात को वैलिडेट भी कर दिया. जब मैं कहता हूं कि एक धर्म से रिलेटेड लोगों को विलेन बनाकर पेश किया जा रहा है, उसको वैलिडेट भी कर दिया इन्होंने. जब ये कहा कि सलमान खान के खिलाफ अभी तक किसी ने आवाज नहीं उठाई,
3: अभी कहा कि आपने एक शब्द इस्तेमाल किया प्रोपेगंडा, मेरी वो शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.
2: नहीं, प्रोपेगंडा है, आई स्टैंड बाय व्हाट आई हैव सेड. प्राइम मिनिस्टर इज सपोर्टिंग द प्रोपेगंडा मूवी.
0: नहीं शोएब जी, शोएब जी, नहीं नहीं, फिर मैं आपको ये बोलूंगी कि आप भटक रहे हैं फिर इस बात से. और जो राम जी ने कही बात, मुझे लगता है कि शब्दों का फेर जरूर हो सकता है, लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगी कि सलमान खान हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ अभिनेता है, उसके अलावा और कुछ नहीं है. हम ये नहीं,
2: अभी पारचा जी ने क्या, पारचा साहब ने क्या कहा, रामकिशोर जी ने कहा क्या, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को रामायण प्ले करना था उनको बुढ़ाना में, अपने गांव में, जिला मेरठ का बुढ़ाना गांव है वहां
3: मुजफ्फरनगर, उनको लेकर यही आपने कहा नहीं हुआ, ये एक अच्छी बात है. मैंने आपने यही नहीं,
2: लेकिन आज का जिक्र,
0: लेकिन शोएब जी
2: समाज में ऐसे भाव है,
0: नहीं कोई हुई है तो अच्छी बात है, ऐसी भावना है समाज में, नहीं हुआ ये तो अच्छी बात है ना, उन्होंने तो यही बात कही.
2: लेकिन समाज में ऐसी भावना है, ये तो है, ये तो एक्सेप्ट कर लिया आपने.
0: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो कह रहे हैं कि अच्छा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है.
3: अच्छी बात है, मैंने आपने पूरी बात नहीं सुनी शोएब भाई. मैंने ये कहा कि आपने जो शब्द इस्तेमाल किया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और कुछ लोग जो है धर्म और धार्मिक फिल्मों को लेकर प्रोपेगंडा कर रहे हैं, मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि शो में हम बैठे
2: हैं.
0: इस चर्चा की शुरुआत ही इस बात से हुई है, और जब मैंने अरुण जी से पहला सवाल पूछा था तो एज अ एक्टर उनसे मैंने यही इसी बात से शुरुआत की थी कि धार्मिक फिल्में माइथोलॉजिकल फिल्में होती ही ऐसी हैं जिसमें आप कुछ भी फेर बदल नहीं कर सकते, आप किसी कैरेक्टर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप किसी तथ्य के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो इसमें तो कुछ नहीं, इसमें तो कोई प्रोपेगेंडा ऐड नहीं हो सकता,
2: कोई सवाल भी नहीं है। नहीं, हम हिस्टोरिकल फिल्मों की बात कर रहे
0: हैं, हम आज बात कर रहे हैं, हम आज बात कर रहे हैं सलमान खान की, हम क्यों जा रहे हैं हिस्टोरिकल फिल्मों पर।
3: आपने एक बहुत अच्छी बात की अभी कि सलमान खान जो है लोग उसको सलमान खान ही देखने के लिए जाएंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि एक्टर जो होता है ना, आपको प्राण साहब का उदाहरण याद होगा, पंकज भाई आप अच्छे से जानते हैं, टॉप के विलेन थे वो, लेकिन जब उपकार आई तो मनोज कुमार ने उनका जबरदस्त ट्रांजिशन किया और उन्होंने वो प्रूव किया, और ऐसा ही कुछ अरुण गोविल के साथ हुआ। तो ये जो इंग्लिश का मामला है ऐसा बिल्कुल नहीं, अगर एक्टर अच्छा है तो वो अपने कैरेक्टर में आता है, वो फिर वो नाम से नहीं जाना जाता, कैरेक्टर से जाना जाता है। लेकिन लेकिन दो खतरे हैं इसमें, देखिए एक उसको उस कैरेक्टर से बाहर आना पड़ता है, लेकिन मैंने एक बार बीबीसी के लिए जब मैं था तो मैंने अरुण गोविल का इंटरव्यू किया था, तो मुझसे कहा खतरा है, मैं वो बता रहा हूं आपको कि उन्होंने राम का कैरेक्टर किया और वो सबसे बड़ा लीजेंडरी कैरेक्टर था, तो जहां भी वो काम मांगने जाते थे उनको ये कह दिया जाता था कि भाई आपने तो सबसे बड़ा कैरेक्टर अब निभा लिया, अब आपके लिए हमारा
0: मैं यही सवाल जो आपने बिल्कुल सही बात की राम किशोर जी, और यही सवाल इसलिए मैंने अरुण जी से पूछा था कि कितना मुश्किल होता है उस कैरेक्टर के, एक बार अगर आप माइथोलॉजिकल कोई कैरेक्टर निभा लेते हैं फिर पब्लिक आपको दूसरे किरदार में
3: नहीं
0: पसंद करती है।
3: पीरियड फिल्म चलेगी श्वेता, पीरियड फिल्म में हिस्टोरिकल कैरेक्टर चलेगा कि आपने पृथ्वीराज का जो है चौहान किया है या कुछ और किया है, तो अगली फिल्म में आप सोशल मीडिया के बदल सकते हैं।
0: समय की कमी है अरुण जी, एक लास्ट कमेंट अरुण जी, आप कुछ कह रहे थे जल्दी से अरुण जी, क्या कह रहे थे आप?
1: मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्टर इम्पोर्टेंट नहीं है जब तक डायरेक्टर और उसके जो नवरत्न हैं वो अच्छा थॉट प्रोसेस नहीं देते हैं स्क्रिप्ट को। हमने देखा बी आर चोपड़ा जी के साथ में उनके नवरत्न थे जी, जितनी टैलेंट थी इंडिया की बेस्ट टैलेंट जो अच्छा सोच सकती थी विद डॉक्टर राही मासूम रजा जैसे,
0: बिल्कुल हमने वो दौर भी देखा है, बिल्कुल अरुण जी हमने वो दौर भी देखा है बी आर चोपड़ा जी का, और अब हम अभी का दौर भी देख रहे हैं जब एक से एक फिल्में बन रही हैं और विद वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो भी लोग तमाम लोग पसंद कर रहे हैं। फिलहाल समय की कमी है लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमें रुकना होगा यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
1: How they looked after game one.
2: I mean, they were frustrated.
0: The Daily.
3: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
0: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
4: मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और अब बात कुछ ऐसे वीडियोस की जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे, तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
2: कुछ लोग नियमों से नहीं अपने मूड से चलते हैं, फिर चाहे सामने नई सड़क बन रही हो या रास्ता बंद हो। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक शख्स बिना किसी परवाह के ताजा बनी सड़क पर निकल पड़ता है। आसपास मौजूद लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंकल अपने ही धुन में आगे बढ़ते रहते हैं। उनका बेफिक्र अंदाज देखकर लोग हंसी नहीं रोक पा रहे और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इंसान और पक्षी के बीच भरोसे का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है, इसका खूबसूरत उदाहरण ये वीडियो है। आसमान में उड़ रही एक चील बच्चे के इशारे पर नीचे आकर उसके हाथ पर बैठ जाती है। दोनों के बीच तालमेल और आत्मविश्वास देखने लायक है। सोशल मीडिया पर लोग इस नजारे को खूब पसंद कर रहे हैं। कई यूजर्स बच्चे के हुनर और पक्षी के साथ उसके अनोखे जुड़ाव की तारीफ कर रहे हैं।

0: दया, संस्कार और अपनापन उम्र नहीं देखते। वायरल वीडियो में छोटा बच्चा बड़े प्यार से गाय को अपने हाथों से खाना खिलाता दिखाई देता है। गाय भी बिना घबराए आराम से उसके हाथ से भोजन करती है। बच्चे के चेहरे पर डर नहीं बल्कि अपनापन साफ नजर आता है। सोशल मीडिया पर लोग इस प्यारे पल को खूब पसंद कर रहे हैं और बच्चे के संस्कारों की जमकर सराहना कर रहे हैं। जब परेशानी बड़ी हो तो देसी दिमाग भी कमाल कर जाता है। बारिश नहीं हुई तो किसान ने खेत तक पानी पहुंचाने का ऐसा जुगाड़ लगाया कि लोग हैरान रह गए। बांस के सहारे खुद को बांधकर वो साथियों की मदद से एक खेत से दूसरे खेत में झूले की तरह पानी पहुंचाता नजर आया। वीडियो देखकर लोग हंस भी रहे हैं और किसान की सूझबूझ की भी तारीफ कर रहे हैं। कभी कभी जिसे पकड़ने जाते हैं वही अचानक सामने आ जाए तो हालत खराब हो जाती है। वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची मेंढक को पकड़ने की कोशिश करती है, तभी मेंढक उछलकर सीधे उसकी गोद में आ बैठता है। अगले ही पल बच्ची जोर जोर से चिल्लाते हुए वहां से भाग निकलती है। ये मजेदार नजारा देखकर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry-scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's Best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
11: सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, बोटानिकल गार्डन में 196 साल के सबसे उम्रदराज कछुए जोनाथन के दीदार किए। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर हुआ मंथन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रबुद्ध जनों से की चर्चा। श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ शहर के ट्रैफिक प्लान पर हुई बात। मुंबई और उसके आसपास के लाखों यात्रियों के लिए गुड न्यूज। 29 जून से सेंट्रल रेलवे की 12 और लोकल ट्रेन्स बनेंगी एसी। लोकल के मुसाफिरों की यात्रा होगी अधिक सुगम और आरामदायक। गुजरात के 14 शहरों को मिली सुगम यातायात की सौगात। भारत टैक्सी ऐप का शुभारंभ। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में उन्होंने इसका उद्घाटन किया। स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा से जुड़ी बड़ी खबर। जापान एशियन गेम्स में खेलना हुआ कंफर्म। एएफआई चयन समिति के अध्यक्ष ने दिया अपडेट। 19 सितंबर से होगा आयोजन।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर।
11: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में, अच्छी और सच्ची खबरों में। सबसे पहले बात महाराष्ट्र के नागपुर की, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक राज्याभिषेक दिवस की 353वीं वर्षगांठ पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। यशवंत स्टेडियम और महल क्षेत्र में हजारों शिव भक्त जुटे। ढोल नगाड़ों की गूंज, भव्य शोभा यात्रा, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और पारंपरिक लाठी खेल ने पूरे शहर को शिवमय बना दिया। इस अवसर पर लोगों ने शिवाजी महाराज के शौर्य, स्वराज और राष्ट्र सेवा के आदर्शों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

स्वराज का सपना, साहस की मिसाल और आत्मसम्मान की सबसे बड़ी पहचान, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही पराक्रम, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति की तस्वीर आंखों के सामने उभर आती है। आज उसी महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक राज्याभिषेक की 353वीं वर्षगांठ पर नागपुर में आस्था, परंपरा और गौरव का अद्भुत संगम देखने को मिला। ढोल ताशों की गूंज, पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन और हजारों मराठियों का जोश, हर नजारे मानो शिवाजी महाराज के स्वराज के संकल्प को फिर से जीवंत कर रहा था। फूलों की मालाओं से सजी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा, भगवा ध्वजों से सजी सड़कें, रंग बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा में पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा था। ये नजारा केवल एक आयोजन का नहीं बल्कि उस विरासत का है जिसने स्वराज की नींव रखी और आने वाली पीढ़ियों को आत्मसम्मान का रास्ता दिखाया था। महाराष्ट्र के नागपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक राज्याभिषेक दिवस शिव राज्याभिषेक सोहला की 353वीं वर्षगांठ पूरे उत्साह, अनुशासन और भव्यता के साथ मनाई गयी। शहर के अलग अलग हिस्सों में सुबह से ही मराठाओं का जुटना शुरू हो गया। हर उम्र के लोग इस गौरवशाली अवसर के साक्षी बनने पहुंचे। यशवंत स्टेडियम और महल क्षेत्र सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने। यहां सैकड़ों मराठी एक साथ एकत्र हुए। 100 से अधिक ढोल पथकों ने अपनी लयबद्ध प्रस्तुति से पूरे वातावरण को जोश से भर दिया। ताल की हर गूंज मानो शिवाजी महाराज के अदम्य साहस की कहानी सुना रही थी। इसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हाथों में भगवा ध्वज, पारंपरिक पोशाक और शिवाजी महाराज के जय घोष से पूरा मार्ग गूंज उठा। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। आरती, भजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने इस आयोजन को और भी आकर्षक बना दिया।

0: समारोह के दौरान शिवाजी महाराज की प्रतिमाओं और स्मारकों का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने पुष्प अर्पित कर नमन किया और उनके बताए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर युवाओं ने पारंपरिक लाठी खेल, तलवारबाजी और अन्य युद्ध कलाओं का प्रदर्शन भी किया। इन प्रस्तुतियों ने ये संदेश दिया कि वीरता केवल इतिहास की कहानी नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनकी माता जीजाबाई ने बचपन से ही उनमें राष्ट्रप्रेम, न्याय और धर्म के संस्कार डाले। इन्हीं मूल्यों के बल पर शिवाजी ने कठिन परिस्थितियों में स्वराज का सपना देखा और उसे साकार भी किया। कम उम्र में ही उन्होंने मुगलों और बीजापुर सल्तनत को चुनौती दी। अपने अद्भुत सैन्य रणनीति, कुशल प्रशासन और दूरदर्शी नेतृत्व के दम पर उन्होंने मराठा साम्राज्य को मजबूत आधार दिया। यही वजह है कि आज भी उन्हें भारत के सबसे महान शासकों में गिना जाता है। हालांकि आपको बता दें कि 3 हफ्ते पहले 6 जून को भी महाराष्ट्र के रायगढ़ सहित तमाम जगहों पर शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह धूमधाम से मनाया गया था। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार शिवाजी के ऐतिहासिक राज्याभिषेक की तारीख 6 जून 1674 बताई जाती है, जबकि हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि को उनके राज्यारोहण के उत्सव की परंपरा है, जिसे आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। आज भी शिवाजी महाराज केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, उनका जीवन साहस, सुशासन, संगठन, समानता और राष्ट्रहित के मूल्यों की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि उनकी जयंती हो या राज्याभिषेक दिवस, हर अवसर पर लाखों लोग पूरे सम्मान और गर्व के साथ उन्हें याद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब खबर खूबसूरत नजारों और हरे भरे मैदानों की। कश्मीर दुनिया भर में अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए मशहूर है। गुलमर्ग और पहलगाम जैसे नाम तो हर जबान पर है, लेकिन इस जन्नत के बीच कुछ ऐसे अनमोल खजाने भी छिपे हैं जिनका जिक्र आमतौर पर नहीं होता। आज हम आपको दक्षिण कश्मीर के ऐसे ही हिडन डेस्टिनेशन की सैर कराएंगे, साथ ही श्रीनगर में सैलानियों की रौनक भी दिखाएंगे।

0: खूबसूरत वादियाँ, हरियाली की चादर ओढ़े मीलों तक फैले हरे भरे मैदान और उनके बीच से कलकल बहती साफ पानी की नहर। ये तस्वीरें हैं दक्षिण कश्मीर के शोपियांग जिले की, जहाँ का हर कोना कुदरत की बेमिसाल कारीगरी का सबूत है। ऐतिहासिक मुगल रोड से जब कोई मुसाफिर गुजरता है तो पीर की गली और इसके आसपास की घाटियों का नजारा उसे मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ का सुकून, पहाड़ों की ताजी और शुद्ध हवा और कुदरत की हैरान कर देने वाली कारीगरी ऐसी है कि जो भी यहाँ आए वो यहीं का होकर रह जाए।
1: जिला शुपियान, जहाँ पे सबसे बड़ी जो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, अहरवल भी नजदीक है, दुबजन और उसके साथ साथ मुगल सराय के साथ साथ और भी कई ऐसी चीजें हैं जो वाकई दिलकश नजारे बयान करते हैं।
0: करीब 3500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये इलाका गर्मियों में फूलों की चादर ओढ़ लेता है। दूर दूर तक यहाँ फैली खामोशी और किसी पेंटर की कल्पना जैसे हरे भरे मैदान देखने लायक हैं। कश्मीर के इन वादियों में जो सुकून और सुंदरता है उसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है, लेकिन खूबसूरती के खजाने को समेटे ये इलाका सैलानियों की नजरों से अभी दूर है। यूं तो कश्मीर को कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है, लेकिन शोपियांग जैसे इलाकों को अब भी सैलानियों का इंतजार रहता है।
2: ये जो जगहें हैं शोपियांग की, ये अनएक्सप्लोर्ड जगह है, जैसे पतनदफन है। ये जगह जो है इवन शोपियांग के लोगों को इस जगह का पता नहीं है, तो देयर आर लिमिटेड लॉट ऑफ पीपल जिनको इस जगह का पता है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, एक छोटा सा इलाका है। हम चाहते हैं कि यहाँ लोग आए, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर इस जगह का ख्याल भी रखना है, पोल्यूशन नहीं करना है, पोल्यूट नहीं करना है इस जगह को।
0: एक तरफ शोपियांग में सैलानियों की आमद बेहद कम है, तो दूसरी तरफ श्रीनगर में सैलानियों की रिकॉर्ड तादाद देखने को मिल रही है। गर्मी से राहत की तलाश में मैदानी इलाके से सैकड़ों सैलानी इन दिनों कश्मीर की हसीन वादियों और दिलकश नजारों और शानदार मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। श्रीनगर में इन दिनों सबसे ज्यादा रौनक डल झील पर है, जहां इन शानदार नजारों के बीच डल झील में शिकारे की सैर लोगों को बेहद पसंद आ रही है।
3: बहुत अच्छा लगा भैया, यहाँ के तो बहुत सुकून मिल रहा है हमको। मौसम यहाँ पर तो भैया दो दो मिनट में चेंज होता रहता है। दिल्ली में तो बहुत हॉट वेदर है, पर यहाँ पर जो क्लाइमेट है बहुत कोल्ड है। कभी रात को जैसे हम बोट हाउस में रहे तो वहाँ रात को एकदम बारिश हो गई, तो बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पे, सुहावना मौसम है।
4: कश्मीर में आके बहुत मजा आया है, मतलब मुझे लगता है कि हर एक इंसान को जिंदगी में एक बार जरूर कश्मीर आना चाहिए घूमने के लिए। मतलब टोटली डिफरेंट इन कम्पेयर टू उत्तराखंड, केरला, टोटली डिफरेंट।
0: डल झील से लेकर गुलमर्ग तक एक अद्भुत रौनक बिखरी है और वादियों में जिंदगी मुस्कुरा रही है, लेकिन इस रौनक को अगर शोपियांग और पीर की गली जैसी अनछुए जन्नत का भी साथ मिल जाए तो कश्मीर के पर्यटन में चार चांद लग जाए। कश्मीर से अश्रवानी, गुड न्यूज टुडे।
5: और चलिए अब बात विदेश की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों सेशल्स के दौरे पर हैं, जहां वो 29 जून को सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे।

ये नजारा है हजारों किलोमीटर दूर सेशल्स का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में भारतीय संस्कृति की झलक नजर आई। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे पर विक्टोरिया के सेशल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, उनका स्वागत किसी उत्सव की तरह किया गया। राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद उनकी अगवानी की। एयरपोर्ट पर कच्छ के पारंपरिक नृत्य की शानदार प्रस्तुति ने इस स्वागत को और भी खास बना दिया।

0: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति हर्मिनी के साथ सेशल्स नेशनल बोटानिकल गार्डन पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के साथ मिलकर पौधारोपण तो किया ही, लेकिन इस दौरे की सबसे खूबसूरत और यादगार तस्वीर तब आई जब प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित जमीनी जानवर जोनाथन को देखने के लिए पहुंचे और अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। आपको बता दें कि जोनाथन दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित जमीनी जानवर है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। जोनाथन की उम्र 194 साल बताई जाती है। हालांकि कुछ जानकारों के मुताबिक जोनाथन की उम्र 194 साल से भी ज्यादा है। जोनाथन को खाना खिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर पर्यावरण के प्रति भारत के कड़े संकल्प को दिखाती है। प्रधानमंत्री मोदी 29 जून को सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ये समारोह देश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़ी एक दिलचस्प खबर आपको दिखाते हैं। खबर हैदराबाद से है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया। आखिर क्यों, ये जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट।
1: निजाम का शहर, चार मीनार का शहर, जिसे साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये हैदराबाद है। करीब 500 साल पुराना वो शहर जो इतिहास और आधुनिकता को एक साथ लेकर चलता है। ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जिसको अब शानदार ऐतिहासिक विरासत और आईटी हब होने के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक खास कनेक्शन को लेकर भी याद किया जाएगा। असल में हैदराबाद में अब एक सड़क का नामकरण राष्ट्रपति ट्रंप के नाम पर कर दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम पर किसी सड़क का नाम रखा गया है। राष्ट्रपति ट्रंप को जब इसकी जानकारी मिली तो वो गदगद हो गए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर ये तस्वीर साझा की, जिसमें तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमा और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जिको गोर सड़क के नामकरण से जुड़ी स्मारक पट्टिका का अनावरण करते दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए भारत को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस कदम की सराहना करते हुए लिखा, भारत के हैदराबाद में नया डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू, मैं ऐसा पहला राष्ट्रपति हूं जिसे इस तरह से सम्मानित किया गया है, थैंक यू। अब आपको बता दें कि आखिर वो हैदराबाद की कौन सी सड़क है जिसका नामकरण राष्ट्रपति ट्रंप के नाम पर हुआ है। हैदराबाद में अमेरिकी काउंसुलेट के पास वाली सड़क को डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू नाम दिया गया है। ये सड़क माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेज़न जैसी प्रमुख अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के दफ्तर के नजदीक है। तेलंगाना सरकार के मुताबिक ये नामकरण भारत अमेरिका संबंधों और हैदराबाद की बढ़ती वैश्विक पहचान का प्रतीक है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं सालगिरह पर चल रहे फ्रीडम 250 समारोह के सिलसिले में सड़क का नामकरण अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम पर किया गया है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप अगले साल भारत आ सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस सिलसिले में जानकारी दी है। लिहाजा ट्रंप के दौरे से पहले भारत में उनके नाम

0: और सड़क एक शानदार उपहार से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात फिल्मों से जुड़ी कर लेते हैं। 90 के दशक की सुपरहिट जोड़ी 18 साल के बाद एक बार फिर से फिल्मी पर्दे पर वापसी के लिए तैयार है। खिलाड़ी कुमार अक्षय और बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर साथ नजर आने वाले हैं, वो भी निर्देशक प्रियदर्शन की थ्रिलर फिल्म हैवान में, जिसकी रिलीज डेट अब सामने आ चुकी है। जानकारी के मुताबिक फिल्म 11 सितंबर को रिलीज होगी। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार और नवाब सैफ अली खान की जोड़ी एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर राज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सालों के लंबे इंतजार के बाद ये दोनों सुपरस्टार अपकमिंग फिल्म हैवान में एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे, वो भी पूरे 18 साल के बाद। अक्षय और सैफ का साथ आना फैंस के लिए किसी जश्न से कम नहीं है। 90 के दशक में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जैसी फिल्मों में इस जोड़ी ने धमाल मचा दिया था। एक का एक्शन और दूसरे की शानदार कॉमिक टाइमिंग दर्शकों के लिए मनोरंजन का डबल डोज था। अब सालों बाद ये जोड़ी हैवान से पर्दे पर वापसी कर रही है। फिल्म का टाइटल और पोस्टर देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार ये दोनों स्टार्स कुछ डार्क, खतरनाक और एक्शन से भरपूर अंदाज में तहलका मचाने वाले हैं। इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ऑफिशियल ऐलान हो चुका है। केवीएन प्रोडक्शन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म का एक बेहद दमदार और धांसू पोस्टर शेयर किया है। मेकर्स ने न सिर्फ फिल्म की पहली झलक दिखाई है, बल्कि फैंस की बेकरारी को खत्म करते हुए रिलीज डेट से पर्दा भी उठा दिया। 90 के दशक में खिलाड़ी और अनाड़ी की इस जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर जो जादू चलाया था, उसे आज भी दर्शक भूल नहीं पाए। अक्षय और सैफ एक साथ 7 फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनमें 1994 में आई मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, ये दिल लगी, तू चोर मैं सिपाही, कीमत, आरजू और 2008 में आई तशन शामिल है। अब जब दोनों सितारे इतने सालों के बाद एक बार फिर से लौट रहे हैं, तो जाहिर है कि फिल्मी पर्दे पर धमाल तो होगा ही। उम्मीद यही है कि ये फिल्म सिनेमाघरों में नए रिकॉर्ड बनाएगी। रिलीज डेट का ऐलान हो चुका है, अब इंतजार है तो इस महामुकाबले के टीजर का। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर अमेरिका से, जहां आजादी की 225वीं वर्षगांठ का जश्न अभी से शुरू हो चुका है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इसकी धूम देखने को मिल रही है, आप भी देखिए।
2: सुहावनी मौसम में वॉशिंगटन डीसी के मशहूर फेरिस व्हील पर राइडिंग का रोमांच भला किसे नहीं आकर्षित करेगा। ये तस्वीरें वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल की हैं। यहाँ पर इन दिनों द ग्रेट अमेरिकन स्टेट फेयर चल रहा है। बड़ी तादाद में लोग इस मेले में मौज मस्ती करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि मौका खास है और ये मौका है अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने के जश्न का।
3: We're celebrating America, everything about America here. 250 years as a nation, we know it hasn't been perfect, but we're still here today because it's the greatest experiment in democracy that ever was.
2: 4 जुलाई 2026 को अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद अमेरिका के इतिहास में उत्सव का ये सबसे बड़ा मौका है, लिहाजा इस सिलसिले में शानदार जश्न पहले से ही शुरू हो चुका है। इस उत्सव को फ्रीडम 250 नाम दिया गया है।
3: We are one nation. We are celebrating America's 250th birthday as a nation. That's what we're all celebrating here. You can look to your left and look to your right, and you will probably meet someone with an opposing view on politics, but it doesn't matter because we're all here for the same reason. So that's kind of the beauty of this event.
2: ये उत्सव यूएस कैपिटल बिल्डिंग और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के दरमियान करीब 2.5 किलोमीटर के दायरे में चल रहा है। इस अवसर पर यहाँ अमेरिका के सभी राज्यों के पवेलियन लगाए गए हैं। 16 दिनों के इस समारोह में लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
1: भारत में हर साल लाखों परिवार काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। सरकार की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार जैसे पहल के बावजूद हजारों प्रवासी मजदूरों के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। इस गंभीर समस्या ने स्वयं सेवा संस्था आई लाइट ग्लोबल का ध्यान खींचा, जिसके बाद प्रवासी परिवार के बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनजीओ ने कदम उठाए। आई लाइट ग्लोबल की आज देशभर में 15 और गुरुग्राम में 3 शाखाएं हैं, जो वंचित प्रवासी बच्चों की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और भलाई के लिए काम कर रहा है। प्रवासी बच्चों को ध्यान में रखते हुए एनजीओ आई लाइट ग्लोबल ने 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी बाल दिवस के तौर पर इसको मनाने का फैसला किया और उम्मीद जताई कि इसे विश्व में पहचान मिले और दुनिया भर में इसे मनाया जाएगा। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी सभी पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
5: सूर्य के लिए किस समय दान करना उत्तम होता है, क्या शनि के लिए रात में दान किया जाता है, क्या मंगल के लिए दोपहर में दान करने से फायदा होता है, ग्रहों के लिए क्या और कब करें दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: TuneIn's got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
7: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president.
6: It was to live sports action.
8: To the near side corner, to wraparound, he scores!
6: And your favorite music.
9: You and I stargazing.
6: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
1: परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि 9 अलग अलग ग्रहों के लिए आप कौन सी चीज का दान करें और कब दान करें। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 जून 2026 दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग ग्रहों से संबंधित अगर आपके जीवन में समस्या है तो अलग अलग ग्रहों के लिए किस चीज का और कब दान किया जाए। सबसे पहले ग्रहों के दान की विशेष बात क्या है। देखिए, कोई भी ग्रह अगर कुंडली में समस्या दे रहे हों तो उनका दान करना उत्तम माना जाता है। आप जब ग्रहों का नाम लेकर के ग्रहों के लिए दान करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप उस ग्रह को अपने जीवन से दूर कर रहे हैं। और जब आप किसी ग्रह के लिए उस ग्रह के नाम से दान करते हैं तो उस ग्रह का असर जीवन से समाप्त हो जाता है। अब कोई ग्रह कुंडली का अच्छा ग्रह है, आपको जिंदगी में अच्छे परिणाम दे रहा है, आप उसी ग्रह के लिए दान करने लगेंगे तो उसका शुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जिस ग्रह का दान करना है सोच समझ कर करिए, उसी ग्रह के लिए सोच करके दान करिएगा जो ग्रह आपके जीवन में समस्या का कारण बन रहा है। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, काम में लापरवाही ना करें, महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, मानसिक चिंता आपकी दूर होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, काम की अधिकता रहेगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य के लिए किस चीज का और कब दान करना चाहिए। सूर्य देव के लिए अगर आप किसी वस्तु का दान कर रहे हैं तो रविवार दिन में दान करना चाहिए। और सूर्य देव के लिए तांबे के बर्तन, गुड़ या गेहूं के आटे का दान करना अच्छा होगा। जिन लोगों को हृदय रोग की शिकायत है उनको एक बार कुंडली दिखा करके सूर्य का दान अवश्य करना चाहिए। चंद्रमा का दान, चंद्रमा के लिए सोमवार की शाम को या सोमवार की रात को चंद्र ग्रह का नाम लेकर के दान करना चाहिए। और चंद्र देव के लिए, चंद्रमा के लिए दूध, चावल, चीनी, नारियल, चांदी का दान करना अच्छा होगा। जिन लोगों को मेंटल डिप्रेशन रहता है, मानसिक बीमारी रहती है, उनको एक बार सलाह लेकर सोमवार को चंद्रमा की वस्तुओं का दान करना चाहिए। मंगल का दान, मंगल के लिए मंगलवार के दिन में अगर आप दान करें तो बहुत अच्छा होगा। और मंगल के लिए गुड़ का, तांबे के बर्तन का, लाल वस्त्र का, तंदूर में पकाई गई चीजें जैसे बेकरी के बिस्किट वगैरह आते हैं, इनका दान आप कर सकते हैं। जिनको डर बहुत लगता हो, जिनका आत्मविश्वास बहुत कमजोर हो या जिनको बार बार चोट चपेट लगती हो, ऐसे लोग सलाह लेकर के नियमित रूप से मंगल का दान कर सकते हैं। आप चाहें तो गाय को गुड़ या लाल फल भी मंगलवार को खिला सकते हैं। सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें, संतान की चिंता हो सकती है, धन खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, करियर की समस्या हल होगी, लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में स्थिरता आएगी, धन का लाभ होगा, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब बात करते हैं बुध ग्रह के लिए क्या दान करेंगे। बुध ग्रह के लिए अगर आपको दान करना है, उसको शांत करना है, तो बुधवार को दिन के समय में दान करिएगा। बुध ग्रह के लिए बुधवार दिन में दान करें और बुध के लिए हरा फल या हरी सब्जियों का दान करना अच्छा होगा। बहुत सारे लोग हरी मूंग का दान भी करते हैं। आप चाहें तो बुध के लिए गाय को हरा चारा या पालक खिला सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन में, शिक्षा में बार बार बाधा आ रही है, तो ऐसी दशा में आपको सलाह लेकर बुध संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। बृहस्पति का दान। बृहस्पति ग्रह के लिए बृहस्पतिवार दिन में दान करिएगा और बृहस्पति के लिए केला, हल्दी, चने की दाल या गोल्ड, सोना या पीतल, इसके बने हुए चीजों का दान कर सकते हैं। बृहस्पति को अगर अनुकूल करना चाहते हैं और बृहस्पति को शांत करना चाहते हैं तो हर बृहस्पतिवार को किसी धर्म स्थान में जाकर, मंदिर में जाकर अगर केले का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर पेट की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं या कैंसर जैसी बीमारी ने आपको पकड़ रखा है तो इलाज चलने दीजिए, साथ में बृहस्पति ग्रह का दान नियमित रूप से करते रहिए। शुक्र का दान। शुक्र के लिए शुक्रवार की शाम को दान करना चाहिए शुक्र की वस्तुओं का। इसके लिए सफेद मिठाई, सफेद वस्त्र, सुगंध, दही, इसका दान आप कर सकते हैं। जिनके भी वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो, मैरिटल लाइफ में या लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो, ऐसे लोग शुक्रवार को अगर दही का नियमित रूप से दान करें तो उनकी ये मुश्किल समाप्त होगी, शुक्र के कष्ट जीवन से कम होंगे। धनु राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा दिख रहा है, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा, खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब बात करते हैं शनि की। देखिए, शनि देव के लिए अगर आपको दान करना है तो शनिवार की शाम को शनि देव की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। शनि देव के क्रोध को शांत करने के लिए, पीड़ा को कम करने के लिए काला चना, काली उड़द की दाल या सरसों के तेल का दान करें। आप चाहें तो शनि देव को शांत करने के लिए किसी निर्धन व्यक्ति को लोहे के बर्तन का दान भी कर सकते हैं। अगर आपके रोजगार में, खास तौर से नौकरी में, बार बार उतार चढ़ाव आता है, आपकी नौकरी में बार बार समस्या आती है, तो आप सलाह लेकर के शनि देव की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। राहु का दान। राहु के लिए शनिवार को मिश्रित अनाज का, चार पांच तरह की दालें मिला लें, उसका दान करें। पक्षियों को अगर आप दाना भी डालें, राहु से संबंधित पीड़ा कम होगी, राहु से संबंधित समस्या से छुटकारा मिलेगा। केतु का दान। केतु के लिए मंगलवार को धर्म स्थान में जाकर सेवा करिएगा। कोई भी मंदिर हो, हनुमान जी का हो, शिव जी का हो, सुबह जाके सफाई कराइए, रात में मंदिर बंद होते समय सफाई कर लें, वहां से गंदगी हटा दें, झाड़ू बहारू कर लें। अगर ऐसा आप हर मंगलवार के मंगलवार करें, केतु की पीड़ा कम होगी। इसके अलावा जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, सड़क के कुत्ते हैं, उनको रोटी, बिस्कुट, ब्रेड, दूध ये देना भी, खिलाना भी केतु की पीड़ा को कम कर देता है। अगर स्वास्थ्य की गंभीर समस्या से आप गुजर रहे हैं, सेहत में कोई गंभीर दिक्कत आ गई है, तो दोनों समय चंद्रशेखराष्टक का पाठ करिएगा। अगर चंद्रशेखराष्टक पढ़ पाना कठिन लगता हो तो आप मोबाइल पर लगाकर सुबह और शाम श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा और भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा, गंभीर से गंभीर बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कि आप स्टूडेंट हैं या पढ़ने लिखने का काम करते हैं, चीजें भूल जाती हैं, पढ़ाई में चीजों को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जितना जल्दी हो सके सूर्य देव को जल अर्पित करिए। अपनी पढ़ाई और काम करने के लिए एक ही स्थान रखिए। पढ़ने के स्थान के आसपास पढ़ाई के समय एक गिलास में या किसी पात्र में जल भरकर रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, आपकी एकाग्रता निश्चित रूप से बेहतर होगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
2: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: और अब खबर उन खास कुत्तों की जिन पर अमेरिका की पुलिस भी भरोसा करती है। अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप और आजादी के 250वें साल के जश्न की सुरक्षा के लिए कुत्तों के खास दस्ते को ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया। ट्रेनिंग पूरी होने पर वर्जीनिया में उन्हें सम्मानित भी किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में।
2: ये कुत्ते कमाल के, ये कुत्ते बड़े काम के हैं। ये विस्फोटकों और संदिग्ध वस्तुओं की पहचान करने में सक्षम हैं। हर खतरे को भांप लेने में माहिर हैं। अमेरिका के वर्जीनिया में अब ऐसे 6 कुत्तों की K9 टीम को खास प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया है, ताकि खास मौकों पर सुरक्षा के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जा सके। ये तस्वीरें अमेरिका की नेशनल K9 अकेडमी की हैं। यहाँ पर कड़ी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इन कुत्तों और इनके हैंडलर्स को कामकाज के लिए सर्टिफिकेट दिए गए।
3: So today was a graduation for both the K9 and myself. We went through a 3-month process, 7 days a week, 24 hours on, and we did a lot of training. And today we graduated.
2: इन कुत्तों और इनके हैंडलर्स को अमेरिका के ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायरआर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स की ओर से विस्फोटकों और दूसरी खतरनाक सामग्रियों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इस सिलसिले में इन्हें खास गंध को पहचानने की तकनीक सिखाई गई और साथ ही साथ सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए तैयार किया गया है, ताकि बड़े बड़े महत्वपूर्ण इवेंट्स का सुरक्षित आयोजन सुनिश्चित हो सके।
4: I think one of the really important things is these dogs are part of a larger security apparatus. So for these types of events, the dogs are there as kind of that initial detection phase, but they're also partnered up with, like I said, bomb technicians and explosive specialists. So once the dog alerts, that now becomes a bomb technician problem because it's a suspicious package. And so then we're going to have to back the dog out and everybody else out, and then the bomb techs can come in and do that work. But to me, it's just important to recognize that this is just one piece of a larger security apparatus that goes to secure these events that we often don't know.
2: फिलहाल इन कुत्तों में से 5 को अलग अलग शहरों में फीफा वर्ल्ड कप मैच की सुरक्षा के लिए तैनात किया जा रहा है, जबकि 1 को अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पर माउंट रशमोर में होने वाले राष्ट्रपति के कार्यक्रम से पहले जांच पड़ताल में मदद के लिए भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज डे।
1: और अब खबर चीन से। चीन की राजधानी बीजिंग में अब कमल का दुर्लभ फूल खिला है। कमल का फूल वैसे तो दुर्लभ नहीं है, लेकिन बीजिंग में खिला ये फूल दुर्लभ क्यों माना जा रहा है, ये जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट।
5: आपने देश दुनिया में बहुत सी जगहों पर नदी, तालाबों और झीलों में कमल खिले देखे होंगे, लेकिन कमल के इस फूल की तो बात ही निराली है। दावा किया गया है कि इस कमल की पैदाइश 800 साल पुराने बीज से हुई है और इसीलिए ये कमल का फूल बेहद खास है। यहाँ पर वनस्पति वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के एक दल ने लंबे समय से संरक्षित किए गए बीज से इस अनोखे फूल को उगाने में कामयाबी हासिल की। इसके लिए उन्हें 2 साल से ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, जो अब इस फूल के रूप में रंग लाई है। ये तस्वीरें बीजिंग के लियान हॉश पार्क में चल रहे लोटस कल्चरल फेस्टिवल की है। कमल के फूलों के इस उत्सव में 380 किस्मों के 7000 से ज्यादा कमल के फूलों की नुमाइश की जा रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर वाटर लिली की 60 प्रजातियों को भी प्रदर्शित किया गया है। लगभग 20,000 वर्ग मीटर इलाके में चल रहे इस उत्सव में फूलों की शानदार बहार दिख रही है, जो दूर दूर से आने वाले सैलानियों को लुभा रही है। फूलों का ये उत्सव शुक्रवार को शुरू हुआ था और अगस्त के अंत तक चलेगा, लिहाजा गर्मियों के दौरान यहाँ आने वाले लोगों को लगातार फूलों के दीदार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मजा लेने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
9: टीआईटी भोपाल, जेन जी'स गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
1: देव स्नान पूर्णिमा के मौके पर 29 जून को जगन्नाथपुरी में होगी स्नान यात्रा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को 108 कलशों के पवित्र जल से कराया जाएगा स्नान। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर हुआ मंथन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रबुद्ध जनों से की चर्चा, श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ शहर के ट्रैफिक प्लान पर हुई बात। मुंबई और उसके आसपास के लाखों यात्रियों के लिए गुड न्यूज, 29 जून से सेंट्रल रेलवे की 12 और लोकल ट्रेन्स बनेंगी एसी। लोकल के मुसाफिरों की यात्रा होगी अधिक सुगम और आरामदायक। गुजरात के 14 शहरों को मिली सुगम यातायात की सौगात, भारत टैक्सी ऐप का शुभारंभ। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में किया उद्घाटन। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। बोटानिकल गार्डन में 196 साल के सबसे उम्रदराज कछुए जोनाथन का दीदार किया।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी

0: जितनी तेजी से वक्त बदल रहा है उतनी ही तेजी से युद्ध के स्वरूप में भी बदलाव आ रहे हैं। मैदानी जंग में इंसानों की सीधे एंट्री की बजाय मशीनों को रणक्षेत्र में उतारने की तैयारी हो रही है। यही वजह है कि अनमैन्ड वेपन्स पर दुनिया का फोकस बढ़ा है। ऑटोनोमस मोड में काम करने के लिए ताकतवर हथियार तैयार किए जा रहे हैं।
1: भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट राइनो के तहत एक व्यापक अपग्रेड प्लान तैयार किया है। थल सेना अपने बेड़े में शामिल करीब 2400 पुराने हो चुके T-72 टैंकों को रिटायर करने या कबाड़ में बेचने के बजाय उन्हें अत्याधुनिक मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल में बदलने की योजना पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य T-72 टैंकों की सेवा अवधि को साल 2030 से 2040 के बाद तक बढ़ाना है।
0: आज के युद्ध क्षेत्र में इंसानों से ज्यादा आधुनिक मशीनों की भूमिका है। अब जंग सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से लड़ी जाती है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। युद्ध में मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि सिर्फ पारंपरिक हथियारों के भरोसे काम नहीं चलने वाला। इसी दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद T-70 टैंक्स को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। सेना अपने पुराने T-72 टैंक्स को एक डिजिटल और आधुनिक अवतार देने जा रही है। अब इन टैंक्स को IP बेस्ड इंटरफेस के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा।
2: इस प्रोजेक्ट के तहत एक मानव रहित टैंक का निर्माण किया जाएगा, जिसमें इंजन का संचालन रिमोट से होगा। जो तोप और हैवी मशीन गन है उसका भी संचालन रिमोट से होगा। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, यानी जैसे AI का जो इंटीग्रेशन करना है या IP का जो इंटीग्रेशन करना है वह शायद उतने सुचारू रूप से फिलहाल नहीं हो रहा है।
0: T-72 वही टैंक है जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा की है। अब ये 40 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में रिटायर होने के कगार पर खड़े T-72 टैंक को घातक रोबोटिक वॉरियर में तब्दील करने की बात हो रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि T-72 टैंक में बदलाव से क्या फायदा होगा, सेना की समग्र मारक क्षमता में कैसे इजाफा होगा। माइंस भरे इलाकों को तोड़ने में मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल की तरह T-72 का इस्तेमाल होगा, साथ ही दुश्मनों की गोलीबारी को आकर्षित करने के लिए डिकॉय के रूप में काम करेगा, जिससे सैनिकों की सुरक्षा बढ़ेगी। अग्रिम मोर्चे पर ऑपरेशंस पे ये अहम भूमिका अदा करेगा, यानी T-72 टैंक अग्रिम पंक्ति के हमलों का नेतृत्व करेंगे और टोही के साथ गश्त का काम बखूबी निभाएंगे। डिजिटल होने के बाद T-72 टैंक कमांड नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भेजेंगे, जिससे ऑपरेटर्स और कमांडर्स को युद्ध के बीच तुरंत निर्णय लेने में आसानी होगी। पहले की योजना के अनुसार T-72 टैंक्स को साल 2030 से धीरे धीरे सेना से बाहर किया जाना था, लेकिन अब इस नई ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इन टैंक्स की उम्र अगले 15 से 20 साल यानी साल 2045 से 2050 तक बढ़ जाएगी।
2: एक नॉर्मल कन्वेंशनल टैंक जैसे कि T-72 को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें इंजन वही रहता है, गियरबॉक्स भी वही रहता है, तोप भी वही रहता है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी वही रहता है। सिर्फ बदला किया जाता है, एक मानव रहित रोबोट जो है वो ड्राइवर की जगह ले लेता है, एक मानव रहित गनर है वो तोपची की जगह ले लेता है, और कमांडर की जो जगह है वो रिमोट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे बैठे हुए एक मानव कमांडर के हाथ में होता है। अब इन सब को करने के लिए जो रोबोट टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित कर ली है, लेकिन उसमें जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वह अभी तक आना बाकी है।
0: यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि आज के आधुनिक दौर में ड्रोन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और टॉप अटैक हथियारों ने पारंपरिक टैंक्स को बेहद असुरक्षित बना दिया है। ऐसे माहौल में टैंक के भीतर बैठे क्रू मेंबर्स की जान हमेशा खतरे में रहती है। भारत ने इस वैश्विक चुनौती का बेहद सटीक और किफायती समाधान ढूंढ निकाला है।
1: सेना अपने पुराने हो रहे T-72 टैंकों में एक विशेष ऑटोनॉमस किट फिट करेगी, जिससे कि इन्हें रिमोट कंट्रोल के जरिए या फिर पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड में ऑपरेट किया जा सकेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि टैंक के भीतर कोई सैनिक मौजूद नहीं होगा। टैंक AI की मदद से या फिर रिमोट से ऑपरेट होगा और ये अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ दुश्मन पर हमला भी करेगा।
0: एक पारंपरिक भारी भरकम मेन बैटल टैंक जैसे T-72 को मानव रहित रोबोटिक टैंक में बदलना इंजीनियरिंग का एक बेहद जटिल काम है। इसके लिए टैंक के पुराने मैनुअल सिस्टम को पूरी तरह हटाकर उसमें ड्राइव बाय वायर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाता है। टैंक को रोबोट बनाने के लिए उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाता, बल्कि उसमें एक विशेष रेट्रोफिट किट लगाई जाती है। इस किट के तीन मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है एक्चुएटर्स एंड सर्वो मोटर्स। टैंक के मैनुअल स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और गियर लीवर पर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर फिट किए जाते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मानव चालक के हाथ और पैर करते हैं। दूसरा है रिमोट गन कंट्रोल सिस्टम। 125 mm गन को मोड़ने, निशाना साधने और गोला दागने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगाई जाती हैं, जिन्हें मीलों दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है डिजिटल इंटरफेस। टैंक के पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम को ECU यानी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जो डिजिटल कमांड को मैकेनिकल मूवमेंट में बदल देता है।
2: खास बात है कि एक T-72 में आमतौर पर एक तीन लोगों का क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर। लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद इसमें जो रेट्रोफिट किट लगाया जाएगा, उसमें यह ड्राइवर का काम एक ऑटोमेटिक रोबोट करेगा। इसी तरह से जो ड्राइवर होगा उसको असिस्ट करने के लिए जो गनर है, जो टैंक का मेन तोप और हैवी मशीन गन फायर करता है, उस गनर को भी एक रोबोटिक गनर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी जो ट्रिगर प्रेस करने का काम है, जो निशाना लगाने का काम है, नया गोला तोप के चैम्बर में डालने का काम है, वो भी रोबोट्स के जरिए किया जाएगा।
0: रोबोटिक टैंक के अंदर कोई इंसान नहीं होता, इसलिए युद्ध क्षेत्र को देखने और समझने के लिए टैंक के चारों तरफ सेंसर्स का एक जाल बिछाया जाएगा। टैंक में लिडार और रेडार का इस्तेमाल होगा। ये सेंसर चारों ओर लेजर और रेडियो तरंगे भेजकर रियल टाइम में पूरे इलाके का एक 3D डिजिटल मैप तैयार करते हैं। इससे टैंक को पता चलता है कि आगे कोई खाई, चट्टान या दीवार तो नहीं है। टैंक में 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगाए जाएंगे, जो रात के अंधेरे, घने धुएं या कोहरे में भी दुश्मन की हलचल को साफ देख सकते हैं। AI सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में मिलाएगा, ताकि टैंक का कंप्यूटर एक सटीक फैसला ले सके। भारतीय सेना अपने टैंक्स को सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाना चाहती, क्योंकि युद्ध में दुश्मन सिग्नल जाम कर सकता है, इसलिए इसमें AI की मदद ली जाएगी। भारतीय सेना की अदिति 4.0 योजना के तहत देश के अग्रणी रक्षा स्टार्टअप्स इसी रोबोटिक किट और AI सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, ताकि हमारे T-72 टैंक्स को रिमोट कंट्रोल किलर मशीन्स में बदला जा सके।
1: मानव रहित टैंक को कंट्रोल करने के लिए युद्ध के मैदान से 5 से 10 किलोमीटर पीछे एक बख्तरबंद ट्रक के अंदर सैनिक सुरक्षित बैठता है। ऑपरेटर के सामने कई बड़ी स्क्रीन्स या VR हेडसेट्स होते हैं, जो कि ऐसा अनुभव देते हैं कि वो खुद टैंक के अंदर बैठा हो।
0: कंट्रोलर एक विशेष जॉयस्टिक, स्टीयरिंग व्हील और फायर बटन की मदद से टैंक को चलाता है और निशाना लगाता है। ऑपरेटर अपने कंट्रोल पैनल पर तय करता है कि उसे किस तरह का गोला दागना है। जैसे बख्तरबंद गाड़ियों के लिए APF-SDS पैदल सेना या बंकरों को तबाह करने के लिए हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल। ऑपरेटर जैसे ही बटन दबाता है, एक इंटरक्रिप्टेड डिजिटल सिग्नल टैंक के ECU यानी केंद्रीय कंप्यूटर को जाता है और फिर टैंक फायर कर देता है। सुरक्षा नियम कहते हैं कि गोला दागने का अंतिम फैसला हमेशा इंसानी ऑपरेटर का ही होता है। AI को खुद से फायर करने की अनुमति नहीं दी जाती।
2: अमेरिका, रशिया और इजराइल ने भी इस तरह के रोबोटिक टैंक्स बनाने की कोशिश की है, लेकिन इनमें से किसी भी देश में अभी तक जो प्रोटोटाइप बनाया गया है उसको ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी कि मास प्रोडक्शन के बाद उनकी आर्मी में इंडक्शन का कोई ऑर्डर नहीं मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि युद्धभूमि में ऐसा ना हो कि हमारा ही रोबोटिक टैंक गलती से हमारे ही टैंक या हमारे ही तोप की पोजीशन जो आर्टिलरी है या हमारी जो इन्फेंट्री ट्रुप्स युद्धभूमि में है उन पर फायर ना खोल दे। व्यवस्था ये की जाती है कि हमेशा जो ऑटोमेटिक लूप है उसमें मैन इन लूप हो, यानी फाइनल फायर करने की जो इजाजत है वो एक मनुष्य देगा।
0: T-72 टैंक को रिप्लेस करने की बजाय इसे अपग्रेड किया जा रहा है। आखिर दशकों पुराने इस टैंक में ऐसा क्या खास है कि इसे अपग्रेड कराने की तैयारी हो रही है और ये कितना घातक है ये भी जानना जरूरी है। भारत का T-72 टैंक अजय 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है, जो 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ने की ताकत रखता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत है कि ये रीस्टार्ट होने में महज 6 से 7 सेकंड

0: टैंक्स टू टैंक्स में जो मेन गन लगी है वो इंफ्रारेड फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है और रात के अंधेरे में भी दुश्मन के टैंक्स या दुश्मन की गन पोजीशन को 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी से देखकर एक्यूरेट फायर कर सकता है।
1: भारतीय सेना के पास T-72 टैंक के 3 वर्जन हैं, अजय MK-1, अजय MK-2 और कॉम्बैट इंप्रूव्ड अजय, जिनका भारत इस्तेमाल करता है। इस वक्त भारतीय सेना में करीब 2400 के आसपास T-72 अजय टैंक मौजूद हैं।
2: भारतीय सेना ने T-72 के आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट राइनो शुरू किया था। इसके तहत टैंकों में नए इंजन, आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम और बेहतर सुरक्षा प्रणाली लगाने की योजना है। साथ ही अदिति 4.0 पहल के तहत इन्हें भविष्य में मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म में भी बदला जा सकता है। सेना का मानना है कि इन सुधारों से T-72 टैंक आने वाले वर्षों में भी प्रभावी बने रहेंगे और भविष्य में फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के शामिल होने तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: भारत जहां अपने मौजूदा T-72 टैंक बेड़े को बदलने और AI रेट्रोफिट किट का शुरुआती परीक्षण करने के चरण में है, वहीं अमेरिका और रूस ने इस क्षेत्र में समर्पित नई पीढ़ी के प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए हैं और उनका लाइव बैटलफील्ड में परीक्षण भी किया जा चुका है।
2: आखिरी युद्ध में टैंक की क्या अहमियत है और इसकी जरूरत अब भी रणभूमि में क्यों महसूस की जाती है, इसे जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में चलना होगा।
1: प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के कई देश एक दूसरे को घुटनों के बल लाने के लिए रण क्षेत्र में उतरे हुए थे। तब पुराने जमाने की तरह ज्यादातर लड़ाई आमने सामने लड़ी गई। जितनी लड़ाई जमीन के ऊपर लड़ी गई उतनी ही जमीन के नीचे भी। कई कई किलोमीटर लंबी खाइयां खोदकर सैनिक उनमें मशीन गन से लैस होकर तैनात रहते थे। इन खाइयों को ट्रेंच कहा जाता है और इनके बीच होता था नो मैंस लैंड। तार बाड़ और लैंड माइन से भरी जमीन को पार करना यानी मौत को दावत देने जैसा था, इसीलिए तब लंबे समय तक ट्रेंच वॉर चलती रही। हर देश अपनी ट्रेंच के जरिए खुद की हिफाजत की पुख्ता व्यवस्था में जुटे थे। और इसी वजह से साल 2016 तक युद्ध फंसा ही रहा। ब्रिटेन और जर्मनी दोनों खेमों की सेना जहां जहां थी वहीं खड़ी की खड़ी रही, क्योंकि आगे बढ़ना मुश्किल था। और तभी आया एक ऐसा हथियार जिसने आने वाले तमाम युद्धों की तस्वीर बदल कर रख दी। यह हथियार था टैंक।
2: टैंक का नाम टैंक ही क्यों पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। जब ब्रिटेन टैंक को बना रहा था तो उसे डर था कि इस नए हथियार की जो जानकारी थी वो कहीं लीक ना हो जाए, इसलिए आधिकारिक फाइल्स में इस हथियार को टैंक लिखा जाने लगा ताकि अगर किसी को पता चले तो ये लगे कि ब्रिटेन पानी ले जाने के लिए किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जो कमेटी इसका काम देख रही थी उसे टैंक सप्लाई कमेटी या TS कमेटी कहा गया और जब फिर हथियार तैयार हो गया तब उसका नाम टैंक ही पड़ गया।
1: पहले विश्व युद्ध में बने टैंक प्रयोग के स्तर पर थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध आते आते टैंक्स फौज की जरूरत बन गए, या यूं कहें टैंक्स सेना का अनिवार्य हिस्सा बन गए। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने जब चंद दिनों में फ्रांस और पोलैंड पर अपनी जीत हासिल की तो उसकी सबसे बड़ी वजह उसके टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ही थे।
2: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टैंक की अहमियत बढ़ने लगी क्योंकि दुनिया के तमाम देशों ने आमने सामने की लड़ाई में टैंक की विध्वंसकारी ताकत को काफी करीब से महसूस कर लिया था और फिर दुनिया के कई देशों ने टैंक टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया। इनमें एक नाम भारत भी था।
1: लंबे समय तक

0: भारत अपने दोस्त सोवियत रूस से टैंक आयात कर अपनी जरूरतें पूरी करता रहा। फिर 1965 में भारत ने यूके की मदद से अपना एक टैंक बनाया जिसका नाम रखा गया विजयंत। इसका इस्तेमाल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किया गया। स्वदेशी ताकत को धार देने के लिए बाद में अर्जुन टैंक का निर्माण किया गया और अब इसी कड़ी में जोरावर का नाम भी जुड़ गया है। किसी भी टैंक की ताकत का आकलन उसकी मारक क्षमता, उसकी स्पीड और उसकी डिफेंस क्षमता से होती है। इसके लिए बैटल टैंक्स के कुछ इंडिकेटर होते हैं, उनके जरिए ही पता चलता है कि टैंक फौज की जरूरत के हिसाब से सही है या नहीं। ये इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। पहला इंडिकेटर वजन है, स्पीड है, पावर टू वेट रेशियो है, साथ ही हथियारों और डिफेंस मैकेनिज्म है जो ये बताता है कि आर्मर कैसा है टैंक का।
1: टैंक के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन, और ये तीनों बहुत जरूरी है। अगर आप देखें मोबिलिटी, तो वो दिखलाता है कि टैंक किस स्पीड से जा सकता है, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह में कम से कम समय में जा सकता है और अपने टारगेट को कितनी जल्दी जाके हिट कर सकता है, तो इसलिए मोबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार फायर पावर, जो फायर पावर है वो दिखलाता है कि आप किस हिसाब से अपने टारगेट को शॉर्ट शॉर्ट हिट कर देते हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी रेंज कितनी है। और जो तीसरा है आपकी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यह है कि आपको ये भी देखना है कि दुश्मन के जो एंटी टैंक वेपन है या दुश्मन के टैंकों से आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट हिट हो जाता है आपके टैंक में, तो आप के पास इतनी काबिलियत और क्षमता होनी चाहिए कि आपका टैंक उसको विस्टैंड कर ले। तो इसका मतलब चुबा आर्मर है, रिएक्टिव आर्मर है, तो इस टाइप का। तो ये कॉम्बिनेशन है इम्पोर्टेंट, एक टैंक के अंदर तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन। इसका कॉम्बिनेशन होना, इसकी ऐसा तरीके से होना कि इसका वेट भी ऑप्टिमम हो, इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो और फायर पावर भी बहुत ही एक प्रकार से अव्वल दर्जे की हो।
0: किसी अच्छे बैटल टैंक में दो काबिलियत अनिवार्य है, पहला मोबिलिटी और दूसरा फायर पावर। मोबिलिटी का मतलब टैंक की वो ताकत है जो उसे कहीं भी ले जा सकती है। आप देखिए, ट्रेंच वॉरफेयर की जगह पे ही टैंक्स आए थे, पक्की सड़क हो या फिर कई मीटर गहरा कीचड़, टैंक का काम है हर जगह से निकलना। जहां बड़े बड़े पहियों वाले ट्रक्स भी फंस जाते हैं, वहां से टैंक्स आसानी से निकल जाते हैं, जबकि टैंक में लोहे के रोड व्हील्स या कहिए उसमें लोहे के पहिए होते हैं, फिर भी वो धसते नहीं। वो कैसे? इसका सिंपल फिजिक्स है। टैंक के पहिए सीधे जमीन पर चलते ही नहीं है, टैंक्स अपने साथ अपनी सड़क भी लेकर चलते हैं, जिन्हें कहा जाता है ट्रैक। आमतौर पर लोग इसे टैंक की चेन कह देते हैं, लेकिन ट्रैक सही शब्द है। ट्रैक पर चलने का फायदा ये है कि टैंक का वजन जमीन के किसी एक हिस्से पर नहीं पड़ता है। टैंक का ट्रैक टैंक के वजन को एक बहुत बड़े सरफेस एरिया पर बांट देता है और इसलिए नम जमीन पर भी 50-50 टन के टैंक कभी धसते नहीं।
1: टैंकों के अंदर व्हील नहीं होते, क्योंकि व्हील जो है उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि रेतीले इलाके में, दलदल के इलाके में या टूटी फूटी जमीन में चल पाए। इसीलिए टैंकों के अंदर ट्रैक होते हैं और ट्रैक से काबिलियत बढ़ती है टैंक की। टैंक जो है एक प्रकार से रेतीले इलाके में भी जा सकता है और ऐसे इलाके में जा सकता है जहां पर दलदल हो या टूटी फूटी जमीन हो, इसीलिए टैंकों में ट्रैक होता है ना कि व्हील।
0: मौजूदा दौर में कई टैंक्स गहरे पानी तक को पार करने में सक्षम हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टैंक्स बिल्कुल भी फंसते नहीं। टैंक्स भी फंसते हैं, लेकिन ऐसा बेहद कम होता है।
2: टैंक्स को मैन्युवरल भी होना चाहिए और बढ़िया वेट टू पावर रेशियो भी होना चाहिए। मैन्युवरिंग मतलब टैंक कितनी चपलता या फुर्ती के साथ हरकत कर सकता है, गोला दाग कर कितनी जल्दी अपनी पोजीशन बदल सकता है। जाहिर है, टैंक भारी होगा तो उसे हरकत करने में काफी दिक्कतें आएंगी, लिहाजा टैंक के पास एक ताकतवर इंजन का होना जरूरी है।
0: टैंक का वजन और उसके इंजन की ताकत या पावर के बीच जो अनुपात होता है उसी को कहा जाता है पावर टू वेट रेशियो। जितना बेहतर पावर टू वेट रेशियो होगा उतना अच्छा टैंक हो सकता है।
1: तीन रिक्वायरमेंट है टैंक की, इसकी फायर पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसकी मोबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, इसकी प्रोटेक्शन भी, और तीनों का तालमेल होना चाहिए। देखो अगर आप प्रोटेक्शन देते हैं तो फिर इसका टैंक का एक प्रकार से वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है तो फिर मोबिलिटी कम हो जाती है और उसकी फायर पावर कैसी होगी वो भी दर्शाता है। तो एक अच्छे टैंक का पहचान यह है कि हर चीज अच्छी हो, उसकी फायर पावर भी बहुत अच्छी हो, वो उसके रेंज पे हिट कर पाए 100% अपने टारगेट को हिट कर पाए, और इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो कि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा पाए, और तीसरा है इसकी प्रोटेक्शन भी हो कि अगर दुश्मन का टैंक या एंटी टैंक वेपन हिट करता है तो वो उसे बचाव कर पाए। तो इन तीनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए कि ये ना हो कि टैंक इतना हैवी हो, इतना लाइट ना हो कि उसकी प्रोटेक्शन इतनी अच्छी ना हो या उसके अंदर फायर पावर इतनी अच्छी ना, तो तीनों का एक प्रकार संतुलन होना जरूरी है।
2: हमारे लिए यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
4: जाए। To timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: टैंक को ताकतवर बनाने में उसका फायर पावर भी अहम रोल निभाता है। टैंक की मारक क्षमता को बताने के लिए भी कई इंडिकेटर्स हैं। पहला है कैनन, यानी टैंक पर लगी तोप का साइज। कैनन का बोर जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा गोला दागने में टैंक सक्षम होगा, यानी जितना बड़ा कैनन होगा वो उतना इफेक्टिव हो सकता है। एक मिनट में कितने गोले फायर किए जा सकते हैं इस पर भी ध्यान दिया जाता है, यानी जितने कम समय में टैंक जितने ज्यादा गोले दागेगा उससे दुश्मन को बचने का वक्त भी कम मिलेगा, साथ ही उसे नुकसान भी काफी ज्यादा उठाना पड़ेगा।
2: दुनिया के अंदर जो पावरफुल टैंक हैं वो इस प्रकार से हैं कि यूनाइटेड किंगडम के जो हैं वो चैलेंजर 2 है, जर्मनी का है जो लेपर्ड 2, और इसी प्रकार अमेरिका इब्राहिम M1, और भारत का जो है वो T-90 टैंक है, और हमारे पास T-72 भी है, और अब विजेंद्रा बनाया हमने। मगर टैंक की पहचान है कि वो किस प्रकार से गोले दाग सके जल्दी से जल्दी और दुश्मन के टैंकों को बर्बाद कर पाए, तो ये सच्चाई है। आज की तारीख में जो कैनन है उसकी इम्पोर्टेंस दर्शाती है कि कितनी दूर तक उसके गोले जा सकते हैं और क्या उसकी एक्यूरेसी होगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये दिखलाना कि वो स्मूथ बोर है उसकी कैनन या नहीं है, मगर सच्चाई यह है कि टैंक की जो फायर पावर है वो दर्शाती है कि टैंक की ताकत कितनी है। तो इसीलिए जो मैंने बताया कि ये आज की तारीख में दुनिया के सबसे अच्छे टैंक हैं, इब्राहिम M1 अमेरिका का, लेपर्ड 2 जर्मनी का, और चैलेंजर 2 UK का, और भारत का T-90, T-72 और विजेंद्रा।

0: टैंक के लिए जितना अहम कैनन है उतना ही अहम है उसकी मैगजीन का साइज, यानी टैंक कितने गोले लेकर चल सकता है। ज्यादा गोले का मतलब युद्ध के मैदान में टैंक कितने समय तक दुश्मनों से मुकाबला कर सकता है और कितने तरह के गोले इससे दागे जा सकते हैं, इन बातों से टैंक की ताकत को परखा जाता है। आजकल के टैंक तो मिसाइल भी फायर करने में सक्षम हैं। अब टैंक के कितने हिस्से होते हैं और उसका काम और अहमियत क्या है ये भी जान लीजिए। टैंक के दो हिस्से होते हैं। टैंक के नीचे के हिस्से को हल कहा जाता है, वहीं ऊपर के हिस्से को टरेट कहते हैं। ये 360 डिग्री पर मूव कर सकता है। टरेट वाले एरिया में बैरल से लेकर मशीन गन और एंटी एयरक्राफ्ट गन तक लगी होती है, जिससे दुश्मनों से मुकाबला किया जाता है।
1: ये जो गन कंट्रोल सिस्टम होता है, जायरोस्कोपिक वेपन स्टेबलाइजर उसको बोलते हैं, इसका काम यह है कि एक रेफरेंस पॉइंट जो है उसको फिक्स करके उसके ऊपर ही वहीं पर गन को रखा जाए। तो ये एक सब टैंकों में यही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टैंक को तो ऊपर या नीचे उबड़ खाबड़ इलाके में चलना ही है, तो उसको एक पहले तो गन कंट्रोल सिस्टम जो है वो आता है और साथ ही साथ उसके फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी एक इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये जायरोस्कोप जो है वो मदद करती है कि इसको सिंक्रोनाइज करके एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पर जहां आपने फिक्स किया है वहां पर उसकी गन की बैरल को रखा जाए।
0: टैंक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि दुश्मन के रडार में आए बगैर मिशन को अंजाम तक पहुंचाए। खुला इलाका या रेगिस्तान में ये चुनौती काफी बढ़ जाती है। ऐसे में टैंक स्मोक डिस्चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। टैंक से निकलने वाले स्मोक से धुएं का बादल पसर जाता है, जिससे दुश्मन के लिए टैंक की सही पोजीशन ढूंढकर हमला करना मुश्किल हो जाता है।
1: जो स्मोक डिस्चार्ज किया जाता है, स्मोक ग्रेनेड होते हैं हमारे पास, वो स्मोक जो है वो डिस्चार्ज करने के दो पर्पस होते हैं। एक तो अगर टैंक जहां से फायर करता है और स्मोक डिस्चार्ज करके वो वहां से क्विकली गेट अवे करके दूर जा सकता है दुश्मन की नज़र को धोखा देके। दूसरी बात ये होती है कि दुश्मन का रडार या इंफ्रारेड रे से या किसी और तरीके से अगर आपकी पोजिशन ट्रेस करना चाहे तो ये ऐसे जो स्मोक स्क्रीन जो क्रिएट किया जाता है उससे उसको चीट किया जा सकता है या उसको मिस गाइड किया जा सकता है। तो ये स्मोक स्क्रीन जो है ये मदद करता है टैंक को अपने आप को दुश्मन की गन से या दुश्मन के अटैक से बचाने के लिए।
0: युद्ध के मैदान में टैंक्स के लिए एंटी टैंक माइंस का एक बड़ा खतरा माना गया है। पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत ने एंटी टैंक माइंस का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के कई टैंक्स को तबाह कर दिया था। अब दुश्मन के एंटी टैंक माइंस से बचने के लिए माइंस प्लगर का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के मेन बैटल टैंक अर्जुन मार्क 1 में इसका इस्तेमाल किया गया है। माइंस प्लगर के पास ही सेंसर लगा होता है, जिसकी मदद से माइंस को डिटेक्ट कर लिया जाता है और फिर प्लगर की मदद से उसे जमीन से उखाड़ दिया जाता है।
2: सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एंटी टैंक वेपन से भी खतरा होता है टैंक को, और दूसरा टैंक से एंटी टैंक माइंस। एंटी टैंक माइंस है जो दुश्मन लगाता है बैटलफील्ड में, और उसको बचने के लिए क्या किया जाए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से देखो कई तरीके हैं। एक तो है कि आप ट्रॉल लगती हैं टैंक के सामने, वो जो ट्रोल्स हैं वो जब चलती हैं तो आगे अगर एंटी टैंक माइन लगी है उसको उखाड़ देती है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल मॉडर्न आधुनिक चीजें आ गई हैं, केमिकल रिएक्टिव केमिकल भी एक प्रकार छटका जाता है, जिसके कारण जो भी एंटी टैंक माइन आगे लगी हैं वो सारी की सारी ब्लास्ट हो जाती हैं। मॉडर्न तरीके काफी आ रहे हैं, मगर ये सच्चाई है कि जो माइंस हैं एंटी टैंक माइंस वो टैंक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है बैटलफील्ड में। इसीलिए नए नए तरीके टैंक निकाले जाने हैं, जैसे कि ट्रॉल्स है वो कि एक प्रकार जो टैंक के आगे लगता है, जो अगर टैंक के आगे कोई माइन आती है तो उसको उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाता है, रास्ते में से दूर कर दिया जाता है टैंक के। और इसी प्रकार कुछ केमिकल्स भी हैं जो कि स्प्रे किए जाते हैं, जिसके कारण रिएक्शन होने से जो एंटी टैंक माइंस हैं वो पहले ही बास्ट हो जाती हैं टैंक के आने से पहले।
0: टैंक के क्रू मेंबर की हिफाजत के लिए एक तो इसके कवच को काफी मजबूत बनाया जाता है, साथ ही इस पर एक्सप्लोजिव भी लगाया जाता है जो दुश्मन के हमले से सुरक्षा मुहैया कराते हैं। टैंक्स के डिजाइन को लेकर भी खास सावधानी बरती जाती है, इसे कर्व जैसा आकार दिया जाता है ताकि गोली बेअसर साबित हो।
1: टैंक की आर्मर जो है ये एक्चुअली काफी मोटी होती है और आजकल कंपोजिट आर्मर जो है ना, सेल्फ रिपेयरिंग आर्मर्स वो भी आ गई हैं। होता यह है कि दो हार्ड जो फेसेस हैं उसके अंदर कंपोजिट बनाने के लिए उसके अंदर एक लो डेंसिटी वाला मटेरियल रखा जाता है। आइडिया ये है कि अगर कोई भी शेल आपके टैंक के ऊपर गिरे तो वो उसको पियर्स ना कर सके, उसके अंदर गोला करके उसके अंदर ना जा सके। तो इसके लिए कंपोजिट आर्मर और आज की टेक्नोलॉजी के युग में बहुत बढ़िया बढ़िया आर्मर। आइडिया ये है कि टैंक का वेट भी ना बढ़े, जितना आप इसका आर्मर को मोटा करेंगे उतना टैंक का वेट बढ़ेगा। तो इसलिए ये एक ट्रेड ऑफ होता है कि कितना आर्मर मोटा या अच्छी क्वालिटी का ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाए कि जो लाइट भी हो, टैंक की वेट को ना बढ़ाए और उसी तरीके से ये दुश्मन के गोले को या उसको भी बर्दाश्त कर सके।
0: टैंक के मेन गन से एम्यूनेशन यानी गोला फायर किया जाता है। इसे फायर करने के दौरान बैरल काफी गर्म हो जाता है, साथ ही बड़ी मात्रा में धुआं और जहरीली गैस निकलती है। ऐसे में खतरा ये रहता है कि बैरल के जरिए धुआं वापस टैंक के अंदर दाखिल ना हो जाए, लिहाजा बैरल में एक इवैक्यूएटर बना होता है जो धुआं और जहरीली गैस को वापस लौटने से रोक देता है। ताकतवर टैंक्स की बेहतरीन खूबियों को समेटे है भारत का माउंटेन टैंक जोरावर। हल्का होने की वजह से इसे उठाकर कहीं भी पहुंचाया जा सकेगा। फिलहाल तो भारतीय सेना के पास T-72, T-90 भीष्म या फिर स्वदेशी अर्जुन टैंक की टोली है। ये सभी टैंक 45 टन से ज्यादा वजनी हैं, जिन्हें LAC पर पहुंचने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि भारतीय सेना हल्के टैंक चाहती है। जोरावर टैंक का वजन करीब 25 टन है। इसमें 105 मिलीमीटर कैलिबर की गन लगी है, जिससे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी जा सकती हैं। इसमें मॉड्यूलर एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर और एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है जो इसे हमलों से सुरक्षित रखता है। बेहतर मोबिलिटी के लिए इसमें कम से कम 30 HP टन का पावर टू वेट रखा गया है, यानी हर एक टन पर 30 हॉर्स पावर की ताकत। जोरावर टैंक -10 डिग्री से लेकर 42 डिग्री की चढ़ान या ढलान पर चढ़ उतर सकता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 65 किलोमीटर प्रति घंटा।
3: तो ये एक बहुत ही आधुनिक मशीन है। इसके जो सर्वेलेंस सिस्टम्स है इसमें हम कहते हैं सी थ्रू आर्मर, जहां जो व्यक्ति अंदर बैठा है उसको बाहर का पूरा 360 डिग्री अवेयरनेस होगा। इसमें ड्रोन सिस्टम भी इंटीग्रेट किए गए हैं। इसकी जो फायरिंग कैपेबिलिटी है ये हाई एंगल में भी फायर कर सकता है। तो इसमें बहुत से आधुनिक कैपेबिलिटीज इसमें बिल्ड की गई है। आप जो इसकी मोबिलिटी देखते हो, ये पावर पैक है, ये इसकी पावर टू वेट रेशो 30 से ज़्यादा है। इसमें रबर के ट्रैक्स हैं ताकि इसकी जो राइड क्वालिटी है बहुत ही स्मूथ हो। इसकी एजिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये सैंड ड्यून भी चढ़ पाएगा, ये माउंटेन्स में भी हम इसको ले पाएंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत के हजीरा में LNT प्लांट में जोरावर टैंक का जायजा लिया। ये भारतीय सेना के लिए सबसे नया टैंक है। साल 2024 में जोरावर का प्रोटो वर्जन दुनिया के सामने आया था और जोरावर का फिलहाल ट्रायल जारी है। DRDO के अनुसार अगले साल यानी 2027 तक भारतीय सेना को पूर्वी लद्दाख में तैनात करने के लिए ये टैंक मिल जाएगा।
4: ये देखिए, यूजर ट्रायल्स यूजुअली समर ट्रायल्स रहते हैं, फिर विंटर ट्रायल्स रहते हैं, फिर हाई अल्टीट्यूड ट्रायल्स भी रहेंगे, फिर मेंटेनेंस ट्रायल्स रहते हैं, DGQA ट्रायल्स रहते हैं। तो ये एक डेढ़ साल तो चलेंगे, उसके बाद फिर एक्विजिशन प्रोसेस शुरू होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2-2.5 साल में ये फर्स्ट प्रोडक्शन मॉडल रेडी रहेगा इंडक्शन के लिए। सो 2027 में पहला टैंक इंडक्ट हो सकता है।
0: भारत की चीन के साथ करीब 3,500 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो लद्दाख से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक आती है। ये इलाके काफी ऊंचाई पर मौजूद हैं, यहाँ सेना के लिए चुनौतियाँ काफी बड़ी हैं। चीन ने लद्दाख सेक्टर में अपनी सीमा की तरफ ZTZ-04A और टाइप 15 लाइट टैंक तैनात कर रखे हैं, जो 33 टन से कम वजन के हैं। उन्हें आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकता है। भारतीय सेना के पास भी अब लाइट वेट टैंक आने वाला है, जिससे माउंटेन वॉर में बढ़त हासिल होगी। शुरुआत में सेना को 59 टैंक दिए जाएंगे, जिनकी संख्या 354 तक ले जाने की प्लानिंग है।
2: हैवी टैंक हैं वो पहाड़ी इलाकों में नहीं चल सकते, और जिस प्रकार से आपके लद्दाख का एरिया है भारत के अंदर, वहां पर हम T-72 और T-90 जिसको हैवी टैंक बोलते हैं उनको लेके गए हैं, मगर वो इतनी जोरों से वहां नहीं चल सकते क्योंकि वहां पर उबड़ खाबड़ जमीन है, पहाड़ी इलाका है, उसके लिए लाइट टैंक चाहिए। तो लाइट टैंक का होना बहुत जरूरी है। लाइट टैंक है जो 25 टन और उससे कम हो, और वो एक प्रकार स्पीड ज्यादा हो, और जिस प्रकार से अभी भारत ने जोरावर टैंक बनाया है, जोरावर टैंक है उसकी खसूसियत ये है कि लाइट टैंक है, उसकी मोबिलिटी बहुत है और उसको हाई अल्टीट्यूड में ले जाना बड़ा आसान है। कि C-17 ग्लोब मास्टर से 2 टैंक एट अ टाइम जा सकते हैं, और इसकी एक खसूसियत ये भी है जो जोरावर टैंक है, जो लाइट टैंक होते हैं, कि उसकी जो बैरल है और उसकी जो गन है वो हाई एंगल फायर कर सकती है। इसका मतलब वो जो आर्टिलरी फायर करती है वैसा ही फायर टैंक से भी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके पास जो लॉटरिंग म्यूनिशन होता है, जो फायर होता है, वो म्यूनिशन इस टाइप का होता है कि दुश्मन के टैंक को 100% हिट करता है या दुश्मन के टारगेट को 100% हिट करता है। और ये जो जोरावर टैंक अभी भारत खुद बना रहा है, ये DRDO एंड LNT जो है मुल्क के बनाए हैं। अभी एक टैंक प्रोटोटाइप बना दिया है, उसकी अभी जो फील्ड ट्रायल के लिए जा रहा है टैंक, ऐसा लगता है कि 2028 तक जो जरावर टैंक है भारत की फौज के अंदर इंडक्ट होंगे।
0: हल्के टैंक्स में भारी टैंक की तरह ही फायर पावर तो होगा ही, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ ड्रोन इंटीग्रेशन और हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस जैसी तकनीक भी होंगी, जो ऊंचे पहाड़ों से लेकर दर्रों तक से आसानी से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे।
5: भारत के पास ताकतवर टैंकों की टोली है, जिनमें एक नाम T-90 भीष्म। इसकी गिनती दुनिया के बेहतरीन टैंकों में होती है। भीष्म का प्राइमरी वेपन है 125 mm की कैनन, जो कि अलग अलग तरह के गोले दागने में सक्षम है, जिनमें मिसाइल दागने की क्षमता इसे खास बनाती है।
0: बंजर रेगिस्तान में जहां सड़क का नामो निशान नहीं होता, वहां भी T-90 तूफानी रफ्तार से दौड़ता है। T-90 टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसकी रेंज करीब 550 किलोमीटर है। ये 6-8 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह करने की ताकत रखता है। करीब 50 टन के भीष्म को ताकत मिलती है अपने शक्तिशाली इंजन से। इसकी बदौलत चाहे पहाड़ हो या खाई, वो सब कुछ पार कर सकता है।
5: T-90 भीष्म टैंक में लगे कैटरपिलर ट्रैक्स इसके भारी वजन को बड़े सरफेस एरिया में बांट देते हैं, जिसकी वजह से ये रेत या फिर दलदल में भी आसानी से चल सकता है। यहाँ तक कि पानी भी इसकी राह में रोड़ा नहीं अटका सकता। 5 मीटर गहरे पानी को पार करने की ताकत है T90 टैंक के पास।
0: T90 भीष्म टैंक को रोकना असंभव है। जमीनी जंग का महाबली रात के अंधेरे में भी हमला करने में सक्षम है। T90 टैंक को पहाड़ी सीमाओं का सबसे बड़ा रखवाला कहा जाता है, जिससे पंगा लेना चीन और पाकिस्तान के बस की बात नहीं। T90 भीष्म 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है। ये 1 मिनट में 7 राउंड फायर करने की ताकत रखता है। थर्मल इमेजर की मदद से अंधेरे में हमला करने में सक्षम है। लेजर गाइडेड INVAR मिसाइल सिस्टम से लैस T90 में परमाणु हमले में बचाव की क्षमता है।
1: ये एक थर्ड जनरेशन का टैंक है जो कि T72 को रिप्लेस कर रहा है। इसका रेंज तकरीबन 5 किलोमीटर तक है और ये पानी के अंदर भी 5 मीटर तक जाके इसको तैयार किया जा सकता है कि उसके अंदर भी जा सके। इसके अंदर 120 मिलीमीटर जो है ये स्मूथ बोर गन है। गन या राइफल्ड होती है या स्मूथ बोर होती है, तो ये एक्यूरेसी को ध्यान करते हुए इसमें स्मूथ बोर गन लगाई गई है। और इसका इंजन जो है वो इस तरह का है कि इसकी पावर टू वेट रेशो काफ़ी हाई है। तो ये एक बढ़िया टैंक है और पूरी दुनिया में ये टैंक माना जाता है कि एक अच्छा टैंक है जो भारत के पास है। और आवड़ी में हम इसको मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं रशिया के साथ मिलके। ये T54, T55, T64, T72 वाली जो सीरीज है उन टैंकों के साथ ये आके T90 टैंक जो है बना, जैसे चाइना के पास T99 टैंक भी है।
0: T90 टैंक को 3 हाईली ट्रेन जवान कंट्रोल करते हैं। ड्राइवर, कमांडर और गनर के तालमेल से जमीनी जंग का ये जंगबाज रणभूमि में गरजता रहता है। टैंक ऑपरेट कर रहे लोगों की हिफाजत करता है टैंक के ऊपर लगा बेहद ही मजबूत कवच।
5: T90 टैंक दुश्मन के एंटी टैंक मिसाइल को भी नाकाम करने की ताकत रखता है। T90 टैंक भीष्म के आर्मर की परत करीब 20 इंच मोटी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, भीष्म लैस है थर्ड जनरेशन के एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर से। इन प्लेट्स में ऐसे एक्सप्लोसिव लगे हैं जो कि दुश्मन की गोली लगने पर बाहर की तरफ फटते हैं, जिससे हमला बेअसर हो जाता है।
0: T90 टैंक भीष्म 360 डिग्री घूमकर हमला कर सकता है। इसकी सबसे खास बात ये कि 360 डिग्री घूमने के बावजूद टैंक के अंदर बैठा हर क्रू मेंबर अपनी पोजीशन बनाए रख सकता है। भीष्म की डिजाइन ऐसी की गई है कि हल, टरेट और एंटी एयरक्राफ्ट गन एक दूसरे से अलग अलग दिशाओं में मूवमेंट कर सकते हैं। T90 टैंक की एक और खासियत ये भी है कि ये हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने में सक्षम है। हवाई खतरों से निपटने के लिए इस टैंक में सबसे ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी है। इसे मैन्युअली और रिमोट दोनों तरह से चलाया जा सकता है। T90 भीष्म में 12.7 mm की बुलेट्स लगी हैं, जिसकी मदद से ये 2 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन के हेलीकॉप्टर को तबाह करने में सक्षम है। भीष्म में लगी गन 1 मिनट में 800 गोलियां फायर कर सकती है। इसके अलावा ये एंटी टैंक मिसाइल दागने में भी सक्षम है और वहीं इस पर केमिकल और रेडियो एक्टिव हमला बेअसर साबित होता है। पूर्वी लद्दाख में चीन और उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों की गुस्ताखियों को देखते हुए भारत कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता, क्योंकि चीन पर भरोसा करने का मतलब 1962 की गलती को दोहराने जैसा होगा। लिहाजा हिंदुस्तान लगातार अपनी युद्ध क्षमताओं को धार दे रहा है। आत्मनिर्भर भारत की नई धमक और स्वदेशी का दम खम रखने वाला अर्जुन टैंक दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। MBT अर्जुन टैंक भारतीय सेना की वो स्वदेशी शान है जो रण क्षेत्र में उतर जाए तो मोबिलिटी में उसका कोई मुकाबला कर नहीं सकता। अर्जुन टैंक कई मामलों में पाकिस्तान के टैंक से बेहतर है, क्योंकि इसका जर्मन इंजन बेहद शक्तिशाली है। अर्जुन टैंक अगर आग उगलने लगे तो जमीन से आसमान में 3 से 4 किलोमीटर तक दुश्मन फटकने का साहस भी नहीं कर सकता। अर्जुन टैंक आज ऐसी स्वदेशी तकनीक से लैस है कि दुश्मन के बड़े से बड़े हमले के खिलाफ ये खुद को महफूज रखने में माहिर है।
5: डीआरडीओ ने सीवीआरडी के साथ अर्जुन मेन बैटल टैंक परियोजना की शुरुआत साल 1972 में की थी। इसका उद्देश्य बेहतरीन मारक क्षमता, हाई स्पीड और बेहतरीन सुरक्षा वाला बैटल टैंक तैयार करना था। इसके उत्पादन की शुरुआत 1996 में हुई थी। अर्जुन MK-1A की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें इस्तेमाल करीब 54% उपकरण स्वदेशी हैं, जबकि पिछले संस्करण में ये 41% थे।
0: भारतीय सेना के बेड़े में 124 अर्जुन टैंक्स की एक रेजिमेंट साल 2004 में शामिल की जा चुकी है, जो पश्चिमी रेगिस्तान में तैनात है। अर्जुन टैंक के दो वेरिएंट्स हैं, पहला MK-1 और दूसरा MK-1A। आकार में MK-1 MK-1A से थोड़ा छोटा है। थर्ड जनरेशन के अर्जुन बैटल टैंक में 120 mm की बंदूक लगी है। इसके दोनों वर्जन एक मिनट में 6 से 8 राउंड फायर करने की ताकत रखते हैं। अर्जुन MK-1A टैंक की स्पीड करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज है 450 किलोमीटर। अर्जुन टैंक में लगा ट्रांसमिशन सिस्टम पहले से ज्यादा बेहतर है। ये ग्रेनेड और मिसाइल्स के हमले ज्यादा मजबूती से झेल सकता है। रासायनिक हमले से बचाने के लिए इसमें खास सेंसर लगाए गए हैं। इसका कंचन मॉड्यूलर कंपोजिट आर्मर इसे एंटी टैंक हथियारों से चारों तरफ से सुरक्षा देता है।
5: अर्जुन टैंक में रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम, एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम भी लगा है। इसमें लगा लेजर वार्निंग सिस्टम पता लगा लेता है कि कहां से और किस तरह की वार्निंग यानी कि चेतावनी आ रही है, कहां से हमला हो सकता है, लिहाजा दुश्मन से संभलने का मौका मिल जाता है।
0: अर्जुन टैंक में फिन स्टेबलाइज्ड पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सेबर्ड गोला बारूद है। ये तकनीक दुश्मन के टैंक पर कम समय में और सटीक निशाना लगाने में मददगार होती है। वैसे तो भारत में युद्धक टैंकों का इस्तेमाल ज्यादातर राजस्थान और पंजाब में ही होता है, लेकिन चीन के साथ ईस्टर्न लद्दाख में गतिरोध के बीच जब से चीन ने सीमा पर अपने टैंक्स का बेड़ा तैनात किया है, तब से भारत ने भी अपने विध्वंसक टैंक्स को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ईस्टर्न लद्दाख में तैनात कर दिया है, जिसके बाद से दुश्मन की बोलती बंद है।
5: तो इसी के साथ रणक्षेत्र में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: Die Hard Music Fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
11: अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: कौन से ग्रह का दान रात के समय में करना अच्छा होता है? किस ग्रह का दान करने से रोजगार की रुकावट दूर हो जाती है? और कौन से ग्रह के लिए गाय को हरा चारा खिलाने से फायदा होता है? किस ग्रह के लिए क्या करें दान, कब करें दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
2: खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाओ, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाओ, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाओ, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन, टीआईटी भोपाल, जेन जी'स गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
9: देव स्नान पूर्णिमा के मौके पर 29 जून को जगन्नाथपुरी में होगी स्नान यात्रा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को 108 कलशों के पवित्र जल से कराया जाएगा स्नान। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर हुआ मंथन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रबुद्ध जनों से की चर्चा, श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ शहर के ट्रैफिक प्लान पर हुई बात। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों यात्रियों के लिए गुड न्यूज, 29 जून से सेंट्रल रेलवे की 12 और लोकल ट्रेन्स बनेंगी एसी, लोकल के मुसाफिरों की यात्रा होगी अधिक सुगम और आरामदायक। गुजरात के 14 शहरों को मिली सुगम यातायात की सौगात, भारत टैक्सी ऐप का शुभारंभ, गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में उन्होंने किया उद्घाटन। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, बोटानिकल गार्डन में 196 साल के सबसे उम्रदराज कछुए जोनाथन के दीदार किए।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो

पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उसने क्रिकेट के मैदान पर करिश्माई पारियां खेलकर क्रिकेट प्रेमियों के साथ ही देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाली जूरी का भी दिल जीत लिया। इसलिए क्रिकेट के उस मसीहा को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। ये वो शख्स हैं जिसने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के साथ ही ICC चैंपियंस ट्रॉफी का भी चैंपियन बना दिया।

0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा खेल क्रिकेट।
1: आप समझ ही गए होंगे कि आज बंदे में है दम का बंदा कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के हिटमैन यानी कि विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। जी हां, भारतीय क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी बहुत कम हुए हैं जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के चंद उन्हीं चुनिंदा खिलाड़ियों में से शुमार हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया एक से ज्यादा बार विश्व चैंपियन बन चुकी है। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया कम से कम फटाफट फॉर्मेट में कमोबेश अपराजेय बनी रही। ये क्रिकेट के दो फॉर्मेट T20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं लेकिन वनडे में अभी भी दमदार पारियां खेल रहे हैं।
0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा खेल क्रिकेट।

0: 23 जून रोहित शर्मा के जीवन की सबसे यादगार तारीख बन चुकी है। 23 जून ही वो तारीख है जब रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला कदम रखा था। रोहित ने 23 जून 2007 को आयरलैंड के बेलफास्ट में खेले गए एक वनडे मैच से भारत के लिए डेब्यू किया था। रोहित की किस्मत का 23 जून कनेक्शन देखिए कि इंटरनेशनल डेब्यू के 19 साल बाद 23 जून को ही रोहित शर्मा को चौथे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।

0: दरअसल 19 साल के अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में रोहित ने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किए जाने के वाजिब हकदार बन गए। सिर्फ बतौर बल्लेबाज ही नहीं, बतौर कप्तान भी रोहित के नाम कई कीर्तिमान दर्ज हैं। हालांकि रोहित को एक बात का अफसोस भी रहता है कि साल 2023 के वर्ल्ड कप में वो विश्व विजेता बनने की दहलीज तक पहुंचकर कप उठाने से वंचित रह गए थे। तारीख थी 19 नवंबर 2023, स्थान था अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया के मुकाबिल था ऑस्ट्रेलिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत विश्व विजेता बनते बनते रह गया था। एक हुक, एक कसक, एक टीस थी जो रह गई थी कप्तान रोहित शर्मा के मन में। 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित ने अपनी रहनुमाई में उस हुक को, उस टीस को, एक हुक, एक कसक, एक टीस थी जो रह गई थी कप्तान रोहित शर्मा के मन में 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित ने अपनी रहनुमाई में उस हुक को, उस टीस को, उस कसक को, उस पीड़ा को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जश्न में तब्दील कर दिया। तब होली से पहले पूरे देश में दिवाली की रौनक नुमाया हो गई थी। लीडर अगर सेल्फलेस हो, निस्वार्थ हो, भेदभाव रहित हो, तो उसकी टीम की जय निश्चित हो जाती है, क्योंकि लीडर जब सेल्फलेस होता है तो पूरी टीम जीत को लेकर जुनूनी हो जाती है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा निसंदेह इसी कैटेगरी के लीडर रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित ने 76 रनों की जो पारी खेली थी, उसने कीवियों के हौसले को ऐसा पस्त कर दिया था कि मैदान पर मचलने के सिवा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। दरअसल जीत के लिए संघर्ष करते कीवियों को शायद पता नहीं था कि क्रिकेट के मैदान के इस युगांधर ने दुबई रवाना होने से पहले ही अपने बचपन के कोच दिनेश लाड से ये वादा किया था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का कप लेकर ही वापस लौटेगा।
1: रोहित ने मुझे जाने के वक्त मुझे कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग जीत के आएंगे, तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप के लिए गया था तभी भी मुझे कहा था उसने, मैं चैंपियंस T20 वर्ल्ड कप आपको लेके दिखाऊंगा, आपको गुरुदक्षिणा दूंगा, ये मुझे सेकंड गुरुदक्षिणा दी ऐसे मैं कहूंगा।
0: इस तरह का चट्टानी आत्मविश्वास युग पुरुष का ही होता है, और जब लीडर का, रहनुमा का आत्मविश्वास आसमानी होता है तो पूरी टीम जीत के विश्वास से भर जाती है। यही वजह है कि 2 साल में लगातार 2 ICC खिताब जीतने वाले रोहित दुनिया के पहले कप्तान हैं। 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी का विश्व चैंपियन बनने से पहले 19 जून 2024 को बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से शिकस्त देकर रोहित की सेना T20 वर्ल्ड कप की विजेता बनी थी। अपनी कप्तानी में रोहित शर्मा की ये पहली खिताबी ICC ट्रॉफी थी। लिहाजा जीत के बाद मैदान का ये तूफान इतना भावुक हो गया कि केंसिंगटन ओवल की पिच की मिट्टी को प्रसाद मानकर अपनी जिह्वा पर रख लिया। रोहित के इस भावनात्मक उद्गार को पीएम मोदी ने भी देखा था, इसीलिए चैंपियंस का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी ने जब रोहित की विजेता ब्रिगेड को पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर आमंत्रित किया, तो उस घटना का जिक्र करना नहीं भूले।
2: कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है, और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चूमा, ये कोई हिंदुस्तानी ही कर सकता है।
3: जहाँ पर हमें वो विक्ट्री मिली उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस, क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया।
0: क्रिकेट के मैदान पर विरोधी टीम के गेंदबाजों की खाट खड़ी कर देने वाला ये इंसान इतना ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, इसकी तो किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। बहरहाल 2 साल में 2 ICC टूर्नामेंट की खिताबी जीत से ज्यादा बड़ी है रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया की अपराजेयता। आईसीसी टूर्नामेंट में रोहित की कप्तानी का रिकॉर्ड अपने आप में अद्वितीय रहा है। इस युगांधर की कप्तानी में 2023 विश्व कप के फाइनल को छोड़कर टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट्स का अपना एक भी मैच नहीं हारी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल समेत रोहित की सेना ने कुल 5 मैच खेले और 5 में जीत हासिल की। 2024 T20 विश्व कप में भी टीम इंडिया ने फाइनल समेत 8 मुकाबले खेले थे और सभी में जीत दर्ज की थी। वर्ल्ड कप 2023 में भी रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल छोड़कर कुल 10 मैच खेले थे और सभी में जीत हासिल की थी। रोहित की लीडरशिप का कमाल ये है कि आईसीसी टूर्नामेंट में उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने कुल 23 मुकाबले खेले और इनमें से 22 में जीत दर्ज की। ये है इस बेमिसाल लीडर का रिकॉर्ड। दरअसल रोहित शर्मा जब मैदान पर होते हैं तो पूरी टीम निर्भय होकर मुकाबला करती है, क्योंकि रोहित का बल्ला जब चलता है तो विरोधियों की पेशानियों पर सिर्फ चिंता की लकीरें होती हैं। यही वजह है कि रोहित के प्रति क्रिकेट प्रेमियों की दीवानगी जुनून की हदें पार कर जाती है। हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमियों का अब बस एक ही सपना है, साल 2027 में साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप में भारत को अपनी बैटिंग के दम पर तीसरी बार विश्व चैंपियन बनाकर ही रोहित वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करें। इसीलिए 39 साल के हो चुके रोहित शर्मा के साल 2027 वर्ल्ड कप से पहले रिटायरमेंट की चर्चा बेमानी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी यही चाहते हैं कि रोहित ने जैसे टीम इंडिया को T20 का विश्व विजेता बनाने के बाद 2020 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया, उसी तरह 2027 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाकर ही वनडे क्रिकेट को अलविदा कहें। रोहित की तरह का क्रिकेटर युगों में

0: वर्तमान का एक छोटा सा टर्न कई बार भविष्य की पूरी तस्वीर बदल देता है। रोहित शर्मा इस बात की सबसे बड़ी मिसाल हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो रोहित शर्मा आज इंटरनेशनल क्रिकेट में हिटमैन के नाम से विख्यात हैं, वो बल्लेबाज की जगह गेंदबाज बनना चाहते थे। रोहित अपनी टीम के ऑफ स्पिनर थे और बॉलिंग की ही नट प्रैक्टिस करते थे, लेकिन दाद देनी होगी रोहित के कोच दिनेश लाड की, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे बैटिंग क्लास को महसूस कर लिया। अगर दिनेश लाड ने रोहित को बैटिंग करने के लिए प्रेरित न किया होता तो शायद टीम इंडिया को इतना बेहतरीन हिटमैन नहीं मिला होता।
1: कभी बैट्समैन नहीं था। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया अपने स्कूल के लिए, मैं एज अ बॉलर सिलेक्ट हुआ था, ऑफ स्पिन बॉल डालता था। तो कुछ महीनों के बाद मेरे जो कोच है दिनेश लाड जी, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला, यार तेरे को बैटिंग में भी फोकस करना चाहिए, हमें टीम को ऑलराउंडर की जरूरत है। और उन्होंने मेरा बैटिंग देखा और मुझे 7-8 नंबर पर बैटिंग करने का मौका दिया। और जब मैं बैटिंग करने गया तो मैंने कुछ 30-40 रन बनाए नीचे 7-8 नंबर पे, उनको अच्छा लगा।
2: उसी अंदाज में जो आजकल बनते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, उसी अंदाज में छक्के चौके ऐसे ही लग रहे थे। तो मेरे सर जो थे काफ़ी खुश हुए, उन्होंने बोला, उन्होंने एक बार मुझे ऊपर बैटिंग करने का अपॉर्चुनिटी दिया और उस टाइम मैंने 140 रन बनाए।
0: दरअसल रोहित के क्रिकेट करियर का आगाज मुंबई के बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन से हुआ। रोहित इस एकेडमी की तरफ से खेलते थे और ऑफ स्पिनर बनना चाहते थे। इसी दौरान किसी मैच में स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल के कोच दिनेश लाड की नजर रोहित पर पड़ी। तब उन्हें अपने स्कूल की टीम के लिए अच्छे उदीयमान खिलाड़ियों की तलाश थी। रोहित की स्पिन गेंदबाजी दिनेश लाड को पसंद आई और उन्होंने रोहित को विवेकानंद स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। काबिले गौर है कि तब स्कूल की फीस 275 रुपए प्रति महीने थी और रोहित के पेरेंट्स के लिए इस फीस का इंतजाम कर पाना मुश्किल था, क्योंकि तब रोहित के पेरेंट्स को क्रिकेट कोचिंग के लिए हर महीने 800 रुपए देने पड़ते थे और उसी का इंतजाम बड़ी मुश्किल से हो पाता था। रोहित की इस मजबूरी को देखते हुए दिनेश लाड ने उनकी स्कूल की फीस माफ करवा दी। दरअसल दिनेश लाड छोटी उम्र के रोहित के जबरदस्त आत्मविश्वास से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रोहित का आत्मविश्वास देखकर उन्हें शुरू में ही लग गया कि ये लड़का एक दिन दुनिया का सबसे धाकड़ खिलाड़ी बनेगा।
3: नहीं नहीं, कभी फियर फैक्टर, मैंने कभी उसको ऐसे डरते हुए कभी देखा ही नहीं। हर स्कूल के हर मैच में कोई भी अच्छे बॉलर हो, कोई भी है, डर के कभी खेला नहीं। उसका फायदा उसको, क्योंकि उसके अपने आप में लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है और वो कॉन्फिडेंस के ऊपर वो अपनी बल्लेबाजी करते रहे और उसका फायदा उसको होता ही होता है।
0: दिनेश लाड की सलाह पर रोहित ने बॉलिंग के साथ अपनी बैटिंग पर भी ध्यान देना शुरू किया और उसका असर ये हुआ कि बतौर बल्लेबाज वो सेलेक्टर्स को प्रभावित करने लगे। अंडर 14, अंडर 15 और अंडर 19 हर टीम में वे जगह बनाते चले गए। साल 2007 में रोहित भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलने दक्षिण अफ्रीका गए और मेजबान टीम के खिलाफ शानदार हाफ सेंचुरी बनाकर अपने टैलेंट का लोहा मनवा दिया। हालांकि पैसे की तंगी अभी भी बनी हुई थी। रोहित की किस्मत ने बड़ी करवट तब ली जब साल 2008 में IPL में उन्हें 3 करोड़ कीमत मिली। जिस रोहित ने बचपन से पैसे की तंगी देखी थी, उनके पास जब एक मुश्त 3 करोड़ रुपए आए तो उन्हें एक बार की समझ नहीं आया कि इन पैसों से सबसे पहले अपनी कौन सी हसरत पूरी करें। काफी उधेड़ बुन के बाद रोहित ने अपने लिए शानदार गाड़ी खरीदी। हालांकि उस समय उनके माता पिता बोरीवली में किराए के घर में रहते थे, लिहाजा रोहित के गाड़ी खरीदने के फैसले से वो नाराज हुए, क्योंकि माता पिता चाहते थे कि रोहित सबसे पहले मुंबई में घर खरीदें। बहरहाल रोहित ने बाद में अपने पेरेंट्स की ये इच्छा भी बांद्रा में घर खरीद कर पूरी कर दी। लेकिन बचपन में गरीबी का दंश झेल चुके रोहित के पास जब पैसे आने लगे तो उनका दिलो दिमाग क्रिकेट से डिस्ट्रैक्ट होने लगा। यही वजह है कि साल 2009 और साल 2010 में वो कुछ खास नहीं कर पाए। रोहित को तगड़ा झटका तब लगा जब 2011 वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। झटका लगने के बाद रोहित ने गहराई के साथ आत्ममंथन किया और तय किया कि सफल होना है तो डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करना ही पड़ेगा।
1: सिचुएशन को मैं समझ नहीं पा रहा था, नया नया था, 20 साल का था, तो गेम रीडिंग सिचुएशंस जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं थी। फेलियर्स के बाद ही मुझे पता चला कि गेम में क्या सुधार लाने की जरूरत है, गेम को कैसे इम्प्रूव करना है।
0: कुछ वक्त की असफलता

0: ने रोहित को इतना ज्यादा सचेत कर दिया कि वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगे। 2011 वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर टीम इंडिया में जगह बनाई। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें पारी की शुरुआत करने का मौका मिला और उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी बनाई। उसके बाद तो रोहित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
1: रोहित शर्मा में वो काबिलियत है कि अपनी धुआंधार बैटिंग से किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन रोहित के पिता वनडे क्रिकेट या फिर T20 में रोहित के प्रदर्शन से बहुत ज्यादा खुश नहीं होते थे, क्योंकि पिता की नजर में टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ी की असली अग्नि परीक्षा होती है। हालांकि रोहित अब टेस्ट क्रिकेट और T20 से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उससे पहले पिता के ख्वाहिशों पर खरा उतरने की भरसक कोशिश की।

0: वनडे क्रिकेट में कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले रोहित शर्मा की जिंदगी एक अजीब विडंबना है। रोहित के पिता गुरुनाथ शर्मा की शुरू से ये इच्छा थी कि उनका बेटा टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन करे, जबकि रोहित का टेम्परामेंट वनडे और T20 क्रिकेट से मेल खाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 108 वनडे खेलने के बाद रोहित शर्मा को पहली बार 9 नवंबर 2013 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। पहले ही टेस्ट मैच में रोहित ने 177 रनों की यादगार पारी खेली, जिसके बाद उनके पिता का खुशी का ठिकाना नहीं था।
1: मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट ही पसंद है। एक मेरे लिए सबसे जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मेरी फैमिली थी, और मेरे पिताजी वनडे क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, बट उनको टेस्ट क्रिकेट में मैं जब भी मैं अच्छा करता हूँ तो वो बहुत खुश होते तो इसीलिए मेरा एक सपना है कि मैं टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करूँ, एक क्योंकि मेरे पिताजी खुश रहे, क्योंकि मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट में मुझे देखना अच्छा करते हुए।
0: रोहित के अपने टेम्परामेंट और उनके पिता की टेस्ट मैच ख्वाहिश के बीच एक लंबा कश्मकश रहा है। वैसे टेस्ट मैच में रोहित का रिकॉर्ड कोई खास अच्छा नहीं रहा है, जबकि वनडे क्रिकेट में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो इस फॉर्मेट के करीब 53 साल के इतिहास में धाकड़ से धाकड़ बल्लेबाज भी नहीं कर पाया। वनडे क्रिकेट में आज तक कोई भी बल्लेबाज एक से ज्यादा डबल सेंचुरी नहीं लगा पाया है, जबकि रोहित के नाम वनडे में 3-3 डबल सेंचुरी हैं। रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जो वनडे क्रिकेट का ऑल टाइम सर्वोच्च स्कोर है। उससे पहले रोहित ने नवंबर 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों की यादगार पारी खेली थी। दिसंबर 2017 में रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी तीसरी डबल सेंचुरी लगाई। इस मैच में रोहित 208 रन बनाकर नाबाद रहे थे। कहने की जरूरत नहीं कि वनडे क्रिकेट में लंबी पारी खेलने के मामले में रोहित का कोई सानी नहीं है। वनडे वर्ल्ड कप में रोहित के नाम एक और शानदार विश्व कीर्तिमान दर्ज है। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने के अलावा एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड भी रोहित के नाम ही दर्ज है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 5 शतक लगाए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 122 रन, पाकिस्तान के खिलाफ 140 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 102 रन, बांग्लादेश के खिलाफ 104 रन और श्रीलंका के खिलाफ 103 रनों की पारी खेली थी। साफ है कि रोहित के नाम वनडे क्रिकेट में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं जिन्हें तोड़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। हालांकि T20 में भी रोहित के नाम एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। दरअसल रोहित को डिफेंसिव क्रिकेट ना पसंद है, बल्ले से प्रहार करना उन्हें काफी भाता है। यही वजह है कि वनडे और T20 के ऑल टाइम महानतम बल्लेबाजों में वो शुमार हैं।
2: तो बंदे में दम में आज मैंने आपको रोहित शर्मा की जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को दिखाया। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
4: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
5: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
4: Or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं।
2: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और अब खबर चीन से। चीन की राजधानी बीजिंग में अब कमल का दुर्लभ फूल खिला है। कमल का फूल वैसे तो दुर्लभ नहीं है, लेकिन बीजिंग में खिला ये फूल दुर्लभ क्यों माना जा रहा है, ये जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट।
2: आपने देश दुनिया में बहुत सी जगहों पर नदी, तालाबों और झीलों में कमल खिले देखे होंगे, लेकिन कमल के इस फूल की तो बात ही निराली है। दावा किया गया है कि इस कमल की पैदाइश 800 साल पुराने बीज से हुई है और इसीलिए ये कमल का फूल बेहद खास है। यहाँ पर वनस्पति वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के एक दल ने लंबे समय से संरक्षित किए गए बीज से इस अनोखे फूल को उगाने में कामयाबी हासिल की। इसके लिए उन्हें 2 साल से ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, जो अब इस फूल के रूप में रंग लाई है। ये तस्वीरें बीजिंग के लियान हॉज पार्क में चल रहे लोटस कल्चरल फेस्टिवल की है। कमल के फूलों के इस उत्सव में 380 किस्मों के 7000 से ज्यादा कमल के फूलों की नुमाइश की जा रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर वाटर लिली की 60 प्रजातियों को भी प्रदर्शित किया गया है। लगभग 20,000 वर्ग मीटर इलाके में चल रहे इस उत्सव में फूलों की शानदार बहार दिख रही है, जो दूर दूर से आने वाले सैलानियों को लुभा रही है। फूलों का ये उत्सव शुक्रवार को शुरू हुआ था और अगस्त के अंत तक चलेगा, लिहाजा गर्मियों के दौरान यहाँ आने वाले लोगों को लगातार फूलों के दीदार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मजा लेने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: कौन से ग्रह का दान रात के समय में करना अच्छा होता है? किस ग्रह का दान करने से रोजगार की रुकावट दूर हो जाती है? और कौन से ग्रह के लिए गाय को हरा चारा खिलाने से फायदा होता है? किस ग्रह के लिए क्या करें दान, कब करें दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: जस्ट व्हाट यू नीड फॉर समर इज वेटिंग एट टारगेट। Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
5: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end tic-tac-toe top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
6: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
8: से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.IN।
2: देव स्नान पूर्णिमा के मौके पर 29 जून को जगन्नाथपुरी में होगी स्नान यात्रा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को 108 कलशों के पवित्र जल से कराया जाएगा स्नान। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर हुआ मंथन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रबुद्ध जनों से की चर्चा। श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ शहर के ट्रैफिक प्लान पर हुई बात। मुंबई और उसके आसपास के लाखों यात्रियों के लिए गुड न्यूज। 29 जून से सेंट्रल रेलवे की 12 और लोकल ट्रेन्स बनेंगी AC। लोकल के मुसाफिरों की यात्रा होगी अधिक सुगम और आरामदायक। गुजरात के 14 शहरों को मिली सुगम यातायात की सौगात। भारत टैक्सी ऐप का शुभारंभ। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में किया उद्घाटन। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। बोटानिकल गार्डन में 196 साल के सबसे उम्रदराज कछुए जोनाथन से दीदार किए।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: पूरी जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा की तैयारियां पूरी। श्रद्धालुओं को सुविधा और सुरक्षा के पूरे इंतजाम। भक्तों के सुरक्षित और सुचारू सुदर्शन सुनिश्चित करने के लिए भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन इंतजाम पूरे। 700 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती। स्नान पूर्णिमा से पहले ही पुरी में देश दुनिया से भक्तों का आना जारी। शहर भर में भक्तिमय माहौल। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को स्नान मंडप पर लाया जाता है। 108 घड़ों के सुगंधित और पवित्र जल से कराया जाता है स्नान। स्नान पूर्णिमा के बाद से 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले जाते हैं भगवान। इस दौरान उन्हें बुखार आता है और भक्त अलारनाथ मंदिर में करते हैं दर्शन। महाकाल की नगरी उज्जैन से बाबा के भक्तों के लिए गुड न्यूज। जोरों पर उज्जैन में भव्य और दिव्य सिंहस्थ 2028 की तैयारियां। सिंहस्थ 2028 का संकल्प कार्यशाला का शानदार शुभारंभ। सीएम मोहन यादव ने सबसे बड़े धार्मिक मेले पर किया मंथन। सड़क, रेलवे और हवाई कनेक्टिविटी पर तेजी से चल रहा है काम। सिंहस्थ 2028 में 35 से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। सभी मार्गों का चौड़ीकरण, नए पुल, घाटों का निर्माण कार्य जारी। सिंहस्थ 2028 को भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने का लक्ष्य। दिव्य मेले से पहले शहर के सभी मंदिरों का किया जाएगा जीर्णोद्धार। भक्तों की सभी सुविधाओं का ध्यान में रखकर होगी आयोजन की तैयारी। चारधाम यात्रा में बना हुआ यात्रियों का उत्साह। अब तक 40,50,000 से ज्यादा भक्त हो चुके हैं शामिल। बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने वालों की संख्या 13,40,000 के पार। एक दिन में पहुंच रहे हैं 21,000 से ज्यादा भक्त। श्री हेमकुंड साहिब में भी लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी। अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। रोजाना आ रहे हैं करीब 5,000 लोग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने की मॉक ड्रिल। अमरनाथ यात्रा से पहले तैयारियों का लिया गया जायजा। अनंतनाग पुलिस ने मॉक ड्रिल के जरिए पर की तैयारियां। पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ 5 दिन बाकी। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी यात्रा। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 393 वर्षगांठ के मौके पर नागपुर में मनाया जा रहा है जश्न। हिंदू पंचांग के मुताबिक आज राज्याभिषेक की वर्षगांठ। शिवाजी के राज्याभिषेक के ऐतिहासिक मौके पर उत्सव में डूबा पूरा नागपुर शहर। गूंज रहे हैं जय भवानी जय शिवाजी के नारे। शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अभिषेक के लिए लाया गया गंगा, नर्मदा, गोदावरी, चंद्रभागा समेत 7 पवित्र नदियों का जल। राज्याभिषेक की वर्षगांठ के मौके पर निकाली गई शिवाजी महाराज की प्रतिमा की झांकी। कार्यक्रम में हजारों लोग पारंपरिक वेशभूषा में हुए शामिल। आज के दिन शौर्य से जुड़े पारंपरिक खेलों का भी आयोजन। शहर में भंडारे और रक्तदान शिविर भी लगाए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया नोएडा अथॉरिटी के नए मुख्यालय का उद्घाटन। करीब 6 एकड़ में फैला है यह परिसर। पर्याप्त पार्किंग, आधुनिक कार्यालय, डिजिटल सुविधाएं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस है यह दफ्तर। निर्माण कार्य में करीब 390 करोड़ रुपए की आई लागत। ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। निवेशकों को यूपी में निवेश का दिया न्योता। ग्रेटर नोएडा को मिली सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की सौगात। स्टील अथॉरिटी के सौर ऊर्जा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी। नोएडा पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में सुनी जनता की फरियाद। गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 3 दिन के सेशल्स दौरे पर राजधानी विक्टोरिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हेरमनी ने की पीएम की मोदी की अगवानी। सेशल्स पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम के दौरे पर लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे लोगों ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री ने लोगों से हाथ मिलाकर किया अभिवादन। सेशल्स में प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक तरीके से किया गया वेलकम। कलाकारों ने ढोल नगाड़े और पारंपरिक नृत्य के साथ किया स्वागत। सेशल्स में होटल पहुंचने पर भी भारतीय संस्कृति से हुए प्रधानमंत्री का स्वागत। उतारी गई आरती, कलाकारों ने पेश किए लोक नृत्य। सेशल्स में पीएम ने नेशनल बोटानिकल गार्डन का दौरा किया। दुनिया के सबसे बुजुर्ग कछुए से मुलाकात की। 194 साल का जोनाथन नाम के कछुए की उम्र 1832 में हुआ था जन्म। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव है जोनाथन। प्रधानमंत्री ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हेरमनी के साथ पीएनआरएल पानी एक पौधा भी लगाया। पीएम मोदी राष्ट्र दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में होंगे शामिल। हिंद महासागर में सेशल्स का रणनीतिक महत्व, ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी। पीएम मोदी की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले साल 2015 में किया था सेशल्स का दौरा। गुजरात को मिली विकास की सौगात। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। अमित शाह ने गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। राज्य के 14 शहरों में शुरू की गई है भारत टैक्सी कैब सेवा। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने जनसभा को भी किया संबोधित। कहा आने वाले समय में यातायात क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाएगी भारत टैक्सी। अगले साल की शुरुआत में भारत दौरे पर आ सकते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिकी विदेश मंत्री ने किया ऐलान। बोले भारत अमेरिका में जल्द होगी ट्रेड डील। बाल्टीमोर बंदरगाह पर देखी भारत की समृद्ध समुद्री विरासत की तस्वीर। मिड अटलांटिक के बड़े पुलों के नीचे से गुजरा। 13,000 नॉटिकल मील का सफर तय करके नॉरफॉक। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों यात्रियों के लिए गुड न्यूज। नॉन एसी लोकल ट्रेन्स को एसी लोकल सेवाओं में बदला जाएगा। 29 जून से सेंट्रल रेलवे की 12 और लोकल ट्रेनें बनेंगी एसी ट्रेन। एसी लोकल ट्रेन की कुल संख्या बढ़कर 120 हो जाएगी। मेन लाइन पर एसी लोकल सेवाएं 80 से बढ़कर हो जाएंगे 92। हार्बर लाइन पर 28 एसी लोकल ट्रेन्स का संचालन जारी रहेगा। टिटवाला, कल्याण, ठाणे, घाटकोपर, कुल्ला सीएसएमटी रूट को लाभ। सेंट्रल रेलवे के शानदार पहल से लाखों पैसेंजर्स को होगा फायदा। सुबह शाम पीक आवर्स में भी कई नई एसी सेवाएं उपलब्ध होंगी। लोकल यात्रियों को मिलेगी और अधिक सुगम आरामदायक यात्रा। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज। 19 जून को खत्म हुए सप्ताह में बड़ा देश का विदेशी मुद्रा भंडार। 96,30,00,000 डॉलर की हुई बढ़ोतरी। बढ़ोतरी के बाद 672 अरब डॉलर से ज्यादा हुआ देश का विदेशी मुद्रा भंडार। पिछले सप्ताह सोने के भंडार के मूल्य में 411 करोड़ डॉलर की हुई बढ़ोतरी। उत्तराखंड को मिली बागवानी से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 46.32 करोड़ में तैयार 9 योजनाओं का किया उद्घाटन। रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ। 323.34 करोड़ के 32 विकास कार्यों की रखी आधारशिला। मुक्तेश्वर में क्लीन प्लांट सेंटर निर्माण का ऐलान किया। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिखा गोवंश प्रेम। मुख्यमंत्री ने गौशाला पहुंचकर गोवंश को खिलाया गुड़ और चना। युवाओं के लिए केंद्र सरकार में कई पदों पर सीधी भर्ती का मौका। केंद्रीय लोक सेवा आयोग ने भर्ती के लिए मंगवाए आवेदन। ओडिशा में औद्योगीकरण को बढ़ावा वाली गुड न्यूज। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने गो ईस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का ऐलान किया। दिल्ली में कल से पहले राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन का होगा आयोजन। ग्रामीण विकास योजनाओं की होगी समीक्षा। भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा रोडमैप। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने भारत में तेज की गतिविधियां। प्रभजीत सिंह को बनाया भारत में कंपनी का प्रबंध निदेशक। ओपन एआई के लिए कंज्यूमर ग्रोथ, एंटरप्राइजेस अडॉप्शन, पार्टनरशिप, रेगुलेटरी मामलों और ऑपरेशंस के प्रदर्शन की जिम्मेदारी संभालेंगे प्रभजीत सिंह। गर्मी से बहाल दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बारिश और तेज हवाओं का जताया अनुमान। कल आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद। शाम तक गरज के साथ बारिश की संभावना। तेज सतही हवाएं चलने के आसार। अगले दो से तीन दिनों में तेज होंगी मानसूनी गतिविधियां। मौसम वैज्ञानिकों का दावा 29 से 30 जून के बीच उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय हो सकता है मानसून। सबसे पहले पूर्वी यूपी में देखने को मिलेगा मानसून का असर। बढ़ेगा बारिश का दायरा। तापमान में 5 से 8 डिग्री तक गिरावट की संभावना। असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड और सिक्किम समेत पूरे पूर्वोत्तर में मानसून की बारिश जारी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून विस्तार के लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल। इस साल जापान में होने वाली एशियाई खेलों में हिस्सा लेंगे नीरज चोपड़ा। एएफआई की ओर से की गई पुष्टि। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में किया जाएगा एशियाई गेम्स का आयोजन। गोल्ड मेडल बचाने के लिए मैदान में उतरेंगे नीरज। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में कल भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच मुकाबला। लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा यह रोमांचक मैच। सेमीफाइनल में एंट्री के लिए भारत का यह मैच जीतना जरूरी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत मिलने पर मिल सकता है सेमीफाइनल का टिकट। ये करो या मरो के इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम का जोश है। 2025 वनडे वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया को हराकर पूरे उत्साह में भारत। FIH प्रो लीग हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 7-1 से दी करारी मात। हॉकी के मैदान पर पाकिस्तान को एक हफ्ते में दूसरी बार हराया। लंदन में खेले गए इस मुकाबले में सुखजीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक, राजकुमार पाल और दिलप्रीत सिंह ने किए गोल। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन दिलीप वेंगसरकर ने वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी को बताया विश्वसनीय। आने वाले समय में अच्छे प्रदर्शन की जताई उम्मीद। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पहली बार नॉकआउट राउंड में पहुंचा मिस्र। ईरान के साथ 1-1 के ड्रॉ के साथ 5 अंकों के साथ ग्रुप स्टेज में दूसरे नंबर पर रहा मिस्र। चंबल गढ़ियास ने जीता मध्य प्रदेश टी20 प्रीमियर लीग। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में रॉयल निमार ईगल्स को 31 रन से दी मात। कई राज्यों में भीषण गर्मी के बीच पर्यटकों को लुभा रहा श्रीनगर का सुहाना मौसम। छुट्टियां मनाने श्रीनगर पहुंच रहे हैं पर्यटक। श्रीनगर की मशहूर डल झील में शिकारा राइड का आनंद लेते दिखे सैलानी। श्रीनगर के सुहाने मौसम से खुश दिखे पर्यटक। जम्मू कश्मीर में पर्यटन बढ़ने से जगहों के एक्सप्लोर होने की जगी आस। मनमोहक नजारों वाली शोपियां की पीर की गली को पर्यटकों का इंतजार। लद्दाख के नीमू इलाके को मिली नवीनीकृत महिला सशक्तिकरण केंद्र की सौगात। भारतीय सेना की ओर से बुनाई कार्यशाला का किया गया उद्घाटन। स्थानीय महिलाओं को मिला कौशल विकास और व्यवसायिक प्रशिक्षण का बेहतर मंच। महिलाओं में आत्मनिर्भरता के साथ क्षेत्र के विकास को मिलेगी इससे रफ्तार। फिल्म वेलकम टू द जंगल ने रिलीज के पहले दिन कमाए 15 करोड़। फिल्म ने पेड प्रीव्यू स्क्रीनिंग में कमाए थे 3,75,00,000। अहमद खान ने किया है वेलकम टू द जंगल का निर्देशन। फिल्म में दिखेंगे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल समेत 30 से ज्यादा मशहूर एक्टर। फिल्म कॉकटेल 2 ने 8वें दिन की 4.25 करोड़ की कमाई। 74 करोड़ से ज्यादा हुई होमी अजानिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कमाई। 31 साल के हुए अभिनेता अर्जुन कपूर ने कल 26 जून को धूमधाम से मनाया अपना 41वां जन्मदिन। अर्जुन कपूर के जन्मदिन पर बहन अंशुला ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट। अंशुला ने पोस्ट में अर्जुन कपूर के बचपन की कई तस्वीरें भी साझा की। काजल अग्रवाल और श्रेयस अलपड़े की फिल्म द इंडिया स्टोरी का टीजर जारी। 24 जुलाई को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी फिल्म। वेब सीरीज मिर्जापुर की सफलता के बाद मिर्जापुर द मूवी का टीजर जारी। 4 सितंबर को फिल्म रिलीज करने की तैयारी। फिल्म मिर्जापुर में बबलू पंडित के किरदार में देखेंगे वेब सीरीज पंचायत के सचिव जी जितेंद्र कुमार, पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्यंदु समेत दिखेंगे कई कलाकार। गोवा के लग्जरी रिजॉर्ट में हुई एक्ट्रेस और राजनेता खुशबू सुंदर की बड़ी बेटी अवंतिका सुंदर की शादी, चिरंजीवी नागार्जुन वेंकटेश समेत कई सितारे हुए शामिल। अवंतिका सुंदर की शादी में बॉलीवुड के कई सितारे भी हुए शामिल। सोशल मीडिया पर शेयर वीडियो में एक साथ लंच करते दिखे अनिल कपूर, वेंकटेश, जैकी श्रॉफ। अमेरिका में अगले महीने आयोजित होगी विशाल ऑक्शन, इस नीलामी में हॉलीवुड और म्यूजिक से जुड़ी कई खास चीजें होंगी शामिल। ऑक्शन में कई यूनिक चीजें जिनमें विकेड विच की टोपी और जॉन लेनन के हाथ से लेके गाने के बोल भी शामिल। सबसे खास चीजों में से एक है एक्टर मार्क हैमिल का स्टार वॉर्स एपिसोड वी में इस्तेमाल किया गया ल्यूक स्काईवॉकर का लाइट सेबर। द विजार्ड ऑफ ओज फिल्म में मार्गरेट हैमिल्टन द्वारा पहनी गई विकेट विच ऑफ द वेस्ट की टोपी की शुरुआती बोली करीब 95 लाख है। साथ ही फिल्म की 50वीं सालगिरह के लिए वेस्टर्न कॉस्ट्यूम द्वारा बनाई गई यादगार रूबी स्लीपर्स भी शामिल। हेरिटेज ऑक्शन न्यूयॉर्क में दिखाई हॉलीवुड एंड एंटरटेनमेंट सिग्नेचर ऑक्शन की खास चीजों की झलक, 13 से 17 जुलाई के बीच होगी नीलामी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Score what you need for summer, perfectly picked for you at Target, including up and up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: और अब खबर उन खास कुत्तों की जिन पर अमेरिका की पुलिस भी भरोसा करती है। अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप और आजादी के 250वें साल के जश्न की सुरक्षा के लिए कुत्तों के खास दस्ते को ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया। ट्रेनिंग पूरी होने पर वर्जीनिया में उन्हें सम्मानित भी किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में।
11: ये कुत्ते कमाल के, ये कुत्ते बड़े काम के हैं। ये विस्फोटकों और संदिग्ध वस्तुओं की पहचान करने में सक्षम हैं। हर खतरे को भांप लेने में माहिर हैं। अमेरिका के वर्जीनिया में अब ऐसे 6 कुत्तों की K9 टीम को खास प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया है, ताकि खास मौकों पर सुरक्षा के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जा सके। ये तस्वीरें अमेरिका की नेशनल केनाइन एकेडमी की हैं। यहाँ पर कड़ी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इन कुत्तों और इनके हैंडलर्स को कामकाज के लिए सर्टिफिकेट दिए गए।
10: So today was a graduation for both the canine and myself. We went through a 3-month process, 7 days a week, 24 hours on, and we did a lot of training. And today we graduated.
11: इन कुत्तों और इनके हैंडलर्स को अमेरिका के ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायरआर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स की ओर से विस्फोटकों और दूसरी खतरनाक सामग्रियों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इस सिलसिले में इन्हें खास गंध को पहचानने की तकनीक सिखाई गई और साथ ही साथ सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए तैयार किया गया है, ताकि बड़े बड़े महत्वपूर्ण इवेंट्स का सुरक्षित आयोजन सुनिश्चित हो सके।
12: I think one of the really important things is these dogs are part of a larger security apparatus. So for these types of events, the dogs are there as kind of that initial detection phase, but they're also partnered up with, like I said, bomb technicians and explosive specialists. So once the dog alerts, that now becomes a bomb technician problem because it's a suspicious package. And so then we're going to have to back the dog out and everybody else out, and then the bomb techs can come in and do that work. But it, to me, it's just important to recognize that this is just one piece of a larger security apparatus that goes to secure these events that we often don't know.
11: फिलहाल इन कुत्तों में से 5 को अलग अलग शहरों में फीफा वर्ल्ड कप मैच की सुरक्षा के लिए तैनात किया जा रहा है, जबकि 1 को अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पर माउंट रशमोर में होने वाले राष्ट्रपति के कार्यक्रम से पहले जांच पड़ताल में मदद के लिए भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज डे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
13: कौन से ग्रह का दान रात के समय में करना अच्छा होता है? किस ग्रह का दान करने से रोजगार की रुकावट दूर हो जाती है? और कौन से ग्रह के लिए गाय को हरा चारा खिलाने से फायदा होता है? किस ग्रह के लिए क्या करें दान, कब करें दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: स्कोर व्हाट यू नीड फॉर समर, परफेक्टली पिक्ड फॉर यू एट टारगेट, इंक्लूडिंग अप एंड अप स्ट्रॉबेरी सेंटेड सनस्क्रीन, फेवरेट डे आइसक्रीम इन फ्लेवर्स लाइक कॉटन कैंडी एंड ऑरेंज क्रीम, इन्फ्लेटेबल फन फॉर द पूल, एल्फ ब्यूटीज बेस्ट एंड लीवाइज डेनिम शॉर्ट्स। Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
14: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
15: I have no idea how this election is going to play out,
14: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
6: दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर। जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
17: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
2: देव स्नान पूर्णिमा के मौके पर 29 जून को जगन्नाथपुरी में होगी स्नान यात्रा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को 108 कलशों के पवित्र जल से कराया जाएगा स्नान। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर हुआ मंथन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रबुद्ध जनों से की चर्चा। श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ शहर के ट्रैफिक प्लान पर हुई बात।

की यात्रा होगी अधिक सुगम और आरामदायक। गुजरात के 14 शहरों को मिली सुगम यातायात की सौगात, भारत टैक्सी ऐप का शुभारंभ, गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में उन्होंने किया उद्घाटन। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, बोटानिकल गार्डन में 196 साल के सबसे उम्रदराज कछुए जोनाथन के दीदार किए।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हमें ग्रहों के लिए क्या और कब दान करना चाहिए और हमें किसे दान करना चाहिए, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा और जानेंगे सब कुछ। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर स्वास्थ्य की गंभीर समस्या से आप गुजर रहे हैं, सेहत में कोई गंभीर दिक्कत आ गई है, तो दोनों समय चंद्रशेखराष्टक का पाठ करिएगा। अगर चंद्रशेखराष्टक पढ़ पाना कठिन लगता हो तो आप मोबाइल पर लगाकर सुबह और शाम श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा और भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा गंभीर से गंभीर बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा।
0: और चलिए अब जान लेते हैं 28 जून 2026 यानी कि रविवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 28 जून 2026 दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से ही कि ग्रहों के दान की विशेष बात क्या है।
1: जी, आज हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग ग्रहों से संबंधित अगर आपके जीवन में समस्या है तो अलग अलग ग्रहों के लिए किस चीज का और कब दान किया जाए। सबसे पहले ग्रहों के दान की विशेष बात क्या है। देखिए, कोई भी ग्रह अगर कुंडली में समस्या दे रहे हों तो उनका दान करना उत्तम माना जाता है। आप जब ग्रहों का नाम लेकर के ग्रहों के लिए दान करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप उस ग्रह को अपने जीवन से दूर कर रहे हैं। और जब आप किसी ग्रह के लिए उस ग्रह के नाम से दान करते हैं तो उस ग्रह का असर जीवन से समाप्त हो जाता है। अब कोई ग्रह कुंडली का अच्छा ग्रह है, आपको जिंदगी में अच्छे परिणाम दे रहा है, आप उसी ग्रह के लिए दान करने लगेंगे तो उसका शुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जिस ग्रह का दान करना है सोच समझ कर करिए, उसी ग्रह के लिए सोच करके दान करिएगा जो ग्रह आपके जीवन में समस्या का कारण बन रहा है।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष वृष और मिथुन राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, काम में लापरवाही ना करें, महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, मानसिक चिंता आपकी दूर होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और आइए अब जानते हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल के लिए क्या और कब दान करें।
1: अब सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य के लिए किस चीज का और कब दान करना चाहिए। सूर्य देव के लिए अगर आप किसी वस्तु का दान कर रहे हैं तो रविवार दिन में दान करना चाहिए। और सूर्य देव के लिए तांबे के बर्तन, गुड़ या गेहूं के आटे का दान करना अच्छा होगा। जिन लोगों को हृदय रोग की शिकायत है उनको एक बार कुंडली दिखा करके सूर्य का दान अवश्य करना चाहिए। चंद्रमा का दान, चंद्रमा के लिए सोमवार की शाम को या सोमवार की रात को चंद्र ग्रह का नाम लेकर के दान करना चाहिए। और चंद्र देव के लिए, चंद्रमा के लिए दूध, चावल, चीनी, नारियल, चांदी का दान करना अच्छा होगा। जिन लोगों को मेंटल डिप्रेशन रहता है, मानसिक बीमारी रहती है, उनको एक बार सलाह लेकर सोमवार को चंद्रमा की वस्तुओं का दान करना चाहिए। मंगल का दान, मंगल के लिए मंगलवार के दिन में अगर आप दान करें तो बहुत अच्छा होगा। और मंगल के लिए गुड़ का, तांबे के बर्तन का, लाल वस्त्र का, तंदूर में पकाई गई चीजें जैसे बेकरी के बिस्किट वगैरह आते हैं, इनका दान आप कर सकते हैं। जिनको डर बहुत लगता हो, जिनका आत्मविश्वास बहुत कमजोर हो या जिनको बार बार चोट चपेट लगती हो, ऐसे लोग सलाह लेकर के नियमित रूप से मंगल का दान कर सकते हैं। आप चाहें तो गाय को गुड़ या लाल फल भी मंगलवार को खिला सकते हैं।
0: और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, काम की अधिकता रहेगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें, संतान की चिंता हो सकती है, धन खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, करियर की समस्या हल होगी, लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न हमें आरती जी ने लिखा है और आरती जी हमें मेल लिखती हैं फरीदाबाद हरियाणा से। इनकी जन्म की तारीख है 17 मई 1999, जन्म का समय शाम के 6:40, जन्म स्थान है फरीदाबाद। आरती जी पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब तक हो पाएगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आरती जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने का सही समय साल 2027 के सेकेंड हाफ में है। जून 27 से दिसंबर 27 का जो समय है वो समय आपके विवाह की स्थिति दिखा रहा है। चूंकि आपके मंगल की पोजीशनिंग बहुत अच्छी नहीं है तो जब भी विवाह का निर्णय लीजिएगा सोच समझ के ठंडे दिमाग से कुंडली मिला के शादी करिएगा, अन्यथा वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। आपका विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, इसके लिए एक पीला पुखराज, लगभग 5 से 6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना तो आप अपने सवाल हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, अगला प्रश्न मीनाक्षी ने हमें लिखा है और मीनाक्षी जी हमें मेल लिखती हैं अमेरिका से, यूएसए से। इनकी जन्म की तारीख है 1 जुलाई 1980। जन्म का समय सुबह के 9:40। जन्म का स्थान है देहरादून। मीनाक्षी जी कह रही हैं कि मेरी नौकरी में बहुत समस्याएं चल रही हैं, हो सकता है कि मुझे नौकरी से हटा दिया जाए तो आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। मीनाक्षी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं प्रबल हैं और ये नौकरी आपकी जरूर बदलेगी, तो आप अभी से नौकरी बदलने का प्रयास शुरू कर दें, तब जाकर साल 2026 के अंत

0: करिएगा। बुध ग्रह के लिए बुधवार दिन में दान करें और बुध के लिए हरा फल या हरी सब्जियों का दान करना अच्छा होगा। बहुत सारे लोग हरी मूंग का दान भी करते हैं। आप चाहें तो बुध के लिए गाय को हरा चारा या पालक खिला सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन में, शिक्षा में बार बार बाधा आ रही है तो ऐसी दशा में आपको सलाह लेकर बुध संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। बृहस्पति का दान। बृहस्पति ग्रह के लिए बृहस्पतिवार दिन में दान करिएगा और बृहस्पति के लिए केला, हल्दी, चने की दाल या गोल्ड, सोना या पीतल, इसके बने हुए चीजों का दान कर सकते हैं। बृहस्पति को अगर अनुकूल करना चाहते हैं और बृहस्पति को शांत करना चाहते हैं तो हर बृहस्पतिवार को किसी धर्म स्थान में जाकर, मंदिर में जाकर अगर केले का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर पेट की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं या कैंसर जैसी बीमारी ने आपको पकड़ रखा है तो इलाज चलने दीजिए, साथ में बृहस्पति ग्रह का दान नियमित रूप से करते रहिए। शुक्र का दान। शुक्र के लिए शुक्रवार की शाम को दान करना चाहिए शुक्र की वस्तुओं का। इसके लिए सफेद मिठाई, सफेद वस्त्र, सुगंध, दही, इसका दान आप कर सकते हैं। जिनके भी वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो, मैरिटल लाइफ में या लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो, ऐसे लोग शुक्रवार को अगर दही का नियमित रूप से दान करें तो उनकी ये मुश्किल समाप्त होगी, शुक्र के कष्ट जीवन से कम होंगे।
1: और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: तुला राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में स्थिरता आएगी, धन का लाभ होगा, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग

0: रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: और आइए अब जानते हैं शनि, राहु और केतु के लिए क्या और कब हमें दान करना चाहिए।
0: अब बात करते हैं शनि की। देखिए, शनि देव के लिए अगर आपको दान करना है तो शनिवार की शाम को शनि देव की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। शनि देव के क्रोध को शांत करने के लिए, पीड़ा को कम करने के लिए काला चना, काली उड़द की दाल या सरसों के तेल का दान करें। आप चाहें तो शनि देव को शांत करने के लिए किसी निर्धन व्यक्ति को लोहे के बर्तन का दान भी कर सकते हैं। अगर आपके रोजगार में, खास तौर से नौकरी में, बार बार उतार चढ़ाव आता है, आपकी नौकरी में बार बार समस्या आती है, तो आप सलाह लेकर के शनि देव की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। राहु का दान, राहु के लिए शनिवार को मिश्रित अनाज का, 4-5 तरह की दालें मिला लें, उसका दान करें। पक्षियों को अगर आप दाना भी डालें, राहु से संबंधित पीड़ा कम होगी, राहु से संबंधित समस्या से छुटकारा मिलेगा। केतु का दान, केतु के लिए मंगलवार को धर्म स्थान में जाकर सेवा करिएगा। कोई भी मंदिर हो, हनुमान जी का हो, शिव जी का हो, सुबह जाके सफाई कराइए, रात में मंदिर बंद होते समय सफाई कर लें, वहां से गंदगी हटा दें, झाड़ू बहारू कर लें। अगर ऐसा आप हर मंगलवार के मंगलवार करें, केतु की पीड़ा कम होगी। इसके अलावा जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, सड़क के कुत्ते हैं, उनको रोटी, बिस्कुट, ब्रेड, दूध ये देना भी, खिलाना भी केतु की पीड़ा को कम कर देता है।
1: और गुडलक में वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा दिख रहा है, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा, खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही आज का तीसरा सवाल उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: जी,

0: अगला प्रश्न कपिल गुप्ता ने हमें लिखा है, और कपिल गुप्ता जी हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 20 अप्रैल 2012, जन्म का समय शाम के 5:55, जन्म का स्थान है लखनऊ। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, परेशान बहुत करता है, बार बार उसको चोट लगती रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा पुत्र ठीक हो जाए। देखिए कपिल जी, सबसे पहले बता दूं कि आपके बेटे की कुंडली में शिक्षा में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा 2027 के मार्च तक। 2027 के मार्च के बाद से इनकी स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। साइकिल चलाते समय, खेलते कूदते समय चोट की संभावनाएं बनती हैं, और ये संभावनाएं ज्यादातर दिसंबर 2026 तक दिखाई दे रही हैं। तो आप ऐसा करें, एक छेद वाला तांबे का सिक्का लाल धागे में डाल करके मंगलवार को सवेरे इनके गले में पहना दें, और इनकी माता या पिता में से कोई भी इनके कल्याण के लिए, इनकी उन्नति के लिए सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो काफी बेहतर होगा।
1: और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम सवाल वो किसका लेने वाले हैं। तो पंडित जी, आज का अंतिम और चौथा सवाल आप किसका ले रहे हैं?
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न टीना जी ने हमें लिखा है, और टीना हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 नवंबर 1990, जन्म का समय रात के 8:40, जन्म का स्थान है कोलकाता। टीना कह रही हैं कि मैं काफी समय से बेंगलोर में रहती हूं, नौकरी मेरी अच्छी चल रही है, अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूं, क्या मेरे लिए विवाह करना अपनी इच्छा से उचित होगा, क्योंकि माता पिता की सहमति नहीं है। टीना, आपकी कुंडली के हिसाब से और जो लड़के की कुंडली आपने भेजी है, दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है, और आपका भी कोई इतना ज्यादा अटैचमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कह दूं कि आप शादी कर ही लीजिए। ज्योतिष के हिसाब से ये विवाह बहुत अच्छा नहीं होगा, इसीलिए अगर बेहतर है इसको छोड़कर आगे बढ़ सकें जिस चक्कर में पिछले 3 साल से आप लगी हुई हैं। इस विवाह को करने के परिणाम अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपने माता पिता की सहमति से लड़का अच्छा देखकर कुंडली मिला करके तब विवाह करिए, और आपके विवाह का समय इस साल के आखिरी में शुरू हो जाएगा, तो ऐसा लगता है कि अगले साल आपकी शादी हो जाएगी। आप विवाह का सही निर्णय ले सकें, भावनात्मक गलतियां न करें, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, अधिक से अधिक माता दुर्गा की पूजा करें, ज्यादा ना भी कर पाए तो सुबह शाम दुर्गा चालीसा का ही अगर केवल पाठ करें तो आपके लिए शुभ रहेगा।
1: जिनका जन्मदिन 28 जून 2026 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 28 जून को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा, करियर में स्थिरता बनी रहेगी, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें तो बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा का, तो आइए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि पूजा स्थान पर मूर्तियां और चित्र कितने बड़े होने चाहिए। देखिए, पूजा स्थान पर अगर आप मूर्ति रखते हैं तो नियम ये कहता है कि 12 अंगुल से ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। चित्र आप जितना भी बड़ा चाहें, 6 फीट का चाहें, चित्र आप कितना भी बड़ा देवी देवता का लगा सकते हैं।
1: और चलिए अब जान लेते हैं 28 जून 2026 यानी कि रविवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 28 जून 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपकी कर्ज और स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: गुडलक में अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में दुर्घटनाएं कितनी होती हैं, कैसी होती हैं। आज की गुडलक राशि है मेष। इनको हमेशा दुर्घटनाओं और चोट चपेट से बचना चाहिए। वाहन चलाने और खेल कूद में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हम एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि आप स्टूडेंट हैं या पढ़ने लिखने का काम करते हैं, चीजें भूल जाती हैं, पढ़ाई में चीजों को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जितना जल्दी हो सके सूर्य देव को जल अर्पित करिए। अपनी पढ़ाई और काम करने के लिए एक ही स्थान रखिए। पढ़ने के स्थान के आसपास पढ़ाई के समय एक गिलास में या किसी पात्र में जल भरकर रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं आपकी एकाग्रता निश्चित रूप से बेहतर होगी।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: और अब खबर खूबसूरत नजारों और हरे भरे मैदानों की। कश्मीर दुनिया भर में अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए मशहूर है। गुलमर्ग और पहलगाम जैसे नाम तो हर जबान पर है, लेकिन इस जन्नत के बीच कुछ ऐसे अनमोल खजाने भी छिपे हैं जिनका जिक्र आमतौर पर नहीं होता। आज हम आपको दक्षिण कश्मीर के ऐसे ही हिडन डेस्टिनेशन की सैर कराएंगे, साथ ही श्रीनगर में सैलानियों की रौनक भी दिखाएंगे।

0: खूबसूरत वादियाँ, हरियाली की चादर ओढ़े मीलों तक फैले हरे भरे मैदान और उनके बीच से कलकल बहती साफ पानी की नहर। ये तस्वीरें हैं दक्षिण कश्मीर के शोपियांग जिले की, जहाँ का हर कोना कुदरत की बेमिसाल कारीगरी का सबूत है। ऐतिहासिक मुगल रोड से जब कोई मुसाफिर गुजरता है तो पीर की गली और इसके आसपास की घाटियों का नजारा उसे मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ का सुकून, पहाड़ों की ताजी और शुद्ध हवा और कुदरत की हैरान कर देने वाली कारीगरी ऐसी है कि जो भी यहाँ आए वो यहीं का होकर रह जाए।
1: जिला शुपियान जहाँ पे सबसे बड़ी जो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, अहरवल भी नजदीक है, दुबजन और उसके साथ साथ मुगल सराय के साथ साथ और भी कई ऐसी चीजें हैं जो वाकई दिलकश नजारे बयान करते हैं।
0: करीब 3,500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये इलाका गर्मियों में फूलों की चादर ओढ़ लेता है। दूर दूर तक यहाँ फैली खामोशी और किसी पेंटर की कल्पना जैसे हरे भरे मैदान देखने लायक हैं। कश्मीर की इन वादियों में जो सुकून और सुंदरता है उसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है, लेकिन खूबसूरती के खजाने को समेटे ये इलाका सैलानियों की नजरों से अभी दूर है। यूं तो कश्मीर को कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है, लेकिन शोपियांग जैसे इलाकों को अब भी सैलानियों का इंतजार रहता है।
2: ये जो जगहें हैं शोपियांग की, ये अनएक्सप्लोर जगहें हैं, जैसे पतनदफन है। ये जगह जो है इवन शोपियांग के लोगों को इस जगह का पता नहीं है, तो देयर आर लिमिटेड लॉट ऑफ पीपल जिनको इस जगह का पता है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, एक छोटा सा इलाका है। हम चाहते हैं कि यहाँ लोग आए, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर इस जगह का ख्याल भी रखना है, पोल्यूशन नहीं करना है, पोल्यूट नहीं करना है इस जगह को।
0: एक तरफ शोपियांग में सैलानियों की आमद बेहद कम है, तो दूसरी तरफ श्रीनगर में सैलानियों की रिकॉर्ड तादाद देखने को मिल रही है। गर्मी से राहत की तलाश में मैदानी इलाके से सैकड़ों सैलानी इन दिनों कश्मीर की हसीन वादियों और दिलकश नजारों और शानदार मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। श्रीनगर में इन दिनों सबसे ज्यादा रौनक डल झील पर है, जहां इन शानदार नजारों के बीच डल झील में शिकारे की सैर लोगों को बेहद पसंद आ रही है।
3: बहुत अच्छा लगा भैया, यहाँ के तो बहुत सुकून मिल रहा है हमको। मौसम यहाँ पर तो भैया दो दो मिनट में चेंज होता रहता है। दिल्ली में तो बहुत हॉट वेदर है, पर यहाँ पर जो क्लाइमेट है बहुत कोल्ड है। कभी रात को जैसे हम बोट हाउस में रहे तो वहाँ रात को एकदम बारिश हो गई, तो बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पे, सुहावना मौसम है।
4: कश्मीर में आके बहुत मजा आया, मतलब मुझे लगता है कि हर एक इंसान को जिंदगी में एक बार जरूर कश्मीर आना चाहिए घूमने के लिए। मतलब टोटली डिफरेंट इन कम्पेयर टू उत्तराखंड, केरला, टोटली डिफरेंट।
0: डल झील से लेकर गुलमर्ग तक एक अद्भुत रौनक बिखरी है और वादियों में जिंदगी मुस्कुरा रही है, लेकिन इस रौनक को अगर शोपियांग और पीर की गली जैसी अनछुए जन्नत का भी साथ मिल जाए तो कश्मीर के पर्यटन में चार चांद लग जाए। कश्मीर से अश्रवानी, गुड न्यूज टुडे।
5: और चलिए अब बात विदेश की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों सेशल्स के दौरे पर हैं, जहां वो 29 जून को सेशल्स के राष्ट्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ये समारोह देश की आजादी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले जब पीएम सेशल्स पहुंचे तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला और इसके बाद पीएम मोदी ने सेशल्स नेशनल बोटानिकल गार्डन का दौरा किया, जहां उन्होंने जोनाथन नाम के सबसे उम्रदराज कछुए को खाना खिलाया।

ढोल की थाप पर थिरकते लोग, कच्छ के पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति, और हाथ में तिरंगा लिए जोश से भरा भारतीय समुदाय। ये नजारा है हजारों किलोमीटर दूर सेशल्स का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में भारतीय संस्कृति की झलक नजर आई। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे पर विक्टोरिया के सेशल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, उनका स्वागत किसी उत्सव की तरह किया गया। राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद उनकी अगवानी की। एयरपोर्ट पर कच्छ के पारंपरिक नृत्य की शानदार प्रस्तुति ने इस स्वागत को और भी खास बना दिया।

0: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति होमिनी के साथ सेशल्स नेशनल बोटानिकल गार्डन पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के साथ मिलकर पौधारोपण तो किया ही, लेकिन इस दौरे की सबसे खूबसूरत और यादगार तस्वीर तब आई जब प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित जमीनी जानवर जोनाथन को देखने के लिए पहुंचे और अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। आपको बता दें कि जोनाथन दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित जमीनी जानवर है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। जोनाथन की उम्र 194 साल बताई जाती है। हालांकि कुछ जानकारों के मुताबिक जोनाथन की उम्र 194 साल से भी ज्यादा है। जोनाथन को खाना खिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर पर्यावरण के प्रति भारत के कड़े संकल्प को दिखाती है। प्रधानमंत्री मोदी 29 जून को सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ये समारोह देश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़ी एक दिलचस्प खबर आपको दिखाते हैं। खबर हैदराबाद से है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया। आखिर क्यों, ये जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट।
1: निजाम का शहर, चार मीनार का शहर, जिसे साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये हैदराबाद है। करीब 500 साल पुराना वो शहर जो इतिहास और आधुनिकता को एक साथ लेकर चलता है। ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जिसको अब शानदार ऐतिहासिक विरासत और आईटी हब होने के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक खास कनेक्शन को लेकर भी याद किया जाएगा। असल में हैदराबाद में अब एक सड़क का नामकरण राष्ट्रपति ट्रंप के नाम पर कर दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम पर किसी सड़क का नाम रखा गया है। राष्ट्रपति ट्रंप को जब इसकी जानकारी मिली तो वो गदगद हो गए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर ये तस्वीर साझा की, जिसमें तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमा और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जिको गोर सड़क के नामकरण से जुड़ी स्मारक पट्टिका का अनावरण करते दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए भारत को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस कदम की सराहना करते हुए लिखा, भारत के हैदराबाद में नया डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू, मैं ऐसा पहला राष्ट्रपति हूं जिसे इस तरह से सम्मानित किया गया है, थैंक यू। अब आपको बता दें कि आखिर वो हैदराबाद की कौन सी सड़क है जिसका नामकरण राष्ट्रपति ट्रंप के नाम पर हुआ है। हैदराबाद में अमेरिकी काउंसुलेट के पास वाली सड़क को डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू नाम दिया गया है। ये सड़क माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेज़न जैसी प्रमुख अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के दफ्तर के नजदीक है। तेलंगाना सरकार के मुताबिक ये नामकरण भारत अमेरिका संबंधों और हैदराबाद की बढ़ती वैश्विक पहचान का प्रतीक है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं सालगिरह पर चल रहे फ्रीडम 250 समारोह के सिलसिले में सड़क का नामकरण अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम पर किया गया है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप अगले साल भारत आ सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस सिलसिले में जानकारी दी है, लिहाजा ट्रंप के दौरे से पहले भारत में उनके नाम पर सड़क एक शानदार उपहार से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और अब बात फिल्मों से जुड़ी कर लेते हैं। 90 के दशक की सुपरहिट जोड़ी 18 साल के बाद एक बार फिर से फिल्मी पर्दे पर वापसी के लिए तैयार है। खिलाड़ी कुमार अक्षय और बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर साथ नजर आने वाले हैं, वो भी निर्देशक प्रियदर्शन की थ्रिलर फिल्म हैवान में, जिसकी रिलीज डेट अब सामने आ चुकी है। जानकारी के मुताबिक फिल्म 11 सितंबर को रिलीज होगी।

0: बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार और नवाब सैफ अली खान की जोड़ी एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर राज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सालों के लंबे इंतजार के बाद ये दोनों सुपरस्टार अपकमिंग फिल्म हैवान में एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे, वो भी पूरे 18 साल के बाद। अक्षय और सैफ का साथ आना फैंस के लिए किसी जश्न से कम नहीं है। 90 के दशक में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जैसी फिल्मों में इस जोड़ी ने धमाल मचा दिया था। एक का एक्शन और दूसरे की शानदार कॉमिक टाइमिंग दर्शकों के लिए मनोरंजन का डबल डोज था। अब सालों बाद ये जोड़ी हैवान से पर्दे पर वापसी कर रही है। फिल्म का टाइटल और पोस्टर देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार ये दोनों स्टार्स कुछ डार्क, खतरनाक और एक्शन से भरपूर अंदाज में तहलका मचाने वाले हैं। इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ऑफिशियल ऐलान हो चुका है। केवीएन प्रोडक्शन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म का एक बेहद दमदार और धांसू पोस्टर शेयर किया है। मेकर्स ने न सिर्फ फिल्म की पहली झलक दिखाई है बल्कि फैंस की बेकरारी को खत्म करते हुए रिलीज डेट से पर्दा भी उठा दिया। 90 के दशक में खिलाड़ी और अनाड़ी की इस जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर जो जादू चलाया था उसे आज भी दर्शक भूल नहीं पाए। अक्षय और सैफ एक साथ 7 फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनमें 1994 में आई मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, ये दिल लगी, तू चोर मैं सिपाही, कीमत, आरजू और 2008 में आई तशन शामिल है। अब जब दोनों सितारे इतने सालों के बाद एक बार फिर से लौट रहे हैं तो जाहिर है कि फिल्मी पर्दे पर धमाल तो होगा ही। उम्मीद यही है कि ये फिल्म सिनेमा घरों में नए रिकॉर्ड बनाएगी। रिलीज डेट का ऐलान हो चुका है, अब इंतजार है तो इस महामुकाबले के टीजर का। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर उन खास कुत्तों की जिन पर अमेरिका की पुलिस भी भरोसा करती है। अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप और आजादी के 250वें साल के जश्न की सुरक्षा के लिए कुत्तों के खास दस्ते को ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया। ट्रेनिंग पूरी होने पर वर्जीनिया में उन्हें सम्मानित भी किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में।
1: ये कुत्ते कमाल के, ये कुत्ते बड़े काम के हैं। ये विस्फोटकों और संदिग्ध वस्तुओं की पहचान करने में सक्षम हैं। हर खतरे को भांप लेने में माहिर हैं। अमेरिका के वर्जीनिया में अब ऐसे 6 कुत्तों की K9 टीम को खास प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया है ताकि खास मौकों पर सुरक्षा के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जा सके। ये तस्वीरें अमेरिका की नेशनल K9 अकेडमी की हैं। यहाँ पर कड़ी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इन कुत्तों और इनके हैंडलर्स को कामकाज के लिए सर्टिफिकेट दिए गए।
2: So today was a graduation for both the K9 and myself. We went through a 3-month process, 7 days a week, 24 hours on, and we did a lot of training. And today we graduated.
1: इन कुत्तों और इनके हैंडलर्स को अमेरिका के ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायरआर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स की ओर से विस्फोटकों और दूसरी खतरनाक सामग्रियों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इस सिलसिले में इन्हें खास गंध को पहचानने की तकनीक सिखाई गई और साथ ही साथ सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए तैयार किया गया है ताकि बड़े बड़े महत्वपूर्ण इवेंट्स का सुरक्षित आयोजन सुनिश्चित हो सके।
3: I think one of the really important things is these dogs are part of a larger security apparatus. So for these types of events, the dogs are there as kind of that initial detection phase, but they're also partnered up with, like I said, bomb technicians and explosive specialists. So once the dog alerts, that now becomes a bomb technician problem because it's a suspicious package. And so then we're going to have to back the dog out and everybody else out, and then the bomb techs can come in and do that work. But To me, it's just important to recognize that this is just one piece of a larger security apparatus that goes to secure these events that we often don't know.
1: फिलहाल इन कुत्तों में से 5 को अलग-अलग शहरों में फीफा वर्ल्ड कप मैच की सुरक्षा के लिए तैनात किया जा रहा है, जबकि एक को अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पर माउंट रशमोर में होने वाले राष्ट्रपति के कार्यक्रम से पहले जांच पड़ताल में मदद के लिए भेजा गया है। Your report, good news today.
0: और अब खबर अमेरिका से, जहां आजादी की 225वीं वर्षगांठ का जश्न अभी से शुरू हो चुका है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इसकी धूम देखने को मिल रही है, आप भी देखिए।
1: सुहावने मौसम में वॉशिंगटन डीसी के मशहूर फेरिस व्हील पर राइडिंग का रोमांच भला किसे नहीं आकर्षित करेगा। ये तस्वीरें वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल की हैं। यहाँ पर इन दिनों द ग्रेट अमेरिकन स्टेट फेयर चल रहा है। बड़ी तादाद में लोग इस मेले में मौज मस्ती करने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि मौका खास है और ये मौका है अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने के जश्न का।
4: We're celebrating America, everything about America here. 250 years as a nation, we know it hasn't been perfect, but we're still here today because it's the greatest experiment in democracy that ever was.
1: 4 जुलाई 2026 को अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद अमेरिका के इतिहास में उत्सव का ये सबसे बड़ा मौका है, लिहाजा इस सिलसिले में शानदार जश्न पहले से ही शुरू हो चुका है। इस उत्सव को फ्रीडम 250 नाम दिया गया है।
4: We are one nation. We are celebrating America's 250th birthday as a nation. That's what we're all celebrating here. You can look to your left and look to your right, and you will probably meet someone with an opposing view on politics, but it doesn't matter because we're all here for the same reason. So that's kind of the beauty of this event.
1: ये उत्सव यूएस कैपिटल बिल्डिंग और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के दरमियान करीब 2.5 किलोमीटर के दायरे में चल रहा है। इस अवसर पर यहाँ अमेरिका के सभी राज्यों के पवेलियन लगाए गए हैं। 16 दिनों के इस समारोह में लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: Whatever you're in the mood for, tune in has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
7: कौन से ग्रह का दान रात के समय में करना अच्छा होता है? किस ग्रह का दान करने से रोजगार की रुकावट दूर हो जाती है? और कौन से ग्रह के लिए गाय को हरा चारा खिलाने से फायदा होता है? किस ग्रह के लिए क्या करें दान, कब करें दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश

0: जितनी तेजी से वक्त बदल रहा है उतनी ही तेजी से युद्ध के स्वरूप में भी बदलाव आ रहे हैं। मैदानी जंग में इंसानों की सीधे एंट्री की बजाय मशीनों को रणक्षेत्र में उतारने की तैयारी हो रही है। यही वजह है कि अनमैन्ड वेपन्स पर दुनिया का फोकस बढ़ा है। ऑटोनोमस मोड में काम करने के लिए ताकतवर हथियार तैयार किए जा रहे हैं।
1: भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट राइनो के तहत एक व्यापक अपग्रेड प्लान तैयार किया है। थल सेना अपने बेड़े में शामिल करीब 2400 पुराने हो चुके T-72 टैंकों को रिटायर करने या कबाड़ में बेचने के बजाय उन्हें अत्याधुनिक मानव रहित कॉम्बैक्ट व्हीकल में बदलने की योजना पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य T-72 टैंकों की सेवा अवधि को साल 2030 से 2040 के बाद तक बढ़ाना है।
0: आज के युद्ध क्षेत्र में इंसानों से ज्यादा आधुनिक मशीनों की भूमिका है। अब जंग सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से लड़ी जाती है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। युद्ध में मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि सिर्फ पारंपरिक हथियारों के भरोसे काम नहीं चलने वाला। इसी दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद T-70 टैंक्स को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। सेना अपने पुराने T-72 टैंक्स को एक डिजिटल और आधुनिक अवतार देने जा रही है। अब इन टैंक्स को IP बेस्ड इंटरफेस के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा।
2: इस प्रोजेक्ट के तहत एक मानव रहित टैंक का निर्माण किया जाएगा, जिसमें इंजन का संचालन रिमोट से होगा। जो तोप और हैवी मशीन गन है उसका भी संचालन रिमोट से होगा। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, यानी जैसे AI का जो इंटीग्रेशन करना है या IP का जो इंटीग्रेशन करना है वह शायद उतने सुचारू रूप से फिलहाल नहीं हो रहा है।
0: T-72 वही टैंक है जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा की है। अब ये 40 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में रिटायर होने के कगार पर खड़े T-72 टैंक को घातक रोबोटिक वॉरियर में तब्दील करने की बात हो रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि T-72 टैंक में बदलाव से क्या फायदा होगा, सेना की समग्र मारक क्षमता में कैसे इजाफा होगा। माइंस भरे इलाकों को तोड़ने में मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल की तरह T-72 का इस्तेमाल होगा, साथ ही दुश्मनों की गोलीबारी को आकर्षित करने के लिए डिकॉय के रूप में काम करेगा, जिससे सैनिकों की सुरक्षा बढ़ेगी। अग्रिम मोर्चे पर ऑपरेशंस पे ये अहम भूमिका अदा करेगा, यानी T-72 टैंक अग्रिम पंक्ति के हमलों का नेतृत्व करेंगे और टोही के साथ गश्त का काम बखूबी निभाएंगे। डिजिटल होने के बाद T-72 टैंक कमांड नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भेजेंगे, जिससे ऑपरेटर्स और कमांडर्स को युद्ध के बीच तुरंत निर्णय लेने में आसानी होगी। पहले की योजना के अनुसार T-72 टैंक्स को साल 2030 से धीरे धीरे सेना से बाहर किया जाना था, लेकिन अब इस नई ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इन टैंक्स की उम्र अगले 15 से 20 साल यानी साल 2045 से 2050 तक बढ़ जाएगी।
2: एक नॉर्मल कन्वेंशनल टैंक जैसे कि T-72 को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें इंजन वही रहता है, गियरबॉक्स भी वही रहता है, तोप भी वही रहता है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी वही रहता है। सिर्फ बदला किया जाता है, एक मानव रहित रोबोट जो है वो ड्राइवर की जगह ले लेता है, एक मानव रहित गनर है वो तोपची की जगह ले लेता है, और कमांडर की जो जगह है वो रिमोट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे बैठे हुए एक मानव कमांडर के हाथ में होता है। अब इन सबको करने के लिए जो रोबोट टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित कर ली है, लेकिन उसमें जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वह अभी तक आना बाकी है।
0: यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि आज के आधुनिक दौर में ड्रोन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और टॉप अटैक हथियारों ने पारंपरिक टैंक्स को बेहद असुरक्षित बना दिया है। ऐसे माहौल में टैंक के भीतर बैठे क्रू मेंबर्स की जान हमेशा खतरे में रहती है। भारत ने इस वैश्विक चुनौती का बेहद सटीक और किफायती समाधान ढूंढ निकाला है।
1: सेना अपने पुराने हो रहे T-72 टैंकों में एक विशेष ऑटोनॉमस किट फिट करेगी, जिससे कि इन्हें रिमोट कंट्रोल के जरिए या फिर पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड में ऑपरेट किया जा सकेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि टैंक के भीतर कोई सैनिक मौजूद नहीं होगा। टैंक AI की मदद से या फिर रिमोट से ऑपरेट होगा और ये अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ दुश्मन पर हमला भी करेगा।
0: एक पारंपरिक भारी भरकम मेन बैटल टैंक जैसे T-72 को मानव रहित रोबोटिक टैंक में बदलना इंजीनियरिंग का एक बेहद जटिल काम है। इसके लिए टैंक के पुराने मैनुअल सिस्टम को पूरी तरह हटाकर उसमें ड्राइव बाय वायर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाता है। टैंक को रोबोट बनाने के लिए उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाता, बल्कि उसमें एक विशेष रेट्रोफिट किट लगाई जाती है। इस किट के तीन मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है एक्चुएटर्स एंड सर्वो मोटर्स। टैंक के मैनुअल स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और गियर लीवर पर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर फिट किए जाते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मानव चालक के हाथ और पैर करते हैं। दूसरा है रिमोट गन कंट्रोल सिस्टम। 125 mm गन को मोड़ने, निशाना साधने और गोला दागने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगाई जाती हैं, जिन्हें मीलों दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है डिजिटल इंटरफेस। टैंक के पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम को ECU यानी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जो डिजिटल कमांड को मैकेनिकल मूवमेंट में बदल देता है।
2: खास बात है कि एक T-72 में आमतौर पर एक तीन लोगों का क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर। लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद इसमें जो रेट्रोफिट किट लगाया जाएगा, उसमें यह ड्राइवर का काम एक ऑटोमेटिक रोबोट करेगा। इसी तरह से जो ड्राइवर होगा उसको असिस्ट करने के लिए जो गनर है, जो टैंक का मेन तोप और हैवी मशीन गन फायर करता है, उस गनर को भी एक रोबोटिक गनर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी जो ट्रिगर प्रेस करने का काम है, जो निशाना लगाने का काम है, नया गोला तोप के चैम्बर में डालने का काम है, वो भी रोबोट्स के जरिए किया जाएगा।
0: रोबोटिक टैंक के अंदर कोई इंसान नहीं होता, इसलिए युद्ध क्षेत्र को देखने और समझने के लिए टैंक के चारों तरफ सेंसर्स का एक जाल बिछाया जाएगा। टैंक में लिडार और रेडार का इस्तेमाल होगा। ये सेंसर चारों ओर लेजर और रेडियो तरंगे भेजकर रियल टाइम में पूरे इलाके का एक 3D डिजिटल मैप तैयार करते हैं। इससे टैंक को पता चलता है कि आगे कोई खाई, चट्टान या दीवार तो नहीं है। टैंक में 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगाए जाएंगे, जो रात के अंधेरे, घने धुएं या कोहरे में भी दुश्मन की हलचल को साफ देख सकते हैं। AI सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में मिलाएगा, ताकि टैंक का कंप्यूटर एक सटीक फैसला ले सके। भारतीय सेना अपने टैंक्स को सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाना चाहती, क्योंकि युद्ध में दुश्मन सिग्नल जाम कर सकता है, इसलिए इसमें AI की मदद ली जाएगी। भारतीय सेना की अदिति 4.0 योजना के तहत देश के अग्रणी रक्षा स्टार्टअप्स इसी रोबोटिक किट और AI सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, ताकि हमारे T-72 टैंक्स को रिमोट कंट्रोल किलर मशीन्स में बदला जा सके।
1: मानव रहित टैंक को कंट्रोल करने के लिए युद्ध के मैदान से 5 से 10 किलोमीटर पीछे एक बख्तरबंद ट्रक के अंदर सैनिक सुरक्षित बैठता है। ऑपरेटर के सामने कई बड़ी स्क्रीन्स या VR हेडसेट्स होते हैं, जो कि ऐसा अनुभव देते हैं कि वो खुद टैंक के अंदर बैठा हो।
0: कंट्रोलर एक विशेष जॉयस्टिक, स्टीयरिंग व्हील और फायर बटन की मदद से टैंक को चलाता है और निशाना लगाता है। ऑपरेटर अपने कंट्रोल पैनल पर तय करता है कि कि उसे किस तरह का गोला दागना है। जैसे बख्तरबंद गाड़ियों के लिए APFSDS पैदल सेना या बंकरों को तबाह करने के लिए हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल। ऑपरेटर जैसे ही बटन दबाता है एक इंटीक्रिप्टेड डिजिटल सिग्नल टैंक के ECU यानी केंद्रीय कंप्यूटर को जाता है और फिर टैंक फायर कर देता है। सुरक्षा नियम कहते हैं कि गोला दागने का अंतिम फैसला हमेशा इंसानी ऑपरेटर का ही होता है। AI को खुद से फायर करने की अनुमति नहीं दी जाती।
2: अमेरिका, रशिया और इजराइल ने भी इस तरह के रोबोटिक टैंक्स बनाने की कोशिश की है, लेकिन इनमें से किसी भी देश में अभी तक जो प्रोटोटाइप बनाया गया है उसको ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी कि मास प्रोडक्शन के बाद उनकी आर्मी में इंडक्शन का कोई ऑर्डर नहीं मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि युद्धभूमि में ऐसा ना हो कि हमारा ही रोबोटिक टैंक गलती से हमारे ही टैंक या हमारे ही तोप की पोजीशन जो आर्टिलरी है या हमारी जो इन्फेंट्री ट्रुप्स युद्धभूमि में है उन पर फायर ना खोल दे। व्यवस्था ये की जाती है कि हमेशा जो ऑटोमेटिक लूप है उसमें मैन इन लूप हो, यानी फाइनल फायर करने की जो इजाजत है वो एक मनुष्य देगा।
0: T-72 टैंक को रिप्लेस करने की बजाय इसे अपग्रेड किया जा रहा है। आखिर दशकों पुराने इस टैंक में ऐसा क्या खास है कि इसे अपग्रेड कराने की तैयारी हो रही है और ये कितना घातक है ये भी जानना जरूरी है। भारत का T-72 टैंक अजय 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है जो 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ने की ताकत रखता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत है कि ये रीस्टार्ट होने में महज 6 से 7 सेकंड का वक्त लेता है। कम गहरी नदियों को आसानी से पार करने की इसमें ताकत है। लाइटवेट टैंक की बात करें तो भारतीय सेना के पास जो T-72 अजय टैंक है उसका वजन 41 टन के आसपास है। इसमें 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी हुई है। इससे एक बार में एक साथ 300 राउंड फायर होते हैं। इससे 1500 मीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है।
2: T-72 टैंक रूस का प्रमुख मेन बैटल टैंक है। वैसे रूस ने बाद में इसको अपग्रेड करके T-90 टैंक बनाया जो कि भारत के पास भी है। भारत की फौज में अभी करीबन 1000 T-90 टैंक्स हैं और करीबन 3000 T-72 टैंक हैं। इन T-72 टैंक्स की खास बात यह है कि ये रेत के ऊपर, दलदल के ऊपर, कीचड़ में, जंगल में, पहाड़ों में, बर्फ में भी ऑपरेट कर सकते हैं। इन T-72 टैंक्स में जो मेन गन लगी है वो इंफ्रारेड फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है और रात के अंधेरे में भी दुश्मन के टैंक्स या दुश्मन की गन पोजीशन को 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी से देखकर एक्यूरेट फायर कर सकता है।
0: भारतीय सेना के पास T-72 टैंक के 3 वर्जन हैं, अजय MK-1, अजय MK-2 और कॉम्बैट इम्प्रूव्ड अजय, जिनका भारत इस्तेमाल करता है। इस वक्त भारतीय सेना में करीब 2400 के आसपास T-72 अजय टैंक मौजूद हैं।
1: भारतीय सेना ने T-72 के आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट राइनो शुरू किया था। इसके तहत टैंकों में नए इंजन, आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम और बेहतर सुरक्षा प्रणाली लगाने की योजना है। साथ ही अदिति 4.0 पहल के तहत इन्हें भविष्य में मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म में भी बदला जा सकता है। सेना का मानना है कि इन सुधारों से T-72 टैंक आने वाले वर्षों में भी प्रभावी बने रहेंगे और भविष्य में फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के शामिल होने तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
0: भारत जहां अपने मौजूदा T-72 टैंक बेड़े को बदलने और AI रेट्रोफिट किट का शुरुआती परीक्षण करने के चरण में है, वहीं अमेरिका और रूस ने इस क्षेत्र में समर्पित नई पीढ़ी के प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए हैं और उनका लाइव बैटलफील्ड में परीक्षण भी किया जा चुका है। आखिरी
1: युद्ध में टैंक की क्या अहमियत है और इसकी जरूरत अब भी रणभूमि में क्यों महसूस की जाती है, इसे जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में चलना होगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के कई देश एक दूसरे को घुटनों के बल लाने के लिए रण क्षेत्र में उतरे हुए थे। तब पुराने जमाने की तरह ज्यादातर लड़ाई आमने सामने लड़ी गई। जितनी लड़ाई जमीन के ऊपर लड़ी गई, उतनी ही जमीन के नीचे भी। कई कई किलोमीटर लंबी खाइयां खोदकर सैनिक उनमें मशीन गन से लैस होकर तैनात रहते थे। इन खाइयों को ट्रेंच कहा जाता है और इनके बीच होता था नो मैन्स लैंड। तार बाड़ और लैंड माइन से भरी जमीन को पार करना यानी

0: हथियार की जो जानकारी थी वो कहीं लीक ना हो जाए, इसलिए आधिकारिक फाइल्स में इस हथियार को टैंक लिखा जाने लगा, ताकि अगर किसी को पता चले तो ये लगे कि ब्रिटेन पानी ले जाने के लिए किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जो कमेटी इसका काम देख रही थी उसे टैंक सप्लाई कमेटी या टीएस कमेटी कहा गया, और जब फिर हथियार तैयार हो गया तब उसका नाम टैंक ही पड़ गया।
1: पहले विश्व युद्ध में बने टैंक प्रयोग के स्तर पर थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध आते आते टैंक्स फौज की जरूरत बन गए, या यूं कहें टैंक्स सेना का अनिवार्य हिस्सा बन गए। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने जब चंद दिनों में फ्रांस और पोलैंड पर अपनी जीत हासिल की तो उसकी सबसे बड़ी वजह उसके टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ही थे।
0: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टैंक की अहमियत बढ़ने लगी, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों ने आमने सामने की लड़ाई में टैंक की विध्वंसकारी ताकत को काफी करीब से महसूस कर लिया था, और फिर दुनिया के कई देशों ने टैंक टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया। इनमें एक नाम भारत भी था।
1: लंबे समय तक भारत अपने दोस्त सोवियत रूस से टैंक आयात कर अपनी जरूरतें पूरी करता रहा। फिर 1965 में भारत ने यूके की मदद से अपना एक टैंक बनाया जिसका नाम रखा गया विजयंत। इसका इस्तेमाल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किया गया। स्वदेशी ताकत को धार देने के लिए बाद में अर्जुन टैंक का निर्माण किया गया, और अब इसी कड़ी में जोरावर का नाम भी जुड़ गया है। किसी भी टैंक की ताकत का आकलन उसकी मारक क्षमता, उसकी स्पीड और उसकी डिफेंस क्षमता से होती है। इसके लिए बैटल टैंक्स के कुछ इंडिकेटर होते हैं, उनके जरिए ही पता चलता है कि टैंक फौज की जरूरत के हिसाब से सही है या नहीं। ये इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। पहला इंडिकेटर वजन है, स्पीड है, पावर टू वेट रेशियो है, साथ ही हथियारों और डिफेंस मैकेनिज्म है जो ये बताता है कि आर्मर कैसा है टैंक का।
2: टैंक के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन, और ये तीनों बहुत जरूरी है। अगर आप देखें मोबिलिटी, तो वो दिखलाता है कि टैंक किस स्पीड से जा सकता है, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह में कम से कम समय में जा सकता है, और अपने टारगेट को कितनी जल्दी जाके हिट कर सकता है। तो इसलिए मोबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार फायर पावर, जो फायर पावर है वो दिखलाता है कि आप किस हिसाब से अपने टारगेट को शॉर्ट शॉर्ट हिट कर देते हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी रेंज कितनी है। और जो तीसरा है आपकी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यह है कि आपको ये भी देखना है कि दुश्मन के जो एंटी टैंक वेपन है या दुश्मन के टैंकों से आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट हिट हो जाता है आपके टैंक में, तो आप के पास इतनी काबिलियत और क्षमता होनी चाहिए कि आपका टैंक उसको विस्टैंड कर ले। तो इसका मतलब चुबा आर्मर है, रिएक्टिव आर्मर है, तो इस टाइप का। तो ये कॉम्बिनेशन है इम्पोर्टेंट। एक टैंक के अंदर तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन। इसका कॉम्बिनेशन होना, इसकी ऐसा तरीके से होना कि इसका वेट भी ऑप्टिमम हो, इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो, और फायर पावर भी बहुत ही एक प्रकार से अव्वल दर्जे की हो।
1: किसी अच्छे बैटल टैंक में दो काबिलियत अनिवार्य है, पहला मोबिलिटी और दूसरा फायर पावर। मोबिलिटी का मतलब टैंक की वो ताकत है जो उसे कहीं भी ले जा सकती है। आप देखिए, ट्रेंच वॉरफेयर की जगह पे ही टैंक्स आए थे, पक्की सड़क हो या फिर कई मीटर गहरा कीचड़। टैंक का काम है हर जगह से निकलना। जहाँ बड़े बड़े पहियों वाले ट्रक्स भी फंस जाते हैं, वहाँ से टैंक्स आसानी से निकल जाते हैं, जबकि टैंक में लोहे के रोड व्हील्स या कहिए उसमें लोहे के पहिए होते हैं, फिर भी वो धसते नहीं। वो कैसे? इसका सिंपल फिजिक्स है। टैंक के पहिए सीधे जमीन पर चलते ही नहीं हैं, टैंक्स अपने साथ अपनी सड़क भी लेकर चलते हैं, जिन्हें कहा जाता है ट्रैक। आमतौर पर लोग इसे टैंक की चेन कह देते हैं, लेकिन ट्रैक सही शब्द है। ट्रैक पर चलने का फायदा ये है कि टैंक का वजन जमीन के किसी एक हिस्से पर नहीं पड़ता है। टैंक का ट्रैक टैंक के वजन को एक बहुत बड़े सरफेस एरिया पर बांट देता है, और

0: इसलिए नम जमीन पर भी 50-50 टन के टैंक कभी धसते नहीं।
1: टैंकों के अंदर व्हील नहीं होते, क्योंकि व्हील जो है उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि रेतीले इलाके में, दलदल के इलाके में या टूटी फूटी जमीन में चल पाए। इसीलिए टैंकों के अंदर ट्रैक होते हैं और ट्रैक से काबिलियत बढ़ती है टैंकी। टैंक जो है एक प्रकार से रेतीली इलाके में भी जा सकता है और ऐसे इलाके में जा सकता है जहां पर दलदल हो या टूटी फूटी जमीन हो। इसीलिए टैंकों में ट्रैक होता है ना कि व्हील।
0: मौजूदा दौर में कई टैंक्स गहरे पानी तक को पार करने में सक्षम हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टैंक्स बिल्कुल भी फंसते नहीं। टैंक्स भी फंसते हैं, लेकिन ऐसा बेहद कम होता है।
2: टैंक्स को मैन्युवरल भी होना चाहिए और बढ़िया वेट टू पावर रेशियो भी होना चाहिए। मैन्युवरिंग मतलब टैंक कितनी चपलता या फुर्ती के साथ हरकत कर सकता है, गोला दाग कर कितनी जल्दी अपनी पोजीशन बदल सकता है। जाहिर है टैंक भारी होगा तो उसे हरकत करने में काफी दिक्कतें आएंगी, लिहाजा टैंक के पास एक ताकतवर इंजन का होना जरूरी है।
0: टैंक का वजन और उसके इंजन की ताकत या पावर के बीच जो अनुपात होता है उसी को कहा जाता है पावर टू वेट रेशियो। जितना बेहतर पावर टू वेट रेशियो होगा उतना अच्छा टैंक हो सकता है।
1: तीन रिक्वायरमेंट है टैंक की। इसकी फायर पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसकी मोबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, इसकी प्रोटेक्शन भी, और तीनों का तालमेल होना चाहिए। देखो अगर आप प्रोटेक्शन देते हैं तो फिर इसका टैंक का एक प्रकार से वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है तो फिर मोबिलिटी कम हो जाती है और उसकी फायर पावर कैसी होगी वो भी दर्शाता है। तो एक अच्छे टैंक का पहचान यह है कि हर चीज अच्छी हो, उसकी फायर पावर भी बहुत अच्छी हो, वो उसके रेंज पे हिट कर पाए, 100% अपने टारगेट को हिट कर पाए, और इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो कि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा पाए, और तीसरा है इसकी प्रोटेक्शन भी हो कि अगर दुश्मन का टैंक या एंटी टैंक वेपन हिट करता है तो वो उसे बचाव कर पाए। तो इन तीनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए कि ये ना हो कि टैंक इतना हैवी हो, इतना लाइट ना हो कि उसकी प्रोटेक्शन इतनी अच्छी ना हो या उसके अंदर फायर पावर इतनी अच्छी ना, तो तीनों का एक प्रकार संतुलन होना जरूरी है।
2: हमारे लिए यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: जस्ट व्हाट यू नीड फॉर समर इज वेटिंग एट टारगेट। Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
5: No ticket, no line, just showtime. Qello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
6: से ग्रह का दान रात के समय में करना अच्छा होता है? किस ग्रह का दान करने से रोजगार की रुकावट दूर हो जाती है? और कौन से ग्रह के लिए गाय को हरा चारा खिलाने से फायदा होता है? किस ग्रह के लिए क्या करें दान, कब करें दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
9: 2024 में T20 विश्व कप पर कब्जा, 2025 में जीता चैंपियंस ट्रॉफी का रण, अब लिया 2027 वर्ल्ड कप का प्रण, पद्मश्री रोहित शर्मा का अग्निपथ। सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: देव स्नान पूर्णिमा के मौके पर 29 जून को जगन्नाथपुरी में होगी स्नान यात्रा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को 108 कलशों के पवित्र जल से कराया जाएगा स्नान। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर हुआ मंथन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रबुद्ध जनों से की चर्चा। श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ शहर के ट्रैफिक प्लान पर हुई बात। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों यात्रियों के लिए गुड न्यूज। 29 जून से सेंट्रल रेलवे की 12 और लोकल ट्रेन्स बनेंगी एसी। लोकल के मुसाफिरों की यात्रा होगी अधिक सुगम और आरामदायक। गुजरात के 14 शहरों को मिली सुगम यातायात की सौगात। भारत टैक्सी ऐप का शुभारंभ। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में उन्होंने किया उद्घाटन। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। बोटानिकल गार्डन में 196 साल के सबसे उम्रदराज कछुए जोनाथन के दीदार किए।

से पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उसने क्रिकेट के मैदान पर करिश्माई पारियां खेलकर क्रिकेट प्रेमियों के साथ ही देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाली जूरी का भी दिल जीत लिया। इसलिए क्रिकेट के उस मसीहा को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। ये वो शख्स हैं जिसने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के साथ ही ICC चैंपियंस ट्रॉफी का भी चैंपियन बना दिया।

0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।
1: आप समझ ही गए होंगे कि आज बंदे में है दम का बंदा कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के हिटमैन यानी कि विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। जी हां, भारतीय क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी बहुत कम हुए हैं जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के चंद उन्हीं चुनिंदा खिलाड़ियों में से शुमार हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया एक से ज्यादा बार विश्व चैंपियन बन चुकी है। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया कम से कम फटाफट फॉर्मेट में कमोबेश अपराजेय बनी रही। ये क्रिकेट के दो फॉर्मेट T20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं लेकिन वनडे में अभी भी दमदार पारियां खेल रहे हैं।
0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।

0: 23 जून रोहित शर्मा के जीवन की सबसे यादगार तारीख बन चुकी है। 23 जून ही वो तारीख है जब रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला कदम रखा था। रोहित ने 23 जून 2007 को आयरलैंड के बेलफास्ट में खेले गए एक वनडे मैच से भारत के लिए डेब्यू किया था। रोहित की किस्मत का 23 जून कनेक्शन देखिए कि इंटरनेशनल डेब्यू के 19 साल बाद 23 जून को ही रोहित शर्मा को चौथे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।

0: दरअसल 19 साल के अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में रोहित ने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किए जाने के वाजिब हकदार बन गए। सिर्फ बतौर बल्लेबाज ही नहीं, बतौर कप्तान भी रोहित के नाम कई कीर्तिमान दर्ज हैं। हालांकि रोहित को एक बात का अफसोस भी रहता है कि साल 2023 के वर्ल्ड कप में वो विश्व विजेता बनने की दहलीज तक पहुंचकर कप उठाने से वंचित रह गए थे। तारीख थी 19 नवंबर 2023, स्थान था अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया के मुकाबिल था ऑस्ट्रेलिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत विश्व विजेता बनते बनते रह गया था। एक हुक, एक कसक, एक टीस थी जो रह गई थी कप्तान रोहित शर्मा के मन में। 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित ने अपनी रहनुमाई में उस हुक को, उस टीस को, उस कसक को, उस पीड़ा को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जश्न में तब्दील कर दिया। तब होली से पहले पूरे देश में दिवाली की रौनक नुमाया हो गई थी। लीडर अगर सेल्फलेस हो, निस्वार्थ हो, भेदभाव रहित हो, तो उसकी टीम की जय निश्चित हो जाती है। क्योंकि लीडर जब सेल्फलेस होता है तो पूरी टीम जीत को लेकर जुनूनी हो जाती है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा निसंदेह इसी कैटेगरी के लीडर रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित ने 76 रनों की जो पारी खेली थी, उसने कीवियों के हौसले को ऐसा पस्त कर दिया था कि मैदान पर मचलने के सिवा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। दरअसल जीत के लिए संघर्ष करते कीवियों को शायद पता नहीं था कि क्रिकेट के मैदान के इस युगांधर ने दुबई रवाना होने से पहले ही अपने बचपन के कोच दिनेश लाड से ये वादा किया था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का कप लेकर ही वापस लौटेगा।
1: रोहित ने मुझे जाने के वक्त मुझे कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग जीत के आएंगे, तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप के लिए गया था तभी भी मुझे कहा था उसने, मैं चैंपियंस T20 वर्ल्ड कप आपको लेके दिखाऊंगा, आपको गुरुदक्षिणा दूंगा, ये मुझे सेकंड गुरुदक्षिणा दिया ऐसे मैं कहूंगा।
0: इस तरह का चट्टानी आत्मविश्वास युग पुरुष का ही होता है, और जब लीडर का, रहनुमा का आत्मविश्वास आसमानी होता है तो पूरी टीम जीत के विश्वास से भर जाती है। यही वजह है कि 2 साल में लगातार 2 आईसीसी खिताब जीतने वाले रोहित दुनिया के पहले कप्तान हैं। 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी का विश्व चैंपियन बनने से पहले 19 जून 2024 को बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से शिकस्त देकर रोहित की सेना T20 वर्ल्ड कप की विजेता बनी थी। अपनी कप्तानी में रोहित शर्मा की ये पहली खिताबी आईसीसी ट्रॉफी थी। लिहाजा जीत के बाद मैदान का ये तूफान इतना भावुक हो गया कि केंसिंगटन ओवल की पिच की मिट्टी को प्रसाद मानकर अपनी जिह्वा पर रख लिया। रोहित के इस भावनात्मक उद्गार को पीएम मोदी ने भी देखा था। इसीलिए चैंपियंस का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी ने जब रोहित की विजेता ब्रिगेड को पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर आमंत्रित किया, तो उस घटना का जिक्र करना नहीं भूले।
2: कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है, और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चूमा, ये कोई हिंदुस्तानी ही कर सकता है।
3: जहाँ पर हमें वो विक्ट्री मिली उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस, क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया।
0: क्रिकेट के मैदान पर विरोधी टीम के गेंदबाजों की खाट खड़ी कर देने वाला ये इंसान इतना ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, इसकी तो किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। बहरहाल 2 साल में 2 आईसीसी टूर्नामेंट की खिताबी जीत से ज्यादा बड़ी है रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया की अपराजेयता। आईसीसी टूर्नामेंट में रोहित की कप्तानी का रिकॉर्ड अपने आप में अद्वितीय रहा है। इस युगांधर की कप्तानी में 2023 विश्व कप के फाइनल को छोड़कर टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट्स का अपना एक भी मैच नहीं हारी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल समेत रोहित की सेना ने कुल 5 मैच खेले और 5 में जीत हासिल की। 2024 T20 विश्व कप में भी टीम इंडिया ने फाइनल समेत 8 मुकाबले खेले थे और सभी में जीत दर्ज की थी। वर्ल्ड कप 2023 में भी रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल छोड़कर कुल 10 मैच खेले थे और सभी में जीत हासिल की थी। रोहित की लीडरशिप का कमाल ये है कि ICC टूर्नामेंट में उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने कुल 23 मुकाबले खेले और इनमें से 22 में जीत दर्ज की। ये है इस बेमिसाल लीडर का रिकॉर्ड। दरअसल रोहित शर्मा जब मैदान पर होते हैं तो पूरी टीम निर्भय होकर मुकाबला करती है, क्योंकि रोहित का बल्ला जब चलता है तो विरोधियों की पेशानियों पर सिर्फ चिंता की लकीरें होती हैं। यही वजह है कि रोहित के प्रति क्रिकेट प्रेमियों की दीवानगी जुनून की हदें पार कर जाती हैं। हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमियों का अब बस एक ही सपना है, साल 2027 में साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप में भारत को अपनी बैटिंग के दम पर तीसरी बार विश्व चैंपियन बनाकर ही रोहित वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करें। इसीलिए 39 साल के हो चुके रोहित शर्मा के साल 2027 वर्ल्ड कप से पहले रिटायरमेंट की चर्चा बेमानी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी यही चाहते हैं कि रोहित ने जैसे टीम इंडिया को T20 का विश्व विजेता बनाने के बाद 2020 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया, उसी तरह 2027 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाकर ही वनडे क्रिकेट को अलविदा कहें। रोहित की तरह का क्रिकेटर युगों में एक बार अवतरित होता है। 19 साल के क्रिकेट करियर में रोहित ने कभी भी अपने निजी रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेला। उनका बल्ला जब भी चला टीम के लिए चला। बेशक टीम के लिए खेलते हुए कुछ बेनजीर रिकॉर्ड्स उनके नाम दर्ज हो गए। हालांकि उनकी कप्तानी में अगर टीम इंडिया के रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा लीडरशिप के मामले में उनके आस पास भी कोई नहीं है।
4: T20 और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले रोहित जितने शानदार टीम लीडर साबित हुए हैं, उतने ही आक्रामक बल्लेबाज भी हैं। रोहित शर्मा की आक्रामक बैटिंग का लोहा दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर्स भी मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद रोहित शर्मा बैट्समैन नहीं बल्कि बॉलर बनना चाहते थे? रोहित शर्मा अपनी क्रिकेट अकेडमी में ऑफ ब्रेक की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन कमाल की अंतर्दृष्टि थी उनके कोच में, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे हुए बैटिंग के हुनर को पहचाना और बॉलिंग की जगह उनसे बैटिंग पर ध्यान देने की सलाह दी। कोच की एक सलाह ने रोहित की जिंदगी बदल दी।
0: वर्तमान का एक छोटा सा टर्न कई बार भविष्य की पूरी तस्वीर बदल देता है। रोहित शर्मा इस बात की सबसे बड़ी मिसाल हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो रोहित शर्मा आज इंटरनेशनल क्रिकेट में हिटमैन के नाम से विख्यात हैं, वो बल्लेबाज की जगह गेंदबाज बनना चाहते थे। रोहित अपनी टीम के ऑफ स्पिनर थे और बॉलिंग की ही नेट प्रैक्टिस करते थे। लेकिन दाद देनी होगी रोहित के कोच दिनेश लाड की, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे बैटिंग क्लास को महसूस कर लिया। अगर दिनेश लाड ने रोहित को बैटिंग करने के लिए प्रेरित ना किया होता तो शायद टीम इंडिया को इतना बेहतरीन हिटमैन नहीं मिला होता।
5: कभी बैट्समैन नहीं था। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया अपने स्कूल के लिए, मैं एज अ बॉलर सिलेक्ट हुआ था, ऑफ स्पिन बॉल डालता था। तो कुछ महीनों के बाद मेरे जो कोच है दिनेश लाड जी, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला, यार तेरे को बैटिंग में भी फोकस करना चाहिए, हमें टीम को ऑलराउंडर की ज़रूरत है। और उन्होंने मेरा बैटिंग देखा और मुझे 7-8 नंबर पर बैटिंग करने का मौका दिया। और जब मैं बैटिंग करने गया तो मैंने कुछ 30-40 रन बनाए नीचे 7-8 नंबर पे, उनको अच्छा लगा।
6: उसी अंदाज में जो आजकल बनते हैं।
5: हाँ बिल्कुल, उसी अंदाज में छक्के चौके ऐसे ही लग रहे थे। तो मेरे सर जो थे काफ़ी खुश हुए, उन्होंने बोला, उन्होंने एक बार मुझे ऊपर बैटिंग करने का अपॉर्चुनिटी दिया और उस टाइम मैंने 140 रन बनाए।
0: दरअसल रोहित के क्रिकेट करियर का आगाज मुंबई के बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन से हुआ। रोहित इस एकेडमी की तरफ से खेलते थे और ऑफ स्पिनर बनना चाहते थे। इसी दौरान किसी मैच में स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल के कोच दिनेश लाड की नजर रोहित पर पड़ी। तब उन्हें अपने स्कूल की टीम के लिए अच्छे उदयमान खिलाड़ियों की तलाश थी। रोहित की स्पिन गेंदबाजी दिनेश लाड को पसंद आई और उन्होंने रोहित को विवेकानंद स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। काबिले गौर है कि तब स्कूल की फीस 275 रुपए प्रति महीने थी और रोहित के पेरेंट्स के लिए इस फीस का इंतजाम कर पाना मुश्किल था, क्योंकि तब रोहित के पेरेंट्स को क्रिकेट कोचिंग के लिए हर महीने 800 रुपए देने पड़ते थे और उसी का इंतजाम बड़ी मुश्किल से हो पाता था। रोहित की इस मजबूरी को देखते हुए दिनेश लाड ने उनकी स्कूल की फीस माफ करवा दी। दरअसल दिनेश लाड छोटी उम्र के रोहित के जबरदस्त आत्मविश्वास से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रोहित का आत्मविश्वास देखकर उन्हें शुरू में ही लग गया कि ये लड़का एक दिन दुनिया का सबसे धाकड़ खिलाड़ी बनेगा।
1: नहीं नहीं, कभी फियर फैक्टर, मैंने कभी उसको ऐसे डरते हुए कभी देखा ही नहीं। हर स्कूल के हर मैच में कोई भी अच्छे बॉलर हो, कोई भी है, डर के कभी खेला नहीं। उसका फायदा उसको, क्योंकि उसके अपने आप में लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है और वो कॉन्फिडेंस के ऊपर वो अपनी बल्लेबाजी करते रहे और उसका फायदा उसको होता ही होता है।
0: दिनेश लाड की सलाह पर रोहित ने बॉलिंग के साथ अपनी बैटिंग पर भी ध्यान देना शुरू किया और उसका असर ये हुआ कि बतौर बल्लेबाज वो सेलेक्टर्स को प्रभावित करने लगे। अंडर 14, अंडर 15 और अंडर 19 हर टीम में वे जगह बनाते चले गए। साल 2007 में रोहित भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलने दक्षिण अफ्रीका गए और मेजबान टीम के खिलाफ शानदार हाफ सेंचुरी बनाकर अपने टैलेंट का लोहा मनवा दिया। हालांकि पैसे की तंगी अभी भी बनी हुई थी। रोहित की किस्मत ने बड़ी करवट तब ली जब साल 2008 में IPL में उन्हें 3 करोड़ कीमत मिली। जिस रोहित ने बचपन से पैसे की तंगी देखी थी, उनके पास जब एक मुश्त 3 करोड़ रुपए आए तो उन्हें एक बारगी समझ नहीं आया कि इन पैसों से सबसे पहले अपनी कौन सी हसरत पूरी करें। काफी उधेड़बुन के बाद रोहित ने अपने लिए शानदार गाड़ी खरीदी। हालांकि उस समय उनके माता पिता बोरीवली में किराए के घर में रहते थे, लिहाजा रोहित के गाड़ी खरीदने के फैसले से वो नाराज हुए, क्योंकि माता पिता चाहते थे कि रोहित सबसे पहले मुंबई में घर खरीदे। बहरहाल रोहित ने बाद में अपने पेरेंट्स की ये इच्छा भी बांद्रा में घर खरीद कर पूरी कर दी। लेकिन बचपन में गरीबी का दंश झेल चुके रोहित के पास जब पैसे आने लगे तो उनका दिलो दिमाग क्रिकेट से डिस्ट्रैक्ट होने लगा। यही वजह है कि साल 2009 और साल 2010 में वो कुछ खास नहीं कर पाए। रोहित को तगड़ा झटका तब लगा जब 2011 वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। झटका लगने के बाद रोहित ने गहराई के साथ आत्ममंथन किया और तय किया कि सफल होना है तो डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करना ही पड़ेगा।
5: सिचुएशन को मैं समझ नहीं पा रहा था, नया नया था, 20 साल का था, तो गेम रीडिंग सिचुएशंस जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं थी। फेलियर्स के बाद ही मुझे पता चला कि गेम में क्या सुधार लाने की जरूरत है, गेम को कैसे इम्प्रूव करना है।
0: कुछ वक्त की असफलता ने रोहित को इतना ज्यादा सचेत कर दिया कि वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगे। 2011 वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर टीम इंडिया में जगह बनाई। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें पारी की शुरुआत करने का मौका मिला और उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी बनाई। उसके बाद तो रोहित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
4: रोहित शर्मा में वो काबिलियत है कि अपनी धुआंधार बैटिंग से किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन रोहित के पिता वनडे क्रिकेट या फिर T20 में रोहित के प्रदर्शन से बहुत ज्यादा खुश नहीं होते थे, क्योंकि पिता की नजर में टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ी की असली अग्नि परीक्षा होती है। हालांकि रोहित अब टेस्ट क्रिकेट और T20 से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उससे पहले पिता के ख्वाहिशों पर खरा उतरने की भरसक कोशिश की।

0: वनडे क्रिकेट में कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले रोहित शर्मा की जिंदगी एक अजीब विडंबना है। रोहित के पिता गुरुनाथ शर्मा की शुरू से ये इच्छा थी कि उनका बेटा टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन करे, जबकि रोहित का टेम्परामेंट वनडे और T20 क्रिकेट से मेल खाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 108 वनडे खेलने के बाद रोहित शर्मा को पहली बार 9 नवंबर 2013 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। पहले ही टेस्ट मैच में रोहित ने 177 रनों की यादगार पारी खेली, जिसके बाद उनके पिता का खुशी का ठिकाना नहीं था।
1: मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट ही पसंद है। एक मेरे लिए सबसे जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मेरी फैमिली थी, और मेरे पिताजी वनडे क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, बट उनको टेस्ट क्रिकेट में मैं जब भी मैं अच्छा करता हूँ तो वो बहुत खुश होते हैं। तो इसीलिए मेरा एक सपना है कि मैं टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करूँ, एक क्योंकि मेरे पिताजी खुश रहे, क्योंकि मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट में मुझे देखना अच्छा करते हो।
0: रोहित के अपने टेम्परामेंट और उनके पिता की टेस्ट मैच ख्वाहिश के बीच एक लंबा कश्मकश रहा है। वैसे टेस्ट मैच में रोहित का रिकॉर्ड कोई खास अच्छा नहीं रहा है, जबकि वनडे क्रिकेट में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो इस फॉर्मेट के करीब 53 साल के इतिहास में धाकड़ से धाकड़ बल्लेबाज भी नहीं कर पाया। वनडे क्रिकेट में आज तक कोई भी बल्लेबाज एक से ज्यादा डबल सेंचुरी नहीं लगा पाया है, जबकि रोहित के नाम वनडे में 3-3 डबल सेंचुरी हैं। रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जो वनडे क्रिकेट का ऑल टाइम सर्वोच्च स्कोर है। उससे पहले रोहित ने नवंबर 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों की यादगार पारी खेली थी। दिसंबर 2017 में रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी तीसरी डबल सेंचुरी लगाई। इस मैच में रोहित 208 रन बनाकर नाबाद रहे थे। कहने की जरूरत नहीं कि वनडे क्रिकेट में लंबी पारी खेलने के मामले में रोहित का कोई सानी नहीं है। वनडे वर्ल्ड कप में रोहित के नाम एक और शानदार विश्व कीर्तिमान दर्ज है। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने के अलावा एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड भी रोहित के नाम ही दर्ज है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 5 शतक लगाए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 122 रन, पाकिस्तान के खिलाफ 140 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 102 रन, बांग्लादेश के खिलाफ 104 रन और श्रीलंका के खिलाफ 103 रनों की पारी खेली थी। साफ है कि रोहित के नाम वनडे क्रिकेट में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं जिन्हें तोड़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। हालांकि T20 में भी रोहित के नाम एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। दरअसल रोहित को डिफेंसिव क्रिकेट ना पसंद है, बल्ले से प्रहार करना उन्हें काफी भाता है। यही वजह है कि वनडे और T20 के ऑल टाइम महानतम बल्लेबाजों में वो शुमार हैं।
2: तो बंदे मेरे दम में आज मैंने आपको रोहित शर्मा की जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को दिखाया। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: Music lovers, ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going, so you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
4: कौन से ग्रह का दान रात के समय में करना अच्छा होता है? किस ग्रह का दान करने से रोजगार की रुकावट दूर हो जाती है? और कौन से ग्रह के लिए गाय को हरा चारा खिलाने से फायदा होता है? किस ग्रह के लिए क्या करें दान, कब करें दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: और अब खबर खूबसूरत नजारों और हरे भरे मैदानों की। कश्मीर दुनिया भर में अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए मशहूर है। गुलमर्ग और पहलगाम जैसे नाम तो हर जबान पर है, लेकिन इस जन्नत के बीच कुछ ऐसे अनमोल खजाने भी छिपे हैं जिनका जिक्र आम तौर पर नहीं होता। आज हम आपको दक्षिण कश्मीर के ऐसे ही हिडन डेस्टिनेशन की सैर कराएंगे, साथ ही श्रीनगर में सैलानियों की रौनक भी दिखाएंगे।

0: खूबसूरत वादियाँ, हरियाली की चादर ओढ़े मीलों तक फैले हरे भरे मैदान और उनके बीच से कलकल बहती साफ पानी की नहर। ये तस्वीरें हैं दक्षिण कश्मीर के शोपियांग जिले की, जहाँ का हर कोना कुदरत की बेमिसाल कारीगरी का सबूत है। ऐतिहासिक मुगल रोड से जब कोई मुसाफिर गुजरता है तो पीर की गली और इसके आसपास की घाटियों का नजारा उसे मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ का सुकून, पहाड़ों की ताजी और शुद्ध हवा और कुदरत की हैरान कर देने वाली कारीगरी ऐसी है कि जो भी यहाँ आए वो यहीं का होकर रह जाए।
1: जिला शुपियान जहाँ पे सबसे बड़ी जो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, अहरवल भी नजदीक है, दुबजन और उसके साथ साथ मुगल सराय के साथ साथ और भी कई ऐसी चीजें हैं जो वाकई दिलकश नजारे बयान करते हैं।
0: करीब 3,500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये इलाका गर्मियों में फूलों की चादर ओढ़ लेता है। दूर दूर तक यहाँ फैली खामोशी और किसी पेंटर की कल्पना जैसे हरे भरे मैदान देखने लायक हैं। कश्मीर की इन वादियों में जो सुकून और सुंदरता है उसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है, लेकिन खूबसूरती के खजाने को समेटे ये इलाका सैलानियों की नजरों से अभी दूर है। यूं तो कश्मीर को कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है, लेकिन शोपियांग जैसे इलाकों को अब भी सैलानियों का इंतजार रहता है।
2: ये जो जगहें हैं शोपियांग की, ये अनएक्सप्लोर जगहें हैं, जैसे पतनदफन है। ये जगह जो है इवन शोपियांग के लोगों को इस जगह का पता नहीं है, तो देयर आर लिमिटेड लॉट ऑफ पीपल जिनको इस जगह का पता है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, एक छोटा सा इलाका है। हम चाहते हैं कि यहाँ लोग आए, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर इस जगह का ख्याल भी रखना है, पोल्यूशन नहीं करना है, पोल्यूट नहीं करना है इस जगह को।
0: एक तरफ शोपियांग में सैलानियों की आमद बेहद कम है, तो दूसरी तरफ श्रीनगर में सैलानियों की रिकॉर्ड तादाद देखने को मिल रही है। गर्मी से राहत की तलाश में मैदानी इलाके से सैकड़ों सैलानी इन दिनों कश्मीर की हसीन वादियों और दिलकश नजारों और शानदार मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। श्रीनगर में इन दिनों सबसे ज्यादा रौनक डल झील पर है, जहां इन शानदार नजारों के बीच डल झील में शिकारे की सैर लोगों को बेहद पसंद आ रही है।
3: बहुत अच्छा लगा भैया, यहाँ के तो बहुत सुकून मिल रहा है हमको। मौसम यहाँ पर तो भैया दो दो मिनट में चेंज होता रहता है। दिल्ली में तो बहुत हॉट वेदर है, पर यहाँ पर जो क्लाइमेट है बहुत कोल्ड है। कभी रात को जैसे हम बोट हाउस में रहे तो वहाँ रात को एकदम बारिश हो गई, तो बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पे, सुहावना मौसम है।
4: कश्मीर में आके बहुत मजा आया, मतलब मुझे लगता है कि हर एक इंसान को जिंदगी में एक बार जरूर कश्मीर आना चाहिए घूमने के लिए। मतलब टोटली डिफरेंट इन कम्पेयर टू उत्तराखंड, केरला, टोटली डिफरेंट।
0: डल झील से लेकर गुलमर्ग तक एक अद्भुत रौनक बिखरी है और वादियों में जिंदगी मुस्कुरा रही है, लेकिन इस रौनक को अगर शोपियांग और पीर की गली जैसी अनछुए जन्नत का भी साथ मिल जाए तो कश्मीर के पर्यटन में चार चांद लग जाए। कश्मीर से अश्रवानी, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
6: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
7: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
6: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
7: They score!
6: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: 2024 में T20 विश्व कप पर कब्जा, 2025 में जीता चैंपियंस ट्रॉफी का रण, अब लिया 2027 वर्ल्ड कप का प्रण, पद्मश्री रोहित शर्मा का अग्निपथ। सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: सोच दिखाती तो कुछ दिखाती है
2: गुड न्यूज टुडे, इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: देव स्नान पूर्णिमा के मौके पर 29 जून को जगन्नाथपुरी में होगी स्नान यात्रा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को 108 कलशों के पवित्र जल से कराया जाएगा स्नान। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर हुआ मंथन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रबुद्ध जनों से की चर्चा। श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ शहर के ट्रैफिक प्लान पर हुई बात। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों यात्रियों के लिए गुड न्यूज। 29 जून से सेंट्रल रेलवे की 12 और लोकल ट्रेन्स बनेंगी एसी। लोकल के मुसाफिरों की यात्रा होगी अधिक सुगम और आरामदायक। गुजरात के 14 शहरों को मिली सुगम यातायात की सौगात। भारत टैक्सी ऐप का शुभारंभ। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में, उन्होंने किया उद्घाटन। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। बोटानिकल गार्डन में 196 साल के सबसे उम्रदराज कछुए जोनाथन के दीदार किए।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: जितनी तेजी से वक्त बदल रहा है उतनी ही तेजी से युद्ध के स्वरूप में भी बदलाव आ रहे हैं। मैदानी जंग में इंसानों की सीधे एंट्री की बजाय मशीनों को रणक्षेत्र में उतारने की तैयारी हो रही है। यही वजह है कि अनमैन्ड वेपन्स पर दुनिया का फोकस बढ़ा है। ऑटोनोमस मोड में काम करने के लिए ताकतवर हथियार तैयार किए जा रहे हैं।
1: भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट राइनो के तहत एक व्यापक अपग्रेड प्लान तैयार किया है। थल सेना अपने बेड़े में शामिल करीब 2400 पुराने हो चुके T-72 टैंकों को रिटायर करने या कबाड़ में बेचने के बजाय उन्हें अत्याधुनिक मानव रहित कॉम्बैक्ट व्हीकल में बदलने की योजना पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य T-72 टैंकों की सेवा अवधि को साल 2030 से 2040 के बाद तक बढ़ाना है।
0: आज के युद्ध क्षेत्र में इंसानों से ज्यादा आधुनिक मशीनों की भूमिका है। अब जंग सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से लड़ी जाती है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। युद्ध में मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि सिर्फ पारंपरिक हथियारों के भरोसे काम नहीं चलने वाला। इसी दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद T-70 टैंक्स को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। सेना अपने पुराने T-72 टैंक्स को एक डिजिटल और आधुनिक अवतार देने जा रही है। अब इन टैंक्स को IP बेस्ड इंटरफेस के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा।
2: इस प्रोजेक्ट के तहत एक मानव रहित टैंक का निर्माण किया जाएगा, जिसमें इंजन का संचालन रिमोट से होगा, जो तोप और हैवी मशीन गन है उसका भी संचालन रिमोट से होगा। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, यानी जैसे AI का जो इंटीग्रेशन करना है या IP का जो इंटीग्रेशन करना है वह शायद उतने सुचारू रूप से फिलहाल नहीं हो रहा है।
0: T-72 वही टैंक है जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा की है। अब ये 40 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में रिटायर होने के कगार पर खड़े T-72 टैंक को घातक रोबोटिक वॉरियर में तब्दील करने की बात हो रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि T-72 टैंक में बदलाव से क्या फायदा होगा, सेना की समग्र मारक क्षमता में कैसे इजाफा होगा। माइंस भरे इलाकों को तोड़ने में मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल की तरह T-72 का इस्तेमाल होगा, साथ ही दुश्मनों की गोलीबारी को आकर्षित करने के लिए डिकॉय के रूप में काम करेगा, जिससे सैनिकों की सुरक्षा बढ़ेगी। अग्रिम मोर्चे पर ऑपरेशंस पे ये अहम भूमिका अदा करेगा, यानी T-72 टैंक अग्रिम पंक्ति के हमलों का नेतृत्व करेंगे और टोही के साथ गश्त का काम बखूबी निभाएंगे। डिजिटल होने के बाद T-72 टैंक कमांड नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भेजेंगे, जिससे ऑपरेटर्स और कमांडर्स को युद्ध के बीच तुरंत निर्णय लेने में आसानी होगी। पहले की योजना के अनुसार T-72 टैंक्स को साल 2030 से धीरे धीरे सेना से बाहर किया जाना था, लेकिन अब इस नई ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इन टैंक्स की उम्र अगले 15 से 20 साल यानी साल 2045 से 2050 तक बढ़ जाएगी।
2: एक नॉर्मल कन्वेंशनल टैंक जैसे कि T-72 को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें इंजन वही रहता है, गियरबॉक्स भी वही रहता है, तोप भी वही रहता है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी वही रहता है। सिर्फ बदला किया जाता है, एक मानव रहित रोबोट जो है वो ड्राइवर की जगह ले लेता है, एक मानव रहित गनर है वो तोपची की जगह ले लेता है, और कमांडर की जो जगह है वो रिमोट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे बैठे हुए एक मानव कमांडर के हाथ में होता है। अब इन सबको करने के लिए जो रोबोट टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित कर ली है, लेकिन उसमें जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वह अभी तक आना बाकी है।
0: यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि आज के आधुनिक दौर में ड्रोन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और टॉप अटैक हथियारों ने पारंपरिक टैंक्स को बेहद असुरक्षित बना दिया है। ऐसे माहौल में टैंक के भीतर बैठे क्रू मेंबर्स की जान हमेशा खतरे में रहती है। भारत ने इस वैश्विक चुनौती का बेहद सटीक और किफायती समाधान ढूंढ निकाला है।
1: सेना अपने पुराने हो रहे T-72 टैंकों में एक विशेष ऑटोनॉमस किट फिट करेगी, जिससे कि इन्हें रिमोट कंट्रोल के जरिए या फिर पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड में ऑपरेट किया जा सकेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि टैंक के भीतर कोई सैनिक मौजूद नहीं होगा। टैंक AI की मदद से या फिर रिमोट से ऑपरेट होगा और ये अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ दुश्मन पर हमला भी करेगा।
0: एक पारंपरिक भारी भरकम मेन बैटल टैंक जैसे T-72 को मानव रहित रोबोटिक टैंक में बदलना इंजीनियरिंग का एक बेहद जटिल काम है। इसके लिए टैंक के पुराने मैनुअल सिस्टम को पूरी तरह हटाकर उसमें ड्राइव बाय वायर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाता है। टैंक को रोबोट बनाने के लिए उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाता, बल्कि उसमें एक विशेष रेट्रोफिट किट लगाई जाती है। इस किट के तीन मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है एक्चुएटर्स एंड सर्वो मोटर्स। टैंक के मैनुअल स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और गियर लीवर पर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर फिट किए जाते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मानव चालक के हाथ और पैर करते हैं। दूसरा है रिमोट गन कंट्रोल सिस्टम। 125 mm गन को मोड़ने, निशाना साधने और गोला दागने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगाई जाती हैं, जिन्हें मीलों दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है डिजिटल इंटरफेस। टैंक के पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम को ECU यानी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जो डिजिटल कमांड को मैकेनिकल मूवमेंट में बदल देता है।
2: खास बात है कि एक T-72 में आमतौर पर एक तीन लोगों का क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर। लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद इसमें जो रेट्रोफिट किट लगाया जाएगा, उसमें यह ड्राइवर का काम एक ऑटोमेटिक रोबोट करेगा। इसी तरह से जो ड्राइवर होगा उसको असिस्ट करने के लिए जो गनर है, जो टैंक का मेन तोप और हैवी मशीन गन फायर करता है, उस गनर को भी एक रोबोटिक गनर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी जो ट्रिगर प्रेस करने का काम है, जो निशाना लगाने का काम है, नया गोला तोप के चैम्बर में डालने का काम है, वो भी रोबोट्स के जरिए किया जाएगा।
0: रोबोटिक टैंक के अंदर कोई इंसान नहीं होता, इसलिए युद्ध क्षेत्र को देखने और समझने के लिए टैंक के चारों तरफ सेंसर्स का एक जाल बिछाया जाएगा। टैंक में लिडार और रेडार का इस्तेमाल होगा। ये सेंसर चारों ओर लेजर और रेडियो तरंगे भेजकर रियल टाइम में पूरे इलाके का एक 3D डिजिटल मैप तैयार करते हैं। इससे टैंक को पता चलता है कि आगे कोई खाई, चट्टान या दीवार तो नहीं है। टैंक में 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगाए जाएंगे, जो रात के अंधेरे, घने धुएं या कोहरे में भी दुश्मन की हलचल को साफ देख सकते हैं। AI सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में मिलाएगा, ताकि टैंक का कंप्यूटर एक सटीक फैसला ले सके। भारतीय सेना अपने टैंक्स को सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाना चाहती, क्योंकि युद्ध में दुश्मन सिग्नल जाम कर सकता है, इसलिए इसमें AI की मदद ली जाएगी। भारतीय सेना की अदिति 4.0 योजना के तहत देश के अग्रणी रक्षा स्टार्टअप्स इसी रोबोटिक किट और AI सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, ताकि हमारे T-72 टैंक्स को रिमोट कंट्रोल किलर मशीन्स में बदला जा सके।
1: मानव रहित टैंक को कंट्रोल करने के लिए युद्ध के मैदान से 5 से 10 किलोमीटर पीछे एक बख्तरबंद ट्रक के अंदर सैनिक सुरक्षित बैठता है। ऑपरेटर के सामने कई बड़ी स्क्रीन्स या VR हेडसेट्स होते हैं, जो कि ऐसा अनुभव देते हैं कि वो खुद टैंक के अंदर बैठा हो।
0: कंट्रोलर एक विशेष जॉयस्टिक, स्टीयरिंग व्हील और फायर बटन की मदद से टैंक को चलाता है और निशाना लगाता है। ऑपरेटर अपने कंट्रोल पैनल पर तय करता है कि कि उसे किस तरह का गोला दागना है। जैसे बख्तरबंद गाड़ियों के लिए APFSDS पैदल सेना या बंकरों को तबाह करने के लिए हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल। ऑपरेटर जैसे ही बटन दबाता है एक इंटीग्रेटेड डिजिटल सिग्नल टैंक के ECU यानी केंद्रीय कंप्यूटर को जाता है और फिर टैंक फायर कर देता है। सुरक्षा नियम कहते हैं कि गोला दागने का अंतिम फैसला हमेशा इंसानी ऑपरेटर का ही होता है। AI को खुद से फायर करने की अनुमति नहीं दी जाती।
2: अमेरिका, रशिया और इजराइल ने भी इस तरह के रोबोटिक टैंक्स बनाने की कोशिश की है, लेकिन इनमें से किसी भी देश में अभी तक जो प्रोटोटाइप बनाया गया है उसको ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी कि मास प्रोडक्शन के बाद उनकी आर्मी में इंडक्शन का कोई ऑर्डर नहीं मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि युद्धभूमि में ऐसा ना हो कि हमारा ही रोबोटिक टैंक गलती से हमारे ही टैंक या हमारे ही तोप की पोजीशन जो आर्टिलरी है या हमारी जो इन्फेंट्री ट्रुप्स युद्धभूमि में है उन पर फायर ना खोल दे। व्यवस्था ये की जाती है कि हमेशा जो ऑटोमेटिक लूप है उसमें मैन इन लूप हो, यानी फाइनल फायर करने की जो इजाजत है वो एक मनुष्य देगा।
0: T-72 टैंक को रिप्लेस करने की बजाय इसे अपग्रेड किया जा रहा है। आखिर दशकों पुराने इस टैंक में ऐसा क्या खास है कि इसे अपग्रेड कराने की तैयारी हो रही है और ये कितना घातक है ये भी जानना जरूरी है। भारत का T-72 टैंक अजय 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है, जो 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ने की ताकत रखता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत है कि ये रीस्टार्ट होने में महज 6 से 7 सेकंड का वक्त लेता है। कम गहरी नदियों को आसानी से पार करने की इसमें ताकत है। लाइटवेट टैंक की बात करें तो भारतीय सेना के पास जो T-72 अजय टैंक है उसका वजन 41 टन के आसपास है। इसमें 12.7 MM एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी हुई है। इससे एक बार में एक साथ 300 राउंड फायर होते हैं। इससे 1500 मीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है।
2: T-72 टैंक रूस का प्रमुख मेन बैटल टैंक है। वैसे रूस ने बाद में इसको अपग्रेड करके T-90 टैंक बनाया जो कि भारत के पास भी है। भारत की फौज में अभी करीबन 1000 T-90 टैंक्स हैं और करीबन 3000 T-72 टैंक हैं। इन T-72 टैंक्स की खास बात यह है कि ये रेत के ऊपर, दलदल के ऊपर, कीचड़ में, जंगल में, पहाड़ों में, बर्फ में भी ऑपरेट कर सकते हैं। इन T-72 टैंक्स में जो मेन गन लगी है वो इंफ्रारेड फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है और रात के अंधेरे में भी दुश्मन के टैंक्स या दुश्मन के गन पोजीशन को 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी से देखकर एक्यूरेट फायर कर सकता है।
0: भारतीय सेना के पास T-72 टैंक के 3 वर्जन हैं, अजय, MK-1, अजय, MK-2 और कॉम्बैट इम्प्रूव्ड अजय, जिनका भारत इस्तेमाल करता है। इस वक्त भारतीय सेना में करीब 2400 के आसपास T-72 अजय टैंक मौजूद हैं।
1: भारतीय सेना ने T-72 के आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट राइनो शुरू किया था। इसके तहत टैंकों में नए इंजन, आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम और बेहतर सुरक्षा प्रणाली लगाने की योजना है। साथ ही अदिति 4.0 पहल के तहत इन्हें भविष्य में मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म में भी बदला जा सकता है। सेना का मानना है कि इन सुधारों से T-72 टैंक आने वाले वर्षों में भी प्रभावी बने रहेंगे और भविष्य में फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के शामिल होने तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
0: भारत जहां अपने मौजूदा T-72 टैंक बेड़े को बदलने और AI रेट्रोफिट किट का शुरुआती परीक्षण करने के चरण में है, वहीं अमेरिका और रूस ने इस क्षेत्र में समर्पित नई पीढ़ी के प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए हैं और उनका लाइव बैटलफील्ड में परीक्षण भी किया जा चुका है। आखिरी
1: युद्ध में टैंक की क्या अहमियत है और इसकी जरूरत अब भी रणभूमि में क्यों महसूस की जाती है, इसे जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में चलना होगा।
0: प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के कई देश एक दूसरे को घुटनों के बल लाने के लिए रण क्षेत्र में उतरे हुए थे। तब पुराने जमाने की तरह ज्यादातर लड़ाई आमने सामने लड़ी गई। जितनी लड़ाई जमीन के ऊपर लड़ी गई, उतनी ही जमीन के नीचे भी। कई कई किलोमीटर लंबी खाइयां खोदकर सैनिक उनमें मशीन गन से लैस होकर तैनात रहते थे। इन खाइयों को ट्रेंच कहा जाता है और इनके बीच होता था नो मैन्स लैंड। तार बाड़ और लैंड माइन से भरी जमीन को पार करना यानी मौत को दावत देने जैसा था, इसीलिए तब लंबे समय तक ट्रेंच वॉर चलती रही। हर देश अपनी ट्रेंच के जरिए खुद की हिफाजत की पुख्ता व्यवस्था में जुटे थे। और इसी वजह से साल 2016 तक युद्ध फंसा ही रहा। ब्रिटेन और जर्मनी दोनों खेमों की सेना जहां जहां थी वहीं खड़ी की खड़ी रही, क्योंकि आगे बढ़ना मुश्किल था। और तभी आया एक ऐसा हथियार जिसने आने वाले तमाम युद्धों की तस्वीर बदल कर रख दी। यह हथियार था टैंक।
1: टैंक का नाम टैंक ही क्यों पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। जब ब्रिटेन टैंक को बना रहा था तो उसे डर था कि इस नए हथियार की जो जानकारी थी वो कहीं लीक ना हो जाए, इसलिए आधिकारिक फाइल्स में इस हथियार को टैंक लिखा जाने लगा, ताकि अगर किसी को पता चले तो ये लगे कि

0: के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने जब चंद दिनों में फ्रांस और पोलैंड पर अपनी जीत हासिल की तो उसकी सबसे बड़ी वजह उसके टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ही थे।
1: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टैंक की अहमियत बढ़ने लगी क्योंकि दुनिया के तमाम देशों ने आमने सामने की लड़ाई में टैंक की विध्वंसकारी ताकत को काफी करीब से महसूस कर लिया था और फिर दुनिया के कई देशों ने टैंक टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया। इनमें एक नाम भारत भी था।
0: लंबे समय तक भारत अपने दोस्त सोवियत रूस से टैंक आयात कर अपनी जरूरतें पूरी करता रहा। फिर 1965 में भारत ने यूके की मदद से अपना एक टैंक बनाया जिसका नाम रखा गया विजयंत। इसका इस्तेमाल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किया गया। स्वदेशी ताकत को धार देने के लिए बाद में अर्जुन टैंक का निर्माण किया गया और अब इसी कड़ी में जोरावर का नाम भी जुड़ गया है। किसी भी टैंक की ताकत का आकलन उसकी मारक क्षमता, उसकी स्पीड और उसकी डिफेंस क्षमता से होती है। इसके लिए बैटल टैंक्स के कुछ इंडिकेटर होते हैं। उनके जरिए ही पता चलता है कि टैंक फौज की जरूरत के हिसाब से सही है या नहीं। ये इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। पहला इंडिकेटर वजन है, स्पीड है, पावर टू वेट रेशियो है, साथ ही हथियारों और डिफेंस मैकेनिज्म है जो ये बताता है कि आर्मर कैसा है टैंक का।
2: टैंक के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन, और ये तीनों बहुत जरूरी है। अगर आप देखें मोबिलिटी तो वो दिखलाता है कि टैंक किस स्पीड से जा सकता है, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह में कम से कम समय में जा सकता है और अपने टारगेट को कितनी जल्दी जाके हिट कर सकता है, तो इसलिए मोबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार फायर पावर, जो फायर पावर है वो दिखलाता है कि आप किस हिसाब से अपने टारगेट को शॉर्ट शॉर्ट हिट कर देते हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी रेंज कितनी है। और जो तीसरा है आपकी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यह है कि आपको ये भी देखना है कि दुश्मन के जो एंटी टैंक वेपन है या दुश्मन के टैंकों से आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट हिट हो जाता है आपके टैंक में तो आप के पास इतनी काबिलियत और क्षमता होनी चाहिए कि आपका टैंक उसको विस्टैंड कर ले, तो इसका मतलब चुबा आर्मर है, रिएक्टिव आर्मर है, तो इस टाइप का। तो ये कॉम्बिनेशन है इम्पोर्टेंट, एक टैंक के अंदर तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन। इसका कॉम्बिनेशन होना, इसकी ऐसा तरीके से होना कि इसका वेट भी ऑप्टिमम हो, इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो और फायर पावर भी बहुत ही एक प्रकार से अव्वल दर्जे की हो।
0: किसी अच्छे बैटल टैंक में दो काबिलियत अनिवार्य है, पहला मोबिलिटी और दूसरा फायर पावर। मोबिलिटी का मतलब टैंक की वो ताकत है जो उसे कहीं भी ले जा सकती है। आप देखिए ट्रेंच वॉरफेयर की जगह पे ही टैंक्स आए थे, पक्की सड़क हो या फिर कई मीटर गहरा कीचड़। टैंक का काम है हर जगह से निकलना, जहां बड़े बड़े पहियों वाले ट्रक्स भी फंस जाते हैं वहां से टैंक्स आसानी से निकल जाते हैं, जबकि टैंक में लोहे के रोड व्हील्स या कहिए उसमें लोहे के पहिए होते हैं फिर भी वो धसते नहीं। वो कैसे? इसका सिंपल फिजिक्स है। टैंक के पहिए सीधे जमीन पर चलते ही नहीं हैं, टैंक्स अपने साथ अपनी सड़क भी लेकर चलते हैं जिन्हें कहा जाता है ट्रैक। आमतौर पर लोग इसे टैंक की चेन कह देते हैं लेकिन ट्रैक सही शब्द है। ट्रैक पर चलने का फायदा ये है कि टैंक का वजन जमीन के किसी एक हिस्से पर नहीं पड़ता है। टैंक का ट्रैक टैंक के वजन को एक बहुत बड़े सरफेस एरिया पर बांट देता है और इसलिए नम जमीन पर भी 50-50 टन के टैंक कभी धसते नहीं।
2: टैंकों के अंदर व्हील नहीं होते क्योंकि व्हील जो है उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि रेतीले इलाके में, दलदल के इलाके में या टूटी फूटी जमीन पे चल पाए, इसीलिए टैंकों के अंदर ट्रैक होते हैं और ट्रैक से काबिलियत बढ़ती है टैंक की। टैंक जो है एक प्रकार से रेतीली इलाके में भी जा सकता है और ऐसे इलाके में जा सकता है जहां पर दलदल हो।

0: या टूटी फूटी जमीन हो, इसीलिए टैंकों में ट्रैक होता है ना कि व्हील।
1: मौजूदा दौर में कई टैंक्स गहरे पानी तक को पार करने में सक्षम हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टैंक्स बिल्कुल भी फंसते नहीं। टैंक्स भी फंसते हैं, लेकिन ऐसा बेहद कम होता है। टैंक्स को मैन्युवरल भी होना चाहिए और बढ़िया वेट टू पावर रेशियो भी होना चाहिए। मैन्युवरिंग मतलब टैंक कितनी चपलता या फुर्ती के साथ हरकत कर सकता है, गोला दाग कर कितनी जल्दी अपनी पोजीशन बदल सकता है। जाहिर है टैंक भारी होगा तो उसे हरकत करने में काफी दिक्कतें आएंगी, लिहाजा टैंक के पास एक ताकतवर इंजन का होना जरूरी है। टैंक का वजन और उसके इंजन की ताकत या पावर के बीच जो अनुपात होता है उसी को कहा जाता है पावर टू वेट रेशियो। जितना बेहतर पावर टू वेट रेशियो होगा उतना अच्छा टैंक हो सकता है।
0: तीन रिक्वायरमेंट है टैंक की, इसकी फायर पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसकी मोबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, इसकी प्रोटेक्शन भी, और तीनों का तालमेल होना चाहिए। देखो अगर आप प्रोटेक्शन देते हैं तो फिर इसका टैंक का एक प्रकार से वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है तो फिर मोबिलिटी कम हो जाती है और उसकी फायर पावर कैसी होगी वो भी दर्शाता है। तो एक अच्छे टैंक का पहचान यह है कि हर चीज अच्छी हो, उसकी फायर पावर भी बहुत अच्छी हो, वो उसके रेंज पे हिट कर पाए, 100% अपने टारगेट को हिट कर पाए, और इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो कि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा पाए, और तीसरा है इसकी प्रोटेक्शन भी हो कि अगर दुश्मन का टैंक या एंटी टैंक वेपन हिट करता है तो वो उसे बचाव कर पाए। तो इन तीनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए कि ये ना हो कि टैंक इतना हैवी हो, इतना लाइट ना हो कि उसकी प्रोटेक्शन इतनी अच्छी ना हो या उसके अंदर फायर पावर इतनी अच्छी ना, तो तीनों का एक प्रकार संतुलन होना जरूरी है।
1: हमारे लिए यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
3: जाती है। Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
4: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
5: कौन से ग्रह का दान रात के समय में करना अच्छा होता है? किस ग्रह का दान करने से रोजगार की रुकावट दूर हो जाती है? और कौन से ग्रह के लिए गाय को हरा चारा खिलाने से फायदा होता है? किस ग्रह के लिए क्या करें दान, कब करें दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune In has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
8: 2024 में T20 विश्व कप पर कब्जा, 2025 में जीता चैंपियंस ट्रॉफी का रण, अब लिया 2027 वर्ल्ड कप का प्रण, पद्मश्री रोहित शर्मा का अग्निपथ। सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: देव स्नान पूर्णिमा के मौके पर 29 जून को जगन्नाथपुरी में होगी स्नान यात्रा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को 108 कलशों के पवित्र जल से कराया जाएगा स्नान। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर हुआ मंथन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रबुद्ध जनों से की चर्चा। श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ शहर के ट्रैफिक प्लान पर हुई बात। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों यात्रियों के लिए गुड न्यूज। 29 जून से सेंट्रल रेलवे की 12 और लोकल ट्रेन्स बनेंगी एसी। लोकल के मुसाफिरों की यात्रा होगी अधिक सुगम और आरामदायक। गुजरात के 14 शहरों को मिली सुगम यातायात की सौगात। भारत टैक्सी ऐप का शुभारंभ। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में उन्होंने किया उद्घाटन। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। बोटानिकल गार्डन में 196 साल के सबसे उम्रदराज कछुए जोनाथन के दीदार किए।

पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उसने क्रिकेट के मैदान पर करिश्माई पारियां खेलकर क्रिकेट प्रेमियों के साथ ही देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाली जूरी का भी दिल जीत लिया। इसलिए क्रिकेट के उस मसीहा को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। ये वो शख्स हैं जिसने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के साथ ही ICC चैंपियंस ट्रॉफी का भी चैंपियन बना दिया।

0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।
1: आप समझ ही गए होंगे कि आज बंदे में है दम का बंदा कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के हिटमैन यानी कि विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा है। जी हां, भारतीय क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी बहुत कम हुए हैं जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के चंद उन्हीं चुनिंदा खिलाड़ियों में से शुमार हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया एक से ज्यादा बार विश्व चैंपियन बन चुकी है। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया कम से कम फटाफट फॉर्मेट में कमोबेश अपराजेय बनी रही। ये क्रिकेट के दो फॉर्मेट T20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं लेकिन वनडे में अभी भी दमदार पारियां खेल रहे हैं।
0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।

0: 23 जून रोहित शर्मा के जीवन की सबसे यादगार तारीख बन चुकी है। 23 जून ही वो तारीख है जब रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला कदम रखा था। रोहित ने 23 जून 2007 को आयरलैंड के बेलफास्ट में खेले गए एक वनडे मैच से भारत के लिए डेब्यू किया था। रोहित की किस्मत का 23 जून कनेक्शन देखिए कि इंटरनेशनल डेब्यू के 19 साल बाद 23 जून को ही रोहित शर्मा को चौथे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।

0: दरअसल 19 साल के अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में रोहित ने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किए जाने के वाजिब हकदार बन गए। सिर्फ बतौर बल्लेबाज ही नहीं, बतौर कप्तान भी रोहित के नाम कई कीर्तिमान दर्ज हैं। हालांकि रोहित को एक बात का अफसोस भी रहता है कि साल 2023 के वर्ल्ड कप में वो विश्व विजेता बनने की दहलीज तक पहुंचकर कप उठाने से वंचित रह गए थे। तारीख थी 19 नवंबर 2023, स्थान था अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया के मुकाबिल था ऑस्ट्रेलिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत विश्व विजेता बनते बनते रह गया था। एक हुक, एक कसक, एक टीस थी जो रह गई थी कप्तान रोहित शर्मा के मन में। 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित ने अपनी रहनुमाई में उस हुक को, उस टीस को, उस कसक को, उस पीड़ा को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जश्न में तब्दील कर दिया। तब होली से पहले पूरे देश में दिवाली की रौनक नुमाया हो गई थी। लीडर अगर सेल्फलेस हो, निस्वार्थ हो, भेदभाव रहित हो, तो उसकी टीम की जय निश्चित हो जाती है। क्योंकि लीडर जब सेल्फलेस होता है तो पूरी टीम जीत को लेकर जुनूनी हो जाती है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा निसंदेह इसी कैटेगरी के लीडर रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित ने 76 रनों की जो पारी खेली थी, उसने कीवियों के हौसले को ऐसा पस्त कर दिया था कि मैदान पर मचलने के सिवा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। दरअसल जीत के लिए संघर्ष करते कीवियों को शायद पता नहीं था कि क्रिकेट के मैदान के इस युगांधर ने दुबई रवाना होने से पहले ही अपने बचपन के कोच दिनेश लाड से ये वादा किया था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का कप लेकर ही वापस लौटेगा।
1: रोहित ने मुझे जाने के वक्त मुझे कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग जीत के आएंगे, तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप के लिए गया था तभी भी मुझे कहा था उसने, मैं चैंपियंस T20 वर्ल्ड कप आपको लेके दिखाऊंगा, आपको गुरुदक्षिणा दूंगा, ये मुझे सेकंड गुरुदक्षिणा दी ऐसे मैं कहूंगा।
0: इस तरह का चट्टानी आत्मविश्वास युग पुरुष का ही होता है, और जब लीडर का, रहनुमा का आत्मविश्वास आसमानी होता है तो पूरी टीम जीत के विश्वास से भर जाती है। यही वजह है कि 2 साल में लगातार 2 आईसीसी खिताब जीतने वाले रोहित दुनिया के पहले कप्तान हैं। 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी का विश्व चैंपियन बनने से पहले 19 जून 2024 को बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से शिकस्त देकर रोहित की सेना T20 वर्ल्ड कप की विजेता बनी थी। अपनी कप्तानी में रोहित शर्मा की ये पहली खिताबी आईसीसी ट्रॉफी थी। लिहाजा जीत के बाद मैदान का ये तूफान इतना भावुक हो गया कि केंसिंगटन ओवल की पिच की मिट्टी को प्रसाद मानकर अपनी जिह्वा पर रख लिया। रोहित के इस भावनात्मक उद्गार को पीएम मोदी ने भी देखा था, इसीलिए चैंपियंस का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी ने जब रोहित की विजेता ब्रिगेड को पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर आमंत्रित किया, तो उस घटना का जिक्र करना नहीं भूले।
2: कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है, और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चूमा, ये कोई हिंदुस्तानी ही कर सकता है।
3: जहाँ पर हमें वो विक्ट्री मिली उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस, क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया।
0: क्रिकेट के मैदान पर विरोधी टीम के गेंदबाजों की खाट खड़ी कर देने वाला ये इंसान इतना ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, इसकी तो किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। बहरहाल 2 साल में 2 आईसीसी टूर्नामेंट की खिताबी जीत से ज्यादा बड़ी है रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया की अपराजेयता। आईसीसी टूर्नामेंट में रोहित की कप्तानी का रिकॉर्ड अपने आप में अद्वितीय रहा है। इस युगांधर की कप्तानी में 2023 विश्व कप के फाइनल को छोड़कर टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट्स का अपना एक भी मैच नहीं हारी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल समेत रोहित की सेना ने कुल 5 मैच खेले और पांचों में जीत हासिल की। 2024 टी20 विश्व कप में भी टीम इंडिया ने फाइनल समेत 8 मुकाबले खेले थे और सभी में जीत दर्ज की थी। वर्ल्ड कप 2023 में भी रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल छोड़कर कुल 10 मैच खेले थे और सभी में जीत हासिल की थी। रोहित की लीडरशिप का कमाल ये है कि आईसीसी टूर्नामेंट में उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने कुल 23 मुकाबले खेले और इनमें से 22 में जीत दर्ज की। ये है इस बेमिसाल लीडर का रिकॉर्ड। दरअसल रोहित शर्मा जब मैदान पर होते हैं तो पूरी टीम निर्भय होकर मुकाबला करती है, क्योंकि रोहित का बल्ला जब चलता है तो विरोधियों की पेशानियों पर सिर्फ चिंता की लकीरें होती हैं। यही वजह है कि रोहित के प्रति क्रिकेट प्रेमियों की दीवानगी जुनून की हदें पार कर जाती है। हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमियों का अब बस एक ही सपना है, साल 2027 में साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप में भारत को अपनी बैटिंग के दम पर तीसरी बार विश्व चैंपियन बनाकर ही रोहित वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करें। इसीलिए 39 साल के हो चुके रोहित शर्मा के साल 2027 वर्ल्ड कप से पहले रिटायरमेंट की चर्चा बेमानी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी यही चाहते हैं कि रोहित ने जैसे टीम इंडिया को टी20 का विश्व विजेता बनाने के बाद 2020 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया, उसी तरह 2027 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाकर ही वनडे क्रिकेट को अलविदा कहें। रोहित की तरह का क्रिकेटर युगों में एक बार अवतरित होता है। 19 साल के क्रिकेट करियर में रोहित ने कभी भी अपने निजी रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेला। उनका बल्ला जब भी चला टीम के लिए चला। बेशक टीम के लिए खेलते हुए कुछ बेनजीर रिकॉर्ड्स उनके नाम दर्ज हो गए। हालांकि उनकी कप्तानी में अगर टीम इंडिया के रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा लीडरशिप के मामले में उनके आस पास भी कोई नहीं है।
4: टी20 और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले रोहित जितने शानदार टीम लीडर साबित हुए हैं, उतने ही आक्रामक बल्लेबाज भी हैं। रोहित शर्मा की आक्रामक बैटिंग का लोहा दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर्स भी मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद रोहित शर्मा बैट्समैन नहीं बल्कि बॉलर बनना चाहते थे? रोहित शर्मा अपनी क्रिकेट अकेडमी में ऑफ ब्रेक की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन कमाल की अंतर्दृष्टि थी उनके कोच में, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे हुए बैटिंग के हुनर को पहचाना और बॉलिंग की जगह उनसे बैटिंग पर ध्यान देने की सलाह दी। कोच की एक सलाह ने रोहित की जिंदगी बदल दी।
0: वर्तमान का एक छोटा सा टर्न कई बार भविष्य की पूरी तस्वीर बदल देता है। रोहित शर्मा इस बात की सबसे बड़ी मिसाल हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो रोहित शर्मा आज इंटरनेशनल क्रिकेट में हिटमैन के नाम से विख्यात हैं, वो बल्लेबाज की जगह गेंदबाज बनना चाहते थे। रोहित अपनी टीम के ऑफ स्पिनर थे और बॉलिंग की ही नट प्रैक्टिस करते थे। लेकिन दाद देनी होगी रोहित के कोच दिनेश लाड की, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे बैटिंग क्लास को महसूस कर लिया। अगर दिनेश लाड ने रोहित को बैटिंग करने के लिए प्रेरित ना किया होता तो शायद टीम इंडिया को इतना बेहतरीन हिटमैन नहीं मिला होता।
5: कभी बैट्समैन नहीं था। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया अपने स्कूल के लिए, मैं एज अ बॉलर सिलेक्ट हुआ था, ऑफ स्पिन बॉल डालता था। तो कुछ महीनों के बाद मेरे जो कोच है दिनेश लाड जी, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला, यार तेरे को बैटिंग में भी फोकस करना चाहिए, हमें टीम को ऑलराउंडर की ज़रूरत है। और उन्होंने मेरा बैटिंग देखा और मुझे 7-8 नंबर पर बैटिंग करने का मौका दिया। और जब मैं बैटिंग करने गया तो मैंने कुछ 30-40 रन बनाए नीचे 7-8 नंबर पे, उनको अच्छा लगा।
6: उसी अंदाज में जो आजकल बनते हैं।
5: हाँ बिल्कुल, उसी अंदाज में छक्के चौके ऐसे ही लग रहे थे। तो मेरे सर जो थे काफ़ी खुश हुए, उन्होंने बोला, उन्होंने एक बार मुझे ऊपर बैटिंग करने का अपॉर्चुनिटी दिया और उस टाइम मैंने 140 रन बनाए।
0: दरअसल रोहित के क्रिकेट करियर का आगाज मुंबई के बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन से हुआ। रोहित इस एकेडमी की तरफ से खेलते थे और ऑफ स्पिनर बनना चाहते थे। इसी दौरान किसी मैच में स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल के कोच दिनेश लाड की नजर रोहित पर पड़ी। तब उन्हें अपने स्कूल की टीम के लिए अच्छे उदीयमान खिलाड़ियों की तलाश थी। रोहित की स्पिन गेंदबाजी दिनेश लाड को पसंद आई और उन्होंने रोहित को विवेकानंद स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। काबिले गौर है कि तब स्कूल की फीस 275 रुपए प्रति महीने थी और रोहित के पेरेंट्स के लिए इस फीस का इंतजाम कर पाना मुश्किल था, क्योंकि तब रोहित के पेरेंट्स को क्रिकेट कोचिंग के लिए हर महीने 800 रुपए देने पड़ते थे और उसी का इंतजाम बड़ी मुश्किल से हो पाता था। रोहित की इस मजबूरी को देखते हुए दिनेश लाड ने उनकी स्कूल की फीस माफ करवा दी। दरअसल दिनेश लाड छोटी उम्र के रोहित के जबरदस्त आत्मविश्वास से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रोहित का आत्मविश्वास देखकर उन्हें शुरू में ही लग गया कि ये लड़का एक दिन दुनिया का सबसे धाकड़ खिलाड़ी बनेगा।
1: नहीं नहीं, कभी फियर फैक्टर, मैंने कभी उसको ऐसे डरते हुए कभी देखा ही नहीं। हर स्कूल के हर मैच में कोई भी अच्छे बॉलर हो, कोई भी है, डर के कभी खेला नहीं। उसका फायदा उसको, क्योंकि उसके अपने आप में लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है और वो कॉन्फिडेंस के ऊपर वो अपनी बल्लेबाजी करते रहे और उसका फायदा उसको होता ही होता है।
0: दिनेश लाड की सलाह पर रोहित ने बॉलिंग के साथ अपनी बैटिंग पर भी ध्यान देना शुरू किया और उसका असर ये हुआ कि बतौर बल्लेबाज वो सेलेक्टर्स को प्रभावित करने लगे। अंडर 14, अंडर 15 और अंडर 19 हर टीम में वे जगह बनाते चले गए। साल 2007 में रोहित भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलने दक्षिण अफ्रीका गए और मेजबान टीम के खिलाफ शानदार हाफ सेंचुरी बनाकर अपने टैलेंट का लोहा मनवा दिया। हालांकि पैसे की तंगी अभी भी बनी हुई थी। रोहित की किस्मत ने बड़ी करवट तब ली जब साल 2008 में IPL में उन्हें 3 करोड़ कीमत मिली। जिस रोहित ने बचपन से पैसे की तंगी देखी थी, उनके पास जब एक मुश्त 3 करोड़ रुपए आए तो उन्हें एक बार की समझ नहीं आया कि इन पैसों से सबसे पहले अपनी कौन सी हसरत पूरी करें। काफी उधेड़बुन के बाद रोहित ने अपने लिए शानदार गाड़ी खरीदी। हालांकि उस समय उनके माता पिता बोरीवली में किराए के घर में रहते थे, लिहाजा रोहित के गाड़ी खरीदने के फैसले से वो नाराज हुए, क्योंकि माता पिता चाहते थे कि रोहित सबसे पहले मुंबई में घर खरीदें। बहरहाल रोहित ने बाद में अपने पेरेंट्स की ये इच्छा भी बांद्रा में घर खरीद कर पूरी कर दी। लेकिन बचपन में गरीबी का दंश झेल चुके रोहित के पास जब पैसे आने लगे तो उनका दिलो दिमाग क्रिकेट से डिस्ट्रैक्ट होने लगा। यही वजह है कि साल 2009 और साल 2010 में वो कुछ खास नहीं कर पाए। रोहित को तगड़ा झटका तब लगा जब 2011 वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। झटका लगने के बाद रोहित ने गहराई के साथ आत्ममंथन किया और तय किया कि सफल होना है तो डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करना ही पड़ेगा।
5: सिचुएशन को मैं समझ नहीं पा रहा था, नया नया था, 20 साल का था, तो गेम रीडिंग सिचुएशंस जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं थी। फेलियर्स के बाद ही मुझे पता चला कि गेम में क्या सुधार लाने की जरूरत है, गेम को कैसे इम्प्रूव करना है।
0: कुछ वक्त की असफलता ने रोहित को इतना ज्यादा सचेत कर दिया कि वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगे। 2011 वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर टीम इंडिया में जगह बनाई। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें पारी की शुरुआत करने का मौका मिला और उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी बनाई। उसके बाद तो रोहित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
4: रोहित शर्मा में वो काबिलियत है कि अपनी धुआंधार बैटिंग से किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन रोहित के पिता वनडे क्रिकेट या फिर T20 में रोहित के प्रदर्शन से बहुत ज्यादा खुश नहीं होते थे, क्योंकि पिता की नजर में टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ी की असली अग्नि परीक्षा होती है। हालांकि रोहित अब टेस्ट क्रिकेट और T20 से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उससे पहले पिता के ख्वाहिशों पर खरा उतरने की भरसक कोशिश की।

0: वनडे क्रिकेट में कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले रोहित शर्मा की जिंदगी एक अजीब विडंबना है। रोहित के पिता गुरुनाथ शर्मा की शुरू से ये इच्छा थी कि उनका बेटा टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन करे, जबकि रोहित का टेम्परामेंट वनडे और T20 क्रिकेट से मेल खाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 108 वनडे खेलने के बाद रोहित शर्मा को पहली बार 9 नवंबर 2013 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। पहले ही टेस्ट मैच में रोहित ने 177 रनों की यादगार पारी खेली, जिसके बाद उनके पिता का खुशी का ठिकाना नहीं था।
1: मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट ही पसंद है। एक मेरे लिए सबसे जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मेरी फैमिली थी, और मेरे पिताजी वनडे क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, बट उनको टेस्ट क्रिकेट में मैं जब भी मैं अच्छा करता हूँ तो वो बहुत खुश होते हैं। तो इसीलिए मेरा एक सपना है कि मैं टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करूँ, एक क्योंकि मेरे पिताजी खुश रहे, क्योंकि मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट में मुझे देखना अच्छा करते हो।
0: रोहित के अपने टेम्परामेंट और उनके पिता की टेस्ट मैच ख्वाहिश के बीच एक लंबा कश्मकश रहा है। वैसे टेस्ट मैच में रोहित का रिकॉर्ड कोई खास अच्छा नहीं रहा है, जबकि वनडे क्रिकेट में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो इस फॉर्मेट के करीब 53 साल के इतिहास में धाकड़ से धाकड़ बल्लेबाज भी नहीं कर पाया। वनडे क्रिकेट में आज तक कोई भी बल्लेबाज एक से ज्यादा डबल सेंचुरी नहीं लगा पाया है, जबकि रोहित के नाम वनडे में 3-3 डबल सेंचुरी हैं। रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जो वनडे क्रिकेट का ऑल टाइम सर्वोच्च स्कोर है। उससे पहले रोहित ने नवंबर 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों की यादगार पारी खेली थी। दिसंबर 2017 में रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी तीसरी डबल सेंचुरी लगाई। इस मैच में रोहित 208 रन बनाकर नाबाद रहे थे। कहने की जरूरत नहीं कि वनडे क्रिकेट में लंबी पारी खेलने के मामले में रोहित का कोई सानी नहीं है। वनडे वर्ल्ड कप में रोहित के नाम एक और शानदार विश्व कीर्तिमान दर्ज है। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने के अलावा एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड भी रोहित के नाम ही दर्ज है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 5 शतक लगाए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 122 रन, पाकिस्तान के खिलाफ 140 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 102 रन, बांग्लादेश के खिलाफ 104 रन और श्रीलंका के खिलाफ 103 रनों की पारी खेली थी। साफ है कि रोहित के नाम वनडे क्रिकेट में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं जिन्हें तोड़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। हालांकि T20 में भी रोहित के नाम एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। दरअसल रोहित को डिफेंसिव क्रिकेट ना पसंद है, बल्ले से प्रहार करना उन्हें काफी भाता है। यही वजह है कि वनडे और T20 के ऑल टाइम महानतम बल्लेबाजों में वो शुमार हैं।
2: तो बंदे में दम में आज मैंने आपको रोहित शर्मा की जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को दिखाया। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: कौन से ग्रह का दान रात के समय में करना अच्छा होता है? किस ग्रह का दान करने से रोजगार की रुकावट दूर हो जाती है? और कौन से ग्रह के लिए गाय को हरा चारा खिलाने से फायदा होता है? किस ग्रह के लिए क्या करें दान, कब करें दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Hey, Buzz, you hear about the switch?
5: He's right over there.
4: Not that switch, our switch to APG&E.
5: Well, we can do that?
4: Customers can switch electric suppliers anytime to find a better rate, lock in pricing.
5: I don't want new wires. I'm very attached to ours.
4: Only the part of the bill that covers electricity supply changes.
5: To APG&E?
4: People love their flexible, affordable electricity.
5: Nice.
6: Learn more at APGE.com.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: और अब खबर खूबसूरत नजारों और हरे भरे मैदानों की। कश्मीर दुनिया भर में अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए मशहूर है। गुलमर्ग और पहलगाम जैसे नाम तो हर जबान पर है, लेकिन इस जन्नत के बीच कुछ ऐसे अनमोल खजाने भी छिपे हैं जिनका जिक्र आमतौर पर नहीं होता। आज हम आपको दक्षिण कश्मीर के ऐसे ही हिडन डेस्टिनेशन की सैर कराएंगे, साथ ही श्रीनगर में सैलानियों की रौनक भी दिखाएंगे।

0: खूबसूरत वादियाँ, हरियाली की चादर ओढ़े मीलों तक फैले हरे भरे मैदान और उनके बीच से कलकल बहती साफ पानी की नहर। ये तस्वीरें हैं दक्षिण कश्मीर के शोपियांग जिले की, जहाँ का हर कोना कुदरत की बेमिसाल कारीगरी का सबूत है। ऐतिहासिक मुगल रोड से जब कोई मुसाफिर गुजरता है तो पीर की गली और इसके आसपास की घाटियों का नजारा उसे मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ का सुकून, पहाड़ों की ताजी और शुद्ध हवा और कुदरत की हैरान कर देने वाली कारीगरी ऐसी है कि जो भी यहाँ आए वो यहीं का होकर रह जाए।
1: जिला शुपियान जहाँ पे सबसे बड़ी जो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, अहरवल भी नजदीक है, दुबजन और उसके साथ साथ मुगल सराय के साथ साथ और भी कई ऐसी चीजें हैं जो वाकई दिलकश नजारे बयान करते हैं।
0: करीब 3,500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये इलाका गर्मियों में फूलों की चादर ओढ़ लेता है। दूर दूर तक यहाँ फैली खामोशी और किसी पेंटर की कल्पना जैसे हरे भरे मैदान देखने लायक हैं। कश्मीर के इन वादियों में जो सुकून और सुंदरता है उसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है, लेकिन खूबसूरती के खजाने को समेटे ये इलाका सैलानियों की नजरों से अभी दूर है। यूं तो कश्मीर को कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है, लेकिन शोपियांग जैसे इलाकों को अब भी सैलानियों का इंतजार रहता है।
2: ये जो जगहें हैं शोपियांग की, ये अनएक्सप्लोर्ड जगह है, जैसे पतनदफन है। ये जगह जो है इवन शोपियांग के लोगों को इस जगह का पता नहीं है, तो देयर आर लिमिटेड लॉट ऑफ पीपल जिनको इस जगह का पता है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, एक छोटा सा इलाका है। हम चाहते हैं कि यहाँ लोग आए, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर इस जगह का ख्याल भी रखना है, पोल्यूशन नहीं करना है, पोल्यूट नहीं करना है इस जगह को।
0: एक तरफ शोपियांग में सैलानियों की आमद बेहद कम है, तो दूसरी तरफ श्रीनगर में सैलानियों की रिकॉर्ड तादाद देखने को मिल रही है। गर्मी से राहत की तलाश में मैदानी इलाके से सैकड़ों सैलानी इन दिनों कश्मीर की हसीन वादियों और दिलकश नजारों और शानदार मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। श्रीनगर में इन दिनों सबसे ज्यादा रौनक डल झील पर है, जहां इन शानदार नजारों के बीच डल झील में शिकारे की सैर लोगों को बेहद पसंद आ रही है।
3: बहुत अच्छा लगा भैया, यहाँ के तो बहुत सुकून मिल रहा है हमको। मौसम यहाँ पर तो भैया दो दो मिनट में चेंज होता रहता है। दिल्ली में तो बहुत हॉट वेदर है, पर यहाँ पर जो क्लाइमेट है बहुत कोल्ड है। कभी रात को जैसे हम बोट हाउस में रहे तो वहाँ रात को एकदम बारिश हो गई, तो बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पे, सुहावना मौसम है।
4: कश्मीर में आके बहुत मजा आया है, मतलब मुझे लगता है कि हर एक इंसान को जिंदगी में एक बार जरूर कश्मीर आना चाहिए घूमने के लिए। मतलब टोटली डिफरेंट इन कम्पेयर टू उत्तराखंड, केरला, टोटली डिफरेंट।
0: डल झील से लेकर गुलमर्ग तक एक अद्भुत रौनक बिखरी है और वादियों में जिंदगी मुस्कुरा रही है, लेकिन इस रौनक को अगर शोपियांग और पीर की गली जैसी अनछुए जन्नत का भी साथ मिल जाए तो कश्मीर के पर्यटन में चार चांद लग जाए। कश्मीर से अश्रवानी, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
7: To right field, and it will leave.
6: From the first pitch of the season to the stretch run,
7: and that's the ball game.
6: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
8: 2024 में T20 विश्व कप पर कब्जा, 2025 में जीता चैंपियंस ट्रॉफी का रण, अब लिया 2027 वर्ल्ड कप का प्रण। 27 वर्ल्ड कप का प्रण अग्निपथ।
9: तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: देश स्नान पूर्णिमा के मौके पर 29 जून को जगन्नाथपुरी में होगी स्नान यात्रा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को 108 कलशों के पवित्र जल से कराया जाएगा स्नान। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर हुआ मंथन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रबुद्ध जनों से की चर्चा। श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ शहर के ट्रैफिक प्लान पर हुई बात।

0: मुसाफिरों की यात्रा होगी अधिक सुगम और आरामदायक। गुजरात के 14 शहरों को मिली सुगम यातायात की सौगात। भारत टैक्सी ऐप का शुभारंभ, गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में उन्होंने किया उद्घाटन। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। बोटानिकल गार्डन में 196 साल के सबसे उम्रदराज कछुए जोनाथन के दीदार किए।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: जितनी तेजी से वक्त बदल रहा है उतनी ही तेजी से युद्ध के स्वरूप में भी बदलाव आ रहे हैं। मैदानी जंग में इंसानों की सीधे एंट्री की बजाय मशीनों को रणक्षेत्र में उतारने की तैयारी हो रही है। यही वजह है कि अनमैन्ड वेपन्स पर दुनिया का फोकस बढ़ा है। ऑटोनोमस मोड में काम करने के लिए ताकतवर हथियार तैयार किए जा रहे हैं।
1: भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट राइनो के तहत एक व्यापक अपग्रेड प्लान तैयार किया है। थल सेना अपने बेड़े में शामिल करीब 2400 पुराने हो चुके T-72 टैंकों को रिटायर करने या कबाड़ में बेचने के बजाय उन्हें अत्याधुनिक मानव रहित कॉम्बैक्ट व्हीकल में बदलने की योजना पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य T-72 टैंकों की सेवा अवधि को साल 2030 से 2040 के बाद तक बढ़ाना है।
0: आज के युद्ध क्षेत्र में इंसानों से ज्यादा आधुनिक मशीनों की भूमिका है। अब जंग सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से लड़ी जाती है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। युद्ध में मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि सिर्फ पारंपरिक हथियारों के भरोसे काम नहीं चलने वाला। इसी दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद T-70 टैंक्स को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। सेना अपने पुराने T-72 टैंक्स को एक डिजिटल और आधुनिक अवतार देने जा रही है। अब इन टैंक्स को IP बेस्ड इंटरफेस के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा।
2: इस प्रोजेक्ट के तहत एक मानव रहित टैंक का निर्माण किया जाएगा, जिसमें इंजन का संचालन रिमोट से होगा। जो तोप और हैवी मशीन गन है उसका भी संचालन रिमोट से होगा। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, यानी जैसे AI का जो इंटीग्रेशन करना है या IP का जो इंटीग्रेशन करना है वह शायद उतने सुचारू रूप से फिलहाल नहीं हो रहा है।
0: T-72 वही टैंक है जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा की है। अब ये 40 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में रिटायर होने के कगार पर खड़े T-72 टैंक को घातक रोबोटिक वॉरियर में तब्दील करने की बात हो रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि T-72 टैंक में बदलाव से क्या फायदा होगा, सेना की समग्र मारक क्षमता में कैसे इजाफा होगा। माइंस भरे इलाकों को तोड़ने में मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल की तरह T-72 का इस्तेमाल होगा, साथ ही दुश्मनों की गोलीबारी को आकर्षित करने के लिए डिकॉय के रूप में काम करेगा, जिससे सैनिकों की सुरक्षा बढ़ेगी। अग्रिम मोर्चे पर ऑपरेशंस पे ये अहम भूमिका अदा करेगा, यानी T-72 टैंक अग्रिम पंक्ति के हमलों का नेतृत्व करेंगे और टोही के साथ गश्त का काम बखूबी निभाएंगे। डिजिटल होने के बाद T-72 टैंक कमांड नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भेजेंगे, जिससे ऑपरेटर्स और कमांडर्स को युद्ध के बीच तुरंत निर्णय लेने में आसानी होगी। पहले की योजना के अनुसार T-72 टैंक्स को साल 2030 से धीरे धीरे सेना से बाहर किया जाना था, लेकिन अब इस नई ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इन टैंक्स की उम्र अगले 15 से 20 साल यानी साल 2045 से 2050 तक बढ़ जाएगी।
2: एक नॉर्मल कन्वेंशनल टैंक जैसे कि T-72 को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें इंजन वही रहता है, गियरबॉक्स भी वही रहता है, तोप भी वही रहता है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी वही रहता है। सिर्फ बदला किया जाता है, एक मानव रहित रोबोट जो है वो ड्राइवर की जगह ले लेता है, एक मानव रहित गनर है वो तोपची की जगह ले लेता है, और कमांडर की जो जगह है वो रिमोट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे बैठे हुए एक मानव कमांडर के हाथ में होता है। अब इन सब को करने के लिए जो रोबोट टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित कर ली है, लेकिन उसमें जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वह अभी तक आना बाकी है।
0: यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि आज के आधुनिक दौर में ड्रोन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और टॉप अटैक हथियारों ने पारंपरिक टैंक्स को बेहद असुरक्षित बना दिया है। ऐसे माहौल में टैंक के भीतर बैठे क्रू मेंबर्स की जान हमेशा खतरे में रहती है। भारत ने इस वैश्विक चुनौती का बेहद सटीक और किफायती समाधान ढूंढ निकाला है। सेना अपने पुराने हो रहे T-72 टैंकों में एक विशेष ऑटोनॉमस किट फिट करेगी, जिससे कि इन्हें रिमोट कंट्रोल के जरिए या फिर पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड में ऑपरेट किया जा सकेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि टैंक के भीतर कोई सैनिक मौजूद नहीं होगा। टैंक AI की मदद से या फिर रिमोट से ऑपरेट होगा और ये अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ दुश्मन पर हमला भी करेगा। एक पारंपरिक भारी भरकम मेन बैटल टैंक जैसे T-72 को मानव रहित रोबोटिक टैंक में बदलना इंजीनियरिंग का एक बेहद जटिल काम है। इसके लिए टैंक के पुराने मैनुअल सिस्टम को पूरी तरह हटाकर उसमें ड्राइव बाय वायर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाता है। टैंक को रोबोट बनाने के लिए उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाता, बल्कि उसमें एक विशेष रेट्रोफिट किट लगाई जाती है। इस किट के तीन मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है एक्चुएटर्स एंड सर्वो मोटर्स। टैंक के मैनुअल स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और गियर लीवर पर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर फिट किए जाते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मानव चालक के हाथ और पैर करते हैं। दूसरा है रिमोट गन कंट्रोल सिस्टम। 125 mm गन को मोड़ने, निशाना साधने और गोला दागने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगाई जाती हैं, जिन्हें मीलो दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है डिजिटल इंटरफेस। टैंक के पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम को ECU यानी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जो डिजिटल कमांड को मैकेनिकल मूवमेंट में बदल देता है।
2: खास बात है कि एक T-72 में आमतौर पर एक तीन लोगों का क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर। लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद इसमें जो रेट्रोफिट किट लगाया जाएगा, उसमें यह ड्राइवर का काम एक ऑटोमेटिक रोबोट करेगा। इसी तरह से जो ड्राइवर होगा उसको असिस्ट करने के लिए जो गनर है, जो टैंक का मेन तोप और हैवी मशीन गन फायर करता है, उस गनर को भी एक रोबोटिक गनर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी जो ट्रिगर प्रेस करने का काम है, जो निशाना लगाने का काम है, नया गोला तोप के चैम्बर में डालने का काम है, वो भी रोबोट्स के जरिए किया जाएगा।
0: रोबोटिक टैंक के अंदर कोई इंसान नहीं होता, इसलिए युद्ध क्षेत्र को देखने और समझने के लिए टैंक के चारों तरफ सेंसर्स का एक जाल बिछाया जाएगा। टैंक में लिडार और रेडार का इस्तेमाल होगा। ये सेंसर चारों ओर लेजर और रेडियो तरंगे भेजकर रियल टाइम में पूरे इलाके का एक 3D डिजिटल मैप तैयार करते हैं। इससे टैंक को पता चलता है कि आगे कोई खाई, चट्टान या दीवार तो नहीं है। टैंक में 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगाए जाएंगे, जो रात के अंधेरे, घने धुएं या कोहरे में भी दुश्मन की हलचल को साफ देख सकते हैं। AI सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में मिलाएगा, ताकि टैंक का कंप्यूटर एक सटीक फैसला ले सके। भारतीय सेना अपने टैंक्स को सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाना चाहती, क्योंकि युद्ध में दुश्मन सिग्नल जाम कर सकता है, इसलिए इसमें AI की मदद ली जाएगी। भारतीय सेना की अदिति 4.0 योजना के तहत देश के अग्रणी रक्षा स्टार्टअप्स इसी रोबोटिक किट और AI सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, ताकि हमारे T-72 टैंक्स को रिमोट कंट्रोल किलर मशीन्स में बदला जा सके।
1: मानव रहित टैंक को कंट्रोल करने के लिए युद्ध के मैदान से 5 से 10 किलोमीटर पीछे एक बख्तरबंद ट्रक के अंदर सैनिक सुरक्षित बैठता है। ऑपरेटर के सामने कई बड़ी स्क्रीन्स या VR हेडसेट्स होते हैं, जो कि ऐसा अनुभव देते हैं कि वो खुद टैंक के अंदर बैठा हो।
0: कंट्रोलर एक विशेष जॉयस्टिक, स्टीयरिंग व्हील और फायर बटन की मदद से टैंक को चलाता है और निशाना लगाता है। ऑपरेटर अपने कंट्रोल पैनल पर तय करता है कि उसे किस तरह का गोला दागना है। जैसे बख्तरबंद गाड़ियों के लिए APFSDS पैदल सेना या बंकरों को तबाह करने के लिए हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल। ऑपरेटर जैसे ही बटन दबाता है एक इंटीक्रिप्टेड डिजिटल सिग्नल टैंक के ECU यानी केंद्रीय कंप्यूटर को जाता है और फिर टैंक फायर कर देता है। सुरक्षा नियम कहते हैं कि गोला दागने का अंतिम फैसला हमेशा इंसानी ऑपरेटर का ही होता है। AI को खुद से फायर करने की अनुमति नहीं दी जाती।
2: अमेरिका, रशिया और इजराइल ने भी इस तरह के रोबोटिक टैंक्स बनाने की कोशिश की है, लेकिन इनमें से किसी भी देश में अभी तक जो प्रोटोटाइप बनाया गया है उसको ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी कि मास प्रोडक्शन के बाद उनकी आर्मी में इंडक्शन का कोई ऑर्डर नहीं मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि युद्धभूमि में ऐसा ना हो कि हमारा ही रोबोटिक टैंक गलती से हमारे ही टैंक या हमारे ही तोप की पोजीशन जो आर्टिलरी है या हमारे ही जो इन्फेंट्री ट्रुप्स युद्धभूमि में है उन पर फायर ना खोल दे। व्यवस्था ये की जाती है कि हमेशा जो ऑटोमेटिक लूप है उसमें मैन इन लूप हो, यानी फाइनल फायर करने की जो इजाजत है वो एक मनुष्य देगा।
0: T-72 टैंक को रिप्लेस करने की बजाय इसे अपग्रेड किया जा रहा है। आखिर दशकों पुराने इस टैंक में ऐसा क्या खास है कि इसे अपग्रेड कराने की तैयारी हो रही है और ये कितना घातक है ये भी जानना जरूरी है। भारत का T-72 टैंक अजय 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है जो 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ने की ताकत रखता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत है कि ये रीस्टार्ट होने में महज 6 से 7 सेकंड का वक्त लेता है। कम गहरी नदियों को आसानी से पार करने की इसमें ताकत है। लाइटवेट टैंक की बात करें तो भारतीय सेना के पास जो T-72 अजय टैंक है उसका वजन 41 टन के आसपास है। इसमें 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी हुई है। इससे एक बार में एक साथ 300 राउंड फायर होते हैं। इससे 1500 मीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है।
2: T-72 टैंक रूस का प्रमुख मेन बैटल टैंक है। वैसे रूस ने बाद में इसको अपग्रेड करके T-90 टैंक बनाया जो कि भारत के पास भी है। भारत की फौज में अभी करीबन 1000 T-90 टैंक्स हैं और करीबन 3000 T-72 टैंक हैं। इन T-72 टैंक्स की खास बात यह है कि ये रेत के ऊपर, दलदल के ऊपर, कीचड़ में, जंगल में, पहाड़ों में, बर्फ में भी ऑपरेट कर सकते हैं। इन T-72 टैंक्स में जो मेन गन लगी है वो इंफ्रारेड फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है और रात के अंधेरे में भी दुश्मन के टैंक्स या दुश्मन की गन पोजीशन को 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी से देखकर एक्यूरेट फायर कर सकता है।
0: भारतीय सेना के पास T-72 टैंक के 3 वर्जन हैं, अजय MK-1, अजय MK-2 और कॉम्बैट इंप्रूव्ड अजय, जिनका भारत इस्तेमाल करता है। इस वक्त भारतीय सेना में करीब 2400 के आसपास T-72 अजय टैंक मौजूद हैं। भारतीय सेना ने T-72 के आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट राइनो शुरू किया था। इसके तहत टैंकों में नए इंजन, आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम और बेहतर सुरक्षा प्रणाली लगाने की योजना है। साथ ही अदिति 4.0 पहल के तहत इन्हें भविष्य में मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म में भी बदला जा सकता है। सेना का मानना है कि इन सुधारों से T-72 टैंक आने वाले वर्षों में भी प्रभावी बने रहेंगे और भविष्य में फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के शामिल होने तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत जहां अपने मौजूदा T-72 टैंक बेड़े को बदलने और AI रेट्रोफिट किट का शुरुआती परीक्षण करने के चरण में है, वहीं अमेरिका और रूस ने इस क्षेत्र में समर्पित नई पीढ़ी के प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए हैं और उनका लाइव बैटलफील्ड में परीक्षण भी किया जा चुका है। आखिरी युद्ध में टैंक की क्या अहमियत है?
1: और इसकी जरूरत अब भी रणभूमि में क्यों महसूस की जाती है, इसे जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में चलना होगा।
0: प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के कई देश एक दूसरे को घुटनों के बल लाने के लिए रण क्षेत्र में उतरे हुए थे। तब पुराने जमाने की तरह ज्यादातर लड़ाई आमने सामने लड़ी गई। जितनी लड़ाई जमीन के ऊपर लड़ी गई, उतनी ही जमीन के नीचे भी। कई कई किलोमीटर लंबी खाइयां खोदकर सैनिक उनमें मशीन गन से लैस होकर तैनात रहते थे। इन खाइयों को ट्रेंच कहा जाता है और इनके बीच होता था नो मैन्स लैंड। तार बाड़ और लैंड माइन से भरी जमीन को पार करना यानी मौत को दावत देने जैसा था। इसीलिए तब लंबे समय तक ट्रेंच वॉर चलती रही। हर देश अपनी ट्रेंच के जरिए खुद की हिफाजत की पुख्ता व्यवस्था में जुटे थे। और इसी वजह से साल 2016 तक युद्ध फंसा ही रहा। ब्रिटेन और जर्मनी दोनों खेमों की सेना जहां जहां थी वहीं खड़ी की खड़ी रही, क्योंकि आगे बढ़ना मुश्किल था। और तभी आया एक ऐसा हथियार जिसने आने वाले तमाम युद्धों की तस्वीर बदल कर रख दी। यह हथियार था टैंक।
1: टैंक का नाम टैंक ही क्यों पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। जब ब्रिटेन टैंक को बना रहा था तो उसे डर था कि इस नए हथियार की जो जानकारी थी वो कहीं लीक ना हो जाए, इसलिए आधिकारिक फाइल्स में इस हथियार को टैंक लिखा जाने लगा, ताकि अगर किसी को पता चले तो ये लगे कि ब्रिटेन पानी ले जाने के लिए किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जो कमेटी इसका काम देख रही थी उसे टैंक सप्लाई कमेटी या TS कमेटी कहा गया। और जब फिर हथियार तैयार हो गया तब उसका नाम टैंक ही पड़ गया।
0: पहले विश्व युद्ध में बने टैंक प्रयोग के स्तर पर थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध आते आते टैंक्स फौज की जरूरत बन गए, या यूं कहें टैंक्स सेना का अनिवार्य हिस्सा बन गए। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने जब चंद दिनों में फ्रांस और पोलैंड पर अपनी जीत हासिल की तो उसकी सबसे बड़ी वजह उसके टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ही थे।
1: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टैंक की अहमियत बढ़ने लगी, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों ने आमने सामने की लड़ाई में टैंक की विध्वंसकारी ताकत को काफी करीब से महसूस कर लिया था। और फिर दुनिया के कई देशों ने टैंक टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया। इनमें एक नाम भारत भी था।
0: लंबे समय तक भारत

0: की मदद से अपना एक टैंक बनाया जिसका नाम रखा गया विजयंत। इसका इस्तेमाल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किया गया। स्वदेशी ताकत को धार देने के लिए बाद में अर्जुन टैंक का निर्माण किया गया और अब इसी कड़ी में जोरावर का नाम भी जुड़ गया है। किसी भी टैंक की ताकत का आकलन उसकी मारक क्षमता, उसकी स्पीड और उसकी डिफेंस क्षमता से होती है। इसके लिए बैटल टैंक्स के कुछ इंडिकेटर होते हैं, उनके जरिए ही पता चलता है कि टैंक फौज की जरूरत के हिसाब से सही है या नहीं। ये इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। पहला इंडिकेटर वजन है, स्पीड है, पावर टू वेट रेशियो है, साथ ही हथियारों और डिफेंस मैकेनिज्म है जो ये बताता है कि आर्मर कैसा है टैंक का।
1: टैंक के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन, और ये तीनों बहुत जरूरी है। अगर आप देखें मोबिलिटी, तो वो दिखलाता है कि टैंक किस स्पीड से जा सकता है, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह में कम से कम समय में जा सकता है और अपने टारगेट को कितनी जल्दी जाके हिट कर सकता है, तो इसलिए मोबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार फायर पावर, जो फायर पावर है वो दिखलाता है कि आप किस हिसाब से अपने टारगेट को शॉर्ट शॉर्ट हिट कर देते हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी रेंज कितनी है। और जो तीसरा है आपकी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यह है कि आपको यह भी देखना है कि दुश्मन के जो एंटी टैंक वेपन है या दुश्मन के टैंकों से आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट हिट हो जाता है आपके टैंक में, तो आप के पास इतनी काबिलियत और क्षमता होनी चाहिए कि आपका टैंक उसको विस्टैंड कर ले। तो इसका मतलब चुबा आर्मर है, रिएक्टिव आर्मर है, तो इस टाइप का। तो ये कॉम्बिनेशन है इम्पोर्टेंट, एक टैंक के अंदर तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन। इसका कॉम्बिनेशन होना, इसकी ऐसा तरीके से होना कि इसका वेट भी ऑप्टिमम हो, इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो और फायर पावर भी बहुत ही एक प्रकार से अव्वल दर्जे की हो।
0: किसी अच्छे बैटल टैंक में दो काबिलियत अनिवार्य है, पहला मोबिलिटी और दूसरा फायर पावर। मोबिलिटी का मतलब टैंक की वो ताकत है जो उसे कहीं भी ले जा सकती है। आप देखिए, ट्रेंच वॉरफेयर की जगह पे ही टैंक्स आए थे, पक्की सड़क हो या फिर कई मीटर गहरा कीचड़, टैंक का काम है हर जगह से निकलना। जहां बड़े बड़े पहियों वाले ट्रक्स भी फंस जाते हैं, वहां से टैंक्स आसानी से निकल जाते हैं, जबकि टैंक में लोहे के रोड व्हील्स या कहिए उसमें लोहे के पहिए होते हैं, फिर भी वो धसते नहीं। वो कैसे? इसका सिंपल फिजिक्स है। टैंक के पहिए सीधे जमीन पर चलते ही नहीं हैं, टैंक्स अपने साथ अपनी सड़क भी लेकर चलते हैं, जिन्हें कहा जाता है ट्रैक। आमतौर पर लोग इसे टैंक की चेन कह देते हैं, लेकिन ट्रैक सही शब्द है। ट्रैक पर चलने का फायदा ये है कि टैंक का वजन जमीन के किसी एक हिस्से पर नहीं पड़ता है। टैंक का ट्रैक टैंक के वजन को एक बहुत बड़े सरफेस एरिया पर बांट देता है और इसलिए नम जमीन पर भी 50-50 टन के टैंक कभी धसते नहीं।
1: टैंकों के अंदर व्हील नहीं होते, क्योंकि व्हील जो है उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि रेतीले इलाके में, दलदल के इलाके में या टूटी फूटी जमीन पे चल पाए, इसीलिए टैंकों के अंदर ट्रैक होते हैं और ट्रैक से काबिलियत बढ़ती है टैंक की। टैंक जो है एक प्रकार से रेतीले इलाके में भी जा सकता है और ऐसे इलाके में जा सकता है जहां पर दलदल हो या टूटी फूटी जमीन हो, इसीलिए टैंकों में ट्रैक होता है ना कि व्हील।
0: मौजूदा दौर में कई टैंक्स गहरे पानी तक को पार करने में सक्षम हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टैंक्स बिल्कुल भी फंसते नहीं। टैंक्स भी फंसते हैं, लेकिन ऐसा बेहद कम होता है।
2: टैंक्स को मैन्युवरल भी होना चाहिए और बढ़िया वेट टू पावर रेशियो भी होना चाहिए। मैन्युवरिंग मतलब टैंक कितनी चपलता या फुर्ती के साथ हरकत कर सकता है, गोला दाग कर कितनी जल्दी अपनी पोजीशन बदल सकता है। जाहिर है टैंक भारी होगा तो उसे हरकत करने में काफी दिक्कतें आएंगी, लिहाजा टैंक के पास एक ताकतवर इंजन का होना जरूरी है।
0: टैंक का वजन और

0: उसके इंजन की ताकत या पावर के बीच जो अनुपात होता है उसी को कहा जाता है पावर टू वेट रेशियो। जितना बेहतर पावर टू वेट रेशियो होगा उतना अच्छा टैंक हो सकता है।
1: तीन रिक्वायरमेंट है टैंक की, इसकी फायर पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसकी मोबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, इसकी प्रोटेक्शन भी, और तीनों का तालमेल होना चाहिए। देखो अगर आप प्रोटेक्शन देते हैं तो फिर इसका टैंक का एक प्रकार से वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है तो फिर मोबिलिटी कम हो जाती है और उसकी फायर पावर कैसी होगी वो भी दर्शाता है। तो एक अच्छे टैंक का पहचान यह है कि हर चीज अच्छी हो, उसकी फायर पावर भी बहुत अच्छी हो, वो उसके रेंज पे हिट कर पाए, 100% अपने टारगेट को हिट कर पाए, और इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो कि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा पाए, और तीसरा है इसकी प्रोटेक्शन भी हो कि अगर दुश्मन का टैंक या एंटी टैंक वेपन हिट करता है तो वो उसे बचाव कर पाए। तो इन तीनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए कि ये ना हो कि टैंक इतना हैवी हो, इतना लाइट ना हो कि उसकी प्रोटेक्शन इतनी अच्छी ना हो या उसके अंदर फायर पावर इतनी अच्छी ना, तो तीनों का एक प्रकार संतुलन होना जरूरी है।
0: हमारे लिए यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
4: How they looked after Game One.
5: I mean, they were frustrated.
3: The Daily.
6: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
3: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
7: कौन से ग्रह का दान रात के समय में करना अच्छा होता है? किस ग्रह का दान करने से रोजगार की रुकावट दूर हो जाती है? और कौन से ग्रह के लिए गाय को हरा चारा खिलाने से फायदा होता है? किस ग्रह के लिए क्या करें दान, कब करें दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: Hey, music lovers, ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going, so you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
9: 2024 में T20 विश्व कप पर कब्जा, 2025 में जीता चैंपियंस ट्रॉफी का रण, अब लिया 2027 वर्ल्ड कप का प्रण, पद्मश्री रोहित शर्मा का अग्निपथ। सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: देव स्नान पूर्णिमा के मौके पर 29 जून को जगन्नाथपुरी में होगी स्नान यात्रा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को 108 कलशों के पवित्र जल से कराया जाएगा स्नान। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर हुआ मंथन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रबुद्ध जनों से की चर्चा। श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ शहर के ट्रैफिक प्लान पर हुई बात। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों यात्रियों के लिए गुड न्यूज। 29 जून से सेंट्रल रेलवे की 12 और लोकल ट्रेन बनेंगी एसी। लोकल के मुसाफिरों की यात्रा होगी अधिक सुगम और आरामदायक। गुजरात के 14 शहरों को मिली सुगम यातायात की सौगात। भारत टैक्सी ऐप का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में उन्होंने किया उद्घाटन। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। बोटानिकल गार्डन में 196 साल के सबसे उम्रदराज कछुए जोनाथन के दीदार किए।

पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उसने क्रिकेट के मैदान पर करिश्माई पारियां खेलकर क्रिकेट प्रेमियों के साथ ही देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाली जूरी का भी दिल जीत लिया। इसलिए क्रिकेट के उस मसीहा को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। ये वो शख्स हैं जिसने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के साथ ही ICC चैंपियंस ट्रॉफी का भी चैंपियन बना दिया।

0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।
1: आप समझ ही गए होंगे कि आज बंदे में है दम का बंदा कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के हिटमैन यानी कि विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। जी हां, भारतीय क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी बहुत कम हुए हैं जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के चंद उन्हीं चुनिंदा खिलाड़ियों में से शुमार हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया एक से ज्यादा बार विश्व चैंपियन बन चुकी है। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया कम से कम फटाफट फॉर्मेट में कमोबेश अपराजेय बनी रही। ये क्रिकेट के दो फॉर्मेट T20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं लेकिन वनडे में अभी भी दमदार पारियां खेल रहे हैं।
0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।

0: 23 जून रोहित शर्मा के जीवन की सबसे यादगार तारीख बन चुकी है। 23 जून ही वो तारीख है जब रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला कदम रखा था। रोहित ने 23 जून 2007 को आयरलैंड के बेलफास्ट में खेले गए एक वनडे मैच से भारत के लिए डेब्यू किया था। रोहित की किस्मत का 23 जून कनेक्शन देखिए कि इंटरनेशनल डेब्यू के 19 साल बाद 23 जून को ही रोहित शर्मा को चौथे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।

0: दरअसल 19 साल के अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में रोहित ने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किए जाने के वाजिब हकदार बन गए। सिर्फ बतौर बल्लेबाज ही नहीं, बतौर कप्तान भी रोहित के नाम कई कीर्तिमान दर्ज हैं। हालांकि रोहित को एक बात का अफसोस भी रहता है कि साल 2023 के वर्ल्ड कप में वो विश्व विजेता बनने की दहलीज तक पहुंचकर कप उठाने से वंचित रह गए थे। तारीख थी 19 नवंबर 2023, स्थान था अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया के मुकाबिल था ऑस्ट्रेलिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत विश्व विजेता बनते बनते रह गया था। एक हुक, एक कसक, एक टीस थी जो रह गई थी कप्तान रोहित शर्मा के मन में। 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित ने अपनी रहनुमाई में उस हुक को, उस टीस को, उस कसक को, उस पीड़ा को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जश्न में तब्दील कर दिया। तब होली से पहले पूरे देश में दिवाली की रौनक नुमाया हो गई थी। लीडर अगर सेल्फलेस हो, निस्वार्थ हो, भेदभाव रहित हो, तो उसकी टीम की जय निश्चित हो जाती है। क्योंकि लीडर जब सेल्फलेस होता है तो पूरी टीम जीत को लेकर जुनूनी हो जाती है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा निसंदेह इसी कैटेगरी के लीडर रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित ने 76 रनों की जो पारी खेली थी, उसने कीवियों के हौसले को ऐसा पस्त कर दिया था कि मैदान पर मचलने के सिवा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। दरअसल जीत के लिए संघर्ष करते कीवियों को शायद पता नहीं था कि क्रिकेट के मैदान के इस युगांधर ने दुबई रवाना होने से पहले ही अपने बचपन के कोच दिनेश लाड से ये वादा किया था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का कप लेकर ही वापस लौटेगा।
1: रोहित ने मुझे जाने के वक्त मुझे कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग जीत के आएंगे, तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप के लिए गया था तभी भी मुझे कहा था उसने, मैं चैंपियंस T20 वर्ल्ड कप आपको लेके दिखाऊंगा, आपको गुरुदक्षिणा दूंगा, ये मुझे सेकेंड गुरुदक्षिणा दी ऐसे मैं कहूंगा।
0: इस तरह का चट्टानी आत्मविश्वास युग पुरुष का ही होता है, और जब लीडर का, रहनुमा का आत्मविश्वास आसमानी होता है तो पूरी टीम जीत के विश्वास से भर जाती है। यही वजह है कि 2 साल में लगातार 2 आईसीसी खिताब जीतने वाले रोहित दुनिया के पहले कप्तान हैं। 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी का विश्व चैंपियन बनने से पहले 19 जून 2024 को बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से शिकस्त देकर रोहित की सेना T20 वर्ल्ड कप की विजेता बनी थी। अपनी कप्तानी में रोहित शर्मा की ये पहली खिताबी आईसीसी ट्रॉफी थी। लिहाजा जीत के बाद मैदान का ये तूफान इतना भावुक हो गया कि केंसिंगटन ओवल की पिच की मिट्टी को प्रसाद मानकर अपनी जिह्वा पर रख लिया। रोहित के इस भावनात्मक उद्गार को पीएम मोदी ने भी देखा था, इसीलिए चैंपियंस का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी ने जब रोहित की विजेता ब्रिगेड को पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर आमंत्रित किया, तो उस घटना का जिक्र करना नहीं भूले।
2: कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है, और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चूमा, ये वो हिंदुस्तानी ही कर सकता है।
3: जहाँ पर हमें वो विक्ट्री मिली उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस, क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया।
0: क्रिकेट के मैदान पर विरोधी टीम के गेंदबाजों की खाट खड़ी कर देने वाला ये इंसान इतना ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, इसकी तो किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। बहरहाल 2 साल में 2 आईसीसी टूर्नामेंट की खिताबी जीत से ज्यादा बड़ी है रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया की अपराजेयता। आईसीसी टूर्नामेंट में रोहित की कप्तानी का रिकॉर्ड अपने आप में अद्वितीय रहा है। इस युगांधर की कप्तानी में 2023 विश्व कप के फाइनल को छोड़कर टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट्स का अपना एक भी मैच नहीं हारी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल समेत रोहित की सेना ने कुल 5 मैच खेले और पांचों में जीत हासिल की। 2024 T20 विश्व कप में भी टीम इंडिया ने फाइनल समेत 8 मुकाबले खेले थे और सभी में जीत दर्ज की थी। वर्ल्ड कप 2023 में भी रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल छोड़कर कुल 10 मैच खेले थे और सभी में जीत हासिल की थी। रोहित की लीडरशिप का कमाल ये है कि ICC टूर्नामेंट में उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने कुल 23 मुकाबले खेले और इनमें से 22 में जीत दर्ज की। ये है इस बेमिसाल लीडर का रिकॉर्ड। दरअसल रोहित शर्मा जब मैदान पर होते हैं तो पूरी टीम निर्भय होकर मुकाबला करती है, क्योंकि रोहित का बल्ला जब चलता है तो विरोधियों की पेशानियों पर सिर्फ चिंता की लकीरें होती हैं। यही वजह है कि रोहित के प्रति क्रिकेट प्रेमियों की दीवानगी जुनून की हदें पार कर जाती है। हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमियों का अब बस एक ही सपना है, साल 2027 में साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप में भारत को अपनी बैटिंग के दम पर तीसरी बार विश्व चैंपियन बनाकर ही रोहित वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करें। इसीलिए 39 साल के हो चुके रोहित शर्मा के साल 2027 वर्ल्ड कप से पहले रिटायरमेंट की चर्चा बेमानी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी यही चाहते हैं कि रोहित ने जैसे टीम इंडिया को T20 का विश्व विजेता बनाने के बाद 2020 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया, उसी तरह 2027 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाकर ही वनडे क्रिकेट को अलविदा कहें। रोहित की तरह का क्रिकेटर युगों में एक बार अवतरित होता है। 19 साल के क्रिकेट करियर में रोहित ने कभी भी अपने निजी रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेला। उनका बल्ला जब भी चला टीम के लिए चला। बेशक टीम के लिए खेलते हुए कुछ बेनजीर रिकॉर्ड्स उनके नाम दर्ज हो गए। हालांकि उनकी कप्तानी में अगर टीम इंडिया के रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा लीडरशिप के मामले में उनके आस पास भी कोई नहीं है।
4: T20 और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले रोहित जितने शानदार टीम लीडर साबित हुए हैं, उतने ही आक्रामक बल्लेबाज भी हैं। रोहित शर्मा की आक्रामक बैटिंग का लोहा दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर्स भी मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद रोहित शर्मा बैट्समैन नहीं बल्कि बॉलर बनना चाहते थे? रोहित शर्मा अपनी क्रिकेट अकेडमी में ऑफ ब्रेक की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन कमाल की अंतर्दृष्टि थी उनके कोच में, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे हुए बैटिंग के हुनर को पहचाना और बॉलिंग की जगह उनसे बैटिंग पर ध्यान देने की सलाह दी। कोच की एक सलाह ने रोहित की जिंदगी बदल दी।
0: वर्तमान का एक छोटा सा टर्न कई बार भविष्य की पूरी तस्वीर बदल देता है। रोहित शर्मा इस बात की सबसे बड़ी मिसाल हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो रोहित शर्मा आज इंटरनेशनल क्रिकेट में हिटमैन के नाम से विख्यात हैं, वो बल्लेबाज की जगह गेंदबाज बनना चाहते थे। रोहित अपनी टीम के ऑफ स्पिनर थे और बॉलिंग की ही नट प्रैक्टिस करते थे। लेकिन दाद देनी होगी रोहित के कोच दिनेश लाड की, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे बैटिंग क्लास को महसूस कर लिया। अगर दिनेश लाड ने रोहित को बैटिंग करने के लिए प्रेरित न किया होता तो शायद टीम इंडिया को इतना बेहतरीन हिटमैन नहीं मिला होता।
5: कभी बैट्समैन नहीं था। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया अपने स्कूल के लिए, मैं एज अ बॉलर सिलेक्ट हुआ था, ऑफ स्पिन बॉल डालता था। तो कुछ महीनों के बाद मेरे जो कोच है दिनेश लाड जी, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला, यार तेरे को बैटिंग में भी फोकस करना चाहिए, हमें टीम को ऑलराउंडर की ज़रूरत है। और उन्होंने मेरा बैटिंग देखा और मुझे 7-8 नंबर पर बैटिंग करने का मौका दिया। और जब मैं बैटिंग करने गया तो मैंने कुछ 30-40 रन बनाए नीचे 7-8 नंबर पे, उनको अच्छा लगा।
6: उसी अंदाज में जो आजकल बनते हैं।
5: हाँ बिल्कुल, उसी अंदाज में छक्के चौके ऐसे ही लग रहे थे। तो मेरे सर जो थे काफ़ी खुश हुए, उन्होंने बोला, उन्होंने एक बार मुझे ऊपर बैटिंग करने का अपॉर्चुनिटी दिया और उस टाइम मैंने 140 रन बनाए।
0: दरअसल रोहित के क्रिकेट करियर का आगाज मुंबई के बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन से हुआ। रोहित इस एकेडमी की तरफ से खेलते थे और ऑफ स्पिनर बनना चाहते थे। इसी दौरान किसी मैच में स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल के कोच दिनेश लाड की नजर रोहित पर पड़ी। तब उन्हें अपने स्कूल की टीम के लिए अच्छे उदीयमान खिलाड़ियों की तलाश थी। रोहित की स्पिन गेंदबाजी दिनेश लाड को पसंद आई और उन्होंने रोहित को विवेकानंद स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। काबिले गौर है कि तब स्कूल की फीस 275 रुपए प्रति महीने थी और रोहित के पेरेंट्स के लिए इस फीस का इंतजाम कर पाना मुश्किल था, क्योंकि तब रोहित के पेरेंट्स को क्रिकेट कोचिंग के लिए हर महीने 800 रुपए देने पड़ते थे और उसी का इंतजाम बड़ी मुश्किल से हो पाता था। रोहित की इस मजबूरी को देखते हुए दिनेश लाड ने उनकी स्कूल की फीस माफ करवा दी। दरअसल दिनेश लाड छोटी उम्र के रोहित के जबरदस्त आत्मविश्वास से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रोहित का आत्मविश्वास देखकर उन्हें शुरू में ही लग गया कि ये लड़का एक दिन दुनिया का सबसे धाकड़ खिलाड़ी बनेगा।
1: नहीं नहीं, कभी फियर फैक्टर मैंने कभी उसको ऐसे डरते हुए कभी देखा ही नहीं। हर स्कूल के हर मैच में कोई भी अच्छे बॉलर हो, कोई भी यानी डर के कभी खेला नहीं। उसका फायदा उसको, क्योंकि उसके अपने आप में लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है और वो कॉन्फिडेंस के ऊपर वो अपनी बल्लेबाजी करते रहे और उसका फायदा उसको होता ही होता है।
0: दिनेश लाड की सलाह पर रोहित ने बॉलिंग के साथ अपनी बैटिंग पर भी ध्यान देना शुरू किया और उसका असर ये हुआ कि बतौर बल्लेबाज वो सेलेक्टर्स को प्रभावित करने लगे। अंडर 14, अंडर 15 और अंडर 19 हर टीम में वे जगह बनाते चले गए। साल 2007 में रोहित भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलने दक्षिण अफ्रीका गए और मेजबान टीम के खिलाफ शानदार हाफ सेंचुरी बनाकर अपने टैलेंट का लोहा मनवा दिया। हालांकि पैसे की तंगी अभी भी बनी हुई थी। रोहित की किस्मत ने बड़ी करवट तब ली जब साल 2008 में IPL में उन्हें 3 करोड़ कीमत मिली। जिस रोहित ने बचपन से पैसे की तंगी देखी थी, उनके पास जब एक मुश्त 3 करोड़ रुपए आए तो उन्हें एक बार की समझ नहीं आया कि इन पैसों से सबसे पहले अपनी कौन सी हसरत पूरी करें। काफी उधेड़बुन के बाद रोहित ने अपने लिए शानदार गाड़ी खरीदी। हालांकि उस समय उनके माता पिता बोरीवली में किराए के घर में रहते थे, लिहाजा रोहित के गाड़ी खरीदने के फैसले से वो नाराज हुए, क्योंकि माता पिता चाहते थे कि रोहित सबसे पहले मुंबई में घर खरीदें। बहरहाल रोहित ने बाद में अपने पेरेंट्स की ये इच्छा भी बांद्रा में घर खरीद कर पूरी कर दी। लेकिन बचपन में गरीबी का दंश झेल चुके रोहित के पास जब पैसे आने लगे तो उनका दिलो दिमाग क्रिकेट से डिस्ट्रैक्ट होने लगा। यही वजह है कि साल 2009 और साल 2010 में वो कुछ खास नहीं कर पाए। रोहित को तगड़ा झटका तब लगा जब 2011 वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। झटका लगने के बाद रोहित ने गहराई के साथ आत्ममंथन किया और तय किया कि सफल होना है तो डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करना ही पड़ेगा।
5: सिचुएशन को मैं समझ नहीं पा रहा था, नया नया था, 20 साल का था, तो गेम रीडिंग सिचुएशंस जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं थी। फेलियर्स के बाद ही मुझे पता चला कि गेम में क्या सुधार लाने की जरूरत है, गेम को कैसे इम्प्रूव करना है।
0: कुछ वक्त की असफलता ने रोहित को इतना ज्यादा सचेत कर दिया कि वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगे। 2011 वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर टीम इंडिया में जगह बनाई। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें पारी की शुरुआत करने का मौका मिला और उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी बनाई। उसके बाद तो रोहित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
4: रोहित शर्मा में वो काबिलियत है कि अपनी धुआंधार बैटिंग से किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन रोहित के पिता वनडे क्रिकेट या फिर T20 में रोहित के प्रदर्शन से बहुत ज्यादा खुश नहीं होते थे, क्योंकि पिता की नजर में टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ी की असली अग्नि परीक्षा होती है। हालांकि रोहित अब टेस्ट क्रिकेट और T20 से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उससे पहले पिता के ख्वाहिशों पर खरा उतरने की भरसक कोशिश की।

0: वनडे क्रिकेट में कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले रोहित शर्मा की जिंदगी एक अजीब विडंबना है। रोहित के पिता गुरुनाथ शर्मा की शुरू से ये इच्छा थी कि उनका बेटा टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन करे, जबकि रोहित का टेम्परामेंट वनडे और T20 क्रिकेट से मेल खाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 108 वनडे खेलने के बाद रोहित शर्मा को पहली बार 9 नवंबर 2013 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। पहले ही टेस्ट मैच में रोहित ने 177 रनों की यादगार पारी खेली, जिसके बाद उनके पिता का खुशी का ठिकाना नहीं था।
1: मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट ही पसंद है। एक मेरे लिए सबसे जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मेरी फैमिली थी, और मेरे पिताजी वनडे क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, बट उनको टेस्ट क्रिकेट में मैं जब भी मैं अच्छा करता हूँ तो वो बहुत खुश होते तो इसीलिए मेरा एक सपना है कि मैं टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करूँ, एक क्योंकि मेरे पिताजी खुश रहे, क्योंकि मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट में मुझे देखना अच्छा करते हुए।
0: रोहित के अपने टेम्परामेंट और उनके पिता की टेस्ट मैच ख्वाहिश के बीच एक लंबा कश्मकश रहा है। वैसे टेस्ट मैच में रोहित का रिकॉर्ड कोई खास अच्छा नहीं रहा है, जबकि वनडे क्रिकेट में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो इस फॉर्मेट के करीब 53 साल के इतिहास में धाकड़ से धाकड़ बल्लेबाज भी नहीं कर पाया। वनडे क्रिकेट में आज तक कोई भी बल्लेबाज एक से ज्यादा डबल सेंचुरी नहीं लगा पाया है, जबकि रोहित के नाम वनडे में 3-3 डबल सेंचुरी हैं। रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जो वनडे क्रिकेट का ऑल टाइम सर्वोच्च स्कोर है। उससे पहले रोहित ने नवंबर 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों की यादगार पारी खेली थी। दिसंबर 2017 में रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी तीसरी डबल सेंचुरी लगाई। इस मैच में रोहित 208 रन बनाकर नाबाद रहे थे। कहने की जरूरत नहीं कि वनडे क्रिकेट में लंबी पारी खेलने के मामले में रोहित का कोई सानी नहीं है। वनडे वर्ल्ड कप में रोहित के नाम एक और शानदार विश्व कीर्तिमान दर्ज है। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने के अलावा एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड भी रोहित के नाम ही दर्ज है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 5 शतक लगाए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 122 रन, पाकिस्तान के खिलाफ 140 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 102 रन, बांग्लादेश के खिलाफ 104 रन और श्रीलंका के खिलाफ 103 रनों की पारी खेली थी। साफ है कि रोहित के नाम वनडे क्रिकेट में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं जिन्हें तोड़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। हालांकि T20 में भी रोहित के नाम एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। दरअसल रोहित को डिफेंसिव क्रिकेट ना पसंद है, बल्ले से प्रहार करना उन्हें काफी भाता है। यही वजह है कि वनडे और T20 के ऑल टाइम महानतम बल्लेबाजों में वो शुमार हैं।
2: तो बंदे में दम में आज मैंने आपको रोहित शर्मा की जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को दिखाया। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: कौन से ग्रह का दान रात के समय में करना अच्छा होता है? किस ग्रह का दान करने से रोजगार की रुकावट दूर हो जाती है? और कौन से ग्रह के लिए गाय को हरा चारा खिलाने से फायदा होता है? किस ग्रह के लिए क्या करें दान, कब करें दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: और अब खबर खूबसूरत नजारों और हरे भरे मैदानों की। कश्मीर दुनिया भर में अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए मशहूर है। गुलमर्ग और पहलगाम जैसे नाम तो हर जबान पर है, लेकिन इस जन्नत के बीच कुछ ऐसे अनमोल खजाने भी छिपे हैं जिनका जिक्र आमतौर पर नहीं होता। आज हम आपको दक्षिण कश्मीर के ऐसे ही हिडन डेस्टिनेशन की सैर कराएंगे, साथ ही श्रीनगर में सैलानियों की रौनक भी दिखाएंगे।

0: खूबसूरत वादियाँ, हरियाली की चादर ओढ़े मीलों तक फैले हरे भरे मैदान और उनके बीच से कलकल बहती साफ पानी की नहर। ये तस्वीरें हैं दक्षिण कश्मीर के शोपियांग जिले की, जहाँ का हर कोना कुदरत की बेमिसाल कारीगरी का सबूत है। ऐतिहासिक मुगल रोड से जब कोई मुसाफिर गुजरता है तो पीर की गली और इसके आसपास की घाटियों का नजारा उसे मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ का सुकून, पहाड़ों की ताजी और शुद्ध हवा और कुदरत की हैरान कर देने वाली कारीगरी ऐसी है कि जो भी यहाँ आए वो यहीं का होकर रह जाए।
1: जिला शुपियान जहाँ पे सबसे बड़ी जो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, अहरवल भी नजदीक है, दुबजन और उसके साथ साथ मुगल सराय के साथ साथ और भी कई ऐसी चीजें हैं जो वाकई दिलकश नजारे बयान करते हैं।
0: करीब 3,500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये इलाका गर्मियों में फूलों की चादर ओढ़ लेता है। दूर दूर तक यहाँ फैली खामोशी और किसी पेंटर की कल्पना जैसे हरे भरे मैदान देखने लायक हैं। कश्मीर की इन वादियों में जो सुकून और सुंदरता है उसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है, लेकिन खूबसूरती के खजाने को समेटे ये इलाका सैलानियों की नजरों से अभी दूर है। यूं तो कश्मीर को कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है, लेकिन शोपियांग जैसे इलाकों को अब भी सैलानियों का इंतजार रहता है।
2: ये जो जगहें हैं शोपियांग की, ये अनएक्सप्लोर्ड जगहें हैं, जैसे पतनदफन है। ये जगह जो है इवन शोपियांग के लोगों को इस जगह का पता नहीं है, तो देयर आर लिमिटेड लॉट ऑफ पीपल जिनको इस जगह का पता है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, एक छोटा सा इलाका है। हम चाहते हैं कि यहाँ लोग आए, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर इस जगह का ख्याल भी रखना है, पोल्यूशन नहीं करना है, पोल्यूट नहीं करना है इस जगह को।
0: एक तरफ शोपियांग में सैलानियों की आमद बेहद कम है, तो दूसरी तरफ श्रीनगर में सैलानियों की रिकॉर्ड तादाद देखने को मिल रही है। गर्मी से राहत की तलाश में मैदानी इलाके से सैकड़ों सैलानी इन दिनों कश्मीर की हसीन वादियों और दिलकश नजारों और शानदार मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। श्रीनगर में इन दिनों सबसे ज्यादा रौनक डल झील पर है, जहां इन शानदार नजारों के बीच डल झील में शिकारे की सैर लोगों को बेहद पसंद आ रही है।
3: बहुत अच्छा लगा भैया, यहाँ के तो बहुत सुकून मिल रहा है हमको। मौसम यहाँ पर तो भैया दो दो मिनट में चेंज होता रहता है। दिल्ली में तो बहुत हॉट वेदर है, पर यहाँ पर जो क्लाइमेट है बहुत कोल्ड है। कभी रात को जैसे हम बोट हाउस में रहे तो वहाँ रात को एकदम बारिश हो गई, तो बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पे, सुहावना मौसम है।
4: कश्मीर में आके बहुत मजा आया, मतलब मुझे लगता है कि हर एक इंसान को जिंदगी में एक बार जरूर कश्मीर आना चाहिए घूमने के लिए। मतलब टोटली डिफरेंट इन कम्पेयर टू उत्तराखंड, केरला, टोटली डिफरेंट।
0: डल झील से लेकर गुलमर्ग तक एक अद्भुत रौनक बिखरी है और वादियों में जिंदगी मुस्कुरा रही है, लेकिन इस रौनक को अगर शोपियांग और पीर की गली जैसी अनछुए जन्नत का भी साथ मिल जाए तो कश्मीर के पर्यटन में चार चांद लग जाए। कश्मीर से अश्रवानी, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: Hey sports fans, TuneIn is bringing you live games, non-stop sports talk and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
7: Swing and a foul out of play off to the left.
6: Big 12 Radio.
8: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
6: Talk Sport.
9: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
6: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
10: 2024 में T20 विश्व कप पर कब्जा, 2025 में जीता चैंपियंस ट्रॉफी का रण, अब लिया 2027 वर्ल्ड कप का प्रण। पद्मश्री रोहित शर्मा का अग्निपथ, सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
11: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी ना।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
12: देव स्नान पूर्णिमा के मौके पर 29 जून को जगन्नाथपुरी में होगी स्नान यात्रा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को 108 कलशों के पवित्र जल से कराया जाएगा स्नान। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर हुआ मंथन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रबुद्ध जनों से की चर्चा। श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ शहर के ट्रैफिक प्लान पर हुई बात। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों यात्रियों के लिए गुड न्यूज। 29 जून से सेंट्रल रेलवे की 12 और लोकल ट्रेन्स बनेंगी एसी। लोकल के मुसाफिरों की यात्रा होगी अधिक सुगम और आरामदायक। गुजरात के 14 शहरों को मिली सुगम यातायात की सौगात। भारत टैक्सी ऐप का शुभारंभ। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में उन्होंने किया उद्घाटन। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। बोटानिकल गार्डन में 196 साल के सबसे उम्रदराज कछुए जोनाथन के दीदार किए।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: जितनी तेजी से वक्त बदल रहा है उतनी ही तेजी से युद्ध के स्वरूप में भी बदलाव आ रहे हैं। मैदानी जंग में इंसानों की सीधे एंट्री की बजाय मशीनों को रणक्षेत्र में उतारने की तैयारी हो रही है। यही वजह है कि अनमैन वेपन्स पर दुनिया का फोकस बढ़ा है। ऑटोनोमस मोड में काम करने के लिए ताकतवर हथियार तैयार किए जा रहे हैं।
1: भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट राइनो के तहत एक व्यापक अपग्रेड प्लान तैयार किया है। थल सेना अपने बेड़े में शामिल करीब 2400 पुराने हो चुके T-72 टैंकों को रिटायर करने या कबाड़ में बेचने के बजाय उन्हें अत्याधुनिक मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल में बदलने की योजना पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य T-72 टैंकों की सेवा अवधि को साल 2030 से 2040 के बाद तक बढ़ाना है।
0: आज के युद्ध क्षेत्र में इंसानों से ज्यादा आधुनिक मशीनों की भूमिका है। अब जंग सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से लड़ी जाती है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। युद्ध में मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि सिर्फ पारंपरिक हथियारों के भरोसे काम नहीं चलने वाला। इसी दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद T-70 टैंक्स को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। सेना अपने पुराने T-72 टैंक्स को एक डिजिटल और आधुनिक अवतार देने जा रही है। अब इन टैंक्स को IP बेस्ड इंटरफेस के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा।
2: इस प्रोजेक्ट के तहत एक मानव रहित टैंक का निर्माण किया जाएगा जिसमें इंजन का संचालन रिमोट से होगा, जो तोप और हैवी मशीन गन है उसका भी संचालन रिमोट से होगा। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, यानी जैसे AI का जो इंटीग्रेशन करना है या IP का जो इंटीग्रेशन करना है वह शायद उतने सुचारू रूप से फिलहाल नहीं हो रहा है।
0: T-72 वही टैंक है जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा की है। अब ये 40 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में रिटायर होने के कगार पर खड़े T-72 टैंक को घातक रोबोटिक वॉरियर में तब्दील करने की बात हो रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि T-72 टैंक में बदलाव से क्या फायदा होगा, सेना की समग्र मारक क्षमता में कैसे इजाफा होगा। माइंस भरे इलाकों को तोड़ने में मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल की तरह T-72 का इस्तेमाल होगा, साथ ही दुश्मनों की गोलीबारी को आकर्षित करने के लिए डिकॉय के रूप में काम करेगा, जिससे सैनिकों की सुरक्षा बढ़ेगी। अग्रिम मोर्चे पर ऑपरेशंस पे ये अहम भूमिका अदा करेगा, यानी T-72 टैंक अग्रिम पंक्ति के हमलों का नेतृत्व करेंगे और टोही के साथ गश्त का काम बखूबी निभाएंगे। डिजिटल होने के बाद T-72 टैंक कमांड नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भेजेंगे, जिससे ऑपरेटर्स और कमांडर्स को युद्ध के बीच तुरंत निर्णय लेने में आसानी होगी। पहले की योजना के अनुसार T-72 टैंक्स को साल 2030 से धीरे धीरे सेना से बाहर किया जाना था, लेकिन अब इस नई ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इन टैंक्स की उम्र अगले 15 से 20 साल यानी साल 2045 से 2050 तक बढ़ जाएगी।
2: एक नॉर्मल कन्वेंशनल टैंक जैसे कि T-72 को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें इंजन वही रहता है, गियरबॉक्स भी वही रहता है, तोप भी वही रहता है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी वही रहता है। सिर्फ बदला किया जाता है, एक मानव रहित रोबोट जो है वो ड्राइवर की जगह ले लेता है, एक मानव रहित गनर है वो तोपची की जगह ले लेता है, और कमांडर की जो जगह है वो रिमोट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे बैठे हुए एक मानव कमांडर के हाथ में होता है। अब इन सबको करने के लिए जो रोबोट टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित कर ली है, लेकिन उसमें जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वह अभी तक आना बाकी है।
0: यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि आज के आधुनिक दौर में ड्रोन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और टॉप अटैक हथियारों ने पारंपरिक टैंक्स को बेहद असुरक्षित बना दिया है। ऐसे माहौल में टैंक के भीतर बैठे क्रू मेंबर्स की जान हमेशा खतरे में रहती है। भारत ने इस वैश्विक चुनौती का बेहद सटीक और किफायती समाधान ढूंढ निकाला है। सेना अपने पुराने हो रहे T-72 टैंकों में एक विशेष ऑटोनॉमस किट फिट करेगी, जिससे कि इन्हें रिमोट कंट्रोल के जरिए या फिर पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड में ऑपरेट किया जा सकेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि टैंक के भीतर कोई सैनिक मौजूद नहीं होगा। टैंक AI की मदद से या फिर रिमोट से ऑपरेट होगा और ये अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ दुश्मन पर हमला भी करेगा। एक पारंपरिक भारी भरकम मेन बैटल टैंक जैसे T-72 को मानव रहित रोबोटिक टैंक में बदलना इंजीनियरिंग का एक बेहद जटिल काम है। इसके लिए टैंक के पुराने मैनुअल सिस्टम को पूरी तरह हटाकर उसमें ड्राइव बाय वायर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाता है। टैंक को रोबोट बनाने के लिए उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाता, बल्कि उसमें एक विशेष रेट्रोफिट किट लगाई जाती है। इस किट के तीन मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है एक्चुएटर्स एंड सर्वो मोटर्स। टैंक के मैनुअल स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और गियर लीवर पर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर फिट किए जाते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मानव चालक के हाथ और पैर करते हैं। दूसरा है रिमोट गन कंट्रोल सिस्टम। 125 mm गन को मोड़ने, निशाना साधने और गोला दागने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगाई जाती हैं, जिन्हें मीलों दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है डिजिटल इंटरफेस। टैंक के पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम को ECU यानी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जो डिजिटल कमांड को मैकेनिकल मूवमेंट में बदल देता है।
2: खास बात है कि एक T-72 में आमतौर पर एक तीन लोगों का क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर। लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद इसमें जो रेट्रोफिट किट लगाया जाएगा, उसमें यह ड्राइवर का काम एक ऑटोमेटिक रोबोट करेगा। इसी तरह से जो ड्राइवर होगा उसको असिस्ट करने के लिए जो गनर है, जो टैंक का मेन तोप और हैवी मशीन गन फायर करता है, उस गनर को भी एक रोबोटिक गनर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी जो ट्रिगर प्रेस करने का काम है, जो निशाना लगाने का काम है, नया गोला तोप के चैम्बर में डालने का काम है, वो भी रोबोट्स के जरिए किया जाएगा।
0: रोबोटिक टैंक के अंदर कोई इंसान नहीं होता, इसलिए युद्ध क्षेत्र को देखने और समझने के लिए टैंक के चारों तरफ सेंसर्स का एक जाल बिछाया जाएगा। टैंक में लिडार और रेडार का इस्तेमाल होगा। ये सेंसर चारों ओर लेजर और रेडियो तरंगे भेजकर रियल टाइम में पूरे इलाके का एक 3D डिजिटल मैप तैयार करते हैं। इससे टैंक को पता चलता है कि आगे कोई खाई, चट्टान या दीवार तो नहीं है। टैंक में 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगाए जाएंगे, जो रात के अंधेरे, घने धुएं या कोहरे में भी दुश्मन की हलचल को साफ देख सकते हैं। AI सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में मिलाएगा, ताकि टैंक का कंप्यूटर एक सटीक फैसला ले सके। भारतीय सेना अपने टैंक्स को सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाना चाहती, क्योंकि युद्ध में दुश्मन सिग्नल जाम कर सकता है, इसलिए इसमें AI की मदद ली जाएगी। भारतीय सेना की अदिति 4.0 योजना के तहत देश के अग्रणी रक्षा स्टार्टअप्स इसी रोबोटिक किट और AI सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, ताकि हमारे T-72 टैंक्स को रिमोट कंट्रोल किलर मशीन्स में बदला जा सके। मानव रहित टैंक को कंट्रोल करने के लिए युद्ध के मैदान से 5 से 10 किलोमीटर पीछे एक बख्तरबंद ट्रक के अंदर सैनिक सुरक्षित बैठता है। ऑपरेटर के सामने कई बड़ी स्क्रीन्स या VR हेडसेट्स होते हैं, जो कि ऐसा अनुभव देते हैं कि वो खुद टैंक के अंदर बैठा हो।
1: कंट्रोलर एक विशेष जॉयस्टिक, स्टीयरिंग व्हील और फायर बटन की मदद से
0: टैंक को चलाता है और निशाना लगाता है। ऑपरेटर अपने कंट्रोल पैनल पर तय करता है कि उसे किस तरह का गोला दागना है। जैसे बख्तरबंद गाड़ियों के लिए APFSDS पैदल सेना या बंकरों को तबाह करने के लिए हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल। ऑपरेटर जैसे ही बटन दबाता है एक इंटीग्रेटेड डिजिटल सिग्नल टैंक के ECU यानी केंद्रीय कंप्यूटर को जाता है और फिर टैंक फायर कर देता है। सुरक्षा नियम कहते हैं कि गोला दागने का अंतिम फैसला हमेशा इंसानी ऑपरेटर का ही होता है। AI को खुद से फायर करने की अनुमति नहीं दी जाती।
2: अमेरिका, रशिया और इजराइल ने भी इस तरह के रोबोटिक टैंक्स बनाने की कोशिश की है, लेकिन इनमें से किसी भी देश में अभी तक जो प्रोटोटाइप बनाया गया है उसको ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी कि मास प्रोडक्शन के बाद उनकी आर्मी में इंडक्शन का कोई ऑर्डर नहीं मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि युद्धभूमि में ऐसा ना हो कि हमारा ही रोबोटिक टैंक गलती से हमारे ही टैंक या हमारे ही तोप की पोजीशन जो आर्टिलरी है या हमारे जो इन्फेंट्री ट्रुप्स युद्धभूमि में है उन पर फायर ना खोल दे। व्यवस्था ये की जाती है कि हमेशा जो ऑटोमेटिक लूप है उसमें मैन इन लूप हो, यानी फाइनल फायर करने की जो इजाजत है वो एक मनुष्य देगा।
0: T-72 टैंक को रिप्लेस करने की बजाय इसे अपग्रेड किया जा रहा है। आखिर दशकों पुराने इस टैंक में ऐसा क्या खास है कि इसे अपग्रेड कराने की तैयारी हो रही है और ये कितना घातक है ये भी जानना जरूरी है। भारत का T-72 टैंक अजय 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है जो 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ने की ताकत रखता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत है कि ये रीस्टार्ट होने में महज 6 से 7 सेकंड का वक्त लेता है। कम गहरी नदियों को आसानी से पार करने की इसमें ताकत है। लाइटवेट टैंक की बात करें तो भारतीय सेना के पास जो T-72 अजय टैंक है उसका वजन 41 टन के आसपास है। इसमें 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी हुई है। इससे एक बार में एक साथ 300 राउंड फायर होते हैं। इससे 1500 मीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है।
2: T-72 टैंक रूस का प्रमुख मेन बैटल टैंक है। वैसे रूस ने बाद में इसको अपग्रेड करके T-90 टैंक बनाया जो कि भारत के पास भी है। भारत की फौज में अभी करीबन 1000 T-90 टैंक्स हैं और करीबन 3000 T-72 टैंक हैं। इन T-72 टैंक्स की खास बात यह है कि ये रेत के ऊपर, दलदल के ऊपर, कीचड़ में, जंगल में, पहाड़ों में, बर्फ में भी ऑपरेट कर सकते हैं। इन T-72 टैंक्स में जो मेन गन लगी है वो इंफ्रारेड फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है और रात के अंधेरे में भी दुश्मन के टैंक्स या दुश्मन के गन पोजीशन को 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी से देखकर एक्यूरेट फायर कर सकता है।
0: भारतीय सेना के पास T-72 टैंक के 3 वर्जन हैं, अजय, MK-1, अजय, MK-2 और कॉम्बैट इंप्रूव्ड अजय, जिनका भारत इस्तेमाल करता है। इस वक्त भारतीय सेना में करीब 2400 के आसपास T-72 अजय टैंक मौजूद हैं। भारतीय सेना ने T-72 के आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट राइनो शुरू किया था। इसके तहत टैंकों में नए इंजन, आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम और बेहतर सुरक्षा प्रणाली लगाने की योजना है। साथ ही अदिति 4.0 पहल के तहत इन्हें भविष्य में मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म में भी बदला जा सकता है। सेना का मानना है कि इन सुधारों से T-72 टैंक आने वाले वर्षों में भी प्रभावी बने रहेंगे और भविष्य में फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के शामिल होने तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत जहां अपने मौजूदा T-72 टैंक बेड़े को बदलने और AI रेट्रोफिट किट का शुरुआती परीक्षण करने के चरण में है, वहीं अमेरिका और रूस ने इस क्षेत्र में समर्पित नई पीढ़ी के प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए हैं और उनका लाइव बैटलफील्ड में परीक्षण भी किया जा चुका है।
1: युद्ध में टैंक की क्या अहमियत है और इसकी जरूरत अब भी रणभूमि में क्यों महसूस की जाती है, इसे जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में चलना होगा।
0: प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के कई देश एक दूसरे को घुटनों के बल लाने के लिए रण क्षेत्र में उतरे हुए थे। तब पुराने जमाने की तरह ज्यादातर लड़ाई आमने सामने लड़ी गई। जितनी लड़ाई जमीन के ऊपर लड़ी गई, उतनी ही जमीन के नीचे भी। कई कई किलोमीटर लंबी खाइयां खोदकर सैनिक उनमें मशीन गन से लैस होकर तैनात रहते थे। इन खाइयों को ट्रेंच कहा जाता है और इनके बीच होता था नो मैन्स लैंड। तार बाड़ और लैंड माइन से भरी जमीन को पार करना यानी मौत को दावत देने जैसा था, इसीलिए तब लंबे समय तक ट्रेंच वॉर चलती रही। हर देश अपनी ट्रेंच के जरिए खुद की हिफाजत की पुख्ता व्यवस्था में जुटे थे। और इसी वजह से साल 2016 तक युद्ध फंसा ही रहा। ब्रिटेन और जर्मनी दोनों खेमों की सेना जहां जहां थी वहीं खड़ी की खड़ी रही, क्योंकि आगे बढ़ना मुश्किल था। और तभी आया एक ऐसा हथियार जिसने आने वाले तमाम युद्धों की तस्वीर बदल कर रख दी। यह हथियार था टैंक।
1: टैंक का नाम टैंक ही क्यों पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। जब ब्रिटेन टैंक को बना रहा था तो उसे डर था कि इस नए हथियार की जो जानकारी थी वो कहीं लीक ना हो जाए, इसलिए आधिकारिक फाइल्स में इस हथियार को टैंक लिखा जाने लगा, ताकि अगर किसी को पता चले तो ये लगे कि ब्रिटेन पानी ले जाने के लिए किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जो कमेटी इसका काम देख रही थी उसे टैंक सप्लाई कमेटी या TS कमेटी कहा गया। और जब फिर हथियार तैयार हो गया तब उसका नाम टैंक ही पड़ गया।
0: पहले विश्व युद्ध में बने टैंक प्रयोग के स्तर पर थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध आते आते टैंक्स फौज की जरूरत बन गए, या यूं कहें टैंक्स सेना का अनिवार्य हिस्सा बन गए। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने जब चंद दिनों में फ्रांस और पोलैंड पर अपनी जीत हासिल की तो उसकी सबसे बड़ी वजह उसके टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ही थे।
1: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टैंक की अहमियत बढ़ने लगी, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों ने आमने सामने की लड़ाई में टैंक की विध्वंसकारी ताकत को काफी करीब से महसूस कर लिया था। और फिर दुनिया के कई देशों ने टैंक टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया। इनमें एक नाम भारत भी था।
0: लंबे समय तक भारत अपने दोस्त सोवियत रूस से टैंक आयात कर अपनी जरूरतें पूरी करता रहा। फिर 1965 में भारत ने UK की मदद से अपना एक टैंक बनाया जिसका नाम रखा गया विजयंत। इसका इस्तेमाल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किया गया। स्वदेशी ताकत को धार देने के लिए बाद में अर्जुन टैंक का निर्माण किया गया और अब इसी कड़ी में जोरावर का नाम भी जुड़ गया है। किसी भी टैंक की ताकत का आकलन उसकी मारक क्षमता, उसकी स्पीड और उसकी डिफेंस क्षमता से होती है। इसके लिए बैटल टैंक्स के कुछ इंडिकेटर होते हैं, उनके जरिए ही पता चलता है कि टैंक फौज की जरूरत के हिसाब से सही है या नहीं। ये इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। पहला इंडिकेटर वजन है, स्पीड है, पावर टू वेट रेशियो है, साथ ही हथियारों और डिफेंस मैकेनिज्म है।

0: रेशियो है, साथ ही हथियारों और डिफेंस मैकेनिज्म है जो ये बताता है कि आर्मर कैसा है टैंक का।
1: टैंक के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन, और ये तीनों बहुत जरूरी है। अगर आप देखें मोबिलिटी, तो वो दिखलाता है कि टैंक किस स्पीड से जा सकता है, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह में कम से कम समय में जा सकता है और अपने टारगेट को कितनी जल्दी जाके हिट कर सकता है। तो इसलिए मोबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार फायर पावर, जो फायर पावर है वो दिखलाता है कि आप किस हिसाब से अपने टारगेट को शॉर्ट शॉर्ट हिट कर देते हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी रेंज कितनी है। और जो तीसरा है आपकी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यह है कि आपको यह भी देखना है कि दुश्मन के जो एंटी टैंक वेपन है या दुश्मन के टैंकों से आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट हिट हो जाता है आपके टैंक में, तो आप के पास इतनी काबिलियत और क्षमता होनी चाहिए कि आपका टैंक उसको विस्टैंड कर ले। तो इसका मतलब चुबा मारमन है, रिएक्टिव आर्मन है, तो इस टाइप का। तो ये कॉम्बिनेशन है इम्पोर्टेंट, एक टैंक के अंदर तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन। इसका कॉम्बिनेशन होना, इसकी ऐसा तरीके से होना कि इसका वेट भी ऑप्टिमम हो, इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो और फायर पावर भी बहुत ही एक प्रकार से अव्वल दर्जे की हो।
0: किसी अच्छे बैटल टैंक में दो काबिलियत अनिवार्य है, पहला मोबिलिटी और दूसरा फायर पावर। मोबिलिटी का मतलब टैंक की वो ताकत है जो उसे कहीं भी ले जा सकती है। आप देखिए, ट्रेंच वॉरफेयर की जगह पे ही टैंक्स आए थे, पक्की सड़क हो या फिर कई मीटर गहरा कीचड़, टैंक का काम है हर जगह से निकलना। जहां बड़े बड़े पहियों वाले ट्रक्स भी फंस जाते हैं, वहां से टैंक्स आसानी से निकल जाते हैं। जबकि टैंक में लोहे के रोड व्हील्स या कहिए उसमें लोहे के पहिए होते हैं, फिर भी वो धंसते नहीं। वो कैसे? इसका सिंपल फिजिक्स है। टैंक के पहिए सीधे जमीन पर चलते ही नहीं हैं। टैंक्स अपने साथ अपनी सड़क भी लेकर चलते हैं, जिन्हें कहा जाता है ट्रैक। आमतौर पर लोग इसे टैंक की चेन कह देते हैं, लेकिन ट्रैक सही शब्द है। ट्रैक पर चलने का फायदा ये है कि टैंक का वजन जमीन के किसी एक हिस्से पर नहीं पड़ता है। टैंक का ट्रैक टैंक के वजन को एक बहुत बड़े सरफेस एरिया पर बांट देता है और इसलिए नम जमीन पर भी 50-50 टन के टैंक कभी धंसते नहीं।
1: टैंकों के अंदर व्हील नहीं होते, क्योंकि व्हील जो है उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि रेतीले इलाके में, दलदल के इलाके में या टूटी फूटी जमीन में चल पाए। इसीलिए टैंकों के अंदर ट्रैक होते हैं और ट्रैक से काबिलियत बढ़ती है टैंक की। टैंक जो है एक प्रकार से रेतीले इलाके में भी जा सकता है और ऐसे इलाके में जा सकता है जहां पर दलदल हो या टूटी फूटी जमीन हो। इसीलिए टैंकों में ट्रैक होता है, ना कि व्हील।
0: मौजूदा दौर में कई टैंक्स गहरे पानी तक को पार करने में सक्षम हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टैंक्स बिल्कुल भी फंसते नहीं। टैंक्स भी फंसते हैं, लेकिन ऐसा बेहद कम होता है।
2: टैंक्स को मैन्युवरल भी होना चाहिए और बढ़िया वेट टू पावर रेशियो भी होना चाहिए। मैन्युवरिंग मतलब टैंक कितनी चपलता या फुर्ती के साथ हरकत कर सकता है, गोला दाग कर कितनी जल्दी अपनी पोजीशन बदल सकता है। जाहिर है, टैंक भारी होगा तो उसे हरकत करने में काफी दिक्कतें आएंगी, लिहाजा टैंक के पास एक ताकतवर इंजन का होना जरूरी है।
0: टैंक का वजन और उसके इंजन की ताकत या पावर के बीच जो अनुपात होता है, उसी को कहा जाता है पावर टू वेट रेशियो। जितना बेहतर पावर टू वेट रेशियो होगा, उतना अच्छा टैंक हो सकता है।
1: तीन रिक्वायरमेंट है टैंक की। इसकी फायर पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसकी मोबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, इसकी प्रोटेक्शन भी, और तीनों का तालमेल होना चाहिए। देखो, अगर आप प्रोटेक्शन देते हैं तो फिर इसका टैंक का एक प्रकार से वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है तो फिर मोबिलिटी कम हो जाती है और उसकी फायर पावर कैसी होगी वो भी दर्शाता है। तो एक अच्छे टैंक का पहचान यह है कि हर

0: चीज अच्छी हो, उसकी फायर पावर भी बहुत अच्छी हो, वो उसके रेंज पे हिट कर पाए 100% अपने टारगेट को हिट कर पाए, और इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो कि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा पाए, और तीसरा है इसकी प्रोटेक्शन भी हो कि अगर दुश्मन का टैंक या एंटी टैंक वेपन हिट करता है तो वो उसे बचाव कर पाए। तो इन तीनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए कि ये ना हो कि टैंक इतना हैवी हो, इतना लाइट ना हो कि उसकी प्रोटेक्शन इतनी अच्छी ना हो, या उसके अंदर फायर पावर इतनी अच्छी ना, तो तीनों का एक प्रकार संतुलन होना जरूरी है।
1: हमारे लिए यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
4: To right field, and it will leave.
3: From the first pitch of the season to the stretch run.
4: And that's the ball game.
3: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: कौन से ग्रह का दान रात के समय में करना अच्छा होता है? किस ग्रह का दान करने से रोजगार की रुकावट दूर हो जाती है? और कौन से ग्रह के लिए गाय को हरा चारा खिलाने से फायदा होता है? किस ग्रह के लिए क्या करें दान, कब करें दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
8: चौबीस में T20 विश्व कप पर कब्जा, 2025 में जीता चैंपियंस ट्रॉफी का रण, अब लिया 2027 वर्ल्ड कप का प्रण, पद्मश्री रोहित शर्मा का अग्निपथ, सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: देव स्नान पूर्णिमा के मौके पर 29 जून को जगन्नाथपुरी में होगी स्नान यात्रा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को 108 कलशों के पवित्र जल से कराया जाएगा स्नान। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर हुआ मंथन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रबुद्ध जनों से की चर्चा। श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ शहर के ट्रैफिक प्लान पर हुई बात। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों यात्रियों के लिए गुड न्यूज। 29 जून से सेंट्रल रेलवे की 12 और लोकल ट्रेन बनेंगी एसी। लोकल के मुसाफिरों की यात्रा होगी अधिक सुगम और आरामदायक। गुजरात के 14 शहरों को मिली सुगम यातायात की सौगात। भारत टैक्सी ऐप का शुभारंभ। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में उन्होंने किया उद्घाटन। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। बोटानिकल गार्डन में 196 साल के सबसे उम्रदराज कछुए जोनाथन के दीदार किए।

का सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उसने क्रिकेट के मैदान पर करिश्माई पारियां खेलकर क्रिकेट प्रेमियों के साथ ही देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाली जूरी का भी दिल जीत लिया। इसलिए क्रिकेट के उस मसीहा को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। ये वो शख्स हैं जिसने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के साथ ही ICC चैंपियंस ट्रॉफी का भी चैंपियन बना दिया।

0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।
1: आप समझ ही गए होंगे कि आज बंदे में है दम का बंदा कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के हिटमैन यानी कि विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी बहुत कम हुए हैं जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के चंद उन्हीं चुनिंदा खिलाड़ियों में से शुमार हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया एक से ज्यादा बार विश्व चैंपियन बन चुकी है। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया कम से कम फटाफट फॉर्मेट में कमोबेश अपराजेय बनी रही। ये क्रिकेट के दो फॉर्मेट T20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं लेकिन वनडे में अभी भी दमदार पारियां खेल रहे हैं।
0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।

0: 23 जून रोहित शर्मा के जीवन की सबसे यादगार तारीख बन चुकी है। 23 जून ही वो तारीख है जब रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला कदम रखा था। रोहित ने 23 जून 2007 को आयरलैंड के बेलफास्ट में खेले गए एक वनडे मैच से भारत के लिए डेब्यू किया था। रोहित की किस्मत का 23 जून कनेक्शन देखिए कि इंटरनेशनल डेब्यू के 19 साल बाद 23 जून को ही रोहित शर्मा को चौथे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।

0: दरअसल 19 साल के अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में रोहित ने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किए जाने के वाजिब हकदार बन गए। सिर्फ बतौर बल्लेबाज ही नहीं, बतौर कप्तान भी रोहित के नाम कई कीर्तिमान दर्ज हैं। हालांकि रोहित को एक बात का अफसोस भी रहता है कि साल 2023 के वर्ल्ड कप में वो विश्व विजेता बनने की दहलीज तक पहुंचकर कप उठाने से वंचित रह गए थे। तारीख थी 19 नवंबर 2023, स्थान था अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया के मुकाबिल था ऑस्ट्रेलिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत विश्व विजेता बनते बनते रह गया था। एक हुक, एक कसक, एक टीस थी जो रह गई थी कप्तान रोहित शर्मा के मन में। 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित ने अपनी रहनुमाई में उस हुक को, उस टीस को, उस कसक को, उस पीड़ा को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जश्न में तब्दील कर दिया। तब होली से पहले पूरे देश में दिवाली की रौनक नुमाया हो गई थी। लीडर अगर सेल्फलेस हो, निस्वार्थ हो, भेदभाव रहित हो, तो उसकी टीम की जय निश्चित हो जाती है। क्योंकि लीडर जब सेल्फलेस होता है तो पूरी टीम जीत को लेकर जुनूनी हो जाती है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा निसंदेह इसी कैटेगरी के लीडर रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित ने 76 रनों की जो पारी खेली थी, उसने कीवियों के हौसले को ऐसा पस्त कर दिया था कि मैदान पर मचलने के सिवा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। दरअसल जीत के लिए संघर्ष करते कीवियों को शायद पता नहीं था कि क्रिकेट के मैदान के इस युगांधर ने दुबई रवाना होने से पहले ही अपने बचपन के कोच दिनेश लाड से ये वादा किया था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का कप लेकर ही वापस लौटेगा।
1: रोहित ने मुझे जाने के वक्त मुझे कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग जीत के आएंगे, तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप के लिए गया था तभी भी मुझे कहा था उसने, मैं चैंपियंस T20 वर्ल्ड कप आपको लेके दिखाऊंगा, आपको गुरुदक्षिणा दूंगा, ये मुझे सेकंड गुरुदक्षिणा दी ऐसे मैं कहूंगा।
0: इस तरह का चट्टानी आत्मविश्वास युग पुरुष का ही होता है, और जब लीडर का, रहनुमा का आत्मविश्वास आसमानी होता है तो पूरी टीम जीत के विश्वास से भर जाती है। यही वजह है कि 2 साल में लगातार 2 आईसीसी खिताब जीतने वाले रोहित दुनिया के पहले कप्तान हैं। 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी का विश्व चैंपियन बनने से पहले 19 जून 2024 को बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से शिकस्त देकर रोहित की सेना T20 वर्ल्ड कप की विजेता बनी थी। अपनी कप्तानी में रोहित शर्मा की ये पहली खिताबी आईसीसी ट्रॉफी थी। लिहाजा जीत के बाद मैदान का ये तूफान इतना भावुक हो गया कि केंसिंगटन ओवल की पिच की मिट्टी को प्रसाद मानकर अपनी जिह्वा पर रख लिया। रोहित के इस भावनात्मक उद्गार को पीएम मोदी ने भी देखा था, इसीलिए चैंपियंस का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी ने जब रोहित की विजेता ब्रिगेड को पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर आमंत्रित किया तो उस घटना का जिक्र करना नहीं भूले।
2: कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है, और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चूमा, ये वो हिंदुस्तानी ही कर सकता है।
3: जहाँ पर हमें वो विक्ट्री मिली उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस, क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया।
0: क्रिकेट के मैदान पर विरोधी टीम के गेंदबाजों की खाट खड़ी कर देने वाला ये इंसान इतना ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, इसकी तो किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। बहरहाल 2 साल में 2 आईसीसी टूर्नामेंट की खिताबी जीत से ज्यादा बड़ी है रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया की अपराजेयता। आईसीसी टूर्नामेंट में रोहित की कप्तानी का रिकॉर्ड अपने आप में अद्वितीय रहा है। इस युगांधर की कप्तानी में 2023 विश्व कप के फाइनल को छोड़कर टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट्स का अपना एक भी मैच नहीं हारी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल समेत रोहित की सेना ने कुल 5 मैच खेले और 5 में जीत हासिल की। 2024 T20 विश्व कप में भी टीम इंडिया ने फाइनल समेत 8 मुकाबले खेले थे और सभी में जीत दर्ज की थी। वर्ल्ड कप 2023 में भी रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल छोड़कर कुल 10 मैच खेले थे और सभी में जीत हासिल की थी। रोहित की लीडरशिप का कमाल ये है कि ICC टूर्नामेंट में उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने कुल 23 मुकाबले खेले और इनमें से 22 में जीत दर्ज की। ये है इस बेमिसाल लीडर का रिकॉर्ड। दरअसल रोहित शर्मा जब मैदान पर होते हैं तो पूरी टीम निर्भय होकर मुकाबला करती है, क्योंकि रोहित का बल्ला जब चलता है तो विरोधियों की पेशानियों पर सिर्फ चिंता की लकीरें होती हैं। यही वजह है कि रोहित के प्रति क्रिकेट प्रेमियों की दीवानगी जुनून की हदें पार कर जाती है। हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमियों का अब बस एक ही सपना है, साल 2027 में साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप में भारत को अपनी बैटिंग के दम पर तीसरी बार विश्व चैंपियन बनाकर ही रोहित वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करें। इसीलिए 39 साल के हो चुके रोहित शर्मा के साल 2027 वर्ल्ड कप से पहले रिटायरमेंट की चर्चा बेमानी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी यही चाहते हैं कि रोहित ने जैसे टीम इंडिया को T20 का विश्व विजेता बनाने के बाद 2020 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया, उसी तरह 2027 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाकर ही वनडे क्रिकेट को अलविदा कहें। रोहित की तरह का क्रिकेटर युगों में एक बार अवतरित होता है। 19 साल के क्रिकेट करियर में रोहित ने कभी भी अपने निजी रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेला। उनका बल्ला जब भी चला टीम के लिए चला। बेशक टीम के लिए खेलते हुए कुछ बेनजीर रिकॉर्ड्स उनके नाम दर्ज हो गए। हालांकि उनकी कप्तानी में अगर टीम इंडिया के रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा लीडरशिप के मामले में उनके आस पास भी कोई नहीं है।
4: T20 और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले रोहित जितने शानदार टीम लीडर साबित हुए हैं, उतने ही आक्रामक बल्लेबाज भी हैं। रोहित शर्मा की आक्रामक बैटिंग का लोहा दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर्स भी मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद रोहित शर्मा बैट्समैन नहीं बल्कि बॉलर बनना चाहते थे? रोहित शर्मा अपनी क्रिकेट अकेडमी में ऑफ ब्रेक की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन कमाल की अंतर्दृष्टि थी उनके कोच में, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे हुए बैटिंग के हुनर को पहचाना और बॉलिंग की जगह उनसे बैटिंग पर ध्यान देने की सलाह दी। कोच की एक सलाह ने रोहित की जिंदगी बदल दी।
0: वर्तमान का एक छोटा सा टर्न कई बार भविष्य की पूरी तस्वीर बदल देता है। रोहित शर्मा इस बात की सबसे बड़ी मिसाल हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो रोहित शर्मा आज इंटरनेशनल क्रिकेट में हिटमैन के नाम से विख्यात हैं, वो बल्लेबाज की जगह गेंदबाज बनना चाहते थे। रोहित अपनी टीम के ऑफ स्पिनर थे और बॉलिंग की ही नट प्रैक्टिस करते थे। लेकिन दाद देनी होगी रोहित के कोच दिनेश लाड की, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे बैटिंग क्लास को महसूस कर लिया। अगर दिनेश लाड ने रोहित को बैटिंग करने के लिए प्रेरित न किया होता तो शायद टीम इंडिया को इतना बेहतरीन हिटमैन नहीं मिला होता।
5: कभी बैट्समैन नहीं था। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया अपने स्कूल के लिए, मैं एज अ बॉलर सिलेक्ट हुआ था, ऑफ स्पिन बॉल डालता था। तो कुछ महीनों के बाद मेरे जो कोच है दिनेश लाड जी, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला, यार तेरे को बैटिंग में भी फोकस करना चाहिए, हमें टीम को ऑलराउंडर की जरूरत है। और उन्होंने मेरा बैटिंग देखा और मुझे 7-8 नंबर पर बैटिंग करने का मौका दिया। और जब मैं बैटिंग करने गया तो मैंने कुछ 30-40 रन बनाए नीचे 7-8 नंबर पे, उनको अच्छा लगा।
6: उसी अंदाज में जो आजकल बनते हैं।
5: हाँ बिल्कुल, उसी अंदाज में छक्के चौके ऐसे ही लग रहे थे। तो मेरे सर जो थे काफ़ी खुश हुए, उन्होंने बोला, उन्होंने एक बार मुझे ऊपर बैटिंग करने का अपॉर्चुनिटी दिया और उस टाइम मैंने 140 रन बनाए।
0: दरअसल रोहित के क्रिकेट करियर का आगाज मुंबई के बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन से हुआ। रोहित इस एकेडमी की तरफ से खेलते थे और ऑफ स्पिनर बनना चाहते थे। इसी दौरान किसी मैच में स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल के कोच दिनेश लाड की नजर रोहित पर पड़ी। तब उन्हें अपने स्कूल की टीम के लिए अच्छे उदीयमान खिलाड़ियों की तलाश थी। रोहित की स्पिन गेंदबाजी दिनेश लाड को पसंद आई और उन्होंने रोहित को विवेकानंद स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। काबिले गौर है कि तब स्कूल की फीस 275 रुपए प्रति महीने थी और रोहित के पेरेंट्स के लिए इस फीस का इंतजाम कर पाना मुश्किल था, क्योंकि तब रोहित के पेरेंट्स को क्रिकेट कोचिंग के लिए हर महीने 800 रुपए देने पड़ते थे और उसी का इंतजाम बड़ी मुश्किल से हो पाता था। रोहित की इस मजबूरी को देखते हुए दिनेश लाड ने उनकी स्कूल की फीस माफ करवा दी। दरअसल दिनेश लाड छोटी उम्र के रोहित के जबरदस्त आत्मविश्वास से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रोहित का आत्मविश्वास देखकर उन्हें शुरू में ही लग गया कि ये लड़का एक दिन दुनिया का सबसे धाकड़ खिलाड़ी बनेगा।
1: नहीं नहीं, कभी फियर फैक्टर, मैंने कभी उसको ऐसे डरते हुए कभी देखा ही नहीं। हर स्कूल के हर मैच में कोई भी अच्छे बॉलर हो, कोई भी यानी डर के कभी खेला नहीं। उसका फायदा उसको, क्योंकि उसके अपने आप में लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है और वो कॉन्फिडेंस के ऊपर वो अपनी बल्लेबाजी करते रहे और उसका फायदा उसको होता ही होता है।
0: दिनेश लाड की सलाह पर रोहित ने बॉलिंग के साथ अपनी बैटिंग पर भी ध्यान देना शुरू किया और उसका असर ये हुआ कि बतौर बल्लेबाज वो सेलेक्टर्स को प्रभावित करने लगे। अंडर 14, अंडर 15 और अंडर 19 हर टीम में वे जगह बनाते चले गए। साल 2007 में रोहित भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलने दक्षिण अफ्रीका गए और मेजबान टीम के खिलाफ शानदार हाफ सेंचुरी बनाकर अपने टैलेंट का लोहा मनवा दिया। हालांकि पैसे की तंगी अभी भी बनी हुई थी। रोहित की किस्मत ने बड़ी करवट तब ली जब साल 2008 में IPL में उन्हें 3 करोड़ कीमत मिली। जिस रोहित ने बचपन से पैसे की तंगी देखी थी, उनके पास जब एक मुश्त 3 करोड़ रुपए आए तो उन्हें एक बार की समझ नहीं आया कि इन पैसों से सबसे पहले अपनी कौन सी हसरत पूरी करें। काफी उधेड़बुन के बाद रोहित ने अपने लिए शानदार गाड़ी खरीदी। हालांकि उस समय उनके माता पिता बोरीवली में किराए के घर में रहते थे, लिहाजा रोहित के गाड़ी खरीदने के फैसले से वो नाराज हुए, क्योंकि माता पिता चाहते थे कि रोहित सबसे पहले मुंबई में घर खरीदें। बहरहाल रोहित ने बाद में अपने पेरेंट्स की ये इच्छा भी बांद्रा में घर खरीद कर पूरी कर दी। लेकिन बचपन में गरीबी का दंश झेल चुके रोहित के पास जब पैसे आने लगे तो उनका दिलो दिमाग क्रिकेट से डिस्ट्रैक्ट होने लगा। यही वजह है कि साल 2009 और साल 2010 में वो कुछ खास नहीं कर पाए। रोहित को तगड़ा झटका तब लगा जब 2011 वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। झटका लगने के बाद रोहित ने गहराई के साथ आत्ममंथन किया और तय किया कि सफल होना है तो डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करना ही पड़ेगा।
5: सिचुएशन को मैं समझ नहीं पा रहा था, नया नया था, 20 साल का था, तो गेम रीडिंग सिचुएशंस जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं थी। फेलियर्स के बाद ही मुझे पता चला कि गेम में क्या सुधार लाने की जरूरत है, गेम को कैसे इम्प्रूव करना है।
0: कुछ वक्त की असफलता ने रोहित को इतना ज्यादा सचेत कर दिया कि वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगे। 2011 वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर टीम इंडिया में जगह बनाई। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें पारी की शुरुआत करने का मौका मिला और उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी बनाई। उसके बाद तो रोहित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
4: रोहित शर्मा में वो काबिलियत है कि अपनी धुआंधार बैटिंग से किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन रोहित के पिता वनडे क्रिकेट या फिर T20 में रोहित के प्रदर्शन से बहुत ज्यादा खुश नहीं होते थे, क्योंकि पिता की नजर में टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ी की असली अग्नि परीक्षा होती है। हालांकि रोहित अब टेस्ट क्रिकेट और T20 से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उससे पहले पिता के ख्वाहिशों पर खरा उतरने की भरसक कोशिश की।

0: वनडे क्रिकेट में कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले रोहित शर्मा की जिंदगी एक अजीब विडंबना है। रोहित के पिता गुरुनाथ शर्मा की शुरू से ये इच्छा थी कि उनका बेटा टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन करे, जबकि रोहित का टेम्परामेंट वनडे और T20 क्रिकेट से मेल खाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 108 वनडे खेलने के बाद रोहित शर्मा को पहली बार 9 नवंबर 2013 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। पहले ही टेस्ट मैच में रोहित ने 177 रनों की यादगार पारी खेली, जिसके बाद उनके पिता का खुशी का ठिकाना नहीं था।
1: मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट ही पसंद है। एक मेरे लिए सबसे जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मेरी फैमिली थी, और मेरे पिताजी वनडे क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, बट उनको टेस्ट क्रिकेट में मैं जब भी मैं अच्छा करता हूँ तो वो बहुत खुश होते तो इसीलिए मेरा एक सपना है कि मैं टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करूँ, एक क्योंकि मेरे पिताजी खुश रहे, क्योंकि मेरे पिताजी को टेस्ट क्रिकेट में मुझे देखना अच्छा करते हो।
0: रोहित के अपने टेम्परामेंट और उनके पिता की टेस्ट मैच ख्वाहिश के बीच एक लंबा कश्मकश रहा है। वैसे टेस्ट मैच में रोहित का रिकॉर्ड कोई खास अच्छा नहीं रहा है, जबकि वनडे क्रिकेट में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो इस फॉर्मेट के करीब 53 साल के इतिहास में धाकड़ से धाकड़ बल्लेबाज भी नहीं कर पाया। वनडे क्रिकेट में आज तक कोई भी बल्लेबाज एक से ज्यादा डबल सेंचुरी नहीं लगा पाया है, जबकि रोहित के नाम वनडे में 3-3 डबल सेंचुरी हैं। रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जो वनडे क्रिकेट का ऑल टाइम सर्वोच्च स्कोर है। उससे पहले रोहित ने नवंबर 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों की यादगार पारी खेली थी। दिसंबर 2017
2: कौन से ग्रह का दान रात के समय में करना अच्छा होता है? किस ग्रह का दान करने से रोजगार की रुकावट दूर हो जाती है? और कौन से ग्रह के लिए गाय को हरा चारा खिलाने से फायदा होता है? किस ग्रह के लिए क्या करें दान, कब करें दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
4: Good news today is really good. It's in this, right? There's no news and there's no news. At least, people get to hear the news.
5: और अब खबर खूबसूरत नजारों और हरे भरे मैदानों की। कश्मीर दुनिया भर में अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए मशहूर है। गुलमर्ग और पहलगाम जैसे नाम तो हर जबान पर है, लेकिन इस जन्नत के बीच कुछ ऐसे अनमोल खजाने भी छिपे हैं जिनका जिक्र आम तौर पर नहीं होता। आज हम आपको दक्षिण कश्मीर के ऐसे ही हिडन डेस्टिनेशन की सैर कराएंगे, साथ ही श्रीनगर में सैलानियों की रौनक भी दिखाएंगे।

0: खूबसूरत वादियाँ, हरियाली की चादर ओढ़े मीलों तक फैले हरे भरे मैदान और उनके बीच से कलकल बहती साफ पानी की नहर। ये तस्वीरें हैं दक्षिण कश्मीर के शोपियांग जिले की, जहाँ का हर कोना कुदरत की बेमिसाल कारीगरी का सबूत है। ऐतिहासिक मुगल रोड से जब कोई मुसाफिर गुजरता है तो पीर की गली और इसके आसपास की घाटियों का नजारा उसे मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ का सुकून, पहाड़ों की ताजी और शुद्ध हवा और कुदरत की हैरान कर देने वाली कारीगरी ऐसी है कि जो भी यहाँ आए वो यहीं का होकर रह जाए।
1: जिला शुपियान जहाँ पे सबसे बड़ी जो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, अहरवल भी नजदीक है, दुबजन और उसके साथ साथ मुगल सराय के साथ साथ और भी कई ऐसी चीजें हैं जो वाकई दिलकश नजारे बयान करते हैं।
0: करीब 3,500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये इलाका गर्मियों में फूलों की चादर ओढ़ लेता है। दूर दूर तक यहाँ फैली खामोशी और किसी पेंटर की कल्पना जैसे हरे भरे मैदान देखने लायक हैं। कश्मीर की इन वादियों में जो सुकून और सुंदरता है उसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है, लेकिन खूबसूरती के खजाने को समेटे ये इलाका सैलानियों की नजरों से अभी दूर है। यूं तो कश्मीर को कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है, लेकिन शोपियांग जैसे इलाकों को अब भी सैलानियों का इंतजार रहता है।
2: ये जो जगहें हैं शोपियां की, ये अनएक्सप्लोर्ड जगह है, जैसे पतनदफन है। ये जगह जो है इवन शोपियां के लोगों को इस जगह का पता नहीं है, तो देयर आर लिमिटेड लॉट ऑफ पीपल जिनको इस जगह का पता है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, एक छोटी सी छोटा सा इलाका है। हम चाहते हैं कि यहाँ लोग आए, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर इस जगह का ख्याल भी रखना है, पोल्यूशन नहीं करना है, पोल्यूट नहीं करना है इस जगह को।
0: एक तरफ शोपियांग में सैलानियों की आमद बेहद कम है, तो दूसरी तरफ श्रीनगर में सैलानियों की रिकॉर्ड तादाद देखने को मिल रही है। गर्मी से राहत की तलाश में मैदानी इलाके से सैकड़ों सैलानी इन दिनों कश्मीर की हसीन वादियों और दिलकश नजारों और शानदार मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। श्रीनगर में इन दिनों सबसे ज्यादा रौनक डल झील पर है, जहाँ इन शानदार नजारों के बीच डल झील में शिकारे की सैर लोगों को बेहद पसंद आ रही है।
3: बहुत अच्छा लगा भैया, यहाँ के तो बहुत सुकून मिल रहा है हमको। मौसम यहाँ पर तो भैया दो दो मिनट में चेंज होता रहता है। दिल्ली में तो बहुत हॉट वेदर है, पर यहाँ पर जो क्लाइमेट है बहुत कोल्ड है। कभी रात को जैसे हम बोट हाउस में रहे तो वहाँ रात को एकदम बारिश हो गई, तो बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पे, सुहावना मौसम है।
4: कश्मीर में आके बहुत मजा आया, मतलब मुझे लगता है कि हर एक इंसान को जिंदगी में एक बार जरूर कश्मीर आना चाहिए घूमने के लिए। मतलब टोटली डिफरेंट इन कम्पेयर टू उत्तराखंड, केरला, टोटली डिफरेंट।
0: डल झील से लेकर गुलमर्ग तक एक अद्भुत रौनक बिखरी है और वादियों में जिंदगी मुस्कुरा रही है, लेकिन इस रौनक को अगर शोपियांग और पीर की गली जैसी अनछुए जन्नत का भी साथ मिल जाए तो कश्मीर के पर्यटन में चार चांद लग जाए। कश्मीर से अश्रवानी, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। व्हेदर यू वांट टू रिलैक्स, फोकस और टर्न थिंग्स अप, यू विल फाइंड द राइट स्टेशन। हियर फ्रॉम द टॉप स्टेशंस लाइक टुडेज हिट्स, क्लासिक रॉक, कॉफी हाउस एंड मोर। Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज़ टुडे।

0: 2024 में T20 विश्व कप पर कब्जा, 2025 में जीता चैंपियंस ट्रॉफी का रण, अब लिया 2027 वर्ल्ड कप का प्रण, पद्मश्री रोहित शर्मा का अग्निपथ। सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर,
1: और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: देव स्नान पूर्णिमा के मौके पर 29 जून को जगन्नाथपुरी में होगी स्नान यात्रा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को 108 कलशों के पवित्र जल से कराया जाएगा स्नान। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर हुआ मंथन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रबुद्ध जनों से की चर्चा। श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ शहर के ट्रैफिक प्लान पर हुई बात।

0: काफिलों की यात्रा होगी अधिक सुगम और आरामदायक। गुजरात के 14 शहरों को मिली सुगम यातायात की सौगात, भारत टैक्सी ऐप का शुभारंभ, गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में उन्होंने किया उद्घाटन। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, बोटानिकल गार्डन में 196 साल के सबसे उम्रदराज कछुए जोनाथन के दीदार किए।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: जितनी तेजी से वक्त बदल रहा है उतनी ही तेजी से युद्ध के स्वरूप में भी बदलाव आ रहे हैं। मैदानी जंग में इंसानों की सीधे एंट्री की बजाय मशीनों को रणक्षेत्र में उतारने की तैयारी हो रही है। यही वजह है कि अनमैन्ड वेपन्स पर दुनिया का फोकस बढ़ा है। ऑटोनोमस मोड में काम करने के लिए ताकतवर हथियार तैयार किए जा रहे हैं।
1: भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट राइनो के तहत एक व्यापक अपग्रेड प्लान तैयार किया है। थल सेना अपने बेड़े में शामिल करीब 2400 पुराने हो चुके T-72 टैंकों को रिटायर करने या कबाड़ में बेचने के बजाय उन्हें अत्याधुनिक मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल में बदलने की योजना पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य T-72 टैंकों की सेवा अवधि को साल 2030 से 2040 के बाद तक बढ़ाना है।
0: आज के युद्ध क्षेत्र में इंसानों से ज्यादा आधुनिक मशीनों की भूमिका है। अब जंग सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से लड़ी जाती है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। युद्ध में मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि सिर्फ पारंपरिक हथियारों के भरोसे काम नहीं चलने वाला। इसी दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद T-70 टैंक्स को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। सेना अपने पुराने T-72 टैंक्स को एक डिजिटल और आधुनिक अवतार देने जा रही है। अब इन टैंक्स को IP बेस्ड इंटरफेस के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा।
2: इस प्रोजेक्ट के तहत एक मानव रहित टैंक का निर्माण किया जाएगा जिसमें इंजन का संचालन रिमोट से होगा, जो तोप और हैवी मशीन गन है उसका भी संचालन रिमोट से होगा। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, यानी जैसे AI का जो इंटीग्रेशन करना है या IP का जो इंटीग्रेशन करना है वह शायद उतने सुचारू रूप से फिलहाल नहीं हो रहा है।
0: T-72 वही टैंक है जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा की है। अब ये 40 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में रिटायर होने के कगार पर खड़े T-72 टैंक को घातक रोबोटिक वॉरियर में तब्दील करने की बात हो रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि T-72 टैंक में बदलाव से क्या फायदा होगा, सेना की समग्र मारक क्षमता में कैसे इजाफा होगा। माइंस भरे इलाकों को तोड़ने में मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल की तरह T-72 का इस्तेमाल होगा, साथ ही दुश्मनों की गोलीबारी को आकर्षित करने के लिए डिकॉय के रूप में काम करेगा, जिससे सैनिकों की सुरक्षा बढ़ेगी। अग्रिम मोर्चे पर ऑपरेशंस पे ये अहम भूमिका अदा करेगा, यानी T-72 टैंक अग्रिम पंक्ति के हमलों का नेतृत्व करेंगे और टोही के साथ गश्त का काम बखूबी निभाएंगे। डिजिटल होने के बाद T-72 टैंक कमांड नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भेजेंगे, जिससे ऑपरेटर्स और कमांडर्स को युद्ध के बीच तुरंत निर्णय लेने में आसानी होगी। पहले की योजना के अनुसार T-72 टैंक्स को साल 2030 से धीरे धीरे सेना से बाहर किया जाना था, लेकिन अब इस नई ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इन टैंक्स की उम्र अगले 15 से 20 साल यानी साल 2045 से 2050 तक बढ़ जाएगी।
2: एक नॉर्मल कन्वेंशनल टैंक जैसे कि T-72 को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें इंजन वही रहता है, गियरबॉक्स भी वही रहता है, तोप भी वही रहता है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी वही रहता है। सिर्फ बदला किया जाता है, एक मानव रहित रोबोट जो है वो ड्राइवर की जगह ले लेता है, एक मानव रहित गनर है वो तोपची की जगह ले लेता है, और कमांडर की जो जगह है वो रिमोट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे बैठे हुए एक मानव कमांडर के हाथ में होता है। अब इन सबको करने के लिए जो रोबोट टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित कर ली है, लेकिन उसमें जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वह अभी तक आना बाकी है।
0: यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि आज के आधुनिक दौर में ड्रोन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और टॉप अटैक हथियारों ने पारंपरिक टैंक्स को बेहद असुरक्षित बना दिया है। ऐसे माहौल में टैंक के भीतर बैठे क्रू मेंबर्स की जान हमेशा खतरे में रहती है। भारत ने इस वैश्विक चुनौती का बेहद सटीक और किफायती समाधान ढूंढ निकाला है। सेना अपने पुराने हो रहे T-72 टैंकों में एक विशेष ऑटोनॉमस किट फिट करेगी, जिससे कि इन्हें रिमोट कंट्रोल के जरिए या फिर पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड में ऑपरेट किया जा सकेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि टैंक के भीतर कोई सैनिक मौजूद नहीं होगा। टैंक AI की मदद से या फिर रिमोट से ऑपरेट होगा और ये अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ दुश्मन पर हमला भी करेगा। एक पारंपरिक भारी भरकम मेन बैटल टैंक जैसे T-72 को मानव रहित रोबोटिक टैंक में बदलना इंजीनियरिंग का एक बेहद जटिल काम है। इसके लिए टैंक के पुराने मैनुअल सिस्टम को पूरी तरह हटाकर उसमें ड्राइव बाय वायर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाता है। टैंक को रोबोट बनाने के लिए उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाता, बल्कि उसमें एक विशेष रेट्रोफिट किट लगाई जाती है। इस किट के तीन मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है एक्चुएटर्स एंड सर्वो मोटर्स। टैंक के मैनुअल स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और गियर लीवर पर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर फिट किए जाते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मानव चालक के हाथ और पैर करते हैं। दूसरा है रिमोट गन कंट्रोल सिस्टम। 125 mm गन को मोड़ने, निशाना साधने और गोला दागने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगाई जाती हैं, जिन्हें मीलों दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है डिजिटल इंटरफेस। टैंक के पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम को ECU यानी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जो डिजिटल कमांड को मैकेनिकल मूवमेंट में बदल देता है।
2: खास बात है कि एक T-72 में आमतौर पर एक तीन लोगों का क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर। लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद इसमें जो रेट्रोफिट किट लगाया जाएगा, उसमें यह ड्राइवर का काम एक ऑटोमेटिक रोबोट करेगा। इसी तरह से जो ड्राइवर होगा उसको असिस्ट करने के लिए जो गनर है, जो टैंक का मेन तोप और हैवी मशीन गन फायर करता है, उस गनर को भी एक रोबोटिक गनर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी जो ट्रिगर प्रेस करने का काम है, जो निशाना लगाने का काम है, नया गोला तोप के चैम्बर में डालने का काम है, वो भी रोबोट्स के जरिए किया जाएगा।
0: रोबोटिक टैंक के अंदर कोई इंसान नहीं होता, इसलिए युद्ध क्षेत्र को देखने और समझने के लिए टैंक के चारों तरफ सेंसर्स का एक जाल बिछाया जाएगा। टैंक में लिडार और रेडार का इस्तेमाल होगा। ये सेंसर चारों ओर लेजर और रेडियो तरंगे भेजकर रियल टाइम में पूरे इलाके का एक 3D डिजिटल मैप तैयार करते हैं। इससे टैंक को पता चलता है कि आगे कोई खाई, चट्टान या दीवार तो नहीं है। टैंक में 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगाए जाएंगे, जो रात के अंधेरे, घने धुएं या कोहरे में भी दुश्मन की हलचल को साफ देख सकते हैं। AI सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में मिलाएगा, ताकि टैंक का कंप्यूटर एक सटीक फैसला ले सके। भारतीय सेना अपने टैंक्स को सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाना चाहती, क्योंकि युद्ध में दुश्मन सिग्नल जाम कर सकता है, इसलिए इसमें AI की मदद ली जाएगी। भारतीय सेना की अदिति 4.0 योजना के तहत देश के अग्रणी रक्षा स्टार्टअप्स इसी रोबोटिक किट और AI सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, ताकि हमारे T-72 टैंक्स को रिमोट कंट्रोल किलर मशीन्स में बदला जा सके। मानव रहित टैंक को कंट्रोल करने के लिए युद्ध के मैदान से 5 से 10 किलोमीटर पीछे एक बख्तरबंद ट्रक के अंदर सैनिक सुरक्षित बैठता है। ऑपरेटर के सामने कई बड़ी स्क्रीन्स या VR हेडसेट्स होते हैं, जो कि ऐसा अनुभव देते हैं कि वो खुद टैंक के अंदर बैठा हो। कंट्रोलर एक विशेष जॉयस्टिक, स्टीयरिंग व्हील और फायर बटन की मदद से टैंक को चलाता है और निशाना लगाता है। ऑपरेटर अपने कंट्रोल पैनल पर तय करता है कि उसे किस तरह का गोला दागना है, जैसे बख्तरबंद गाड़ियों के लिए APFSDS पैदल सेना या बंकरों को तबाह करने के लिए हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल। ऑपरेटर जैसे ही बटन दबाता है एक इंटीक्रिप्टेड डिजिटल सिग्नल टैंक के ECU यानी केंद्रीय कंप्यूटर को जाता है और फिर टैंक फायर कर देता है। सुरक्षा नियम कहते हैं कि गोला दागने का अंतिम फैसला हमेशा इंसानी ऑपरेटर का ही होता है। AI को खुद से फायर करने की अनुमति नहीं दी जाती।
2: अमेरिका, रशिया और इजराइल ने भी इस तरह के रोबोटिक टैंक्स बनाने की कोशिश की है, लेकिन इनमें से किसी भी देश में अभी तक जो प्रोटोटाइप बनाया गया है उसको ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी कि मास प्रोडक्शन के बाद उनकी आर्मी में इंडक्शन का कोई ऑर्डर नहीं मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि युद्धभूमि में ऐसा ना हो कि हमारा ही रोबोटिक टैंक गलती से हमारे ही टैंक या हमारे ही तोप की पोजीशन जो आर्टिलरी है या हमारे जो इन्फेंट्री ट्रुप्स युद्धभूमि में है उन पर फायर ना खोल दे। व्यवस्था ये की जाती है कि हमेशा जो ऑटोमेटिक लूप है उसमें मैन इन लूप हो, यानी फाइनल फायर करने की जो इजाजत है वो एक मनुष्य देगा।
0: T-72 टैंक को रिप्लेस करने की बजाय इसे अपग्रेड किया जा रहा है। आखिर दशकों पुराने इस टैंक में ऐसा क्या खास है कि इसे अपग्रेड कराने की तैयारी हो रही है और ये कितना घातक है ये भी जानना जरूरी है। भारत का T-72 टैंक अजय 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है, जो 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ने की ताकत रखता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत है कि ये रीस्टार्ट होने में महज 6-7 सेकंड का वक्त लेता है। कम गहरी नदियों को आसानी से पार करने की इसमें ताकत है। लाइटवेट टैंक की बात करें तो भारतीय सेना के पास जो T-72 अजय टैंक है उसका वजन 41 टन के आसपास है। इसमें 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी हुई है। इससे एक बार में एक साथ 300 राउंड फायर होते हैं। इससे 1500 मीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है।
2: T-72 टैंक रूस का प्रमुख मेन बैटल टैंक है। वैसे रूस ने बाद में इसको अपग्रेड करके T-90 टैंक बनाया जो कि भारत के पास भी है। भारत की फौज में अभी करीबन 1000 T-90 टैंक्स हैं और करीबन 3000 T-72 टैंक हैं। इन T-72 टैंक्स की खास बात यह है कि ये रेत के ऊपर, दलदल के ऊपर, कीचड़ में, जंगल में, पहाड़ों में, बर्फ में भी ऑपरेट कर सकते हैं। इन T-72 टैंक्स में जो मेन गन लगी है वो इंफ्रारेड फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है और रात के अंधेरे में भी दुश्मन के टैंक्स या दुश्मन की गन पोजीशन को 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी से देखकर एक्यूरेट फायर कर सकता है।
0: भारतीय सेना के पास T-72 टैंक के 3 वर्जन हैं, अजय MK-1, अजय MK-2 और कॉम्बैट इंप्रूव्ड अजय, जिनका भारत इस्तेमाल करता है। इस वक्त भारतीय सेना में करीब 2400 के आसपास T-72 अजय टैंक मौजूद हैं। भारतीय सेना ने T-72 के आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट राइनो शुरू किया था। इसके तहत टैंकों में नए इंजन, आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम और बेहतर सुरक्षा प्रणाली लगाने की योजना है। साथ ही अदिति 4.0 पहल के तहत इन्हें भविष्य में मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म में भी बदला जा सकता है। सेना का मानना है कि इन सुधारों से T-72 टैंक आने वाले वर्षों में भी प्रभावी बने रहेंगे और भविष्य में फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के शामिल होने तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत जहां अपने मौजूदा T-72 टैंक बेड़े को बदलने और AI रेट्रोफिट किट का शुरुआती परीक्षण करने के चरण में है, वहीं अमेरिका और रूस ने इस क्षेत्र में समर्पित नई पीढ़ी के प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए हैं और उनका लाइव बैटलफील्ड में परीक्षण भी किया जा चुका है। आखिरी युद्ध में टैंक की क्या अहमियत है
1: और इसकी जरूरत अब भी रणभूमि में क्यों महसूस की जाती है, इसे जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में चलना होगा।
0: प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के कई देश एक दूसरे को घुटनों के बल लाने के लिए रण क्षेत्र में उतरे हुए थे। तब पुराने जमाने की तरह ज्यादातर लड़ाई आमने सामने लड़ी गई। जितनी लड़ाई जमीन के ऊपर लड़ी गई, उतनी ही जमीन के नीचे भी। कई कई किलोमीटर लंबी खाइयां खोदकर सैनिक उनमें मशीनगन से लैस होकर तैनात रहते थे। इन खाइयों को ट्रेंच कहा जाता है और इनके बीच होता था नो मैन्स लैंड। तार बाड़ और लैंड माइन से भरी जमीन को पार करना यानी मौत को दावत देने जैसा था, इसीलिए तब लंबे समय तक ट्रेंच वॉर चलती रही। हर देश अपनी ट्रेंच के जरिए खुद की हिफाजत की पुख्ता व्यवस्था में जुटे थे। और इसी वजह से साल 2016 तक युद्ध फंसा ही रहा। ब्रिटेन और जर्मनी दोनों खेमों की सेना जहां जहां थी वहीं खड़ी की खड़ी रही, क्योंकि आगे बढ़ना मुश्किल था। और तभी आया एक ऐसा हथियार जिसने आने वाले तमाम युद्धों की तस्वीर बदल कर रख दी। यह हथियार था टैंक।
1: टैंक का नाम टैंक ही क्यों पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। जब ब्रिटेन टैंक को बना रहा था तो उसे डर था कि इस नए हथियार की जो जानकारी थी वो कहीं लीक ना हो जाए, इसलिए आधिकारिक फाइल्स में इस हथियार को टैंक लिखा जाने लगा, ताकि अगर किसी को पता चले तो ये लगे कि ब्रिटेन पानी ले जाने के लिए किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जो कमेटी इसका काम देख रही थी उसे टैंक सप्लाई कमेटी या TS कमेटी कहा गया, और जब फिर हथियार तैयार हो गया तब उसका नाम टैंक ही पड़ गया।
0: पहले विश्व युद्ध में बने टैंक प्रयोग के स्तर पर थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध आते आते टैंक्स फौज की जरूरत बन गए, या यूं कहें टैंक्स सेना का अनिवार्य हिस्सा बन गए। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने जब चंद दिनों में फ्रांस और पोलैंड पर अपनी जीत हासिल की तो उसकी सबसे बड़ी वजह उसके टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ही थे।
1: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टैंक की अहमियत बढ़ने लगी, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों ने आमने सामने की लड़ाई में टैंक की विध्वंसकारी ताकत को काफी करीब से महसूस कर लिया था। और फिर दुनिया के कई देशों ने टैंक टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया। इनमें एक नाम भारत भी था।
0: लंबे समय तक भारत अपने दोस्त सोवियत रूस से टैंक आयात कर अपनी जरूरतें पूरी करता रहा। फिर 1965 में भारत ने UK की मदद से अपना एक टैंक बनाया जिसका नाम रखा गया विजयंत। इसका इस्तेमाल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किया गया। स्वदेशी ताकत को धार देने के लिए बाद में अर्जुन टैंक का निर्माण किया गया, और अब इसी कड़ी में जोरावर का नाम भी जुड़ गया है। किसी भी टैंक की ताकत का आकलन उसकी मारक क्षमता, उसकी स्पीड और उसकी डिफेंस क्षमता से होती है। इसके लिए बैटल टैंक्स के कुछ इंडिकेटर होते हैं, उनके जरिए ही पता चलता है कि टैंक फौज की जरूरत के हिसाब से सही है या नहीं। ये इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। पहला इंडिकेटर वजन है, स्पीड है, पावर टू वेट रेशियो है, साथ ही हथियारों और डिफेंस मैकेनिज्म है जो ये बताता है कि आर्मर कैसा है टैंक का।
3: टैंक के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन, और ये तीनों बहुत जरूरी है। अगर आप देखें मोबिलिटी तो वो दिखलाता है कि टैंक किस स्पीड से जा सकता है, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह में कम से कम समय में जा सकता है और अपने टारगेट को कितनी जल्दी जाके हिट कर सकता है, तो इसलिए मोबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार फायर पावर, जो फायर पावर है वो दिखलाता है कि आप किस हिसाब से अपने टारगेट को शॉर्ट शॉर्ट हिट कर देते हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी रेंज कितनी है, और जो तीसरा है आपकी प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन यह है कि आपको यह भी देखना है कि दुश्मन के जो एंटी टैंक वेपन है या दुश्मन के टैंकों से आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट हिट हो जाता है आपके टैंक में, तो आप के पास इतनी काबिलियत तो और क्षमता होनी चाहिए कि आपका टैंक उसको विस्टैंड कर ले। तो इसका मतलब चुबा मारमन है, रिएक्टिव आर्मन है, तो इस टाइप का। तो ये कॉम्बिनेशन है इम्पोर्टेंट। एक टैंक टैंक के अंदर तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन। इसका कॉम्बिनेशन होना, इसकी ऐसा तरीके से होना कि इसका वेट भी ऑप्टिमम हो, इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो, और फायर पावर भी बहुत ही एक प्रकार से अव्वल दर्जे की हो।
0: किसी अच्छे बैटल टैंक में दो काबिलियत अनिवार्य है, पहला मोबिलिटी और दूसरा फायर पावर। मोबिलिटी का मतलब टैंक की वो ताकत है जो उसे कहीं भी ले जा सकती है। आप देखिए, ट्रेंच वॉरफेयर की जगह पे ही टैंक्स आए थे, पक्की सड़क हो या फिर कई मीटर गहरा कीचड़। टैंक का काम है हर जगह से निकलना। जहां बड़े बड़े पहियों वाले ट्रक्स भी फंस जाते हैं, वहां से टैंक्स आसानी से निकल जाते हैं। जबकि टैंक में लोहे के रोड व्हील्स या कहिए उसमें लोहे के पहिए होते हैं, फिर भी

0: जमीन के किसी एक हिस्से पर नहीं पड़ता है। टैंक का ट्रैक टैंक के वजन को एक बहुत बड़े सरफेस एरिया पर बांट देता है और इसलिए नम जमीन पर भी 50-50 टन के टैंक कभी धसते नहीं।
1: टैंकों के अंदर व्हील नहीं होते, क्योंकि व्हील जो है उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि रेतीले इलाके में, दलदल के इलाके में या टूटी फूटी जमीन में चल पाए। इसीलिए टैंकों के अंदर ट्रैक होते हैं और ट्रैक से काबिलियत बढ़ती है टैंक की। टैंक जो है एक प्रकार से रेतीली इलाके में भी जा सकता है और ऐसे इलाके में जा सकता है जहां पर दलदल हो या टूटी फूटी जमीन हो। इसीलिए टैंकों में ट्रैक होता है ना कि व्हील।
0: मौजूदा दौर में कई टैंक्स गहरे पानी तक को पार करने में सक्षम हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टैंक्स बिल्कुल भी फंसते नहीं। टैंक्स भी फंसते हैं, लेकिन ऐसा बेहद कम होता है।
2: टैंक्स को मैन्युवरल भी होना चाहिए और बढ़िया वेट टू पावर रेशियो भी होना चाहिए। मैन्युवरिंग मतलब टैंक कितनी चपलता या फुर्ती के साथ हरकत कर सकता है, गोला दाग कर कितनी जल्दी अपनी पोजीशन बदल सकता है। जाहिर है टैंक भारी होगा तो उसे हरकत करने में काफी दिक्कतें आएंगी, लिहाजा टैंक के पास एक ताकतवर इंजन का होना जरूरी है।
0: टैंक का वजन और उसके इंजन की ताकत या पावर के बीच जो अनुपात होता है उसी को कहा जाता है पावर टू वेट रेशियो। जितना बेहतर पावर टू वेट रेशियो होगा उतना अच्छा टैंक हो सकता है।
1: तीन रिक्वायरमेंट है टैंक की। इसकी फायर पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसकी मोबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, इसकी प्रोटेक्शन भी, और तीनों का तालमेल होना चाहिए। देखो अगर आप प्रोटेक्शन देते हैं तो फिर इसका टैंक का एक प्रकार से वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है तो फिर मोबिलिटी कम हो जाती है और उसकी फायर पावर कैसी होगी वो भी दर्शाता है। तो एक अच्छे टैंक का पहचान यह है कि हर चीज अच्छी हो, उसकी फायर पावर भी बहुत अच्छी हो, वो उसके रेंज पे हिट कर पाए, 100% अपने टारगेट को हिट कर पाए, और इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो कि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा पाए, और तीसरा है इसकी प्रोटेक्शन भी हो कि अगर दुश्मन का टैंक या एंटी टैंक वेपन हिट करता है तो वो उसे बचाव कर पाए। तो इन तीनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए कि ये ना हो कि टैंक इतना हैवी हो, इतना लाइट ना हो कि उसकी प्रोटेक्शन इतनी अच्छी ना हो या उसके अंदर फायर पावर इतनी अच्छी ना हो, तो तीनों का एक प्रकार संतुलन होना जरूरी है।
2: हमारे लिए यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
5: कौन से ग्रह का दान रात के समय में करना अच्छा होता है? किस ग्रह का दान करने से रोजगार की रुकावट दूर हो जाती है? और कौन से ग्रह के लिए गाय को हरा चारा खिलाने से फायदा होता है? किस ग्रह के लिए क्या करें दान, कब करें दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: Soccer's biggest stage is here. And we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
7: चौबीस में T20 विश्व कप पर कब्जा।

0: प्राण। अब लिया 2027 वर्ल्ड कप का प्रण। पद्मश्री रोहित शर्मा का अग्निपथ। सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: देव स्नान पूर्णिमा के मौके पर 29 जून को जगन्नाथपुरी में होगी स्नान यात्रा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को 108 कलशों के पवित्र जल से कराया जाएगा स्नान। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर हुआ मंथन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रबुद्ध जनों से की चर्चा। श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ शहर के ट्रैफिक प्लान पर हुई बात। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों यात्रियों के लिए गुड न्यूज। 29 जून से सेंट्रल रेलवे की 12 और लोकल ट्रेन बनेंगी एसी। लोकल के मुसाफिरों की यात्रा होगी अधिक सुगम और आरामदायक। गुजरात के 14 शहरों को मिली सुगम यातायात की सौगात। भारत टैक्सी ऐप का शुभारंभ। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में उन्होंने किया उद्घाटन। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। बोटानिकल गार्डन में 196 साल के सबसे उम्रदराज कछुए जोनाथन के दीदार किए।

पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उसने क्रिकेट के मैदान पर करिश्माई पारियां खेलकर क्रिकेट प्रेमियों के साथ ही देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाली जूरी का भी दिल जीत लिया। इसलिए क्रिकेट के उस मसीहा को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। ये वो शख्स हैं जिसने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के साथ ही ICC चैंपियंस ट्रॉफी का भी चैंपियन बना दिया।

0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।
1: आप समझ ही गए होंगे कि आज बंदे में है दम का बंदा कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के हिटमैन यानी कि विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। जी हां, भारतीय क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी बहुत कम हुए हैं जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के चंद उन्हीं चुनिंदा खिलाड़ियों में से शुमार हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया एक से ज्यादा बार विश्व चैंपियन बन चुकी है। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया कम से कम फटाफट फॉर्मेट में कमोबेश अपराजेय बनी रही। ये क्रिकेट के दो फॉर्मेट T20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं लेकिन वनडे में अभी भी दमदार पारियां खेल रहे हैं।
0: श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट।

23 जून रोहित शर्मा के जीवन की सबसे यादगार तारीख बन चुकी है। 23 जून ही वो तारीख है जब रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला कदम रखा था। रोहित ने 23 जून 2007 को आयरलैंड के बेलफास्ट में खेले गए एक वनडे मैच से भारत के लिए डेब्यू किया था। रोहित की किस्मत का 23 जून कनेक्शन देखिए कि इंटरनेशनल डेब्यू के 19 साल बाद 23 जून को ही रोहित शर्मा को चौथे